भिखारी बने तो दूसरों को भी बनाओ, क्योंकि अभी सभी मुक्ति चाहते हैं। सभी को मुक्ति में भेज, आप बाप के वरदान से राज्य अधिकारी बनेंगे। इसलिए बाप यही हर बच्चे को संकल्प दे रहे हैं, कौन सा? निर्विघ्न भव, सेवाधारी भव। अपने संस्कारों को मिटाने से निर्विघ्न बनेंगे और मनसा सेवा करके सच्चे सेवाधारी भव। तो निर्विघ्न भव, सेवाधारी भव। जो बच्चे बाप के बन गए हैं, उन बच्चों को संगम योगी ब्राह्मण जीवन का मजा अनुभव हो रहा है और होता ही रहेगा। तो चाहे नए आए हैं, चाहे पुराने भी हैं, लेकिन जो अपने को समझते हैं बाप के वर्षे के अधिकारी है, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं, जो समझते हैं कि हम बाप के वर्षे के अधिकारी है, अतीन्द्रिय सुख में झूलते रहते हैं, और आगे भी जो संकल्प किया है, संस्कार पर विजयी बनने का संकल्प लिया है, वह सभी आत्माएं कोटों में कोई बने हैं, या कोई में भी कोई बने हैं। बच्ची ने कहा है ना, दादी जानकी ने बाबा को मैसेज दिया था, तो बाबा उसका रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि बच्ची ने कहा है ना, जनक ने 108 की माला 16,000 की माला का खास मिलन करो। तो आप जो समझते हैं, बाबा बच्चों को ही कहते हैं, आप जो समझते हैं कि हम 16,000 या 108 इस माला में आने वाले हैं, वो हाथ उठाओ। तो बाबा ने देखा नए नए बच्चे भी सभा में बैठे हैं, तो नए नए भी उठा रहे हैं। मुबारक हो, बाबा उनको भी मुबारक देते हैं। निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं। बाप दादा भी जानते हैं कि जो निश्चय बुद्धि है वह आगे जा सकते हैं और जाएंगे। जो निश्चय बुद्धि है वह आगे जा सकते हैं और जाएंगे। अच्छा, जो पहली बारी आए हैं वह हाथ उठाओ। सभी की तरफ से बाप दादा आप लोगों को मुबारक दे रहे हैं। निश्चय जो किया है ना, इसको अमृत वेले सदा रिवाइज करते रहना। जो संकल्प किया है निश्चय बुद्धि बन करके, तो बाबा कहते अमृत वेले उसको रिवाइज करते रहना। अच्छा, बाप दादा को बच्चों को देख खुशी होती है। नए बच्चों को देख करके भी बाबा को खुशी होती है कि समय टू लेट के पहले अपने वर्षे के अधिकारी बन गए। इसलिए यहाँ आए हुए सर्व परिवार की तरफ से व अपने अपने सेंटरों पर रहने वाले सभी बच्चों के तरफ से भी बाप दादा आप सबको मुबारक दे रहे हैं। अभी आप एक कमाल करना। बाबा नए बच्चों को भी उमंग उत्साह भर देते हैं और कहते हैं अभी आप एक कमाल करना। क्या कमाल करना है? तो बाबा पूछते, हिम्मत है? बोले, हिम्मत है। आप लोग पहले से ही निर्विघ्न रहना, निश्चय और नशे में नंबर वन जाना, ये कमाल करके दिखाना है। बाप दादा को खुशी होती है कि पुराने तो पुराने हैं, लेकिन नए थोड़े समय में कमाल दिखाएंगे। अच्छा, अभी बाप दादा चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, सभी को एक सेकंड का कार्य देते हैं। सभी अभी अभी एक सेकंड में अपने आप को और सभी संकल्पों से दूर करके एक सेकंड में अपने को बिंदु रूप में स्थित कर सकते हो? करेंगे? तो बाबा कहते एक सेकंड में मैं बिंदु हूं, कोई संकल्प नहीं, बिंदु हूं।
ड्रिल कराई बाबा ने। फिर बाबा कहते जिसने सेकंड में अपने को बिंदु स्थिति में स्थित किया वह हाथ उठाओ। सेकंड में लगाया, बाबा कहते बिंदु सेकंड में लगाया। अच्छा अभी ये प्रैक्टिस 15 दिन सारे दिन में हर घंटे में 1 सेकंड में बिंदु लगाओ। ये प्रैक्टिस हर एक करना और वहां वातावरण में रहकर अपने कार्य में रहते चेक करना 1 सेकंड में बिंदु रूप में सफलता मिली। क्योंकि बाबा कहते यहां तो वायुमंडल भी है, संगठन है, वायुमंडल है, लेकिन अपने अपने स्थान में रहते सेकंड में बिंदु स्वरूप में स्थित हो सकते हो। ये अभ्यास करना, क्योंकि बाप दादा ने बता दिया है जितना आगे चलते जाएंगे उतना ये 1 सेकंड में बिंदु स्थिति में स्थित होने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए अपने आप को ही चेक करना और अपने अपने स्थान में रिपोर्ट टीचर को लिख कर देना। फिर टीचर्स द्वारा चाहे यहां है या नहीं भी है, सभी क्लासेस के लिए यह होमवर्क है। इसके रिजल्ट बाप दादा के पास आएगी तो देख लेंगे। इससे पता पड़ेगा कि आप 108 या 16,000 की माला उसके अधिकारी है। सेकंड में रोज की दिनचर्या में कितना सफल हुए उससे पता पड़ेगा कि आप किस योग्य है। क्योंकि अभी हाथ उठवाएंगे कौन अपने को समझते हैं प्रैक्टिकल धारणा में कि मैं 108 या 16,000 की माला में आएंगे तो सब उठा देंगे। इसलिए आप सिर्फ रिजल्ट लिखना, उससे समझ जाएंगे क्योंकि दादियां मानो नाम देती है तो कोई समझेंगे हम भी आ सकते हैं ना। तो इस रिपोर्ट से पता पड़ जाएगा, हर एक अपना रिपोर्ट खुद दे कि 1 सेकंड में बिंदु स्वरूप की स्थिति में कितना जल्दी स्थित हो सकते हैं। बाप दादा पूछते हैं कि सदा सेकंड में जो रूप अनुभव करना चाहो वह कर सकते हो सेकंड में। बाबा स्मृति दिलाते 5 स्वरूप जो सुनाए थे वह भी जब चाहो तब सेकंड में वह स्वरूप बन सकते हो। ये प्रैक्टिस करके अपने आप को मालूम पड़े कि मैं जो चाहूं उस स्थिति में सेकंड में रह सकता हूं या टाइम लगता है। बाकी बाप दादा खुश है कि हाथ उठाने में मेजॉरिटी हाथ उठाते हैं। अभी यह हाथ उठाया है लेकिन अभ्यास करते करते यह ऐसा हो जाएगा जैसे अभी द्वापर कलयुग के अभ्यास में देह अभिमान में आना नेचुरल हो गया है। ऐसे जिस स्वरूप में भी स्थित होने चाहो वह ऐसे ही इजी हो जाए क्योंकि समय ऐसा आने वाला है। बाबा सावधान कर रहे हैं, समय ऐसा आने वाला है जो 1 सेकंड का अभ्यास बहुत मदद करेगा। तो बाबा कहे क्योंकि समय ऐसा आने वाला है जिसमें आपको इस अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी। तो यह अभ्यास हर एक अपने अपने कार्य में होते करते रहो और रिजल्ट अपने निमित टीचर्स को देते रहो। तो इस वर्ष की समाप्ति में ये प्रैक्टिस करते रहना, अपने आपे ही करो, अपना टीचर भी आप बनो, लेकिन रिजल्ट दिखाने के लिए अपना चार्ट देते रहेंगे तो अटेंशन जाएगा। ऐसा अनुभव करो जैसे हाथ को जहां चाहो, बाबा कहे ऐसा अनुभव करो जैसे हाथ को जहां चाहो ठहरे, ठहरा सकते हो ना। ऐसे मन को जिस स्थिति में रहने चाहो उस स्थिति में रहे। महामंत्र भी यादगार में मन मना भव है।
मन की ड्रिल इसमें सफलता कितनी है वह अपने आप ही अनुभव करो। बाप दादा यही चाहते हैं। बाप दादा की चाहना क्या है बाबा वो भी सुनाते हैं। बाप दादा यही चाहते हैं कि एक एक बच्चा अभी संगम युग का सुख, संगम युग की प्राप्तियां, हर प्राप्ति के अनुभवी बने। तो अपने आप को चेक करना, हर प्राप्ति, हर शक्ति, हर ज्ञान के राज को, योग की हर विधि को, धारणा में भी हर धारणा में अनुभवी बना हूं, ये चेक करना है। अपनी सारी चेकिंग करते रहो और आगे से आगे बढ़ाते रहो तो आज बाप दादा चेकिंग और प्राप्ति इसको चेक करने के लिए कह रहे हैं। चेकिंग और प्राप्ति इसको चेक करने के लिए कह रहे हैं। कोई भी प्राप्ति में कम हो गए तो ड्रामा अनुसार, अगर कोई भी प्राप्ति में कम हो गए तो ड्रामा अनुसार परीक्षाएं भी समय अनुसार वही आएंगी, वही परीक्षा आएगी जिस प्राप्ति में कम हो गए हैं। इसलिए सब सब्जेक्ट में संपन्न और संपूर्ण की चेकिंग करो और चेंज करो। आज के दिन बाप दादा आप सबके साधारण स्वरूप में भी आपके भविष्य का रूप, प्राप्तियों का रूप देख रहे हैं। अच्छा, सभी तरफ के सिक्के लदे बाप दादा के दिल तख्त नशीन, बाप दादा के फरमान बरदार, आज्ञाकारी, तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत दिल का प्यार और बाप दादा की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा को भी बच्चों को देख खुशी होती है, वाह वाह वाह मेरे बच्चे वाह। सारा ही साल निर्विघ्न और खुश मिजाज रहना, अपने चलन और चेहरे से सबको खुशी और मुस्कुराहट सिखाना, सदा उड़ना और उड़ाना, चलना नहीं उड़ना। उड़ती कला सर्व को प्रिय है तो उड़ते उड़ते संदेश देना, सब आपको देखकर खुशी के झूले में झूलने लगे। फिर बाबा कहे हैप्पी हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा, हम सब रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, ईश्वरीय भाग्य में लाइट का क्राउन प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। ईश्वरीय भाग्य में लाइट का क्राउन प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। दुनिया में भाग्य की निशानी राजाई होती है और राजाई की निशानी ताज होता है। ऐसे ईश्वरीय भाग्य की निशानी लाइट का क्राउन है और इस क्राउन की प्राप्ति का आधार है प्योरिटी। संपूर्ण पवित्र आत्माएं लाइट के ताजधारी होने के साथ साथ सर्व प्राप्तियों से भी संपन्न होती है। अगर कोई भी प्राप्ति की कमी है तो लाइट का क्राउन स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। अगर कोई भी प्राप्ति की कमी है तो लाइट का क्राउन स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। आज का स्लोगन है, अपनी रूहानी स्थिति में स्थित रहने वाले ही मनसा महादानी है। अपनी रूहानी स्थिति में स्थित रहने वाले ही मनसा महादानी है। आज का व्यक्ति इशारा है, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, अभी अच्छा अच्छा कहते हैं,
लेकिन अच्छा बनना है ये प्रेरणा।

नहीं मिल रही है, उसका एक ही साधन है ताकि लोग अच्छा बनने की प्रेरणा ले, उसका एक ही साधन है, संगठित रूप में ज्वाला स्वरूप बनो, एक एक चैतन्य लाइट हाउस बनो, सेवाधारी हो, स्नेही हो, एक बल एक भरोसे वाले हो, ये तो सब ठीक है, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर आ जाए तो सब आपके आगे परवाने के समय चक्कर लगाने लगेंगे। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर आ जाए तो सब आपके आगे परवाने के समान चक्कर लगाने लगेंगे। अच्छा, ओम शांति।

ओम शांति। हम सभी संसार में पद्मा पदम भाग्यवान हैं। अपने भाग्य को देखकर तो मुस्कुराओ। सोचें, इस जीवन में हमने इन आंखों से क्या क्या देखा, जो चारों युगों में कभी नहीं देखा जा सकता वो इन आंखों से देखा। प्रभु पालना में हमारा जीवन पला, उसने बाप रूप से हमारी पालना की, शिक्षक रूप से ज्ञान देकर बहुत पालना की, और सद्गुरु के रूप में गाइड करके, वरदान देकर, शक्तियां देकर हमें पालना में संपन्न किया। सोचने की बात है, ऐसी श्रेष्ठ पालना चारों युगों में किसी को नहीं मिलेगी। कभी राजाई घर में हमारी पालना होगी, तो किसी की पालना साहूकार घर में होगी, और उन लोगों के भाग्य पर विचार करें जिनकी पालना गरीब घरों में होती है। जो मन चाही बातों को नहीं कर सकते, वो पढ़ना चाहें बुद्धिमान हो तो पढ़ नहीं सकते, अच्छा भोजन नहीं खा सकते, उनके पास साधन नहीं होते हैं। हमारी पालना हो रही है परमात्मा के द्वारा, राजाओं से भी बड़ी पालना, जिसमें उसने हमें संपूर्ण सुख भी दे दिया है, शक्तियां भी दे दी हैं, अपना प्यार भी दिया और बहुत श्रेष्ठ ज्ञान दिया है। हम प्रभु पालना में पल रहे हैं। सवेरे बाप आकर हमें उठाते हैं, रात को सुलाते हैं, फिर पढ़ाने आते हैं, ब्रह्मा भोजन खिलाते हैं, और बाबा ने कहा कोई बच्चा दुखों में आंसू बहाए तो आकर उसके आंसू भी पहुंचते हैं। दुनिया वाले अगर ये सुने तो कहेंगे ये कौन है, भगवान इनके लिए खाली बैठा है क्या? और बाबा ने इसका स्वयं उत्तर दिया था उन्हीं के शब्दों में कि तू उन्हें कह दो, भगवान इस समय हमारे लिए खाली ही बैठा है। सोच लें, जिनके लिए भगवान खाली बैठा हो उन्हें स्वयं क्या कर लेना चाहिए और बाबा का कैसे लाभ उठा लेना चाहिए, उसको यूज कर लेना चाहिए, उसका आह्वान करके अपने बिगड़े हुए काम संवार लेने चाहिए, स्वयं को वरदानों से भर लेना चाहिए, उससे मन चाही शक्तियां प्राप्त कर लेनी चाहिए। तो हमारे पास ऐसा ही सद्विवेक है जिससे हम बाबा की श्रेष्ठ पालना का, इस मेहरबानी का संपूर्ण लाभ उठा सकते हैं। तो हमें याद रखना है, बाबा हम पर मेहरबान हुआ है, वो हम पर बहुत खुश हुआ है, हमें उसकी इस मेहरबानी का कैसे फायदा उठाना चाहिए। बाबा ने खुद कह दिया है, बाप बंधा हुआ है, बच्चे बुलाएं तो बाप को आना ही पड़े, और हम सब तो उसके लाडले हैं। किसी माँ को भी कोई प्यारा बच्चा बुलाता हो रात को 12-1 बजे भी, तो माँ जग कर दौड़ी चली जाती है। हम तो भगवान के प्यारे बच्चे हैं, जब हम उसको बुलाएंगे तो वो दौड़ा चला आता है, लेकिन शर्त केवल इतनी है कि जब वो हमें बुलाता हो, जब वो हमें कुछ आदेश देता हो तो हम भी दौड़े चले आते हों, उसका हम पर पूर्ण अधिकार हो तो उस पर हमारा भी संपूर्ण अधिकार हो जाएगा। बस ये अंतर हम मिटा दें कि हम तो कहें कि बाबा को जब भी हम बुलाएं वो आ जाए, लेकिन जब बाबा हमें बुलाए तो हम सोचने लगें, हम बहाने करने लगें, ये अंतर हमें मिटा देना है। और आज सारा दिन हम बाप दादा को बुलाएंगे, आह्वान करेंगे और अपने सिर पर उसके हाथ को अनुभव करेंगे। बहुत सुंदर ये अनुभव की बात है। और बाबा ने जो एक अभ्यास और सिखाया है कि तुम्हें संसार को भिन्न भिन्न रंगों की किरणें देनी होंगी, अर्थात भिन्न भिन्न शक्तियों की किरणें देनी होंगी। तो आज सारा दिन बाप दादा को बुलाने के साथ ये अभ्यास करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ और मेरे मस्तक से शक्तियों की रंग बिरंगी किरणें निकलकर
सामने फैल रही हैं, सब पर पड़ रही हैं, वातावरण पर भी पड़ रही हैं, सब चार्ज हो रहे हैं। एक एक मिनट में ये दोनों अभ्यास करेंगे और आज के दिन को आनंदित बनाएंगे। ओम।

रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। अमृतधारा प्रोग्राम में मैं वक्ती आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। सुस्वागतम, शुभ स्वागतम। बहुत सुंदर प्रेरणादायी सुविचारों से हमारे दिन की शुरुआत होती है अमृतधारा में, और ये सुविचार हमें बहुत कुछ दिन भर के लिए भी जैसे एक मैसेज देता रहता है, या कहो हमारी हर एक पल में ऐसी कोई भी परिस्थिति आई तो भी वो हमें मदद करता है। आज का सुविचार है, जब तक व्यक्ति के भीतर पाने की इच्छा शेष है तब तक उसे दरिद्र ही समझना चाहिए। श्री सुदामा जी को गले लगाने के लिए आतुर श्री द्वारकाधीश इसलिए भाग कर नहीं गए कि सुदामा के पास कुछ नहीं है, अपितु इसलिए गए कि सुदामा के मन में कुछ भी पाने की इच्छा अब शेष नहीं रह गई थी। कितनी सुंदर बात है दोस्तों, जिसको कहते हैं निष्काम। वैसे देखा जाए तो मानव का तो कोई कर्म निष्काम भाव से होता ही नहीं। केवल एक प्रभु ही है, एक परमात्मा ही है, एक गॉड ही है, एक अल्लाह ही है।

0: है जिसको कहते हैं कि वो निष्काम है, उसके अंदर कोई पाने की बात ही नहीं है, क्योंकि वो दाता है, देता ही रहता है। लेकिन फिर भी कभी कभी हम छोटी छोटी अपेक्षाएं रखते हैं, कामनाएं रखते हैं, और फिर वो कामनाएं पूरी जब नहीं होती है तो मायूस हो जाते हैं, या तो फिर क्यों हमने इनके साथ इतना अच्छा बर्ताव किया, इस प्रकार की कुछ न कुछ बातें मन में चलती है जो गाठे बन जाती है बाद में। दोस्तों, सचमुच निष्काम भाव अर्थात नेकी कर दरिया में डाल। हमें अगर अच्छा करना है तो क्यों ना हम कोई अपेक्षा न रखें, और वो ही निष्कामता, यहाँ तक कि इतनी सीमा तक निष्कामता हम जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, इसलिए संत कहते हैं कि जो कुछ नहीं मांगता उसको भगवान स्वयं अपने आप ही दे देता है, क्योंकि उसको तो सब मालूम है ना। दोस्तों, चलिए, बहुत अच्छी चर्चा हो रही है, दशम स्कंध का जो 16वां अध्याय है उसमें भी कई सारी सीख हमें मिलती है, कई सारे रहस्य हमें समझ में आते हैं। और इसी चर्चा के सिलसिले में हमारे स्टूडियो में उपस्थित है ज्ञानेश्वर जी। चलिए, सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। ज्ञानेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत।
1: धन्यवाद भक्ति जी, और आपको और हमारे रेडियो मधुबन के सभी श्रोतागण को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात और ढेर सारी शुभकामनाएं। भक्ति जी, सुविचार सुनने के बाद शायद हमारे श्रोताओं के मन में एक विचार या आशंका आ सकती है, निष्काम कर्म या जितना मिला है उसमें सुख समझना, क्या हम हमारी तरक्की करना उचित नहीं समझते, क्या हमें तरक्की नहीं करनी चाहिए, ये भी एक आशंका या विचार मन में आ सकता है। क्योंकि अगर कोई कहता है कि मैंने एक डिग्री पा ली बस हो गया, अगर कोई जॉब मिल गया, जिस जॉब में मिला है उसमें मैं खुश हूँ, तरक्की पाने की कोई लालसा नहीं है, तो क्या ये उचित है, ऐसे एक विचार मन में आ सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जिंदगी में तरक्की पाना जरूरी भी है, उसके लिए प्रयास करना वो भी जरूरी है, लेकिन सुख और तरक्की उसमें अंतर है। तरक्की पाने के लिए, तरक्की करने के लिए जो प्रयास हम करते हैं वो तो भरसक करने ही है, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर बाय चांस या दुर्भाग्यवश या संयोग से हमें उसमें सफलता नहीं मिलती तो क्या करना चाहिए? तो हमें ये विचार करना चाहिए कि मैंने तो प्रयास कर लिया, बाकी आपने जो मिला उसमें मैं खुश हूं। उससे क्या होगा कि हम प्रयास भी करते रहेंगे, और प्रयास के बावजूद अगर हमें सफलता नहीं मिलती है तो हमें दुख नहीं होगा। ये अध्यात्म सुविचार, इसका प्रयोग प्रयोजन ये है कि हमारी जिंदगी में हमें खुशी हमेशा के लिए रहे, हमें खुशी छोड़ना नहीं है, हर संभव प्रयास करना है कि हम जिंदगी में खुश कैसे रहे। और शायद इसी वजह से ये सुविचार आते हैं, सुविचार हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन हमारे मन में ये प्रेरणा होनी चाहिए कि सुविचार क्यों कर रहे हैं और सुविचार का रहस्य क्या है।
0: बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, निष्कामता ये शब्द ही हम तब प्रयोग करते हैं जब हम साधनों की अपेक्षाएं करते हैं, या कहो किसी रिश्ते संबंधों में हम कामना रखते हैं। और इसीलिए मैं समझती हूँ ये जो सुविचार है वो उसके लिए है जो मन में आकांक्षा रहती है। इसका मतलब प्रोग्रेस के लिए या हमारी तरक्की के लिए तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, चलिए, इसी बात को लेकर ही एक बहुत सुंदर कहानी आज हम आपको सुना रहे हैं। तो सब तैयार है? चलिए, तैयार हो जाइए। एक छोटी सी लेकिन बड़ी ही रसीली और बोधप्रद कहानी सुनने के लिए। एक व्यक्ति था जो सुबह उठकर मंदिर की ओर जा रहा था, मामूली सा व्यक्ति, रोज मंदिर में जाने वाला। उस दिन रास्ते में उसको 1 रुपए का सिक्का मिला। तब उसके मन में विचार आया कि यह एक रुपया मैं किसी दरिद्री को देता हूँ। पूरे नगर में वो ढूंढने के लिए निकल पड़ा, ढूंढने लगा, लेकिन उस नगर में कोई भी दरिद्र और भिखारी व्यक्ति शाम तक उसको नहीं मिला। अब हर रोज की तरह फिर से दूसरे दिन वो व्यक्ति मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहा था, एक रुपया लेकर, ताकि मुझे कोई गरीब व्यक्ति, दरिद्र व्यक्ति मिले। और वहां से उसने देखा एक राजा आ रहा है, बहुत बड़ी सेना लेकर दूसरे नगर में जा रहा है। राजा जैसे ही उस व्यक्ति को देखता है, उसको प्रणाम करता है और कहता है, महात्मन, मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, आप आशीर्वाद दीजिए मुझे कि मैं दूसरे नगर के राज्यों को भी जीत सकूं। तो दोस्तों, जब व्यक्ति ने वो बात सुनी तो तुरंत उसने जेब से एक रुपए का सिक्का निकाला और राजा के हाथ में थमा दिया। क्यों किया ऐसा, आपके भी मन में जरूर प्रश्न आया होगा। दोस्तों, इस कहानी का शेष भाग जो है वो हम सुनेंगे एक ब्रेक के बाद। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो मुस्कुराते रहो। दोस्तों, बहुत ही दिलचस्प कहानी है। एक साधारण सा व्यक्ति जिसको रास्ते में एक रुपए का सिक्का मिला, पूरे नगर में एक भी दरिद्री आदमी नहीं मिला, और जब राजा आ रहा था तो राजा ने जैसे ही आशीर्वाद मांगा तो वो व्यक्ति, साधारण सा व्यक्ति, वो एक रुपए का सिक्का राजा के हाथ में थमा देता है। तो राजा तो बड़ा आश्चर्यचकित होता है और पूछता है कि आपने ये एक रुपए का सिक्का मेरे हाथ में क्यों थमाया? वो साधारण सा व्यक्ति उत्तर देते हुए कहता है कि हे राजन, कई दिनों से मैं कोई दरिद्री व्यक्ति ढूंढ रहा था जो हमारे नगर में मिल पाए और मैं उसको ये एक रुपए का सिक्का दे दूं। पूरे नगर में ऐसा कोई भी दरिद्री व्यक्ति नहीं मिला, भिखारी व्यक्ति नहीं मिला जिसे मैं एक रुपया दे सकूं। सिर्फ और सिर्फ आप ही मुझे ऐसे दरिद्र व्यक्ति मिले जिसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है, जिसकी अपेक्षा हमेशा अधिक से अधिक पाने की रहती है। इसलिए मैं ये एक रुपए का सिक्का आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि जो दरिद्र व्यक्ति की मैं तलाश में था साक्षात मेरे सामने खड़ा है। राजा ने जब ये वचन सुने, उसका मस्तिष्क शर्म से झुक गया और वो अपनी सेना को वापस जाने का आदेश देकर वहां से चला गया। तो दोस्तों, जैसे आज हमने सुविचार में देखा, उसी सिलसिले में यहां भी एक कहानी हमें शिक्षा भी देती है। इंसान को कुछ पाने की जिद होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आजकल व्यक्ति की इतनी तीव्र इच्छा होने के कारण मन में विचार आता है, तेरे जेब का पैसा मेरे जेब में कैसे आए, इतना सब कुछ होते हुए भी और मेरे पास क्यों ना आए। और इसी सिलसिले में वो अपनी जिंदगी पूरी निकाल देता है, लेकिन प्रभु चिंतन में बहुत कम समय व्यतीत करता है। ये तो अच्छी बात नहीं है ना? और फलस्वरूप क्या होता है कि आज कई सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो अंदर से, उनका मन खाली है, वो व्यथित है, दुखी है, चिंता में डूबे हुए हैं, क्योंकि उनकी इच्छा का कभी पारावार ही नहीं है, लालसा मन में सदा बनी हुई है। दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी हमें ये भी तो बताती है, क्यों ना हम अपने मन के राजा बन जाए। मेरा मन, हम कहते तो है मेरा, फिर मेरे मन पर राजा बनकर, मन मेरा राजा है तो उसका अधिकार चलना चाहिए ना। आज हम देखते हैं, हम छोटी छोटी बातों में मायूस होते हैं, कामना रखते हैं, किसी को हमने क्या मदद की, हम भी ये सोचते हैं कि मेरे पर जब कोई ऐसी नौबत आएगी तो इससे मुझे तो जरूर मदद मिलेगी। अच्छी बात है अगर उन्होंने मदद की, पर नहीं की तो भी हमें दुखी नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें अगर हम समझे तो मुझे लगता है कि निष्काम भाव का अर्थ भी हम समझ सकते हैं।
2: बिल्कुल भक्ति जी, कथाएं बहुत रहती है और हर कथा के पीछे का भाव कुछ अलग होता है। कभी कथाएं अतर के होती है, कई कथाएं जो होती है उसमें हमें मन में ये विचार आता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। चाहे शास्त्रों की कथा हो या ऐसी प्रेरणादायी कथा हो, चंदा मामा की कथा हो, ईसाप नीति की कथा हो, सब कथाओं में मुख्य उद्देश्य यह है कि हमें कुछ ना कुछ सीख मिले। अगर हम सीख के तरफ ध्यान दे तो कथा अच्छी रहती है, सीख के तरफ ध्यान नहीं दिया तो मन में प्रश्न भी आ सकते हैं कि नगर का राजा एक नगर में जो कुछ रास्ते में जा रहा है पथिक, उसे एक रुपए क्या मिलता है और वो हर किसी को ढूंढता है लेकिन राजा उसे मिलता है। ये ऐसे एक रीति से वो सब असंभव बातें लगती है, लेकिन फिर भी हम अच्छी रीति से उसको गौर करें तो क्या है, बहुत अच्छा संदेश मिलता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि लालच बहुत बुरी है। प्रयास करना, कुछ पाने की इच्छा रखना, ये बुरी बात नहीं है, लेकिन लालच जो है वो बुरी बात है। उसकी मिसाल अगर हम लौकिक रूप से देखें, जिंदगी में जो हर बार हम देखते रहते हैं कि देखिए आजकल शेयर मार्केट का बोलबाला है, हर कोई सोचता है कि शेयर मार्केट में अगर मैं इन्वेस्ट करूं, मैं मेरी पूंजी लगा दूं तो मेरा पैसा बहुत बढ़ेगा। और अच्छी बात है, शेयर मार्केट की जो जानकारी रखता है, जो कोई अपना बिजनेस उसके ऊपर करते हैं तो पैसा कमाते भी है, लेकिन कहाँ रुकना है अगर ये समझ में नहीं आया तो वही शेयर मार्केट जो है वो नुकसानकारक भी होता है। ऐसी बहुत सारी मिसाल, ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं कि बहुत अच्छे अमीर थे, करोड़ों रुपए की संपत्ति थी, लेकिन पता नहीं चला कहाँ रुकना है। सब की सब पूंजी उन्होंने शेयर मार्केट में डाल दी और फिर क्या हो गया, कंगाल हो गए और दरिद्रता आ गई। तो कहने की बात यह है कि कुछ पाने की इच्छा रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन लालच होना यह बुरी बात है, क्योंकि लालच हमारी विवेक शक्ति को, विवेक बुद्धि को नष्ट कर देती है, ऐसा मुझे लगता है।
1: बिल्कुल दोस्तों, चलिए इन्हीं बातों के साथ अब लेते एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से मिलेंगे। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स। क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद में उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट, देन नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेयर एवर एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, दशम स्कंद का जो 16वां अध्याय चल रहा है, काफी सारी रहस्य का उद्घाटन कहो, या परमात्मा के स्वरूप के बारे में कहो, या सत्व रज तम गुणों के बारे में कहो, काफी सारी आध्यात्मिकता इसमें भरी है, इसलिए इस पर जितनी भी चर्चा करे उतनी कम ही है। तो ज्ञानेश्वर जी, आगे भागवतकार कहते हैं कि नाग पत्नियां जो है वो भगवान को कहती है, हे भगवान, यह नागराज तमोगुणी योनियों में उत्पन्न हुआ है और अत्यंत क्रोधी है, फिर भी आपकी परम पवित्र चरण रज उसको प्राप्त हुई, जो दूसरों के लिए बड़ी ही दुर्लभ है। तो यहां भी भागवतकारों ने इस बात का सुंदर रीति से उल्लेख किया है, सत्व रज तम ये तीनों गुण है, और तमो गुण जो है वो क्रोधी अर्थात बहुत सारे विकारों से भरा हुआ है। आगे बहुत सुंदर बात बताते हैं कि भागवतकार कहते हैं कि वो पत्नियां उन भगवान को कहने लगी कि आप अनंत है, आप देश काल वस्तुओं की सीमा से बाहर है, सूक्ष्म में भी आप सूक्ष्म है, आप सर्वज्ञ है, और आप उन मतवादियों को उन्हीं रूपों में दर्शन देते हैं, समस्त शब्दों के अर्थ के रूप में तो आप है ही, शब्दों के रूप में भी है, तथा उन दोनों का स्वभाव संबंध जोड़ने वाली शक्ति भी आप है। तो देखिए ज्ञानेश्वर जी, बहुत सारी बातें यहाँ शास्त्रकार बताना चाहते हैं कि भगवान हमें अनेक रूप में दर्शन देता है और वो एक शक्ति के रूप में है।
3: बिल्कुल, देखिए भक्ति जी, चाहे कालिया की पत्नी हो या खुद कालिया हो या परीक्षित हो, हर एक पात्रों के द्वारा कुछ प्रश्न भागवतकारों ने उपस्थित किए हैं और कुछ ज्ञान देने का प्रयास उन्होंने किया है। देखिए कि परमात्मा को, भगवान को हम निराकार मानते हैं, लेकिन निराकार का मतलब क्या है ये हमें समझ में नहीं आता। भगवान को कभी कभी हम निर्गुण भी मानते हैं, लेकिन निर्गुण का अर्थ क्या है वो भी समझ में नहीं आता। और इसलिए शायद भागवतकारों ने इस नागपत्नियों के द्वारा जो हमें ज्ञान देने की बात की है, तो हर कोई कहता है कि जिस रूप में आप चाहते हो उस रूप में परमात्मा आपको दर्शन देता है। भागवत कथा में 24 अवतारों का वर्णन है, अभी 24 अवतारों का वर्णन है। चाहे मत्स्य के रूप में देखे तो परमात्मा मत्स्य के रूप में दिखेगा, कूर्म के रूप में देखे तो कूर्म के रूप में देखेगा। तो एक निराकार है, एक बिंदु है, एक पॉइंट है, लेकिन उसी पॉइंट को आप अलग अलग रीति से निकाल सकते हो, क्योंकि कोई भी रेखा जो है वो पॉइंट से ही निकलती है, बिंदु से ही निकलती है, और वो बिंदु से जो रेखा निकलती है और कोई भी आकृति का निर्माण होता है वो रेखाओं के द्वारा तो होता है। तो हमारे हाथ में है कि कलम कैसी चलानी है, हमारे हाथ में है कि जो बिंदु है वो कहाँ और कैसे खींचना है। इसके विधि से ही आकृति का निर्माण होता है, रूप का निर्माण होता है। इसलिए कहा गया है कि जिस रूप में इच्छा की उस रूप में दर्शन होता है। मिसाल के तौर पर हमें यहाँ कहा गया है कि 33 कोटि देवी देवता ये है, हर किसी का इष्ट देव है, इष्ट देवता है, वो अलग अलग है। तो अगर उसका विश्वास हनुमान जी के ऊपर है तो हनुमान जी के रूप में उसे दर्शन होगा। किसी का विश्वास राम जी के ऊपर है तो राम जी के रूप में दर्शन होगा। किसी का विश्वास शंकर जी के रूप में है तो शंकर जी के रूप में दर्शन होगा। इसका मतलब ये नहीं कि राम श्रेष्ठ है या हनुमान श्रेष्ठ है या शंकर जी श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ तो भगवान ही है। और इसी का गायन श्रीमद् भागवत में किया गया है। और इसलिए जब ब्रह्मा जी को भी भगवान ज्ञान देते समय कहते हैं कि मैं जो हूँ जैसा हूँ शायद ही मुझे कोई जानता। श्री कृष्ण जी, लोग मानते हैं कि भगवत गीता में भगवान भी कहते हैं अर्जुन को, सामने तो श्री कृष्ण जी खड़े हैं, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण जी के मुख में वो श्लोक बताया गया है। श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि मैं जो हूँ जैसा हूँ शायद ही कोई नहीं जानता। क्या फर्क पड़ता है, अर्जुन के सामने तो श्री कृष्ण जी थे, वो अर्जुन देख रहा था उनको, लेकिन फिर भी अगर श्री कृष्ण जी कहते हैं तो श्री कृष्ण जी के भी परे भगवान है। और ये भगवान क्या है ये हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।
2: बिल्कुल गणेश्वर जी, आपने बहुत सुंदर बात कही। और यहाँ वो आगे भी भागवतकार कहते हैं कि चक्रव्यूह के रूप में आप भक्तों के तथा यादवों के स्वामी हैं, आप अंतकरण और उसकी वृत्तियों के प्रकाशक भी हैं और उन्होंने द्वारा अपने आप को ढक भी रखते हैं। देखिए कितनी सुंदर बात है और कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी भी बात है। आगे वो कहती है कि आप उन गुणों और उनकी वृत्तियों के साक्षी हैं तथा स्वयं प्रकाश हैं। आप मननशील आत्माराम हैं, मौन ही आपका स्वभाव है और स्थूल सूक्ष्म समस्त गतियों को जानने वाले आप ही हैं और आप सबके साक्षी हैं। ज्ञानेश्वर जी, यहाँ साक्षी शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा। कई बार हम कहते हैं कि क्या भगवान साक्षी होकर सब देखता है। ये साक्षी शब्द जो है वो हम डे टू डे जिंदगी में भी कई बार इसको यूज करते हैं, लेकिन भगवान का साक्षी होकर देखना ये तो मैं समझती हूँ कि बहुत गहरा गहन अर्थ है। भगवान सब कुछ करता है लेकिन फिर भी साक्षी होता है।
3: बिल्कुल, देखिए भक्ति जी, साक्षी होना, साक्षी और दृष्टा, हम शब्दों का प्रयोग ऐसा करते हैं कि जो साक्षी है वो दृष्टा है, वो देख रहा है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो सावधान भी करेगा, लेकिन जो कर्म करने हैं वो हमें करने हैं। और इसकी बहुत अच्छी मिसाल जो है कि महाभारत में जो युद्ध चला, वहां श्री कृष्ण जी ने प्रण किया था कि मैं हाथ में शस्त्र नहीं लूंगा, मैं युद्ध में जरूर शरीक होऊंगा लेकिन हाथ में शस्त्र नहीं लूंगा, सिर्फ युक्तियां बताऊंगा। भगवान थे, अर्जुन के साथ थे, 18 औक्षणी सैन्य भी सामने खड़ा है तो भी एक चुटकी से वो सबको नष्ट कर सकते थे और पांडवों को जीत दिला सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। जब अर्जुन भयग्रस्त हो गया, शंकाग्रस्त हो गया, तब उन्होंने भगवद गीता सुनाई, शंकाओं का निरसन कर दिया, लेकिन फिर भी हाथ में शस्त्र नहीं उठाया। हमें करना है, भगवान हमारे साथ है, ये भावना हमें कुछ ना कुछ अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन अच्छा कर्म जो करना है वो हमें ही करना है। ये सीख उसमें से साक्षी और दृष्टा से मिलती है, ऐसा मुझे लगता है।
2: बिल्कुल, और इसीलिए ज्ञानेश्वर जी, स्थूल और सूक्ष्म समस्त गतियों को आप जानते हैं। भगवान अगर सब गतियों को जानता है, गतिविधियों को जानता है, उसको जानी जाननहार भी कहा जाता है, त्रिकालदर्शी भी कहा जाता है, लेकिन जानते हुए भी हम जो भक्त कहो, उसके बच्चे कहो, हमें अपना कर्म उसकी स्मृति से करना है। ये बात यहाँ बहुत सुंदर भागवतकारों ने बताई है।
3: और इसीलिए भक्ति जी, भगवान को गुरु और सदगुरु भी कहा जाता है। क्या करता है, गुरु को रास्ते सब मालूम है और वो रास्ते खाली बताता है, सही रास्ता बताता है, लेकिन चलना तो हमें ही है, ये भी इसमें से सीख मिलती है, ऐसा मुझे लगता है।
2: बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, जैसे हम एक उदाहरण दे सकते हैं, मिसाल दे सकते हैं कि एक पिता है जो जैसे कि जज है, और उसका बेटा जो है, उसको घर में तो उनका संबंध बेटा और पिता का रहता है, वो अपने बेटे को बहुत कुछ बताता है कि इस प्रकार से नहीं करो, ये करो, माना अच्छे कर्म करने के लिए बताता है। पर अगर उसका बेटा अच्छा कर्म नहीं करता है और फिर वो भी कोर्ट में खड़ा रहता है, तो जब जज है उसको तो जज बनकर ही उसको दंडित करना होगा, और उस समय उसको साक्षी होना पड़ता है। मुझे लगता है कि अगर यही हम भगवान के लिए भी कहे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें भगवान ये बताता तो है अच्छे मार्ग पर चलना है, लेकिन जब हमने उसको नहीं अपनाया तो फिर उसको साक्षी होकर जो भी हमारे कर्मों के फल है उसको तो देखना ही पड़ता है। दोस्तों, कितनी सुंदर बात है, आप भी उस पर चिंतन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जितना जितना चिंतन करते हैं उतने उतने बहुत सुंदर मोती हमें मिलते हैं, और वो ही हमारे डे टू डे जिंदगी में काम भी आते हैं। चलिए दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से मिलेंगे। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: गाड़ी में सफर करते समय कोई भी अनजान व्यक्ति से किसी भी प्रकार के खाने पीने की चीजें स्वीकार न करें, इससे आपके जान व माल दोनों का नुकसान हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो मुस्कुराते रहो। दोस्तों आइए आगे भागवतकार क्या कहते हैं, जरूर इस पर चिंतन करेंगे। तो शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब हर प्रकार से नाग पत्नियों ने भगवान की स्तुति की तो उन्होंने दया करके कालिया को छोड़ दिया और धीरे धीरे कालिया नाग की इंद्रियों में और प्राणों में कुछ कुछ चेतना आ गई। बड़ी कठिनाई से वो श्वास लेने लगा और थोड़ी देर के बाद बड़ी दीनता से हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़ा हो गया। दोस्तों कई बार हम कहते हैं भगवान तो कुछ भी कर सकता है, मरे हुए को भगवान जिंदा कर सकता है। अब यहाँ मौत और जिंदगी दोनों बातें हैं। उसकी मौत हो गई, वो भी भगवान ने ही उसको मारा है, अब उसने उसको जीवित कर दिया। फिर हमें लगता है कि भगवान तो कुछ भी कर सकता है। अगर भगवान ऐसे मरे हुए को जिंदा करे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी।
3: मरे हुए को जिंदा करना, इसको हम रूपकात्मक रीति से देख सकते हैं। मरना और जिंदा होना, यहां जैसे भगवतकारों ने वर्णन किया, कालिया की गांठें टूटी थी, वो मरणासन्न हो गया था, मरा हुआ नहीं था। वैसे हमारे यहाँ भी जो आशाएं रहती है, मन में इच्छाएं रहती है, संकल्प रहते हैं, कभी कभी हम डिप्रेशन में जाते हैं, निराशा में जाते हैं और फिर ये आशाएं बिल्कुल खत्म हो जाती है, निराशा ग्रस्त हो जाते हैं और इसलिए उसे हम कहते हैं मरना। लेकिन जब कोई अच्छा सहारा मिलता है, कुछ अच्छे विचार मिलते हैं, तो वो फिर जीवित होने की शुरुआत होती है और यही शायद भागवतकार दिखाना चाहते।
2: बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, इसमें बहुत सारा उपदेश कहो या बहुत सारी फिलॉसफी कहो भागवतकारों ने हमें बताई है। आगे तो इतना सुंदर वर्णन है, कालिया कहता है कि हम जन्म से ही दुष्ट है, तमोगुणी है, बहुत दिनों के बाद भी बदला लेने वाले ऐसे हम बड़े क्रोधी जीव है। और वो कहता है कि जीवों के लिए अपना स्वभाव छोड़ देना बहुत ही कठिन है। देखिए दोस्तों, कई बार हम कहते हैं कि स्वभाव जो मनुष्य का होता है ना, किसका भी, उसको कोई दवा नहीं होती। ज्ञानेश्वर जी ये भी बात यहाँ एक तरह से सिद्ध होती है। फिर हम क्या करते हैं कि भगवान को भी हम कहते हैं क्या करे भगवान, हम तो ऐसे ही है, आप ही अभी क्षमा कर देना। तो यहाँ मुझे लगता है कि जो हम भगवान के सामने कबूल करते हैं लेकिन अपनी जो कमी है उसको छोड़ने की हम इच्छा नहीं रखते, ये भी एक भाव प्रस्तुत होता है। और उसके साथ साथ फिर आगे बताया है, शुकदेव जी कहते हैं कि कालिया नाग इस प्रकार की बातें करने लगा। फिर श्री कृष्ण ने कहा, हे सर्प, तुझे अभी यहाँ रहना तो नहीं चाहिए, तो इसलिए तू अपने जाति भाई पुत्र स्त्रियों के साथ शीघ्र ही यहाँ से समुद्र में चला जा। और फिर आगे वो कहते हैं कि मुझे मालूम है कि गरुड़ के भय से तू रमणक द्वीप छोड़कर इस दह में आ बसा था, अब तू मेरे चरण चिन्हों से अंकित हो गया है, इसलिए जा, तुझे अब गरुड़ खाएंगे नहीं। इस प्रकार की बात करते और फिर वो सबके साथ प्रस्थान करता है और कहते हैं कि श्री कृष्ण की कृपा से यमुना जी का जल जो है वो विषहीन ही केवल नहीं बल्कि अमृत के समान सुमधुर हो गया। दोस्तों यहाँ कई सारे प्रश्न उपस्थित होते हैं। हम सब जानते हैं कि सर्प जो है उसका मना, गरुड़ जो है उसका भक्ष है सर्प। अब अगर भगवान सर्प के पूरे जाति को ही इस प्रकार से जीवदान दे, फिर तो गरुड़ का भक्ष ही चला गया। कई सारे प्रश्न उपस्थित होते हैं लेकिन मुझे लगता है कि इसमें बहुत गहनता है और उस गहनता को अगर हम समझे तो हमारे मन में भगवान के प्रति जो विश्वास है, अटल श्रद्धा है, उसको ठेस नहीं पहुंचेगी और हम भगवान के कार्य को अच्छी तरह से जान पाएंगे।
3: बिल्कुल भक्ति जी, आपने बिल्कुल सही प्रश्न उठाया कि देखिए गरुड़ का भक्ष सर्प है, यह तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहां जो बताया गया कि कालिया को अभय मिला, क्यों मिला? क्योंकि उसके पद चिन्ह जो है वो उसके मस्तक पे थे। अगर हम आध्यात्मिक रीति से इसको देखें तो सर्प का मिसाल जो देते हैं, हमारे यहाँ मन में जो विष होता है उसे हम सर्प कहते हैं। मन रूपी सर्प होता है जब उसमें विष होता है, लेकिन जब भगवान के पद चिन्ह इस सर्प के मस्तक पे रहते हैं, इसका मतलब अगर भगवान की प्रवेशता होती है, अच्छे विचारों की प्रवेशता होती है, तो ये भक्ष जो है वो अभक्ष बन जाता है। लेकिन सब सर्पों का मिसाल नहीं दिया, सिर्फ कालिया का दिया, क्योंकि कालिया के सर के ऊपर पदचिन्ह थे वो भगवान के थे। बाकी सर्प जो है उनके सर के ऊपर पदचिन्ह नहीं थे। इसका मतलब यह है कि हर एक को अवसर है या मौका है कि हम भगवान की प्राप्ति करें, भगवान के पदचिन्ह हमारे मस्तक के ऊपर धारण करें। इसका मतलब है भगवान को हमारे मस्तक में धारण करें, इसका मतलब हमारे शुद्ध विचार होंगे। अभी जब शुद्ध विचार होंगे तब गरुड़ रूपी कोई भी संकट हमारे ऊपर नहीं आ सकता। शायद ये दिखाने की कोशिश भागवतकारों ने इस कथा के द्वारा की है, या हम इस आधार से इसे देख सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है।
2: बिल्कुल, और ज्ञानेश्वर जी, और इसीलिए फिर कहा है कि यमुना जी केवल विषहीन ही नहीं लेकिन अमृत के समान मधुर हो गए। देखिए दोस्तों, आज तक भी कलयुग के अंत में भी अगर कोई पापों का क्षालन करने के लिए जाना चाहता है तो गंगा स्नान करना चाहता है, यमुना स्नान करना तो कोई चाहता नहीं। और दरअसल यमुना जी का पानी अभी तक भी दिखाते हैं चित्रों में कि काला है और गंगा जो है वो बहुत ही सफ़ेद स्वच्छ पानी है। तो इन सब बातों का भी कुछ न कुछ अर्थ जरूर होगा।
3: बिल्कुल, लौकिक रीति से भी भक्ति जी अगर हम देखेंगे तो आजकल चर्चाएं भी होती है कि गंगा शुद्धिकरण और यमुना का शुद्धिकरण। यमुना और गंगा हमारे लिए आस्था का विषय है, फिर भी अभी हम मानते हैं कि गंगा का पानी भी शुद्ध करने की जरूरत है और यमुना का पानी भी शुद्ध करने की जरूरत है। शुद्ध कैसे होगा? जो भी कीचड़ा है, जो भी मैल है, उसे अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, गंगा या यमुना शुद्ध हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ दिखाया गया है कि जैसे कालिया ने यमुना छोड़ दी तो क्या हो गया, यमुना का जल शुद्ध हो गया, अमृत समान हो गया। वैसे ही अगर हम शुद्धिकरण की बात करें, और हम ये आशा रखते हैं, हमारे श्रोताओं के साथ भी हमारी आशा साझा करते हैं कि हर कोई हम इच्छा रखे, आशा रखे कि जल्द से जल्द हमारे गंगा जी का और यमुना जी का शुद्धिकरण हो और हमें बहुत अच्छा पवित्र जल मिले।
2: बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, बहुत सही बात आपने बताई। और मन रूपी डोह जो है, जिसमें हमारे विकार कमी कमजोरियां है, तो मन में गंगा भी है ना, इसीलिए कहते हैं कि अगर मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो हम अपने मन का भी शुद्धिकरण करें और मन का शुद्धिकरण करने से हमारा मन भी गंगा जैसा पवित्र हो जाएगा। दोस्तों चलिए, इन्हीं सारी बातों की चर्चा करते हुए समय का तो पता ही नहीं चलता, लेकिन समय हमें बता रहा है कि अभी वाणी को विराम देना चाहिए। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं फिर से आपके साथ अमृत धारा में। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
1: रेडियो मधुबन, अभी बजे हैं 7:00। स्वयं को 1 मिनट दें, मन से कहें सुप्रभात।

0: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। समाधान कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहा जाता है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक पड़ती नहीं हथौड़ी की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। जितनी हथौड़ियां पड़ती हैं हमें समस्याओं के रूप में, परिस्थितियां जितनी ज्यादा हमारे सामने आती हैं, उतनी ही ज्यादा हम निखरते चले जाते हैं। जैसे किसी सोने को आग में डाला जाता है तो वो तपता चला जाता है, निखरता चला जाता है, उसकी चमक दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। इसी प्रकार यदि जीवन में कोई समस्या या परेशानी आती है तो हमारा व्यक्तित्व और निखर कर सामने आता है और हम एक ऐसे शख्स के रूप में समाज के सामने आते हैं जिसे लोग दिनों दिन याद करते हैं, अपनी प्रेरणा के रूप में, अपने आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं। समाधान कार्यक्रम इसीलिए आपकी समस्याओं में आपके साथ रहता है ताकि आप अपनी हिम्मत ना हारें, हौसला ना हारें और बढ़ते रहें अपने लक्ष्य की ओर। और लक्ष्य की ओर हमें हमेशा ले चलते हैं आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू
0: राता जी। एक सुंदर चीज से आज शुरुआत करना चाहूंगा। हमारे पास कानपुर से रेखा रॉय जी ने कॉल किया था और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि ओम शांति, मैं अपने दिन की शुरुआत आपका कार्यक्रम देख कर ही करती हूँ। मुझे यह कार्यक्रम बहुत पसंद है। जिस दिन ये नहीं देख पाती हूँ उस दिन लगता है कि जैसे मैंने कुछ मिस किया है। तो एक बहुत ही प्यार भरा फोन कॉल उनकी तरफ से था। और साथ ही उन्होंने पूछा कि मेरे हस्बैंड मुझे पॉलिटिक्स में देखना चाहते हैं और कहते हैं कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में तुम बहुत अच्छा कार्य कर सकती हो, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड भी नहीं है और मैं बिजनेस करती हूँ। कृपया बताएं कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए।
1: देखिए, अगर समाज सेवा का लक्ष्य है धन कमाने का नहीं
0: जी,
1: क्योंकि आजकल राजनीति में लोग धन कमाने बहुत जा रहे हैं, कहते ये हैं कि हम सेवा करेंगे, जन कल्याण करेंगे, परंतु वो लक्ष्य पीछे छूट जाते हैं। अगर हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे नेतागण सचमुच जन कल्याण को अपना लक्ष्य बना लें, धन को नहीं, तो धन तो उन्हें बहुत मिलेगा ही, लेकिन वो सच्चे अर्थों में नेता कहलाएंगे।

0: अगर इनकी इच्छा, ये इनके पति की इच्छा है कि राजनीति में जाएं, लेकिन और कोई लक्ष्य नहीं है, लोगों को सुख देना, उनकी समस्याओं को हल करने में उन्हें मदद करनी है, कुछ दिशा निर्देश करनी है समाज को, तो इन्हें अवश्य चल जानी चाहिए। लेकिन बस अपने अंदर ईश्वरीय शक्तियां और बढ़ाएं ताकि जिस फील्ड में ये जाएं उस फील्ड में इनको सफलता मिले।
1: बिल्कुल, और ये जो कह रही हैं कि कॉन्फिडेंस इनका नहीं है, तो शायद ईश्वरीय शक्तियों के माध्यम से और इस सुंदर लक्ष्य के माध्यम से भी आत्मविश्वास हासिल
0: कर सकेंगे। बिल्कुल, आत्मविश्वास हासिल करेंगे। लेकिन जैसा आजकल सभी पॉलिटिशियंस ही कहते हैं, हमारे पास बहुत लोग आते हैं कि पॉलिटिक्स बहुत डर्टी पॉलिटिक्स हो गई है, इनको इसलिए पॉलिटिक्स में जाना चाहिए कि ये उसे स्वच्छ पॉलिटिक्स बनाए, क्लीन कर दें उसे। तो ऐसे अगर लोग राजनीति में चले जाते हैं जो राजनीति को क्लीन करें, जो वहाँ कुछ नैतिकता का आदर्श प्रस्तुत करें, जो धन का जो लोभ और स्वार्थ मनुष्य के लिए हो गया है इससे जरा ऊपर उठकर संसार को दिखाएं, तो ये सचमुच राजनीति को भी एक दिशा निर्देश देने वाली बात होगी।
1: बिल्कुल प्रथा जी, ये जो एक मेल हमारे पास आया है, ये आकांक्षा जी लिख रही है, कहती है, ओम शांति, वी वॉच योर प्रोग्राम रेगुलरली एंड हैव गॉट टू लर्न मेनी थिंग्स, प्लीज लुक इन टू अवर प्रॉब्लम एंड टेल अस व्हाट कैन बी डन। My daughter had a minor operation for liver cyst 6 years ago. Due to negligence of doctors and also due to lack of oxygen during operation, she didn't get conscious after operation and went into coma. Now she is recovering to the extent of sense of touch, even moves her eyeballs, but she is still unable to talk or do any activity. Please suggest some Raj Yoga method.
0: देखिए बात तो बड़ी ही, क्या कहें, दुर्भाग्य की है। 6 साल हो गए, न मनुष्य जिंदा है न मृत है, और उसकी सेवा भी करनी पड़ रही। जब कोई उसे देखता होगा, उनके परिवार जन, तो कैसी फीलिंग होती है मनुष्य को, हम समझ सकते हैं।
1: और भ्राता जी फुल कोमा में होते हैं तो एक अलग बात होती है, ये सेमी कोमा में है, तो उम्मीद भी है।
0: उम्मीद भी है, नहीं नहीं हम इनकी उम्मीदों के साथ हैं, और हमारा विश्वास है, जैसा कि हम स्पिरिचुअल पावर के रिजल्ट देख रहे हैं, तो हर समस्या को हल करने में ये शक्ति सक्षम है। तो अगर ये सेमी कोमा में है तो ये इससे बाहर आ सकती हैं, हमें पूर्ण विश्वास है। जो भी इनमें से राजयोग मेडिटेशन करते हैं, ईश्वरीय ज्ञान लेते हैं, तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कुछ बहुत सुंदर बातें, और बहुत ही सिंसियरली बिल्कुल विश्वास के साथ ये ऐसा अभ्यास करेंगी तो बहुत गुड रिजल्ट मिलेगा और बहुत जल्दी मिलेंगे। पहली चीज, इनको भोजन पानी जो कुछ भी दिया जाता है, जैसे भी दिया जाता है, उसको चार्ज कर दिया जाए, और चार्ज इस संकल्प से किया जाए कि पानी को या भोजन को दृष्टि देकर 7 बार संकल्प करें, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ। इसकी चर्चा हम करते आ रहे हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं, ढीज ऑल माइटी, देयरफॉर वी आर मास्टर ऑल माइटी। इससे पानी में शक्तियां भर जाएंगी, और वो जो उसके देह में जाएगा तो वो बहुत सारी जो सो गई हैं चीजें, कॉन्शियस में नहीं है, उनको एक्टिव करेगा। एक चीज ये करनी है, रेगुलर करनी, बहुत अच्छी तरह से करनी है। हो सके तो इससे पहले आधा घंटा मेडिटेशन कर लें, मेडिटेशन के बाद पानी को चार्ज करें। दूसरी चीज, क्योंकि सारा सिस्टम ब्रेन से कंट्रोल्ड है, और डॉक्टर की कुछ भी गलती हुई हो वो तो देखो एक खेल है, कुछ ना कुछ चलता है संसार में, परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता
1: जी।
0: तो जो भी राजयोग का अभ्यास करते हैं उनको इसके ब्रेन को एनर्जी देकर उसको एक्टिव बनाना है, ताकि ब्रेन का कोई भी हिस्सा जो इनएक्टिव हो रहा है वो पुनः एक्टिव हो जाए। और उसका तरीका होगा कि दोनों हाथ ऐसे मलते हुए 3 बार संकल्प करें, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ। तो इनके दोनों हाथों से बहुत अच्छी एनर्जी वाइब्रेट आउट होने लगेगी, बहुत अच्छी, देखो मेरे हाथ आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं
1: जी।
0: तो 3 बार ये अभ्यास करके मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, और ये ब्रेन के दोनों तरफ रख दें, संकल्प करें, पावरफुल एनर्जी इसके ब्रेन को जा रही है, और ये संकल्प कर दे ब्रेन एक्टिव हो जाए
1: जी,
0: ब्रेन परफेक्टली काम करने लगे। ऐसा 1 मिनट हाथ यहाँ रखेंगे, ऐसा 5 बार करेंगे सवेरे, 5 बार शाम को, यानी 10 मिनट इनके ब्रेन को एनर्जी देनी है विद फुल कॉन्फिडेंस कि इनका ब्रेन फुल्ली एक्टिव हो रहा है।
1: बिल्कुल।
0: तीसरी चीज इन्हें करनी है, क्योंकि देखिए जो कुछ भी किसी मनुष्य के साथ होता है, भले ही हम गलती या नेग्लिजेंसी डॉक्टर्स की देखें या कुछ और कारण हमें दिखाई देता हो, पर फाइनल कारण हर एक के कर्मों का है। जो कर्म फिलोसोफी में विश्वास करते हैं, विश्वास न भी करें तो ये तो परम सत्य है कि जैसा जिसने किया उसको फल मिलता है, या जो कुछ हमारे साथ हो रहा है उसके जिम्मेदार हमारे कहीं ना कहीं पास्ट के कर्म हैं। तो उन पास्ट के विकर्मों को नष्ट करने के लिए जो भी इनमें से राजयोग करते हैं उनको एक घंटा पावरफुल राजयोग मेडिटेशन करना होगा। रेगुलर ये करेंगे, बिल्कुल पावरफुल्ली करेंगे। पावरफुल्ली का अर्थ है कि और संकल्प न चले, मन अच्छी तरह एकाग्र हो जाए, ये ऐसे संकल्प के साथ बैठें कि हमें इस आत्मा को पूरी मदद करनी है। और चौथी बात भी एक ये कर सकते हैं, उसके पास खड़े होएं, उसको आत्मा देखें और खुद को अभ्यास करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सात बार
1: जी,
0: और वहीं से इनको वाइब्रेशंस दे, जैसे मुझ आत्मा से उस आत्मा को शक्तियों की किरणें जा रही हैं, और फिर संकल्प दे, हे आत्मा जागृत हो जाओ, उठो, इस सेमिकोमा से बाहर आ जाओ, तुम तो चेतन आत्मा हो, तुम में बहुत शक्तियां हैं, अब निकलो इससे। ये रोज वाइब्रेशंस भी देंगे और थॉट्स भी देंगे। तो ये चारों प्रयोग करते रहने से निश्चित रूप से 21 दिन में हमें पूर्ण विश्वास है, अगर ये बिल्कुल सिंसियरली, ऑनेस्टली और एकाग्रता के साथ करेंगे तो 21 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे और ये आत्मा बाहर आ जाएगी।
1: चलिए, हमारी हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं इनके लिए व्रता जी। 6 वर्ष से पूरा परिवार इंतजार कर रहा है, तो सभी का बहुत ज्यादा प्यार भी है, तो निश्चित रूप से इन अभ्यासों से जल्दी वो इससे बाहर आ जाएं, हम भी अपनी तरफ से दुआ करेंगे। व्रता जी आगे भी इन्होंने ऐड किया था कि उनका जो बेटा है, मतलब जो कोमा में है, वो इस चीज़ पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है कि उनकी जो माँ है अब फिर से वापस अपनी लाइफ में आ पाएंगी, अर्थात वो वैसी ही रहेंगी जैसी हैं। तो उसकी इस नेगेटिव थॉट को हम कैसे पॉजिटिव करें, ये भी इनका प्रश्न।
0: देखिए वो तो नेचुरल है, वो 6 साल हो गए बेचारा इंतजार कर रहा है, देख रहा है, वो बड़ा हो गया है अब
1: जी।
0: तो उसके मन में कोई उम्मीद न रहे, ये बड़ा नेचुरल सा है।
1: लेकिन ये नेगेटिविटी भी बेहतर जी कहीं ना कहीं
0: हाँ, परंतु जो ये प्रभाव है हमारे राज्यों के
1: जी,
0: इसकी शक्ति के आगे ये नेगेटिविटी ज्यादा काम नहीं करेगी। लेकिन बच्चे हैं, उनको भी अगर सिखा दिया जाए कि तुम भी अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, कि तुम्हारी मम्मी अब बाहर आने वाली, फिर से तुम्हारे सामने वैसी हो जाएगी जैसी पहले थी, तो इनके पॉजिटिव संकल्प भी काम करेंगे। और ये मेडिटेशन न भी करते हो, कम से कम प्रेयर तो अवश्य किया करें।
1: बिल्कुल प्रताप जी, हमारे पास जो अगला मेल आया है, ये मेल है नेहा जी का। ये कहती है कि माई नेम इज नेहा, आई एम फ्रॉम नागपुर। मैंने लास्ट 6 मंथ पहले से पीस ऑफ माइंड आपका चैनल देखना स्टार्ट किया है। आई एम क्वाइट हैप्पी विद इट। मैं पहले काफ़ी सेंसिटिव नेचर की हुआ करती थी, जस्ट कुछ टाइम पहले ही मैं अपने इस नेचर को कंट्रोल कर पाई हूँ। मुझे छोटी छोटी बातों का टेंशन हो जाया करता था, नाउ आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल इट, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं बार बार अपने इस संकल्प से भटक जाया करती हूँ। लोग मुझे गुस्सा दिलाने में सफल हो ही जाते हैं। पास्ट में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो चुकी है इसके कारण, पढ़ाई में भी मन नहीं लगता, लेकिन अभी मैं इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में हूँ, तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन बना रहे और मैं इन चीज़ों से बाहर निकल पाऊँ, उसके लिए मुझे कुछ उपाय बताएं। नेहा जी,
0: हाँ देखिए, नेहा को मैं कहूँगा कि सेंसिटिव नेचर मनुष्य के भविष्य के लिए अच्छी नहीं होती, और वर्तमान में वो उसको इतनी नाजुक बना देती है कि हर बात फील होगी, हर जगह इमोशनल होके कहीं गुस्सा होगा, कहीं मूड ऑफ होगा, यानी हमारी जो मनोस्थिति है वह दूसरों के हाथ में चली जाती है। जैसा उनसे आए वैसे हम बन जाएं, वो कुछ गलत बोल दें तो हम बस खुशी हमारी खत्म हो गई, हमारा मूड बिगड़ गया, किसने महिमा कर दी तो हम फूले नहीं समा रहे हैं। तो ये जो सेंसिटिविटी है ये मनुष्य के लिए सचमुच खतरनाक है। इन्होंने अब ईश्वरीय ज्ञान लिया है, पहले तो इनको ईश्वरीय ज्ञान के बल से अपने मन को पावरफुल करना, ज्ञान पहले, मेडिटेशन अलग चीज। ये ज्ञान के जो महावाक्य हैं रोज सुने, उन पे अच्छा चिंतन करें। तो जब मनुष्य ज्ञान का चिंतन करता है, ये चिंतन भी उसे बल प्रदान करता है, और ज्ञान का चिंतन उसके विचारों में शक्ति भरता है, मुख्य बात ये होती है
1: जी।
0: तो इसको ये रेगुलर बढ़ाएं, रोज कम से कम आधा घंटा अपने को एकांत में दें और अपने से बात करें, कि तुम भगवान की संतान, तुम दूसरों के अधीन क्यों हो गई? दूसरे चाहे तुम्हें रुला दें, दूसरे चाहे तुम्हें हंसा दें, तुमने अपने जीवन की बागडोर, अपनी खुशी की बागडोर, अपनी शांति की बागडोर दूसरों के हाथों में क्यों दे दी है? निकलो इससे बाहर। तो अपने से इस तरह बात करेंगी, इसको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं
1: जी।
0: अपने से इस तरह बात करेंगी तो बल आता जाएगा आत्मा में। दूसरी बात, ये हर बात को लाइटली लेना सीखें। जो बहुत सेंसिटिव होता है वो हर बात को बड़ा सीरियसली लेता है, इसलिए हर बात का इफेक्ट उसके ऊपर आ जाता है। हल्के रूप से ले, किसने कुछ कहा, मुस्कुरा के आगे बढ़ जाओ, अरे कोई बात नहीं, ये तो लोग कहते ही रहते हैं, कहा तो क्या हुआ, हमारे कल्याण के लिए कहा होगा, हल्के रूप से लें उसको, तो इससे इनकी ये सेंसिटिव नेचर समाप्त होती जाएगी। लेकिन रोज इनको कम से कम इस नेचर के लिए आधा घंटा राजयोग का अभ्यास करना चाहिए, और साथ में अपने को ये संकल्प देना होगा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सेंसिटिविटी से मुक्त हूँ। सवेरे उठकर भी ये रोज ज्यादा नहीं तो 7 बार ये अभ्यास करने लगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, सेंसिटिविटी से मुक्त हूँ। तो ये अभ्यास करने से ये स्वमान है, शक्तिशाली बनेंगे, और आधा घंटा रोज मेडिटेशन अवश्य करेंगे तो बहुत जल्दी, समय नहीं लगेगा, मुश्किल से 3 मास लगेंगे, और इन्हें लगेगा कि मुझसे ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है, कोई बात इन्हें अफेक्ट नहीं करेगी, इनका मूड एक रस रहेगा, और जो ये पढ़ाई पढ़ रही हैं उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, फिर इनकी एकाग्रता बनी रहेगी, ये दूसरों की बातों को, दूसरों के वाइब्रेशंस को, उनके व्यवहार को बस जैसे निष्प्रभावी बना देंगे अपने को उनसे, उनका इफेक्ट इन पर नहीं आएगा, बल्कि
1: पावरफुल हो जाएंगे,
0: बल्कि ये होगा कि फिर इनके वाइब्रेशंस दूसरों को प्रभावित करने लगे।
1: बिल्कुल, वास्तव में होना भी यही चाहिए भ्राता जी, यदि हम शक्तिशाली हैं तो दूसरों के ऊपर हमारा प्रभाव पड़ेगा, और हम यदि कमजोर हैं तो निश्चित रूप से दूसरों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है।
0: कन्याओं में ये कमजोरी देखी जाती है तो बहुत ही सेंसिटिव रहती हैं, बस किसी ने कुछ कहा और वो जैसे छुई मुई का पेड़ होता है ना, शरम बूटी भी कहते हैं उसको, इन्हें हाथ लगा और मुरझा गई, तो ये स्थिति वास्तव में पूरे जीवन के लिए अच्छी नहीं रहती है। इससे बाहर निकलेंगे इन 3 चीजों के अभ्यास।
1: बिल्कुल प्रता जी, एक फोन कॉल की ओर मैं आपको लिए चलता हूँ। 2 फोन कॉल हमारे पास एक जैसे ही थे, एक बैंगलोर से था और एक उड़ीसा से था, और इन दोनों का एक ही प्रश्न था कि जो मेरे पति की जो दृष्टिवृत्ति है दूसरी महिलाओं के लिए ठीक नहीं है, उन्हें बोलो तो वो कहते हैं कि तुम खामखा शक करती हो, गुस्सा भी करते हैं, उन्हें हम कैसे ठीक करें?
0: ये समस्या आजकल बढ़ती जा रही है संसार में, मनुष्य के अंदर वासनाएं बढ़ रही हैं, तो किसी के भी देह की ब्यूटी उसको अट्रैक्ट करती है, उसका ध्यान उनकी ओर जाता है, अट्रैक्शन होता है, और यही कारण है कि संसार में रेप के केस भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो मनुष्य की दृष्टि आत्मिक न होकर दैहिक हो गई है, वो दूसरों के गुण, उनकी बुद्धि, उनकी शक्तियों को नहीं देखता, केवल उनके देह को देखता है, और ये वासनाएँ उसे कहीं ना कहीं धोखा अवश्य देती हैं, उसे कमजोर करती हैं, फिर उसकी ग्लानी कराती हैं, फिर जब उसकी ग्लानी होगी चारों ओर, फिर उसकी मनोस्थिति बहुत बिगड़ जाएगी। और एक नारी के लिए जिसका पति ऐसा हो, जिसको दिखता हो कि इसकी ये मनोवृत्ति है, नारी में थोड़ी शक की नेचर भी होती है, होगा कम वो सोचेगी ज्यादा, लेकिन वो बहुत दुखी रहने लगती है, और उसका दुख आजकल लोगों को सोचने की बहुत आदत है, मेरे पास लोग कॉन्टेक्ट करते हैं, उन्हें पहला संकल्प क्या होता है, मेरा पति मुझे छोड़ के इनको ना अपना ले। ये समस्या, ये संकल्प उनके लिए बहुत बड़ी चीज होती है, और इसमें उनके अनुमान लगते जाते हैं और वो परेशान होती जाती है। नो डाउट ये एक बहुत बड़ी समस्या आजकल है कि मनुष्य की वृत्तियां बहुत दूषित हो गई हैं, बहुत सेक्सुअल हो गया है, और वो अपने सेक्स के पीछे ही सब कुछ नष्ट कर देना चाहता है, न उसे परिवार की चिंता रहती है, न बच्चों की चिंता होती, न वो माँ बाप का ध्यान करता है। अब इनको जो कुछ करना है उसके लिए देखिए कुछ विधियां हो सकती हैं, इन्होंने राजयोग तो सीखा ही होगा तभी इनको इस चीज का हुआ कि इसका समाधान क्या है। एक तो ये उन्हें पवित्र भोजन खिलाएं, और पवित्र भोजन बनाने का तरीका वही है कि भोजन पर दृष्टि डालते हुए याद करें मैं परम पवित्र आत्मा हूं, जब भोजन बन भी जाए तो उस सारे को वाइब्रेशंस दे दें, कम से कम 7 बार संकल्प कर दें मैं परम पवित्र आत्मा, और फील करें मेरे नैनों से प्योर एनर्जी भोजन में समा रही है, और फिर संकल्प करें ये आत्मा जब इस पवित्र भोजन को खाए तो इसकी दृष्टिवृत्ति पवित्र हो जाए। इसका बहुत बड़ा प्रभाव होगा। ये सचमुच एक ऐसा तरीका है जो दूसरों की मनोवृत्तियों को आराम से बदला जा सकता है, लेकिन विश्वास के साथ इसको करते रहें। कभी कभी मनुष्य सोचता है 2 दिन कर लिया कुछ हो तो रहा नहीं, ये नहीं, करते रहें लगातार। 21 दिन करें, फिर 21 3 मास तक तो करना ही है। एक प्रयोग। दूसरा प्रयोग सबकॉन्शियस लेवल पर इसको ठीक करना है, और उसका तरीका है कि जब वो व्यक्ति सोया हो, ये जल्दी उठती होंगी तो 5 बजे का टाइम निश्चित करें और एक 5 मिनट उनको प्योर वाइब्रेशंस दें। और प्योर वाइब्रेशंस देने का तरीका है, मैं आत्मा परम पवित्र हूँ, या मैं आत्मा पवित्रता की देवी हूँ, और मुझसे पवित्र किरणें निकलकर उस आत्मा को जाने, जैसे एक फोकस जा रहा है यहाँ से उस आत्मा को। 5 मिनट ही अभ्यास करेंगे, फिर माइंड टू माइंड उससे बात करें, तुम तो एक पवित्र आत्मा हो, तुम तो बहुत अच्छी आत्मा हो, तुम तो मुझसे बहुत फेथफुल हो, लॉयल हो, तुम बहुत रॉयल भी हो, तुम औरों की ओर क्यों देखते हो, हमारा और तुम्हारा आपस में बहुत प्यार है, तुम किसी की ओर ना देखो, तुम तो पवित्र आत्मा हो, आत्मा हो जाओ। इस तरह के संकल्प रोज माइंड टू माइंड उसको देंगे, तो जो संकल्प ये देंगे जब वो व्यक्ति उठेगा, तो क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड ने इनको स्वीकार कर लिया है, तो उसको यही संकल्प आने लगेंगे, और जिस क्षण उसको रियलाइज होने लगेगा कि ही इज रॉन्ग, बस उस मोमेंट की देरी है कि नहीं मुझे नहीं करना चाहिए। मान लो मेरी बहनों की ओर कोई कुदृष्टि से देखे, मेरी पत्नी की ओर कोई कुदृष्टि से देखे, तो मुझे कैसा लगेगा। जिस दिन बस ये अवेयरनेस हो जाएगी, चेंज हो जाएगा
1: बिल्कुल।
0: तीसरी भी एक बात इनको करनी है, 15-20 मिनट रोज उस आत्मा के कल्याण के लिए राजयोग मेडिटेशन करें फिक्स करके। तो राजयोग मेडिटेशन में इतनी अच्छी पावर है कि दूसरों में चेंजेस लाता है, और इनका मन भी शांत होगा, और वो भी किसी अधोपतन से बच सकेंगे,
1: बच जाएंगे। पता जी, एक चीज विशेष करके इस केस में ये भी हो सकता है क्या कि कई बार जब इस प्रकार की हमारे मन में बात आ जाती है कि सामने वाला ऐसा कर रहा है जो मेरा इतना नजदीकी है, मेरा पति है, हमारे व्यवहार में कहीं ना कहीं ऐसी कटुता आ जाती है, व्यवहार में ऐसा परिवर्तन आ जाता है, तब कहीं जाकर के जो गुस्से वाली बात है पतियों की तरफ से,
0: जरूर नहीं उनकी ये गलती हो रही हो बार बार। मान लो किसी की ओर भी देखता है तो इसे शक होगा कि इसकी कुदृष्टि है, तो सब जगह तो जरूर नहीं उसका दोष हो, लेकिन एक नारी को क्योंकि वहम ज्यादा होता है, और वो अगर उसको बार बार बोलती है तो कोई मनुष्य को ये बात बहुत फील होती है, क्योंकि ये चरित्र की बात है, और उसका गुस्सा करना फिर बड़ा लाजमी हो जाता है, नेचुरल सा हो जाता है। तो इनका भी ये कर्तव्य है कि ये इस तरह की बातें बार बार ना करें, अगर करनी भी है तो स्वमान जगाए उनका, तुम बहुत अच्छे हो, तुम महान हो, तुम्हारे विचार बहुत महान है, हमारा दोनों का आपस में बहुत प्यार है, तुम्हें कहीं नहीं देखना है अब, कभी मौका देख के जब उनका अच्छा मूड हो ऐसे कह दिया करें, तो उनका गुस्सा भी नहीं होगा, नहीं तो इनका क्या होगा, आपस में क्लेश बढ़ता जाएगा और ये दूरी पैदा करेगा, और ये दूरी फिर भविष्य के लिए अच्छी नहीं।
1: बिल्कुल, कई बार बातें यदि ऐसी नहीं होती है तो सामने वाले व्यक्ति का ईगो हर्ट होता है कि बात ऐसी है नहीं, और ये खामखा इस प्रकार की बात।
0: कभी कभी ऐसा भी होता है कि बात होती नहीं, लेकिन दूसरे का केवल शक होता है, और फिर सबसे बुरी चीज ये होती है कि इसका प्रभाव बच्चों पर बहुत बुरा आता है। बच्चे सब कुछ रीड करते हैं आजकल, बच्चे बहुत सेंसिटिव हैं और कई बहुत बुद्धिमान हैं, मम्मी पापा क्या कह रहे हैं, क्या हो रहा है, उनकी सब समझ में आता है, फिर उनमें उदासी आएगी, घर में खुशी का माहौल नहीं रहेगा, तो टोटल भविष्य के लिए बच्चों के भी समझो एक बहुत ही बुरी चीज हो जाती है, इसलिए मातृशक्ति को इससे बच के रहना चाहिए।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रता जी आज की तमाम चर्चाओं के लिए, हमारे दर्शकों को आपने बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए हैं, समाधान दिए हैं, निश्चित रूप से उनकी जो भी समस्याएं उन्होंने हमारे सामने रखी है दूर होंगे और वो खुशहाल होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, जीवन वास्तव में संघर्षों से भरा हुआ तो है ही। कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा कलयुग में जिसके पास कोई समस्या ना हो। समस्याओं से जूझ ही रहा है हर एक व्यक्ति, लेकिन एक बात, एक आशा हर एक अपने मन में अवश्य रखे कि यदि समस्या है तो उसका समाधान भी अवश्य है। और समाधान कार्यक्रम के माध्यम से लगातार हम यही प्रयास कर रहे हैं कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की, चाहे वो व्यक्तिगत है, पारिवारिक है, सामाजिक है, आर्थिक है, या फिर किसी भी प्रकार की बीमारी के रूप में समस्या आ गई है, उसे हम समाधान के माध्यम से आप तक पहुंचाएं। हमारा लक्ष्य यही है कि आपका जीवन खुशहाल हो, आपके जीवन में मुस्कान लौट आए, आप हमेशा खुश रहें, क्योंकि परमात्मा ने आपको प्रसन्नता के लिए पैदा किया है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप आज के दिन प्रसन्न रहें, खुश रहें और अपने चारों ओर प्रसन्नता बांटें। दीजिए इजाजत अपने।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वयं से जुड़े प्रश्न पूछें। मैं कौन हूं? मुझे क्या चाहिए? मैंने जीवन में अब तक क्या पाया है? ये आत्मा चिंतन की पहली सीढ़ी है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खुद को समय दें, क्योंकि आत्मा की गहराई तक पहुंचने में धैर्य और ध्यान दोनों की आवश्यकता होती है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, मैं हूं सुरेश वाडकर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पे। आप सब मुस्कुराते रहें, आनंद में रहें और गुनगुनाते रहें।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफस्टाइल कहते हैं। लाइफस्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग। लाइफस्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग। दैट्स माय लाइफस्टाइल।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

आज गम है तो कल है खुशी, जिंदगी की

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, अ न्यू वे ऑफ रिस्पोंडिंग, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपने किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। This is the powerful being.
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है, गुड मॉर्निंग आप इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। और आज संडे है तो संडे हॉलीडे का दिन है, हैप्पी डे कहा जाता है और सभी लोगों को संडे नाम सुन के बहुत खुशी होती है क्योंकि संडे के दिन हम जो है अपने मन की बातें कर सकते हैं और अपने मन के विचारों के साथ जीवन जी सकते हैं। तो आइए, 12 जुलाई 2026 आज का तारीख है, राष्ट्रीय शिक्षक 1948, 21 गते 28 आषाढ़ रविवार का दिन है और आज विशेष रोहिणी नक्षत्र है। इसके साथ ही इतवार है और दर्पण हका आज है। इसके साथ प्रदोष व्रत भी आज है और मासिक शिवरात्रि का समय भी आज है। तो विशेष रूप से आज के दिन को बेहद ही खूबसूरत बनाया जा सकता है और अध्यात्म के साथ इस दिन को मनाया जा सकता है क्योंकि आज प्रदोष व्रत भी है और मासिक शिवरात्रि भी है। तो निश्चित तौर पर हर महीने में आने वाला एक शिवरात्रि जो है ये है। तो विशेष रूप से शिवरात्रि का ये खूबसूरत जो समय आता है हर महीने में, शिव और शक्ति का संगम होता है जहाँ पर आप थोड़ा समय अगर देते हैं और ईश्वर को याद करते हैं या उपवास करते हैं तो आपको बहुत सारा जो है सुकून महसूस होगा और आपको सेहत और शांति दोनों प्राप्त हो जाती हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है, गुड मॉर्निंग आप कार्यक्रम सुन रहे हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपको सुनाने वाला हूं और ये गीत सुनकर जो है बहुत ही अच्छा लगेगा, जहां पर आपको एक गहरी आत्मिक शांति भी मिलेगी और साथ ही साथ एक सुंदर प्रार्थना आपके द्वारा हो जाएगी। तो इस वंदना के साथ हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, प्रभात वंदना आपके नाम।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। बड़ा ही प्यारा सा मधुबन से आप सुन रहे थे। सुबह सुबह आपका मन जो है प्रफुल्लित हो गया होगा और आनंद से भरपूर हो गया होगा, तो आइए इस भाव को और बना के रखते हैं। चलिए, मैं अब बात करने वाला हूँ आज के दिन विशेष, जिनका जन्मदिन है, बिमल रॉय। एक ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी अच्छे जो है फिल्में लोगों को दी है। तो बात करें बिमल रॉय की, तो बिमल रॉय एक ऐसे व्यक्ति रहे जो हिंदी सिनेमा के जगत में एक विशेष नाम रहा इनका। हेलो जी, नमस्कार।
1: हेलो जी सर, नमस्ते। गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आबू में स्वागत है आपका। जी
1: जी, जी आपका भी स्टूडियो में स्वागत है सर। गुड मॉर्निंग आबू में आपका भी स्वागत है। आप
0: जी,
1: बहुत अच्छा लगा अच्छे से गाने जो सुनाते हैं सर। सीमा के कई सारे गाने माता जी के हमने सुन लिया सुबह में।
0: जी जी जी,
1: बहुत अच्छा लगा सर। आज शनिवार और संडे है आज, तो आज बताओ तो हमारी गुड़िया का भी जन्मदिन है। छोटी सी है, 3 साल पूरे हो गए। 4 साल में उसके दिन।
0: अरे वाह,
1: आज गुड़िया का जन्मदिन है। हमारी जो बेटे की बेटी है, आद्या नाम है उसका। तो आज उसका जन्मदिन है, आद्या का, हमारा छठे की गुड़िया है।
0: जी जी जी,
1: तो हम भी जन्मदिन की शुभकामना देते हैं हमारी बेटी को।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: शाम को थोड़ा सा प्रोग्राम भी रखा है छोटा सा।
0: अरे वाह।
1: देखिए गुड़िया को इतना पता है, वो 5-10 दिन से तो बोल रही है मेरा बर्थडे कब आएगा, मेरा बड्डा कब आएगा, तो बोल रही है उसके मन में बस बर्थडे का एक शब्द घुस गया है। तो बोल बर्थडे बर्थडे करती है, तो आज चलो उसका बर्थडे के मैंने वो तो उजा दी है, बर्थडे को विश कर देते हैं आज। तो उस भी खुश हो जाए, बच्चे सभी सारे मोहल्ले के भी उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उसको भी बुलाए तो सभी बच्चे भी खुश हो जाए। छोटा सा कार्यक्रम रखा है बर्थडे का।
0: बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर।
1: तो चलो हमारी तरफ से, आपकी तरफ से अच्छा सा गाना सुना देना हमारी गुड़िया के लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, सुना
1: जो अच्छा लगे वो।
0: जी जी,
1: ठीक है
0: सर। जी जी,
1: हमारे सभी मित्रों को
0: नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका सुरेश जी। बातें प्यारी सी बातें आपने की और अपनी गुड़िया का जो है जन्मदिन है उसके लिए आपने याद किया हमको, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं और जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक और मंगल कामनाएं करते हैं गुड़िया के लिए। आइए बात कर रहे थे हम लोग विमल राय के बारे में। हिंदी सिनेमा जगत में एक विशेष नाम या व्यावसायिक धारकों के बीच की दूरी को पटाते हुए लोकप्रिय फिल्में बनाने वाले बिमल राय जी का आज विशेष जन्मदिन है, जिनके विचार और जिनकी भावना, जिनकी कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं। हेलो जी, नमस्कार।
2: नमस्कार सर। नमस्कार, मदन भाई बोल रहा हूँ।
0: बोलिए मदन भाई, कैसे हैं आप?
2: बिल्कुल बढ़िया हैं, और मौसम बिल्कुल चारों तरफ से बादल घेर रखा है हमें, और ठंडी का मौसम है, और सुबह से लगा रहे रेडियो मधुबन में फोन, और आपकी आवाज या कोई प्रोग्राम वो ही सुनाई दे रहे हैं, एक एक प्रोग्राम, और मौसम के हिसाब से आवाज आती है, मगर वो दूसरा सुर सुर सुर वो ज्यादा चल रहा है। तो आपको नमस्कार करते हैं, हेलो गुड मॉर्निंग आपको को और सभी दोस्तों को सुनने वाले को, और आज के दिन भी आपको
0: शुक्रिया शुक्रिया।
2: और एक बात और है, मैदान में जाने से हार नहीं होती, हार प्यार करने से। नमस्कार।
0: जी जी जी, शुक्रिया। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है, और ये थे मदन भाई जो अपनी भावनाएं विचार हमारे साथ साझा कर रहे थे और बड़ी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, लेकिन उनका धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार ख़त्म हो गया कि शुरू हो गया वो पता नहीं चलता। लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है जब वो बातें करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और बिमल रॉय का नाम आते ही हमारे जहन में सामाजिक फिल्मों का ताना बाना आंखों के सामने घूमने लगता है। जैसे उनकी जो फिल्में हैं मध्यम वर्गीय और गरीब, गरीबी में जीने वाले, गरीबी जीवन जी रहे लोग समाज का एक आईना बनकर हमारे बीच में आता था। चाहे वो उनका उसने कहा था परख, काबुली वाला, दो बीघा जमीन, बंदनी, सुजाता या फिर मधुमती, ये फिल्में जो है एक से बढ़कर एक फिल्में उन्होंने इंडस्ट्री को दी और उनके बारे में चलिए बात करते हैं। अभी आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। गुड मॉर्निंग आबू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत ही पुराना गीत आप सुन रहे थे, प्रभु से खुद को जोड़ ले, 65 साल पुराना ये कृष्ण भजन आप सुन रहे थे। निश्चित तौर पे आपको कुछ पुरानी गानों के जो लहजा है वो उसमें दिखाई दे रहा था। तो आइए, बिमल राय के बारे में बातें कर रहे थे। इनका जन्मदिन आज ही के दिन है, 1909 को पूर्व बंगाल वर्तमान बांग्लादेश के एक जमींदार परिवार में हुआ था। बिमल राय ने अपने करियर न्यू थिएटर स्टूडियो कोलकाता से एज ए कैमरामैन के रूप में शुरू किया था। और 1935 के दौरान इनकी मुलाकात केएल सहगल से हुई और केएल सहगल के ही फिल्म देवदास के सहायक निर्देशक भी बने। और बिमल राय ने मानवीय अनुभूतियों को गहरे अनुभव करके पार की थे उसके, और सामाजिक मनोवैज्ञानिक को अच्छी तरह से समझने के कारण उनकी फिल्मों में सादगी भी रहती थी और उसमें कहीं ना कहीं जबरदस्ती थोपी हुई या जो फिक्शंस होते हैं उसकी झलक कभी भी नहीं मिलती थी। इसके अलावा सिनेमा तकनीक पर भी उनकी मजबूत पकड़ होने के कारण उनकी फिल्में दर्शकों को प्रभावित करती थी और दर्शकों को अंत तक बांध के रखने में सफल होती थी। शायद यही वजह रही कि जब उनकी फिल्में आई तो प्रतिस्पर्धा में दूसरे निर्देशक ठहर नहीं सके। बिमल रॉय ने अपनी फिल्मों में सामाजिक समस्याओं को उठाया, समाधान का भी प्रयास किया और पर्याप्त संकेत दिए कि उन स्थितियों में कैसे इसको किया जाए। बंदनी, सुजाता, ये जो फिल्में हैं ये लोगों के बीच में सामाजिक आईना है, समाज में जो चीज़ें हो रही हैं उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, उसको कैसे सुचारू रूप से चला सकते हैं और जो कुरीतियाँ है उसका ख़त्म कैसे कर सकते हैं, इन सारी बातों पर बहुत ज़्यादा उनकी व्यापक जो है समझ थी और उसे वो इमेज के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से लोगों के बीच में रखते थे। हिंदी फिल्मों में नायक केंद्रित कहानियों का ही जोर रहा है, लेकिन विमल राय ने उसे भी खारिज कर दिया और उन्होंने नायकों को केंद्रित कर बेहद कामयाब फिल्में बनाई। और ऐसी फिल्मों में मधुमती, बंदनी, सुजाता, परिणीति, बेनिजर, बिरजा बहू आदि शामिल है। तो ये थी कुछ खास बातें बिमल राय के बारे में। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, गुड मॉर्निंग आबू में आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ डॉक्टर मनदीप जी उपस्थित हैं, उनसे भी बातें करते हैं। डॉक्टर मनदीप जी, स्वागत है आपका।
1: थैंक यू। गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया
0: जी। आप क्या करते हैं थोड़ा बताइए हमारे सभी श्रोता बंधुओं को।
1: हाँ जी, प्रोफेशनली मैं एक डेंटिस्ट हूँ, BDS, और मैंने अपना बैचलर्स इन डेंटल सर्जरी सुभारती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, विच इज़ ऑन दिल्ली हरिद्वार हाईवे नियर मेरठ, वहाँ से कंप्लीट किया इन 2008। एंड 2008 ऑनवर्ड्स मैंने प्राइवेट क्लिनिक में ही अंडर अ वेरी एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर प्रैक्टिस किया फॉर 16 ईयर्स। एंड वर्तमान समय मैं मधुबन में, यहाँ शांतिवन में, BK कॉलोनी में रहती हूँ और अपनी सेवाएं मानसरोवर में एज अ फर्स्ट एड पर्सन वहाँ पर दे रही हूँ।
0: जी जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और आशा करूँगा हमारे सभी दर्शकों को, श्रोता बंधुओं को अच्छा लग रहा है। तो अभी जैसे कि आप डेंटिस्ट के बारे में बात कर रहे थे, अब आप एक अच्छे डेंटिस्ट भी हैं, तो हमारे सभी श्रोताओं को बताइए कि हमारे दांत कितने इम्पोर्टेंट हैं, उनका ख्याल कैसे रखें।
1: डेफिनेटली हम अगर बात करें तो डेंटिस्ट्री हमारी ओरल कैविटी के बारे में हमें बताती है। ओरल कैविटी जो हमारा मुख है, इसके अंदर जो जो है, हम सिर्फ दांतों के बारे में नहीं बट ओरल कैविटी में जो जो है उस सब के बारे में जानते हैं।
0: जी जी।
1: एंड हमें ये बहुत अच्छी तरीके से समझ होनी चाहिए कि दांत हमारे, हमारी ओरल कैविटी हमारी बाकी बॉडी से अलग नहीं है। इट इज़ क्लोजली लिंक्ड विथ ऑल अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो दांतों में कोई भी दिक्कत हमारे दूसरे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करते हैं। एंड डेंटिस्ट्री सुनकर हमें सिर्फ दांत ही सामने आता है बट डेंटिस्ट्री अपने आप में एक बहुत ब्रॉड स्टडी है एंड इसके अंडर भी 7 डिपार्टमेंट्स आते हैं, तो हम 5 इयर्स में इन 7 डिपार्टमेंट्स में अलग अलग चीजें सीखते हैं. तो आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगी.
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल.
1: कि व्हाट डेंटिस्ट्री इज ऑल अबाउट. हमारा पहला इसमें डिपार्टमेंट आता है ओरल मेडिसिन. ओरल मेडिसिन इज वन प्लेस जहाँ पर एक पेशेंट अपने कोई भी डेंटल प्रॉब्लम लेकर क्लिनिक में आया, हॉस्पिटल में आया, तो ओरल मेडिसिन डिपार्टमेंट में हम उसका डायग्नोसिस करते हैं, क्लिनिकली ऑब्जर्व कर उसके साइन सिम्टम्स सुनकर उनको उनकी प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं. सो ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी, इफ रिक्वायर्ड कोई एक्सरेज वगैरह लेने पड़े तो वो लेते हैं. उसके बाद एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट्स प्रॉब्लम वो बाकी डिपार्टमेंट्स में रेफर किया जाता है. तो बस 7 डिपार्टमेंट्स कौन से हैं, मैं ब्रीफ में आपको उसके बारे में बता देती हूँ. ओरल मेडिसिन के बाद हम कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री में जाते हैं जहाँ पर हमारी फिलिंग्स वगैरह होती हैं, टूथ को कंजर्व करना, राइट. एंड फिर हम अपना एंडोडोंटिक्स में आते हैं जहाँ पर हमारा ज्यादा डैमेज हो जाने के बाद भी अगर हमें अपने दांत को बचाना है तो जिसको कॉमनली हम सब रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स के बारे में सुनते हैं, वो हमारा एंडोडोंटिक्स में अदर सर्जरीज कि दांत को बचाए रखना है बट उसमें जो बहुत मेजर लेवल पर प्रॉब्लम आ गई उसको रिजोल्व करना. फिर हम आते हैं ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कोई इंजर्ड मतलब कैंसर वगैरह हो गया उसका ट्रीटमेंट, एंड कोई एक्सीडेंट्स हो गए जिसमें जॉ डिसलोकेट हो गया, वो सारी सर्जरीज, टूथ एक्सट्रैक्शंस, दांत निकालना, विजडम टूथ एक्सट्रैक्शंस, ये सारी सर्जरीज हमारे उस डिपार्टमेंट में आती हैं. प्रोस्थोडोंटिस्ट जहाँ पर हम अपने प्रोस्थेसिस मतलब आर्टिफिशियली रिप्लेसमेंट ऑफ द टीथ जिसमें हमारे डेंचर्स बनते हैं, कंप्लीट डेंचर्स, पार्शियल डेंचर्स, ये सारे बनते हैं. फिर हमारा आता है पीडोडोंटिस्ट. पीडोडोंटिस्ट है जहाँ पे बच्चों का ट्रीटमेंट चलता है. और फिर हमारा पेरियोडोंटिस्ट आता है जहाँ पर हमारी गम्स रिलेटेड और बोन रिलेटेड प्रॉब्लम सारी रिजॉल्व की जाती है. तो इस तरीके से कम्युनिटी डेंटिस्ट्री आता है. फिर ऑर्थोडोंटिस्ट आता है जहाँ पर हमारे ब्रेसेस, हमारी कोई भी माल अलाइनमेंट इन द टीथ है तो उसको करेक्ट किया जाता है विद ब्रेसेस, तो हमारा वो वाला डिपार्टमेंट आता है. एंड लास्ट एक है ओरल पैथोलॉजी एंड कम्युनिटी डेंटिस्ट्री. कम्युनिटी डेंटिस्ट्री में सर्वेज होते हैं आस पास इधर उधर जाकर, एंड ओरल पैथोलॉजी एनी डिजीज इन द माउथ बिग मेजर लेवल पर उसका अ फर्दर डायग्नोसिस करना, उसका बायोप्सी वगैरह, वो सारा.
0: बिल्कुल बिल्कुल. डॉक्टर मानदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका. बहुत ही प्यारी बात है आपने बताया कैसे डेंटिस्ट जो है सिर्फ एक शब्द नहीं है, उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जिसके बारे में हम लोग आगे बातें करेंगे और हमारे सभी श्रोताओं को आपका ज्ञान का लाभ जो है मिलने वाला है. तो चलिए मित्रों, आज के दिन जन्मे उन लोगों की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी हमारे आज के दिन जिनका भी जन्मदिन है 12 जुलाई को, जैसे आशिया का जन्मदिन है और सुरेश जी की पोती है जिनके बारे में हमने सुना, और आज भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी जिनका नाम है अंचत शरत कमल, इनका भी जन्मदिन है आज, और भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक गूगल खोज अनुभाग के सीईओ सुंदर पिचाई का भी आज जन्मदिन है, और भारतीय सिनेमा के खूबसूरत तथा अभिनेत्रियों में से एक सुलक्षणा पंडित, उनका भी जन्मदिन आज है, और भारत के भूतपूर्व 16वें मुख्य न्यायाधीश थे वाई वी चंद्रचूड़, इनका भी जन्मदिन आज है, और दूसरे विश्वयुद्ध की वीरांगना महिलाओं में से एक थी लूडमिला पावलीचेंको, इनका भी जन्मदिन आज है, और हिंदी फिल्मों के महान फिल्म निर्देशक बिमल रॉय, इनका भी जन्मदिन आज है, और हिंदी के बहुत ही पॉपुलर उपन्यास लेखक में से एक दुर्गा प्रसाद खत्री का जन्मदिन आज है, और भारत के जाने माने लेखिका नीलम प्रभा का भी आज जन्मदिन है. तो चलिए, जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को रेडियो मधुबन करता है हैप्पी बर्थडे टू यू.

0: चलिए मित्रों, आज के इस गुड मॉर्निंग आबू कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर मिलते हैं शाम और कल सुबह मिलेंगे नई किरण में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, और जाते जाते आपको समाचारों के साथ जोड़ रहा हूँ। सुनते रहो मस्कराते
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ, मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तीन देशों की यात्रा संपन्न। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ विस्तृत वार्ता के बाद स्वदेश रवाना। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए। दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। अमेरिका ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए। ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक किया बंद। मौसम विभाग ने अगले चार दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और लिंडा नोस्कोवा ने कैरोलिना मुकोवा को हराकर अपना पहला विंबलडन टेनिस खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। इस दौरान श्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ व्यापक बातचीत की। भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। इस दौरान रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और डेयरी तथा पशुपालन सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ऑकलैंड में सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय मूल के 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। श्री मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को विश्वसनीय मित्र बताते हुए न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की भी उन्होंने प्रशंसा की। श्री मोदी ने श्री लक्सन के शानदार आतिथ्य के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। श्री मोदी ने 40 वर्ष बाद भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा के बारे में कहा कि अगली यात्रा में इतना समय नहीं लगेगा।
2: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है। इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के दौरान भारत ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, नवाचार, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार किया है। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। श्री सिंह वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गृहमंत्री कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में महत्वाकांक्षी सामूहिक पौधारोपण अभियान की शुरुआत भी करेंगे।
3: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने संसदीय क्षेत्र को देश में सबसे हरा भरा बनाने के लिए महत्वाकांक्षी गांधीनगर हरियाली लोकसभा अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके तहत इस साल गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में 1.25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। इस अभियान के तहत वन विभाग अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में वन कवच मॉडल के माध्यम से लगभग 60 लाख स्वदेशी पौधे लगाएगा, जो त्वरित पर्यावरण सुधार के लिए जापानी मियावाकी पद्धति का गुजराती स्वदेशी संस्करण है। अपने दौरे के आखिरी दिन श्री शाह कल गांधीनगर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट ग्रुप बैठक और पहली अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषक अपराध प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे देहगांव में नवनिर्मित एपीएमसी सब्जी मंडी का भी लोकार्पण करेंगे। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: उत्तर प्रदेश सरकार व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। एक रिपोर्ट।
4: 27 विभागों के समन्वय से चलाए जाने वाले इस विशाल वृक्षारोपण अभियान में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग सर्वाधिक 15 करोड़ 50 लाख पौधारोपण करेगा। ग्राम्य विकास विभाग 10 करोड़, कृषि विभाग 3 करोड़ 25 लाख, उद्यान विभाग 1 करोड़ 50 लाख और पंचायती राज विभाग 1 करोड़ 22 लाख पौधे लगाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे भी 5.5 लाख पौधे लगेंगे। महाअभियान 2026 में इस वर्ष समरस वन, समृद्धि वन, कृषि वन, ऊर्जा वन, कपि वन समेत अनेक नवीन वन तैयार किए जाएंगे। महर्षि चरक औषधि वन की शुरुआत 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस पर की गई है। इस अभियान का प्रमुख हिस्सा मिशन छाया, अविरल धारा पौधारोपण, सहजन भंडारा और आम भंडारा भी होगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने गोवा में अपनी 2 दिवसीय परामर्श प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संवैधानिक विशेषज्ञों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और मीडिया से विचार विमर्श किया। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: पहले दिन समिति ने गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, संवैधानिक विशेषज्ञों, राज्य निर्वाचन आयोग तथा गोवा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। दूसरे और अंतिम दिन कल समिति ने गोवा विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर गणेश गांवकर, विपक्ष के नेता यूरिया लेमाव तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायकों से चर्चा की। इससे पहले समिति के अध्यक्ष और सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से सुशासन को बढ़ावा मिलेगा, चुनावी खर्च कम होगा और बार बार होने वाले चुनावों से होने वाले प्रशासनिक व्यवधान में कमी आएगी। समिति अब अपने राष्ट्रव्यापी परामर्श अभियान के अगले चरण में लखनऊ का दौरा करेगी। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फुकवोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के

0: डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमरीका की सेना ने कहा है कि हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए गए हैं। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। ईरान की नौसेना ने कहा कि इस इलाके में अमरीका का दखल खत्म होने तक किसी भी जहाज को इस रास्ते से निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नौसेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य की इस घटना को लेकर अमरीका की किसी भी कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया जाएगा। अमरीका ईरान से सार्वजनिक रूप से होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर हमला नहीं करने का आश्वासन चाहता है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तनाव के बावजूद ईरान के साथ बातचीत जारी रहेगी। ईरान ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य उसके नियंत्रण में ही रहेगा और इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों को शुल्क देना होगा। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही के लिए दो अलग अलग रास्तों का प्रस्ताव दिया है, लेकिन ईरान ने इस तरह के प्रस्ताव को पहले ही खारिज कर दिया था। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका एस जानकी अम्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ मुकेश कुमार बल।
2: फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम ने अतिरिक्त समय में 2 गोल करके इंग्लैंड को जीत दिलाई। इंग्लैंड तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। उधर लंदन में कल रात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस बीच पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यैनिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार आज रात 8:30 से खेला जाएगा। महिला डबल्स के फाइनल में आज 10वीं वरीयता प्राप्त गुओ हान्यू और क्रिस्टीना म्लाडेनोविच की जोड़ी का मुकाबला दूसरी वरीयता प्राप्त गैब्रियला डब्रोवस्की और लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 से शुरू होगा। और इंग्लैंड ने कल रात साउथहैम्पटन में 5वें और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली है।
0: और अभी प्राप्त समाचार के अनुसार अमेरिका के कंसास में जारी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड 1-1 से बराबरी पर हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। इनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा शामिल हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाई है। नवभारत टाइम्स ने प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को प्राथमिकता देते हुए लिखा है, आतंकवाद पर बनाएंगे ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप, प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम के बीच सहमति। पंजाब केसरी ने INS महेंद्रगिरी के जलावतरण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को प्रमुखता दी है, भविष्य के युद्ध सिर्फ AI से नहीं सैनिकों के दम पर जीते जाएंगे। जनसत्ता ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का बयान दिया है, चढ़ावा चोरी कलंक, व्यवस्था में जल्द सुधार। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर बरसात में बेहाल होते शहरों पर विश्लेषण दिया है, हर बरसात में देश के शहरों में लोग जलभराव और उससे जुड़ी समस्याओं से जूझते हैं, इसके बाद भी नगर निकायों का काम करने का तौर तरीका नहीं बदला है। अखबार ने लिखा है कि अब यह जरूरी हो गया है कि संसद में एक विशेष सत्र बुलाकर बिगड़ते शहरीकरण को संवारने के लिए कोई सार्थक बहस की जाए। दैनिक भास्कर ने राष्ट्रीय राजधानी के मौसम का मिजाज दिया है, कमजोर पड़ा मॉनसून, अब 1 हफ्ते झेलनी पड़ेगी गर्मी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 3 देशों की यात्रा सम्पन्न। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए, दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। अमरीका ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए। ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक किया बंद। मौसम विभाग ने अगले चार दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया और इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में, इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग आप सभी को। और आज संडे भी है और साथ साथ मदर्स डे भी है, तो आप सभी को मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और हमारे साथ हमेशा की तरह नरेश अग्रवाल जी हैं, उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं मदर्स डे की।
1: जी
0: जी, कैसे हैं आप?
1: जी नमस्कार, सभी श्रोताओं को भी हमारी बहुत बहुत अभिनंदन है मदर्स डे के हिसाब से। हमने भी जो टॉपिक सोच रखा है कुछ इससे रिलेटेड ही मतलब सोच रखा है, मतलब जो उसके कनेक्शंस में भी डिस्कशंस करेंगे।
0: सही बात है। तो आइए आज के इस एपिसोड में, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में, इसमें हम लोग 10 बजे तक है। आप 94 14 15 14 15 इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप कॉल करके भी डायरेक्टली बात कर सकते हैं। किसी भी तरह का सेहत से जुड़ा हुआ या फिर डाइट से जुड़ी हुई बातें आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आज हम लोग जैसे प्रोटीन की बात करते हैं, और प्रोटीन हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा कहते हैं, तो कितना खाए, कब खाए, किस तरह से मिलेगा प्रोटीन, इसके बारे में मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा प्रकाश डालें।
1: जी, जो चीज़ अच्छी होनी चाहिए तो क्या ज़्यादा खानी चाहिए क्या? मतलब जो चीज ज्यादा खाते हैं तो अति से क्या होता है, मतलब नुकसान होता है, एक जो है एक भाषा में बोली हुई है। तो आम लोगों की जो है आजकल के जैसे मेडिकल में जैसे और एक लोगों के मन में एक आम प्रचलन सी हो गई कि प्रोटीन जो है शरीर के लिए अच्छा होता है, या मसल्स बिल्ड करना है, या तो जो जिम वूम में जाते हैं तो उनको एक्स्ट्रा प्रोटीन खिलाई जाती है। तो लोग जो है आमतौर पर क्या होते हैं ना, प्रोटीन के प्रति जो है एक मेडिकल साइंस में जैसे जिस तरह से एक अवेयरनेस दी गई, तो हमें डाइट में अच्छा प्रोटीन होना चाहिए, अच्छा प्रोटीन होना चाहिए, लेकिन अच्छा प्रोटीन के चक्कर में कितना प्रोटीन खाना चाहिए उसको भूल के हम क्या करते हैं ना, उससे भी एक्स्ट्रा प्रोटीन्स खा लेते हैं। तो क्या थोड़ा सा कम प्रोटीन खाते हैं तो क्या जो है मेजर प्रॉब्लम हो जाती है क्या? मतलब जैसे हम उसको बैलेंस नहीं बना पा रहे कि कितना खाना चाहिए। अच्छा, कितना खाना चाहिए तो एक बात है, लेकिन कितना पचना चाहिए
0: वो भी तो इम्पोर्टेंट है।
1: हम खा तो रहे हैं लेकिन पच रहा है नहीं पच रहा है, इसको कोई जो है नजर अंदाज करते हुए अगर हम खा रहे हैं तो फिर ये शरीर को नुकसान देगा। तो अब इस बात को समझने की जरूरत है। चलो प्रोटीन जो है खाना चाहिए, लेकिन ऐसे भी कई कंडीशन है जहां पर कि प्रोटीन को जो है एक्सेस प्रोटीन को जो है बंद कर दिया जाता है, और सालों से बंद कर दिया जाता है।
0: जी जी जी।
1: मतलब जैसे कि यूरिया बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है ना, स्किन डिजीज है, जैसे कि जैसे सोरियासिस आदि कोई भयंकर स्किन डिजीज है, किडनी के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उन कंडीशंस में क्या होता है प्रोटीन डाइट को जो है रेस्ट्रिक्शंस की जाती है।
0: तो आइए कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो नमस्कार जी।
2: जी हेलो।
0: हाँ जी, हाँ जी बोलिए
2: जी।
0: हेलो, हाँ जी नमस्कार, बताइए क्या तकलीफ है?
2: सर मेरे को मतलब राइट साइड में पूर जलन रहता है, और पेट में पानी जैसा रहता है, मतलब खाना भी ठीक से नहीं पकता, और मुंह का स्वाद खट्टा जैसा रहता है।
0: ठीक है ठीक है, फोन रखे हैं। नाम और एज क्या है आपका?
2: सर विनीत है, एज है 24।
0: क्या नाम है?
2: विनीत सिंह।
0: विनीत सिंह, ठीक है। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में। 24 साल के विनीत जी हैं, जिनको पेट में पानी लग रहा है और मुंह में कट्टी डकार आती है।
1: जी, डाइजेशन का सिस्टम जैसे बिगड़ा हुआ है इनका, एक तरह से पेट में पानी भरा हुआ सा भी लग रहा है, और खाना प्रॉपर तरीके से हजम नहीं हो रहा है, खट्टी ढकारें आ रही हैं। तो इनको जैसे एक तो ये बताऊंगा कि अगर उनको सीधा सोने की आदत नहीं है तो सीधा सोने की आदत पहले बनाएं। कई जने जैसे होता है कि पैर सिकुड़ के सो जाते हैं।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो फिर जो है, क्योंकि इससे जो है डाइजेशन से काफी अच्छा रिलेशन है, जैसे हम बार बार समझाते हैं कि अगर आंतों को हम सिकोड़ के सोते हैं तो फूड का अब्जॉर्प्शन या प्रोटीन के बारे में जैसे डिस्कस करते हैं तो प्रोटीन का पचन नहीं हो सकता है। तो फिर हमें भोजन खाते हैं तो पचता कितना है, तो उसके अगर आंतों को अगर सिकोड़ते हुए सोते हैं तो खाना पच नहीं सकता है। दूसरा जो है, खाना अगर चबा के नहीं खाते हैं तो चाहे कैसा भी खाना खाए खाना पच नहीं सकता है। तो इसलिए एक तो भोजन से आप खटाई खाना बंद करो, भोजन के साथ जैसे हम बताते हैं कि टमाटर आदि या दूसरी खटाइयां नहीं खाओ, और सलाद खाते हुए खाना चबा के खाओ, और एक टाइम जो है आप सीजन की सब्जियों का जूस लेना शुरू करो।
0: हेलो
3: हेलो रमेश जी।
0: हाँ जी नमस्कार।
3: हाँ मैं दत्ता भाई बोल रहा हूँ, मेरे छाले के बहुत बार बार प्रॉब्लम आते हैं, हर 15 दिन में आते हैं, उसके लिए क्या करना है?
1: जी ठीक है
0: ठीक है दत्ता भाई, अभी बताते हैं आपको। ठीक है जी, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। ये थे दत्ता जी, जो हमेशा चाले के प्रॉब्लम रहता है इनको 10-15 दिन में, तो क्या करें
1: जी। तो ये जो है छाले का जो प्रॉब्लम रहता है, ये हमारे शरीर के अंदर की गर्मी को दर्शाता है। अच्छा, जैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं ना, एलोपैथी में तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की दवाइयां देते हैं, और हमने 25-26 साल पुराने छालों के प्रॉब्लम जिनके रहे थे उनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ऐसी कोई बड़ी मुश्किल वाली चीजें नहीं है। हाँ, लेकिन इसके लिए आपको ध्यान में रखा है कि शरीर के अंदर जो इतनी गर्मी रहती है, उस गर्मी को हमें जो है ड्रेन आउट करना है, और उस शरीर की आंतों की जो गर्मी है, आंतों की गर्मी को ड्रेन आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है धनिया पत्ता और लौकी का जो है जूस, या जीरा धनिया सौंफ का पानी, जैसे एक एक चम्मच पानी में भिगो दे और उसमें मिश्री डाल के उसके शरबत जैसा बना के सुबह में ले।
0: अच्छा।
1: तो ये शरीर के अंदर की गर्मी को खत्म करता रहेगा। और साथ में जो फिटकरी के पानी से जैसे मुंह में कुल्ला कर ले,
0: फिटकरी के पानी से।
1: हाँ, फिटकरी के पानी से जैसे मुंह से कुल्ला कर ले, और गोंद कतीरा आता है ये भी शरीर को ठंडा करता है, तो थोड़ा सा गोंद कतीरा का जो है मात्रा जो है पानी में भिगो के रख ले उसको ले। तुकमरिया एक चीज आती है, सब्जा सीड या तुकमरिया बोलते हैं, काले काले
0: बीज
1: होते हैं जिसको हम पानी में भिगोते हैं तो वो फूल जाता है और शरीर के लिए काफी ठंडा देने वाला होता है। मतलब जब सोते हैं तो एक गीला नैपकिन का कपड़ा जो है पेट के ऊपर डाले, या काली मिट्टी या मिट्टी जो खेत की मिट्टी मिलती है, जो बिना केमिकल वाली जो मिट्टी लेप में हम नेचुरोपैथी में नॉर्मली प्रयोग में लेते हैं
0: जी, जी,
1: तो मिट्टी का लेप जो है पेट के ऊपर थोड़ा सा करके रख सकते हैं, या तो स्नान करने के टाइम पे मुल्तानी मिट्टी का लेप लगा के स्नान करें।
0: अच्छा।
1: मतलब शरीर के अंदर की गर्मी खत्म होगी तो जाके छाले परमानेंटली मिटेंगे। तो इसके लिए सुबह में जैसे हम विटामिन सी के लिए जैसे आंवले का पाउडर ले सकते हैं, कब्ज की प्रॉब्लम नहीं रहे इसलिए थोड़ा सा इसबगोल आदि लेना, ठीक है ना। तो इसके साथ जो है बाकी जैसे हमने बताया कि बॉडी को ठंडा करने के लिए, क्योंकि शरीर के अंदर की गर्मी खत्म हो जाए, इसके लिए मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाते हुए जैसे स्नान करना, मुल्तानी मिट्टी या चंदन का पाउडर मिला के लेप करके भी स्नान कर सकते हैं, उसको लगा के थोड़ा आधा घंटा शरीर में रखना है फिर स्नान करना है, ठीक है ना। गीला नैपकिन का प्रयोग करें, साथ में जैसे डाइट में हमने बताया कि शरीर को ठंडा करने के लिए जैसे लौकी और धनिया पत्ते का जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं, गोंद कतीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, तुकमरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये डाइट का अगर हम थोड़ा सा ध्यान में देते हैं और देने के साथ अगर हम ये करते हैं, लेकिन इस टाइम पे बर्फ वाली चीजें और वो नहीं लेनी चाहिए। कई जने क्या करते हैं ना, शरीर की गर्मी खत्म करने के लिए गर्मी का दिन है तो आमतौर पर क्या करते हैं ना, बहुत ठंडा पानी पीने की कोशिश करते हैं, या तो फिर जो है बर्फ वाली चीजें, आइसक्रीम वाली चीजें, लेकिन ये अल्टीमेटली शरीर के अंदर की गर्मी को बढ़ाता है। तो शरीर के अंदर की गर्मी अगर हम खत्म कर लेते हैं, इन उपाय पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं, तो फिर सहज जो है हमारी ये छाले की प्रॉब्लम जो है, और जैसे हमने बताया कि फिटकरी के पानी से लोकल कूला कर सकते हैं, तो ये भी मुंह का इन्फेक्शन जो है और वो छाले को हीलिंग करने में और भी फास्ट मदद कर सकता है, तो ये परमानेंटली ठीक हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।
0: बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, आशा करता हूँ दत्ता भाई ने सब समझ लिया होगा। इसमें से कोई भी उपाय जो आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हैं। एक और दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो नमस्कार
4: सर जी, वो मेरे क्या थे, एक बार मैं सुबह सुबह प्रैक्टिस कर रहा था
0: जी,
4: मेरा सुबह उठ के प्रैक्टिस करने की आदत है, तो मैं सुबह उठ के प्रैक्टिस कर रहा था, प्रैक्टिस करने के बाद फिर उसके बाद वो कमर एकदम असंभव, जैसे कुर्सी पे बैठा मैं चेयर पे
0: जी।
4: तो मतलब वो जैसे एकदम कमर दर्द करने लग गई, तो उसके बाद थोड़े थोड़े हल्के हल्के दर्द करने लगती है, तो क्या करें
1: जी? आप फोन रखिए बताते
0: जी। जी
1: ठीक है ना। तो भाई जी ने जैसे बताया कि इनको जो है जैसे कोई एक्सरसाइज करने की, या सुबह स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज दूसरी चीज़ें प्रैक्टिस करने की आदत है, स्पोर्ट्स किया जो भी कर रहे हैं, तो इसके बाद इनको थोड़े से मचक जैसे बोलते हैं ना, तो थोड़ा स्ट्रेचिंग में कोई गलत पोर्शंस हो गया, कुछ हो गया, तो इसके कारण लोकल जो है पेन है। तो इस ड्यूरेशन में फिर से थोड़ा सा जो है दो तीन दिन अगर पेन ज़्यादा है तो दो तीन दिन एक्सरसाइज इसको बंद करने के लिए एडवाइस करेंगे, और लोकल जो जहाँ पर दर्द है या प्रॉब्लम है वहाँ पर आप जो है कोई भी जैसे मालिश करने का कोई भी तेल आता है तेल का तो एप्लीकेशंस करें, लेकिन इसके बाद जो मोटा नमक का जो है सिकाई करें। तो मोटा नमक से अगर सिकाई करते हैं तो उस एरिया के दर्द को खींचने की ताकत जो है नमक में बहुत ही अद्भुत पूर्व होती है। तो कोई भी शरीर के एरिया का अगर किसी को भी दर्द है, जैसे घुटने का दर्द है या कमर का दर्द है या दूसरे तरह के दर्द हैं, तो हम उस टाइम पे जैसे तेल तो मालिश लोग आमतौर पर करते हैं या तो गर्म पानी से तो सिकाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बदले में अगर हम नमक की पोटली का इस्तेमाल करते हैं, जो मोटा नमक आता है, तो उसको अगर गर्म करते हुए पोटली बनाते हैं, एक तवा नजदीक गर्म तवा रख लें और पोटली को गर्म करते हुए सेक कर लेते हैं, तो इससे जो है पुराने से पुराना दर्द जो है जल्दी से खींच के ठीक हो जाता है। तो आई थिंक, और बाकी जो है शरीर में गैस बनने वाली जो चीजें हैं, तो इस टाइम पे जो है उस तरह की डाइट जैसे फूल गोभी है या तो फिर जैसे भोजन में खटाई है या दूध वाली चीजें हैं, थोड़ा सा परहेज रखें ताकि शरीर में गैस के बाद की प्रॉब्लम बढ़े नहीं, तो बाकी तो सहज फिर ठीक हो जाएगा।
0: चलिए, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, तो इसका प्रयोग जरूर कीजिए, इससे आपका दर्द कम हो जाएगा। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में, इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और आप मैसेज भी कर सकते हैं 9414154415 इस नंबर पर, और डायरेक्टली कॉल करके भी बातें कर सकते हैं। हाँ, ये गौर दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो, हाँ जी, हाँ नमस्कार, बोलिए। कहाँ से बोल रहे हैं?
5: गुजरात से बोल रहा हूँ।
1: गुजरात
0: जी, क्या नाम है?
5: मोती भाई देसाई।
0: मोती भाई देसाई, बोलिए, क्या तकलीफ है?
5: जी सर, मेरे, हेलो,
0: हाँ जी, हाँ जी,
5: मेरे पेट में प्रॉब्लम है।
0: हाँ,
5: तो वो सुबह सुबह से दो एक साल से प्रॉब्लम, एक तो मुंह में छाले होते हैं, फिर पेट में दर्द होता है, एसिडिटी जैसा होता है, वो पानपुर भी दवाई कराई लेकिन कोई ऐसा कोई
0: जी जी, ठीक है, आप फोन रखिए, आप ध्यान से सुनिए और कागज पेन लेके रखिए ताकि लिख सके आप या फिर रिकॉर्ड कर लीजिए, ठीक है?
5: यस सर
0: जी। तो मोतीलाल जी को एक साल से ये प्रॉब्लम है, क्या करें
1: जी? अभी हमने डिस्कशंस किया, इससे पहले जो डाइजेशंस में प्रॉब्लम भी थी, खट्टी ढकारे आ रही थी, और साथ में जो है फिर से दोबारा से बता देते हैं, और एक कॉलर आ रहे हैं।
0: हेलो,
6: ओम शांति
0: जी। अच्छा, आप थोड़ा रेडियो से दूर हो जाइए, रेडियो सेट का वॉल्यूम कम कीजिए आपका।
6: मोहिनी नाम है, 74 एज है
0: जी। मोहिनी जी बोलिए।
6: शरीर में बहुत दर्द रहता है और 6-7 महीने से लूज मोशन हो रहा है, 4-5 दिन में 5-12 से।
0: अच्छा अच्छा जी,
6: कृपया सुनाइए पहले।
0: ठीक है मोहिनी जी, आप फोन रखिए, हम लोग बता रहे हैं आपको, है ना?
1: ठीक है।
0: हाँ,
1: जैसे पालनपुर से मोहिनी जी का फोन आया, तो इनकी एज 74 है और साथ में सारे शरीर में दर्द रहता है और बीच बीच में लूज मोशन होती रहती है, 4-5 दिन में थोड़ा सा लूज मोशन की प्रॉब्लम रहती है। तो ये शरीर में बात का प्रॉब्लम जो है जरूर से बढ़ा हुआ है।
0: अच्छा, बात की वजह से।
1: तो बात का प्रॉब्लम बढ़ा होने के कारण जो है या तो कवच की प्रॉब्लम भी रहती है, और साथ में जो हमने फूड कॉम्बिनेशन रूल के बारे में हमेशा डिस्कशन करते आए हैं, तो कुछ गलत कॉम्बिनेशन से खाना खाते हैं तो खाना पचने में नहीं जाता है, तो जो खाना पचने में नहीं जाएगा तो खाना पेट में सड़ता है,
0: सड़ता है,
1: और सड़ता है तो गैस बनता है। इस बात को अगर हम समझ जाएं, तो फिर हमें जो है ये नहीं होता है कि ज्यादातर लोगों को समझते हैं कि हमारा डाइजेशन कमजोर है या लीवर कमजोर है। प्रॉब्लम लीवर या डाइजेशन कमजोर होने की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है कि हम गलत तरीके से खाना खा रहे हैं, और उस तरीके से एक अच्छा भला आदमी भी खाना खाएगा
0: तो भी बीमार
1: पड़ेगा, उसको जो है उसका खाना हजम नहीं होगा, मतलब फिर वो धीरे धीरे गैस की प्रॉब्लम जो बढ़ती जाएगी,
0: बढ़ती जाएगी।
1: तो इसलिए हमें जो जरूरत है, एक तो इस टाइम पे जो गैस की प्रॉब्लम बढ़ी होती है, तो दर्द कम करने के लिए एक तो मैं बताऊंगा गोखरू और पुनर्नवा, जो हमारी पाउडर फॉर्म में जड़ी बूटियां मिल जाती हैं सहज तौर पे, तो इसका पाउडर ले ले, गोखरू का पाउडर और पुनर्नवा पाउडर दोनों, और इस दोनों का एक एक चम्मच पाउडर ले ले, और पुदीना जीरा और मीठा करना तो थोड़ा गुड़ डाल सकते हैं काढ़ा बनने के बाद में, तो इसका काढ़ा बना के सुबह से हम एक एक चम्मच का प्रयोग करें, ठीक है ना? तो ये क्या करेगा ना, हमें जो है हमारी गैस से रिलेटेड, शरीर में दर्द से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसमें अच्छा काम करेगा, और कोई भी सूजन वूजन अगर शरीर में है, घुटने का दर्द या कमर का दर्द, जिनको गर्दन की भी दर्द रहती है या शरीर में गैसेस खूब बनती है, तो इस काढ़ा का वो प्रयोग कर सकते हैं। और बेल का पाउडर मिल जाए या तो ताजा बेल, अभी गर्मी का सीजन है, मिल रहा है, तो उसको बेल का जो है प्रयोग करें या बेल का मुरब्बा का प्रयोग करें, तो जो उनका लूज मोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें अच्छा फायदा मिलेगा। लेकिन इस टाइम पे दूध से बनी हुई चीजें जरूर से एक बार बंद कर दें।
0: हेलो, हाँ जी, हेलो, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में। इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं, काफी अच्छी बातें हो रही हैं। और इसके पहले मोतीलाल जी का फोन आया था, उनको भी
1: जी वो डाइजेशन के एंड एसिडिटी के लिए जो प्रॉब्लम्स बता रहे थे
0: जी,
1: तो इसमें फिर से वही बात बताया कि फूड कॉम्बिनेशन रूल्स की जो हमने डिस्कशन किया कि भोजन के साथ कम से कम खट्टा नहीं खाएं, टमाटर आदि, जहाँ रोटी चावल आलू खाते हैं, टमाटर एक लीवर के टॉनिक के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको आप अलग से इस्तेमाल करिए। मतलब आप टमाटर का सूप ले सकते हैं, कोई सब्जियों का जूस बना रहे हैं तो उसमें आप टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जहां पर आप रोटी चावल आलू खाते हैं तो वहां सब्जी में या दाल में टमाटर डाल के ना खाएं। तो इससे जो है हमारा खाना जो है प्रॉपर तरीके से डाइजेशन हो जाएगा और खाना को चबा के खाएं। और गर्मी के दिन में खास तौर पर मैं जो है आग्रह करूंगा कि जो है गर्मी के दिन में दूध दूध से बनी हुई चीजें जो है समस्या पैदा करती है, क्योंकि इस टाइम पे दूध का प्रोडक्शन तो कम हो जाता है आमतौर पर, लेकिन और फंक्शंस और मैरिज के फंक्शंस प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो दूध की डिमांड अचानक बढ़ जाती है, लेकिन दूध का प्रोडक्शंस नेचुरली जो भी जानवर होते हैं उनके दूध की प्रोडक्शंस घटती है, लेकिन मार्केट में दूध की कमी नहीं होती है। तो इसी इशारे से समझ जाए
0: सही बात
1: और
0: है।
1: ऐसे भी गर्मी के दिन में जैसे हर सब्जी भोजन तेजी से बिगड़ता है ना, तो दूध भी तेजी से बिगड़ता है। जैसे आप देखते हैं कि सारे दूध के जो पैकेट आते हैं कोल्ड स्टोरेज में, मतलब उसको फ्रीज में रख के रखते हैं, थोड़ा भी बाहर रखते हैं तो खराब हो जाता है
0: जी।
1: तो इसलिए जो है इस टाइम पे गर्मी के दिन में जिनको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम ये है, तो एक बार दूध की थोड़ी सी परहेज रखें तो ज्यादा फायदे में रहेंगे।
0: सही बात है। चलिए, आशा करता हूँ मोतीलाल जी आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है, किस तरह से आपका डाइट सिस्टम अगर आप समझ लेते हैं तो चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएगी।
1: तो क्या होता है गर्मी के दिन में, क्या होता है लोगों को फिर से दही के साथ ही खाना खाने की आदत हो, और लोगों को ज्यादातर ये समझ में दिमाग में आता है कि दही के साथ खाना खाएंगे तो क्या होता है दही पेट की गर्मी को कम करता है। लेकिन हम इसके लिए वही एडवाइस करते हैं कि दूध वाली चीजों को भोजन के साथ नहीं मिलाना चाहिए। नेचुरोपैथी के जो नियम है और हमने जो अपने सालों से जो अनुभव से देखे हैं कि भोजन के साथ अगर खटाई खाते हैं, जैसे कि दिल्ली साइड में तो जो रूटीन चलता है कि
0: दही खट्टा ना हो, ऐसा भी ध्यान रखे।
1: नहीं नहीं, छाछ खट्टा नहीं हो,
0: छाछ
1: बोलते हैं, और दही की तासीर तो खट्टी होती है, और छाछ भी जो भी होता है चाहे जो वो ताजी है तो चलो ठीक है, नहीं तो फिर उसकी तासीर तो खट्टी बोलेंगे, चाहे आम मीठी है तो फिर भी तासीर तो खट्टा ही कहा जाएगा।
0: हेलो, नमस्कार जी।
7: नमस्कार सर जी।
0: जी बताइए।
7: मैंने आपकी दवाई की वो सुना था, ठीक है
0: हाँ।
7: लेकिन सर मेरे क्या प्रॉब्लम होता है, मैं इंडियन आर्मी में हूँ तो फिर मेरी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर है, तो फिर वो खाना तो सर वो बनता है वही, हम दूसरा को खा नहीं सकते, ठीक है
0: हाँ हाँ।
7: मोती जी बोल रहा हूँ सर
1: जी, जी
7: तो हाँ। खाना पे जो मिलता है वही मिलता है, फिर
1: लेकिन आप सुन रहा हूं आप इसमें जो है ध्यान कर सकते हैं, अगर सलाद की अवेलेबिलिटी होती है तो पहले खाने से पहले सलाद खाते हुए फिर खाना खाओ।
7: हाँ जी, हाँ तो सर जी ऐसा हुआ है कि हमारे वो आर्मी में जो बनता है वो ही खाना,
1: नहीं
7: खाना
1: सलाद तो मिल जाती है ना, सलाद तो मिल सकती है ना मेरे को,
7: हाँ,
1: तो
7: जहाँ
1: तो सलाद
0: पहले सलाद खाओ,
1: आप पहले सलाद थोड़ी सी अच्छी क्वांटिटी में ले लो, तो सलाद ले लोगे तो सलाद में जो उसको एसिड को न्यूट्रलाइज करने की कैपेसिटी अच्छी होती है, और खाना को थोड़ा सा चबा के खाने की आदत बनाओ, और पहले सलाद अच्छी क्वांटिटी में खा लो, तो आप जो खाने में जो थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं या हमारे बस में नहीं है तो उस प्रॉब्लम को सलाद काउंट्रैक्ट कर सकता है, मतलब उसको सॉल्व कर सकता है उस प्रॉब्लम को। बाकी सुबह में आप जैसे आंवले का पाउडर ले सकते हैं सुबह में खाली पेट में, इसबगोल जो है शाम को आप इसबगोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी सलाद खाते हुए आप खाना को चबाते हुए खा लो, चाहे फिर खाने में कुछ प्रॉब्लम है हमारे बस में नहीं है, हम उस हिसाब से नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो प्रॉब्लम हमारे ऊपर प्रॉब्लम के रूप में नहीं रहेगी, हम उसके उभर जाएंगे, ठीक है
7: हाँ, हाँ,
1: जी
0: चल ओके। आप सुना है

0: मधुबन 90.4 एफएम आपका स्वस्थ आपके आत्म इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और यहाँ बात हो रही थी फूड कॉम्बिनेशन की बात हो रही थी। तो फूड कॉम्बिनेशन में दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ें खाने के साथ ना खाए, तो जैसे छाछ या फिर दही ये सब चीज़ें हम लोग साथ में मिला के खाते हैं, तो इसके ऊपर बता रहे थे। जी
1: जी, तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप जो है अगर ताज़ा छाछ है तो जो है बेशक जो है भोजन के साथ ले लो। जैसे अगर नहीं तो फिर भी और भी बेस्ट नेचुरोपैथी के तरीके से एडवाइस करूंगा, आप जो है सेपरेट ले लो, एक तो खाने से एक डेढ़ घंटे बाद ले लो या एक डेढ़ घंटे पहले ले लो।
0: हेलो जी। जी जी बोलिए।
2: बेल का मुरब्बा का बोला लूज मोशन के लिए।
0: हाँ हाँ,
2: लेकिन मुझे शुगर है तो ले सकते।
1: तो बेल का मुरब्बा नहीं, तो बेल का पाउडर बाजार में मिल जाता है। तो बेल का पाउडर आप एक एक चम्मच पानी से फांकी मार सकते हो, ठीक है ना?
2: कितनी बार लेना?
1: एक एक चम्मच दिन में दो बार पानी के साथ ले लीजिए। हाँ हाँ, बेल का पाउडर ले लो, बेल का पाउडर मिल जाता है पंसारी की दुकान में, आयुर्वेदिक दुकान में। तो पाउडर फॉर्म में आप ले लो, मुरब्बा नहीं कर सकते हो तो। हाँ जी,
2: और ये सब
1: को ले सकते हो आप। शाम को 6 बजे लेना है तो इसे ले लीजिए, भोजन शाम को 6 बजे भी ले सकते हैं आप चाहो तो। ये सब को एक सवा चम्मच
2: खाने के पहले लेना।
1: जी हाँ, खाने से पहले ले लो, और खाने से पहले भी आधा घंटा घंटे पहले ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
2: अच्छा
1: जी।
2: और आंवले का पाउडर बोलते हैं आप,
1: ये सुबह में खाली पेट लीजिए, आपको डायबिटिक एंड ब्लड प्रेशर एंड वो सारे डाइजेशन प्रॉब्लम एसिडिटी प्रॉब्लम में भी फायदा करेगा। तो आप सुबह उठने से पहला आइटम जो है एक चम्मच आंवले का पाउडर जो है एक कप पानी के साथ ले सकते हैं। जी
2: थैंक यू।
0: आप सुना है रेडियो मधुबन 90.4 एफएम आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में, इस कार्यक्रम को हम लोग सुन रहे हैं और काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं। फूड कॉम्बिनेशन की बातें हम लोग कर रहे थे और शुरुआत में हमने प्रोटीन की बातें शुरू की थी। तो प्रोटीन कितना लेना है, कम लेना है, ज़्यादा लेना है, ये सारी चीज़ें अगर आपके जहन में हो तो आप सही ढंग से आप अपने हेल्थ को भी मेंटेन कर सकते हैं और चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएगी।
1: जी, हम जैसे डिस्कशंस कर रहे थे कि जैसे मेडिकल कंडीशंस होते हैं जब यूरिया बढ़ी हुई होती है, और हम प्रोटीन खाते हैं अगर पचने में नहीं जाते तो ये एक्सेस यूरिया बन के निकल रहा है, ठीक है ना? तो हम जो है हमें ध्यान रखना कि हमारे प्रोटीन या जो भी हम खाना खा रहे हैं वो सही तरीके से पचने में जाए और बॉडी में यूटिलिटी हो, क्योंकि कोई भी चीज पचाने के लिए शरीर को एनर्जी लगानी पड़ती है। ये नहीं कि प्रोटीन को पचाने के लिए तो जो और भी ज्यादा एनर्जी शरीर को खत्म यूज करना पड़ता है, लेकिन प्रोटीन अगर उतनी जरूरत के मात्रा से ज्यादा प्रोटीन है और हम उसको खर्चा करने के लिए ज्यादा जो है हमारे शरीर की एनर्जी लगा रहे हैं और उतनी प्रोटीन शरीर को रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो एक्सेस प्रोटीन जो है हमारे किडनी से जो टॉक्सिन्स निकालने के लिए, यूरिया यूरिक एसिड को निकालने के लिए किडनी को भरपूर मेहनत करनी पड़ती है। और लगातार इस तरह से अगर हाई प्रोटीन डाइट्स खाते हैं तो फिर हमें शरीर में जो है बीमारी का रूप में भी हमें जो है हो सकता है, जैसे कि जो है किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, या तो शरीर में जो है दूसरा जो है वेट नहीं बढ़ने के कारण भी हो सकता है। वेट बढ़ाने के लिए हम सोच के खा रहे हैं, तो हमने देखा कि काफी जो है बच्चे जो होते हैं कि दाल और दूध और खाना तो जो है बहुत अच्छी क्वांटिटी में खाते हैं, लेकिन बोलते हैं कि हमारे शरीर बनता नहीं है। तो उसके लिए जो है हमें एक तो सुबह में आंवले का पाउडर लेना चाहिए और हरे पत्ते जरूर से खाना चाहिए अगर सिस्टम को, क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी का सिस्टम ऐसे बना हुआ है कि अगर हम हरे पत्ते खाते रहेंगे तो ये हमारे सिस्टम्स को जो है रेगुलर रखेगा।
0: अच्छा अच्छा,
1: मतलब प्रोटीन का डाइजेशन भी होगा और आंतों की सफाई भी होगी। तो इसके लिए और हमें उसके साथ जो फाइबर भी मिल रहा है और जो क्लोरोफिल मिल रहा है तो वो हमें जो है जरूरत है, क्योंकि जो है बंदर जो होता है बंदर दाल और दूध तो खाता नहीं है, लेकिन उसको प्रोटीन डेफिशिएंसी नहीं होती है, क्योंकि वो जो पत्ते खाता है और पत्ते में प्रोटीन की मात्रा सबसे कम होती है। माना वो हरे पत्ते खाता रहता है तो उसकी जो है उसका सिस्टम जो मेंटेन रहता है और उसको प्रोटीन की डिफिशियंसी भी नहीं, तो जो है वो 2-4% भी प्रोटीन खाता है तो प्रोटीन 100% ऑब्जर्व हो जाता है और उसको उसको शरीर में प्रोटीन की डिफिशियंसी नहीं होती है। तो उसी हिसाब से अगर हमें प्रोटीन, क्योंकि मैंने देखा है कि जो ज्यादा खाने के ऊपर ध्यान देते हैं, अपना वेट बढ़ाने के ऊपर ध्यान देते हैं, जो अंडर वेट बच्चे हैं तो उनके केसेस में मैं देखता हूँ कि वो जो है दाल और दूध तो खूब मात्रा में खा रहे हैं, प्रोटीन वाली चीजें जो है ड्राई फ्रूट्स जो अच्छी मात्रा में खा रहे हैं, लेकिन अब उनके जिनको के वेट बढ़ता जा रहा है और शरीर में कमजोरी है, जो एक्सेस वेट वाले कई जने होते हैं तो कई जन काजू का पैकेट खोलेंगे 100 ग्राम काजू खा जाएंगे है ना, बादाम का पैकेट खोलेंगे, मूंगफली हो या तो ये ड्राई फ्रूट्स में जैसे बादाम और अखरोट आती है तो एकदम मुट्ठी भर भर के खा लेंगे, है ना, लेकिन तो वहां पर देखते हैं कि उनका तो वेट तो बहुत अच्छा से बढ़ा हुआ है लेकिन शरीर में उतने ही प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं। तो मना वो एक्सेस वेट जो बना है वो शरीर में कोई फायदा देने वाला नहीं बना है। तो हमने जैसे डिस्कशंस कर रहे थे कि मदर्स डे के ऊपर जैसे कर रहे थे, तो माँ को कितना प्रोटीन खाना चाहिए, जैसे न्यू बॉर्न बेबी आने वाला है तो उस टाइम पे कितना प्रोटीन खाना चाहिए। तो आमतौर पर जो है जब बच्चा पैदा होता है तो वह 2.5 किलो से 3.5 किलो का वजन का होता है। अगर उसका वजन ज्यादा है तो नॉर्मली परिवार वाले खुश होते हैं कि बहुत अच्छा जो है अच्छा हृष्ट पुष्ट बच्चा पैदा हुआ है लेकिन नेचुरोपैथी के हिसाब से शरीर में जितने जो जो अगर एक्सेस वेट से अगर बच्चा पैदा हुआ है तो स्टार्टिंग में क्या होता है ना, बच्चा जैसे ही बाहर आता है तो पहले तो एक बार वजन घटती है क्योंकि बॉडी में जो माँ के शरीर से जो भी टॉक्सिन्स उसके शरीर में आते हैं और शरीर में इतनी एनर्जी होती है कि सबसे पहले तो उसको बाहर फेंकने की कोशिश करता है और उस बाहर फेंकने की प्रोसेस को हम क्या करते हैं ना, बीमारी समझते हैं और उस बीमारी समझ के उसको जो है पहले दिन से जो है हम दवाई दे के दबाने की कोशिश करते हैं। मतलब जहां पर जो नेचुरोपैथी जो सिस्टम बोलता है तो वहां से हम पहले दिन से जो है वहां पर प्रकृति के विरुद्ध जाने की कोशिश करते हैं।
0: हेलो
2: डॉक्टर
0: जी,
2: सॉरी टू डिस्टर्ब, ये बेल का पाउडर कब लेना?
1: बेल का पाउडर आप खाने से पहले या खाने के बाद भी ले
2: सकते हैं
1: जी।
2: पत्ते वाली सब्जी
1: जो है, हाँ नहीं आप सीजनल सभी सब्जियां खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी उसमें मसाला एक्सेस नहीं डालो। धनिया पाउडर आप उसमें डाल सकते हैं और जीरा धनिया का और बेल का पाउडर आप किसी भी टाइम पे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक चम्मच पाउडर आप पानी के साथ ले लीजिए और आपको टोटल बॉडी के हेल्थ के लिए, क्योंकि बेल जो है डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा फल माना जाता है। तो कैसे भी डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, हाँ जी, और ताजा बेल भी आता है तो ताजा बेल भी आप खा सकते हो, उसमें चीनी नहीं डालो, ताजा बेल भी खा सकते हो, नहीं तो बेल का पाउडर आप ले लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। बेल का पाउडर सहज मिल जाएगा आपको, बेल फल का पाउडर मिल जाता है।
2: सब्जियां सब खा सकते हैं ना
1: जी? सब्जियां सभी आप खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं।
0: आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में। इस कार्यक्रम को आप सुनाए और काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं, काफ़ी अच्छी डिस्कशन हो रहे हैं और जैसे प्रोटीन की बातें चल रही तो माँ को कितना प्रोटीन खाना चाहिए इस विषय पर चल रही बातें।
1: तो ये क्या होता है ना, उस टाइम पे थोड़ा सा आराम ज़्यादा करना होता है, हम उस टाइम पे अचानक से क्या करते हैं ना, प्रोटीन वाली डाइट की इंक्रीजमेंट कर देते हैं, तो इसलिए मदर का जो हेल्थ जो है वो बिगड़ना शुरू होता है या तो बच्चे का वेट जो है बढ़ जाता है और बच्चे का वेट बढ़ने के साथ क्या होता है, फिर सीजेरियन ऑपरेशन करके निकालो तो माँ का हेल्थ भी उसके बाद जो है बाद में तो हमेशा के लिए डाउन हो जाता है। सबका अनुभव है कि एक बार ऑपरेशन होता है और सीजेरियन होकर अगर बच्चा निकालना पड़ता है और हम वहाँ पर ही गलतियाँ करते हैं। मतलब हमने मदर की हेल्थ को यहाँ पर लाइफ टाइम के लिए हमने उसके शरीर की ताकत को कम कर दिया। बच्चा जो हृष्ट पुष्ट पैदा हुआ था या थोड़ा सा अच्छा वेट से पैदा हुआ था, एक्स्ट्रा वेट से पैदा हुआ था, लेकिन वो शरीर में जो है माँ को जो बिना पचा हुआ जो चीज़ें इकट्ठा हुई थी वो शरीर में उसके शरीर में जाकर इकट्ठा हुई और उसको जो है शरीर में मतलब जो वो लेके आया है एक्स्ट्रा वेट अगर लेके आया है तो शरीर में जो है वो कचड़े को जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा शरीर में इकट्ठा करते हुए बाहर आया है एंड उसके चक्कर में माँ का हेल्थ तो बिगड़ गया, ऑपरेशन होने के बाद शरीर की ताकत कम हो गई और बच्चे का क्या होगा, वो एक्स्ट्रा जो कचड़ा जो जमा हुआ है या शरीर से जो बाहर आते टाइम पे जो मदर से जो टॉक्सिन्स उसके शरीर में जमा हुए हैं, नेचुरल तौर पर शरीर की जब लाइफ फोर्स एनर्जी अच्छी होती है तो उस टॉक्सिन्स को बाहर फेंकने कोशिश करते हैं, लेकिन हम वहां पर उसको जो है हम समझते हैं कि अरे
0: दवाइयां दे के फिर रोकते हैं।
1: मतलब हम यहां से साइकिल को जो है पहले दिन से उल्टे में चले जाते हैं।
0: हेलो
3: ओम शांति,
0: ओम शांति जी, जी बोलिए।
3: हाँ जी, मैं बापू भाई बोल रहा हूँ। मुझे बवासीर का प्रॉब्लम था। मॉर्निंग में जल्दी पेट क्लियर नहीं होता है तो किसी ने बोला है कि शाम को किशमिश पानी में भींगने के बाद में सवेरे उसको खाना है
1: जी।
3: और या तो सफेद तिल, तो उसको कितनी मात्रा में भींगने देना ये नहीं बताया
1: जी। आप तिल का तो इस्तेमाल नहीं करो, तिल हो सकता है गर्मी पैदा करे और आपको नुकसान कर दे
0: जी।
1: हाँ, ये पाइल्स की प्रॉब्लम के लिए बोले थे कि जो है किसी ने एडवाइस किया कि पेट साफ नहीं हो रहा है तो उसके लिए वो किशमिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे राइसिन आता है या किशमिश आता है, आप एक मुट्ठी भर के चाहे तो ले सकते हो, लेकिन आपको वेट का भी ध्यान रखना। वैसे उसमें फाइबर होता है, आप एक मुट्ठी भर के ले सकते हो, तिल लेकिन कभी कभी किसी को गर्म ही कर जाता है तो इसलिए तिल खाने की एडवाइस तो मैं अभी नहीं करूंगा। लेकिन आप राइसिन लेते हो या किशमिश लेते हो तो एक मुट्ठी भर के किशमिश भी ले सकते हो, मतलब मैक्सिमम एक मुट्ठी भर तक। बाकी जो है आप वैसे तो जो है 25 30 40 दाने तक भी आप आराम से जो है उसको पानी में भिगो के ले सकते हो। और पाइल्स की तकलीफ के लिए आप इसबगोल का इस्तेमाल तो करो, राइसिन का इस्तेमाल करना है तो वैसा करो, लेकिन और साथ में जहां पर गुद्दे में लोकल एरिया में जैसे स्वेलिंग आ जाती है या तो पाइल्स बाहर की तरफ निकल आता है तो फिटकरी के पानी से अगर हम गुद्दे को वॉश करते हैं तो एक एंटी इन्फेक्शन की तरह भी काम करता है। और तुरंत ही कोई सूजन होती है, लोकल एरिया का सूजन होता है तो उसको भी सिकोड़ के जो है अंदर से जैसे दबा देता है तो उसका भी कर सकते हैं। और जैसे पाइल्स के लिए हम जैसे अपना जो डाइट पे खास ध्यान दें पाइल्स के ऊपर, क्योंकि आंतों की गर्मी है, हमने जैसे आंतों की गर्मी से रिलेटेड जो भी बातें ऑलरेडी डिस्कशंस किए हुए हैं कि हमें शरीर को ठंडा करने वाला जैसे जूसेस साथ में थोड़ी सी लेनी चाहिए और पेट के ऊपर गीला नैपकिन का कपड़ा या तो मिट्टी का जो है लेप या तो शरीर के अंदर की गर्मी खत्म करेंगे तो पाइल्स की एरिया के सूजन भी खत्म होगी और उसमें हमें अच्छी मदद मिल जाती है।
0: आप सुना है रेडियो मधुबन 90.4 एफएम, काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं और जैसे कि हम लोग इन चीज़ों को डिस्कशन कर रहे थे प्रोटीन के बारे में, तो माँ को कितना प्रोटीन फिर लेना चाहिए?
1: तो जो है नॉर्मल खाना खाने के साथ जो है हमें उस टाइम पे जो है नेचुरल डाइट को बढ़ाना चाहिए।
0: अच्छा, नेचुरल डाइट को बढ़ाना।
1: हाँ, मतलब हमें जो है वहाँ पे जो है सब्जियों का जूस, सलाद की मात्रा, फ्रूट्स की मात्रा वो बढ़ानी चाहिए, ना कि हमें घी और प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी चाहिए। मतलब जैसे नॉर्मल खाते हैं तो नॉर्मल जैसे दालें खा रहे हैं, नॉर्मल चीज़ें खा रहे हैं तो वो खाएं, लेकिन उस प्रोटीन बढ़ने के साथ शरीर में एसिड बढ़ता है। तो इसलिए प्रोटीन जो है जब चलने फिरने का मूवमेंट्स नहीं होता तो प्रोटीन का डाइजेशन हमें शरीर के ऊपर भारी पड़ता है। तो इसलिए हमारे शरीर को अगर हेल्दी रखना, हमने जैसे बंदर का एग्जांपल देके बताया कि बंदर की जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी होती है ह्यूमन के साथ बराबर होती है। तो इसलिए हमें जो है जब भी हमें हेल्थ के ऊपर जाना है तो हमें अल्कालाइन प्रोटीन भी हम खा सकते हैं। जैसे हम प्रोटीन खाने से नॉर्मली क्या होता है ना, बॉडी में एसिड बढ़ता है, यूरिक एसिड बढ़ता है या तो फिर जो यूरिया बढ़ता है, लेकिन अल्कालाइन सोर्स ऑफ प्रोटीन भी है। अल्कालाइन सोर्स ऑफ प्रोटीन माना जैसे हम जैसे हरे मटर खाते हैं, मटर का सीजन है तो उससे भी हमें प्रोटीन मिलता है। अगर हम अंकुरित को खाते हैं तो अंकुरित भी जो होता है शरीर में अल्कालाइन फॉर्म में प्रोटीन होता है। अब मूंग का जो प्रोटीन है वो पचने में भारी होता है, अगर हम रजका के बीज का अगर हम अंकुरित करके खाते हैं तो उसमें शरीर में विटामिन्स मिनरल्स अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं लेकिन उसका प्रोटीन डाइजेशन करने में इजी पड़ता है। तो हम उसी तरह से जो है हम जैसे फूल मखाने आते हैं तो फूल मखाने में भी जो है एक अच्छी सोर्स ऑफ प्रोटीन है, लेकिन ये अल्कालाइन प्रोटीन है, मना शरीर में एसिड की मात्रा को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा, शरीर में जो है अल्कालाइन की मात्रा मना एसिड की मात्रा को कम करने में मदद करेगा। तो इसलिए हम अगर उस टाइम पे जो है अगर सलाद की अच्छी मात्रा में देते हैं, सब्जी का जूस एक दो बार देते हैं, सब्जी का सूप देते हैं, एक टाइम पे सीजन का फल देते हैं और बाद में रूटीन डाइट को मेंटेन करते हैं तो इससे जो होता है मदर की हेल्थ भी अच्छी रहेगी और बच्चे का जो है एक नेचुरल वेट पैदा होगा और बच्चा जो पैदा होगा उसके शरीर में टॉक्सिन्स की जमावट भी कम होगी और मदर को हो सकता है कि उसके लिए फिर जो है सिजेरियन ऑपरेशंस कराने की नौबत न आए, तो बच्चा और माँ के हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी हो सकती है।
0: सही बात है। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। चलिए, मुझे लगता है कि हम लोग का जो नेचुरल डाइट है उसे अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करें प्रेग्नेंट
1: जी किसी भी स्टेज जिंदगी का कोई भी स्टेज हो। अच्छा, जब कोई बीमार पड़ जाता है और ज़्यादा बीमार होता है तो उसको प्रोटीन खिला के बाहर लाते हैं या सब्जियाँ और फल खिला के प्रोटीन बंद करके बाहर लाते हैं? क्या होता है आप बताइए। आमतौर पर पता है ना, जब आदमी व्यक्ति विशेष बीमार हो जाता है या तो आईसीयू में एडमिट है, हॉस्पिटल में एडमिट, तो क्या करेंगे उसको जो है दाल समोसा पकोड़ा या तो जो है प्रोटीन वाली चीजें ज्यादा खिलाएंगे या उसको बंद करते हुए सहज पचने वाला सिंपल सा खाना खिलाएंगे, भाई थोड़ा सा तो सूप पी ले, थोड़ा सा जूस पी ले, थोड़ा सा फ्रूट खा ले। तो आम व्यक्ति सबको समझ में आ रहा है ना ये बात है, तो जो है तो हमें अगर हेल्दी बनने के लिए, अगर हमें बीमारी को ठीक करने के लिए अगर हमें सिंपल सा खाना खाना है तो जहां पर हम हेवी और गलत खाना खाते हैं तो वहीं पर तो बीमार पड़ते हैं ना। तो मैं हमेशा जो बात बोलता हूं कि अगर आईसीयू में जाने से अगर दवाई से व्यक्ति रिकवर होकर बाहर आता है, दवाई ज्यादा ताकतवर है या समोसा पकौड़ा बड़ा ज्यादा ताकतवर है? अगर आईसीयू में पेशेंट एडमिट है और उसको समोसा बड़ा पकौड़ा भी साथ में खिलाओ तो क्या पेशेंट बाहर आ जाएगा, आईसीयू से बाहर आ जाएगा?
0: जी जी।
1: तो इसका मतलब है कि दवाई अपना एक तरीके से रोल प्ले कर रहा है, लेकिन दवाई के ऊपर भारी कौन पड़ रहा है? भोजन भारी पड़ रहा है। अगर भोजन गलत है तो चाहे कितना भी इंटेंसिव मेडिकल केयर में रहे, वो पेशेंट उस केयर से बाहर नहीं आ सकता, उसका टिकट ऊपर कट जाएगा। तो इसका मतलब ये बात, छोटी सी बात अगर समझ जाए कि हमें जो राइट डाइट हो, मतलब सहज पचने वाला भोजन हो, और सहज पचने वाला भोजन में भी फूड कॉम्बिनेशन रूल की अगर हमें जानकारी नहीं है, उसके कारण हम जो भोजन करते हैं, हम आधा पचाते हैं आधा पेट में सड़ाते हैं। इसलिए एक सहज भाषा में बोला हुआ है कि हम आधा भोजन तो अपने लिए करते हैं और आधा भोजन जो हम डॉक्टरों के लिए करते हैं। तो इस बात को अगर समझ जाए श्रोताएं, तो इसलिए हमेशा हम ये बिल्कुल जरूरत नहीं है कि हमें जो एक्स्ट्रा प्रोटीन खाने से हम हेल्दी बनेंगे, बिल्कुल नहीं है। हमें जो है जो रूटीन में जितना हम प्रोटीन खाते हैं उतना ही हमारे लिए, हमको पचाने के लिए जो है हमारे पचा के बॉडी यूटिलाइज कर ले, वही सफिशियंट है। क्योंकि आज की डेट में आज मेहनत करने वाला काम जो है धीरे धीरे जो घटता जा रहा है, मतलब ना तो हम कुएं से पानी निकाल रहे हैं, ना तो कपड़े हाथों से धो रहे हैं, है ना, और चलने फिरने का तो नाम नहीं है, थोड़ी सी भी आगे पीछे जाना है तो गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब जो शरीर में जो पहले जो खेती में काम करते थे ये बहुत एक्सेस ये करते हैं, तो वो सारा घटता जा रहा है। तो हमें समय के बदलाव के साथ तो डाइट की भी बदलाव होनी चाहिए। लाइफस्टाइल किस तरह की है तो उसके साथ कितना प्रोटीन खाना चाहिए वो भी होना चाहिए, लेकिन प्रोटीन ज्यादा खाना चाहिए सोच के जो है हम अगर करते हैं तो फूड सहज पचने वाला भोजन हो, और उसके लिए सहज भी पचे कैसे, सहज पचने के लिए तो समझ में आया कि भारी खाना नहीं हो, मतलब ज्यादा प्रोटीन वाला खाना नहीं, लेकिन फिर भी फूड कॉम्बिनेशन रोल के बारे में जो जानकारी की अभाव होती है, हम अपना समझ से जो खाते हैं फिर भी हम उसमें से कई सारे खाना जो है 40-50% खाना पेट में सड़ा देते हैं। अगर ये सड़ने से अगर हम बचा ले, हम अपने आप को अगर रोक ले, तो आज की चाहे वातावरण में कितनी भी पॉल्यूशन से कितनी भी प्रॉब्लम है, फिर भी व्यक्ति अपनी जो है अंतिम जिंदगी तक जो भी है 70-80 साल 90 साल भी अगर जीता है तो बिना दवाई के डिपेंडेंसी पे जी सकता है
0: जी,
1: अगर नेचुरोपैथी को अगर वो थोड़े समझता है, थोड़ी जानकारी रखता है, शरीर में प्रॉब्लम आती है तो एक दो दिन का बीच बीच में उपवास करता है, है ना, अगर अपने आप को नेचुरोपैथी तरीके से अपने आप को हीलिंग करता है, शरीर की जो लाइफ फोर्स एनर्जी जो ऊर्जा है उसको दोबारा अगर कमजोर पड़ते तो दोबारा रीगेन कर लेता है, तो रीगेन करने का तरीका क्या है, जो आकाश तत्व तो मिलता है शरीर की, जो अंदर की एनर्जी मिलती है सबसे ज्यादा किस टाइम पे मिलती है, उपवास करने से मिलती है, ना कि हाई प्रोटीन डाइट खाने से मिलती है उस टाइम पे।
0: चलिए, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दिया, आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर बातें करते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। जी हाँ, आपके स्वास्थ्य आपके हाथ में इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। नरेश अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, जिनसे बातें हो रही हैं और काफ़ी अच्छी बातें हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और आप लोगों को भी अच्छी बातें मिल रही हैं और आप लोगों का जो सवाल है उसके जवाब में हम लोग कुछ बातें डाइट और फिर मेडिसिन के बारे में बता रहे हैं। तो अब जैसे कि हम लोग डिस्कशन कर ही रहे थे प्रोटीन के बारे में और नेचुरल प्रोटीन जो है रेगुलर खाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रोटीन चाहिए बॉडी के लिए इसलिए ज़्यादा खाएं और फिर वो पचने में ना जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इसीलिए हमें देखना है कि वो पचने में भी जाए उतना ही प्रोटीन आप रेगुलर ले सकते हैं। तो अब मैं पूछना चाहूँगा कि रेगुलर हमारा जो है नेचुरल प्रोटीन किस में मिल सकता है, अल्कलाइन प्रोटीन जिसको कह सकते हैं हम लोग, वो चीज़ें किस किस चीज़ों में मिलता है और कितना क्वान्टिटी में हमें खाना चाहिए।
1: तो जैसे ओवरऑल

0: जैसे मेडिकल साइंस जैसे रिकमेंड करता है कि आपके शरीर का जितना वजन है उतने ग्राम प्रोटीन आप जो है पर डे जो करीब करीब उतने ग्राम के प्रोटीन आप ले सकते हो, लेकिन नेचुरोपैथी में हम उससे थोड़ा सा कम रिकमेंडेशंस करते हैं। अगर मान लो कि किसी का 70 किलो का व्यक्ति है तो जैसे 70 ग्राम तक प्रोटीन ले बोल के रिकमेंड करते हैं, तो हम नेचुरोपैथी में करीब जो है हम जो है 45-50 ग्राम प्रोटीन को भी सफिशियंट मानते हैं, क्योंकि आज की डेट की जो लाइफ स्टाइल है, आज की डेट का जो मॉडिफिकेशन हमने जैसे बताया तो उसके हिसाब से देखें तो जैसे यंग एज होता है जैसे बच्चे ग्रो कर रहे हैं 18 साल तक हमारी शरीर बढ़ रही है, लेकिन बाद में भी हमारे जो सेल जब डिकम्पोज होता है जैसे सेल की लाइफ होती है तो उसका जो प्रोटीन होता है बॉडी उसको फेंक नहीं देता है, उसको रीयूटिलाइज करता है।
1: अच्छा अच्छा।
0: तो 18 साल के बाद जैसे 20 साल के बाद फिर बोलेंगे बॉडी की ग्रोथ तो नहीं हो रही है, तो उसको फिर 18 साल तक बच्चे को जितना प्रोटीन चाहिए 20 साल के बाद या ओल्ड एज में भी उतना ही प्रोटीन चाहिए क्या?
1: नहीं चाहिए।
0: मतलब एक जो कॉमन भाषा में हम बोल देते कि शरीर को वेट के हिसाब से इतना प्रोटीन खाओ, लेकिन उसके लाइफस्टाइल के बारे में हमने ना तो डिस्कशंस किया ना तो उसकी उम्र को डिस्कशंस किया, और हमने बोला कि इतना ग्राम ऑफ प्रोटीन खाओ। तो वो सबके हिसाब से अगर देखते हैं तो हमें जो है एवरेज प्रोटीन्स जो जो जैसे हमने बताया तो 1 ग्राम से लेके आधी ग्राम तक की प्रोटीन्स की हो सकती है। जैसे हमने बताया कि कई मेडिकल कंडीशंस होते हैं जहां पर कि प्रोटीन की इंटेक को करीब करीब मतलब जैसे बंद कर दे, जैसे किडनी की प्रॉब्लम्स है, स्किन डिजीजेस है, या तो फिर जैसे यूरिया यूरिक एसिड बढ़े हुए हैं, तो प्रोटीन की इंटेक उस टाइम पे जो होता है आधे ग्राम से भी कम कर देते हैं, मतलब मेडिकल एडवाइस पे भी कम कर दिया जाता है। तो वैसे व्यक्ति भी सालों तक जो है रहते हैं ऐसा कोई, लेकिन प्रोटीन कम कर दिया इसलिए उनकी लाइफ अच्छी रहती है। मतलब बोलने का भाव है ऐसा नहीं कि हम जो एक्स्ट्रा प्रोटीन खाएंगे तो ही हेल्दी रहेंगे, कई टाइम पे ये क्या होते हैं हमें वो प्रॉब्लम्स कर देती है। तो इसके लिए ऐसा नहीं समझा कि मेडिकल कंडीशंस में जो प्रोटीन को कम कराया जाता है और वहां पर भी जो है आदमी कम करने के कारण ज्यादा स्वस्थ रहते हुए ज्यादा दिन तक जी पाता है, तो इसलिए हमें जो है हमारी उम्र और हमारे काम करने के चीजों के साथ देखते हुए अगर हम उतना जो है हम जितना जरूरत है, मतलब मेरा बोलने का भाव है कि आप अधिक खाने से प्रोटीन खाने से हेल्दी रहेंगे ये सोच को चेंज करने की जरूरत है।
1: जी जी जी।
0: जो हमें डाइट में रूटीन में हमें जैसे डाइट में आ रही है अब छिलके वाली मूंग की दाल खाएंगे और बिना छिलके वाली मूंग की दाल खाएंगे इसमें फर्क रहेगा नहीं रहेगा?
1: रहेगा।
0: तो उसमें छिलके वाली मूंग की दाल में फाइबर है, अब प्रोटीन के साथ फाइबर भी तो जानी चाहिए नहीं जानी चाहिए? अब हम जो है छिलके छिलका हटा के फिर जैसे पॉलिश्ड खा रहे हैं जैसे बोलते हैं ना, तो मतलब तो वहां पर समझने की जरूरत है कि हाँ छिलके के साथ खाएंगे तो शरीर में जो है मतलब हमें फाइबर की इंटेक उतनी जानी ही चाहिए।
1: सही बात है,
0: ठीक है ना। तो इसके बदले में जो है फिर जो है नॉन वेज की बात आ जाती है तो नॉन वेज प्रोटीन का सोर्स जो हम बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, जबकि वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन डेफिनेटली अच्छा है।
1: हाँ, हाँ,
0: ठीक
1: हाँ।
0: है ना। तो जो नॉन वेज को ज्यादा सोर्स समझते हैं तो हम उसके लिए करेंगे कि वो शरीर में जो है किडनी एंड दूसरे प्रॉब्लम पे जो हमारे वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो इसलिए वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन ही हो, नॉन वेज वाला प्रोटीन्स जो है बिल्कुल रिकमेंडेशंस नहीं है। और जो वेजिटेरियन प्रोटीन्स में भी जैसे मैंने बताया कि अल्कलाइन को बढ़ाने वाला प्रोटीन्स हो या तो प्रोटीन को पचाने के लिए और सिस्टम को मेंटेन करने के लिए साथ में जो है जैसे कि हमें जो है फाइबर खाना चाहिए, जैसे कि अभी रमजान का महीना चल रहा है तो मुस्लिम लोग 1 महीना पूरा फास्टिंग करते हैं, तो वो जो उनके धर्म में इसको इस तरह से जोड़ दिया कि साल में दो राउंड ऐसे आते हैं तो इतना नॉनवेज खाते हैं तो बीच में ही 1-1 महीने के जो उपवास कर लेते हैं और उसमें जो है ओनली फ्रूट्स और सब्जियां खाते हैं तो उनके शरीर में जो 6 महीने में जो नॉनवेज खाने के कारण जो शरीर में प्रॉब्लम है विकृति पैदा होती है वो ये 1 महीने में सॉल्व हो जाती है। अगर ये रमजान का इश्यूज अगर नहीं होता तो उनके तबियत में जो है डेफिनेटली जो है अगर नॉन वेज की अगर खाने की आदत ज्यादा रही होती और उसकी ना करते तो उनके शरीर में जो है बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते। तो बोलने का भाव है जब उनको 1-1 महीने के उसको धर्म के साथ जोड़ दिया, जैसे हमारे हिंदू धर्म में भी क्या क्या उपवास को एकादशी को दूसरी तरीके से जोड़ दिया है तो हमने क्या किया, हमने उसको छोड़ दिया है। और हम अगर तो मुस्लिम लोग तो चलो रमजान करने के बहाने में चलो तो उस टाइम पे तो नॉनवेज छोड़ देते हैं, लेकिन हम अगर कोई खा रहा है और खाने के बाद साल भर ही खा रहा है तो फिर उसका क्या होगा? और उसमें भी उसने उपवास की जो मतलब बोलने का भाव है,
1: करेंगे तो ठीक है नहीं करेंगे तो फिर
0: इसलिए जो है हेल्दी रहना है। तो अगर आप अगर उस एग्जांपल से अगर समझ गए कि मुस्लिम में भी अगर नॉनवेज की यूज थोड़ी सी ज्यादा होती है अगर ऐसा हम समझें तो उसके कंपेरिजन में भी उनको 2 महीना साल में 2 महीना बिल्कुल जो नॉनवेज छोड़ के फ्रूट एंड सब्जियां दूसरी चीजों पर वेजिटेरियन डाइट पे कंप्लीटली रहते हैं। तो इसलिए उसकी विकृति खत्म हो जाती है, मेरा बोलने का भाव है, तो हम उस विकृति को पैदा ही क्यों करें। और बीच बीच में जैसे इससे प्रेरणा से रमजान से भी प्रेरणा ले सकते हैं कि जो हिंदू संस्कृति में जो उपवास में बीच बीच में जैसे बोलते हैं कि मेडिकल में कि हफ्ते में एक दिन उपवास करो तो अपने आप में बहुत ही अच्छा है।
1: चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया, धन्यवाद, शुक्रिया आपका इस एपिसोड में जुड़ने के लिए और बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी, थैंक यू सो मच।
0: ओम शांति। नमस्कार।
1: नमस्कार। चलिए साथियों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले संडे इसी तरह कुछ नई बातें लेकर, तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा और फिर से एक बार सभी

0: अरावली की वादियों से आप सुनने जा रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम। आपकी अपनी उषा के साथ वंदे मातरम सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको ऐसी नारी शक्ति से मिलवाने जा रही हूँ जिनका नाम है सुंदर वैष्णवी, और आप आबू रोड में कालिका पेट्रोलिंग यूनिट में आप पुलिस के पद पर कार्यरत है। आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और पढ़ाई में काफ़ी होशियार रहे हैं, व्यावहारिक है, सभी के साथ बहुत ही प्रेम से रहते हैं, और भी आपके अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं जो हम आपके द्वारा ही जानेंगे। तो सुंदर जी, आपका स्वागत है वंदे मातरम कार्यक्रम में।
1: थैंक यू। मेरा नाम सुंदर विष्णोई है, मेरे पिताजी का नाम गंगाराम जी विष्णोई है। मैं जालौर जिले में सांचौर तहसील में सांकड़ गांव की रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी टीचर है। मेरे पिताजी के हम तीन संतान हैं जिसमें मैं सबसे छोटी हूँ। मेरे से एक बड़ी बहन है और एक मेरा भाई है। मैंने 10th क्लास तक मेरे गांव सांकड़ में ही पढ़ाई की थी और 11th 12th में मेरे गांव में सीनियर स्कूल नहीं होने की वजह से मैंने रानीवाड़ा में पढ़ाई की थी, जो मेरे गांव से 20 किलोमीटर दूर था। 2005 में मैंने 12th क्लास पास की थी। उसके बाद में मैंने कॉलेज सांचौर से की थी। हमारे सांचौर में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं थी, प्राइवेट कॉलेज से ही मैंने फॉर्म अप्लाई किया था।
0: जी सुंदर जी, आपकी ये बातें बात की तो हम जरूर सुनेंगे। हम थोड़े बचपन की तरफ आपको ले चलते हैं
1: जी।
0: आप भाई बहन कैसे रहते थे?
1: मैं सबसे छोटी थी मेरे पिताजी के
0: जी,
1: और मेरा भाई मेरे से 15 साल बड़े थे। तो मेरा भाई ज़्यादातर बाहर ही पढ़ाई की थी, 10th तक मेरे साथ में रहे थे, तब मैं छोटी थी। मेरी सिस्टर है जो मेरे साथ में रहती थी, मुझे स्कूल भेजती थी।
0: आपके सिस्टर भी बड़े, आप सबसे छोटे रहे?
1: हाँ, मैं सबसे छोटी
0: हूँ। क्या बात है, सभी का प्यार आपने लूटा
1: जी। मेरे भैया ने कॉलेज जालौर से की थी तो वो बाहर ही रहते थे, जब छुट्टियां होती थी तब घर पे आते थे, तो मेरे लिए कुछ छोटी छोटी गिफ्टें लेके आते थे।
0: अरे वाह।
1: ऐसे मुझे जैसे चित्रकला में मेरे लिए ड्राइंग बनाते थे मेरे भैया, उसमें फिर स्कूल में चेक करवाती तो मुझे उसमें वेरी गुड मिलता था। उससे मुझे
0: तो स्कूल में पूछते नहीं कि किसने बनाया ये चित्र?
1: नहीं पूछते थे, पर उनसे सारी लड़कियां मैं बनाती तो फिर उनसे वापस उसी चित्र को बनाती। एक मेरे भैया, मुझे याद है, एक घोड़े का फोटो बनाया था मेरे भैया ने चित्रकला में।
0: अच्छा।
1: तो वो खूब सारी लड़कियों ने उसका उसको देख के सभी ने अपने बुक में वही फोटो बनाया था।
0: हाँ जी
1: जी।
0: और सबको अच्छा लगा?
1: सबको अच्छा लगा था वो।
0: अच्छा। और आपको किस तरह की हेल्प मिलती थी, और टीचर को कभी पता चला कि आप तो सब कुछ अपने भैया से करवाते हैं?
1: नहीं, ऐसा कोई पता नहीं चला। कभी अच्छा। कभार भैया आता था, एक आध बार ऐसे किया था, बाकी उससे मुझे सीख मिली किस तरह से करना काम, किस तरह से पढ़ाई करनी। अभी मेरे भैया जो 96 में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे उनको पोस्टिंग मिली थी।
0: अच्छा।
1: पहले मेरे भैया टीचर थे, जो टीचर की नौकरी छोड़ के उसमें सेलेक्ट हुए सब इंस्पेक्टर में।
0: अच्छा।
1: जो अभी DYSP की पोस्ट पे है डिस्ट्रिक्ट भीलवाड़ा में मांडलगढ़।
0: अच्छा जी जी जी, बहुत बढ़िया। तो आपके परिवार में सभी जॉब करते, भाई बहन आप सभी?
1: मेरे पापा टीचर थे जो रिटायरमेंट हो गए, मैं और मेरे भैया जॉब करते, बाकी बड़ी सिस्टर है जो वाइफ हाउस है।
0: अच्छा, हाउस वाइफ है। जी जी जी, चलिए बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि आपके पापा जॉब करते थे इसलिए उन्होंने आपको मोटिवेट किया
1: जी।

0: जी
1: 2005 में कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई थी उसमें मुझे मेरे भैया ने मार्गदर्शन दिया कि आप भी फॉर्म अप्लाई कर दो, तो मैंने भी फॉर्म अप्लाई किया और उसमें एग्ज़ाम दिया तो रिटर्न में मैं सेलेक्ट हो गई थी। उसके बाद में पुलिस में फिजिकल भी होता है
0: जी,
1: जिसमें दौड़ वगैरह है, गोला फेंकना है, हाइट वेट सारा
0: जी,
1: उसमें
0: जी,
1: वो चेक करते हैं, तो उसमें भी मैं फिजिकल में भी पास हो गई थी। फिर मेरा इसमें
0: आपके आपके सर्विस का सफर का तो हम जरूर जानेंगे। आपके बचपन की बातें चल रही, तो आपको और क्या क्या शौक रहा? कभी आप गाना गाना डांस करना स्कूल में करते थे?
1: जी हाँ, स्कूल में डांस करते थे, सिंगल नृत्य भी मैं करती थी और जैसे गरबा होता तो गरबा भी खेलती थी।
0: अच्छा
1: जी,
0: और पढ़ाई में होशियार थे?
1: हाँ, पढ़ाई में मैं होशियार थी।
0: घर में आप मम्मी को किसी तरह हेल्प करते थे किचन में?
1: हाँ, घर पे मैं झाड़ू निकालना, बर्तन धोना, पानी भरना, खाना बनाना पूरा काम करती थी। हमारे घर पे गाय भैंस भी रखते थे, तो गाय भैंस को भी चारा डालना, उनको पानी पिलाना, खेत में चराना, मैं पढ़ाई भी करती थी और खेत में गायों को भैंसों को उनको भी वो पास में खड़ी रह के चराती थी।
0: मतलब आपने हर प्रकार का कार्य किया हुआ है। छोटे गांव से आप
1: जी
0: निकले हैं।
1: और कभी जैसे ट्यूबवेल वगैरह नहीं होता तो पानी भी हमारे दूर से मटके सिर पे ऊंचा के
0: वो भी आप उठा करके लेके आए। क्या बात है, आज आप पुलिस में कार्यरत है लेकिन आपने सारा स्ट्रगल किया है, सारे कार्य किए हैं। लोग अक्सर कहते हैं ना, अरे तुम तो महिला हो, तुम्हें तो चौका चूल्हा ही संभालना है, क्या करोगी जॉब करके, लेकिन आपने साबित कर दिया कि चौका चूल्हा तो संभालना ही है, सभी को संभालना है, लेकिन इसके साथ हम बहुत कुछ कर सकते हैं, समाज की और देश की सेवा कर सकते हैं जो आप कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है सुंदर जी, आपके अनुभव और भी सुनेंगे लेकिन यहाँ पर समय हो चला है एक गीत सुनने का, तो ये गीत सुनकर के पुनः लौट रहे हैं। वंदे मातरम कार्यक्रम सीधा प्रसारण है, आप जुड़ सकते हैं और सुंदर जी से अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। तो आइए सुन लेते हैं एक गीत, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: बहू बहू जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
1: जी आई माँ जी।
0: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
1: जी माँ जी आ गई, चलिए।
0: नमस्ते डॉक्टरनी जी।
2: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
0: डॉक्टरनी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
2: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
0: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए। अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
2: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
1: जी वो
0: अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
2: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
3: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।
4: माँ बन के ममता लुटावे, बहिन बन प्रेम निभावे, पत्नी बन जीवन सजावे, बेटी बन खुशियाँ लावे। इतना रूप समाया जिसमें, इतना रूप समाया जिसमें, वो नारी महान तुम्हारा गुण गावे, तुम्हारा गुण गावे सारा जग, आपका ऊंचा मान, आपका ऊंचा मान। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में पुनः आप सभी का स्वागत है। सुंदर जी हमारे साथ बने हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप पुलिस विभाग से बिलोंग करते हैं और देखे समाज की सेवा के साथ साथ आज रेडियो मधुबन के स्टूडियो में भी पहुंच चुके हैं और अपने सुंदर से अनुभव आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं। तो आप ज़रूर जुड़िएगा, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं खुल करके, ठीक है। क्या है कि सुंदर जी अक्सर लोग पुलिस से दूर भागते हैं, वो डरते हैं कि अरे पुलिस है, चलो हटो यहाँ से। भले गुनाह नहीं किया होता है लेकिन एक छाप ऐसी होती है कि डर लगता है। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं, हमारी बहन है बहुत ही सॉफ्ट नेचर के है और बहुत ही मिलनसार है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं। आप जुड़ सकते हैं, नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415। और सुंदर जी आपके बचपन की बातें चल रही थी, इस तरह बचपन आपका बहुत अच्छा बीता, पढ़ाई में भी आप अव्वल रहे, तो पढ़ाई के साथ साथ अब आप अपने सफर के बारे में बताइए कि किस तरह आपको ये प्रेरणा आई कि मुझे इस डिपार्टमेंट में जाना है, पुलिस डिपार्टमेंट में।
5: हाँ मुझे
4: जी
5: मुझे मेरे भाई से भी मार्गदर्शन मिला है कि आप, मैं भी एक पुलिस में हूँ, अच्छी जॉब है, आप भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आजकल महिलाएं कहीं पीछे नहीं है, हर डिपार्टमेंट में महिला पुरुष के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर भाग ले रही है, तो आप भी एक जनता में पुलिस की सेवा दे सकते हैं।
4: जी तो फिर आपका विचार हुआ कि हाँ मुझे कुछ करना चाहिए जी। तो आपको जब पढ़ाई करते थे तो पढ़ाई के साथ साथ कभी आपको ऐसा लगता था कि मुझे कुछ हटके करना है?
5: नहीं, पहले तो मुझे यूं लगता था कि मैं एक लड़की हूँ, मैं क्या जॉब करूँगी। जैसे लड़के होंगे तो वो जॉब करेंगे, महिला तो घर में ही रहती है।
4: तो आपके आसपास माहौल ऐसा था, इस तरह के आपके अंदर विचार आते थे?
5: जैसे लड़कियां कम ही पढ़ती थी, जैसे मैंने 11 12th रानीवाड़ा से की थी, तो हमारे गांव से रानीवाड़ा में मतलब 10th तक की लड़कियां स्कूल में पढ़ के पढ़ाई छोड़ देती थी, क्योंकि बाहर भेजने में परिवार वाले भी घबराते थे। तो मेरे साथ में और 4-5 लड़कियां थी, हम 4-5 लड़कियां सुबह जाते और वापस अप डाउन करते थे उस टाइम आना जाना। तो लोग भी यूं कहते इनकी लड़कियां बाहर पढ़ती है, यूं है। तो भी घर वालों को हमने यही कहा कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, एक दिन आपका नाम रोशन करेंगे।
4: आपका भाई का सपोर्ट था, आपके माता पिता का भी था सपोर्ट?
5: जी, मेरे मम्मी पापा का भी मेरे पे बहुत सपोर्ट था, और भी मेरे परिवारजन में मेरे जैसे मेरे मामा जी का लड़का भी अभी SP है, उनका भी सपोर्ट था कि मेरे मम्मी को बोलते थे कि बुआ जी आप सुंदर को तो आपको जॉब लगाना ही पड़ेगा, ये पढ़ाई कर रही है, तो उनका भी सपोर्ट था, पूरे परिवार का सपोर्ट था मेरे साथ।
4: जी जी, तो इस तरह आपने ग्रेजुएशन किया।
5: जी,
4: ग्रेजुएशन के बाद आपने कंपटीशन फाइट किया।
5: जी,
4: तो इस डिपार्टमेंट में आने के लिए कौन सा कंपटीशन फाइट करना होता है?
5: ये तो पुलिस का ही होता है।
4: जी
5: जी,
4: अच्छा,
5: पुलिस का अपन फॉर्म अप्लाई करते हैं, फिर इसमें रिटर्न पास करना होता है पुलिस के फॉर्म में, तो वही मैंने दर्पण गाइड लाके पढ़ाई की थी, उससे फिर मुझे सफलता मिली।
4: जी जी, इसमें हाइट हेल्थ सब देखी जाती है?
5: हाइट हेल्थ वेट सारा देखा जाता है, लॉन्ग जंप होता है, उसमें दौड़ होती है, हमारे टाइम में 5 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ होती थी, और अभी है जो 35 मिनट में, लड़कियों के लिए 35 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ होती है।
4: अच्छा, अगर 35 किलोमीटर में आप 5 किलोमीटर दौड़ नहीं की तो आप आउट?
5: आउट।
4: अच्छा
5: जी,
4: तो हो जाती है लड़कियां कर लेती?
5: हाँ, करती है, आती है, बहुत सारी लड़कियां आई है।
4: अच्छा, जी, तो आपने भी इस तरह?
5: हाँ, जब हम 2006 में भर्ती हुए थे उस टाइम हमारे टाइम में 5 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ करना अनिवार्य था।
4: अच्छा
5: जी,
4: तो उसके लिए आपने पहले प्रैक्टिस किया, डायरेक्ट आप मैदान में उतर गए?
5: नहीं, मैंने प्रैक्टिस की थी, मेरा घर जो रोड है उस पे ही था, तो मैं सुबह जल्दी उठ के रोड पे दौड़ करती थी, प्रैक्टिस करती थी, गोला फेंकती थी, लॉन्ग जंप भी करती थी, तो ये सारा पहले प्रैक्टिस करना पड़ता था।
4: जी, तो आपके मतलब अड़ोस पड़ोस है, आपके घर वाले, ऐसा तो नहीं लगता कि अरे ये सुबह उठ करके क्या कर रही है, पता नहीं?
5: हाँ, उनको पता था, मेरे जैसे चाचा के घर पे उनको, परिवार वालों को तो सबको पता था, लेकिन जैसे रोड पे दौड़ते तो गाड़ियां वाड़ियां निकलती, तो वो भी सोचते थे कि ये लड़की ऐसे क्यों दौड़ रही है। जी
4: जी जी, और जैसे कि आपने बताया कि 4-5 लड़कियां आपके साथ में पढ़ाई करती थी और आप सभी अप डाउन करते थे, तो जो आपकी फ्रेंड्स थी 4-5, वो भी कुछ, उन्होंने भी कुछ किया या फिर वो हाउसवाइफ?
5: हाँ, किया, कई मेरे साथ पुलिस में भी है और कई नर्सिंग में है, किसी के प्राइवेट जॉब है, सब अपने पैरों पे खड़ी हुई है।
4: अच्छा, बहुत बढ़िया, जिन्होंने पढ़ाई की
5: जी
4: वो आत्मनिर्भर बने।
5: आत्मनिर्भर बने
4: जी जी, तो आपके मम्मी हाउसवाइफ थे या कुछ काम?
5: नहीं, मेरे मम्मी हाउसवाइफ ही है।
4: फिर भी वो मोटिवेट करते थे आपको?
5: मोटिवेट करते थे।
4: और इतना घर का आप काम करते थे, तो घर के काम के साथ साथ आप कैसे समय निकाल पाते हैं?
5: देखो, काम जैसे सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करना, फिर जैसे मम्मी उठ जाती थी तो मम्मी के साथ में जैसे गाय भैंसों का, मम्मी दूध निकालने जाती तो उनकी हेल्प करती थी मैं, और घर पे जैसे चाय बनाना, दूध गर्म करना, खाना बनाना, झाड़ू वगैरह सारा निकालने के लिए मैं पूरा मम्मी का हेल्प करती थी।
4: जी जी, जी। चलिए, वो कहते हैं ना कि पढ़ाई में वो ही होशियार होते जो ऑलराउंडर हो।
5: जी, और जो भी कार्य मिले करो। खेती बाड़ी भी करते थे तो उसमें भी पानी पिलाना करना, जैसे गेहूं काटना है, बाजरी काटनी है, उसको वापस तोड़ना करना, वो भी उसमें भी मैं हाथ बंटाती थी।
4: अच्छा
5: जी,
4: मतलब खेती का अनुभव आपको बहुत ही गहरा है।
5: बिल्कुल,
4: और गाय भैंस दोहना ये भी आपका अनुभव है।
5: जी,
4: और अभी आप इस लाइन में है।
5: जी,
4: तो जैसे आपने कंपटीशन फाइट किया, उसमें भी टफ कंपटीशन रहा होगा, बहुत सारे विद्यार्थी बैठे होंगे, उसमें से चयन होना?
5: जी, बहुत सारे बैठे, उसमें मेरिट रहती है, जैसे 100 नंबर का पेपर होता है तो उसमें से इतने मार्क्स आने जरूरी होते हैं।
4: जी, जी जी, और वापिस उसमें से भी जैसे जनरल वाले तो कट जाते हैं, एक लिमिटेशन होती ना।
5: जी,
4: तो आपका नंबर मतलब?
5: हाँ,
4: रैंक कौन सा बना आपका फिर?
5: नहीं, मेरा रैंक तो 75 पे बना था।
4: अच्छा
5: जी
4: जी, जी जी जी, और बहुत सारे बच्चे बैठे
5: होंगे। बहुत सारे बच्चे बैठे थे।
4: तो जब आप क्लियर हुए तब आपको एक लग गया कि बस अब मुझे सर्विस करने से कोई नहीं रोक सकता?
5: जी, अभी मुझे कोई नहीं रोक सकता।
4: तो जैसे ही आपका रिजल्ट आया होगा तो आपके घर में किस तरह का उस समय माहौल रहा होगा?
5: नहीं, बहुत अच्छा लगा उस टाइम, जैसे वो अभी तो फोन पे भी लिंक में आ जाता है कि अभी रिजल्ट घोषित होने वाला है सारा, उस टाइम हमारे घर पे लैंड लाइन था, तो मेरे भैया ने फोन किया था, तो मेरे पापा ने फोन पे बात की तो बोले सुंदर सिलेक्ट हो गई है पुलिस में, तो बहुत खुशी हुई घर वालों ने, पापा ने भी मुंह मीठा कराया, मिठाई मंगवाई घर पे, और बहुत सब बहुत खुश हुए थे।
4: जी जी जी, उसके बाद आपने ये सारे जो प्रोसेस है वो पूरे किया, जैसे कि आप बता रहे थे कि लॉन्ग जंप ये सब, और फिर आप फिजिकल टेस्ट में भी आप पास हो गए।
5: फिजिकल टेस्ट में भी पास हो गए, फिर इंटरव्यू भी होता है, इंटरव्यू भी हो गया, उस सब फाइट कर दिए थे फिर।
4: अच्छा, इंटरव्यू में भी आप सेलेक्ट हो गए। तो फिर आपने जॉब कब की?
5: जॉब 2006 में, अप्रैल 30 अप्रैल 2006 को हमने पुलिस लाइन सिरोही में आमद करवाई थी।
4: क्या बात है, अप्रैल महीना ही चल रहा है
5: जी, हाँ,
4: अभी आने ही वाला है, मार्च खत्म होने वाला है, तो आपका तो बर्थडे आ रहा है,
5: बर्थडे आ रहा है, और
4: सर्विस का
5: 30 अप्रैल को मुझे 20 इयर्स पूरे हो जाएंगे सेवा देते हुए।
4: 20 इयर्स पूरे हो जाएंगे,
5: कम्प्लीट हो जाएंगे।
4: क्या बात है, तो अभी एज आपकी क्या होगी?
5: मेरी 38। मैं 18 साल की थी तब मेरी जॉब लग गई थी, 18.5 साल में।
4: तो आप तो उस समय सबसे कम एज वाले रहे होंगे।
5: हाँ जी, हाँ जी,
4: तो सभी को घर महसूस हुआ होगा कि देखो हाँ, इतनी कम एज में आप इस डिपार्टमेंट
5: में। मेरे गांव में मैं पुलिस में, मैं ही एक फर्स्ट लड़की थी जो पुलिस डिपार्टमेंट में एक पद पे तैनात
4: जी, तो गांव वालों ने तो आपका जमकर स्वागत भी किया होगा।
5: जी, बिल्कुल,
4: क्योंकि गाँव के लोग तो बहुत इमोशनल होते हैं
5: जी,
4: और जब इस तरह गाँव की बेटी जब पुलिस विभाग में जाती है तो घर में तो महसूस होता ही है। तो इस तरह आपने जॉब शुरू की
5: जी।
4: फिर आपके कितने समय बाद शादी हुई?
5: मेरी देखो सगाई तो पहले हो चुकी थी, हमारे बाल विवाह होता था।
4: अच्छा, हाँ, तो आपके बाल विवाह कितने साल के थे और आपके एंगेजमेंट हो गई?
5: मैं 10-12 साल की थी तब मेरी सगाई हो गई थी।
4: अच्छा।
5: मेरी सिस्टर बड़ी थी तो उनके साथ साथ में हमारा भी ब्याह करवा दिया था।
4: ऐसा बहुत होता है राजस्थान में जी। तो फिर जिनके साथ सगाई हुई उन्हीं के साथ आपकी शादी हुई?
5: हाँ जी, उन्हीं के साथ शादी हुई।
4: अच्छा, तो वो क्या, आपके हस्बैंड क्या?
5: मेरे हस्बैंड के प्राइवेट जॉब है, जो मेरे साथ में ही रहते हैं इधर ही है अभी।
4: अच्छा, आप में।
5: और मेरा ससुराल मेरे गांव में ही है
4: जी।
5: जी, और फिफ्थ तक तो हम साथ में ही पढ़े थे, गांव में एक ही स्कूल होती थी बड़ी
4: जी,
5: तो वो भी स्कूल आते थे और मैं भी जाती थी।
4: तो जब आपको ऐसे जॉब लग गई और ससुराल वालों को भी पता चला होगा कि हमारे बहू को जॉब लग गई, तो उनको फिर क्या ऐसा तो नहीं लगा कि अब पता नहीं है सगाई रखेंगे या नहीं रखेंगे?
5: नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, हुआ तो भी वो अभी तो हमें नहीं बताएंगे। अच्छा लगा था उनको भी कि भाई चलो अपने पैरों पे खड़ी हो गई बहू।
4: जी जी जी, और पहले तो क्या है, जो वचन दे दिया वो दे दिया, जबान की वैल्यू रहती थी। तो आपको ऐसा तो नहीं लगा कि अरे मेरे हस्बैंड तो अभी जॉब लगे नहीं और मेरी जॉब लग गई, आपको अंदर से?
5: नहीं, मुझे ऐसा तो कुछ नहीं लगा था, पर यूं लगा था कि भाई इनकी भी गवर्नमेंट जॉब होती तो अच्छा रहता, लेकिन देखो अपने नसीब की बात होती है, क्या पता मेरे पति के लिए ही मेरी जॉब लगी हो उनके नसीब से।
4: पॉजिटिव भी हम ले सकते हैं। जी जी जी, तो इस तरह आपने बहुत ही अच्छा सकारात्मक तरीके से सोचा है, तो बहुत बढ़िया। तो जैसे कि आप 18-18 की एज में आप जॉब लग गए, और कहते ना कि देखिए पुलिस डिपार्टमेंट हो चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, पुरुषों के साथ काम करना इसका मतलब लड़कियों के लिए थोड़ा चैलेंजेस रहता है। तो आपके साथ भी ऐसा चैलेंज रहा कि कभी किसी ने आपको गलत नजर से भी देखा हो, कभी आपको कुछ गलत बात भी कही हो?
5: पुलिस में आने के बाद पुलिस अपना एक परिवार हो जाता है, पुरुष और महिला हम हमारे जैसे सेवा देते हुए रात को भी कहीं ऐसे घटना हो जाए तो रात को भी बाहर निकलना पड़ता है। हम महिला अकेली है और जेंट्स के साथ में भी जाते तो भी हमें वैसा कोई भी ऐसे मतलब अनकंफर्टेबल हम नहीं समझते हैं, सब एक परिवार की तरह रहते हैं, और एक महिला होने के नाते स्टाफ वाले भी हमारी बहुत सपोर्ट करते हैं।
4: बहुत बढ़िया
5: जी,
4: ऐसा ही होना चाहिए
5: जी।
4: तो आपके फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ हुई थी उस समय जब पहली बार आप जॉब लगे तो?
5: जी, एक साल की तो हमारे ट्रेनिंग हुई थी जोधपुर में, हुई थी आरपीटी ट्रेनिंग सेंटर जोधपुर में एक साल। वहाँ पे जैसे पुलिस के बारे में अनुशासन है, जैसे फिजिकल फिट कैसे रहते हैं, पीटी परेड वगैरह, पुलिस के कैसे रैंक है, क्या पद है। पहले तो ऐसे लगता था जैसे घर पे थे तब एक कांस्टेबल आता तो भी पुलिस लगता था, और एक एसपी साहब आते तो भी पुलिस ही लगता था। अब उनकी रैंक वाइज भी कौन है, सब इंस्पेक्टर है, कौन DYSP है, कौन SP है, कौन IG है, उनके बारे में जानकारी हुई।
4: जी जी जी, नहीं मैं ये पूछ रही हूँ आपकी फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ, आबू में ही आए सीधे या
5: नहीं,
4: कहीं दूसरी जगह?
5: मेरी फर्स्ट पोस्टिंग रेवदर में रही थी।
4: अच्छा
5: जी, पुलिस थाना रेवदर में जुलाई 2008 से।
4: अच्छा वहाँ पर रहे, फिर उसके बाद आपके आबू में ट्रांसफर हुआ।
5: जुलाई 2008 से मेरी 2016 तक पुलिस थाना रेवदर में रही थी और 16 से 2022 एंड तक मेरी सीओ कार्यालय रेवदर में रही थी जी। और 2 जनवरी 2023 में मैं आबू रोड पुलिस थाना आबू रोड सदर थाने में आई थी।
4: अच्छा जी, तब से आप इधर है।
5: अब इधर है।
4: तो सुंदर जी चलिए आपके अनुभव और भी सुनेंगे, लेकिन समय हो गया फिर से एक गीत सुनने का, तो एक गीत सुनकर के पुनः लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं। सुंदर जी के अनुभव बहुत ही सुंदर है और हम और भी इनके अनुभव सुनेंगे। आप चाहे तो फोन कॉल्स भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए सुनते एक गीत, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नारी है तो जीवन में उजियारा है, नारी है तो घर आंगन लगता है प्यारा है। जिस घर में नारी का सम्मान रहे, जिस घर में नारी का सम्मान रहे, वो धरती पर स्वर्ग से न्यारा है, वो धरती पर स्वर्ग से न्यारा है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में सुंदर जी हमारे साथ बने हुए हैं। सुंदर जी के काफ़ी अनुभव हमने सुने हैं, और इसी कड़ी में हम और भी आगे बढ़ेंगे। तो सुंदर जी, जैसे कि आप बता रहे थे कि इस तरह फाइट करके आप पुलिस डिपार्टमेंट पे आए, फर्स्ट पोस्टिंग आपकी रेवदर में रही, फिर आप धीरे धीरे ये तीसरी बार, मतलब बीच में आप और कहीं थे?
1: हाँ, सीओ कार्यालय रेवदर में थी।
0: अच्छा, फिर आप आबू में आए हैं।
1: आबू में आए।
0: और जैसे आप पुलिस डिपार्टमेंट में तो है ही है, लेकिन आप कालिका पेट्रोलिंग यूनिट, मतलब ये भी कोई, इसका पहले तो आप अर्थ बताइए कि ये क्या चीज है, और इसमें आप कार्यरत है तो आप किस तरह का कार्य संभालती है?
1: जी, कालिका पेट्रोलिंग यूनिट सरकार ने दिसंबर 2024 में महिला व बच्चों की सुरक्षा के लिए गठित की थी, जो ऑल राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये टीम बनाई हुई है, हर जिले में है। अपने सिरोही जिले में 4 महिला कांस्टेबल सिरोही जिले में है, और 4 आबू रोड में है, 2 माउंट में है, 2 शिवगंज में है।
0: अच्छा, तो आपका कार्य है महिलाओं के साथ किस तरह घर परिवार में कोई शोषण तो नहीं हो रहा है, मानसिक शारीरिक आर्थिक यौन हिंसा, तो आप कैसे पता लगाते हैं? क्या महिलाएं आपको सामने चल करके फोन करते हैं, या फिर आप खुद घर घर में जाते हैं?
1: नहीं, जैसे हमारा कार्य ये होता है कि बच्चों व महिलाओं की सुरक्षा, हम स्कूल में जाते हैं, बच्चों से रूबरू मिलते हैं, बच्चों के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं हो, उनके साथ ऐसी कोई घटना नहीं हो, कई उनके जैसे फ्रेंडशिप बनाने के लिए उनको परेशान करते हो, और हमारे जैसे कालिका पेट्रोलिंग यूनिट के पैम्पलेट छपाए हुए हैं, जिसमें एक तो सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है राजकोप सिटीजन ऐप, और जो जहाँ भी ज़्यादा महिला भीड़ भाड़ होती है उनको, महिलाओं को ऐप डाउनलोड करवाते हैं। राजकोप सिटीजन ऐप का उसके उपयोगिता मैं बताती हूँ।
0: जी, आप ऐप भी बता दीजिए, हमारे श्रोता बंधु भी सुन रहे होंगे तो वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो
1: राजकोप सिटीजन ऐप अपन प्ले स्टोर से जाके उसको इंस्टॉल करेंगे तो राजकोप सिटीजन ऐप, उस पर पुलिस का लोगो आता है, उसको अपन इंस्टॉल करने के बाद में उसमें अपने मोबाइल नंबर डालेंगे तो 6 अंकों का OTP आता है। ये एक गवर्नमेंट का ऐप है जो OTP आता है उसमें, बाकी अपन कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें OTP नहीं मांगते हैं। इंस्टॉल करने के बाद में उसमें अपन भाषा जो भी लेनी होती है लैंग्वेज चॉइस करते हैं, हिंदी या इंग्लिश। उसके बाद में अपने को इमरजेंसी हेल्प या नॉन इमरजेंसी हेल्प दोनों तरह से अपन हेल्प ले सकते हैं। फिर उसमें अपनी लोकेशन चालू रखनी होती है।
0: अच्छा।
1: हाँ, जैसे ही अपन लोकेशन को प्रेस करेंगे तो अपने पास ऑप्शन आ जाएगा कंप्लेन करने का, उसमें अपन लिखित में टाइपिंग करके भी कंप्लेन कर सकते हैं, और उसमें कैमरा है तो अपन फोटो भी खींच के भेज सकते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं और वॉइस से भी भेज सकते हैं। जैसे लोकेशन का मतलब, जैसे अपन यहाँ बैठे हैं, अपने साथ कुछ घटना हो रही, तो अपन जैसे ही उस कंप्लेन को सबमिट करेंगे तो उसमें अपना मोबाइल नंबर और लोकेशन पूरी डिटेल आ जाती है, तो ये कंप्लेंट सीधा जयपुर जाती है, कंट्रोल रूम जयपुर। जयपुर से वो लोकेशन देखते कि ये लोकेशन कौन सी जगह का है, कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, कौन से थाने के अंतर्गत आता है, तो उस थाना देख के, अपनी लोकेशन देख के जैसे ही उस थाने के अंतर्गत आएगा, जैसे अपन यहाँ बैठे तो अबू रोड सदर थाना लगता है, तो अबू रोड सदर थाने वाले स्टाफ को कॉल करेंगे और तुरंत 5 मिनट के अंदर ही पुलिस को आना ही पड़ता है। ये ऐप बहुत उपयोगिता है, इसको हर महिलाओं को अपने मोबाइल में डाउन करके रखना चाहिए,
0: चाहे रात का समय हो, दिन का समय, किसी भी समय आपके साथ कोई भी घटना घटित होती है,
1: 24 घंटे कोई भी घटना हो, जैसे घर में भी कोई परेशानी हो, महिला कहीं और रास्ता में, कहीं जैसे रात को सफर कर रही है, यहाँ बस खराब हो गई है और खुद को अनकंफर्टेबल समझ रही है कि मुझे यहाँ डर लग रहा है, तो भी आप उस हेल्प की मदद ले सकते हो, जो भी नजदीकी पुलिस होगा तुरंत आके उसको सुरक्षित जगह पे पहुंचाएगा।
0: अच्छा, तो चलिए, हमारे श्रोता बंधु शायद आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो
2: दीदी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शांति।
0: हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार सुरेश भाई, कैसे हैं आप?
2: बात अच्छे है, और हमारे सुंदर जी भी बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं, सुन रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा, और कई सारी बातें सुनी हमने
0: जी,
2: और काफी वो सेवा कर रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में है और जो महिलाओं की सेवा भी करते हैं, महिलाओं का एक रक्षक है
0: जी।
2: तो कई सारी में सेवा कर रहे हैं, तो हमारे सुंदर जी को भी नमस्ते है।
1: नमस्ते।
2: और बहुत अच्छी सेवाएं आप कर रहे हैं, सेवा की महिला की सुरक्षा, लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप सॉल्व कर देते हो और काफी जानकारी भी देते हो, कई सारी बातें से आप बता रहे हैं। तो मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि जो आप कोई महिला कई जगह पे कोई प्रॉब्लम होता है और महिलाएं सुरक्षित नहीं होती है वहाँ आप पहुँच जाते हैं तुरंत, तो ये भी एक अच्छी सेवा कर रहे हैं। हमारी तरफ से आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप भी ऐसे कार्य करते रहे, देश की सेवा करते रहे, लोगों की सेवा करते रहे, महिलाओं की सेवा करते रहे। कहीं ना कहीं महिलाओं को आप बहुत उपयोगी बने हैं, तो ये भी अच्छी बात है।
1: थैंक यू।
0: आपको कुछ पूछना है क्या कुछ? हाँ जी पूछ सकते हैं आप।
2: हाँ वो तो मैं सुन रहा था, महिलाएं की जो बात आपने बताई, क्यों अभी तो मैं थोड़ा बाहर हूँ सफर में हूँ, फिर भी कार्यक्रम बैठे बैठे सुन रहा हूँ बस में बैठे बैठे।
0: अच्छा।
2: तो हाँ इसलिए तो फिर भी मैं कार्यक्रम सुना तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपसे और हमारे सुंदर जी से बात कर लूँ।
0: चलिए बहुत बहुत आभार आपका सुरेश भाई, आप अक्सर जुड़ते ही है, हम भी सोच रहे थे कि आप जरूर जुड़ेंगे।
2: क्योंकि मैं जा रहा हूँ बाहर इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम रहता है बात करने का।
0: जी जी सफर में तो रहता ही है वो सभी जानते हैं। जी
2: ठीक है
0: जी। नमस्ते आभार आपका। तो ये थे सुरेश भाई जोटाना से। अगर आपको भी कुछ पूछना हो तो आप जुड़ सकते हैं रेडियो मधुबन से, नंबर है 94-14-15-14-15। और सुंदर जी हमारे साथ बने हुए हैं, सुंदर जी के बहुत ही अच्छे अनुभव हम सुन रहे हैं। तो मधु जी आप हाँ बता रहे, सुंदर जी आप बता रहे थे कि इस तरह यूनिट बनाई गई है, तो ये महिलाओं की है या भाई लोगों की भी है, पुरुषों की भी है?
1: नहीं महिलाओं की भी है और पुरुषों की भी है।
0: अच्छा।
1: जैसे पुरुषों की भी समस्या होती है तो भी उनका हम उनकी समस्या को सुनते हैं, उनकी समस्या का निराकरण करते हैं।
0: अच्छा वो आप लोग ही संभालते हैं?
1: जी हम भी संभालते हैं। और जैसे हमारे लेवल की नहीं है और कोई गंभीर वाला मामला है तो थाना अधिकारी को भी हम उनसे मिलवाते हैं, उनकी बात सुनते हैं, जो भी कार्रवाई होती है उनके अनुसार रिपोर्ट दर्ज की जाती है।
0: अच्छा तो इस तरह का कभी केस आया कि अचानक आपको फोन आया हो महिला के साथ किसी तरह का शोषण हो रहा हो, ऐसा होता है?
1: जी हमारे पास बहुत सारे फोन आते हैं। हमारे जैसे मैंने बताया कि हमारे मोबाइल नंबर और पैम्पलेट दिए हुए हैं, उसके एक ऐप जो अभी ऐप बताया उसके साथ में एक महिला गरिमा हेल्प नंबर भी है 1090 1090। जैसे कहीं भी नेट का इशू होता है तो आप 1090 या अपने बड़े वाला मोबाइल नहीं हो कीपैड वाला मोबाइल हो तो उसके थ्रू भी आप 1090 से कंप्लेन करके आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। हमारे साथ ऐसे कॉल तो आते ही रहते हैं, दिन में दो चार फोन तो आ ही जाते हैं।
0: जी जी जी
1: कहीं भी बैठे रहो
0: तो हर कोई दुखी है, हर किसी के साथ देखते हैं कि अधिकांश शोषण हो ही रहा है किसी भी प्रकार का, कोई सुरक्षित नहीं है, तो फिर आप पहुंच जाते हैं, जैसे आपको फोन आता है पहुंचने की कोशिश करते
1: हैं। हम जितना जल्दी हो पहुंचने की कोशिश करते हैं महिलाओं के साथ। देखो यहाँ पे आबू रोड में थोड़ा आदिवासी एरिया है
0: जी।
1: तो जैसे आदिवासी में क्या होता है, लोग कहीं भी छेड़छाड़ की घटनाएं कर देते हैं, दारू पी के परेशान करते हैं, यहाँ लड़कियों का पीछा करते हैं, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, ऐसी घटनाएं खूब सारी होती रहती है। तो महिलाओं की हर बात जल्दी से सुन के उनके न कि उनको थाने बुलाते हैं, बिल्कुल उनके घर पे जाके आपस में घरेलू बात भी होती है तो परिवार वालों को बुला के बिठा के उनकी समझाइश करते हैं, तो महिलाओं को मतलब न्याय की बात करके उनको न्याय मिलता भी है और हमारी पूरी सपोर्ट रहती है, कोई कोई भी महिला परेशान नहीं हो।
0: जैसे आपने बताया है कि आबू में आदिवासी एरिया ज़्यादा है तो आपको भी कहीं ना कहीं तो एक डर तो अंदर रहता होगा, क्योंकि धमकी देते हैं ना ये भी अगर आप महिलाओं का सपोर्ट करेंगे तो। पर पहले हम अपने श्रोता बंधु से बात करना चाहेंगे। हेलो
3: हेलो उषा बहन जी सुप्रभात नमस्कार।
0: हाँ जी सुप्रभात नमस्कार। कंचन भाई कैसे हो आप?
3: बस बेंदी से बेंदी को भी बेंदी का नाम भूल गए.
1: नमस्ते नमस्ते ओम शांति.
0: आप अपना नाम भी बता दीजिए. आपका नाम भूल गए वो.
1: मेरा नाम सुंदर जी है.
3: हाँ सुंदर जी सुंदर. बस बेंदी बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं. उसी दिन जो महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था उसी दिन आप थे शायद.
1: जी बिल्कुल थे.
0: पूरी टीम थी.
3: हाँ मैंने देखा था मोबाइल में. और आपने बाद में जो बताई बातें बताई जो महिलाओं के बारे में तो मुझे बहुत अच्छी लगी. बेटी मुझे मैंने रिकॉर्डिंग भी कर लिया था वो सब. और क्या है कि महिलाओं को तो खूब ये जरूरी है बहन जी. अभी भी जो आदिवासी की बात थी ना तो हम आदिवासी एरिया में भी है. अभी खेत में है हमारा भागीदार आदिवासी वनवासी है
1: जी.
3: तो यहाँ ऐसी बातें बन जाती है बहन जी. ठीक है आपने जो बताया ना कि ऐसा बहुत होता है. लेकिन क्या है कि महिलाओं का संगठन है यहाँ आदिवासी में
0: जी.
3: तो एक बहन को ऐसा होता है तो सभी बहनें ये इकट्ठे हो होके इसको बोलते हैं और ये करते हैं डांटते.
0: बहुत बढ़िया. एकता तो होनी चाहिए महिलाओं का संगठन होना बहुत जरूरी है.
3: हमारे अपने नहीं है बहन जी. हम जो
0: जी जी आदिवासी लोगों के जी
3: एक दूसरी बहन की ईर्ष्या ये करते हैं.
0: जी जी जी
3: ठीक हुआ है ऐसा होना ही चाहिए था.
0: सही बात है.
3: लेकिन जो ये एरिया है ना वनवासी आदिवासी का ये तो हमने देखते है पहले तो चढ़ोतरा होता
0: जी.
3: अब बंद कर दिया है.
0: अच्छा
3: लेकिन कोई ऐसा मर्डर हो जाता था महिला का ऐसा कर देते थे ना तो ट्रैक्टर भर भर के महिलाएं कुहाड़ी धारिया ऐसा लेके वहाँ जाते थे गांव में और इसका घर तो पूरा नष्ट कर देते थे.
0: अच्छा
3: ये करते थे. अब नहीं ऐसा होता. अब तो एक दो बार पुलिस ने सबको गिरफ्तार करके पुरुषों को अंदर डाल दिया था और ऐसा हुआ था एक दो का मर्डर भी वहाँ हो गया था डर के मारे जेल में. तो उन्होंने सभी बंद कर दिया कि भाई शांति से रहना ऐसा कोई करना नहीं अब वरना हम साथ नहीं देंगे. तो ये चढ़ोतरा तो अब बंद हो गया.
0: अच्छा ओके.
3: लेकिन पूरा संगठन है इन महिलाओं का
0: जी जी
3: जो हमारे नहीं होता. क्या है जी
1: मैं कहना चाहूंगी कि चढ़ोतरा अभी पूरी तरह से तो बंद नहीं हुआ है लेकिन कहीं कहीं होता भी है. अभी दो चार महीने पहले भी हुआ था गिरवर साइड में जी.
3: उस तरफ हुआ होगा लेकिन हमारे तो यहाँ सभी लड़की लड़के लड़के को लड़कियों को पढ़ाते हैं ना
1: जी जी.
3: तो ये सब अपना घर का ख्याल रखते हैं
1: जी जी.
3: क्या है कि भाई इसमें कोई ये नहीं है
1: जी जी जी.
3: ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है. और सबको बोलते हैं कि भाई शांति से रहना ऐसी वैसी हरकत नहीं करना है वरना हम साथ नहीं देंगे. पहले तो पूरा साथ देते थे.
1: जी.
3: अब अपना घर बिगाड़ के कौन जाए बेटी जेल में
1: जी.
3: तो ये सर समझदार थोड़े थोड़े हाथों हो गए है. ठीक है
0: जी, बहुत बढ़िया.
3: ऐसे ऐसे एरिया में थोड़ा होता होगा लेकिन हमारे यहाँ तो सदंतर बंद कर दिया.
1: नहीं बिल्कुल बढ़िया किया. ऐसा जैसे ज्यादा शिक्षा है तो लोग जागरूक भी हो रहे हैं तो ये सारा सिस्टम बंद होने वाला ही है. पर थोड़ा इधर टाइम लगेगा.
3: आम का पेड़ काट देते थे कोई इंजन कुएं पे रखा होता तो ये अंदर कुएं में डाल देते थे उस उठा के. ऐसा बहुत नुकसान करते थे लोग. एक दो बार पुलिस ने ये ऐसा किया तो ये इसका परिणाम अच्छा है. जब कोई ऐसी बातें तो नहीं बनती और कोई होती है तो आपस में ये कर देते हैं कि भाई
0: बातचीत करके निपटा देते हैं जी.
3: हाँ ये इसको लड़की दे दो ये ऐसा है तो लड़की की क्या इच्छा है बोलो तो ऐसा करके इसको दे देते हैं.
0: ठीक है कंचन भाई आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी. बहुत बहुत आभार आपका. जी
3: खेत में हूँ अभी बहन जी तो मैंने सुरेश भाई की बात सुनी तो मैंने सोचा कि भाई भी थोड़ी बात
0: जी जी बहुत बढ़िया.
3: और महिलाओं को जरूरी है बहन जी, जो इसी दिन आपने बात की थी ना
0: जी,
3: हमारे भी एक क्या हुआ था, मैं बात बताऊँ
0: कंचन भाई आपकी बात हम क्योंकि ये टाइम पीरियड बहुत कम है और बहन जी की बहुत सारी बातें हैं तो हम आपकी बात कल आशियाना में सुनेंगे, ठीक है
3: जी।
0: बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे कंचन भाई मंडाली से, और अभी यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेकर पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में सुंदर जी हमारे साथ बने हुए हैं। सुंदर जी के काफ़ी अनुभव हम सभी ने सुने हैं, बहुत ही सुंदर आपने अपने बातें बताई है। चलिए हम इधर उधर की बात न करते हुए सीधे ट्रैक पर चलते हैं। सुंदर जी, जैसे कि आप बता रहे थे कि आप महिलाओं की भी इस तरह हेल्प करते थे, और इस तरह एक घटना आपने कुछ सुनानी चाहिए, लेकिन हमारे श्रोता बंधु का फोन आ गया तो उनसे बात करने लग गए।
1: जी, जैसे कई फोन आते तो हम जैसे निकलते हैं, कई लड़कियों की शिकायत होती है, महिलाओं की शिकायत होती है, तो एक दो किस्से हैं जो मैं आपको सुनाऊंगी।
0: जी जी, लेकिन शायद हमारे श्रोता बंधु बात करना चाहते हैं और आपकी आवाज़ नहीं पहुंची। हाँ जी नमस्ते,
2: भूरा राम बोल रहा हूँ से मैं।
0: हाँ भूरा राम जी, राम राम, कैसे हो?
2: राम राम है। उषा बहन जी और सभी मनोबन भाइयों को और सुंदर बहन जी को भी मेरा राम राम है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: समझने की बात सुंदर बहन जी ने समझाई है लोगों को, और लोगों को मालूम नहीं रहता, जो थोड़े अनपढ़ रहते तो उनको ये इतना कानून का मालूम नहीं रहता जितना आप सुंदर बहन जी ने बताई है। लेकिन ये जो आदिवासियों के जो रिवाज है बहुत गलत होते हैं। मेरे सामने एक घटना घटी, आपको बताऊं क्या?
0: छोटी सी हो, शॉर्ट में बताइएगा। आप और से
2: बताता हूँ कि कुत्ता पैदा है अपना दरवाजे पे, कोई दूसरा
0: जी,
2: और आदिवासी की औरत वो सांस लेने आई, जो सांस लेने के लिए आई
1: जी,
2: तो उसको कुत्ता काट लिया। अभी वो कुत्ता बाहर का था, लेकिन वो काट लिया, लेकिन वो नहीं माने कि कुत्ता तुम्हारे से, वो घर वाले का।
0: अरे कुत्ता काट लिया, इसमें क्या करेंगे? और घर वाले थोड़े ना कुत्ता पाल रखा था क्या उन्होंने?
2: नहीं पाला नहीं था, वो बाहर का बैठा था, लेकिन वो आदिवासियों के मतलब एक रिवाज है कि कुछ भी जिसका वो बेचारे के उनको माने नहीं, और वो तो एक थे दो चार बने, वो तो ज्यादा हो गए ना, उनसे बेचारे 50,000 की मांगनी की तो देना पड़ा। बोलो कोई जाम वाला भी नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकते।
0: तो अच्छा, इसमें
2: परंपरा है, तो सुंदर बहन जी बता अच्छा बना रहे हैं कि ऐसे ऐसे जो घटना होती है तो उसके अंकुश रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बेचारे लोग
1: हाँ ऐसा ही है आदिवासी में, जैसे जिसके घर पे कोई घटना हो गई तो जुर्माना उनसे ही वसूल करना पड़ता है।
0: तो सुंदर जी, इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती?
1: पुलिस तो क्या करे, राजीनामा करा सकती है दोनों पार्टियों को बुला के, तो कंप्लेन वगैरह भी की थी क्या थाने में?
0: थाने में कंप्लेन की थी भूरा राम जी?
2: नहीं नहीं, थाने में तो वो क्या करे बेचारे, अभी उनको जो है तो पैसे देने के बाद में क्या करेंगे?
0: नहीं तो पैसे देने के पहले कंप्लेन करनी चाहिए ना, रिपोर्ट लिखानी चाहिए
1: जी।
2: पर वो तो है ना, ऐसा है कि फिर वो लोग ऐसे डरते के नजदीक के रहते तो फिर बाद में वो थाने में जाके तो फिर उनका तो विश्वास खुद
0: अच्छा बदला ले लेते हैं।
2: कभी भी आके ये मतलब
0: जी जी जी, लोग इस तरह डरते हैं,
2: मतलब लोगों में डर है, ये मतलब कहने का मतलब, एक दफे ऐसा पुलिस का ये उदाहरण है तो डर मिट जाता है, मेरा बोलने का मतलब
0: जी जी, मतलब कुत्ता काटता है तो भी वो दोष जिसके घर के बाहर काटते हैं उनके ऊपर आ जाता है, ये तो थोड़ा ज्यादा ही हो गया, बहुत ज्यादा हो गया।
2: हाँ कुत्ता तेरे घर पर बैठा, मतलब तेरा मतलब जान बुझ गया।
1: हाँ जी हाँ
0: जी,
2: ऐसी ऐसी घटना होती है, मतलब जो मतलब ही नहीं होता है।
0: तो ये पैसे लूटने का धंधा है इसका मतलब?
2: हाँ बस, तो और इसमें ऐसी ऐसे
0: जी
2: झूठा भी इंजाम देख के बोले तो आगे वाले को ये कर देते हैं और कर, लेकिन उनके समाज में एकता है, मतलब एक प्रसाद से तो
1: नहीं, इसमें
2: तो
1: जैसे
2: फिर वो लोग डर जाते हैं आगे से।
1: इसमें जैसे इनके जाति के जैसे शिक्षित लोग है ना, उनको समाज में बैठ के ये बात करनी चाहिए कि भाई ऐसी घटना होती है तो ऐसा आरोप लगाना गलत है।
2: पर वो तो समझे तब ना, वो ऐसा मतलब ये तो क्या होता है कि थोड़ा अपने पुलिस वाले भी और सब मतलब उनको थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसी घटना जाके बैठा के समझावे
1: जी,
2: तो थोड़ा समझे नहीं तो ये तो अभी बहुत पुरानी है चलती आई है, बाप दादा ने किए तो उनसे डबल ये बच्चे लोग भी करते हैं, मतलब कोई कम नहीं होने के सवाल ही नहीं होता।
1: सही है, नहीं जैसे ऐसी कोई बात हो ना तो पुलिस को सूचना देना जरूरी है, बिना सूचित तो पुलिस को क्या पता चलता है, वो बात है।
2: लेकिन ऐसा बोलते बेचारा सादा सादा आदमी डर जाते
1: हैं। हाँ डर की वजह से पुलिस के थाने में जाने से ही लोग डरते हैं कि कुछ और घटना नहीं कर दे हमारे साथ में।
2: मतलब वहाँ तो कर देंगे, लेकिन दूसरे के बाद में ये थोड़े थोड़े कभी भी मतलब अटक कर सकती है जात, ऐसा है
0: जी। जी जी, चलिए बहुत बहुत आभार भुरा राम जी। तो ये थे भुरा राम जी ओर से, देखे कैसी घटनाएं घटती है, आश्चर्य होता है। लेकिन आज हमारी इन बातों में ही समय चला गया सुंदर जी, अब शायद और भी हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं। चलिए ठीक है, नहीं है तो बस आपसे तो काफी कुछ अभी जानना बाकी है, सुनना बाकी है, जो हम अगली बार जरूर सुनेंगे। लेकिन कार्यक्रम के अंत में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, विशेष करके बहनों को, और मैं तो कहूँ कि आदिवासी समाज को क्या कहना चाहेंगे आप?
1: मैं यही कहना चाहूँगी कि महिला एक पुरुष को भी कंधे से कंधे मिला के चल सकती है। महिला के बिना तो पूरा संसार अधूरा है, महिला कहीं पीछे नहीं है। हर जॉब में आप देखो, पुलिस है, हेलीकॉप्टर चलाने के लिए महिला, एरोप्लेन चलाती है, ट्रेन चलाती है, कहीं भी महिला पीछे नहीं है। महिलाओं को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। और आदिवासी समाज की बात करूँगी तो आदिवासी समाज में शिक्षा का मतलब बहुत कमी है। अभी तो फिर भी लड़कियां हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में भी आ रही है, काफ़ी लोग ऐसे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि हर महिला अपने परिवार से शुरू करेगी कि मैं मेरे परिवार में जैसे
0: बदलाव लाऊंगी,
1: कोई भी मेरे परिवार में नशा नहीं करेंगे
0: जी। बहुत सुंदर मैसेज दिया है आपने कि आदिवासी समाज में भी जागरूकता आ सकती है, एक नारी शिक्षित होगी तो पूरे परिवार में परिवर्तन लाएगी, और ऐसा ही करना है। तो सुंदर जी आपका बहुत बहुत आभार, आप रेडियो मधुबन के स्टूडियो में पधारे और आपने अपने जीवन के सुंदर से अनुभव सभी के साथ शेयर किए, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आज का आपके रविवार की छुट्टी थी वो हमने ले ली पूरी
1: जी। हमारे तो छुट्टी तो रहती नहीं है, 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ता है।
0: जी, उसमें भी थोड़ा समय हमने ले लिया है, लेकिन हमारे श्रोता बंधु ने भी सुना है,
1: जानकारी सुनना लोगों में बहुत जरूरी है।
0: तो बहुत बहुत आभार आपका। आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में सुंदर जी वैष्णव हमारे साथ बने हुए थे। आपके जीवन के अनुभव आप सभी ने सुने हैं कि कैसे आपने पढ़ाई की, कैसे आप इस फील्ड में आए, कैसे आपने कंपटीशन फाइट किया और इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो मैं ऐसी नारी शक्ति के लिए यही कहना चाहूंगी, जब जब इतिहास ने करवट ली, हर युग में नारी आगे आई, झांसी बनकर रण में उतरी, मीरा बन भक्ति अपनाई। तो ऐसी नारी शक्ति को रेडियो मधुबन सलाम करता है, वंदन करता है, नमन करता है। प्यारी बहनों, अगर आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर करना चाहते हो तो नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल कर सकते हैं, और आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर कर सकते हैं। हम सुंदर जी से अगले रविवार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
3: मैं हूं अवधेश पंडित, जीएम फाइनेंस बेसिल, और आप

सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम सा, रविवार की सुप्रभातम। कैसे हैं आप सब? सब कुशल मंगल होंगे ऐसी आशा करते हैं। चलिए भाई, आपका प्रोग्राम पंडितायन में प्रभा पंडितायन आप सभी श्रोताओं का दिल से बहुत बहुत बहुत बहुत स्वागत करती है। और शुरू करते हैं प्रोग्राम एक बहुत सुंदर कहानी से। घर को स्वर्ग बनाइए, हर कोई चाहता है ना हमारा घर स्वर्ग बने। हर परिवार सुख शांति और प्रेम चाहता है, लेकिन उनकी शुरुआत हमारे विचारों और संस्कारों से होती है। यदि हमारे द्वारा प्रस्तुत ये बात आपको अच्छी लगती है तो औरों को भी बताइएगा। आप चाहते हैं कि आपके विद्यालय, महाविद्यालय, संस्था, उद्योग, सामाजिक संगठन, क्लब, महिला मंडल, युवा मंच या पारिवारिक आयोजन में भी ऐसा ही प्रेरणादायी बातें सुनाई जाए, की जाए और जीवन को नई दिशा देने वाला व्याख्यान आयोजित हो तो हमें बताइएगा। पंडित जी हमको छुट्टी दे देते हैं तो हम आपके विषय और आवश्यकता के अनुसार प्रभावशाली, प्रेरक और व्यवहारिक बातें बता सकते हैं। एक अच्छा विचार, एक प्रेरक व्याख्यान और एक सही दिशा कई परिवारों का भविष्य बदल सकती है। तो आइए मिलकर ऐसे समाज का निर्माण करें जहां हर घर में प्रेम हो, संस्कार हो, संवाद हो और हर घर सचमुच स्वर्ग बन जाए। हम सब भी यही चाहते हैं ना, है कि नहीं? दुनिया में चाहिए का कि एक दूसरे से प्रेम से मिले, सुख से रहें, है कि नहीं? सबका जीवन में जो इच्छा है परमात्मा पूरा करे। एक बार एक सिद्ध संत श्री मोहन देव जी वृंदावन आए। उन्होंने बहुत सी सिद्धियां प्राप्त कर रखी रही और वृंदावन में वो एक श्याम को यमुना जी के किनारे बैठे रहे। वहीं एक वृद्ध संत बैठे रहे जो राधा राधा राधा राधा राधा राधा बस निरंतर ही जप रहे थे। मोहन देव जी बोले, बाबा बस नाम ही रटते रहते हो या कुछ पाया भी है? संत बोले, बाबा हमें तो कुछ पता नहीं, हमें कुछ पाना नहीं, जो पाना था वो यही नाम है, जौन मिल गया, आपका पाने की बात कर रहे हैं। मोहन देव जी तो शायद इसी मौके का इंतजार कर रहे थे कि अवसर मिले और अपनी सिद्धि दिखाने का। वो तपाक से बोले, देखो मैंने क्या पाया है। वो उठे, कुछ बुदबुदाए और यमुना जी के जल पर ऐसे चले लगे जैसे भूमि पर चल रहे हो। पूरी नदियां पार करी और वापस आकर बोले, देखा बाबा कैसा चमत्कार ये पाया है हमने। वृद्ध वृंदावन के संत ने पास खड़े एक मल्ला को बुलाकर और पूछा, काहे भाई नदिया पार जाए का लोगे? वो बोला, बाबा आपसे कुछ नहीं ले सकता। बाबा पुनः बोले, भाई हमें जाना नहीं, किंतु साधारणतः का लेते हो? मल्ला बोले, बाबा चार आना। बाबा मोहन देव जी से बोले, भाई जौन काम चार आने में हो सकता है, उसे सिद्ध करने के लिए तुमने जीवन गवा दिया। मिथ्या अभिमान और मुफ्त की नौटंकी दिखाने के अलावा का हाथ लगा? भाई जो जीवन चला गया और हरि न मिले तो? बाबा की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली और गला रुंध गया और एक शब्द न निकला। यही सार है भाई, जीवन में सब मिल जाए पर जो हरि न मिले तो धिक्कार है खुद पर। न जाने ये जीवन दोबारा मिलेगा या नहीं, और हम ई को यूं व्यर्थ कर दें। मूर्ख न बने ये बंदे, सब कर न कर पर उनका नाम न रुकने पाए, उनकी याद न जाने पाए। कहे का मतलब, जीवन को सफल बनाने के लिए सिर्फ पेट भरना या किसी को कहीं ना कहीं आश्चर्यचकित कर देना यही तो लक्ष्य नहीं है ना। जीवन तो कुछ बड़े लक्ष्य के कारण ही परमात्मा जी ने हमको यहाँ पे भेजा है, वो गुण वो शक्तियाँ देके जिससे हम दूसरे के जीवन को बहुत सुखमय बना सकते हैं। तो कहाँ हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं, कहाँ हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि बस वही चमत्कार के चक्कर में पूरा जीवन ऐसे ही चले जाए। आज जब कहा जाता है कि जब जागे तब सगेरा, तो जब जग गए, जब समझ आ गई कि जीवन में
प्रभु का नाम लेने से, प्रभु को याद करने से जौन शक्ति मिलती है, जौन एक दूसरे के प्रति भावना पैदा होती है, वो तो तभी ना होगी जब आप उसको बिना कुछ अपेक्षा के याद करेंगे। आशा करते हैं कि आप ये सब करेंगे और ये कहानी ही नहीं बल्कि इससे ही सीख लेंगे कि जीवन में लोगों को चमत्कार दिखाने से कुछ नहीं होता। हम अपने जीवन में क्या पाए हैं या हमारे जीवन से दूसरे को क्या प्राप्ति हो रही है, वो ज़्यादा महत्व रखता है और तभी जीवन सफल होता है। तो चलिए जीवन सफल के ऊपर एक बहुत सुंदर गीत सुन लेते हैं, उसके बाद आपसे बतियाएंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सुनते रहें मुस्कराते रहें और 12 बजे तक यूं ही प्रभा पंडित ताई के साथ अच्छी अच्छी बातें सुनते रहें। सुनिएगा ये गीतवा।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी, और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीज़ें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूँ, सपोज़ पाँव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, ज़ोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पाँव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और ज़ोर से लगेगी, जितनी और ज़ोर से लगेगी दर्द और ज़ोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और ज़ोर से लगेगी। तो घाव को रहने दें या भरते जाएं? घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज़ फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज़ इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज़ को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है, लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, हाँ, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है, अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहाँ कुछ गिरा, यहाँ कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीज़ें गिरती गई गिरती गई गिरती गई, लास्ट कब साफ किया? और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया, कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: जो लोग आपकी निंदा करते हैं उन्हें करे दो, काहे कि धूल चाहे कितनी ऊंची उड़ जाए आसमान को मैला नहीं ना कर सकती, है कि नहीं बात? जो अच्छा है वो छाया ही रहेगा, टाइमिंग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएंगे, लेकिन आपकी छवि को धूमिल नहीं ना कर सकता। 20 साल की उम्र में इंसान अपनी इच्छा से चलता है, 30 में बुद्धि से और 40 में अपने अनुमान से, 60 साल के बाद में बच्चों के अनुसार चलता है। समय का चक्र यही कहता है, समय कभी नहीं रुकता। बुरा आज यदि चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आपके बाल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। काम करने से पहले सोचना बुद्धिमानी, काम करते हुए सोचना सतर्कता, और काम करे के बाद सोचना मूर्खता है। तो देखिए भाई, अच्छी अच्छी बात है, इको खुपारिया में बिठाई लीजिएगा, छोटी सी जिंदगी है। हेलो हेलो,
3: हाँ जी नमस्कार, मदन भाई बोल रहा हूँ। दीदी जी
2: नमस्कार, मदन लाल भाई कैसे हैं?
3: बहुत बढ़िया हूँ, और बस मन ही मन से सबको याद कर रहा हूँ, और सब सोच रहा हूँ कि भाई आज का दिन और बहुत दुनिया का हाल है, और सब देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ बैठा बैठा, और इस पर से बातें कर रहे हैं।
2: जी जी,
3: बस हमारी दीदी का टाइम हो गया है।
2: हाँ जी,
3: अभी शायद 35 मिनट और बाकी हो गए हैं।
2: जी जी जी,
3: तो हमने बोला फोन कर देते हैं।
2: जी,
3: तो आपको नमस्कार करते हैं, और पूरे टोको और हमारे सभी दोस्त सुन रहे हैं,
2: जी
3: सभी को नमस्कार करते हैं।
2: जी,
3: और बस आज बारिश गिर गई है तो अब सभी जगह हरी चादर आ गई है, कहीं गुलाब के फूल भी उग चुके हैं, तो कहीं जो भी गाय है सब अपना पेट भर रहे हैं धीरे धीरे। और
2: जी,
3: आपको नमस्कार करते हुए, और ये कहते हैं कि जंग में जाने से हार नहीं होती है, हार सोचने से होती है।
2: बिल्कुल।
3: नमस्कार करते हैं और चल चल मेरे साथी, ओ मेरे साथी, हाल चल खतारा के बंद है मोटर कार, कमाल लला, चल चल मेरे साथी।

0: सारी दुनिया गई बदल चल चल चल मेरी साथी
1: नमस्कार। थैंक यू, बहुत अच्छे। नमस्कार। तो भाई देखिए, अपने अपने विचार रखते हैं, खुशियाँ रखते हैं, अपनी दिल की भावनाएं आप लोग रखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। छोटी सी जिंदगी है, हर हाल में खुश रहो।

0: आने वाला कल किसने देखा है कि नहीं, अपने आज में खुश रहें। यदि लोग आपकी अच्छाइयों को ना समझे तो स्वयं को मत बदलिए। दीपक अंधकार को मिटाता है ये सोचकर नहीं कि कौन उसकी रोशनी को देख रहा है। यही बात हम अपनी ज़िंदगी में करें, है कि नहीं? सही बात है ना, जीवन में सही बात अपनाए का चाहिए। विनम्र रहें, साहस से कार्य करें, आपको दयालु और बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। भीड़ का हिस्सा बनना आसान है, काहे कि वो हौसला देती है, लेकिन भीड़ आपकी पहचान छीन लेती है। अकेले चलने का दम रखिए, इतिहास वही रचते हैं जो अकेले चलने से नहीं डरते। अपनी जिंदगी में सही रास्ता नहीं बना है ये सोचकर परेशान मत खड़े हो। अपना मन ईश्वर को सौंप दीजिए, वो तुम्हारे लिए सबसे सही रास्ता बना देंगे। हम तो अपना अभिमान में रहते हैं ना, हमको बहुत बुद्धि है, बहुत विवेक है, बहुत समझ है, हम तो कर लेंगे। नहीं, उसको सौंप के तो देखिए वो कितना अच्छे से करता है। हमेशा दूसरों की मदद करें, पता नहीं ये पुण्य जिंदगी में कब आपका साथ दे जाए। और जीवन में किए गए अच्छे कर्म समय के साथ अवश्य लौटते हैं, कभी अवसर बनकर कभी आशीर्वाद बनकर। दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने से पहले अपनी नज़रों में हम सच्चा बने, काहे कि सच्चाई ही सबसे बड़ा हमारा का कहते पहचान है, एक सुंदरता है। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है, कल का हुआ रहा इस सोच के आज के खूबसूरत दिन को बर्बाद मत ना कीजिए। वर्तमान में जीना ही सबसे बड़ी कला है। कहा कि भगवान की दुआ लेने से पहले कहा जाता है माँ बाप का आशीर्वाद लेना सीखो। कहे कि कामयाबी का रास्ता माता पिता के चरणों से होकर निकलता है। हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं जिनको बहुत अच्छा लगता है जब हम माता पिता के बारे में कुछ कहते हैं। तो बड़ा सोचिए और बड़ा बनिए। आपकी सोच की सीमा ही आपका जीवन की सीमा तय करती है। अगर आप खुद को छोटा समझिएगा तो दुनिया कभी आपको बड़ा नहीं ना मानेगी। किसी ने कहा, खूब कहा है कि साइकिल तभी सही चलती है जब उसमें चैन हो, और इसी तरह हमारी जिंदगी भी तभी सही चलती है जब उसमें चैन हो। चैन आराम जिसको शांति भी कहते हैं। भगवान को अपना जीवन का संचालक बना दो, वो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी और हमारे सच्चे हितैषी हैं। और एक बात, जीवन में दो शक्ति का होना बेहद जरूरी है, एक समझ शक्ति और दूसरी सहन शक्ति। जेने ये दो चीज को अपने जीवन में उतार लिया ना, उसका जीवन वैसे ही सफल हो जाता है। तो याद रखिए, जीवन में अगर ये सहन शक्ति है, कैसी भी बात आए, कैसी भी प्रॉब्लम आए, लेकिन हम उसको एक मिनट में सॉल्व कर लेते हैं ना, है कि नहीं? तो देखिए भाई, बातें तो आएंगी, जैसे कि समुद्र है तो उसमें लहरें उठेंगी, लेकिन साथ ही साथ समुद्र को तो नहीं सुखाया जा सकता है। काहे कि वो तो है रहेगा, जिंदगी है तो प्रॉब्लम तो आएबे करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं हम उनको सामना करने की शक्ति अगर हमारे में है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आप भी ये करिएगा, अपनी सहन शक्ति को बढ़ाइएगा, है कि नहीं? और सहन शक्ति कब आती है? जब हम अपनी आत्मा की तार को परमात्मा जी से जोड़ लेते हैं ना, तो उनकी वो का कहते हैं सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर आए लगती है, और उससे हमारे अंदर कहीं ना कहीं उस शांति आती है, उस शक्ति आती है कि कैसी भी बात आए उसको टाल लेते हैं। साक्षात भगवान का रूप बनकर आया एक बुजुर्ग, जिस बुजुर्ग चौकीदार को पूरे मोहल्ले ने 25 साल तक एक टूटी हुई कुर्सी पर बैठे देखा, उसकी मौत के बाद जब उसके कमरे की दीवार तोड़ी गई तो अंदर करोड़ों रुपए नहीं बल्कि ऐसा सच मिला जिसने पूरे शहर को रुला दिया। साल 2025 की बात है, शहर के सबसे पुराने सरकारी स्कूल के मुख्य गेट पर एक बूढ़ा चौकीदार बैठा रहता था। उसका नाम था रामदास, उम्र लगभग 70 साल, झुकी हुई कमर, सफेद बिखरे बाल। हेलो,
1: ओम शांति, गुड मॉर्निंग दीदी, कैसे हो?
0: गुड मॉर्निंग, एकदम ठीक हूँ भैया, आप कैसे हैं? हेलो हेलो, चौकीदार बैठा करता था, उसका नाम था रामदास। उम्र 70 साल, झुकी हुई कमर, सफ़ेद बिखरे बाल और आँखों पर मोटा चश्मा। पिछले 25 वर्षों से वो वही स्कूल की चौकीदारी कर रहा था। बच्चे उनको प्यार से दादाजी कहते रहे, लेकिन बड़े लोग अक्सर उनका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता बेचारा पूरी जिंदगी चौकीदारी करता रह गया, तो कोई कहता इसकी किस्मत में बस यही लिखा रहा। रामदास कभी किसी को जवाब नहीं देता था। सुबह सबसे पहले स्कूल आता, गेट खोलता, बच्चों को मुस्कुराकर अंदर भेजता और शाम को सबसे आखिर में ताला लगाकर घर जाता। उसका घर भी का रहा, स्कूल के पीछे बना एक छोटा सा कमरा जिसकी छत जगह जगह से टूटी हुई थी। बरसात में पानी टपकता रहा, गर्मियों में कमरा भट्टी बन जाता था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। एक बात जरूर रही जो लोगों को अजीब लगती थी, हर साल स्कूल के कुछ गरीब बच्चों की फीस अचानक जमा हो जाती थी। किसी बच्चे की किताबें आ जाती, किसी की यूनिफॉर्म बन जाती, किसी की कॉलेज की फीस भर दी जाती। जब भी स्कूल प्रशासन पता लगाने की कोशिश करता कि मदद कौन कर रहा है, कौनों नाम सामने नहीं आता। धीरे धीरे लोगों ने मान लिया कि कोई दानदाता होगा जौन अपना नाम छिपाना चाहता है। समय बीतता गया, हजारों बच्चे उस स्कूल से पढ़कर निकल गए। कई बड़े अधिकारी बने, कई डॉक्टर बने, कई इंजीनियर बने, लेकिन रामदास वहीं का वहीं रहा, वही कुर्सी पर बैठा हुआ। फिर एक सुबह स्कूल खुलने का समय हो गया, लेकिन गेट नहीं खुला। शिक्षक पहुंचे तो देखा कि रामदास अपनी कुर्सी पर चुपचाप बैठा है। पहले सबको लगा कि वो सो रहा है, लेकिन जब पास जाकर देखा गया तो पता चला कि वो हमेशा के लिए आँखें बंद कर चुका था। पूरे स्कूल में शोक की लहर दौड़ गई। नगर निगम वाले उसके कमरे का सामान हटाने पहुंचे। कमरे में एक पुराना बिस्तर, कुछ कपड़े और एक लकड़ी की अलमारी रही। सबको लगा कि कहानी यहीं ख़त्म हो जाएगी, लेकिन तभी मजदूरों ने देखा कि कमरे की एक दीवार बाकी दीवारों से अलग लग रही थी। जब उसको तोड़ा गया तो अंदर एक छोटा सा गुप्त कमरा निकला। ये देखकर सभी हैरान रह गए। कमरे के बीचों बीच एक लोहे का संदूक रखा था। खबर पूरे शहर में फैल गई, लोग जमा हुए गए। सभी को लगा कि शायद बूढ़े चौकीदार ने करोड़ों रुपए छिपा के रखे होंगे, लेकिन जब संदूक खोला गया तो अंदर सिर्फ सैकड़ों फाइलें, तस्वीरें और एक मोटी डायरी मिली। पहली फाइल खोली गई तो उसमें एक डॉक्टर की तस्वीर रही, दूसरी में एक IAS अधिकारी की, तीसरी में एक वैज्ञानिक की, चौथी में एक सेना के अधिकारी की। हेलो हेलो,
1: देखो फोन कट हो रहे।
0: हाँ, बीच में कट गया था भैया फोन।
1: आपको सभी को नमस्कार, और साथ में आपने पंडित जी की याद दिला दी और मुनिया जी की भी याद आ रही है। तो मुनिया जी को, पंडित जी को भी हमारा ओम शांति नमस्कार कहना।
0: जरूर जरूर जरूर। तो देखिए भाई, कुल मिलाकर 163 तस्वीरें थीं। हर तस्वीर के पीछे एक ही वाक्य लिखा था, मेरा बच्चा। पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि ये सब कहाँ है। रामदास की कभी शादी नहीं हुई रही, फिर ये 163 बच्चे कौन रहे? तभी डायरी का पहला पन्ना खोला गया, ऊपर लिखा था, अगर मैं ये दुनिया छोड़ चुका हूँ तो अब समय आ गया है कि मेरे बच्चों को सच्चाई पता चले। और अगले ही शब्द पढ़ते ही वहाँ मौजूद हर इंसान के पैरों तले जमीन खिसक गई। डायरी का पहला पन्ना पढ़ते ही पूरा कमरा में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें उस पीले पड़ चुके कागज पर टिक गई। रामदास ने इस पे लिखा था, इन 163 बच्चों में से एक भी मेरा खून नहीं है, लेकिन इन सब ने मुझे जीने की वजह दी। आज जो लोग डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस अधिकारी, प्रोफेसर और सैनिक बने बैठे हैं, उनमें से अधिकांश को ये भी नहीं पता कि उनकी जिंदगी में एक ऐसा आदमी था जो हर रात उनके लिए भगवान से ज़्यादा दुआ करता था। ये पढ़ते ही लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई। आखिर एक साधारण चौकीदार का इन सफल लोगों से क्या रिश्ता हो सकता था। डायरी के अगले पन्ने पर जवाब लिखा था, साल 1998 में मैं एक कपड़ा मिल में काम करता था। मेरी पत्नी सरोज और मेरा 10 साल का बेटा मोहित मेरी पूरी दुनिया थे। जिंदगी छोटी थी लेकिन खुश रही। फिर एक रात मिल में भयानक आग लग गई और वो आग ने सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। मैं तो बच गया लेकिन मेरी पत्नी और बेटी बेटा वही आग में हमेशा के लिए मुझसे दूर हो गए। उस दिन के बाद मेरे पास जीने की कोनो वजह नहीं बची थी। मैं कई दिनों तक अस्पताल में रहा। जब बाहर निकला तो मुझे लग रहा था कि मेरी दुनिया खत्म हो चुकी है। लेकिन एक दिन अस्पताल से लौटते समय मैंने सड़क किनारे एक छोटे बच्चे को कूड़े में खाना ढूंढते देखा। उसकी उम्र मेरे बेटे जितनी ही थी। मैं उसके पास गया, पता चला कि उसके माता पिता एक दुर्घटना में मर चुके थे और अब वो अकेला था। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि शायद भगवान ने मुझे कोनो वजह से जिंदा छोड़ा है। डायरी पढ़ते पढ़ते कई लोगों की आँखें नम हो चुकी थी। आगे लिखा था, उस बच्चे की फीस मैंने भरी, फिर एक और बच्चा मिला, फिर तीसरा और धीरे धीरे ये मेरा मिशन बन गया। मैं दिन में मजदूरी करता, रात में चौकीदारी करता और अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा उन बच्चों पर खर्च कर देता जिसका इस दुनिया में कौनो नहीं रहा। जैसे जैसे पन्ने पलटे जा रहे थे, लोगों के दिल भारी होते जा रहे थे। रामदास ने लिखा था कि उसने कभी किसी बच्चे को ये नहीं बताया कि उनकी मदद कौन कर रहा है। कहे कि वो नहीं चाहता था कि कोई उस पर एहसान समझे। उसने हर बच्चे की पूरी जानकारी फाइल में रखी थी। किसे कब किताबों की ज़रूरत पड़ी, किसकी फीस जमा करनी थी, किसकी माँ बीमार थी, किसे हॉस्टल भेजना था, हर छोटी बड़ी बात दर्ज थी। तभी एक अधिकारी ने एक फाइल खोली, उसमें शहर के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ की तस्वीर थी। तस्वीर के पीछे लिखा था, जब ये 8वीं कक्षा में था तब फीस न भर पाने के कारण स्कूल छोड़ने वाला था। दूसरी फाइल में एक महिला आईएएस अधिकारी की तस्वीर थी। पीछे लिखा था, पिता की मृत्यु के बाद पढ़ाई छूटे वाली रही। एक एक करके फाइलें खुलती गई और हर फाइल के साथ लोगों की आंखों से आंसू बहते गए। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी था। संदूक के सबसे नीचे एक और लिफाफा रखा था जिस पर लिखा था, इसे मेरे अंतिम संस्कार के बाद खोलना। अगले दिन पूरे शहर ने रामदास को अंतिम विदाई दी। हजारों लोग आए। स्कूल के बच्चे रो रहे थे, शिक्षक रो रहे थे, यहाँ तक कि वो लोग भी रो रहे थे जिन्होंने कभी उसे महत्व नहीं दिया था। अंतिम संस्कार के बाद वो लिफाफा खोला गया। उसके अंदर एक वसीयत थी। वसीयत पढ़ते ही सब स्तब्ध रह गए। उसमें लिखा था, मेरे नाम पर जो जमीन शहर के बाहरी इलाके में है उसे बेच दिया जाए। उस पैसे से एक ऐसा छात्रावास बनाया जाए जहां कोई भी अनाथ बच्चा मुफ्त में रहकर पढ़ सके। इस सुनकर सभी हैरान रह गए। कहे कि किसी को नहीं पता था कि रामदास के पास कौनो जमीन भी है। जब जांच की गई तो पता चला कि वो जमीन आज की तारीख में लगभग 38 करोड़ रुपए की रही। लेकिन असली झटका तब लगा जब रजिस्ट्री के कागजात निकाले गए। वो जमीन रामदास ने नहीं खरीदी थी, वो जमीन उस कपड़ा मिल के मालिक ने उसके नाम कर दी थी जिसने आग के बाद उसे मुआवजा देना चाहा था। रामदास चाहता तो आराम से करोड़पति बनकर जिंदगी गुजार सकता था, लेकिन उसने कभी उस जमीन को बेचा नहीं। वो इंतजार करता रहा क्योंकि मौत के बाद उससे किसी बड़े काम को पूरा किया जाए। और कुछ महीने बाद शहर में सरोज मोहित छात्रावास का निर्माण शुरू हुआ। ये नाम पढ़कर लोगों को पहली बार पता चला कि उसने अपनी पत्नी और बेटे का नाम कभी भुलाया ही नहीं था। उद्घाटन के दिन देश विदेश से उस सभी 163 बच्चे पहुंचे जिनकी जिंदगी उसने बदली थी। मंच पर कोई नेता नहीं था, कोई बड़ा उद्योगपति नहीं रहा। मंच पर सिर्फ रामदास की एक साधारण तस्वीर रखी थी। तब एक युवा डॉक्टर मंच पर आया और रोते हुए बोला, मैं उन 163 बच्चों में से एक हूँ। अगर रामदास दादाजी नहीं होते तो शायद मैं आज भी किसी ढाबे पर बर्तन धो रहा होता। उसके बाद एक IAS अधिकारी खड़ी हुई और बोली, मेरे पिता की मौत के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन हर साल मेरी फीस किसी अनजान व्यक्ति द्वारा जमा हो जाती थी। आज पता चला कि वो कौन रहा। पूरा सभागार तालियों और आंसुओं से भर गया। लेकिन तभी जिलाधिकारी ने एक आखिरी दस्तावेज दिखाया। वो रामदास की डायरी का अंतिम पन्ना रहा, जो अब तक किसी ने नहीं पढ़ा था। उस पर लिखा था, अगर लोग मेरी कहानी जाने तो उन्हें ये मत बताना कि मैंने 163 बच्चों की मदद की। उन्हें सिर्फ इतना बताना कि जब भगवान किसी का सहारा बनना चाहता है तो किसी साधारण इंसान को चुन लेता है। काहे कि असली महानता पहचान मिलने में नहीं, किसी की जिंदगी बदल देने में होती है। ये पढ़ते ही पूरा हाल खड़ा हो गया। किसी की आंखें सूखी नहीं थी। उस दिन लोगों ने महसूस किया कि दुनिया में सबसे अमीर इंसान वो नहीं होता जिसके बैंक खाते में सबसे ज़्यादा पैसा हो, बल्कि वो होता है जिसने सबसे ज़्यादा दिलों में अपनी जगह बनाई हो। और रामदास, जो जिंदगी भर एक टूटी हुई कुर्सी पर बैठा चौकीदार कहलाता रहा, मरे के बाद सैकड़ों लोगों के लिए पिता, मार्गदर्शक और भगवान का दूसरा रूप बन गया। आशा करते हैं इस कहानी से आप भी बहुत कुछ शिक्षा लेंगे। कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती है, जीवन में उतारे के लिए होती है। चलिए यही बात पर एक गीत सुन लेते हैं। हेलो हेलो, जी कैसे हैं आप?
1: ठीक है, अभी तो थोड़ी तबीयत ठीक हो गई है आपका, जब से मैं सुन रहा हूँ
0: जी।
1: और मैं बोला दीदी को राम राम कर दो और सब मनमन भाइयों को और मेरे सबकी
0: जी। दवाई ले रहे हैं?
1: बहुत अच्छे। हाँ दवाई ले, अभी तो थोड़ा ठीक हो गया, अभी थोड़ा चलने फिरने लग गया, अभी थोड़ा ठीक हो
0: जी, जी जी जी
1: और बहुत अच्छे बोले थे आपके, सुन रहा था मैं, बोला ये कहानी खत्म हो गई तो भी मैं बोला मैं फोन लगाऊ।
0: अच्छा जी जी,
1: बीच में बहुत इंतजार किया लेकिन आप 2 नहीं मिले थे मेरे को।
0: हाँ मैं नहीं, बाहर सेवा पे थी, मैं अपने डिपार्टमेंट की सेवा में यहाँ पे भी करती हूँ, मेरा अपना भी डिपार्टमेंट है, उसकी सेवा में बाहर गई हुई थी, इसके लिए नहीं बीच में थी मैं जी।
1: कुछ न कुछ को तो कारण रहे
0: जी, जी जी।
1: मैं बोला मैं फोन, मैं बोला इंतजार करते करते फिर बाद में देखा आईटी प्रोग्राम दीदी।
0: हाँ जी जी,
1: कोई बात नहीं सर, बहुत अच्छे ज्ञान की बातें सुना रहे हैं और गाने भी इतने अच्छे सुना है कि लोगों के दिल में सुन के भी आंसू आ रहे हैं जिस कहानी सुनाई आपने।
0: थैंक यू, बाबा करवा लेते हैं। ठीक है, ओम शांति ओम शांति। तो भाई लोग चलिए एक गीत सुन लेते हैं, उनके बाद फिर बताएंगे।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: प्लेटफॉर्म पर चलते समय ध्यान रखें कि यदि कोई गाड़ी रनिंग थ्रू पास होती है उस समय प्लेटफॉर्म के किनारे पर न चलें, जिससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। तब एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए पैदल पुल का इस्तेमाल करें। रेलवे लाइन क्रॉस करना कानूनी अपराध है व इससे आप अपनी जान गंवा सकते हैं।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

देखिए भाई, श्रद्धा भक्ति और ध्यान में क्या फर्क है वो आपको बता रहे हैं। श्रद्धा मस्तिष्क का विषय है, मस्तिष्क यानी खुपरिया का, और भक्ति हृदय का यानी दिल का विषय है, और ध्यान दोनों को जोड़ता है। ध्यान यानी साधना, परमात्मा को याद करना। रिश्ता कितना भी खास काहे ना हो, अगर उनमें सम्मान नहीं बचा तो वो सिर्फ एक बोझ बन जाता है। याद रखिएगा, जहाँ आपकी बातों की कीमत ना हो वहाँ आपकी खामोशी ही बेहतर जवाब है। कहे कि आत्मसम्मान से बढ़कर कौनो रिश्ता नहीं होता। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका आत्मविश्वास है। जब स्वयं पर विश्वास होता है तो कठिन से कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं, और विश्वास सफलता का पहला कदम है। अगर आप में विश्वास नहीं है, आप कितना ही और जोर लगा लें और लोग आपका मदद कर लें, आप सफल नहीं हो सकते। सबसे पहले है आत्मविश्वास। सब कुछ खत्म हो गया ऐसा सोचकर कभी निराश मत होइए। इंसान की सीमाओं से परे कई चीजें ईश्वर के नियंत्रण में हैं, उस पर पूरा भरोसा रखिए। कांटों को दोष देना ठीक नहीं है। हे पार्थ, पैर हमने रखा था वो तो अपने जगह सही थे, है सही बात के नहीं? कांटा गड़ गया, हम कांटे को बोलते हैं ये गड़ गया, वो तो बेचारा अपनी जगह था, पैर तो हम ही रखे। परेशानी आती है, हम दोष देते हैं किस्मत को, लोगों को, लेकिन हमने तो नहीं देख के चल रहे थे ना। कहे का मतलब, अपनी गलती का दोष दूसरे पर मत दीजिए। यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो शिकायत नहीं, प्रयास करना सीखिए। कहे कि भाग्य अवसर देता है, लेकिन सफलता कर्म से मिलती है। सबसे प्रधान है हमारा कर्म। विचार बदलते हैं और विचार ही जीवन बदल देते हैं। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से ऐसे निकल जाते हैं जैसे किसी ने हाथ पकड़कर सहारा दे दिया हो। इस अदृश्य ताकत को हम परमात्मा कहते हैं, सर्वशक्तिवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं। वो दिखाई नहीं देते और हमें कभी अकेला भी नहीं छोड़ते। आप सब ने इस चीज का अनुभव किया होगा। कोनो भी परिस्थिति में अपना मन की स्थिति को सुरक्षित रखने का मंत्र। इस दुनिया में सब कुछ परिवर्तनशील है, कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जैसा है। हर चीज बदल रही है, हर पल बदल रही है। दूसरों की अच्छाइयों को देखना भी एक महान गुण है। माधव कहते हैं, मंदिर में सिर झुकाने से पहले उस माँ के चरण छू लेना जिसने चलना सिखाया, और इस पिता को प्रणाम कर लेना जिसने संघर्ष करना सिखाया। और जिसने ये काम कर लिया उसके जीवन में दुआओं का खाता होता है, और वो दुआएं सफलता दिलाती है। पैर छूकर आशीर्वाद लेना बहुत सरल है, लेकिन जब हमारे कर्म किसी के दिल को छूते हैं तो हमारे लिए उनके दिल से निकले आशीर्वाद ही सच्चे आशीर्वाद होते हैं। हर किसी के भीतर एक कुरुक्षेत्र है जहाँ रिश्ते, इच्छाएं और कर्तव्य हर रोज टकराते हैं, और जब सब कुछ धुंधला लगने लगता है तब कोई कृष्ण भीतर से कहता है, तू बस अपना धर्म निभा, फल मैं तय करूँगा। और आज का शुभ संदेश, जीवन में शामिल हैं इच्छाएं, चॉइस, विकल्प, अवसर, चुनौतियाँ आदि। इन्हें सही तरीके से संभालने के लिए ध्यान की द्वारा मन को एकाग्र करें, यानी परमात्मा को याद करके मन को एकाग्र करें। जब मन शांत होता है तब सही निर्णय लेना आसान हो जाता। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय स्वयं के लिए निकालिए। आंतरिक शांति ही सच्चा सुख है। परमात्मा कहते हैं, मेरे लाडले बच्चों, हमेशा याद रखना कि अगर आप किसी को रास्ता दिखाए के लिए दीपक जलाते हो तो सबसे पहले उसकी रोशनी आपके सामने ही होगी। गलत को गलत और सही को सही कहना चाहिए। काहे कि जौन रिश्ते देखकर न्याय करना भूल जाते हैं, काहे कि जो रिश्ते देखकर न्याय करना भूल जाते हैं उनका हाल भीष्म पितामह जैसा होता है। आप सब जानते होंगे भीष्म पितामह की अंतिम कैसे ये हुई। समय की घड़ियां कह रही परवा पंडिताएं, अपनी वाणी को विराम दो। अगले शनिवार 11 बजे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।

0: आदत भी लग जाती है। या दूसरा एग्जाम्पल भी हम दे सकते हैं कि अगर लोहा गर्म होता है आग में जलने के बाद तो उसको आकार देना सहज है, ठंडा होने के बाद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बस वैसे ही अगर कम उम्र में संगीत सीखा जाए तो उसकी सफलता अनिवार्य हो जाती है। ऐसे ही संगीत के बारे में और जानकारी देने के लिए हमारे साथ फिर से मौजूद है हर बार की तरह श्यामली जी। श्यामली जी, संगीत की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: हाँ, मैं भी सबको नमस्कार करती हूँ।
0: श्यामली जी, हमने आज बताया कि ऐसे तो कोई भी कला कोई भी उम्र में सीख सकते हैं, मगर बचपन से अगर सीखा जाए तो हम बहुत सहजता से कर सकते हैं।
1: हाँ जी, क्योंकि वॉइस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो उसका इधर उधर करना होता है
0: जी,
1: वॉइस को थोड़ा, आपने बताया ना, नरम माटी में जितना अच्छा फसल होता है जल्दी जल्दी हो जाते हैं, तो वॉइस को हम इधर उधर कुछ भी कर सकते हैं।
0: हाँ हाँ,
1: तो लेकिन ज्यादा उम्र हो जाते थोड़ा कोशिश ज्यादा करना पड़ता है ना,
0: संस्कारों का भी शायद ऐसा ही है।
1: ऐसे भी है सब,
0: खाली बचपन से ही जो आदत हम डाल लेते हैं।
1: हाँ, यही संस्कार ने आपने अच्छा बताया, जो आदत बन जाते हैं उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन कम उम्र में संस्कार अच्छा होता है, उसको वही संस्कार चलता है ना जिंदगी भर,
0: कायम रहते हैं।
1: तो ऐसे ही वॉइस के बारे में भी मैं कह सकती हूँ, अगर कम उम्र में सीखते हैं तो बहुत अच्छा वो सफलता की शिखर में पहुंच सकते हैं
0: जी,
1: जल्दी अपना लेते हैं। और थोड़ा ज्यादा उम्र हो जाता है तो थोड़ा उसको तो कोशिश करना ही पड़ता है,
0: ज्यादा अभ्यास करना। श्यामली जी, तिलंग राग के बारे में हमने पिछले एपिसोड में स्वर लिपि आरोह अवरोह किया, आगे आज आप हमें क्या सिखा रहे हैं?
1: हाँ, बाकी है जो बंदिश बाकी है, तान बाकी है, वो आज सिखाएंगे। ठीक है, तो लिसनर अगर किताब में बंदिश लिख लेते हैं तो अच्छा है
0: जी।
1: ठीक है, जैसे हमने दिया है, ले चल गोकुल गाओ, ले चल गोकुल गाओ श्याम कन्हैया रे, ले चल गोकुल गाओ श्याम कन्हैया रे, ये फर्स्ट स्थाई का है
0: जी।
1: अंतरा में है, वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में कित छुप है श्याम कन्हैया रे, वृंदावन की कुंज गलिन में कित छुप है श्याम कन्हैया रे। पहले बताया कि ये थोड़ा चंचल प्रकृति का है, तो इसमें जो बंदिश में आप ढूंढ सकते हो कितना इसमें नटखटी है
0: जी।
1: श्याम कुंज गलिन में खुद छुप गए, उसको ढूंढने में लग गए सब, तो यही बात गोकुल के गांव की है, तो यही हम स्वल्पी में बैठा देते हैं। ठीक है
0: जी जी।

0: श्यामली जी, जो पिछले एपिसोड में आपने छोटी सी बंदिश बताई,
1: हाँ जी,
0: और ये बंदिश,
1: हाँ जी,
0: तो सीखने वाली ये बंदिश होती है, ऐसा?
1: हाँ,
0: कुछ
1: सीखने वाली ये है। अच्छा। इसलिए हमने थोड़ा बिस्तर भी किया है, लेकिन ये प्रकृति चंचल है ना, इसको तो थोड़ा आराम से करेंगे इतना अच्छा नहीं लगे। इसको प्रकृति ही चंचल प्रकृति का है।
0: ओके।
1: थोड़ा ऐसे करेंगे, थोड़ा कभी फास्ट करेंगे, सिंगल लय डबल लय करेंगे, बिस्तर करेंगे, तो बहुत अच्छा है।
0: अच्छा श्यामली जी, इसी के साथ लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक में सुनते हैं तिलंग राग से संबंधित एक मीठा सा गीत। आप सभी श्रोता मित्र इसका आनंद लीजिए, और हम पुनः लौटते हैं संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन।
2: कैसे कहें हम प्यार ने हमको

0: किस्मत हमसे खुद से हम।
1: फिर से आप सभी श्रोता मित्रों का संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने श्यामली जी से तिलंग राग की बंदिश सुनी।
2: हाँ जी
1: श्यामली जी, आगे आप हमें क्या सिखा रहे हैं?
2: अभी थोड़ा तान करेंगे
1: जी।
2: तान भी सुनाएंगे तो अच्छा लगेगा। गुरु के पास से ऐसी शिक्षा लेना है, जरूरी है, तो हम थोड़ा सिखाते हैं तो अच्छा लगता है।
1: जी,
2: सामने लिसनर अगर सीख जाते हैं तो कैसे करना चाहिए, चार मात्रा, आठ मात्रा, बारह मात्रा, सोलह मात्रा, कितना अच्छा अच्छा, दस मात्रा, बहुत सारे कर सकते हैं। ठीक है,
1: जैसे आप हर बार कहते हैं कि गुरु की शिक्षा लेना बहुत आवश्यक है, मुझे लगता है कि गुरु की शिक्षा लेने के बाद जैसे ट्यूशन में रिवीजन होता है, ऐसे हम रेडियो के माध्यम से जो संगीत सिखाते हैं शायद उनका रिवीजन हो जाता होगा।
2: वही बात है
1: जी।
2: ठीक है, स्थाई अंतरा थोड़ा तान करके सुनाते हैं।
1: हाँ जी।

0: श्यामली जी, तिलंग राग की
1: हाँ जी
0: ये तान के साथ समय देता है हमको इजाजत, मगर जाते जाते हम आपसे सुने बिना तो हम जा ही नहीं सकते। आज आप कौन सा गीत लाए हैं हमारे लिए?
1: हाँ, हम इतना पुराना भी नहीं है, महबूब की मेहंदी एक फिल्म,
0: ये फिल्म का गाना,
1: बहुत सुंदर फिल्म है, राजेश खन्ना की है। ये जो कंपोजिशन है लता जी और रफी साहब जी की है।
0: अच्छा।
1: तो हम क्या करते हैं, लता जी के थोड़ा करते हैं।

0: हम भी याद रखेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
1: ये जो तिलंगरा के ऊपर जो गीत है
0: जी,
1: जैसे कि यहाँ कितना इसमें नटखट है, जो राग की जो महसूसता है, जो इसका एसेंस जो है राग में है, गीतों में है। थोड़ा हटके मटके नटखट करके इसको जो करना है, कैसे होता है एक राग के ऊपर प्रेजेंटेशन कोई भी गीत
0: जी,
1: इतना इसमें अच्छा रूपरेखा बन गया। मैं कोशिश किया है
0: जी। बहुत सुंदर श्यामली जी। इसी के साथ समय देता है हमको इजाजत, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। श्रोता मित्रों, आपके कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कुछ पूछना चाहते हो संगीत के विषय में, आप हमें तुरंत कांटेक्ट कीजिए। हमारा नंबर है 9414151415। फिर से रिपीट करती हूँ, हमारा नंबर है 9414151415। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 90.4।

0: नमस्कार, मैं हूं अनूप जलोटा और आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं रेडियो मधुबन में। भक्ति भजन आप सुनते हैं, उसका आनंद लेते हैं। एक भजन जो मैं बहुत प्रेम से गाता हूं, उसकी एक लाइन आपको सुनाता हूं।
1: मैया मोरी मैं नहीं मांगने खायो,
0: ये भजन मुझे बहुत प्रिय है, आप भी सुनिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: कल राठौड़ परिवार में माहौल थोड़ा गंभीर था, क्योंकि घर में दामाद पुराना बना है, घर जमाई नया। हमारे देश में दामाद को बहुत इज्जत दी जाती है, जिसकी आदत सूरजमल को भी थी। लेकिन अब जो इन्हीं घर वालों के साथ रहने लगे हैं, तो क्या वैसी ही इज्जत मिलेगी? या चलिए देखते हैं क्या हो रहा है आज राठौड़ परिवार में, जहां परिवार के बच्चे भी कैंप से लौट कर आ गए हैं और अब जमाई जी यानी सूरजमल जी लगे हुए हैं नई जॉब की तलाश में।
1: अरे सुबह सुबह ये क्या लगा रखा है, इतना शोर क्यों हो रहा है घर में?
2: जाह्नवी क्या है ये, तुम लोग कल ही अपने कैंपस से वापस आए हो, इसका मतलब यह नहीं कि घर को ही कैंपस बना दो।
3: दादी लेकिन मैं ये गाना नहीं बजा रही हूँ, दिस सॉन्ग डज नॉट हैज रिज।
2: चीज? क्या चीज नहीं है, अब गाने में कौन सी चीज आ गई?
3: चीज नहीं दादी, रिज रिज।
4: अरे बेटा हमारे देश में कितनी सुंदर सुंदर भाषाएं हैं, तुम लोग हिंदी बोलो, मारवाड़ी बोलो या चलो अंग्रेजी ही बोलो, पर ये कौन सी एलियन भाषा बोलते रहते हो?
3: पापा प्लीज डोंट बी सो बेसिक।
2: अरे ये कैसी अंग्रेजी है, पटर पटर करती रहती है, हमको तो कुछ समझ नहीं आता।
5: दादी जाह्नवी के कहने का मतलब है कि उसे ये गाना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए उसने ये गाना नहीं बजाया है।
2: तो कौन बजा रहा है ये गाना, जिसने मेरे सर में दर्द कर दिया है?
5: दादी चलिए चल के कमरे में देख लेते हैं।
6: जाह्नवी क्यों फंसा रही है वीरू को?
5: कुछ नहीं होगा, देखती जा।
4: ये लीजिए, ये तो वीर जी है। अरे सर गाना बंद करेंगे आप, वीर वीर।
7: अरे किसने मेरा गाना बंद किया?
4: मैंने किया, कोई आपत्ति है आपको?
7: अरे बड़े बड़े चाचू आप, अच्छा किया गाना बंद कर दिया, किसने चलाया था ये गाना?
3: तुमने।
7: हाँ वो बड़े चाचू वो रॉकिंग गाना है, तो मैं तो बस ग्रूव कर रहा था।
4: सुबह सुबह इतना जोर से गाना चलाया है, घर के बाकी लोगों के बारे में भी सोचा कर, हम संयुक्त परिवार में रहते हैं।
2: हाँ तो इसमें क्या हो गया, गाना ही तो चलाया है। आजा मेरा पोता, मेरा लाडला बच्चा, सुन तू कर वो क्या कहते हैं, घूम घूम घूम, तू कर।
3: घूम नहीं दादी, ग्रूव।
2: अरे वो ही तो कह रही हूँ मैं, अरे हाँ वही वही। अरे करने दो बेचारे को, क्या सुबह सुबह उसको परेशान करने में लग रहे हो सारे।
4: माँ आपके ही सर में दर्द हो रहा था ना।
2: देख वीरेंद्र तू नहीं समझेगा, क्योंकि तेरी तो दो दो बेटियां हैं। अरे लड़कों को ऐसे नहीं रखा जाता मीन मेख निकाल के, आखिर इकलौता चिराग है हमारे घर का, समझा?
5: और हम क्या है दादी?
0: इस सवाल का जवाब है किसी के पास, पोते को टोको नहीं रोको नहीं, और पोती को? वैसे अंबिका देवी राठौड़ शुरू से बेटों पर प्राण न्योछावर करती आई हैं। हालांकि बेटियों को भी शिक्षित तो किया, लेकिन उनकी शिक्षा को अहम नहीं समझा। हम सोचते हैं कि एक लड़की को स्कूल भेज तो रहे, इससे ज्यादा बराबरी क्या होगी, लेकिन रोज किसी न किसी तरीके से बेटी को दिखा ही देते हैं कि बेटा ज्यादा जरूरी है। चलिए देखते हैं राठौड़ परिवार की सुबह और कौन से रंग दिखाती है।
8: राजकुमारी, ओ राजकुमारी कहाँ मर गई?
9: जिंदा हूँ जेठानी जी, बस आई।
8: राजकुमारी आज ना मेरे पैर में बड़ा दर्द है, आज नाश्ता तू ही बना लेना।
9: जेठानी जी नाश्ता तो बन गया।
8: अच्छा आज नाश्ता इतने जल्दी बन गया?
9: जल्दी कहाँ जेठानी जी, 8 बज रहे हैं।
8: अरे 8 बज गए, ये बाकी के 7 और 6 कहाँ गए?
10: बड़ी भाभी वो आए थे घर पे, राजकुमारी भाभी के हाथ का नाश्ता खाकर चले गए।
8: हे राम, मजाक मत कर किशन, मुझे तो डर लगता है इस कम उम्र में ये मुझे क्या हो रहा है।
10: कम उम्र?
4: हाँ हाँ हाँ भाभी जी, आप तो बस हमसे थोड़ी सी बड़ी हैं, आपको क्या होगा।
8: हाँ वो तो है, वैसे इस घर के नए जमाईसा कहाँ हैं? अभी तक अपने कमरे में पड़े सो रहे हैं का?
11: बड़ी भाभी ऐसा कुछ नहीं है, पिताजी और जीजू साथ में वॉक करने गए हैं, आते ही होंगे।
4: लो आ गए वो।
12: अच्छा अच्छा अच्छा, चलो घर आ गया, चलो जमाई सा करने चलो।
13: हाँ, पर बढ़िया
12: चलो,
13: बढ़िया
12: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
13: अच्छा अच्छा ठीक है ठीक।
12: वाह आज तो मजा आ गया, सूरजमल बेटा बड़ा समझदार, आज तो पेड़ पौधों के बारे में बड़ी जानकारी दी इसने।
14: हाँ बस इन्हीं खेती बाड़ी के चक्कर में लगे रहते हैं ये, इनको बताइए पापा कि पेड़ पौधे पर पैसे नहीं लगते।
12: शांति, थोड़ा शांति से बात किया कर बेटा।
14: कैसे शांत रहूं पापा, एक हफ्ता निकलने को आया है और इन्हें कोई फिक्र ही नहीं है, ना नौकरी ढूंढते हैं ना कोई।
13: पापा आप शांति को कुछ मत कहिए, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ।
12: शांति चुप हो जा, जमाई साहब आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यही बैठिए।
14: क्यों पापा, मैं क्यों चुप हो जाऊं? आपको पता है मैं सुबह ही एक पोस्ट देख रही थी, मेरी क्लास में जो सुषमा थी ना, वो अपने पति के साथ वेकेशन पे लंदन गई है और मैं यहाँ।
15: शांति तू ये क्या बोले जा रही है बहन, एक पोस्ट की वजह से तू जीजा जी को इतना सुना रही है?
14: रागिनी दीदी आपकी शादी नहीं हुई है ना, अभी आप नहीं समझेंगी।
15: मैं इतना तो समझती हूँ शांति कि पैसे कमाना सिर्फ पुरुष की जिम्मेदारी नहीं होती है, जब रिश्ता बराबरी का है तो जिम्मेदारी भी तो बराबरी की होनी चाहिए। मेरी बात कड़वी लगेगी लेकिन अब मुझे कहनी ही पड़ेगी, ये जो तू रोज पार्टी करती है, इधर उधर जाती है, इससे अच्छा है जाके कुछ काम कर, पैसे कमा।
14: हाँ जैसे आप कमा रही है अपने एनजीओ से, कितना कमाती है दीदी आप बताइए जरा।
12: तुम दोनों बस करो, घर के मुद्दों पर बैठ के सम्मान के साथ बात की जाती है, फैसले लिए जाते हैं, ऐसे लड़ झगड़ के नहीं। अभी इस बारे में कोई बात नहीं होगी, गुस्से में एक दूसरे को जो भी कह रहे हो वह शब्द जैसे बाण से छूटे तीर है, वापस नहीं आएंगे। इसलिए जाओ सब हाथ धोकर आओ, पहले सब नाश्ता करेंगे, दिमाग ठंडा होगा तब फिर बात होगी।
4: राजकुमारी जाओ सबके लिए नाश्ता लगा दो।
9: हाँ जाती हूँ।
4: कहाँ जा रही हो, किचन उधर है?
9: वो आज मैंने कुछ स्पेशल बनाया है।
4: इतना क्या स्पेशल बना दिया जो किचन के बाहर है?
9: अरे आप बस देखते जाइए, शौक ही हो जाएंगे आप।
4: इसी बात का तो डर है,
9: है? कुछ कहा आपने?
4: नहीं नहीं बस पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, उनकी आवाज सुनाई दी होगी तुमको।
9: तो फिर मैं आती हूँ, मैं कीड़े मकोड़े लेकर आऊँ आपके चूहों के लिए।
4: क्या?
9: अरे मजाक कर रही थी।
4: राजकुमारी घर में वैसे ही कितना टेंशन है और तुम।
10: भैया इस टेंशन में किसी को तो मजाक करने दीजिए, वरना हमारी बहनें तो नदी में आए तूफान की तरह सब तहस नहस कर देंगी।
4: चल ठीक है अब नाश्ता करने चलें।
0: वैसे क्या लगता है आपको, राजकुमारी जी ने आज ऐसा क्या बनाया होगा जो किचन की दीवारों में नहीं समा पाया? और भगवत जी ने तो कह दिया कि जो बात होगी अब नाश्ते के बाद होगी, लेकिन नाश्ता करने के बाद ये सब लोग बोलने लायक बचेंगे भी या नहीं? वैसे जिस गुस्से में सब लोग गए हैं उससे तो लगता है कि नाश्ते की टेबल पर भी हंगामा होने वाला है, लेकिन ये राठौड़ परिवार है जी, यहाँ की हवाओं का किसे पता कब किस दिशा में बहने लगे। वैसे भगवत जी की बात से मैं सहमत हूँ, गुस्से में कही बात का बाद में कितना भी दुख हो, पर वो कहते हैं ना कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। वैसे इस घर के शेर शायर किशन कल रात अपने कमरे में बैठे बैठे कुछ पंक्तियां लिख रहे थे, जाते जाते आप भी सुनते जाइए।
11: रिश्तों की पंखुड़ियां भी कितनी खूबसूरत हैं, एक साथ मिलकर ही ये फूल बनती हैं, नीचे से सहारा भी देती हैं, ऊपर से उजाला भी देती हैं, अकेली हों तो बस ये धूल बनती हैं। रिश्तों की पंखुड़ियां भी कितनी खूबसूरत हैं, एक साथ मिलकर ही ये फूल बनती हैं।
0: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर फिर मिलेंगे कार्यक्रम घर ऑन एयर के अगले एपिसोड में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
16: घर ऑन एयर, पात्र परिचय, दादाजी भगवत सिंह राठौर, आरजे ज्ञानेश्वर, दादी जी अंबिका देवी राठौर, आरजे संध्या, चाचा किशन सिंह राठौर, आरजे श्रीनिधि, ताऊ जी गजेंद्र सिंह राठौर, आरजे रोहित, ताई जी चंद्रावती, आरजे प्रभा, बुआ रागनी राठौर, आरजे कृष्णा, बुआ शांति राठौर, आरजे मोना, वीरेंद्र राठौर, आरजे विशाल, राजकुमारी राठौर, आरजे आरुषि, बच्चे रूहानी अमीक्षा, नैरेटर आरजे अमित। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास न करें, यह जानलेवा हो सकता है। रेल के डिब्बों की छत पर बैठकर यात्रा ना करें, क्योंकि ओवरहेड वायर्स में 25,000 वोल्ट्स का करंट है। इनके संपर्क में आने से आपकी जान को खतरा हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, 107.8 FM रेडियो मधुबन सुन रहे हैं आप और रेडियो मधुबन के सभी सुनने वाले श्रोताओं का कार्यक्रम सलामे जिंदगी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हर सप्ताह हम आपके पास एक हमारे समाज के ही अनुभवी व्यक्तित्व को लेकर आते हैं इस कार्यक्रम में, जहां पर हम बात करते हैं उनके जीवन की, उनके जीवन के अलग अलग पहलुओं पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं उनके मुख से ही कैसी उनकी जीवन यात्रा रही और वहाँ से कुछ सीखने का प्रयास भी हम करते हैं। और ऐसे ही अनेक व्यक्तित्वों को लेकर कार्यक्रम सलामे ज़िंदगी आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज हमारे साथ जो व्यक्तित्व सलामे ज़िंदगी में आपसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, वह एक अंतर्राष्ट्रीय शख्सियत हैं, क्योंकि उनका जन्म भारत में नहीं हुआ है लेकिन वर्तमान वो भारत में ही रहे।

0: के अनुभवी व्यक्तित्व से बात करते हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं, उनके जीवन में झांकने का प्रयास करते हैं। और आपके साथ आज की इस बातचीत के आरंभ में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा बताइए कि कहाँ आपका जन्म हुआ और आपके अपने परिवार के बारे में, माता पिता के बारे में।
1: हम जामनगर से, सब मेरे फादर सब फार्मर्स थे, खेती करते थे, और वो लोग वहाँ हर 3 साल में और 2 साल में दुकाड़ होता था, पानी नहीं होता था,
0: अकाल पड़ता
1: था, तो लाइफ बहुत मुश्किल होती थी। तो वो लोग वहाँ से बोट्स में बैठकर 2-2 महीने की जर्नी करके बॉम्बे से मुंबासा, जो केन्या अफ्रीका का पोर्ट है, वहाँ गए। और वहाँ से अंदर 500 किलोमीटर आगे है नैरोबी, जो नया देश बन रहा था, ब्रिटिश का ही था। जैसा हिंदुस्तान में ब्रिटिश का राज था, वैसा केन्या में ब्रिटिश राज था, लेकिन अपना भारत हजारों साल से डेवलप था, और वो सारा जंगल था, और टोटल जंगल में से उन्होंने नया देश ब्रिटिश एस्टेब्लिश कर रहे थे।
0: तो
1: उसके लिए मेरे फादर और हमारे आजू बाजू वाले, उनके रहने वाले, वो सब यहाँ से सफर करके मुंबासा पोर्ट पर गए। फिर मुंबासा पोर्ट से अफ्रीका में केन्या में जो सब कैपिटल सिटी था उसका नाम है नैरोबी, तो थोड़े नैरोबी सेटल हुए। दूसरे जो दुनिया का सबसे बड़ा लेक, सेकंड बिगेस्ट लेक है, लेक विक्टोरिया, उधर किसुमू करके टाउन है, वहाँ सेटल हुए। और उसके बाकी के लोग केन्या के, जैसा मुंबासा है, किटाला है, एल्डोरेट, कुरु, बहुत ही अच्छे अच्छे सुंदर टाउन से, जिसको यहाँ हम हिल स्टेशन बोलते, इतनी अच्छे हवामान, बहुत ही अच्छे टाउन्स थे। तो सब वहाँ गए और जंगल से सारा चालू हुआ, तो उनको काफ़ी मुश्किलों से गुजरना पड़ा। उस टाइम में लाइट नहीं था, पानी नहीं था, बहुत ही ठंडी होती थी, तो वो सारा गुजरते गुजरते वो लोग ने किया। और फिर उन लोग ने, जैसे वो लोग पढ़े हुए नहीं थे, बहुत कम पढ़े हुए थे, तो फिर वहाँ हम सब उनके बच्चे, हमको पढ़ाने का उन्होंने चालू किया।
0: तो आपका जन्म नैरोबी में हुआ या फिर भारत में हो गया था?
1: नैरोबी केन्या में,
0: केन्या में ही जन्म हुआ।
1: 1945 में मेरा जन्म।
0: मैरिज यही भारत में करके वहाँ गए थे?
1: नहीं, और मेरे फादर वो पहले यहाँ से सब जाते थे सिंगल के हिसाब से, मेहनत करके जाते थे वहाँ, मेरे फादर भी गए, फिर वहाँ थोड़े कमाए, कमा कर घर बनाया, घर मतलब एक रूम बस, इतना ही, उस टाइम में इतना नहीं था पैसा वगैरह, तो एक रूम लिया, फिर थोड़ा पैसा कलेक्ट किया, और फिर जामनगर वापस शादी करने के लिए मेरे फादर आए। उसी तरह सब लोग ऐसे आते थे, तो मेरे फादर ने आकर यहाँ भारत में शादी की, और शादी करके फिर वो, मेरे मदर की उम्र उस टाइम 16 साल की ही थी, और जो उस टाइम में इसी तरह से होता था, उसको भी ऐसी दाउस में बोट में लेकर वहाँ चले। और बोट जर्नी भी बहुत, जैसे बोलते आज के समय में हम सोच भी नहीं सकते थे, अपना कोलसा साथ ले जाने का था, अपनी सगड़ी साथ ले जाने की, 2 माह की जर्नी, अपने ग्रोसरी साथ ले जाने की होती थी, और वो बोट के अंदर खुद को कुकिंग करना होता था। तो इस तरह से तकरीबन 50-60 लोग जाएंगे, बीच में थोड़े लोग बीमार भी हो जाएंगे, कोई मर भी जाएंगे, तो वो सारा करते करते वो वहाँ पहुँचे। और आप सोचो कि 16 साल की उम्र में अपने भारत में संस्कृति का जो सीखे हुए मेरी मदर फादर, सब कुछ, आप 16 साल में घर चलाना, सब कुछ करना, तो वो भारतीय संस्कृति के हिसाब से वो सब अपने मदर से सीखे हुए होते थे। तो छोटे छोटे थे, अपने छोटे मेरे मदर के वो लोग 10 भाई बहन, मेन मदर सबसे बड़ी थी, तो 16 साल पहले तो उसके छोटी बहन, छोटे भाई, सबको ध्यान रखते थे,
0: जैसे और टैलेंटेड थे। आपका जन्म और आपकी जो परवरिश है नैरोबी में ही हुई, तो सबसे पहले जो गुरु होते हैं, किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो उसके माता और पिता ही होते हैं, उनको देखकर ही बहुत कुछ बच्चे सीखते हैं। और जब आप उनको याद करते हैं आज, तो कौन सी वो बातें हैं, कौन सी वो वैल्यूज हैं जो आपको उनके जीवन में दिखती हैं, आप भी आज प्रैक्टिस में लाते हैं?
1: मेरे माँ बाप का, हम लोग बहुत छोटे बच्चे थे उस जमाने में, वो लोग खुद भी इतने कोई पढ़े हुए नहीं थे, मेरे मदर को तो लिखना पढ़ना नहीं आता था, लेकिन फिर भी उसको टाइम होता था तो खाना तैयार होएगा, स्कूल के लिए तैयार कर दिए, ऐसा था। तो हम लोग उस जमाने में एक मकान में, जिसको हम फड़िया बोलते थे, यार्ड के, तो अंदर 8-10 रूम होएंगे,

0: एक एक रूम में सब रहते थे और बीच में जो जगह होती थी जिसको हम फड़िया बोलते थे, उधर बच्चे खेलते थे। तो खेलते खेलते सबके माँ बाप कुछ कुछ कुछ जो सिखाते थे वो हम सीख जाते थे। और उसी तरह से जैसा अपना कबड्डी है, खो है, अपनी गिल्ली डंडा है, वही चीजें सारा दिन खेला करते थे और एक दूसरे के इंटरेक्शन से सीखते थे। और दूसरा हमको सीखने का मिलता था, जैसा आपने उस टाइम में धर्म का बोध था तो मंदिर में गए, कोई संत स्वामी आए, सब भारत से आते रहते थे तो वो लोग बताते थे, उससे थोड़ा मेरे पेरेंट्स सीखते थे, फिर हमको शेयर करते थे तो हम उसमें से थोड़ा बहुत सीखते थे। बाकी हम स्कूल में जाते थे तो मेरी स्कूल गुजराती मीडियम में होती थी तो उधर गुजराती में जो क्लास वन से जो अपनी कहवते हैं थोड़े मोरल वैल्यूज वाले जैसा ब्रह्मा कुमारीज में सिखाते, उसी तरह से उसमें से हम पिक करते थे, बस वही हमने सीखा और अपनी लाइफ में अप्लाई किया।
1: आपकी वहाँ पर पढ़ाई की?
0: वहाँ मेरी पढ़ाई की गुजराती में थी और वहाँ हमने हमारे बुजुर्गों जो मेरे फादर वगैरह गए उन्होंने वहाँ जाकर बहुत मेहनत करके स्कूलों बनाए, हिंदी के स्कूल बनाए, गुजराती के स्कूल बनाई थी। आर्य समाज की हिंदी की थी, कच्ची गुजराती हिंदू यूनियन करके गुजराती की स्कूल थी और गवर्नमेंट की जो स्कूलें सारी थी वो होती थी इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम में। इस तरह से हमको तीनों चीज का, तीनों लैंग्वेज का स्कूलों का चॉइस था और मेरी स्कूल थी वो गुजराती मीडियम में थी।
1: तो वहाँ पर नैरोबी में भी गुजराती स्कूल्स हुआ करते थे?
0: हाँ, नैरोबी में ही हमारे फादर वो सब लोग गए, वो सब ने चालू किया। सबसे पहले एक शिव मंदिर बनाया और उसके आसपास ये कच्छ गुजराती करके स्कूल बनाई तो उसके सब मंदिर में अंदर ही आते थे, भजन कीर्तन वहाँ ही होते थे, अपने सब संस्कार का जो बोलते हैं जो भी हम पिक करेंगे उसमें से पिक करते थे।
1: जी जी, तो वहाँ पर टीचर कैसे होते थे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, आप इसके बारे में कुछ बताना चाहिए?
0: हाँ, हमारे वहाँ टीचर्स जास्ती सब अपने भारत से आते थे। भारत में हमारी साइड जामनगर की साइड थी लेकिन गुजरात साइड में जो जामनगर वो काठियावाड़ बोलते हैं और गुजरात मतलब बड़ौदा आनंद वो साइड में प्रॉस्पेरिटी जास्ती थी, उधर पढ़े हुए लोग जास्ती थे तो मोस्टली टीचर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट पढ़े हुए लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ले आती थी, उसको भाड़ा देगी, उसको स्टीमर में ले आएगी, उसको उधर रहना देगी और वो सब मेरे टीचर्स थे।
1: बढ़िया, बहुत अच्छा। तो जैसे आपने अपनी ये यात्रा बताई, जब हम माता पिता से सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर हम सीखते हैं गुरुजनों से, तो और उसके साथ साथ में जो हमारे दोस्त होते हैं उनसे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, तो ऐसे किसी को याद करना चाहेंगे जो उनका आपके जीवन में अच्छा प्रभाव रहा हो, कोई ऐसे शिक्षक, कोई ऐसे दोस्त जो जब आप अभी भी कभी कभी उनसे बातचीत होती हो आपसे?
0: हाँ, हमारी बहुत यूनिक कहानी है कि मेरे फादर, मैं 10 साल का था, मेरा बड़ा ब्रदर 12 साल का था, मेरी बहन 8 साल की थी और छोटा ब्रदर 2 साल का था। उस टाइम मेरे फादर परमधाम चले गए, उसका डेथ हो गया और उस जमाने में बहुत मेरे लगभग 50 और 60 के बीच में अबाउट 70% 70% मेन लोगों का देहांत उसी एज में हो जाता था। उस जमाने में इतना मेडिकल एडवांसमेंट नहीं था, लोकल बीमारियां थी और सबकी वजह से यूजुअली सबका, तो मेरा फादर का भी ऐसा हुआ। तो मेरे को हमारे आजू बाजू में अखाड़े होते थे तो अपने जैसा भारत में थे उसी तरह से अखाड़े होते थे, तो मैं कोई फीस नहीं, कोई पैसा देने का, जैसा ब्रह्मा कुमारीज में यहाँ जाते फीस नहीं, कुछ देने का नहीं, लेकिन जैसा ब्रह्मा कुमारीज में ये बहन भाई होते तो हम जाकर जाते तो बोलते कोर्स कराते और उससे हम कितनी चीजें सीखते हैं, तो उसी तरह से तब अखाड़े में हम जाते थे और वहाँ हमारे जो जैसा मैंने बोला ये लोग सूरत है, बड़ौदा है, अहमदाबाद उस साइड पढ़े हुए लोग और जिसको सब कुछ आता था, ऐसे लोग जो एक्सपेक्टेड टीचर्स के हिसाब से आते थे और गवर्नमेंट सर्विस में आते थे वो आते थे और वो हमको सिखाते थे, जैसे कबड्डी है, खो है, ये सारी एक्सरसाइज है।
1: तो दो पोल पर ऐसा लग रहा है जैसे कि आप भारत के अंदर ही पले बड़े हैं, क्योंकि एक छोटा सा भारत आपने वहाँ भी, आपके माता पिता ने वहाँ जो गुजराती समाज आपके साथ किया था उन्होंने निर्माण कर दिया, तो मैं सही कह रहा हूँ?
0: बराबर, एक एग्जैक्टली वही, उन्होंने मंदिर बनाए, कम्युनिटी के हॉल्स बनाए कि जहाँ सब इकट्ठा हो सकते और सब कम्युनिटी वाइज वहाँ, तो हिंदुओं का आर्या समाज बोलते थे, जैसा ब्रह्मा कुमारी में सब आते उस तरह आर्या समाज के होते थे, उसके सिवा उधर दर्जी ज्ञाति, मोची ज्ञाति, हमारी थी विश्वास ज्ञाति, पटेल ज्ञाति, लोहना ज्ञाति सब लोगों ने अपने अपने हॉल बनाए और उस हॉल का फायदा क्या था कि कम्युनिटी इकट्ठी होती थी और कोई खूब किसी का बर्थडे तो जमाने में होता ही नहीं था, कोई सेलिब्रेट नहीं करता था और शादी भी बहुत सादी होती थी, शादी में फोटोग्राफी का भी कुछ नहीं था उस जमाने में। इधर हमारे साइड जामनगर में था वही तरह उधर था और उसमें से सब इकट्ठे होकर वहाँ कोई वहाँ वाला है बाहर से आते थे वो सारे अपने को जिसको हम इंग्लिश में बोलोगे एथिक्स एंड वैल्यूज मतलब लाइफ कैसे जीना, माँ बाप का कैसा मान सम्मान करना, आगे जिंदगी में कैसा बढ़ना, वो उस तरह से सारा वो लोग सिखाते थे। और मेरी लाइफ में मेरा मोटिवेशन ये है, मेरे अखाड़े में से ही एक सबसे मेरे को एक के बाद एक मिलते ही जाते थे, लेकिन सबसे वो जो मेरे को गुरु बोलोगा उसका नाम था भूपेंद्र दवे। वो कोर्ट में वहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में वो कोर्ट में बड़े अधिकारी थे और यहाँ आते थे तो हम बच्चे लोग खेलते होते थे तो वो हमारा हाथ पकड़ कर ले जाते थे और हमको जो भी सीखना है सिखाते थे, स्कूल में थोड़े वीक है सिखाते थे और उसके लिए कोई भी फीस नहीं, प्यार से ले जाते। बिल्कुल जैसा केन्या में भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर है तो वहाँ भी मैंने मेरा 10 बच्चे थे, मेरे भाई के बच्चे और मेरे, सबको अपना पहले मैंने कोर्स किया 94 में, उसके बाद सबको करवाया था। तो वो दर टीचर जो ब्रह्मा कुमारी में होते थे कोई फीस नहीं, कोई चार्ज नहीं और बहुत अच्छी तरह से समझाया गया कि कैसा अपने को भगवान को मिल सकते हैं, किस तरह से अपने को कनेक्शन कर सकते और उससे अपने को एनर्जी बोलते वो लेकर हम अपने स्टडीज में अच्छे रहेंगे, गेम्स खेल में अच्छे रहेंगे, तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी। तो उसी टाइप जिस ब्रह्मा कुमारी टाइप का ही वातावरण वहाँ अपने आप होता जाता था और उससे हम सब सीखते जाते थे और उसी से आगे बढ़ते जाते थे।
1: जो कहा जाता है कि अनुभव जो है बहुत सोने जैसा होता है क्योंकि जिसके पास भी होता है वो उतना वैल्यूबल बनाता है उस व्यक्ति को। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आपकी इस यात्रा को सुनते हुए, समझते हुए कि किस प्रकार से आपकी अपब्रिंगिंग हुई, कैसे आप बड़े हुए, कैसे आपका पालन पोषण हुआ, किस किस प्रकार की आपने पढ़ाई की, किससे किससे मिले, और भी आगे के जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन समय हो रहा है एक ब्रेक का, जहाँ पर हम सुनेंगे एक खूबसूरत सा गीत और इस गीत के बाद फिर मुलाकात होगी। दोस्तों सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: મારો નામ લોકેશ દેવપ્રહે, હું ઉદયપુર બોલ રહ્યો હું. આશા ભુંડિયા ઓર રેડિયો મધુબન 107.8 FM સુનતા રહો, હસતા રહો.
1: नमस्कार, 107.8 FM रेडियो मधुबन सुन रहे हैं आप और रेडियो मधुबन पर कार्यक्रम चल रहा है सलाम जिंदगी. दोस्तों, हमारे साथ बने हुए हैं रमेश चंद्र शाह जी, जिनका जन्म हुआ था नैरोबी, केनिया, अफ्रीका में, और अभी वर्ष 2024 में उनकी उम्र करीब 79 ईयर है. और आप हमें अपने जीवन के अलग अलग अनुभवों के बारे में बातचीत के माध्यम से बता रहे थे. सर, आपका फिर से स्वागत करता हूँ. तो आगे की यात्रा पर चलना चाहेंगे और मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा आपके युवा काल के बारे में, क्योंकि जैसे ही हम स्कूल की जीवन से आगे बढ़ते हैं और युवा काल में प्रवेश करते हैं तो बहुत प्रकार के विचार हमारे को आते हैं. अगर बिजनेस फैमिली का व्यक्ति हो तो वो बिजनेस में क्या करना है नहीं करना ये सोचता है, या पढ़ाई कर रहा हो जॉब करने के बारे में सोचता है. तो आपका ये समय कैसा रहा जब आपने अपने जीवन में भरण पोषण के हिसाब से कोई एक व्यवसाय आपने चुना होगा?
2: आपका बहुत आभार, और सबके साथ में अभी अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ. तो हम जब स्कूल में, हमारे टाइम में 11 धोरण तक पढ़ना तो बहुत ज़्यादा था. गवर्नमेंट में कहाँ भी आपको नौकरी चाहिए, कुछ भी चाहिए, बड़ी बड़ी कंपनियों में तो 11 धोरण तो बहुत गिना जाता था उस जमाने में. तो उस टाइम में जब हम, जैसा मैंने बोला, ये ब्रह्मा कुमारीज में अपने को जब भी वहाँ जाते हैं तो उसमें फ़ायदा क्या होता है कि अपने को जो उधर के जो शिक्षक होते वगैरह होते, वो काफ़ी पढ़े हुए अनुभवी लोग होते और अपना टाइम वो फ्री में देते हैं क्योंकि समाज को आगे ले आने के लिए. तो उस तरह से हमारे अखाड़े में भी ऐसे ही लोग होते थे. तो हम पढ़ते थे ना, उसी टाइम पर वो लोग हमको इनक्रेज करते थे कि कुछ ना कुछ साइड बाय साइड सीखो. को मैंने सीखा था इलेक्ट्रिक वायर रिपेयर करने का, उस जमाने का रेडियो आता था उसको रिपेयर करने का, फोटोग्राफी का मैंने चालू कर दिया था. मैंने इस तरह से सब सीखते जाते थे. और एक मेरे अनुभव जो मैं यहाँ भी शेयर करता हूँ, भारत में भी शेयर करता हूँ, हर जगह शेयर करता हूँ, कि छोटी उम्र से हम जब माँ बाप बच्चे को डांटने की जगह इनकरेज करते, कुछ ने उसे तोड़ भी दिया तो इनकरेज किया कि यस कोई नहीं, टूटा फिक्र मत करो, हो जाएगा, लेकिन इस तरह से करो, वापस भी हुआ तो भी कोई डांटना नहीं, अच्छी तरह से बताना. तो मेरा एक बहुत बड़ा अनुभव था कि मैं 12 साल की उम्र में, मेरे माता जी ने, 2 साल हुआ था मेरे पिताजी गुजर गए, तो मेरे माताजी ने मेरे को बोला कि तेरे को तू क्या पढ़ने वाला है. तो मैंने बोला मैं पढ़ने वाला हूँ 11 के बाद मेरे को जर्मनी जाने का सोच उस टाइम में आ गया था. तो मैंने बोला जर्मनी जाऊँगा, इंजीनियर बनेंगे, ये करेंगे ये करेंगे. तो उन्होंने बोला कि लुक बेटा, आप, हम व्यापारी ज्ञाति में से, हमारी विश्वासल कम्युनिटी, जैन कम्युनिटी है ना, वो सारी व्यापारी कम्युनिटी थी, उधर इधर फार्मर थी, उधर व्यापारी कम्युनिटी थी. तो बोलते तो दुकान पर जाओ और देख देख किस तरह से ग्राहक को अच्छी तरह से बुलाते हैं, अच्छी तरह से सेवा करते हैं, अच्छी तरह से हंस से बात करते हैं, और जो भी काम है उधर अपने मेरे चाचा लोग थे उसको मदद कर, जो भी काम है मदद कर सबको. तो मदद करते करते कितनी चीजें मैं सीख गया. एक एग्जाम्पल इसके साथ मैं ये दूंगा कि जब ब्रह्मा कुमारी सेंटर में लोग जाते हैं तो थोड़े टाइम जाने के बाद कोई कोई शिक्षक उधर के होते उसको अपॉर्चुनिटी देते कि अब इधर झाड़ू लगाओ, इधर ये चीज रख दो, ये बुक बराबर रख दो, या कोई एग्जीबिशन है उधर भाग लो, उस तरह से चांस देते रहते थे. तो मेरे को मेरे मदर और मेरे ये सारे प्ले ग्रुप को भी सबको इनकरेज ऐसा करते थे. तो मैंने मदर को ये बोला तो उसने बोला कि तू व्यापारी का बच्चा है, तेरे को व्यापार सीखना है. बोलते जो पढ़े हुए लोग हैं ना उसको तेरे को काम पर रखने का, मतलब वो कैसा हो सकता है. तो उसने बोला अभी देख तू ऐसा कर, तू, हम बंटा खेलते थे उसको, वो इधर गोली कुछ बोलते वो खेलते थे. तो हम लेते थे एक एक एक एक, मान लो एक पैसा का एक ऐसा लेते थे. तो उसने बोला तू जा पूछ दुकान वाले को 12 का कितना है. तो 12 का जो भाव था ना उसमें 4 फ्री आ जाता था, 8 का ही भाव देने का था. हाँ, तो उसने क्या किया, मैंने कि वो बंटे ले आया, फिर उसने बोला ये 4 है ना बेच दे एक पैसे में, 2 रुपया 12 की उम्र में कमाना चालू कर दिया. तो उस तरह से,
1: पर उस समय वो छोटा अमाउंट भी बहुत वैल्यूबल होता होगा ना.
2: बड़ा था फिर भी उस टाइम के हिसाब से, नहीं बोलते इतना बच्चे को आनंद आएगा, 1 रुपया भी कमाया तो उसको लगेगा और देखो मैंने कमा लिया. तो उस तरह से मेरा ट्रेनिंग बोले ना चालू हो गया. और वो करते करते करते हमने आगे करते हुए मैंने 20 साल की 18 साल में मैं हमारा बिजनेस में लग गया, जो चालू बिजनेस था। फिर 20 साल की उम्र में बिजनेस मेरे चाचा को रिटायर होना था तो हमने टेक ओवर किया। हमारी दुकान थी बहुत ही अच्छा एरिया में और नामना भी मेरे फादर वगैरह में बहुत अच्छी नामना रखी थी और हमारे सारे जो वहाँ जो कम्युनिटी वहाँ सेटल हुए थे वो उस टाइम के भारत की वैल्यूज लेकर आए थे कि हर चीज खानदानी से करनी है, किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी है, दाम भी लगाना है तो रिजनेबल लगाने का है, उस तरह से प्यार से सबसे बात करने है, लेवे के नहीं लेवे कोई कोई करनी, लेकिन अच्छी तरह से तो वापस तो आएगा ही, अच्छी तरह से किया हुआ है। तो इस तरह से हमने एक बाजू वो किया, दूसरी साइड हमने क्या किया जैसा ब्रह्मा कुमारीज में करते है कि जो छोटे छोटे और बच्चे थे उसको हम वही अखाड़े में ले जाते, फिर हम उसको सिखाते थे चीजें। तो मेरा 20 साल ये 17 साल में दुकान में लग गया, 20 साल में हमने दुकान लिया। उसके बाद हमने मैंने 25 साल की उम्र में हमने इंग्लैंड की एक जो अंग्रेज लोग होते आपको इंग्लैंड बोलते यूनाइटेड किंगडम वहाँ की एक कंपनी के साथ मेरी इतनी अच्छी मित्रता हो गई थी, वो भी बिकॉज वो लोग मेरे चरित्र मेरे कैरेक्टर और सबको एडमायर करते, जिस तरह से ब्रह्मा कुमारी में मैं एडमायर करता हूँ, जिसको भी मिलते मेहनत करते, पैसा वैसा का कुछ सोचते नहीं और अच्छी तरह से सेवा करते रहते और बहुत ही बड़ी और ट्रेनिंग उसको अपने आप मिल जाती है ब्रह्मा कुमारी में। उसी तरह से मेरे को सारी ट्रेनिंग मिली तो 25 की एज में हमने ये फैक्ट्री का प्लान किया। तो उस लोग ने मेरे को बोला कि रमेश तुम्हारे देश में भी प्रदेश की चीजें तो बंद करने वाले हैं तो तुम क्या करोगे, बोलो फैक्ट्री का सोच रहा हूँ लेकिन पता नहीं क्या करूँ। तो उसने बोला रमेश तू फिक्र मत कर, मेरी फैक्ट्री में आजा, जो भी देखना है जो भी सीखना है कर ले, यही चालू कर दे, हमको कुछ तेरे से नहीं चाहिए, बस तू चालू कर दे किनिया में। और नाम भी मेरी फैक्ट्री का अफ्रोलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड करके रखा था, और उसी लोगों ने जो उस टाइम के करोड़पति थे, आज के वो जो मकान में रहते थे, मेरे को घर पे बुलाते थे तो मेरे को लगता था जैसा बहुत दफा हम ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाएंगे और समझ लो के पेरेंट्स छोटा से काम करते हैं, छोटे से घर में रहते हैं, तो उसका बच्चों को लगेगा मैं तो मेल में गया हूँ। तो उस तरह से हमको भी ऐसा लगता था उनके घर पे जाकर, तो उन्होंने तो बच्चे जैसा ही बुलाया मेरे को अच्छी तरह से किया। और कंपनी का नाम भी उसने बोला अभी क्या रखोगे तुम, तो हमने सोचा फिर अफ्रोलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड करके नाम निकाला। और विद इन हम बिजनेस चालू करने के 3-4 साल में बेस्ट लेडीज हैंडबैग सूटकेसेस सब चीज घूमने फिरने का सामान और सब कुछ वहाँ बनाने लगे। और हमारी क्वालिटी थी ने वो इंग्लैंड के साथ कंपेरेटिव क्वालिटी, इतनी अच्छी क्वालिटी हम बनाते थे। और हम जाम्बिया नैरोबी केन्या में, और हम जाम्बिया जिम्बाब्वे अफ्रीका में बहुत से देशों में एडन एक्सपोर्ट भी करते थे मेरे माल, इतने तक मेरा माल अच्छा बन रहा था।
3: और प्रेरणादायी आपकी ये जो यात्रा है, क्योंकि कम उम्र में भी इतनी प्रकार की बुद्धि चला कर, और मैं समझता हूँ कि माता पिता का आपका बहुत ही अच्छा योगदान रहा, जहाँ पर आपको छोटे स्तर से ऊपर कैसे जाना है उस बारे में भी आपको सिखाया, और साथ साथ आपके समाज का भी आसपास के योगदान रहा आपको आइडियाज़ के बारे में देने के लिए और भी अन्य प्रकार से, तो इस प्रकार के सहयोग से आप आगे बढ़ते रहे। तो इसमें चुनौतियाँ भी जरूर कुछ आती होंगी।
2: चुनौतियाँ वहाँ जो हम अफ्रीका के देश में रहते थे ना, वहाँ चुनौतियाँ वो लोग जो जिसको आप हबसी बोलेंगे गुजराती में, ब्लैक लोग उधर के होते थे, तो वो लोग बहुत अच्छे थे, लेकिन उसके साथ साथ आज़ादी मिलने के बाद उनको क्या, उनको ऐसा था कि हमारा ही देश है तो हम सबको ऐसा था कि हम सबको तो इधर से निकाल देंगे, क्योंकि हम लोग उधर कम्युनिटी के हिसाब से गिनाई जाए, इंडियंस को एक ग्रुप है, अफ्रीकन जो मेजोरिटी वहाँ के लोग, आज वहाँ की पॉपुलेशन है 6 करोड़, तो वो और देश की साइज है जितना राजस्थान या गुजरात है वही साइज का देश है। तो ये लोग को ये होता था कि ये सबको निकाल के हम सब कुछ ले लेंगे, तो ये हमको डर बहुत वहाँ रहती थी, उसलिए हमने इंडस्ट्री वगैरह डाला था। और उसके साथ साथ वहाँ हर जगह चोरियों की डर बहुत रहती थी, कहाँ भी घर पे आकर लुट जाएंगे, रास्ते में लुट जाएंगे, फैक्ट्री में आकर लुट जाएंगे, बंदूक लेकर आकर लुट जाएंगे, घरों में भी बंदूक लेकर आ जाएंगे या तो बड़े छरे लेकर आ जाएंगे, और काफी लोगों का इससे लगता भी था और थोड़े थोड़े का मृत्यु भी हो जाता था, वो हमको सबसे बड़ी डर लगती थी। लेकिन हुआ क्या कि जैसा ब्रह्मा कुमारी इसमें बोलते हैं कि बाबा मेरे साथ है और बस वो है तो क्या फिक्र, मैं जो हिम्मत से चलते रहते थे और हम सोचते थे ये तो इंग्लैंड में भी होता है, अमेरिका में हर जगह होती है चीजें, तो यहाँ होती है। तो उस तरह से हम ये चुनौतियों को पास करते जाते थे। और दूसरी चुनौतियाँ सबसे बड़ी, जैसे हमने बिजनेस चालू किया तो मैंने सोचा कि अभी हम ये बिजनेस तो चालू किया तो सबसे पहले बैंक फैसिलिटी का जरूर होता है। तो ये बैंक फैसिलिटी का क्या हुआ कि हमने एक बैंक के साथ हमारा फैसिलिटी 1,00,000 रुपये का, जो आज का बोलेंगे 1 करोड़, उसका फैसिलिटी कराया। तो हुआ क्या कि उनका मैनेजर चेंज हुआ तो नया मैनेजर ने उसका एक स्टाफ को उसके ऊपर इल्जाम लगाया कि तुम ये कस्टमर को फेवर करते हैं। तो मैंने बोला वो फेवर कुछ नहीं किया है, सब कुछ बैंक के रूल पे किया है। और मैंने बोला आपके स्टाफ को भी ऐसा नहीं बोल सकते। मैं छोटा था तब से किसी के पर भी, जैसा ब्रह्मा कुमारीज में एवरेज लोग बहुत आते हैं तो वहाँ जो कोई आएगा उसी की कोई मजाक करेगा ना तो वो मैं नहीं लूंगा, जो हम बहुत आगे थे पैसे वाइज हर जगह, लेकिन वो मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा भले कितने भी बड़े हैं वो, और मैं चैलेंज भी करूंगा। तो इस तरह से इसको किया। तो बैंक मैनेजर ने बोला तो मैं वहां से थोड़ा नाराज होकर बाहर निकला तो जैसा हम ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं तो बहुत इधर अच्छे अच्छे काम करने वाले है, ऊपर वाले है, पैसा वाले वो भी आते रहते, हम तो बच्चे होते। तो ऐसे एक भाई मनेकलाल रुगाने करके वो निकले तो मैं लोगों को बोला रमेश तू यहाँ बैंक से निकल रहा है, कोई प्रॉब्लम है तेरा मुंह पे दिखाता है, तू थोड़ा रखता है नाराज। तो बोले बैंक मैनेजर बहुत ये, तो बोलता है तेरे को कितना देते है, मतलब 1,00,000 का ओवरड्राफ्ट देते, बोलते चल मेरे साथ। वो मेरे को ले गए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, वहाँ की बहुत बड़ी बैंक में, और उसका मैनेजर को मिलाया और उसको बोला कि रमेश आज से 5,00,000 की, आज का 5 करोड़ ले लो, आज से 5,00,000 की फैसिलिटी दे दो, क्योंकि वो खुद बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और वो भी अखाड़े में आने वाले ही थे। तो उसने बोला इसको 5,00,000 की फैसिलिटी दे दो आज से ही, और मेरी सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, कोई फिक्र नहीं तुमको, वो पहले बता दिया होगा मैनेजर के सामने, तो बोला इसको दे ही दो। तो ये मेरा सबसे बड़ा एग्जाम्पल हुआ था। और मैनेजर ने बोला कि तू का फॉर्म फिल कर ले, तेरा कर ले, और जो हमारी एक प्रॉपर्टी थी जो 1,00,000 के सामने रखी थी, वो बोलते उसी प्रॉपर्टी तुम ट्रांसफर करवा लेना, बट उसकी वेट करने की जरूरत नहीं है, बस तुम कल से तुम्हारा ये पैसा चालू कर दो यूज करना, बिकॉज हम जरूरियात के मुताबिक करते थे, क्योंकि हम जो गुजराती कम्युनिटी में आते हैं तो वहाँ ये चीज बिजनेस में आगे क्यों आते है कि हम संभाल के पैसा को रखते है, थोड़ा आया तो ऐसा ही खर्च करने में नहीं डाल देंगे, थोड़ा रखेंगे मकान लेने के लिए और रखने के बिजनेस के लिए रखेंगे, और थोड़ा सा जो स्पेंड करने है उसमें करेंगे। और मेरा पहले से हुआ था कि जो भी कमाते हैं ना उसमें 5-10% कहाँ भी, जैसा ब्रह्मा कुमारी इसमें बाबा के बॉक्स में भंडारे में डालते है, मंदिर में डालते है, कोई बच्चे को पढ़ाने का, किसी अपने से बेचारा कमजोर है उसको हेल्प करने का। तो उस तरह से हम पहले से ही ये सोच रखी थी कि कम से कम 5% 5% जो भी कमाते उसमें से उसी में डालने का है, और हमने लाइफ टाइम में वो चालू ही रखा, और उससे हमको सुगुन मिला, शांति मिली। हम उसके लिए नहीं करते थे, हम सिर्फ अपने को अच्छा लगता था उस लिए करते थे। फिर ब्रह्मा कुमारी से जाने के बाद पता लगा कि जो हम कर रहे हैं तो अच्छी चीज़ें हैं।
3: तो आपकी इस यात्रा से मैं समझता हूँ हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं तो बहुत इंस्पिरेशन ले रहे होंगे, कैसे एक शून्य से आरंभ करके धीरे धीरे धीरे धीरे उसको प्रगति करना है, और इस प्रगति करने के लिए कौन से जो जीवन के सूत्र हैं, चाहे वो सेविंग्स के बारे में आप बता रहे हैं, चाहे लोगों से पार्टनरशिप के बारे में बता रहे हैं, लोगों से सहायता लेने की बात बता रहे हैं, या फिर अपने माता पिता से जो सीख मिली उसके बारे में बता रहे हैं। काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी है, और सलाम ज़िंदगी इस प्लेटफॉर्म से आज हम आपके माता पिता को भी यहाँ से सलाम करते हैं, क्योंकि आपकी जो वर्तमान ज़िंदगी में उनका जो योगदान उन्होंने दिया है आपके बाल्यकाल में और युवा काल में, उसके फलस्वरूप उन शिक्षाओं के आधार पर आपने इतनी प्रगति कर पाए। और भी बातें करेंगे और आपके पारिवारिक जीवन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जहाँ पर आपने जीवन के मूल्यों को कैसे संजोया, परिवार के मूल्यों को कैसे संजोया, अपने बच्चों को कैसे अपने जैसा बनाने के लिए आगे सफल बनाया, इस बारे में जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। और दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सलामी ज़िंदगी, हमारे साथ बने हुए हैं रमेश चंद्र शाह जी, और बहुत ही अपने जीवन से अमूल्य अनुभवों को हमारे साथ साझा कर रहे हैं।
1: अभी समय हो रहा है एक ब्रेक का, आप सुनिए ये प्यारा सा गीत, हम फिर लौट कर आएंगे रेडियो मधुबन पर कार्यक्रम सलामी जिंदगी में। सुनते रहो और मुस्कुराते रहो।

0: सलामी जिंदगी कार्यक्रम में हमारे सभी सुनने वाले श्रोताओं का फिर से स्वागत है। और आज रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं रमेश चंद्र शाह जी। आप नैरोबी केन्या से हैं, 1945 में आपका जन्म हुआ और आपने अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त की हैं, जिसमें अकाउंटेंसी, इंग्लिश लॉ, इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट प्लास्टिक में और भी अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त की। तो उनसे बातचीत करते हुए हमने उनके बाल्यकाल और जो युवा काल है उसके बारे में बातचीत की, उनके जो कर्ममय जीवन है उसके बारे में बातचीत की। अभी आगे चलते हैं दोस्तों और उनका फिर से स्वागत करते हुए सर आपसे अब मैं जानना चाहूँगा हमारे श्रोताओं की ओर से कि आपने जो अपने कार्यमय जीवन प्रोफेशनल लाइफ है वहाँ पर तो अलग अलग प्रकार की सफलताएं प्राप्त की, जो अपना पारिवारिक जीवन है जैसे मैंने आपसे पूछा था तो तीन भाई थे आप और आपका एक बहन थी, लेकिन आपके कितनी संतान थी और उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे?
1: शुक्रिया आपका। अभी जो फैमिली का है, मेरा जैसा मैं आपको रिपीट करता रहता हूँ, ब्रह्मा कुमारी एक्चुअली ब्रह्मा कुमार से जो हमको ज्ञान, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सब कुछ करने का जो सीखते हेल्प करते करते, बाबा को तो याद करेंगे लेकिन हेल्प करते करते जो सीख जाते हैं ने, वो मेरे को मेरे ये अखाड़े वगैरह ग्रुप से जो सीखा था तो उसमें मेरा ऐसा बोलो ने कि 10-12 साल में ही फादर का रोल जैसा आ गया था कि मेरी छोटी बहन थी मेरे से 2 साल कम, मैं 10 उसकी 8 थी और छोटा भाई 2 साल का था, उसको तो मेरे फादर का याद भी नहीं कुछ होएगा। लेकिन हुआ क्या कि ये मैं ये जैसा एग्जांपल मैं कंपेयर करने के लिए दे रहा हूँ कि जो ब्रह्मा कुमारी में मैंने देखा हुआ है यहाँ कि डांसिंग करते हैं, प्रोग्राम रखते हैं, तो 10-12-14 साल के बच्चे इतना बढ़िया चीज़ें करते हैं तो हम सोचने लगते हैं सीखे कैसे। लेकिन उसको सिखाने वाले बड़े बड़े जो ब्रह्मा कुमारी वाले और टीचर्स होते सब होते हैं, उससे उनको इंस्पिरेशन मिलता है और सिखाएंगे कराएंगे। मैंने देखा इधर रंगोली भी जो बनाते हैं आप हैरान हो जाएंगे, और बनाने वाले कोई दफा तो 12-14 साल के होते हैं। तो यहाँ इसी के तरह से मेरा जो अखाड़ा का था ग्रुप्स थे तो वो ग्रुप में से मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी का इतना आ गया था, मेरा बड़ा भाई था वो मेरे से 2 साल बड़ा था, उसका ग्रुप जो आज के जमाने के ग्रुप होते हैं कि कोई भी मिलेगा चलो घूमने, क्या पढ़िए घर का, क्या पढ़िए माँ बाप का, चलो हम मजा करते, उसका उस टाइप का ग्रुप था। तो उस ग्रुप में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेता था, तो मैंने प्यार से रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, मेरा छोटा भाई को हाथ पकड़ के, हमारा उस जमाने में रेलवे स्टेशन बड़ी जगह गिनाई जाती थी जैसा भारत में भी जो जमाना था, तो अबू रोड तो एक दुनिया का देखने की जगह गिनाई जाती थी, इधर का डोम बना है उस जमाने में आप सोचो ऐसे डोम कहाँ होएगे, तो ब्रिटिश लोगों ने बनाया था। मैंने भी जब फर्स्ट टाइम अबू रोड स्टेशन देखा मैं तो कोई तीर्थरण पर आ गए। तो इस तरह से मैं मेरे भाई को ले जाता था, मेरी बहन को ले जाता था और हमको इन्हें रोज का 10 पैसा मिलता था स्पेंड करने के लिए, तो 10 पैसा मैं इकट्ठा करके मेरे भाई बहन के लिए आइसक्रीम ले जाऊंगा, कुछ ना कुछ ले जाऊंगा। मेरे को नहीं याद है 16-18 के साल तक मैंने आइसक्रीम कभी चखा था, और मेरे को उसका कोई ऐसा भी नहीं था कि मैं कोई उनके लिए कुछ कर रहा हूँ, मेरा नेचर ही ऐसा बन गया था। जैसा मैं रिपीट बोलता हूँ ब्रह्मा कुमारी में भी जो लोग आते हैं ना उसका सेवा का नेचर बनता है, मतलब पब्लिक की तो सेवा करेंगे लेकिन अपनी फैमिली की भी उतनी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, अपने छोटे भाई बहन, अपने चाचा के लड़के, मामा के लड़के, जो भी बोल दो। जैसा मेरी फैमिली में 10 बच्चे थे, मेरी बहन के 3 बच्चे, मेरे बड़े भाई के 3 बच्चे, मेरी 2 बच्चियाँ और मेरे छोटे भाई का 2 बच्चे, तो ये सबको 10-10 को मैं जहाँ भी हम जावे, और अच्छी मेरा एडवांटेज क्या था कि शादी के बाद मेरे को युगल बहुत अच्छे मिले थे, उनके भी संस्कार जैसा ब्रह्मा कुमारी में होते हैं उसी टाइप के संस्कार थे, बहुत धार्मिक थे वगैरह, तो उन्होंने कभी भी मेरे को ये नहीं बोला कि ये क्यों अपने साथ आ रहे, खाने के टाइम पर आ गए बैठ गए क्यों हो गया, जो आज के जमाने में तो कोई एक भी कोई आ गया तो उसको एक्सेप्ट करना भी बहुत लोगों को मुश्किल होता है, बहुत लोगों की बीबी को भी मुश्किल होता है।
0: कौन सी वैल्यूज है जो बहुत ज्यादा काम आती है, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि एकल परिवार बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को अकेले रहने की आदत पड़ती जा रही है, यहाँ तक कि माँ बाप और बच्चे भी अलग अलग, उनके कमरे अलग और कई बार तो मकान भी अलग कर लेते हैं कि नहीं हमको थोड़ा सा फ्रीडम चाहिए, अलग से हमको रहना है। तो आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं, अपने जीवन को देखते हैं और इसको देखते हैं, तो कौन सी वैल्यूज अगर आती हैं तो इन सब चीज़ों को धारण करना आसान हो जाता है?
1: देखो, मेरे हिसाब से सबसे बिगिनिंग में वैल्यू ये है कि मेरी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, मेरे को एक्सरसाइज करना चाहिए, मेरी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। अभी बॉडी का तो हो गया, माइंड के लिए कोई ब्रह्मा कुमारी जैसी जगह पे जाकर वो सीखना पड़ता है कि अपने को अच्छे विचार आवे, अच्छी सोच मिले, तो ये उससे मेरी वैल्यूज डेवलप होती है। तो मेरे में ये सारी वैल्यूज ऑटोमेटिकली डेवलप हो गया था। नंबर वन, अब मेरा प्रेम मेरे माँ बाप के लिए, मेरे सब आजू बाजू में है वो सब के लिए मेरा प्रेम भाव, जो भी मेरे फड़िए में खेलते थे सब बच्चों बोते थे, अभी भी मेरे को 70 साल की एज में याद कराते हैं कि मैंने लेसन नहीं किया था, मैं 7 बजे तैयार हो जाता था, तो लेसन करने के लिए दौड़ के आते थे, जल्दी जल्दी करा दो, मैं स्कूल में जाऊंगा, अदरवाइज मार पड़ेगी उस जमाने में। तो अभी भी मेरे को एक मिला होता है तो बोलते आप कितने मेरे को कर रहे थे उस जमाने में। तो वो वैल्यू है सभी को हेल्प करने की वैल्यू। सबको पहले तो मेरे खुद का मेरे को पढ़ना पड़ेगा, मेरे खुद का दिमाग अच्छा होना चाहिए, मेरी बॉडी अच्छी होनी चाहिए, मेरा खान पीन अच्छा होना चाहिए, मेरे संबंध दोस्त और वो भी बहुत अच्छे होने चाहिए। उसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा कि मैं यहाँ अबू में शिमनी होम जो ग्लोबल हॉस्पिटल के नीचे वहाँ रहता हूँ, तो वहाँ जो लोग हैं ना वो लोग ब्रह्मा कुमारी में रिटायर्ड लोग आए हैं, तो सबका हैबिट अच्छे है, किसी का कोई खराब हैबिट नहीं, ये वो नहीं, वो अपने आप आ गया हुआ है, कोई भी बना कर नहीं आते, हैबिट तो मेरा होएगा जिसके साथ रहते हैं, जो एटमोसफियर में रहते हैं, लेकिन जो इन्फ्लुएंस होती है ना वो इस टाइप की। तो मेरे हिसाब से होनेस्टी मतलब ईमानदारी, और जो भी हम करते हैं, किसी को हमने प्रोमिस किया कि मैं कल तक आपको ये करके दूंगा तो करके ही दूंगा, नहीं हो सकता है तो मैं बोलूंगा मैं 4 दिन के बाद करके दूंगा। किसी का भी काम है, किसी को झाड़ू भी लगाना है, किसी को कुछ रिपेयर करना है, किसी को कुछ ले आकर दुकान में लेकर देने का है, किसी को पहुंचाने का है, कुछ भी है, हर जगह डिसिप्लिन के मैंने जो टाइम दिया वो मैं रखूंगा ही। अगर बहुत ऐसी सर्कमस्टेंस हुई तो उसको बता दूंगा कि सॉरी मेरे को ये आ गया है तो मैं उसके बाद करूंगा। जैसा लेसन करना है तो लेसन लास्ट मोमेंट पर नहीं, पहले से कर लेने का, वो डिसिप्लिन है। और दूसरा डिसिप्लिन यह है कि अपने माँ बाप का प्यार और अप्रिसिएशन कि देखो आपने हमारे लिए कितना कर रहे हैं, भले मेरी उम्र 5 साल की है, 10 साल की है, 80 साल की है, माँ बाप को कभी नहीं भूलना, और उसके सिवा अपने गुरुओं को, अपने टीचरों को, जहाँ भी हमको किसी ने कुछ सिखाया है कभी भी उसको नहीं भूलो। और उसको मैं हर रोज याद करता हूँ, मैंने पहले रिफर किया है ये, हम उसको दवे जी बोलते थे, भूपेंद्र दवे जी, अभी भी उसकी लड़कियों के साथ, उसके बच्चे लड़के के साथ अभी भी मेरा इतना संबंध है, हम तो मेरे से कंपेरेटिव छोटे हैं, अभी भी वही संबंध है, और अभी भी वो लोग मेरे को बोलते हैं, मेरे पिताजी को, वो तो मेरे गुरु थे लेकिन वो मेरे को बहुत याद करते थे, बोलते चेला कैसा निकला, हमने जो बोला उसने तो 50 गुना जास्ती करके दिखा दिया। तो उस तरह से होनेस्टी, इंटेग्रिटी और उसके साथ साथ मेडिटेशन भी बहुत ही जरूरी चीज है। लोगों को लगता है मेडिटेशन बोलते हैं तो ये वो ऑर्गेनाइजेशन का याद कर, वो नहीं है, वो लोग अपना समय दे रहे हैं, अपनी लाइफ दे रहे हमारा ब्रेन को अच्छा रखने के लिए। और आपका कंप्यूटर का CPU अच्छा हो गया तो ही कंप्यूटर चलेगा, वो नहीं होएगा तो आपका कंप्यूटर में भी गार्बेज ही आएगा। दूसरा, मैं आपको ये शेयर करना चाहता हूँ कि जो आपके मन में विचार जो रखे, अच्छे विचार डालते जाएंगे तो अच्छा विचार बाहर आएगा। बहुत लगा लोग बोलते हैं मैं कोई भी गंदे विचारों लोग के साथ घूम सकता हूँ, कर सकता हूँ और मैं अच्छा रहूंगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। कंप्यूटर लैंग्वेज में बोलते हैं गार्बेज इन, मतलब कचरा कंप्यूटर के CPU में डाला तो कचरा ही कंप्यूटर से बाहर आएगा, अच्छा इन्फॉर्मेशन डाला तो वो एकदम कैलकुलेट करके आपका 100 गुना अच्छी चीज बाहर निकालेगी। उसी तरह से अपने ब्रेन में अच्छे फीलिंग्स, अच्छी वैल्यूज, वैल्यूज मतलब सिंपल वैल्यूज है, होनेस्टी, इंटेग्रिटी, और मैं सबसे बड़ी वैल्यू गिनता हूँ सभी को मदद करने का, सभी को मदद करने का, आपके बच्चे, भाई के बच्चे और पड़ोस के बच्चे, समझ लो उसको उसके माँ बाप से इतना प्यार नहीं मिल रहा है। हम ब्रह्मा कुमारीज में एक बहुत ही अच्छा वर्ड बोलते हैं ब्रह्मा कुमारी, मैं तो हर जगह जाता हूँ, स्वामीनारायण में बात तो हम जैन में है, हम साई बाबा वाले ग्रुप है, मैं ऑस्ट्रेलिया पर्थ में मेरे मेन रहने का लास्ट 25 साल से था, तो वहाँ और इंग्लैंड में भी हमारा फुल राइट्स है, वहाँ भी काफी मैं रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं कि जो भी बहुत दफा किसी को अपने माँ बाप से जो चाहिए उस टाइप का नहीं मिलता है, क्योंकि माँ बाप खुद भी उनको खुद चांस नहीं मिला है वो पढ़ने का सीखने का, तो बच्चों को कैसा करेगा वो, ये ऑस्ट्रेलिया में तो नॉर्मल है, किसी को बच्चा आएगा उसको ये भी नहीं पता कैसा उसको हाथ में उठाएंगे, और तो बात जाने दो दूध कैसा पिलाएगा वो भी नहीं पता होता है। उधर गवर्नमेंट बच्चे आने के बाद सब कॉफी में माता ये सब मिले और कॉफी का पैसा गवर्नमेंट देती है, वो बोलेगी ये हम देंगे लेकिन आप सीखो एक दूसरे से। यहाँ तो हम हिंदुस्तान में इतने लकी है कि हम मिलेंगे, और मीडियम मिलने का कहाँ है कि जैसा मैंने बोला कि जो भी सोसाइटी में जो भी जगह जाते हैं वो मीडियम है मिलने का। तो ये वैल्यू अपने में कि सेवा करने का, हम करेंगे तो सामने से आएगा, जैसा हम ब्रह्मा कुमारी में बोलते हैं कि हम मेडिटेशन करते हैं वगैरह करते हैं, लेकिन वो करने से हमारे शरीर में तंदुरुस्ती आती है, अच्छे विचार आते हैं, और किसी को भी मदद की जरूरत है तो हम खड़े ही रहेंगे, हम सोचेंगे नहीं ये गिर गया है तो ओ मेरा काम नहीं है, आजकल तो कोई गिरा है कोई बाजू में भी नहीं जाएगा, लेकिन जो ऐसी धार्मिक वृत्ति रखता है वो दौड़ कर जाएगा कि कल मेरा भाई होता तो, कल मेरा चाचा होता तो उसी तरह से हम वैल्यूज रखते हैं।
0: देखिए कितनी अनुभव की जो बातें होती हैं वो हमको तो खुद को वैल्यूबल है बता साबित करती हैं, लेकिन जो सुनता है उन अनुभवों से अगर सीखने का प्रयास करता है तो ये और भी बहुत सारे लोगों के जीवन को वैल्यूबल बना देता है। ऐसी ही कुछ बातें हमारे सामने निकल के आ रही हैं जब हमारे साथ में हैं रमेश चंद्र शाह जी, और उन्होंने अपने जीवन के पारिवारिक जीवन और उनके सगे संबंधियों के साथ किस प्रकार से उन्होंने आगे बढ़े, कौन कौन सी वैल्यूज़ महत्वपूर्ण हैं कि एक परिवार को जॉइंट फैमिली बना के रखने में सहायक होती हैं, और अपने खुद के व्यक्तित्व को मन को और तन को स्वस्थ बनाने के लिए भी क्या आवश्यक है, ये सारी बातों पर उन्होंने प्रकाश डाला है। आइए आगे चलते हैं दोस्तों, एक गीत सुनते हैं और गीत सुनकर फिर वापस आएंगे कार्यक्रम सलामी ज़िंदगी में, जहाँ पर हमारी फिर बात होगी रमेश चंद्र शाह जी से, और हम जानने का प्रयास करेंगे वह जीवन के इस पड़ाव पर जहाँ पर उनकी उम्र करीब 79 ईयर है, कैसे वो अपने को तन और मन से स्वस्थ रखते हैं, किस बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: प्रभु।
1: नमस्कार, 107.8 FM सुन रहे हैं आप और हमारे साथ बने हुए हैं रमेश चंद्र शाह जी। दोस्तों, सलामी जिंदगी के इस कार्यक्रम में जो अनुभव हम प्राप्त करते हैं हमारे अनुभवी व्यक्तित्व से, आज के इस अनुभव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काफ़ी सारे अनुभव हमारे सामने आए, अलग अलग देशों के साथ उनके संबंध, उनकी यात्रा, उनका जन्म। और आइए उसको आगे ले चलते हैं और फिर मुखातिब होते हैं रमेश चंद्र जी से। रमेश जी, जो अंतिम पड़ाव है इस कार्यक्रम का, इसमें हम आप जानना चाहेंगे आपके वर्तमान जीवन के बारे में, क्योंकि जब हम देखते हैं कि समाज में हमारे बुजुर्गों को कई बार कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो स्वास्थ्य के बारे में हो, कई बार धन के बारे में होती है, और कई बार परिवार के अंदर पारिवारिक चुनौतियाँ भी होती हैं जो संबंधों के आधार पर होती हैं। तो जो आपकी जो ये जीवन यात्रा रही है, इतनी अच्छी आवाज़, बुलंद आवाज़ में आपने हमारे सभी साथियों को अपने अनुभवों को सुनाया, तो हमारे साथी भी अनुभव कर रहे होंगे कि श्रेष्ठ जीवन आपने अपना चुना है और इसके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ पुरुषार्थ किया होगा। कई सारे युवा साथी भी हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, जो अगर उनको ये पता चले कि बुजुर्ग होने से पहले हमारे जीवन को हमें कैसे गढ़ना है, तो इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए कि कैसे हम हमारे जीवन को बुजुर्ग होने के, और जब हम जाते हैं तो हमारी जीवन यात्रा में कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों को जीवन में प्रैक्टिस करना चाहिए, आप क्या करते हैं?
2: नमस्ते, मैं बहुत खुश हूँ, ये जो अभी आपने पूछा वो चीज़ इतनी महत्व की है कि हमारे बुजुर्ग उम्र तो आ गई, लेकिन उसके पहले क्या प्लानिंग करना है। अभी मैं मेरा ही एग्जाम्पल दूंगा आगे। जब मैं 40 साल तक मैंने इतना प्रोग्रेस कर लिया था मटीरियली, के रहने का मकान ले लो, कार ले लो, ये ले लो, वो ले लो, जो भी चीज़ है, बच्चों को अच्छा पढ़ाना, तो मैं सोचता था कि ओ ये तो अभी दुनिया का सब कुछ कर लिया और तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बस अभी तो जिंदगी ऐसे ही जीने की है। और हुआ क्या कि ऐसे ऐसे जैसा हम सब बोलते हैं कि अपने किस्मत में जो लिखी हुई चीज़ है वो बुलानी नहीं पड़ती, अपने आप ही आ जाती है। तो उसके लिए जब 40 हुआ तो मैंने बोला हो गया होगा, तो 40 में मैंने बोला आगे समस्या तो नहीं होगी, 40 में आगे वाली समस्या हो तो आकर खड़ी रह जाती है, रह गई मेरे में भी। 50 हुआ और समस्याओं खड़ी रह कर आ गई, 60 हुआ और समस्याओं। आप सोचेंगे पैसा का तो कोई तकलीफ नहीं, जो हम सब सोचते हैं यंग उम्र में कि पैसा मिल गया, घर मिल गया, कार मिल गई, समझ लो अच्छा जॉब या बिजनेस है तो और क्या। तो उसमें ऐसी ऐसी समस्या आती है कि जिसमें वो कोई चीज़ भी काम नहीं आएगी। तो ये मैंने देखा है कि पहले तो इकोनॉमिक, मतलब अपना प्लानिंग क्या करने का होता है, कि जैसा ऑस्ट्रेलिया में ये नॉर्मल होता है। मेरी बड़ी बेटी अंजलि उसको सीनियर फाइनेंशियल प्लानर थी, बड़ी सबसे बड़ी बैंक में वहाँ, तो वहाँ क्या करते हैं 25-30-35 साल में प्लान करने लगते हैं कि अभी मैं जब बड़ा होऊंगा तो मेरे को कितने पैसे की जरूरत होगी, मेरा क्या क्या कमिटमेंट होएगा, बच्चों ने तो पढ़ लिया होगा, वो तो अपने अपने काम पे लग गए, उसके सिवा मेरा क्या जरूर होएगा, हेल्थ का क्या होएगा। और हेल्थ में हम सोचेंगे बॉडी का, सोचेंगे कि बॉडी की हेल्थ का क्या होएगा, ये सारा करेंगे। तो उसके लिए क्या होता है कि सबसे महत्व का है कि जब मेरा प्रगति होता है ना, तो हमको लगता है कि वो किसी की जरूरत नहीं, अपने पास कोई आया बोलता है कुछ बोलेगा मैं तेरे को दिमाग का, जैसे ब्रह्मा कुमारी वाले कोई आएंगे, मेरे को मेरा भी हुआ था, मेरे को 40 की उम्र में ब्रह्मा कुमारी नैरोबी सेंटर वाले में तो आते जा, मैंने बोला बूढ़े हो गए तब आएंगे, अभी क्या जरूरी है, अभी तो हमको मजा करने दो। मजा मतलब मैंने कुछ भी और नहीं किया, मजा मतलब चाय पियो और करो, लेकिन मैंने बोला मेडिटेशन वगैरह में 6 बजे उठ कर क्या टाइम वेस्ट करना है। तो इस तरह से मैं भी हंसने लगा था, लेकिन मैंने देखा कि अपना प्लानिंग अब पहले से बॉडी का, दिमाग का, और अपने जब मैं बोलूँगा पैसों में, उसमें सब कुछ आ गया, घर आ गया, सब कुछ आ गया, कि सबसे पहले पैसा वगैरह जो कलेक्ट करते अपने खुद के नाम पर रखने का है, किसी के भी, जो सब भाग्य लेकर आए, बच्चे भी भाग्य लेकर आए, और उसका भाग्य के हिसाब से जो बनेंगे करेंगे। और मेरा तजुर्बा है हम किसी का भाग्य नहीं खरीद सकते, दे भी नहीं सकते, कितना भी पैसा दे दो आपको भाग्य नहीं बना सकेंगे। भाग्य बना सकेंगे मेरे अनुभव में भगवान के साथ कनेक्शन करके, क्योंकि वो अपने को, जब भी अपने को तबीयत बिगड़ जाएगी, लाइफ में एक्सीडेंट होएंगे, जिसके साथ हमको प्यार है उसका एक्सीडेंट, जरा मेरा केस में 7-8 साल पहले मेरे वाइफ तो चल बसे, लेकिन उसके बाद मेरी 40 साल की प्रोफेशनल लड़की सीनियर फाइनेंशियल प्लानर थी, टॉप पोस्ट में थी, बहुत ही अच्छी तरह से हमारी इस वैल्यू में चलने वाली थी, वो भी चल बसी 40 साल की उम्र में। तो उस तरह से इसी चीजें लाइफ में
1: क्राइसिस
2: आती रहेगी, तो ये जब आएगी तो अगर हमने मेंटली अपना डेवलपमेंट नहीं किया, जो मेंटल डेवलपमेंट जैसा कि उसके लिए कोई रास्ता नहीं है, एक सिर्फ समझ लोगे ब्रह्मा कुमारीज में स्पिरिचुअल मतलब सब दिमाग की रिलेटेड है। अब भगवान को याद करेंगे, फिर वो करेंगे, तो हम माइंड को क्लियर करते रहते और अच्छी अच्छी सोच आती है कि आगे क्या हो सकता है, उसकी विजन देख सकते हैं। अदरवाइज अपने झंझट में विजन नहीं देख सकेंगे। और दूसरा मैंने देखा है, जैसा हम 50 के हुए, बच्चे बड़े हुए, तो बच्चों का प्रॉब्लम चालू हो गया, फिर वो झंझट में, फिर उसके बच्चों के प्रॉब्लम, वो झंझट में, तो उसमें से फिर तो जास्ती हमारी लाइफ से भी जास्ती बिजी हो जाएगी। और जब बड़ी उम्र होती है, सब लोग 60-65 की रिटायर हो गए, तो रिटायरमेंट में क्या होएगा कि बच्चे, वो ऑस्ट्रेलिया में ये नॉर्मल है, बच्चे है वो बोलेगा आप जाकर ये कर लो, आप जब हिंदुस्तान से भी पेरेंट्स को बुलाते बोलेंगे घर साफ सुफ कर लेना, ये सारा क्लीन कर लेना, बच्चों को स्कूल पे छोड़ाना, ये करना, जो उसकी जवाबदारी है। लेकिन वो लोग क्या करेंगे, वो सारी जवाबदारी ढोड़ देंगे अपने पेरेंट्स को, क्योंकि पेरेंट्स को प्यार है बच्चे से, तो वो सब कुछ करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है कि उसकी खुद की हेल्थ बिगड़ने लगेगी, क्योंकि उम्र में वो बच्चे बड़े करने की उम्र नहीं है उनकी, उसकी बैक दिखने लगेगी और हर तरह से प्रॉब्लम होएगी। फाइनेंशियली क्या करेंगे, उसको लगेगा बच्चे अच्छे, सब कुछ उसके नाम पे कर दो। ऑस्ट्रेलिया में काफी केसेस अपने हिंदुस्तानियों का भी हुआ है, उधर बच्चों के नाम पे सब कुछ कर दो, सब कुछ दे दो, हम तो इधर रहने वाले हैं, थोड़ी देर होएगी, वो लोग को बताए थोड़े बच्चे हुए, अब इसको जरूरी नहीं है, तो उसको डस्टबिन बोलते उधर बड़े वाले को, डस्टबिन मतलब कचरा पेटी, इंग्लैंड में तो नाम ही है कचरा पेटी, तो कचरा पेटी हो गए, उसके लिए कोई जरूरी है, मैं नहीं बोलता हूँ सबका है, लेकिन थोड़े थोड़े लोगों का होता है,
1: ये ध्यान रखने की आवश्यकता
2: है। और ध्यान रखने की आवश्यकता है, और साथ ये नहीं सोच मेरा ऐसा नहीं होएगा, जो भी बोलता है ना, सब मेरे को कोई मिलता है, मैं बोलता हूँ कार अच्छी तरह से चलाओ, बोलते मेरी कभी एक्सीडेंट नहीं हो, मैं बोलता हूँ सीट बेल्ट पहनो, मोबाइल फोन यूज नहीं करो, अच्छी तरह से चलाओ, मेरा कब नहीं हुआ, लेकिन फर्स्ट टाइम ही एक्सीडेंट हुआ, मरने भी वाले फर्स्ट टाइम ही, तो एक्सीडेंट भी सबका फर्स्ट टाइम ही होता है, तो ये सोचने मत रखना मेरा नहीं होगा,
1: नियम से चलाना।
2: हाँ, नियम से चलाओ और सोचो कि मेरा भी होगा तो मैं तैयारी कैसा करूँ। आपका पैसा आपके अकाउंट में FD में जो रखना है रखो, किसी के भी नाम के मरने तक नहीं करने का, और जो चैरिटी का है वो भी साइड साइड भी करते जाओ। तो हम अभी आपके साथ वापस टाइम मिलेगा, सब शेयर करेंगे, लेकिन अभी मेरे को बहुत आनंद हुआ आप लोगों के साथ शेयर करा, और कुछ भी आपको इसमें से काम आया तो मैं बहुत खुश हूँगा।
1: बहुत अच्छा लग रहा है, और जीवन ही आपका सलाम करने लायक है, जहाँ इसलिए हम कार्यक्रम सलाम है जिंदगी में आपसे बातचीत कर रहे हैं। जाने से पहले मैं आपसे दो लाइन में आपसे एक संदेश लेना चाहूँगा, जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे।
2: मैं आप सबको मेरा मैसेज है, आप सब प्रोग्रेस करो, लाइफ में आगे बढ़ो, और अच्छी तरह से सब कुछ आराम से शांति से करते जाओ। कभी भी बड़ा जंप एकदम लगाने की कोशिश मत करो, क्योंकि किस्मत आपके आगे है आहिस्ता, और आपका माइंड का हेल्थ का बहुत ध्यान रखो पहले से ही।
1: तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सलामे जिंदगी, जहां पर हमारे साथ थे रमेश चंद्र शाह जी, और रमेश चंद्र शाह जी की जिंदगी को आज हम सलामे जिंदगी से सलाम करते हैं, और उन्हें भी शुभकामनाएं देते हैं कि उन्होंने जिस प्रकार से अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बना के रखा है, ऐसा ही उदाहरण हमेशा वो बने रहें, उनका स्वास्थ्य तन मन तंदुरुस्त रहे, और ऐसे ही हम सबको इंस्पायर करते रहें रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब,
2: थैंक यू।
1: तो दोस्तों, आप सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए 107.8 FM पर रेडियो मधुबन।
0: अभी बजे हैं दोपहर के 2, एक मिनट का यह समय स्वयं को और परमपिता परमात्मा को दो।

श्रोताओं, आज की शाम और शाम ढल चुकी है, अंधेरा हो चुका है, परंतु हमें मालूम है कि सूरज फिर उगेगा, उम्मीद फिर जगेगी और इस संसार में रोशनी फिर से आएगी। ये अंधेरा कायम नहीं रहेगा। मैं हूँ आपका होस्ट और आपका समय हमेशा का दोस्त शरद, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। हम इस बार लेकर आए हैं आपका फेवरेट शो जुनून। इस रेडियो फ्रीक्वेंसी 107.8 एफएम पर हम लेकर आते हैं एक फिर से जुनूनी को, जो समाज में बदलाव करना चाहता है, परिवर्तन की बात कर रहा है और एक नव चेतना की बात कर रहा है। वो युवा है, वो अधेड़ है, लेकिन फिर भी उसमें एक जुनून है और वो आगे बढ़ चुका है अपने जीवन को बदलने और दूसरे अपने आस पास के अपने भाई बहनों के जीवन को बदलने।

0: दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते
1: जी।
0: सबको, मेरा नाम कोमल है और मैं उदयपुर से बिलोंग करती हूँ। और मुझे बचपन से ही बहुत शौक था कि मैं बच्चियों के साथ या महिलाओं के साथ काम करूं, और जब उनके साथ कोई हिंसा होते देखती थी तो दिल को बहुत दर्द होता था। और उस टाइम पे मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था कि मैं इनका कैसे मदद करूं। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे लोगों से मिलती गई, अलग अलग एक्सपीरियंस आते गए कि किस तरीके से उनका सॉर्ट आउट करें। तो सबसे पहले तो मैं उनको एक ऐसा कम्फर्ट एरिया उनको प्रोवाइड करवाती थी जहाँ उनको लगे कि हाँ, यहाँ पे मैं अपनी दिल की बात, यहाँ मैं अपना दर्द शेयर कर सकती हूँ। और उनको मैं इतना स्पेस देती थी, इतना अच्छा एनवायरनमेंट देती थी कि उनको ये नहीं लगता था कि मैं उनकी सीनियर हूँ। वो मुझे अपनी एक बड़ी बहन मानते थे और हर चीज शेयर करते थे, और मैं अपने लेवल तक जो उनको सजेशन दे सकती थी, सलाह दे सकती थी, वो मैं अपने लेवल पे देती। उसमें मैं कोई लीगल एडवाइस जैसे वकील का है, ये सजेशन पहले उनको नहीं देती। देन उसके बाद में मैं उदयपुर की एक विकल्प संस्थान है जो बहुत सालों से महिलाओं और बच्चियों के लिए काम कर रही है और उनका बहुत सपोर्ट करती है एजुकेशन में, उनके मेंटल हेल्थ में, या उनको कोई भी लीगल एडवाइस की जरूरत होती है वहाँ पे उनका बहुत सपोर्ट करती है। तो उसमें कुछ कुछ ऐसी स्टोरीज है जो मेरे लिए इंस्पायर भी हो सकती है, और जहाँ पे विकल्प ने मदद किया है वहाँ पे भी उनमें बहुत सारा बदलाव हुआ है। तो मैं कुछ स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी इस मंच पे।
1: हम सुनेंगे उन कहानियों को और उन बातों को, लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपकी कहानी क्या है, कोमल की कहानी क्या है।
0: मेरी कहानी तो यही है कि मैं अभी सेवा का काम करती हूँ। मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेती हूँ, न मैं सरकार से कोई मदद लेती हूँ। मेरे कुछ वेल विशर्स हैं जो मेरे काम को देखते हैं और उनको अच्छा लगता है, वो मेरा सहयोग करते हैं। और हम लोग जो गरीब बच्चे होते हैं उनको पढ़ाई में भी मदद करते हैं। कुछ गरीब ऐसी फैमिली होती है जिनको उनके बच्चे जो है बुढ़ापे में बेसहारा छोड़ देते हैं, उनके लिए हम राशन की व्यवस्था करते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बारिश में आते हैं बिना स्लीपर्स के, गर्मी में आते हैं उनको हम लोग स्लीपर्स पहनाते हैं। सर्दी में, ठिठुरती सर्दी में बच्चे नंगे बदन स्कूल में आते हैं तो वहाँ पे भी हमने कुछ मुहिम चला के उनको स्वेटर वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। हमारा मेन मकसद ये है कि भारत में हम लोग गरीबी नहीं मिटा पाएंगे, क्योंकि जब तक वो सोच नहीं है कि मेरा पैसा मेरे तक, ये सोच नहीं बदलेगी तब तक भारत में गरीबी खत्म नहीं हो। लेकिन मैं मेरे लेवल पर, हमारे मुहिम के लेवल तक या हमारी टीम के द्वारा हम लोग जितना कर पाएंगे उतना हम लोग करेंगे। ये मेरा स्टोरी है।
1: नहीं, ये आपकी कहानी में तो बात है कि कोमल कैसे तैयारी, कोमल में ये बात चेतना कहाँ से आई, ये समाज परिवर्तन की बात करने की बात जो है, ये आपके दिमाग में ये बात कहाँ से आई?
0: आज से 3-4 साल पहले मैं बस्ती में गई थी लड़कियों से बात करने के लिए कि कैसे मैं उनको कनेक्ट कर सकती हूँ। तो वहाँ पे एक दादी से मिली थी मैं, जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई, जिनके बेटे की डेथ हो गई, उनकी जो बहू थी वो अपने बच्चों को लेके पक्के मकान में रह रही थी। और उस टाइम पे मैं गई थी, बारिश का मौसम था, और वो जो दादी थी वो झोपड़ी में रह रही थी, उसके जो सामान जो था वो पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ था। मैंने उस दादी से बात किया था, उस वक्त मुझे लगा था कि मुझे इनकी कुछ मदद करनी चाहिए। और धीरे धीरे जैसे जैसे मैं फील्ड में उतरती गई, जैसे जैसे मैं बस्तियों में जाती गई, मुझे लगा कि मैं दुनिया में भेड़ चाल चलने के नहीं आई, मुझे कुछ ऐसा काम करना है जहाँ पे मैं इन लोगों की मदद कर सकूँ। और धीरे धीरे मेरे अंदर वो कल्पनाएं जागने लगी कि मैं अलग अलग जगह जाके लोगों की मदद करने लगी, लोगों से जुड़ने लगी, और धीरे धीरे मेरी मुहिम में लोग जुड़ने लगे, लोग मेरी मदद करने लगे कि आप ये काम कर रहे हैं तो आप मुझे सहयोग दीजिए। तो धीरे धीरे ये जो भावना, ये फीलिंग जो मेरे अंदर आई, उसको थोड़ा टाइम लगा है, क्योंकि पहले जब मैं लोगों से कपड़े कलेक्ट करके लाती थी, घर पे रखती थी, तो मम्मी वगैरह डांटते थे कि कहाँ से लेके आई, कहाँ इनको कलेक्ट करेंगे। लेकिन धीरे धीरे मेरा परिवार भी मेरे साथ जुड़ता गया। आज मेरे परिवार का एक भी पर्सन ऐसा नहीं है जो मेरे साथ जुड़ा हुआ नहीं है। आज मेरा इतना स्ट्रॉन्ग बैक सपोर्ट बन चुका है कि वो मेरे हर समय मेरी मदद करता है, मेरा सहयोग करता है। आज कहीं भी जाना हो तो सबसे पहले पापा मुझे व्हीकल की चाबी दे देते फोर व्हीलर की, ये गाड़ी लेके जाओ, कहाँ तुम्हें किसकी जरूरत है वो लेके जाओ। और मेरा पूरा परिवार मेरे पीछे खड़ा है, मेरा सपोर्ट करता है। और इस समाज ने भी, और बहुत सारे एनजीओ से जिन्होंने मुझे मंच पे सम्मानित भी किया है, बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरा जो ये मुहिम मैंने स्टार्ट किया है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचे और लोग मेरा सहयोग करें, ताकि मेरा जो ये मुहिम मैंने स्टार्ट किया है वो कभी स्टॉप नहीं हो पाए।
1: बहुत बढ़िया दर्शकों, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन, और फ्रीक्वेंसी है 107.8 FM, जो कि है माउंट आबू की वादियों से। और आप सुन सकते हैं हमारे कार्यक्रम।

0: जुनून को रेडियो मधुबन के एप्लीकेशन पर भी, तो जाएं और डाउनलोड करें रेडियो मधुबन। तो हमारे साथ हैं आज हमारी इस कहानी में जुड़ने वाली कोमल, और कोमल बता रहे हैं कि अपने एक जुनून को कि वो कैसे पुराने सामान, पुराने कपड़े लोग घरों से लेते हैं तो उनके काम में नहीं आ रहे हैं, और लेकिन वो किसी और व्यक्ति के लिए उनकी आवश्यकता को पूरी करने का साधन बन सकता है। तो ये जो शुरुआत है कोमल, इसमें आप अभी क्या कर रहे हैं और कैसे इसको करते हैं, क्या चुनौतियाँ आती हैं?
1: अभी चैरिटी वाला अच्छा चल रहा है, चुनौतियाँ पहले बहुत आई थी क्योंकि उनको डीप एरिया में जाना, ले जाना, लोगों से कनेक्ट होना, और पहले लोग मेरे से बहुत कम कनेक्ट हो रहा था क्योंकि मैं जहाँ पे बच्चे देखती थी वहाँ पे मुझे लगता था मुझे कपड़े देने, लेकिन मेरे पास कपड़े नहीं हुआ करते थे क्योंकि मेरी फैमिली में इतने कोई छोटे बच्चे नहीं है, तो लोगों तक मैसेज पहुँचाना पड़ता था कि मुझे कुछ कपड़ों की जरूरत है, जूतों की जरूरत है। तो बहुत चुनौतियाँ भी आई थी, कुछ फाइनेंशियल भी चुनौतियाँ आई थी कि कैसे उस एरिया में पहुंचा जाए। उसके लिए हमें व्हीकल भी करना होता था, व्हीकल के लिए मैं उस टाइम पे जॉबलेस भी थी। तो उन चुनौतियों से मैंने डर कर अपने मुहिम को स्टॉप किया, मैंने कंटिन्यू किया, मैंने कहा मेरे से जितना हो पड़ेगा करूंगी, लेकिन अभी वो चुनौतियां सारी हट चुकी है और अभी मेरे साथ बहुत सारा मजमा जुड़ चुका है, बहुत सारे टीम मेरे साथ जुड़ चुके हैं और लोग मेरे से सामने से जुड़ना चाहते हैं कि आप लोग अगर कहीं जा रहे हैं तो हम भी आपके साथ इस मुहिम में पार्ट लेना चाहें।
0: जी, तो ये कैसे चलता है ये कार्यक्रम, इसमें कैसे आप जरूरतमंद की मदद करते हैं और कैसे उनको चिन्हित करते हैं, कैसे ढूंढते हैं?
1: पहले तो हमें बस्तियों में जाना पड़ता था, खुद से ढूंढना पड़ता था, एफर्ट मारना पड़ता था, बट अब क्या है कि बहुत सारे ऐसे कॉन्टेक्ट हो चुके हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जहाँ पे मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि एक ग्रीन सोल फाउंडेशन है, उन्होंने मेरी बहुत मदद करी, उन्होंने कम से कम मुझे 1000 स्कूल बैग, 1000 स्लीपर्स और 1000 मेट्स जो होते हैं वो मुझे डोनेट करने के लिए दिया। तो मैंने गोगुंदा, उदयपुर और सायरा स्कूल्स में जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे मैंने डोनेट किया। तो ऐसे बहुत सारे स्कूल्स के प्रिंसिपल है, टीचर्स है, वो मेरे से कॉन्टेक्ट में आए हैं, तो अब वो सामने से बोलते हैं कि मैडम यहाँ जाइए, यहाँ डोनेट कर सकते हैं, यहाँ पे रियल में नीड है। तो अब मुझे बस्तियों की सर्च नहीं करना पड़ता, सामने से लोगों का कॉन्टेक्ट आ जाता है कि आप यहाँ जाके डोनेट कर सकते हैं।
0: जी, तो अभी तक आपकी यात्रा कैसी रही है और क्या रिसोर्सेज आप इसमें लगा रहे हैं, आपके पास कितना स्पेस है, या कैसे आप अपने घर से इसकी शुरुआत करी की आपने, या अभी आप सामान कैसे इकट्ठा करते हैं, कहाँ रखते हैं सारे सामान?
1: पहले बहुत सारी चुनौतियां भी थी, बीच में मैंने सोचा भी था कि इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि लोगों का रिस्पांस नहीं आ रहा है। तो पहले तो मैंने अपने घर पे ही स्टोर किया था, देन मेरी जो बड़ी वाली सिस्टर है उनका उदयपुर में एक शॉप चलता है, तो फिर हमने कपड़ों को वहाँ कलेक्ट करना स्टार्ट किया, लोगों से सामान कलेक्ट करते हैं। और आज मेरे लिए बहुत अच्छी चीज है कि पहले हमें हमारे पिताजी की वजह से जानते थे क्योंकि मेरे फादर सरपंच रह चुके हैं, तो उनकी वजह से हमारी पहचान थी, लेकिन आज हमें गांव में लोग पहचानते हैं कि अरे ये वो दीदी है, अरे ये दोनों बहनें वो हैं जो गांव में जाके लोगों को कपड़े डोनेट करते हैं। तो अब घर पे ही हमारे यहाँ सामान आ जाता है, लोग हमारे घर पे ही आके डोनेट करके जाते हैं और हम लोग स्टोर करते हैं। और हमारे एक ही सोच रखा है कि हमारे पास जो टू व्हीलर है हमेशा उनमें एक बैग भरा रहता है, जहाँ पे हमें लग जाता है कि ये बच्चे हैं, नंगे पैर हैं, या इनके बदन पे कपड़े नहीं है, या फिर कोई ऐसा पर्सन मिल जाता है जिनके राशन नहीं है, तो हम लोग उनको उसी टाइम हम लोग देते थे। हम वेट नहीं करते कि हम घर जाएंगे वापस लेके आएंगे, ऑलवेज हमारे बैग में सामान रहता है, हम लोग वहाँ डोनेट करते रहते।
0: क्या कहानी है आपको बताइए, उदयपुर में कैसी कैसी कहानियां आपकी नजर में है जो आपने देखी और तो लगता है कि हमें कुछ काम करने की जरूरत है?
1: चैरिटी वाला तो कोई स्टोरी वही है, रैंडम मैंने आपको क्लियर किया था, लेकिन अभी जो मैं विकल्प संस्थान से जुड़ी हूँ तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज मेरे सामने आई है जिसको मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जैसे आज हमारा टॉपिक है नशा, इस नशे की वजह से इंसान हैवान बनता जा रहा है। कुछ कुछ ऐसे हमारे पास केसेस भी आए हैं, मैं नाम नहीं लूंगी उस बच्ची का। बच्ची अपनी माँ के साथ आई थी, यानी माँ ने दूसरी शादी किया था, तब बच्ची अपने माँ के साथ आई थी अपने नए पिता के पास। वहाँ बच्ची की माँ की डेथ हो जाती है, बच्ची महज 8वीं क्लास में पढ़ती है और 13 साल की। उसके पिता 11 साल, जब बच्ची 11 साल से थी, उसके साथ गलत हरकतें करता था रात में। बच्ची ने अपने आस पड़ोस में बताया कि मुझे अपने पिता के साथ नहीं रहना है, मैं पिता बहुत परेशान करते हैं, मैं घर से निकालो, मुझे अपने पिता के साथ नहीं रहना है। तो हम लोग क्या स्कूलों में सेशन करते हैं बच्चों के साथ पॉक्सो पे, यौन हिंसा पे, डोमेस्टिक वायलेंस पे। तो किसी बच्ची के पास हमारा टोल फ्री नंबर था, उस नंबर पे बच्ची का कॉल आया, फिर हमने बच्ची का सर्च किया, जहाँ बच्ची किराया रहती थी उसके पिता को भनक लगी, पिता ने वहां से हटा के दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, फिर पिता ने वहां से बच्ची को तीसरी जगह शिफ्ट किया, फिर पिता ने बच्ची को चौथी जगह शिफ्ट की। हमने पीछा नहीं छोड़ा, हमने उसका पीछा किया और जहाँ बच्ची को चौथी जगह शिफ्ट किया गया वहां पे, मतलब ये बात मुझे बताते हुए बहुत दर्द हो रहा है कि उस पिता ने पैसे के लिए अपनी बच्ची का सौदा किया। हर रात बच्ची को वो बेचता था पैसे के लिए, मज़ा 1000 रुपए के लिए अलग अलग पर्सन को बेचता था। हमें सूचना मिली, हमने कुछ गुप्तचर भी रखे, कुछ एजेंट भी रखे, हमें सूचना मिली कि बच्ची के साथ ऐसा हो रहा है। हमने फिर उसका CWC में एप्लीकेशन लगाया, फिर हमने थाने में भी FIR दर्ज करवाई, पिता को पेश किया गया, बच्ची को पेश किया गया, बच्ची को काउंसलिंग करी गई और बच्ची ने हकीकत की जो बताई, और फिर बच्ची को शेल्टर मिला, पिता को जेल मिला। और इस तरीके से जो बच्ची थी, आज बच्ची को हमें देखते हुए बहुत खुशी होती है कि बच्ची के जो चेहरे की रौनक थी वो हम वापस ला सके और जो हमारा मेन मकसद था वो पूरा हो। आज बच्ची बहुत खुश है, जहाँ पे भी है वो शेल्टर में है, आज वो अपनी खुशी से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रही है और उसकी जो जीवन की जो जर्नी होती है, जीवन की जो रूटीन है वो चल रही है। आज बच्ची अगर हम भी मिल भी जाएगी तो हम ये चाहते हैं कि बच्ची हमेशा खुश रहे। ये मेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस था विकल्प संस्थान में आने के बाद। ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हैं जो नशे की वजह से, क्योंकि उसका पिता जो था वो नशे का आदी था, उसको पैसा चाहिए होता था और वो पैसा कहाँ से लाए क्योंकि उससे कमाई होती नहीं। और ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हैं जो नशे की वजह से बहुत सारे घर बर्बाद।
0: जी सर, तो इस पूरी बात में आपकी जो संस्था है जिसमें आप काम कर रहे हैं, आपका वहाँ जुनून है कि कुछ बदल दें, समाज में कुछ बदलाव कर दें और कुछ लोगों के जीवन में रोशनी भर। तो इस प्रयास में आपने एक बच्ची की कहानी बताई। अब वो बच्ची की उम्र कितनी है अभी वर्तमान में?
1: अभी बच्ची 14 साल की है।
0: जी, बढ़िया है। वो डेफिनेटली चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट में अभी होगी और 18 साल तक वहाँ रहेगी। 18 के बाद आपके पास क्या योजना है उस बारे में भी हमें सोचना है। और सरकार की जो पॉलिसी है वो ये है कि 19 साल तक उसको एक मदद मिलेगी, एक साल तक कुछ आर्थिक मदद दी जाएगी, तो 19 साल के बाद उसको समाज में छोड़ दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप क्यों ना उसकी अडॉप्शन की प्रक्रिया में आप सहयोग करें। अडॉप्शन क्या आपने उसके लिए अडॉप्शन के लिए आवेदन किया है?
1: अभी नहीं किया सर।
0: CWC ने अपने
1: आदेश
0: जी आखिर, तो श्रोताओं में आपको बताऊँ की देश में चाइल्ड अडॉप्शन को लेकर एक रेगुलेटरी एक्ट है और इसके तहत 0 से 18 साल तक के बच्चों का अडॉप्शन किया जा सकता है और कोई भी आर्थिक रूप से संपन्न और संपन्न पारिवारिक स्थिति से दंपति बच्चे का अडॉप्शन कर सकता है और उस पोर्टल पे आवेदन कर सकता है और CWC और जिले की DCP यूनिट के माध्यम से अडॉप्शन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। तो आप भी, कोई बच्चा अगर आपको मिले तो आप उसको तुरंत PWC तक बच्चे को पहुंचाएं और यदि आपका भी बच्चा है और आप उसको नहीं रखना चाहते तो बच्चे को फेंके नहीं, हर जिले में अस्पताल में DCP यूनिट में पालना गृह है और पालना गृह में यदि आप बच्चे को छोड़ते हैं तो आप उसको किसी प्रकार की कानूनी उत्तरदायित्व आपके ऊपर नहीं होगा और किसी भी प्रकार का मुकदमा आपके ऊपर दर्ज नहीं किया जाएगा, आपकी गोपनीयता को भी रखा जाएगा। तो आप बच्चे को फेंके नहीं, जिले के अस्पताल में, जिले के DCP यूनिट में रखे हुए पालना गृह में आप बच्चे को छोड़ सकते हैं। तो ये थी बात हमारे जुनून की, जुनून में माता है कोमल। तो कोमल, आप हमें कुछ और कहानियां बताना चाहें तो हमारे श्रोताओं को, जिससे कि उनमें जागरूकता का प्रसार हो।
1: स्टोरी में आपको बताऊंगी, हमारा मेन मकसद ये है कि महिला के अंदर जो समाज का डर है, समाज का डर इस वजह से है कि आज महिलाएं समाज के डर की वजह से बहुत सारी हिंसा सहती है, बहुत सारी मार सहती है, लेकिन वो बाहर नहीं बोलते कि से मेरा घर टूटेगा या मेरे समाज में बदनामी हो। इस वजह से बहुत सारे ऐसे घर टूटे हैं, बहुत सारे घर हैं या बहुत सारी महिलाओं ने सुसाइड किया है। और इसका मेन वजह यह है, इसकी मेन रीजन ये है कि महिलाओं के अंदर डर है, समाज का डर। सबसे पहला डर उसके अंदर समाज का है कि समाज क्या बोलेगा, क्योंकि सबसे पहले उंगली उठती है औरत के ऊपर। मैं समाज के खिलाफ नहीं जा रही हूँ, लेकिन समाज का, आज मैं इतनी बड़ी हुई हूँ तो मैंने खुद ने ये देखा है कि आज अगर गलती अगर लड़की की है या लड़के की भी है, लेकिन उंगली हमेशा लड़की के ऊपर ही उठाई जाए कि लड़की की वजह होगी। अगर लड़की को बेवजह मारा भी जा रहा है तो समाज ये बोलेगा कि लड़की की ही गलती हो, तो लड़के ने हाथ उठाया होगा, उसके पीछे का जो कारण है वो जानने की कोशिश नहीं की जाती। और हमारा समाज जो है पुरुष प्रधान है, पुरुष प्रधान समाज की वजह से बहुत सारी ऐसी महिला हैं जो गुट गुट के जीने के लिए मजबूर है, जो कि उसको पता है कि शादी के बाद उसके बच्चे हैं, अगर वो सुसाइड कर लेगी तो उसके बच्चे हैं वो घर घर के भीख मांगने लायक हो जाए, अगर वो अपने मायके जाके बैठती है तो वहाँ पे भी वो अपने भाई भाभी की नौकरानी बनके जिएगी, उसके बच्चों का कोई भविष्य नहीं होगा। ये सारा चीज सोचने के बाद वो बहुत सारी ऐसी चीजें सहन करती रहती है, बहुत सारी मारे बहुत सारे अत्याचार सहन करती रहती है, लेकिन वो कभी बाहर नहीं बताती। तो हमारा मेन मकसद ये है कि महिलाओं के अंदर जो डर छुपा हुआ है, जो डर बैठा हुआ, उसको बाहर निकालना। हम ये नहीं चाहते कि अगर आपका पुरुष आपके थप्पड़ मार रहा है तो आप उसके थप्पड़ मारो, बट एटलीस्ट आप ऐसा तो करते हैं कि अगर वो थप्पड़ मार रहा है तो आप आवाज उठाए कि मेरी गलती नहीं है, आप मुझसे बात कीजिए, आपको किससे तकलीफ है, आप ये जो मेरे साथ बिहेव कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है, बस वो आवाज उठा सकते। और इसमें 50% नहीं, मैं 80% मानूंगी कि जो रीजन है वो या तो समाज का है या किसी भी प्रकार के नशे का है, क्योंकि आदमी के जब नशे का टाइम हो जाता है, किसी भी तरह का नशा हो, चाहे वो सिगरेट का हो या फिर शराब का हो, अगर उसके नशे का टाइम हो जाता है और उसको उस टाइम पे नशा नहीं मिलता है, नशा करने का पैसा नहीं मिलता है, तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो मैंने इस नशे के ऊपर कुछ लाइन लिखी है, वो मैं आप श्रोताओं के सामने कुछ शेयर करना चाहूंगी। नशा वो चीज है पत्नी का सिंदूर छीन लेता है, नशा पत्नी का सिंदूर छीन लेता है, माँ की दवा और पिता का सम्मान छीन लेता है, नशा माँ की दवा और पिता का सम्मान छीन लेता है, बेटे की पढ़ाई और बेटी का बचपन छीन लेता है, नशा बहन का प्यार और अरमान छीन लेता है, बहन का प्यार और भाई का अरमान छीन लेता है, और नशा अंत में व्यक्ति के शरीर से ताकत और ताकत से आत्मा छीन लेता है, और ये नशा नाश का द्वार होता है, और जो द्वार है वो आपकी बर्बादी और मृत्यु की तरफ ले जाने वाला द्वार होता है, और एक बार नशे की तरफ आपने कदम बढ़ा दिया तो यही समझो कि आपको उसका अंत, उसकी मंजिल मृत्यु ही होती है। तो मेरा सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जो किसी भी तरह का नशा करता है, आप एक बार सोचिए कि नशे से कितने लोगों का जीवन खराब हो रहा है। आपने देखा होगा नशा करने वाला झोपड़ी में रहता है और नशा करवाने वाला बंगले में रहता है। आपने कभी देखा होगा जो शराब पीता है वो झोपड़ी में रहता है और शराब पिलाने वाला बंगले में रहता है, शराब पीने वाला साइकिल पे जाता है और शराब पिलाने वाला मर्सिडीज में जाता है। इस चीज का आप ध्यान रखिए, नशा आपको बर्बाद ही करता है, कभी वो किसी का घर नहीं बनाता कि नशा करने वाला हमेशा सक्सेस होता है।
0: बहुत ही बढ़िया आपने कविता नशे को लेके पढ़ी है और विचार है आपके बिल्कुल स्पष्ट है कि जो नशा है वो नशा करने वाले के लिए उसका जीवन भी ले सकता है और उसको आर्थिक रूप से भी नुकसान पहुंचाता है। तो ये बताइए कि कोमल जी, आपको क्या लगता है कि हम कैसे इसको नशे को दूर कर सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए?
1: सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जितने भी सारे नशे की दुकानें खुली हुई है या फिर जो इंटरनल बेस्ड हैं, उनकी सूचना देने वाले के लिए अगर आप 5,000 का या 10,000 का इनाम देना कि नशे की जो भी सूचना देती है उसको इनाम दिया जाएगा, तो आपको उसमें सुधार मिलेगा। क्योंकि बहुत सारी ऐसी मेडिकल स्टोर्स हैं, बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स मिलते हैं जहाँ पे खुद चुपके आपको ये जो कॉलेज के पास, कैंपस के पास होते हैं, इंस्टीट्यूट के पास होते हैं या फिर किसी हॉस्पिटल के पास होते हैं, ऐसी बहुत सारी शॉप है जो खुद चुपके ये नशे का धंधा करती है, उनको पैसों से मतलब होता है, तो हम लोग वहाँ मुहिम चला सकते हैं, स्कूल में कैंपेन कर सकते हैं, कॉलेज में कैंपेन कर सकते हैं, और उनको कुछ ऐसी पीपीटी दिखाई जाए, उनको डीपली ऐसे मैसेजेस दिए जाए, डीपली ऐसे वीडियोस शेयर किए जाए जो उनको बहुत दिल तक या बहुत इंटरनल उनको बहुत टच करे कि नशा करना बहुत खराब हो गया है। ऐसे इस मुहिम को चलाने के लिए हमें ऐसे इतने सारे यूथ को इन्वॉल्व करना चाहिए, जैसे 18 से 25 साल के यूथ हैं उनको ज्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि उनसे इंस्पायर होके बच्चे जो हैं या फिर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है या फिर स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, वो उनसे इंस्पायर होके अपना जो डिसीजन है नशा करना है उससे थोड़ा सा दूर हो पाए।
0: जी, तो नशे को लेकर जो आपकी बात है, वो विचार है, निश्चित रूप से इम्पोर्टेंट है। अभी नशे को लेकर क्या हालात है ग्रामीण इलाके में, कैसे आप देखते हैं युवाओं को, वो क्या कर रहे हैं, नशा किस प्रकार का नशा बढ़ रहे हैं?
1: अभी नशे का ये है कि उदयपुर में नशा पहले कुछ कुछ जगह पे होता, लेकिन वो टूरिस्ट सिटी बनने के बाद में बहुत सारे ऐसे ट्यूरिस्ट बाहर से आते हैं, वो खुद अपने साथ लेके भी आते और यहाँ पे भी सर्च करते हैं। तो युद्ध को लगा कि क्यों ना हम कि युद्ध बहुत ज्यादा बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको जहाँ मैं जॉब कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे अगर टूरिस्ट आएंगे उनको रास्ते दे।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो शो जुनून, और जुनून में आपकी है फ्रीक्वेंसी 107.8 FM। बने रहिए और हमें सुनते रहिए। तो कोमल बता रहे हैं कि कैसे नशा जो है वो ग्रामीण इलाकों में टूरिज्म के माध्यम से पहुंच रहा है, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। तो हम रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म के लिए भी बात करते रहे हैं, रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म कैसे देश में आगे बढ़े, यानी कि टूरिज्म भी रहे और वो जिम्मेदार टूरिज्म, वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, वहाँ के विकास को, वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य को, वहाँ के हेरिटेज को और वहाँ के समाज को ना कराता है। ऐसे टूरिज्म की हम बात करते हैं जो रिस्पॉन्सिबल हो, सस्टेनेबल हो। लेकिन हमें जानने को मिल रहा है कि उदयपुर का जो पर्यटन उद्योग है उसने कहने की नशे में कॉन्ट्रीब्यूट किया है। वहाँ के स्थानीय कोमल हमें बता रहे हैं, कोमल बताए कि कैसे पर्यटन ने टूरिज्म को बढ़ावा दिया है वहाँ के क्षेत्र में।
1: जी सर, तो उदयपुर सिटी बहुत फेमस है टूरिस्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे डेस्टिनेशन हैं जहाँ पे आपको नेचर देखने को मिलता है, बहुत सारी ऐसी हेरिटेज वॉक है या फिर ऐसी हिस्टोरिकल पैलेसेस है जहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। इसके लिए इंडिया ही नहीं, इवन ऑल वर्ल्ड से बहुत सारे लोग आते हैं विजिट करने के लिए। बट क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट भी आते हैं जो किसी भी तरह के नशे के एडिक्टिव होते हैं। अब उनको जो एडिक्शन होता है, उनको वो चीज की रिक्वायरमेंट होती है, फिर यहाँ आके वो केमिस्ट्री की शॉप से पूछते हैं या फिर किराना से पूछते हैं। और धीरे धीरे आप ये देखो ना कि अगर हम किसी शॉप पे जाके किसी चीज के लिए 10 बार बोलेंगे कि ये चीज है क्या, तो शॉप वाले को लगेगा कि यार ये चीज मुझे रखनी चाहिए क्योंकि इसका मार्केट है। और धीरे धीरे वो गुपचुप भी उस चीजों को रखते हैं, और फिर उनको जो होते हैं बीच के जो डीलर होते हैं उनको भी हायर किया जाता है। और धीरे धीरे एक बार उनको अगर अर्निंग स्टार्ट हो जाती है और एक बार वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आते, तो युवाओं को लगता है कि उस पर्सन को लगता है कि यार पुलिस वाले ने मुझे नहीं पकड़ा तो अब वो क्या ही पकड़े। और धीरे धीरे वो इस गिरफ्त में जाते हैं, और जब कोई लाके उसको सेल आउट कर रहा है तो वो कहता है कि एक बार मैं उसको ट्राई करूँ कि उसका टेस्ट कैसा है, और वही टेस्ट जो फर्स्ट टाइम का जो टेस्ट होता है वही आगे चल के उसके लिए एडिक्शन बन जाता है। और धीरे धीरे इस गिरफ्त में 18 से भी कम साल के, बहुत सोचने लायक बात है कि 18 साल से भी जो स्कूल गोइंग है 9th-10th के बच्चे हैं, वो भी नशे के शिकार होते जा रहे हैं। जैसे स्मोकिंग जो है वो करते हैं, बियर पीते हैं, गांजा पीते हैं। इसका मेन कारण ये है कि उनको वो इजीली अवेलेबल हो जाता है मार्केट में, और उनको पता है कि कहां से हमें ये चीज मिल सकती है, कहां से वो परचेस कर सकते हैं। तो सबसे मेन रीजन ये है कि वो इजीली अवेलेबल हो पा रहा है।
0: जी, और किस तरह के उदाहरण आपने देखे? मैंने पिछले दिनों एक शराब की दुकान है वहाँ से छोटे बच्चे को, मैंने 12-13 साल के बच्चे को बियर खरीदते हुए देखा, और मैंने वहीं पर दुकानदार को मैंने विरोध किया। दुकानदार ने उसको फिर शराब देने से मना किया, अन्यथा अगर मैं नहीं रोकता तो वो दुकानदार उसको शराब बेच रहा है। कुछ ऐसे लोग भी हमारे सामने हैं जो हमारे दुकानदार हैं, जो शराब की दुकान पे काम करते हैं, उनको भी समझना है कि वो छोटे बच्चे के हाथ में शराब की बोतल ना दे। और इसके साथ ही अगर ग्राहक भी ये घटना देख रहा है तो ग्राहकों का भी फर्ज बनता है कि वो छोटे बच्चे को वहाँ से शराब ना खरीदने दें और दुकानदार को भी मना कर दें। तो कुछ ऐसी ही बात है जो ये हम सबको पहल लेने की जरूरत है कि ऐसा कुछ होते हुए अपने इलाके में देखते हैं, खासतौर पर सरकार के द्वारा चलाई गई दुकान पर यदि ऐसा हो रहा है तो उसका विरोध करना आवश्यक है। और अब तो सरकार के भी पंचायती राज के रूल्स में भी है, यदि किसी गाँव की 50% आबादी चाह ले तो वो अपने गाँव के ठेके को अपने गाँव से बाहर कर सकते हैं। और जरूरत है कि पंचायत में, ग्राम सभा में इसका प्रस्ताव लिया जाए। क्या आप जानते हैं? तो इसलिए हम लेकर आते हैं ऐसा ही जुनून, जिसमें आप न केवल आप अपनी तकलीफ बता सकते हैं, अपने गांव और अपने समाज के लिए, बदलाव के लिए भी काम कर सकते हैं। तो आज हमारे हाथ में ऐसे ही क्रांतिकारी उदयपुर से कोमल, कोमल का नाम बड़ा कोमल है लेकिन उनके जो काम है उनमें दृढ़ता है, उनमें एक आत्मविश्वास है और उनके अंदर आगे बढ़ने का जुनून। कोमल, आप बताइए कि आप उदयपुर के बारे में क्या सोचते हैं, उदयपुर को कैसे शहर बनाना चाहते हैं?
1: मेरा सपना ये कि मैं उदयपुर को क्लीन सिटी तो वो है, बट मैं ये चाहती हूँ कि उदयपुर में अभी बहुत ज्यादा नशा होने लग गया है और बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें युवा लोग भटक रहे हैं। युवा लोग भटकने का मतलब है कि आज जो बच्चे हैं स्कूल जो गोइंग बच्चे हैं, क्योंकि स्कूल में जाके हम लोग सेशंस लेते हैं उनका माइंड बहुत डाइवर्ट हो चुका है, उनका जो माइंड है वो पढ़ाई से हटके वो जो अदर एक्टिविटीज होती है जैसे घूमना फिरना, दोस्त बनाना, होटलों में जाना, कैफेज में जाना, फैशनेबल कपड़े पहनना, इन चीजों की तरह उनका जो माइंड डाइवर्ट हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि बच्चे अगर जब तक अपना करियर न बना ले वो इन चीजों में न पड़े, क्योंकि अभी इस जमाने में आपके इतना हाई कंपटीशन हो चुका है, किसी भी फील्ड में आप जाए, किसी भी सेक्टर में जाए, हाई कंपटीशन की वजह से बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पढ़ाई करने की एज में वो करियर बनाने की एज में वो भटक जाते हैं। होटलों में घूमना, यारे दोस्तों के साथ घूमना, मूवी देखना, उस टाइम पे उनको सही गाइडेंस नहीं मिलती है, इस वजह से वो भटक जाते हैं और इस वजह से उनका करियर नहीं बनता है और करियर नहीं बनने की वजह से उनको जॉब नहीं मिलता है। मैं चाहती हूँ, मेरा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है जो पाठ्य पुस्तकें हैं, क्योंकि मेरा थॉट ये है कि जो बच्चा फिफ्थ क्लास में जो बुक पढ़ेगा हिंदी की, वो चैप्टर उसके सिक्स क्लास में काम नहीं आने वाला, क्योंकि सिक्स क्लास में हिंदी का चैप्टर डिफरेंट होगा, लेकिन उनको जो अदर एक्टिविटीज जो कराई जाती है, जो मोटिवेशनल उनको जो स्पीकर के द्वारा जो बातें सिखाई जाती है वो उनके लाइफ टाइम तक काम आती है। जैसे उनको करियर गाइडेंस का है, या फिर सेक्सुअल वायलेंस के ऊपर उनका कोई सेशन होता है, या फिर सेल्फ डिफेंस वाला है, या कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट का है, ऐसे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं, या फिर हैंड्स ऑन एक्टिविटीज है, या उनकी अदर एक्टिविटीज है, स्किल डेवलपमेंट वाला है, ऐसे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज करवाए जाए, तो बच्चा अगर पढ़ाई नहीं करे तो भी आगे चल के अपना करियर बना सके। अगर बच्चा टेंथ फेल भी हो जाता है, क्योंकि सबका माइंड एक जैसा नहीं होता, सबका आईक्यू लेवल एक जैसा नहीं होता है, अगर बच्चा टेंथ फेल हो जाता है तो उसको फैमिली से, समाज से, स्कूल से, अपने फ्रेंड सर्कल से इतना प्रेशराइज किया जाता है कि तू तो फेल हो गया, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसके लिए हम ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाना है, ऐसे उनको गाइडेंस दे, ऐसा उनका सेशन स्कूल में चलाए करियर गाइडेंस का, कि बच्चा अगर नहीं होना चाहिए लेकिन इन केस अगर वो फेल भी हो जाता है या उनके परसेंटेज डाउन भी होता है तो वो अदर स्किल को अपनाकर अपना लाइफ या फिर अपनी चॉइस है या फिर अपने जो सपने है उसको पूरा करता है।
0: निश्चित रूप से युवाओं के सामने एक कंफ्यूजन होता है, वो एक ऐसी दौर है जब आदमी अपने और अपने साथ साथ अपने मानसिक बदलावों से भी गुजर रहा होता है, तो और समाज के जो बदलाव है वो तो उसको प्रभावित कर ही रहे हैं, तो इन सारे अंतर्द्वंद के बीच वो बच्चा अपने आप को आगे बढ़ा रहा होता है, तो वो समय होता है कि उसको सही गाइडेंस मिले और उसको गाइडेंस के साथ साथ उसके हाथ को हुनर मिले और हाथ के हुनर के साथ साथ वो समाज और अपने देश के लिए कुछ कर पाए, और उसी समय यदि कोई नकारात्मक अनुभव उसको हो जाए तो वो जीवन भर उसे नहीं बुला पाता। और इसी तरह सब तरह की युवाओं के और बच्चों के जीवन को बदलने में लगी है हमारी आज की युवा कोमल, और कोमल के साथ हमें ढेर सारी बातें, कोमल हम बातचीत तो करते रहेंगे, लेकिन आप ये बताएं कि कुछ और ऐसी कहानियां जो मैं आपसे आप चाहते हैं कि इस मंच पर रखी जाए और मैं आपसे नहीं सुन पाया और आप उसमें रुचि दिखाते हैं, थोड़ा बताएं इसको।
1: मैं ये बताना चाहती हूँ, मैं उन पेरेंट्स से, अगर ये मेरा मैसेज किसी पेरेंट्स के पास जा रहा है तो सबसे पहले मैं उस लड़की के माता पिता से बोलना चाहती हूँ कि अगर आपका बच्चा शराबी है, किसी नशे का आदी है, तो उसको डॉक्टर को दिखाओ, उसकी शादी न करें। मेरा कहने का मतलब है कि आपका बच्चा अगर किसी तरह का नशा करता है तो आपके बच्चे को डॉक्टर को दिखाए, नशे से छुड़वाए, उसकी शादी न करें। आप सोचते हैं, मतलब लड़के के पिता माता पिता ये सोचते हैं कि बच्चे की शादी कर देंगे तो ये सुधर जाएगा, नहीं, क्योंकि आने वाली लड़की डॉक्टर नहीं है। आप आने वाली बेटी का भविष्य मत बिगाड़े। अगर आपके बच्चे की किसी तरीके की कोई नशे की आदत है तो किसी बच्ची का भविष्य आप खतरे में न डाले और उसमें सारी हकीकत उसको बताएं। दूसरा ये बोलना चाहती हूँ मैं ये बच्ची के माता पिता से कि आप अपनी बच्ची को धन दौलत न दे, दहेज न दे, लेकिन आप अपनी बच्ची को इतना संस्कार दे, इतना एजुकेशन दे कि बच्ची अपने पैरों पे खड़ा हो सके और शादी के बाद वो किसी के सामने हाथ न फैलाए और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो, वो समय आने पर अपना खुद का और अपने परिवार का भी घर चला सके। ये मेरा निवेदन है। जी सर।
0: हाँ श्रोताओं, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने बताई है और ये संदेश सभी बेटियों के लिए भी है और महिलाओं के लिए भी है कि वे भी जैसे ही अपनी उम्र में आगे बढ़े तो सिर्फ राजकुमार के साथ विवाह करने का सपना ना देखे, वो भी अपने जीवन में एक मकसद बनाए कि मुझे जीवन में कुछ अच्छा काम करना है, मुझे देश के लिए उत्पादक नागरिक बनना है और मुझे देश के लिए कुछ अच्छा करना है। तो आपका सपना अगर राजकुमार को पाना होगा तो हो सकता है कई बार आपको राजकुमार ना मिले और राजकुमार के बदले में एक नशे और युवा के रूप में एक आपको पति मिल जाए, तो ये धोखा आपके साथ भी। सकता है, तो आप अपने जीवन का मकसद जो है वो राजकुमार के संग विवाह करना ना छोड़कर अपने जीवन का मकसद खेलों में कुछ अच्छा करना बताएं, किसी की महाविद्यालय विद्यालय में पढ़ाने का सपना देखें, आप देश के लिए किसी उत्पादक फैक्ट्री में काम करने का सपना देखें, आप इंजीनियर बनने का सपना देखें, आप नर्स बनने का सपना देखें, आप डॉक्टर बनने का सपना देखें, और तो और आप देश की राजनीति में राजनेता बनने का सपना देखें। ये सपने तो कुछ काम के हैं। राजकुमार को आपके जीवन में आपका जब आप इस सफर पर चलेंगे तो उस सफर पर हम सफर तो आपके साथ आ ही जाएगा। तो और वैसे भी हर सफल व्यक्ति के पीछे के साथ कौन नहीं डूबना चाहेगा, तो कुछ ऐसा ही हम सफर आपके साथ अपने आप ही जुड़ने के लिए मिल जाए। पहली बात तो है कि आप एक मजबूत सफर पर निकलें, एक सफर पर निकलें जिससे आपका जीवन और आपके आसपास के समाज का जीवन बदले, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण। लेकिन हमारी बेटियां ये भूल कर बैठती हैं कि वो जैसे ही बड़ी होती हैं तो राजकुमार के साथ विवाह करने का सपना देख लेती हैं और उन्हें कुछ नया सपना समाज के द्वारा बताया गया है। तो हमारे बीच में है कोमल जो इस तरह के गहरे विषयों पर हमारी बेटियों के साथ बात कर रही है, और इस शो में तो हम पूरी दुनिया के साथ आज बात कर ही रहे हैं। इस शो में तो ये ऐसे विषय हैं जिन पर सामान्यतः समाज में बात नहीं की जाती है, लेकिन आज हम इस रेडियो मधुबन के माध्यम से आपके बीच के सारे विषय लेकर आए हैं। आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन 107.8। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं तो चलते चलते मैं चाहूँगा कि कोमल आप ये बताएं कि नशे को लेकर राजस्थान सरकार भी जल्दी ही 26 जून को अपने अभियान का आगाज करने जा रही है, और नशे को लेकर एक अत्यंत गंभीरता के साथ चलाए गए अभियान में पूरा राज्य भागीदारी करेगा, सभी नागरिक जुड़ेंगे, सभी संस्थाएं सरकारी विभाग कॉर्पोरेट को भी इसमें जोड़ा जाए। आपको क्या लगता है आप कि सरकार के साथ क्या नया किया जा सकता है नशा मुक्ति अभियान के अंदर? आप
1: मेरा मानना यह है कि सरकार बहुत सारे नियम बनाती है, बहुत सारे कायदे बनाती है, लेकिन उसी को सरकार ही तोड़ देती है। जैसे कभी ब्लैक डे होता है, उस दिन शराब नहीं बेचने का नियम बना रखा है, शटर डाउन होगा, लेकिन पीछे की विंडो से शराब बिक रही है। और आप देखिए कि पीछे की विंडो से अगर शराब लिया जा रहा है तो वो पुलिस वाला खुद ले रहा है, जबकि वो सरकार का ही आदमी है। नियम यहीं से तोड़ना स्टार्ट होता है कि नियम बनाते भी आप है और तोड़ते भी आप है। अगर आपने कोई रूल्स एंड रेगुलेशन आपने बनाया है तो उसको फॉलो आप कीजिए पहले, क्योंकि जब तक अगर मिनिस्टर वगैरह या फिर गवर्नमेंट का कोई आदमी उसको फॉलो नहीं करेगा तो लोकल पब्लिक करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और मेरा एक्सपेक्टेशन है कि अगर इस मुहिम में महिलाओं को ज्यादा इन्वॉल्व किया जाए तो आपको 100% तो नहीं मान सकती, लेकिन 90% रिजल्ट मिलेगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे, बहुत सारे ऐसे पुरुष नशे के जो आती है वो उससे दूर हो सकते हैं। चांसेस हैं अगर उसमें इन्वॉल्व महिलाएं ज्यादा होगी 90% इस मुहिम में, तो 90% बच्चे या फिर 90% पुरुष हैं नशे से छुटकारा पा सकते, मेरा तो मानना ये है। पर
0: बहुत बढ़िया कोमल, आपने हमसे बात की, आप ऐसे ही काम करते रहे और अपने चैरिटी वाले काम में भी जुटे रहे, और आपकी टीम को और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, हमारे रेडियो मधुबन की तरफ से भी शुभकामनाएं, और उदयपुर को सुंदर नगरी, झीलों की नगरी को और सुंदर बनाते रहे। वहाँ किसी प्राकृतिक सौंदर्य नहीं, समाज में आ रही विकृतियों और बदलावों पर भी अपनी सटीक नजर रखी जाए और तुरंत होने वाले बदलावों को नोटिस किया जाए और उसमें समाज को जागरूक कर बदलाव के लिए आह्वान किया जाए। तो आप इसी प्रकार से जुड़े रहें और हमारे साथ काम करते रहें। रेडियो मधुबन की पूरी टीम की तरफ से आपको सलाम और नमस्कार।
1: एक मैसेज मैं उन शराबी भाइयों को देना चाह रही थी कि 1000 की बीयर की बोतल शराबी एक बार में खत्म कर देता हूँ, लेकिन वही 1000 रुपए का जो सिलेंडर आता है वो 2 महीने तक पूरे परिवार का खाना बन सकता है। तो शराबी भाई इस बात को सोचिएगा कि 1000 की बीयर की बोतल एक बार में आपको काम में लेनी है या 1000 का सिलेंडर आपको अपने परिवार के लिए 2 महीने का खाना बनाने के लिए काम देना है, ये बात आप सोचिएगा जरूर। थैंक यू सो मच, आपने मुझे समय दिया और आपने मुझे मौका दिया, इसलिए पूरी टीम को बहुत बहुत थैंक यू, और सबसे ज्यादा थैंक यू सो मच शरद भाई आपका, और कृष्णा बहन आपका भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू कोमल, तो फिर से ऐसे ही हम एक जुनूनी के साथ आपको मिलवाएंगे आपके फेवरेट शो जुनून में, और जुनून में फिर से नई बात होगी, एक नया आयाम होगा और एक नए जीवन को हम छुएंगे। तो फिर से मिलेंगे, और दोस्त दोस्त सनी ने शरद, जय हिंद।

0: मैं हूं जयप्रदा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार दोस्तों, कहानियों के सफर में आपका स्वागत है। आइए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं मेरे यानी अमित के साथ। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसे लिखा है अंजलि खेर जी ने और कहानी का टाइटल है खट्टी मीठी नमकीन। हाय माय स्वीट हार्ट, कैसी हो? मेरी याद आ रही थी ना तुमको? आज थोड़ी देर हो गई ना, गुस्सा हो गई हूं मुझसे? अरे ऐसी छोटी छोटी बात पे नाराज नहीं होते मेरी जान। देखो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद ओरिफ्लेम की एटीट्यूड क्रीम लेकर के आया हूं। कहते हुए बेड पर लेटी तन्वी को अंक में भरते हुए तनय बोला, पर तन्वी न जाने कहां छत को एक टक निहारते हुए संज्ञा शून्य सी खोई हुई थी। तनय उसे प्यार से सहलाते हुए पास रखी टेबल पर से कंघी उठाकर बालों को सवार कर उसके चेहरे पर क्रीम लगाकर उसे आईना दिखाते हुए बोला, देखो कितनी प्यारी लग रही हो तुम, एकदम चौदहवीं का चांद। हो गया तन्वी का मेकअप, चलो मैं आ गया करने उसका चेकअप। कहते हुए डॉक्टर जौहरी दाखिल हुए। ओह डॉक्टर साहब, देखिए मेरी तन्वी कितनी सुंदर लग रही है, ऐसा लगता ही नहीं कि इसे कुछ हुआ है। क्या मेरी तन्वी दिवाली के पहले ठीक हो जाएगी? उसके बिना घर का हर कोना वीरान और बेजान सा लगता है डॉक्टर।
2: मुझे लगता है आपके प्यार में वो ताकत है जो तन्वी को जल्द ही ठीक कर देगी। बस थोड़ा धीरज रखिए, उससे वो सब बातें शेयर कीजिए जो उसे पसंद है, या आपकी खुशनुमा यादें उसके सामने दोहराइए, बेशक तन्वी ठीक हो जाएगी। बाकी सारी रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल हैं, हम अपनी ओर से तो कोशिश कर ही रहे हैं, फिर आगे भगवान पर विश्वास बनाए रखिए, कहकर डॉक्टर चले गए। तन्वी का हाथ अपने हाथों में थाम तनय उसके हाथों से अपने गालों को सहलाते हुए बोला, तन्वी तुम्हें याद है जब शादी के 3 साल बाद तुम भाभी के डिलीवरी के लिए मायके गई थी और वहां से अकेले वापस आते समय तुम्हारे सामने वाली बर्थ पर सफर करने वाली लेडी ने अपने भाई के लिए तुम्हें प्रपोज किया था, और घर वापस आने पर तुम कितना इतरा रही थी, और फिर जब भी हमारे बीच छोटी मोटी झड़प होती तो तुम मुझे किस तरह से धौंस दिखाकर कहा करती, मेरी तो बन पड़ी है, ज्यादा झिकझिक की तो मेरे पास बड़ा अच्छा रिश्ता आया है, मैं चली जाऊंगी तुमको छोड़कर। सच तन्वी, तुम्हारी खूबसूरती पर तो न जाने कितनों का दिल आया करता था। अरे बाबा नाराज मत हो, तुम आज भी बेहद खूबसूरत हो। एक रोड एक्सीडेंट के बाद तन्वी के सिर पर चोट लगने से वो कोमा में चली गई थी। 4 महीने हो गए थे, तने दिलो जहां से उसकी पूरी देखभाल करता, रोजाना उसे खुद तैयार करता, दोनों ने साथ में बिताए बेशकीमती पलों को उसके साथ शेयर करता, जतन करता कि उसकी तन्वी जल्द से जल्द कोमा से बाहर आ जाए। आखिर तन्वी उसके जीवन की एक बेहद खूबसूरत और अहम किरदार जो थी। तन्वी याद करो, जब तुम बाजार में खरीदारी करने जाया करती, हर दुकानदार को भैया बनाकर दुनिया जहान की बातें करके भावताव कर लेती। एक बार तो तुमने हद ही कर दी थी जब भोपाल हाट में सावन मेला लगा तो तुम्हारे मोल भाव से परेशान होकर दुकानदार बोला, दीदी हम जबलपुर से आए हैं, यहां रहने खाने और दुकान का किराया भी निकालना है, इतना भावताव नहीं हो सकेगा, अरे हमको भी तो थोड़ा बहुत कमाना है ना। इतना सुनते ही तुम कहने लगी, अरे क्या बात है भैया, मेरा मायका भी जबलपुर का है, इस नाते तो आप मेरे भाई हुए ना, क्या राखी पर अपनी बहन के लिए थोड़ा भी कंसेशन नहीं कर सकते? आखिर हार मानते हुए दुकानदार ने तुम्हारे मन माफिक दाम में सामान दे ही दिया। सारी खरीदारी तुमने कर ली थी, राखी पर तुम्हारे भैया आने वाले थे, तुमने 3 दिन का मेन्यू भी तैयार कर लिया था, पर बाद में अचानक ही तुम्हारे भाई ने फोन करके बताया कि ऑफिस की जरूरी मीटिंग अटेंड करने उन्हें बेंगलोर जाना है, इसलिए इस बार वो राखी पर नहीं आ रहा है, तो तुम उदास हो गई थी। फिर भी राखी के दिन शगुन के लिए तुम्हारी बनाई नारियल की बर्फी की खुशबू से पूरा घर महक रहा था। तुम तैयार होकर पूजा करके कान्हा जी को राखी बांधने ही वाली थी कि मैंने तुम्हें आवाज देकर कहा,
3: तन्वी जल्दी बाहर आओ, तुम्हारे भैया आए हैं।
1: इतना सुनते ही तुम भैया भैया करती दौड़ी चली आई थी, कहां है मेरे भैया? अरे ये सामने तो खड़े हैं, मैंने सब्जी वाले भैया की ओर इशारा करते हुए कहा।
2: अभी नहीं राखी बांधो। अरे क्या सोच रही हो, मुझे छोड़कर दुनिया के ये सारे जेंट्स तुम्हारे भाई तो हैं।
1: मेरे कहते ही तुम भी खिलखिलाकर हंस पड़ी थी, क्योंकि सब्जी वाला हमारा पुराना परिचित था और तुम्हारी आदत से भी वाकिफ था। तुमने उसे अंदर बुलाया तो वो भी बेझिझक चला आया। तुमने उसे राखी बांध बर्फी खिलाई, बदले में उसने अपने ठेले की थोड़ी थोड़ी सारी सब्जियां तुम्हें दे दी थी। ऐसी ही खट्टी मीठी और नमकीन यादों के ताने बाने बुनते 2 माह और गुजर गए। कभी कभार तन्वी पलक झपकाने लगी थी, पर हाथ पैरों में कोई हलचल नहीं दिख रही थी। अगले दिन तन्वी ऑफिस जाते समय फिर अस्पताल पहुंचा तो देखा नर्स ने स्पंजिंग करके तन्वी के कपड़े बदल दिए थे, पर उसे बेडशीट बदलनी थी। तो तन्वी बोला, सिस्टर रुको, अरे दुबली पतली छोटी सी तो है, मैं तन्वी को गोद में उठा लेता हूं। सिस्टर ने बेडशीट बदली तो तन्वी ने तन्वी को बिस्तर पर लेटाते हुए कहा, तन्वी तुम्हें याद है जयमाल के समय जब तुमको तुम्हारे भाई ने गोद में उठाकर मेरे गले में माला डलवाई थी, और स्टेज पर मेरी बुआ ने आकर कहा था कि
3: मेरे 6 फीट के बेटे को यही 4 फीट की लड़की मिली थी।
2: उनकी बात सुनकर तुम्हारा चेहरा एकदम तमतमा गया था, तुमने गुस्से भरी निगाह से मुझे देखा तो मैंने हौले से तुम्हारा हाथ थाम तुम्हें शांत रहने का इशारा किया और बुआ से कहा,
1: बुआ मुसीबत जितनी छोटी हो उतनी अच्छी, इसीलिए मैंने आपके लिए ये छोटी मुसीबत यानी पोर्टेबल बहू ढूंढी है, आप भी खुश और मैं भी।
2: बोलते बोलते तने ने बहुत ही प्यार से तन्वी को बिस्तर पर लेटाया, उसके माथे को सहलाया। इतने में डॉक्टर राउंड पर आए, उन्हें देखते ही तने अधीर होकर बोला, डॉक्टर आप जानते हैं मेरी तन्वी कितना बोलती थी, उसे चुपचाप बैठना तो पसंद ही नहीं, और कोई उसके साथ बदतमीजी करे ये तो बर्दाश्त ही नहीं होता था, चटपट सामने वाले को सबक सिखाने में भी पीछे नहीं रहती थी। एक बार हम दोनों शौर्य स्मारक घूमने गए, वहां हम घास पर आराम से बैठे थे, अचानक तन्वी उठी और थोड़ी दूर पर खड़े एक जेंट से बोलने लगी, क्या आप डॉक्टर हैं? वो बोला, नहीं क्यों? तो वो बोली, यूं ही आप जिस तरह से मुझे एकटक घूर रहे हैं मुझे लगा कि आप मेरी इंटेस्टाइन का एक्सरे निकाल रहे हैं। अरे भाई इतना प्यारा शौर्य स्मारक बना है, बहुत सी चीजें हैं यहां देखने के लिए, मुझे क्यों देखकर अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो? अब देखिए ना, सच में डॉक्टर उसके सामने खड़े हैं पर एक शब्द भी नहीं बोल रही है मेरी तन्वी। तन्वी बोलो डॉक्टर से कि तुम बिल्कुल ठीक हो और मेरे साथ घर चलने लायक हो गई हो, बोलो तन्वी कुछ तो बोलो। दिवाली भी आने वाली है, मेरा घर बिन ग्रह लक्ष्मी के कितना सूना लगता है, तुम्हारे बिना घर में दिया कैसे जलेगा तन्वी कैसे? कहते हुए रुआंसा सा तनय तन्वी के पास बिस्तर पर बैठ गया और उसका हाथ थाम लिया। तभी न जाने कैसे तन्वी के पैरों में हलचल सी महसूस हुई, तनय पैरों की ओर रुक कर ही रहा था कि तन्वी ने तनय के हाथ को कस लिया। तनय खुशी के मारे चिल्ला उठा,
4: डॉक्टर डॉक्टर जल्दी देखिए मेरी तन्वी को होश आ गया है, वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही है।
2: डॉक्टर भी तन्वी की हरकत को देख हैरत में पड़ गए, उन्होंने नर्स को बुलाकर तन्वी के चेहरे पर पानी के छींटे डालने को कहा। क्षण भर में ही तन्वी ने आंखें खोली और तनय की ओर देखा। तनय मैं कहां हूं, ये डॉक्टर क्या कर रहे हैं यहां? तन्वी मेरी जान तुम ठीक हो गई, हे भगवान आपने मेरे दिल की सुन ली, मेरे प्यार की जीत हुई, थैंक्स डॉक्टर, थैंक यू सो मच। क्या मैं अब तन्वी को घर ले जा सकता हूं? नहीं नहीं डॉक्टर, मैं पहले मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर आता हूं।
5: तनय सब्र करिए, अभी हम तन्वी का फिर से चेकअप करेंगे, सब कुछ नॉर्मल होगा तो आप जल्दी ही तन्वी को बिल्कुल घर ले जा सकते हैं, अब चिंता की कोई बात नहीं। डॉक्टर बोले, मैं आज ही सारे टेस्ट करवा लेता हूं, सारी रिपोर्ट मिलते ही जल्द अस्पताल से छुट्टी कर देंगे, आप तो बस तन्वी की वापसी की तैयारियां कीजिए। तनय ने भाव विभोर होते हुए तन्वी के हाथों को थामते हुए कहा, तन्वी इस दिवाली को हम सबसे यादगार दिवाली बनाएंगे, मेरी ओर से तुम्हारे लिए खूबसूरत और बेमिसाल तोहफा होगा। उसके माथे को चूमते हुए बोला, तन्वी तुम ठीक हो गई, मेरी मुराद पूरी हो गई, तुम्हारे स्वागत के लिए मैं कुछ तैयारियां कर रहा हूं,
2: मैं जल्दी ही लौटता हूं।
5: अस्पताल से निकलकर तनय ने सबसे पहले तन्वी के लिए फिरोजी रंग की साड़ी और उसके मैचिंग की एक्सेसरीज खरीद कर साड़ी पीको फॉल करने के लिए डाली। फिर पूरे घर को जगमग करने के लिए रंग बिरंगी झालरें खरीदी। घर जाते जाते काम वाली बाई को फोन करके पूरे घर की अच्छी तरह साफ सफाई करने की हिदायतें दी। रास्ते में ही दिवाली की लक्ष्मी पूजन का सामान भी खरीद लिया। साथ ही तन्वी के साथ बिताए पलों को सहेजने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फोटो फ्रेम भी खरीदी। घर पहुंचने पर देखा काम वाली घर पहुंचकर झाड़ू बुहार कर रही थी। सारा सामान करीने से जमा कर बेडरूम में गुलाबी रंग की चादर बिछाकर सामने वाली दीवार पर एक पोस्टर लगाया। फिर तैयार होकर तनय तन्वी के पास अस्पताल जा पहुंचा। तनय को देखते ही तन्वी के चेहरे पर मुस्कान छा गई।
2: तनय, मुझे जल्दी घर ले चलो।
5: हाँ मेरी जान, डॉक्टर के आते ही मैं उनसे तुम्हारे डिस्चार्ज की बात करता हूँ।
1: क्या गुफ्तगू हो रही है दोनों के बीच?
5: अंदर आते डॉक्टर बोले, डॉक्टर मैं तन्वी को कब घर ले जा सकता हूँ? तनय बोला,
1: अभी सारे टेस्ट हो गए हैं, कल सुबह रिपोर्ट मिलते ही आप इन्हें घर ले जा सकते हैं।
5: ठीक है डॉक्टर, चलिए एक दिन और इंतजार कर लेते हैं।
2: अगले दिन सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आने के बाद तनय तन्वी को दोपहर घर ले आया। घर का कोना कोना मानो तन्वी की खुशबू से महक उठा था। सजा धजा घर देखकर तन्वी चहक उठी। फिर आगे बढ़ी तो इलेक्ट्रॉनिक फोटो फ्रेम को वो अपलक निहारती रही। तनय उसका हाथ पकड़कर बेडरूम की ओर ले जाने लगा। गुलाबी रंगत से सजे बेडरूम में कदम रखते ही उसकी नजर सामने दीवार पर लगे पोस्टर पर पड़ी, जो कि एक छीने से दुपट्टे से ढका हुआ था। पास जाकर उसने दुपट्टे को हटाया तो गोलू मोलू बच्चे के चित्र को देखते ही शर्म से गुलाबी होते अपने चेहरे को तन्वी ने तनय की छाती में छुपा लिया था। दोस्तों आप सुन रहे थे अंजलि खेर जी की लिखी कहानी खट्टी मीठी नमकीन। जिंदगी के पलों को जीते हुए कुछ ऐसे ही तो भावनाओं से भरे पल हम जी लेते हैं। हमारे मन मस्तिष्क पर वो सारे पल यादों के रूप में छप जाते हैं और ऐसे कठिन समय में खट्टी मीठी नमकीन प्यार की यही यादें ताकत बनकर हमारा इलाज भी बन जाती हैं। ऐसे अनेक उदाहरण है ना? चलिए इस पड़ाव पर यहां पर एक अल्प विराम और देते हैं। अगले पड़ाव पर एक नई कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। और हां, जरूर शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ, ताकि प्यार की ताकत रिश्तों को और मजबूती प्रदान करती रहे। थैंक यू सो मच। होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल। अमित का बहुत बहुत नमस्कार।

0: हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता को अगर आज भी बेहद शिद्दत से याद किया जाता है तो उसका काफी श्रेय उस कविता को जाना चाहिए जिसकी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान ने की थी। ये कहना अतिशयोक्ति ना होगी कि झांसी की रानी पर लिखी वो कविता और सुभद्रा जी दोनों ही महारानी लक्ष्मीबाई के पर्याय बन गए थे। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 15 अगस्त 1904 को हुआ था। बचपन से ही वे साहित्य और संस्कारों का अद्भुत संगम साबित हुई। उनके तेजस्वी शब्दों और ओजस्वी शैली ने आजादी के जज्बे को एक आंदोलन का रूप देने में अहम भूमिका निभाई थी। उनका प्रत्येक शब्द ललकार बनकर लोगों के दिलो दिमाग पर छा जाता था। झंडा सत्याग्रह के लिए गिरफ्तार होकर वे देश की पहली महिला सत्याग्रही बनी थी। गांधी जी की विचारधारा के प्रभाव में उन्होंने न सिर्फ खादी को आत्मसात किया बल्कि अगस्त क्रांति में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तन मन से देश के लिए समर्पित सुभद्रा जी उन खुशनसीब लोगों में से थीं जिन्होंने अगर गुलामी के अंधेरों से संघर्ष किया था तो आजादी की सुबह भी देखी। और फिर 15 फरवरी 1948 को उनके ओजस्वी जीवन को विराम लग गया। चिता की अग्नि में जलते उनके शरीर को देखकर वक्त ने शायद उनकी ही ये पंक्ति दोहराई हो, मिला तेज से तेज, तेज की वो सच्ची अधिकारी थी।

0: अम्मा हाँ जो बैठ जाओ खटिया पे बैठ जाओ।
1: आओ बेटा बैठ तो जे है
0: जो ढाबा है ढाबा
2: खाना मिले
1: खाना मिले तो खाए
0: आराम से अम्मा आराम से बैठ जाओ
3: जो ढाबा है ढाबा खाना मिले या खाना
0: हाँ
1: खाना खाना हमें नहीं दिखा रहा हूँ।
0: अरे ऑर्डर देने पड़ा तो बैठ जाओ हम बता रहे हैं। छोटू इतने आओ
3: सब्जी
0: एक मिनट हाँ तुम्हारा नाम कहा जाओ बताओ।
4: हमारा नाम घिस्सू है।
0: हाँ तो देखो घिस्सू हमारे साथ में जो सवा हमारी फैमिली है कि
4: दादी राम राम
0: जहाँ हमारी फैमिली है और जाको अच्छे से इंटरटेन करने
4: इंटरटेन
0: हाँ ठीक है। अब बता बेटा तू का
3: सब्जी खाओ दादा।
0: हाँ सब्जी तू मीनू बताओ अपनो
4: भटा टमाटर मटर टमाटर छुकला वाली दाल है दाल चावल है
3: भटा टमाटर
0: भटा टमाटर फाइनल
5: कहे दादा। हाँ। वो आप कह रहे थे कि आगे काका वो ढाबे वाले कुछ कहानी सुना रहे थे।
0: हाँ बिल्कुल अभी कहानी भी सुनवाएंगे तुम जाओ अच्छा जल्दी से लेके आओ। अच्छा सुनो दादी इतने कक्का हैंगे कक्का इतनी बेजा कहानी सुनाया था कब बताया तुम्हें।
1: अरे तो हम भी सुने हैं भाई तुम
0: हाँ सबको सुनाएंगे अरे कक्का
3: राम राम कक्का राम राम
0: राम राम कक्का
4: राम राम भैया राम राम राम राम
0: कक्का बड़े दिनों से दिखा नहीं रहा कहाँ गए थे।
4: अरे हम तो जा ही रहे हम कहाँ जाएं
0: बाकी ठीक है
4: सब मजे में
0: वो कान की मशीन हरा गई।

0: मिल गई
1: मिल गई मिल गई, लगा ये लगा है देखो
0: कक्का बाबा गाना सुनाया है तेरे ना बुंदेले हर बोलो वाले।
1: हाँ हाँ
0: कौन सुनाओ ना कक्का बाबा।
1: अरे अम्मा सोई आई है। राम राम अम्मा।
2: राम राम बेटा।
1: अम्मा आई है तुम जरूर सुना जरूर जरूर जरूर। चलो सुनो।

0: अरे वाह कक्का, बहुत ही अच्छा गीत सुना, मगर गीत के बारे में कुछ बताओ सो।
1: अरे इस गीत की तो बात ही कुछ और थी। ये गीत जो है आजादी के संघर्ष के दिनों में सुलगती मशाल बन गया था।
0: अच्छा
1: हाँ, जिसने ये गीत लिखा वो खुद किसी अंगारे से कम थी क्या? नाम था उनका सुभद्रा कुमारी चौहान।
2: अच्छा नाम
1: है। प्रयाग में 1905 में जन्म हुआ था उनका। बचपन से ही बहुत चंचल, तेजस्वी और गरीबों की हमदर्द थी वो।
3: सुभद्रा, अरे ओ सुभद्रा, क्या है अम्मा? जरा इधर तो आना बेटी, अभी नहीं आ सकती, कक्का की बंडी फट गई है ना, उसे सिलकर आती हूँ।
4: पगली लड़की, अपने काम छोड़कर नौकर की बंडी सिलने बैठ गई।
3: अरे बंडी तो यहाँ आकर भी सिली जा सकती है ना बेटा, जल्दी से आ। ये कक्का भी ना भरी ठंड में फटी हुई बंडी पहने रहेंगे, पर समय से बताएंगे नहीं। हाँ बोलो अम्मा, क्या काम है?
4: क्यों, बिना काम के तुझे बुला नहीं सकती क्या?
3: सो बात नहीं है अम्मा। अच्छा अम्मा, एक बात पूछनी थी। लो कक्का, तुम्हारी बंडी।
4: तू कुछ पूछ रही थी ना सुभद्रा?
3: पता नहीं क्या पूछ रही थी, भूल गई।
4: अच्छा अच्छा सुन, तेरी अब ब्याह लायक उम्र हो गई है बेटा, हैं? एक माह बाद तू 14 की हो जाएगी
3: और एक साल बाद 15 की हो जाऊंगी तो।
4: अरे बेटा, मैं कह रही थी कि खंडवा से एक रिश्ता आया है, लड़का अच्छा है और घर परिवार भी ठीक है।
3: तो ये सब आप मुझे क्यों बता रही हो?
4: क्योंकि शादी मेरी नहीं हो रही बेटा, तेरी होनी है ना। तेरे पिताजी को भी यहाँ रिश्ता पसंद है।
3: अम्मा जैसा आप लोग उचित समझो।
4: बस बेटा एक कठिनाई है, लड़का सुना है कि बड़े खुले विचारों का है।
3: तो आपकी बेटी कौन सी बंद डिबिया में रहती है? अरे छात्रावास में रहकर आपने भी तो मुझे पढ़ाया है ना।

0: वाह कक्का, मजा तो बहुत आ रहा हो। अच्छा कक्का, हाँ, वो मतलब सुभद्रा कुमारी की शादी हो गई।
1: हाँ, लक्ष्मण सिंह चौहान, यही नाम था दूल्हे का जिसकी दुल्हन बनी सुभद्रा कुमारी। हाँ,
0: अच्छा वैसे ये लक्ष्मण सिंह थे कौन?
1: अरे लक्ष्मण सिंह को नहीं जानते, BA LLB पास एक वकील, रूढ़ी विरोधी थे, सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी परिवार के। अरे शुरुआती दिनों में बड़ी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था सुभद्रा को ससुराल में।
2: लक्ष्मण, मैं कहूँ इस घर की बहुओं ने क्या लाज शर्म बिल्कुल बेइज्जती?
3: क्या हुआ भैया?
2: मुझसे क्यों पूछता है? तुझे क्या दिखाई देना बंद हो गया है?
3: ऐसा क्या हो गया घर में जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा?
2: क्यों, सिर उघाड़े घूमती तेरी दुल्हन क्या तुझे दिखाई नहीं देती? बड़े छोटे का तो कोई लिहाज नहीं है।
3: क्षमा करें भैया, सिर ढकने का लिहाज से क्या संबंध है मुझे समझ में नहीं आता।
2: ओहो, शह इधर से है तभी तो, वरना बहू की भला इतनी हिम्मत कैसे होती कि हमारे सामने सिर उघाड़े घूमे।
3: भैया ये सब पुराने जमाने का चलन है।
2: बस बहुत हो गया, बहू के साथ साथ तुझे भी लगता है ना, बड़े छोटे का लिहाज सब कुछ बिसर गया है।
3: भैया
2: सुन, तेरी भाभी कहती थी बहू कुछ कविता ववीता भी लिखती है।
3: जी जी, मैं
2: ये सब लक्षण यहाँ नहीं चलेंगे, कह देना बहू से।
3: जी जी, कह दूंगा।

0: आ गई महारानी साहिबा, क्या बताने की जरा कृपा करेंगी कि सवारी कहाँ गई थी?
1: जी वो
0: सब पता है हमें, अब रहने दो।
1: क्या पता है आपको?
0: देखो हमारा मुंह ना खुलवाओ, बता देते हैं। हाँ
1: आप हमसे बड़ी हैं, जो उचित समझे हमसे कह सकती हैं।
0: तो आपकी इजाजत है हमें?
1: हम आपकी इतनी इज्जत करते हैं, फिर भी आप हमसे इतनी नाराज क्यों रहती हैं?
0: इज्जत? आप हमारी इज्जत किस तरह करती हैं भला? मुंह उघाड़ कर पराए मर्दों के सामने सभा बैठकों में जाती हैं और कहती हैं कि हमारी इज्जत करती हैं।
1: मौज और मजे के लिए नहीं जाती हूँ, देश के काम करने जाती हूँ।
0: घर के काम छोड़कर देश के काम के लिए जाती हैं महारानी साहिबा, है ना?
1: हा? देश को आजाद कराना है और ये हम सबकी जिम्मेदारी है, और हम भी वही कर रहे हैं।
0: तुम्हारी करतूतों ने समाज में हमारा जीना हराम कर दिया है।
1: हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे परिवार की नाक कटे, और देश कार्य से हमें कृपा करके रोकने की कोशिश ना करें।
0: हाय हाय, हम तो भले घर की समझ कर इसको ब्याह लाए थे, अरे हमें क्या पता था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। हाय
2: हाय हाय, घर की बहू मुंह धाड़े सभा सभा करती फिरे, तौबा तौबा तौबा तौबा तौबा।
3: तो का सुभद्रा सभा उबा करा था थी का?
2: अरे अम्मा जी, देश सेवा करने के कारण सुभद्रा ने घर परिवार में बहुत कुछ सहा। ताने तिशने कटु वचन व्यंग वालों की बोछार सबका सामना वो शांत रहकर करती रही।
4: अरे वाह कक्का।
2: और दृढ़ता के साथ सही पथ पर बढ़ती रही। इन सब विरोधों का सामना करने में पति लक्ष्मण सिंह चौहान ने हमेशा सुभद्रा का साथ निभाया।
3: अच्छा?
2: हाँ माँ, ये सन 1919 का वक्त था। पति पत्नी दोनों अपनी पढ़ाई पूरी करने में जुटे थे, लेकिन तभी अमृतसर जलियांवाला बाग की उस बर्बरता को याद करने से खून खोलने लगता है आज भी।
5: दमन करके हमारे आंदोलन को दबा देने का अंग्रेजों का सपना चूर चूर हो जाएगा।
1: वहाँ हमारे भाई बहनों पर अत्याचार हुआ और हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं?
5: मुझे तो सोच सोच कर ग्लानी होती है स्वयं पर, किस गलत समय पर मैंने एमए करने का फैसला लिया
1: और साथ में मुझे भी झोंक दिया इस पढ़ाई में।
5: दो ही साल में तुम मैट्रिक हो जाओगी, इस साल नौवीं और अगले साल मैट्रिक।
1: मैट्रिक ज्यादा जरूरी है कि आंदोलन?
5: दोनों।
1: इस समय ज्यादा जरूरी क्या है?
5: आंदोलन।
1: तो मैं आज से और इसी क्षण से नौवीं की पढ़ाई छोड़कर असहयोग आंदोलन में पूरी तरह जुट जाऊंगी। बस
5: मैं तो BA LLB पहले से ही हूँ, MA करके कौन सा तीर मार लूंगा।
1: तो क्या तुम भी पढ़ाई छोड़ने का मन बना रहे हो?
5: मन नहीं बना रहा हूँ, बल्कि निर्णय ले लिया है। आज से मेरी भी MA की पढ़ाई बंद और असहयोग आंदोलन में पूरे जोर शोर के साथ लग जाना है।
1: असहयोग आंदोलन तो चलेगा ही, पर क्या अपनी रोजी रोटी का भी सोचा है?
5: सोचा क्यों नहीं, वकील है, वकालत करेंगे।

0: कक्का कहानी तो बहुत ही अच्छी चल रही है, मनो एक बात जा बताओ कि लक्ष्मण सिंह चौहान की वकालत ठीक ठाक चलन लगी?
1: हाँ हाँ बेटा, पति पत्नी दोनों पढ़ाई छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े और जीवन यापन के लिए वकालत करने लगे, पर भगवान की कृपा से वो भी ठीक ठाक चलने लगी। और जानते हो, जलियांवाला बाग में बसंत और राखी की लाज जैसी ओजस्वी कविताओं को उसी दौर में लिखा था सुभद्रा ने। अरे कलम की ऐसी धनी कि उसका हर शब्द हर पंक्ति नौजवानों की नसों में आग भर दे।
0: हाँ कक्का, ये बात तो आपने बहुत ही सही कही।
1: हाँ बिल्कुल ठीक, ऐसे ही एक दिन।
2: सुनती हो?
3: जी अभी आई।
2: कोई दरवाजा खटखटा रहा है, देखना कौन है।
3: कौन है? अरे डाकिया था।
2: क्या लेकर आया था?
3: तुम्हारे लिए 100 रुपए का मनी ऑर्डर लेकर आया था, अंग्रेज बहादुर ने भेजा है और लिखा है कि आंदोलन में जाना बंद कर दोगे तो और भेजूंगा।
4: अरे तुम्हारे हाथ में तो लिफाफा है, किसने भेजा है बताओ तो जरा।
3: लिफाफा मेरे नाम का है, आपसे मतलब?
4: कोई मतलब नहीं हमसे, दफा हो जाओ यहाँ से और हमें केस पढ़ने दो, 2 दिन बाद सुनवाई है।
3: पूछोगे नहीं कि किसने भेजा है?
4: तुम्हें भेजा है, हमें क्या मतलब।
3: जलन हो रही है ना। अच्छा सुनो, कानपुर से आया है, दैनिक प्रताप से, गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने भेजा है।
4: जोर से पढ़ो जरा क्या लिखा है।
3: बहन, बड़े भाई का आशीर्वाद स्वीकार करो, औपचारिक बातें लिखने में समय गवाए बगैर संक्षेप में बस इतना लिख रहा हूँ कि तुम्हारी जैसी देशभक्त मेरी बहन का पति इस समय देशभक्ति छोड़कर वकालत में कैसे। तुम्हारा बड़ा भाई गणेश शंकर।
4: बहुत शर्म की बात है मेरे लिए, निजी स्वार्थ के कारण मैं देश सेवा को कैसे भूल गया।
3: अरे भैया को कानपुर से चिट्ठी लिखकर मुझे मेरे कर्तव्य की याद दिलानी पड़े, ये मेरे लिए बहुत शर्म की बात है।
4: मैं 1 मिनट में आता हूँ।
3: कहाँ जा रहे हो?
4: बाहर वकील वाला बोर्ड हटाने।
3: आगे का विचार भी तो कर लो।
4: उसकी आवश्यकता नहीं है।
3: क्यों भला?
4: जबलपुर से बहुत दिनों से बुलावा आया हुआ है कि आकर कर्मवीर का साहित्य संपादक का पद संभाल लूं।
3: देर किस बात की है?
4: कोई देर नहीं है, बस आज ही अपना बोरिया बिस्तर समेट लो, कल हम जबलपुर के लिए रवाना हो रहे हैं।

0: माखनलाल चतुर्वेदी करमवीर के प्रधान संपादक थे। करमवीर जो है देशभक्ति की खबरों और रचनाओं से भरा रहने वाला अखबार था। अरे सुभद्रा कुमारी चौहान चाहे कहीं भी रहें, खामोश बैठना उनके स्वभाव में था ही नहीं। और हाँ, वहाँ जबलपुर में तिलक राष्ट्रीय विद्यालय का कार्य करने लगी थी वो, महिलाओं में जागृति लाना, नव युवकों स्वयं सेवकों का संगठन करना जैसे कार्यों में पिल पड़ी थी। तो अम्मा जी, जब माखनलाल जी गिरफ्तार हुए तो उनकी मुंह बोली बहन सुभद्रा कांग्रेस का काम करने लगी, और जबलपुर शहर में सबसे पहले जो महिला गिरफ्तार हुई थी उसका नाम पता है आप लोगों को?
1: कौन थी?
0: अरे सुभद्रा कुमारी चौहान थी वो।
2: अच्छा।
0: ये बात अलग है कि बीमार हो जाने के कारण उन्हें जल्दी से रिहा कर देना पड़ा।
3: तुम काफी कमजोर हो गई हो।
2: जेल के पौष्टिक भोजन को ये कहकर बदनाम ना करो।
3: तो अब आगे क्या विचार है?
2: पहले ये बताओ कि बाहर का समाचार क्या है, उसके अनुसार विचार बनेगा।
3: समाचार सुनकर तुम्हें बहुत प्रसन्नता होगी।
2: क्यों, क्या अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का फैसला कर लिया है?
3: तुम भी ना, अब क्या कहूँ।
2: मुझे तो उसी समाचार से प्रसन्नता मिलेगी बस।
3: फिर भी सुन लो, टाइम्स ऑफ इंडिया ने तुम्हें लोकल सरोजनी कहा है।
2: अरे कहां सरोजनी नायडू और कहां मैं।
3: अच्छा अब सुनो, अपने शहर में राष्ट्रीय नेताओं के आने का समाचार है, सरकार ने पहले ही निषेधाज्ञा लागू कर दी।
2: अच्छा किया, वरना समस्या होती कि क्या तोड़े।
3: परंतु दद्दा ने कहलवाया है कि सुभद्रा से कहो कि स्वयं को गिरफ्तारी से बचाए, वैसे भी तुम्हारे प्रसव का समय निकट ही है।
2: अरे आप उसकी चिंता ना करें, मैं अंग्रेज सरकार को हवा भी नहीं लगने दूंगी और अपना काम कर जाऊंगी।
4: कक्का फिर कब हो?
0: अंग्रेज सुभद्रा को गिरफ्तार ना कर पाए, झंडा सत्याग्रह के बाद उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। करमवीर जबलपुर की बजाय खंडवा से निकलने लगा और लक्ष्मण सिंह मजबूरन पुनः वकालत करने लगे। 1931-32 में पति पत्नी पुनः आंदोलन में सक्रिय हो गए थे। उसी समय उन्हें एक बेटा भी प्राप्त हुआ। इधर रानी झांसी वाली कविता ने देश भर में धूम मचा रखी थी।

0: और हाँ भैया, 1932 में लक्ष्मण सिंह जेल में थे। अब कमाई का कोई सीधा जरिया शेष ना था, पर उसी समय सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी की कविता वाली बहन को कुछ आर्थिक सहायता भिजवाई थी, और इसी समय सुभद्रा की भेंट गांधी जी से हुई और 1936 में चुनाव हुए। और पता है अम्मा जी, उस दूसरी महिला के नामांकन में त्रुटियां निकलने से वो नामांकन खारिज हो गया और सुभद्रा निर्विरोध निर्वाचित घोषित की गई।
1: अच्छा, मानो वे जीत गई का।
0: हाँ अम्मा।

0: सन 1941 त्रिपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और एक बुरी खबर अम्मा जी, सुभद्रा के पेट में एक बच्चे के साथ ट्यूमर भी पल रहा था, काफी बीमार रहने लगी थी वो। 1942 में शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन, बीमारी के बावजूद सुभद्रा ने त्रिपुरा अधिवेशन में भाग लिया और लक्ष्मण सिंह सुभद्रा के सारे गहने बेचकर जमीन खरीद कर खेती करने लगे थे। पति पत्नी घर में राशन आदि भरकर जेल जाने की तैयारी में लगे थे और तभी जेल में एक दिन
1: क्या बात है संगी जी,
2: क्या तुमको पता है कि तुम्हारे पति भी जेल में है?
1: हाँ पता है।
2: शाबाश, बाप एक जेल में और माँ दूसरी जेल में, बच्चे घर पर अकेले, कैसी माँ हो तुम?
1: मेरे बच्चों की चिंता करने के लिए धन्यवाद। और कुछ?
2: अगर माफी मांग लो तो छूट जाओगी, बच्चों की ठीक से देखभाल कर पाओगी।
1: हमारे बच्चे हमारे ही जैसे हैं।
2: फिर भी
1: संगी भैया एक काम क्यों नहीं करते?
2: कौन सा काम?
1: हमारे बच्चों को अपने घर क्यों नहीं ले जाते? हमें भी फिक्र नहीं होगी, अपने बच्चे संगी मामा के यहाँ खुश रहेंगे और सुरक्षित भी।
2: साहब ठीक ही कहते हैं तुम लोगों के बारे में।
1: अच्छा, हम भी तो सुने भला कि क्या कहते हैं तुम्हारे साहब हम लोगों के बारे में।
2: साहब कहते हैं ये लोग पागल हैं, इनको मुंह लगाना बेकार ही है।
1: एकदम ठीक कहते हैं तुम्हारे साहब।
2: अच्छा अब ध्यान से सुनो, तुम्हारे पति ने कहलवाया है कि घर में बच्चे अकेले हैं, इसलिए माफी मांग कर घर चली जाओ।
1: सच्ची मेरे पति ने ऐसा कहलवाया है?
2: और नहीं तो क्या, मैं झूठ बोल रहा हूँ?
1: तुम्हें भैया कहा है, इस बहन का एक संदेश अपने जीजा तक पहुंचा दोगे कि बच्चे उनके भी हैं, वे इसलिए चाहे तो माफी मांगकर रिहा हो सकते हैं और घर जा सकते हैं।
0: लक्ष्मण सिंह को माफी वाला पूरा किस्सा पता चला तो वो सुभद्रा के जवाब से भारी प्रसन्न हुए, लेकिन पेट में ट्यूमर बढ़ने के कारण सन 1943 में उन्हें रिहा कर दिया गया। परिवार की माली हालत और सुभद्रा का स्वास्थ्य दोनों बड़े खराब थे। बड़ी बेटी सुधा के विवाह की भी चिंता थी उनको, लेकिन मुंशी प्रेमचंद के पुत्र और विख्यात लेखक अमृत राय ने वो चिंता भी दूर कर दी।
3: कक्का वो कैसे?
0: अरे बिना दहेज गाजे बाजे के साथ ब्याह ले गए सुधा को। हाँ। पैरोल पर छूट कर आए लक्ष्मण सिंह ने हाथ से कथे सूत की दो मालाएं आशीर्वाद स्वरूप बेटी दामाद को दी और वापस जेल चले गए। और फिर इसी बीच देश आजाद हुआ। और फिर आया 15 फरवरी 1948 का वो दुर्भाग्यपूर्ण दिन, जिस दिन एक मोटर दुर्घटना में सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु हो गई।
4: निर्देशन वीनस उमेश तरकसवार, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का स्वागत। जागृति इस कार्यक्रम में महिलाओं को जागरूक करने का एक कार्यक्रम, जहां पर हम अलग अलग विषयों के विशेषज्ञों को लेके आते हैं और उनसे महिलाओं के संबंधित जानकारियां हम लेते हैं और कुछ नई बातें भी सीखते हैं। इसी श्रृंखला में आज हम बातचीत कर रहे हैं महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। आज हम सभी को जानकारियां देने के लिए, और मानसिक स्वास्थ्य क्यों जरूरी है और मानसिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं, इस विषय के ऊपर आज चर्चा करेंगे और हमें जानकारियां देंगे। हमारे साथ है वीरेंद्र जी। आप पिछले 10 सालों से एक मानसिक रोग विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और हमारे साथ एक और एक्सपर्ट है आज, हर्षिता सेतिया जी। आप एक साइकोलॉजिस्ट है, यानी मनोरोग विशेषज्ञ हैं। आप दोनों हरियाणा से हैं और हैदराबादी जनरल हॉस्पिटल में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो चलिए हम बातचीत करते हैं और जानते हैं, खास करके जब महिलाओं की बातचीत हम कर रहे हैं तो उनके लिए मानसिक स्वास्थ्य क्या है और उनके मानसिक स्वास्थ्य क्यों अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। अगर जब कुछ ऐसी बातें होती हैं तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि इनकी मानसिक असंतुलन हो रही है। तो हम सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे दोनों आज के इस विशेषज्ञों को, हर्षिता जी और वीरेंद्र जी। आज के इस कार्यक्रम जागृति में और रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार
1: जी। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि जब हम मानसिक स्वास्थ्य की बातचीत करते हैं तो अभी तो हम काउंसलर एक शब्द से बहुत परिचित हैं, लेकिन जैसे आप दोनों की थोड़े डिफरेंसेस है प्रोफेशन में, लेकिन डील करते हैं वही मानसिक रोग के लिए। तो काउंसलिंग तो वही है, लेकिन जैसे हर्षिता जी आप कहते हैं कि आप मनोरोग विशेषज्ञ हैं और वीरेंद्र जी मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं, तो ये डिफरेंस क्या है?
3: बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो मानसिक रोग विशेषज्ञ या फिर जिसको हम साइकियाट्रिस्ट भी कहते हैं, उनकी एक प्रॉपर डॉक्टर हैं वो, जिन्होंने पहले MBBS किया है, उसके बाद वो एक स्पेशलाइज्ड फील्ड में गए हैं जो कि साइकियाट्री है। तो वो एक आपको प्रॉपर डॉक्टर हैं जिनसे आप जाकर अपने मानसिक रोग के बारे में बातचीत कर सकते हैं। और दूसरा, जब हम मनोरोग विशेषज्ञ के बारे में बात करते हैं, तो उसके लिए आप BA या BSc, MSc या MA करके फिर आप PhD करते हैं या MPhil करते हैं। आप दवाइयाँ नहीं लिख सकते, लेकिन जो साइकियाट्रिस्ट हैं, जो मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं, वो बेसिकली आपको दवाइयों से, उनके द्वारा आपको ठीक किया जाता है। लेकिन मनोरोग विशेषज्ञ का जो बेसिक काम है, जिसको हम काउंसलर बोलते हैं, साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, वो आपको थेरेपी के थ्रू ट्रीट करते हैं। तो ये दोनों में बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है।
1: बहुत सुंदर। मतलब जब हमारी मानसिक बीमारियां बढ़ जाती हैं, तो समय जब उस तीव्रता को कंट्रोल करना है, जहां पर मेडिसिंस की भी आवश्यकता होती है, तो फिर वो साइकियाट्रिस्ट डील करते हैं उनको। और जो छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं, एक लंबे अरसे की लाइफस्टाइल के कारण कुछ आदतें ऐसे हो जाती जिससे खुद भी डिस्टर्ब रहते हैं और दूसरे भी उनसे डिस्टर्ब होते हैं, तो फिर वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जो इमोशंस को डील करने के जो तरीके हैं, वो एक काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट से हम सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं। बहुत सुंदर। तो हम जिनसे बातचीत कर रहे हैं, आपकी स्पेशलिटीज और आपकी एक्सपर्टीज को तो हम समझे हैं, तो हम आगे बढ़ते हुए ये जानना चाहते हैं, अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। तो मेंटल हेल्थ या फिर मानसिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं, और अगर हम महिलाओं के पर्सपेक्टिव्स में देखें तो वो क्या पैरामीटर्स होते हैं जिसे हम समझे कि हाँ, ये चीज़ें अगर संतुलन में हैं तो हाँ, हम मेंटली फिट हैं।
3: आपने जो अभी क्वेश्चन पूछा है कि महिलाओं के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, आज का जो हमारी श्रृंखला है वो महिलाओं के बारे में है। हम कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आज अपने आप से जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे क्या क्या मुझ में या मेरे आसपास जो लोग हैं और महिलाएं हैं उनमें ऐसा हम क्या देखें जो हमें पता लगे कि हाँ मुझे कुछ चीज़ें हैं कि मुझे दिखाने की ज़रूरत है या फिर मुझे ये देखने की ज़रूरत है कि मेरे आसपास भी कोई इन चीज़ों से तो नहीं जूझ रहा। अगर हम कहते हैं कि हमारा मन बहुत लंबे समय से उदास चल रहा है, हम खुशी लोग खुश हैं, मेरे आसपास ऐसा कुछ नहीं चल रहा, सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, मुझे खुशी नहीं फील होती है, तो ये सबसे बड़ा कारण है कि आपको यहाँ पे कि आपका पॉइंट है, एक इंडिकेटर है, एक रेड फ्लैग है कि आपको रुक के अपने आप को देख लेना चाहिए कि अब 15 दिन या 20 दिन से ऊपर हो गया है तो आपको कहीं ना कहीं अब एक रेड फ्लैग आ गया है कि आपको चेक करने की ज़रूरत है। और जो हम अगर दूसरे इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं कि आपको कहीं ना कहीं सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं कि क्या करना है जी के, कुछ भी तो नहीं अच्छा लग रहा, किसके लिए जीना है मुझे, मेरे साथ तो ऐसा ही होता रहता है, मेरा तो परिवार ही ऐसा है, सारा दिन तो मैं बच्चों की करती रहती हूँ, फिर भी मेरे को इन रिटर्न तो कुछ नहीं मिलता ना ज़्यादा से ज़्यादा, तो मेरे अंदर अगर ये थॉट्स आ रहे हैं जो कि एक पैटर्न बन के लीड कर रहा है कि मुझे सुसाइडल थॉट्स पे अगर मैं पहुंच गई हूँ तो आपके लिए बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि अब ये आपके लिए इंडिकेटर है, आपको जान जाना चाहिए कि अब मुझे कहीं ना कहीं सहायता की, मदद की ज़रूरत है। तीसरा, आपकी नींद डिस्टर्ब होने लग जाती है, या तो आप बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, आपको अकेलापन बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लग गया है, अगेन एक इंडिकेटर है कि आपको दिखाना चाहिए। दूसरा, नींद बहुत कम आने लग गई, आपका स्लीपिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है, आपको बिना दवाई के नींद नहीं आती है, अगेन एक इंडिकेटर है कि आपको दिखा लेना चाहिए। ये 3 से 4 इंडिकेटर मेजर हैं कि आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरे साथ या मेरे आसपास ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको इस समय साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को ज़रूर चले जाना चाहिए और दिखाना चाहिए।
1: ये पैरामीटर्स हैं जहाँ पे हम बीमार हैं, लेकिन एक स्वस्थ मन या एक अच्छा हेल्दी माइंडसेट हम किसे कहते हैं, क्योंकि आज की डेट में तो हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। महिलाओं को अगर देखते हैं तो कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा जहाँ पे वो डांट नहीं खाती है, कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा कि वो परेशान नहीं है, तो फिर ऐसे में फिटनेस क्या है?
2: देखिए, स्वास्थ्य की जो WHO की डेफिनेशन है उसके अंदर में 2 भाग आते हैं कि आप अपने शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ हैं, तभी आप उसको हेल्थ की डेफिनेशन जो WHO की है उसमें ये बोलते हैं इट्स अ कंप्लीट वेलबींग बहुत फिजिकली एंड मेंटली। इसका अर्थ ये है कि आप अपने मानसिक तौर पर भी अपना 100% अपना 100% दे पा रहे हैं। स्ट्रेस सबकी ज़िंदगी में आते हैं, मानसिक स्वास्थ्य ये चीज़ दिखाता है कि आप उस स्ट्रेस को कितना अच्छा हैंडल कर पा रहे हैं, कितना अच्छा कोप कर पा रहे हैं। कोई चीज़ ख़राब हुई, आपको किसी ने डांटा, आपके साथ कुछ बुरा हुआ, आप उससे कितना जल्दी निकल पा रहे हैं, वो आपका मानसिक स्वास्थ्य को दिखाता है। जैसे अगर आप इन्फेक्शन फैल रहा है, बाहर बुखार हो रहा है, पर फिर भी आपको बुखार नहीं हुआ तो आप शारीरिक रूप से स्वस्थ चल रहे हैं, वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य भी वैसा ही है कि जब चीज़ें ठीक नहीं हो रही आपके आसपास में, आपका पूरा दिन खराब निकल रहा है, फिर भी आपका दिमाग उससे कोप अप कर पा रहा है, उन चीज़ों से आपको निकाल पा रहा है और आपको इतना एनर्जेटिक रख पा रहा है कि आप अपने काम पे ध्यान रख पा रहे हैं और जो आप काम कर रहे हैं उसमें अपना 100% दे पा रहे हैं मानसिक तौर पर, तो वो मानसिक स्वास्थ्य की निशानी है। और जब भी आपको लग रहा है कि आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं किसी काम के अंदर में, इसका मतलब कि चीज़ें ठीक नहीं रह रही हैं, मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ा रहा है और हमें ध्यान देने की ज़रूरत है।
1: जी, तो वीरेंद्र जी, जैसे आपने कहा कि कोई डगमग हो रहा है तो फिर हमें अटेंशन देने की ज़रूरत है और स्ट्रेस को हैंडल करना आना चाहिए। आमतौर पे ये बताते हैं कि थोड़ी सी तो बात है, अभी घर में बड़े हैं तो थोड़ा सा तो बोलेंगे, अभी इतना भी आप सुन नहीं सकते, सहन नहीं कर सकते, तो फिर एक द्वंद्व चलता है इंसान के माइंड में, मैंने गलत किया मुझे बोला तो फिर भी समझ सकते हैं, जहाँ पे मेरी गलती नहीं है तो मैं क्यों सुनूं। और एक ज़माना था जहाँ पे महिलाएं सुनते सुनते सुनते आदी हो चुकी थी, फिर उनके दिमाग में कभी ये नहीं आता था कि मुझे उल्टा जवाब देना है या मुझे घर छोड़ना है या उन चीज़ों से परेशान होना है ऐसा। लेकिन अभी की जनरेशन में हम ये देखते हैं कि एक रेबेलियसनेस है, जिससे कभी कभी अगर वो उसको रिस्पॉन्स करती हैं या फिर उसको समाधान या जवाब देती हैं तो फिर उनको अलग रीति से लोग ट्रीट करते हैं, तो फिर वो जो छोटी सी बात जहाँ पे वो रोकने के लिए कोशिश करती, वो अपनी सेल्फ आइडेंटिटी या फिर अपने डिग्निटी को बचाने की कोशिश करती है तो फिर वो बात बढ़ जाती है। तो फिर ऐसे में वो कैसे हैंडल करे कि उसके साथ जो गलत हो रहा है, भले वो लगता है कि बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन वो छोटी सी चीज़ एक शुरुआत होती है। अभी वो एक छोटी सी चीज़ को अलाउ करती है लोग उनको बोलने में, या फिर पहली वो थप्पड़ है या पहली वो डांट है या एलिगेशन है या कोई भी चीज़, जिसे जो शुरुआत होती है इन चीज़ों की परंपरा की, तो वो कैसे रोके उस चीज़ को?
2: देखिए, सबसे पहले तो जैसे जैसे ज़माना बदला है, समय बदला है, औरतें इंडिपेंडेंट होने लगी हैं, काम करने लगी हैं, बाहर निकलने लगी हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने लगी हैं, तो उसके बाद में समाज में बहुत सारे परिवर्तन आए। हमारा समाज जो है बहुत वेस्टर्नाइज्ड हो रहा है, और जो गलत नहीं है बहुत हद तक ठीक भी है। हर चीज़ के अपने फ़ायदे और अपने नुकसान हैं, तो औरतों का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। जब वो इंडिपेंडेंट हो रही हैं तब वो ये एहसास कर पा रही हैं कि हमारे साथ जो कुछ गलत हो रहा है उस चीज़ को समझ पा रही हैं। इससे पहले की जो सोसाइटी थी उस समय अगर गलत हो रहा था औरतों के साथ में, तो उनके पास में ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वो इस चीज़ों से निकल पाएं या इस चीज़ से लड़ पाएं। जैसे कि आपने बोला कि जब पहला थप्पड़ पड़ रहा है, तो अगर औरत इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है या वर्किंग है या थोड़ा हिम्मत वाली है, तो उस थप्पड़ का मुकाबला कर सकती है, उसका जवाब दे सकती है या उस थप्पड़ को उठते समय रोक सकती है, बाउंड्री सेट कर सकती है कि ऐसा आप नहीं कर सकते। पर जो आज से पुराने का जमाना था जिस समय औरतों के पास ये इंडिपेंडेंस नहीं थी, तो सिखाया भी ऐसा जाता था, माँ बेटी को आगे यही सिखा के भेज रही है कि जो भी होगा तुझे यहीं पे रहना है, घर से निकल गई तो डोली जा रही है, वहाँ से बर्थी ही निकलेगी, तेरा और कोई देखने वाला नहीं है, तू अलग नहीं हो सकती, तो हंस कर रो कर मार खा कर जैसा भी रहना है तुझे वहीं पर रहना है। अब ये मेंटेलिटी चेंज हो रही है, इसमें इंटरनेट का बहुत योगदान है, लोग पढ़ाई का बहुत योगदान है, लड़कियाँ पढ़ रही हैं अब, मैं समझता हूँ पढ़ाई का सबसे अधिक योगदान है। पढ़ने से ही, एजुकेशन के साथ में ही आदमी का दिमाग खुलता है, उनको एहसास होता है कि उनके राइट्स क्या हैं, उनके अधिकार क्या हैं और कहाँ उनके अधिकार खाए जा रहे हैं। और देखिए, अधिकार जहाँ तक खाने की बात है, या अधिकारों में जब भी चोट लग रही है तो आपको पहली चोट के साथ ही जवाब देना होता है। आप अगर ट्रैफिक का कोई नियम कोई तोड़ रहा है तो आप हमेशा पहली बार तोड़ते हो, तभी आपको अगर पुलिस ने देख लिया आपको उसी समय फाइन करते हैं, ये नहीं कहते कि आपको पहली बार नियम तोड़ते हुए छोड़ दिया जाए। तो जब भी आपके अधिकारों को नुकसान पहुंच रहा है, जब भी वो पहला थप्पड़ या पहली गाली उठ रही है, आपको उसी समय जवाब देना चाहिए। तो उसके लिए मानसिक बल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शारीरिक बल की बात यहाँ हो नहीं रही, झगड़ने की बात नहीं हो रही, हमें उनको रोकना है, तो उसके लिए मानसिक बल होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए मानसिक रूप से आपको स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है।
1: तो वो मानसिक स्वस्थता को कैसे कायम रखें? और जैसे हम बहुत सारी चीज़ें तो सीखते हैं फिजिकली फिट रहने के लिए, फ्रूट्स खाना है, वेजिटेबल खाना है, रा खाना है, उससे आपकी बॉडी हेल्दी रहती है इस तरीके से, लेकिन मेंटल फिटनेस के लिए, मेंटली हम स्ट्रांग रहने के लिए, और जिस तरीके की आपने बात कही कि मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, तो उसकी उस चीज़ की ट्रेनिंग तो इंटेंशनली या कॉन्शियसली बचपन से तो किया नहीं जाता है। और जैसे आपने कहा कि अभी यहाँ से डोली उठी तो फिर उधर से अर्थी उतर दी, यही साइकोलॉजिकली फिट करके भेजते हैं महिलाओं को, तो वो कितनी भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, सक्षम है, कुछ भी है, लेकिन वो जो सोच है वो सोच उसको वहाँ पे रोक देती है। तो फिर यहाँ पे फिटनेस या स्ट्रेंथ क्या है जिससे वो अपने आप को मोल्ड करे या फिर उससे बाहर आ सकती है?
2: देखिए, सबसे पहले तो हमें जो एक लूप या साइकिल चल रहा है इसको ब्रेक करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी औरतों की ही है, उन्हें अपनी बेटियों को जो सदियों से उन्हें शिक्षा मिलती आ रही है उसको अब रोकना होगा, तभी बेटियां मानसिक रूप से स्वस्थ और मानसिक बलवान हो पाएंगी। जब उन्हें समय रहे, जब उन्हें पता रहेगा कि उनके अधिकार क्या हैं और उनको कहाँ रोकना है, और जब उन्हें वो डर नहीं होगा कि अगर मैंने इन्हें रोका या कुछ किया उसके जो अंजाम होंगे उसमें मुझे सिर्फ मुझे ही भुगतना पड़ेगा, किसी और को कुछ नहीं भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आज भी हमारे समाज में डाइवोर्स या फिर तलाक जैसे जो शब्द हैं वो औरतों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक माने जाते हैं कंपेयर टू मर्द, और वो उसके पीछे कारण ये है कि पीछे से एक पीढ़ी के पीढ़ी इधर पीढ़ी सेम ही बात सिखाई जा रही है, तो उसको रोकने की जिम्मेवारी औरतों की होगी, क्योंकि बेटियां ये शिक्षा अपनी माँ से ही लेती हैं और कहीं से नहीं मिलती। कोई भाई बाप ये सिर्फ शिक्षा नहीं देता, माँ के साथ सबसे अधिक समय बिताती हैं, तो माँ को वो साइकिल ब्रेक करनी पड़ेगी। तो एक बेटी के मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में उसकी माँ का बहुत बड़ा योगदान है। और जहाँ तक आपने बोला कि कैसे मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त किया जाए, तो दो चीज़ें हैं इसमें, आप मानसिक रोगी हुए या नहीं हुए। तो जब तक आप नहीं हुए, उससे पहले वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं प्रिवेंशन, कि आप मानसिक रोगों से अपने आप को कैसे बचा पाएं। तो उसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें जैसे जो जो चीज़ें शारीरिक हिस्से में काम करती हैं, वैसे वैसे चीज़ें मानसिक रूप में भी काम करती हैं। इसमें योग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मेडिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप सैर करती हैं, आप पॉजिटिव चीज़ों को देखती हैं, पॉजिटिव लोगों के साथ में रहती हैं, और सबसे बड़ी बात चीज़ों को वेंट आउट, मतलब चीज़ों को बाहर निकालती हैं, तब आप मानसिक रूप से स्वस्थ रह जाते हैं। चीज़ों को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। आपके मन में कोई भी कुंठा हो रही है, कोई भी बात हो रही है, जब तक आप उसको बाहर नहीं निकालेंगी, तब तक आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रह सकती। तो आई थिंक वेंटिंग आउट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसके अंदर में आपको अपना कोई ऐसा साथी, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या कोई ऐसा दोस्त ढूंढना पड़ता है, जहाँ से जहाँ में आपके अंदर जो भी द्वंद्व चल रहे हैं, आप उसको बाहर निकाल पाए।
1: जी, सो अगर हम पॉइंट आउट करें, हमको हमेशा हमारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमारे साथ सकारात्मक बातचीत करते रहे, और जो हम मीडिया में, यूट्यूब में या कहीं पे भी जो इंटरनेट पे चीज़ें देख रहे हैं, उसमें हम कॉन्शियसली फिल्टर्स लगाएं कि हम सिर्फ पॉजिटिव कंटेंट को ही देखें। और तीसरा, पेरेंट्स का सबसे बड़ा जिम्मेवारी है कि वो लड़कियों को ये चीज़ें ना सिखाए, तुमको दब के रहना है, तुमको सहन करना है, लेकिन जहाँ पे गलत हो रहा है वहाँ पे हिम्मत से खुद के लिए खड़ा होना भी हमें सिखाना है, और उसके साथ साथ लड़कों को भी कुछ सिखाना है, वो भी तो माँ बाप की जिम्मेवारी।
2: बिल्कुल, लड़कों भी को भी सिखाना है, लड़कों को उनकी बाउंड्रीज सिखानी है, कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। जो चीज़ आपको बुरी लगती है वो सामने वाले को भी बुरी लगती है। किसी का सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो जेंडर देख कर नहीं आती, दोनों की होती है, लड़कों और लड़कियों दोनों की होती है। तो हाथ उठाना, गाली गलौज करना, बल का प्रयोग करना, ये आप अपने बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी। मैंने वही आपको बोला कि लड़कियों की हमें शिक्षा रोकनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें रोकनी पड़ेंगी कि ये चीज़ें नहीं सीखनी है आपको जो पीछे चलता रहा था, और लड़कों को सिखाना है आपको ऐसे बनकर रहना है, सामने वाले को सम्मान देना है, जितनी आपकी सम्मान है उतना ही सामने वाले की भी इज्जत है। तो ये चीज़ें अपने लड़कों को तो सिखानी ही पड़ेंगी।
1: जी, तो जब घर में माँ बाप या बहन भाई, वो बचपन से जिन भी रिलेशंस के साथ वो रहते हैं, वो हर किसी को अगर रेस्पेक्ट करना सीखते हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली एक उम्र के बाद उनके जीवन में जब नए रिश्ते आते हैं, तो फिर उनको भी वो उसी तरीके से सम्मान करना वो सीख पाते हैं।
2: बिल्कुल, जब आप स्त्री का सम्मान करना सीख जाएंगे तो फिर आप हर रिश्ते में करेंगे उसको। सिर्फ ये नहीं होगा कि सिर्फ माँ का सम्मान कर रहे हैं और बीवी का नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होगा, फिर आप हर जगह सम्मान कर पाएंगे।
1: जी, सो वीरेंद्र जी, बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिल रहे हैं कि मेंटल हेल्थ क्या है, उसको कैसे हम मेजर कर सकते हैं, और मेंटली फिट होने के लिए हमें क्या क्या करना है। जैसे आपने योग और मेडिटेशन दो चीज़ों का कॉन्वर्सेशन में जो जिक्र किया है, मेडिटेशन तो हमको समझ में आता है कि हमें ध्यान करना है, केंद्रित करना है, हर किसी का एक अलग तरीका होता है मेडिटेशन करने का, लेकिन ये योग और मेडिटेशन का जो डिफरेंस, और योग से हमारी मानसिक संतुलन में कैसे प्रभाव पड़ता है।
2: आई थिंक डॉक्टर हर्षिता इसमें ज़्यादा अच्छा जवाब दे पाएंगी।
3: जब हम बात करते हैं योग या मेडिटेशन की, दोनों में एक बहुत कॉमन सी चीज़ है कि आप जो कर रहे हैं अभी कर रहे हैं, माइंडफुल होके कर रहे हैं। इसमें जो माइंडफुलनेस है वो बहुत बड़ा पावरफुल टूल है जो काम में आता है। मैं जो हूँ यही हूँ अभी हूँ, ना तो मैं कुछ पास्ट का देख रहा हूँ, ना तो मैं कुछ फ्यूचर के लिए सोच रहा हूँ। अगर अभी मुझे माइंडफुलनेस का अर्थ ही यही है, टू लिव इन प्रेजेंट, अभी यहीं पर, ना तो इससे कम ना तो इससे ज़्यादा। जब हम बात करते हैं मेडिटेशन की, बहुत सारे स्कूल्स हैं इंडिया में जो मेडिटेशन सिखाते हैं, अपने अपने तरीके से सिखाते हैं। बेसिकली वो आपको काम डाउन ही करवा रहे हैं, और इससे ज़्यादा वो आपको कुछ नहीं कराना चाह रहे। जब हम कामनेस चाहते हैं, क्या वो कामनेस मैं अपनी लाइफ में चाहता हूँ? आंसर यस है। क्या वो कामनेस, वो शांति मैं अपने रिश्तों में चाहता हूँ? बिल्कुल, इसका आंसर यस है। वही शांति मुझे अपने घर में चाहिए, बिल्कुल चाहिए। फिर हम कहते हैं कि मेडिटेशन आपको करना है, आपको एक जगह बैठ के मेडिटेशन करना है, इज़ नॉट अ मेडिटेशन। आप चलते फिरते, घूमते फिरते, आप प्रेजेंट में रहें, यहीं रहें, बिना मतलब आप पास्ट में ना जाएं। उसने मेरे साथ ये किया था, 3 साल पहले उसने मेरे को ये बात बोली थी, अब मेरे अंदर एक ग्रज बैठ गया उसके लिए। हम फॉरगेटफुल और फॉरगिवनेस अगर नहीं लाते हैं, वो चीज़ें फिर ऐसे ही कॉन्टिन्यू चलती रहती हैं। कहाँ से माइंडफुलनेस को हम एक्सपेक्ट करते हैं? मेरे लिए फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे बेटर चीज़ें हो जानी चाहिए। एक हद तक थिंक करना इज़ गुड, बट देन अगेन ओवर थिंकिंग आ जाना इज़ बैड। ओवर थिंकिंग होना, चाहे वो फ्यूचर की है या वो पास्ट की है, वो आपको कभी मेडिटेशन में लिंक नहीं करवा पाएगी। इसलिए आप जो कर रहे हैं यही हैं, अभी हूँ और यही इन्जॉय कर रहा हूँ। अब जब हम बात कर रहे हैं कि हम योगा जब अगर करते हैं तो मेरा इससे मेंटल हेल्थ पे कैसे इम्पैक्ट आता है? अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो ही हमारा मानसिक, जो मेरी मेंटल हेल्थ है, वो मैं अच्छा हूँ। मेरी हेल्थ तभी अच्छी कैसे हो सकती है? अगर मैं बेड पे बैठा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, क्या वो खुशी बहुत देर तक चलेगी? अगर मैं 2 दिन लगातार बेड पे बैठूँ तो नहीं चलेगी। फिजिकली मैं एक्टिव नहीं हुआ, मैं उठ के नहीं चला। सेम जैसे खाने के लिए, शरीर के लिए खाना ज़रूरी है, वैसे ही मेंटल हेल्थ के लिए कुछ कुछ चीज़ें हैं। बाहर जाओ, योगा करो, जिम करो, वॉकिंग करो, सैर करो, इट इज़ इंटर रिलेटेड। ये चीज़ें करेंगे तो हमारे जो केमिकल लेवल्स हैं अंदर, जो बनते हैं खुश रहने के हॉर्मोन्स हैं, वो डेवलप होते हैं। इसलिए हमें प्रैक्टिकल योगा है, आप ज़रूरी नहीं आपको योगा ही करना है, आप सैर पर जाएं, आप जॉगिंग पे चले जाएं, अगर आप बहुत अच्छे हैं तो आप जिम के लिए जाएं, बट थोड़ा टाइम आपको अपने लिए बाहर निकालना ज़रूरी है। उस रूम से बाहर निकलें, उस स्पेस से बाहर निकलें, बाहर जाएं, गार्डन में जाएं, ग्रीनरी देखें, लोगों से बात करें, ये डायरेक्टली आपके मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट डालता है।
1: मतलब कुल मिलाकर के हमारी लाइफस्टाइल में एक ऐसी आदत हो जिसमें हम हमारी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ की बैलेंस लेकर के चले, और हमारी लाइफस्टाइल में हमारी खाने पीने पे अटेंशन हो, और हमारी जो फिजिकल हेल्थ के हिसाब से, जैसे आपने कहा कि वॉकिंग करना है, जॉगिंग करना है, या प्राणायाम, योगा, जो भी कर सकते हैं, जिससे एक रिफ्रेशमेंट होती है, एक रिजुविनेशन होता है, और जब प्रकृति के साथ वक्त बिताते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वेंट आउट हो जाते हैं। कुछ चीज़ें बोल के वेंट आउट होते हैं, कुछ चीज़ें बिना बोल के भी वेंट आउट हो जाते हैं। और मेंटली हम एड ऑन करने के लिए मेडिटेशन करें, जिसमें हम अपने विचारों को देखें और सकारात्मकता की ओर हम अपनी विचारों को डाइवर्ट करें या डायरेक्शन दें। सो थैंक यू सो मच आज की इस ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन के लिए। बहुत ही इंसाइटफुल और बहुत ही सीख वाली बातचीत आप दोनों ने की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और उम्मीद करते हैं कि हमको आपसे और भी बहुत सारी विषयों के ऊपर, महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। लेकिन आज के लिए, आज के इस कार्यक्रम का समय की सीमा को देखते हुए हम आपसे विदाई लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद
1: दोस्तों, ये था आज का जागृत कार्यक्रम, जहाँ पर हमने मानसिक स्वास्थ्य, खास करके महिलाओं की मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हर्षिता जी और वीरेंद्र जी, जो हमारे साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट हैं, आप दोनों से हमने चर्चा की है। हम फिर मिलेंगे अगली कड़ी में एक नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।
4: शाम तेरी बंसी।
5: अभी बचे हैं दोपहर के 4, 1 मिनट प्रभु की याद से मन में लाए अच्छे विचार।

0: मधुबन 107.8 FM सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर अभी वक्त है जीवन रोशनी कार्यक्रम का। तो आज जीवन रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जो बहुत ही जरूरी है लाइफ में, क्योंकि अगर सब चीजें सही चल रहे हैं लाइफ में और कई बार कुछ निर्णय लेना होता है, कई बार कुछ परिस्थितियां अचानक सामने आ जाती है, हम कहते हैं अपने आप को टेक इट इजी, लेकिन वो इजीनेस को प्रैक्टिकल में लाने में थोड़ा सा समय लगता है। तभी कैसे हम कर सकते हैं इसको, इजीनेस को अप्लाई कर सकते हैं अपने लाइफ में, तभी कर सकते हैं जब हमें इसे प्रैक्टिस करना आएगा और हम समझेंगे कि इजीनेस है क्या। हम अपने मन से बात करेंगे, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करेंगे, अपने आप से बात करेंगे कि इजीनेस क्या है, लेकिन इसे बताने के लिए हमें चाहिए हमारे एक्सपर्ट्स। तो आज हमारे मध्य हैं आरजे हर्षा और आरजे मनीषा, जिनको आप सुनते हैं हमेशा कौन से प्रोग्राम में,
1: सपनों की सैर कार्यक्रम में।
0: जी हाँ, तो आज हमारे साथ परी और दीदी दोनों जुड़ चुकी हैं और दोनों अपने अपने जो सेवा है बहुत बखूबी से निभाते हैं। यहाँ पर एक सीनियर सिटीजन होम है, वहाँ पर आप बुजुर्गों के लिए सेवा करते हैं, और आरजे हर्षा वैसे MBA किया है उन्होंने और PR के रूप में कार्यरत है शिवमणि होम में, और आरजे मनीषा फिजियोथेरापिस्ट है, तो वो बुजुर्गों को हेल्प करते हैं एक्सरसाइजेस में और बहुत सारे चीजों में वो हेल्प करते हैं उन्हें, कोई भी पेन योगा हो तो इस प्रकार से वो उन्हें हेल्प करता है। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, पहली बार आप जीवन रोशनी कार्यक्रम में आए हैं तो इसीलिए खूब खूब स्वागत है।
1: थैंक यू आरजे शुभा।
2: थैंक यू।
0: धन्यवाद। तो आप दोनों से जानना चाहेंगे इजीनेस के बारे में, क्योंकि इतनी सारी सेवाएं आप करते हैं, फिर भी आप रेडियो पे शो करते हैं, ऑनलाइन आपको एडिटिंग करते हैं, फिर यहाँ भेजते हैं और रेगुलर कर पाते हैं, तो मुझे लगता है इसके लिए लाइफ इजी होना बहुत जरूरी है, या फिर हमें इजीली उसे एक्सेप्ट करना शायद जरूरी है। तो सबसे पहले मैं हर्षा जी से पूछना चाहूंगी कि इजीनेस आपके लिए क्या है।
2: मेरे ख्याल में इजीनेस माना हम परिस्थिति को एज इट इज एक्सेप्ट करें, तो इससे जो हमारा मेंटल रेसिस्टेंस है वो कम होगा
0: जी,
2: और ज्यादा चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि सभी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है
0: जी।
2: जो चीजें हैं हमारे कंट्रोल में बेशक उसको हम कंट्रोल में रखें, ताकि हम उस परिस्थिति को इजीली टैकल कर पाएं, और इससे हमारा जो मन है वो थोड़ा स्टेबल रहता है परिस्थितियों में भी
0: जी।
2: तो एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है।
0: एक्सेप्ट करना, आपने बोला रेजिस्टेंट की बात, मतलब कुछ एग्जांपल शेयर कर सकते हैं कि हम कहाँ पे ज्यादा रेजिस्ट हो जाते हैं।

0: मैंने बताया, और ये भी कह सकते हैं नेचुरलनेस या इफर्टलेसनेस हम सहजता से समझ सकते हैं। तो ये जन्मजात भी होती है और अभ्यास से भी आती है। जन्मजात क्यों कहेंगे? क्योंकि यदि हम देखें तो आत्मा के जो ओरिजिनल क्वालिटीज है वो शुद्ध है, शांत है, पवित्र है, तो ये सहजता उसका नेचुरल है ही उसके अंदर। और फिर क्या होता है कि जैसे धीरे धीरे हम बड़े, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा, तो वो नेचर वाइज बहुत इजी होता है, वो चीजों को कन्वर्ट नहीं करता, वो एज इट इज लेता है, लाइट रहता है। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है, उसके ऊपर संस्कार आते जाते हैं, उसके ऊपर अपेक्षाएं मीन्स उसके ऊपर हावी होने लगती है, तो फिर वो जो सहजता है वो चेंज हो जाती है। उसको फिर बाद में उसको विकसित करने के लिए फिर से उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो यहाँ पर करना कहना चाहूंगी कि हाँ, इसको हमें विकसित भी करना पड़ता है, लेकिन यदि हम अपने अंदर के बच्चे को यदि हम हमेशा जगा के रखें कहें, तो फिर हमें इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये एक जन्मजात भी है और हम इसे और अच्छे से भी डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम चलना जो है वो जन्मजात है, मीन्स हर कोई चल सकता है, लेकिन अच्छे तरीके से चलना, बैलेंसिंग के साथ में चलना, तो वो एक कला हो जाती है, एक विकसित करने पे ये डिपेंड करता है।
1: जी बिल्कुल, आपसे पूछना चाहूंगी कि आप अपने अंदर के जो बच्चे हैं उसको जगा के कैसे रखते हैं?
0: हाँ जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और हम जो अपने अंदर के बच्चे को जगा के रखने के लिए हम कभी कभी डांस कर लेते हैं, हम कभी गाना गा लेते हैं, कभी पेंटिंग, कभी सिंगिंग, बहुत सारे जो ऐसे क्वालिटीज है, मीन्स हम इंजॉय करते हैं लाइफ को जैसे बच्चे करते हैं, कभी गेम्स भी खेल लेते हैं।
1: जी हर्षा जी, आप कैसे एंजॉय करते हैं?
2: हाँ, जैसे मनीषा बहन ने कहा, क्योंकि हम बुजुर्गों के साथ रहते हैं तो बुजुर्गों को भी, हाँ, उनके ये भी एक यूं कहे बच्चे की ही अब उम्र हो जाती है, बुजुर्ग और बच्चा सेम हो जाते हैं, तो इसीलिए हम उनके साथ वैसे बन जाते हैं तो बहुत इजी हो जाता है।
1: जी क्या बात है। तो लोग लाइफ को खुद कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना लेते हैं, हर्षा जी से जानना चाहूंगी।
2: मुझे लगता है लाइफ कॉम्प्लिकेटेड ओवरथिंकिंग से बनती है।
1: ओके।
2: जो कि आजकल के जमाने में खासकर यूथ्स को बहुत ज्यादा ये बीमारी होने लगी है, ये देखने में आता है, ओवरथिंकिंग और कंपैरिजन। कंपैरिजन के कारण भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं और फ्यूचर का फियर है, इसी के कारण कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा है, ऐसा मुझे लगता है।
1: तो मनीषा जी कुछ ऐड करना चाहेंगे?
0: जैसा हर्षा बहन ने कहा कि कॉम्प्लिकेटेड का रीज़न करेक्ट है कि ओवरथिंकिंग है, कंपेयर और इच्छाएं हो जाती है, कई बार एक्सपेक्टेशंस हम ज़्यादा करने लगते हैं अपने से भी और दूसरों से भी। और जब दूसरों से एक्सपेक्टेशन हमारी ज़्यादा होती है तो फिर वहाँ पर हम अपने आप को मीन्स एक रिजिट कर लेते हैं, रेजिस्ट कर लेते हैं, दूसरे को हम अपने अंदर मीन्स जगह नहीं दे पाते हैं। तो इसके लिए आई थिंक, मुझे लगता है कि सबको वैसा ही एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे वे हैं, ना कि हमें उनको बदलने की कोशिश करना चाहिए।
1: जी बिल्कुल, तभी हम लाइफ को इजी बना सकते हैं। और क्या प्रकृति में हमें सहज जीवन के उदाहरण मिलते हैं?
0: हाँ, प्रकृति देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छी जीवंत पाठशाला कहेंगे हम, क्योंकि प्रकृति से हमें बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, कदम कदम पे मिलते हैं। जैसे कि यदि हम एक फूल को ही देख लें, तो फूल है वो सोचता नहीं है कि मुझे खुशबू फैलाना है या नहीं फैलाना है, वो उसका इजी, उसका नेचर ही है खुशबू फैलाना, इजी है वो। ऐसे ही देखें नदी को, देखें तो वो फ्लेक्सिबिलिटी, वो भी अपने नेचर के अकॉर्डिंग वो चल रही है, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। और जैसे पेड़ है, उसका छाया देना उसको काम है, फल लगते हैं तो और वो झुक जाता है, तो जो उसका नेचर है, जो सहज, वो उसको उन्होंने अपना के रखा हुआ है। जैसे आकाश को देखें तो वो खुलापन है उसके अंदर, विशालता है। तो ऐसे हम जो प्रकृति से हम ऐसे सीख ले सकते हैं जो इजीनेस है उसके लिए।
1: जी, फाइव एलिमेंट्स जो हैं हमारे, उनमें से फेवरेट एलिमेंट आपके कौन से
0: हैं? फाइव एलिमेंट्स में देखा जाए तो मुझे लगता है, वैसे तो पांचों ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन ऐसा मुझे ऐसे लगता है वाटर ज्यादा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो अपने को एडजस्ट कर लेता है, चाहे कटोरी हो, चाहे ग्लास हो, चाहे लोटा हो या बॉटल हो, मटका हो, नदी हो, सागर हो, तो वो अपने आप को बहुत, मीन्स उसमें एडजस्टमेंट की पावर जो है वो बहुत ज्यादा है, तो मुझे ऐसा लगता है।
1: आपको हर्षा जी?
2: सेम, वाटर पसंद है क्योंकि फ्लो होता रहता है और हर चीज में ढल जाता है, तो इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी सिखाता है हमें पानी।
1: नेक्स्ट मैं हर्षा जी से पूछना चाहूंगी कि आप यूथ के बारे में बोल रहे थे और ओवरथिंकिंग के बारे में बोल रहे थे, तो यूथ में जो एंजाइटी और कंपैरिजन जो आजकल

0: है, देखने को मिल रहा है। तो ये इजीनेस को कैसे प्रभावित करता है? और जो ओवर थिंकिंग के बारे में आप कह रहे थे, तो ये हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं आपको लगता है?
1: हाँ बिल्कुल, ओवर थिंकिंग तो बहुत बड़ा शत्रु है, क्योंकि इससे हमारी क्लैरिटी खत्म होने लगती है, हमारा फोकस चला जाता है, और साथ में हम मैग्नीट्यूड को बढ़ा देते हैं चीज़ों की।
0: जी
1: अगर परिस्थिति 10% है, सोच सोच करके हम उस 10% परिस्थिति को हम 80% 90% तक ले जाते हैं, जिसको कहते हैं राई का पहाड़ बना दिया।
0: जी
1: तो परिस्थिति बहुत छोटी है, लेकिन अपने पर्सपेक्टिव व्यू से देखा जाए तो वो बहुत हमको बड़ी लग जाती है, क्योंकि हमने उसको सोच सोच के कर दिया है। तो इसके कारण ओवर थिंकिंग बहुत हानिकारक है।
0: जी ओके। तो मनुष्य जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इच्छाओं के बाद जो हम करते हैं, तो एक्सपेक्टेशंस जो है उसके अधिकतर जीवन को असहज बनाती है, तो कैसे? कुछ एग्जांपल्स।
2: जैसे कि इच्छाओं की अधिकता जीवन को असहज बना देती, तो कई बार क्या होता है, हमारी जो इच्छाएं हैं, इच्छाएं तो जरूरी भी है, क्योंकि कहा भी जाता है इच्छा आवश्यकता की जननी है, वो होनी चाहिए। मगर जब जो इच्छा जो लेवल है वो उससे ऊपर चली जाती है, तो फिर वो बैलेंस जो है हमारे जीवन में, जो संतुलित जीवन है, उसको वो मेंटेन नहीं कर पाती। तो जब इच्छाओं की अधिकता होती है तो शुरू होता है चाहिए चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। और अगर चाहिए तो ठीक है, ओके, ये थोड़ा आप कहें कि ह्यूमन नेचर है, चाहिए, ओके। बट अगर नहीं मिला, जब वो जो चाहिए मुझे वो नहीं मिला, तब भी हमारा जो थॉट्स है वो बैलेंस में रहे, हमारा इफेक्ट ना करे हमारी लाइफ पे, वो इम्पोर्टेंट है। तो इच्छाओं की जो अधिकता है, तो ये कि हम उसी के पीछे भागने लगते हैं, टू मच भागने लगते हैं, तो फिर हमारा जो जीवन है वो असहज हो जाता है। अब असहज क्यों होता है, इसमें सबसे पहले आता है तुलना आती है। इसी समय हम कंपेरिजन करते हैं, उसके पास है मेरे पास नहीं है, स्पर्धा करते हैं हम, कॉम्पिटिशन की भावना आ जाती है। फिर ये कहें कि एक साइकिल शुरू हो जाता है, जैसे वो 99 का साइकिल है कि एक कम रह गया, तो वो उसको एक को पूरा करने का वो चक्र शुरू हो जाता है। तो
0: जी
2: इस तरीके से जो इच्छाओं की अधिकता है, तो वो जीवन में हमारे असहजता लाती है, फिर भय होता है अंदर में, डर क्रिएट होता है, दूसरों को हम कंट्रोल में रखना चाहते हैं कि वो मेरे अकॉर्डिंग चले, सब मेरे अकॉर्डिंग हो, तो ये फिर रॉन्ग हो जाता है, फिर असहज हो जाता है।
0: जी तो हर्षा जी, जैसे कंपैरिजन की बात मनीषा जी ने कही, और आप भी कह रहे थे कि कंपैरिजन जो है वो बहुत डेंजरस है, लाइफ को इजी करने नहीं होता, तो इसमें शायद यूथ्स को, सबको ही एंजाइटी फील होती है, तो ये कैसे प्रभावित करते हैं अपने लाइफ को और अपनी सिंप्लिसिटी को?
1: कंपैरिजन जो है ये एंजाइटी पैदा करता है, और आजकल के ज़माने में आई थिंक सोशल मीडिया
0: जी
1: ये ज़्यादा कंपैरिजन में लेकर आ रहा है यूथ्स को, और जहाँ कंपैरिजन है वहाँ कंपटीशन होगी,
0: जी
1: और कंपटीशन शुरू हुई तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी होगी।
0: जी
1: तो इसलिए ये जो 3 C's हैं वो बहुत थोड़े डेंजर वाले हैं,
0: जी
1: और इसके कारण मुझे लगता है कि उनका जो सेल्फ एस्टीम है वो लो हो रहा है, क्योंकि देखा, कंपेयर किया, ये मेरे से बेटर है, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, तो और अच्छा करने की कोशिश करते उसमें उनको एंजाइटी आ जाती है, लो सेल्फ एस्टीम हो जाता, और इसका जो नतीजा है वो जो इंटरनल ईज होना चाहिए कि एक सरलता, अंदर में जो संतुष्टता होनी चाहिए, लेटिंग गो की भावना होनी चाहिए, वो सब खत्म हो रही है इसके कारण, कंपैरिजन के कारण।
0: तो जैसे माँ बाप कंपेयर करते हैं या कंपटीशन के लिए कहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा आगे जाए, थोड़ा सा कंपटीशन कंपैरिजन के भाव देने से शायद उसको लगे तो वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, है ना? तो इसको क्या
1: मतलब
0: कहेंगे?
1: हेल्दी कंपटीशन हो
0: हेल्दी कंपटीशन हो
1: तो वो अच्छा है, लेकिन मेरी रील से उसकी रील्स अच्छी है
0: हाँ,
1: तो फिर वहाँ गड़बड़ हो जाती
0: वो
1: है।
0: उधर घूमने गए, माँ बाप ने
1: हाँ
0: फोटोज शेयर किया होंगे
1: हाँ
0: जी, इस प्रकार
1: तो
0: से। हाँ
1: कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए,
0: ओके
1: और माँ बाप को उसमें मोटिवेशन देना चाहिए बच्चों को, ताकि बच्चे एंजाइटी में ना चले जाए, उनको प्रेशर ना दे माँ बाप।
0: ओके जी ओके। तो जब इजी फील करने लगते हैं हम हर चीज, आपने कहा कि संतुष्ट रहना चाहिए, है ना, और सिंपल होना चाहिए लाइफ, तो बोरिंग या फिर हम वो तो नहीं कर देंगे, स्टॉप तो नहीं कर देंगे अपने आप को कहीं पे, हम आगे तो बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे?
1: नहीं, संतुष्टता बोरिंग नहीं है. संतुष्टता का मतलब ये नहीं है कि हमारी प्रगति रुक गई, बस हम इतने में ही सेटिस्फाइड, ऐसा नहीं है. लेकिन संतुष्टता कब है? जब रिजल्ट ओरिएंटेड, रिजल्ट ओके, हमने एफर्ट्स लिए, हमने काम किया, फिर जो रिजल्ट आया उसमें ठीक है, या तो उसे एक्सेप्ट करें, सेटिस्फाइड रहें और लर्न कर लें कि आगे के लिए इसमें क्या हम बेटर कर सकते थे, उसको सीख करके फिर और आगे बढ़े. लोगों से भी अगर कंपटीशन हेल्दी है तो आप उनसे सीखेंगे, लर्न करेंगे और वो चीज अपने में अपना करके आप आगे बढ़ेंगे. तो सेटिस्फेक्शन आगे बढ़ना रोकती नहीं है और आगे बढ़ाती है. इसीलिए आध्यात्मिक भाषा में कहेंगे कि वी डोंट नीड टू प्रूव, वी हैव टू इम्प्रूव.
0: ओके, प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इम्प्रूव करने की.
1: आपको इम्प्रूव
0: कुछ ऐड करना चाहेंगे?
2: बहुत अच्छे से हर्षा बहन ने बताया है कि हमको प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है खुद को, बस अपने आप को इम्प्रूव करना है. कई बार यही होता है ना कि हम प्रूव करने के चक्कर में कईयों को उंगली दिखाते हैं, तो एक उंगली तो उसकी ओर होती है मगर चार हमारी तरफ होती है. तो फिर यही है कि चार तो हमारी तरफ है तो हमको ही इम्प्रूव करना है, दूसरे के सामने प्रूव करने का तो कोई मतलब ही नहीं है.
0: जी जी, बिल्कुल. तो देखिए कितने सुंदर तरीके से, कितने इजी तरीके से ये टॉपिक हमें समझ में अभी आ रहा है. आपके मन में कुछ क्वेश्चन है तो दोस्तों आप हमें कॉल कर सकते हैं 94-14-15-14-15 पर, 9414151415 किस नंबर पर. सुन रहे हैं आप कार्यक्रम जीवन रोशनी, यहाँ पर हम एक अल्पविराम ले लेते हैं और फिर मिलते हैं गाने के उस पार. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.
3: अरे क्या बात है मैडम, आज तो आपकी चाल ही बदल गई है.
4: क्यों ना हो, त्रिशूल हवाई चप्पल जो पहन रखी है, आप भी पहनिए त्रिशूल हवाई चप्पल और फर्क महसूस कीजिए.
3: त्रिशूल हवाई चप्पल मजबूत, आरामदायक और रंग बिरंगी डिजाइन में आपके नजदीकी स्टोर्स में उपलब्ध.
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें
3: 9414152250
4: या लॉग ऑन करें www.trishulfootwear.in. त्रिशूल हवाई चप्पल, पैरों में मखमल.

0: में आप सभी का स्वागत है। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर सुन रहे हैं आप कार्यक्रम जीवन रोशनी और आज हमारे साथ आरजे मनीषा और आरजे हर्षा जी हैं। तो वो बात कर रहे हैं इजीनेस के बारे में। बहुत ही सहज तरीके से हम सुन रहे थे ब्रेक से पहले कि कैसे इजीनेस को अप्लाई कर सकते हैं हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में। तो आइए आगे भी जानते हैं उनसे। आप दोनों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया
0: जी। तो अभी आपसे जानना चाहेंगे आरजे हर्षा जी कि अगर कोई व्यक्ति रोज स्ट्रेस में रहता है, मान लीजिए हम ऑफिस जाते हैं या कहीं पे इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं या घर पे भी काम कर रहे हैं, तो स्ट्रेस तो रहता ही है कि सुबह ये बनाना है या ये काम पेंडिंग है, तो वो सुबह की शुरुआत कैसे सिंपल करे, कैसे सहज करे?
2: मुझे लगता है कि सुबह उठते ही आँख खुलते ही फोन हाथ में ना आए
0: जी,
2: क्योंकि हम फोन को जैसे चार्ज करते हैं तो एक ये लक्ष्य बनाए कि खुद को चार्ज करना है
0: जी।
2: तो एटलीस्ट हम 10 मिनट्स 15 मिनट्स जब हम डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करें, मन को थोड़ा रिलैक्स करने की प्रैक्टिस, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें, तो हम अपने आप को चार्ज कर लेते हैं, जो पूरा दिन फिर उसी फ्लुएंसी में हम रहते हैं
0: जी।
2: और मॉर्निंग में ही अपने टारगेट्स गोल्स सेट कर लें कि आज ये काम मुझे करने हैं और इस तरह से मुझे किस तरह से करना है। मेंटली आप अपनी एक बना लें, प्रोग्रामिंग कर लें
0: जी,
2: तो आप बाकी जो परिस्थितियां या जो भी काम है उसमें आप एंग्जाइटी में नहीं आएंगे, स्ट्रेस में नहीं आएंगे,
0: तो मन से बात
2: ऐसे स्ट्रेस को मैनेज कर पाएंगे।
0: तो मन से बात करनी है, प्रोग्रामिंग मतलब कि आज अगर कोई भी परिस्थिति आए तो मैं स्ट्रेस नहीं फील करूंगा,
2: मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, रिएक्ट नहीं करूंगा
0: जी। बिल्कुल। तो मनीषा जी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या डेली अगर हम प्रकृति के साथ जुड़ेंगे 5-10 मिनट तो ये लाइफ को सहज कर सकता है?
1: जी, प्रकृति के साथ जब हम जुड़ते हैं तो हमारी लाइफ बहुत सिंपल हो जाती है, क्योंकि जब हम प्रकृति में जाते हैं, प्रकृति के 5 तत्व जो देखे हम, आसमान, नदी, पेड़ पौधे, सब कुछ, पक्षी, फूल, पौधे, जो भी हम देखते हैं, तो उन सब से हमको एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलता है एक तो, और दूसरा क्या है, उनकी क्वालिटीज़ हमें नज़र आती है। जैसे कि पहले बताया कि जो फूल होता है वो पूंछ कर खुशबू नहीं फैलाता है, उसका नेचर है। तो जब हम प्रकृति के बीच जाते हैं तो हम उनसे ये सीख सकते हैं, हम लर्न कर सकते हैं, और खासकर जब भी देखा जाए बहुत स्ट्रेस में होते हैं, आपका जब स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी जो ब्रीदिंग है थोड़ी फास्ट हो जाती है, लेकिन जब हम प्रकृति के बीच में जाते हैं तो ऑटोमेटिक वो रिलैक्स होने लगता है। खुली हवा हम लेते हैं, खुली हवा में सांस लेते हैं, तो वो भी हमारे मन की जो गति है जो बहुत फास्ट हो गई वो स्लो डाउन करती है। फिर उसके बाद में जब ब्रीदिंग कंट्रोल होती है, फिर धीरे धीरे जो हमारे थॉट थे वो धीरे धीरे थोड़े क्लियर होने लगते हैं, फिर धीरे धीरे हमें अपनी जो प्राथमिकताएं हैं, जो हमें प्रायोरिटीज देना है जिन चीज़ों को, वो चीज़ें धीरे धीरे ध्यान में आती हैं और उनसे पॉजिटिव वाइब्रेशन आता है, तो मन बहुत मीन्स कहीं रिलैक्स हो जाता है। तो एक स्ट्रेस जब भी है, स्ट्रेस रहे तो भी हम यदि प्रकृति के बीच में जाते हैं तो भी एक बहुत अच्छा ये मैनेजमेंट है स्ट्रेस का कह सकती हूँ, जिसमें शांति में जाकर यदि कोई पेड़ है तो उसके नीचे ही बैठ जाएं और गहरी सांस लें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, तो मन जो है वो थोड़ा शांत हो जाता है, तो ये बहुत सहज करने में मददगार है
0: जी। बिल्कुल। और हर्षा जी, जब हम कई बार डिसीजंस लेने पड़ते हैं लाइफ में, तो क्या उसको आसान बनाने के लिए प्रैक्टिकल टेक्निक्स आपके पास है, क्या बताएंगे?
2: बिल्कुल, प्रैक्टिकल टेक्निक्स तो आज बहुत हमें मिलती है। इसमें यूँ कहें कि हम अपनी मेंटल फाइलिंग सिस्टम जो है वो एक बना दें सवेरे उठते ही, और उसमें चेक करें, जैसे फाइल्स होती है तो ऐसे हम अपनी फाइल्स को मेंटली चेक करें कि कौन सी फाइल इम्पोर्टेंट है। कुछ फाइलें अर्जेंट होती है, कुछ इम्पोर्टेंट होती है, कुछ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती लेकिन अर्जेंट होती है
0: जी,
2: कुछ इम्पोर्टेंट भी होती है, अर्जेंट भी होती है
0: जी।
2: तो वो हमें डिसाइड करना है कि पहला काम मेरा कौन सा है जो मुझे करना है, अर्जेंट भी हो इम्पोर्टेंट भी हो। तो इस तरह जब मेंटल फाइलिंग सिस्टम हम कर लेते हैं तो हमें डिसीजंस लेना बहुत ईजी हो जाता है, और उसके लिए फिर हमारे मन के विचारों को रिलैक्स होना बहुत जरूरी, क्योंकि मन तो विचार करता है लेकिन डिसाइड हमारा इंटेलेक्ट करता है। तो इंटेलेक्ट हमारा मतलब बुद्धि जो है जज है, मन तो वकील है। अब वकील बोलता ही रहेगा तो जज अपना निर्णय कैसे सुनाएगा? डिसाइड कब करेंगे,
0: मन को शांत करें।
2: तो इसीलिए मन का रिलैक्स होना बहुत जरूरी है, तो सही टाइम पर हम सही डिसीजन जो है वो हम ले सकते हैं। और उसके लिए जो मैं एक अफर्मेशन का प्रैक्टिस करती हूँ डेली का, खासकर सवेरे, वो ये है कि आई एम एट अ राइट प्लेस डूइंग राइट वर्क टेकिंग राइट डिसीजन एट अ राइट टाइम। ये अफर्म रोज सवेरे अपने लिए करना, ये बहुत प्रैक्टिकली आपको मदद करता है और सही मायने में आप सही समय पर डिसीजन जो है वो ले सकते
0: हैं। ओके जी, तो ये अफर्मेशंस प्रैक्टिस करनी है, मन को शांत रखना है और फिर हम सही तरीके से निर्णय ले सकते हैं अपनी बुद्धि के द्वारा।
2: हाँ जी बिल्कुल,
0: तो मन को साफ रखना भी जरूरी है,
2: मन को शांत रखना भी जरूरी है, साफ रखना भी जरूरी है,
0: दोनों जरूरी है, तब हम इजीली डिसीजंस ले सकते हैं जी। तो मनीषा जी से जानना चाहेंगे, क्या जो चीजें हम यूज करते हैं आसपास में है, तो मिनिमलिज्म अपनाना जरूरी है इजीनेस के लिए?
1: बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मिनिमलिज्म मीन्स यदि अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कम सामान रखना, जबकि इसका अर्थ हम ऐसे ले सकते हैं कि जितना है उतना पर्याप्त है, मीन्स एक संतुष्टता का एक गुण है इसके अंदर में। और आज देखा जाए तो हमारी जो लाइफ है, हमारे जीवन में भी देखा जाए तो बहुत सारे कहें कि चाहिए चाहिए, इच्छाएं इच्छाएं की वजह से साधन संसाधन बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं। यहाँ पर मुझे गांधी जी का याद आ रहा है, उनका कोट था बहुत फेमस है कि सादा जीवन उच्च विचार। तो जीवन सादगी से भरा हो लेकिन जो विचार है वो अच्छे इम्पोर्टेंट हो, और मीन्स अंदर की सादगी जो है वो बाहर हमारी क्लैरिटी लाती है, हमारे में सहजता लाती है। तो इसलिए सामान पे तो डिपेंड नहीं होता, भले क्योंकि एक तरीके से देखा जाए कि संग्रह वृत्ति भी नहीं होनी चाहिए, जैसे जैन धर्म में भी कहा गया, महावीर जी ने भी कहा है कि अपरिग्रह यानी कि संग्रह नहीं करना। तो उसी प्रकार हमें ज्यादा चीजों को जमा नहीं करना है, क्योंकि एक ज्यादा जितनी ज्यादा चीजें होती हैं उतना जो हमारा एनर्जी का लेवल है वो लो होता है। तो जितनी आवश्यक है उतना रखना है लेकिन सहज रहना। और कई बार क्या होता है कि इसको भी हम एक जबरदस्ती नियम जैसा बना लेते हैं, तो ये भी फिर कई बार ही स्ट्रेस का कारण बन जाता है। तो ये रहे लेकिन पॉजिटिव वे में रहे।
0: जी बिल्कुल, तो मिनिमलिज्म अपनाते हैं तो जैसे मनीषा जी ने कहा कि हम अपरिग्रह, महावीर स्वामी जी ने ये बात कही थी, मतलब ग्रीड नहीं बट नीड जितनी।
1: हाँ जी करेक्ट,
0: रखें आप अपने पास। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे हर्षा जी इसमें?
2: हाँ, इसमें अगर कुछ हम चलो चीजें हमें, इसमें भी कंपैरिजन कई बार आता है, उसके पास है तो मेरे पास भी होनी चाहिए या इससे बेटर मेरे पास होनी चाहिए।
0: कोई चीजें हमें मतलब अट्रैक्ट करती है, अच्छे लगने लगते हैं तो हम
2: तभी हम
1: खरीद लेते हैं,
2: खरीद लेते हैं।
1: और सबसे ज्यादा जो है इसका तो ऑनलाइन शॉपिंग है, सभी जान ही रहे हैं। अननेसेसरी हम चीजें देखते हैं, ये अच्छी है भले जरूरत हो ना हो, हम परचेस कर लेते हैं भले वो पड़े रहे लेकिन अच्छी लगी, तो ये सभी थोड़ी सी हमारे जीवन को असहज करने में यूज कर देता है ये।
0: जी बिल्कुल जी, तो 5 मिनट मेंटल रिसेट एक्सरसाइज अगर आपके पास है तो आप हमारे श्रोताओं से शेयर करें।
2: श्योर, इसमें सुबह उठते ही 3 बार डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करें और एक ग्रेटिट्यूड की भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं।
0: ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज है?
2: हाँ, मेंटल एक्सरसाइज कह सकते हैं कि रोज उठते ही ग्रेटिट्यूड फील करें, इससे आपको बहुत एनर्जी फील होगी।
0: ओके जी,
2: और ये एक मैजिक का काम करता है ग्रेटिट्यूड
0: जी।
2: इसकी जो प्रैक्टिस है वो आप खुद करके देखेंगे, भले 1-2 दिन आपको लगे कुछ नहीं हो रहा है लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस और उस फीलिंग के साथ जब करते हैं तो जरूर आप जो चाहें आप वो हासिल कर सकते हैं, अपने गोल्स को हासिल कर सकते हैं। और साथ में फोकस्ड रहें, मैं कहूंगी सिंगल फोकस।
0: सिंगल फोकस मतलब?
2: मना आपके लिए जो चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे मुझे इस डिग्री को लेना है जो यूथ्स के लिए कहे कि मुझे ये बनना है, उनका जो सपना है, तो फिर डाइवर्जन ना हो कि ये भी करूं ये भी करूं, एक में ही फोकस रहे। और उसी को अगर आपकी कोई ऐसी हॉबी है जैसे आप सिंगर बनना चाहते हैं, म्यूजिशियन या पेंटर बनना चाहते हैं, तो उसी को आप अपना प्रोफेशन भी बना सकते हैं
0: जी।

0: अपने हैबिट्स को, हैबिट्स तो नहीं लेकिन हॉबीज को
1: जी
0: प्रोफेशन में बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए फोकस्ड
1: फोकस्ड,
0: जरूरी है।
1: सिंगल फोकस्ड एक नया शब्द है
0: जी
1: जो जरूर से याद रखेंगे, क्योंकि हम आजकल सोचते हैं कि मल्टीपल चीजें एक साथ कर लें,
0: हाँ,
1: मल्टीटास्किंग समझ लेते हैं इसको,
0: मल्टीटास्किंग, हाँ जी
1: लेकिन
0: हाँ
1: एक बार में एक ही चीज के ऊपर हम फोकस्ड रहें, ऐसा ये बात है जी। तो मनीषा जी आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल घर के अंदर बहुत सारे केओस जैसा माहौल होता है, बच्चों को कुछ और चाहिए, पेरेंट्स को कुछ और चाहिए, अगर सास ससुर है तो उनको कुछ और चाहिए, और सभी के ओपिनियन भी अलग अलग है और लाइफ को देखने की नजरिया भी अलग अलग है। तो घर पे, घर में रहते हुए घर के माहौल को कैसे सिंपल और पीसफुल बनाया जा सकता है?
2: ये थोड़ा टफ क्वेश्चन भी है, क्योंकि घर का माहौल बदलना है तो कहें कि एक-एक पर्सन के, एक-एक व्यक्ति की जिम्मेवारी होती है। जैसे कि एक जो घर होता है वो ईंट से तो बना होता ही है, लेकिन कितनी सारी ईंटें होती है, सब जब जुड़ते हैं तो जब सब साथ में होते हैं तो फिर वो एक घर कहीं मजबूती आती है उसमें। तो घर के माहौल को यदि सिंपल और पीसफुल बनाना है तो इसमें सभी जो मेंबर्स हैं हम घर के कहेंगे, तो वो सभी इन्वॉल्व होने चाहिए उसमें। तो इसमें हम कुछ रूटीन्स कर सकते हैं, जैसे कि कुछ दिनचर्या हम ऐसी करें, जैसे
1: जी
2: बच्चे हैं तो बच्चों को भी उस अच्छी शांत दिनचर्या में शामिल किया जाए। घर में जैसे गांधी जी ने भी कहा, सादा जीवन उच्च विचार,
1: जी
2: तो सिंपली सिटी रहे घर में भी, अनावश्यक चीजें ना हो, तो
1: जी
2: उसे कह कि बच्चों को भी कुछ लेसन मिलेगा, सीखने को मिलेगा, वाइब्रेशंस अच्छे होंगे। और सिंपल और पीसफुल बनाने के लिए बहुत अच्छा है कि मेडिटेशन भी किया जाए, है ना। जब हम मेडिटेशन करते हैं, हम ध्यान करते हैं, तो एक शांति का वाइब्रेशन क्रिएट होता है, तो ऑटोमेटिक वो शांतिमय वातावरण क्रिएट होता है, अच्छे वाइब्रेशंस आते हैं। और जितना अच्छा मीन्स हमारी सादगी पूर्ण जीवन रहेगा, अंदर भी सादगी है तो वो बाहर भी सादगी को वो रिफ्लेक्ट करेगा। मन हमारा यदि शांत है तो घर में ऑटोमेटिक व्यवहार में कहें परिवार में शांति इजीली आ सकती है। तो
1: जी
2: घर के माहौल को सिंपल और पीसफुल बनाना है तो कहूंगी कि प्रकृति के बीच में भी जाएं, जो भी सारे हमारे मेंबर्स हैं सब थोड़ा पर टाइम निकाले, प्रॉपर एक रूटीन रहे जिसमें एक दूसरे के साथ में एंजॉय करें। यहाँ पर मैं की भावना को छोड़ के एक हम की भावना को क्रिएट करें, तो सिंपल और पीसफुल हमारा जो वातावरण है घर का वो बन सकता है।
1: जी अर्षा जी, आपसे जानना चाहूंगी इसी में ही कि महिलाओं को खास करके क्या ध्यान में रखना चाहिए जब घर में वो कार्यरत है पीसफुल और उसको सहज बनाने के लिए?
0: मुझे लगता है कि महिलाओं में इमोशनल बहुत वो होता है, तुरंत इमोशनल ये हो जाते हैं कि जब कुछ भी होता है
1: जी
0: तो इसलिए वैसे उनके लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि वो सब शेयर कर लेती हैं, हल्के हो जाते हैं किसी को सुना करके। लेकिन
1: जी
0: उनको भी डेली मेडिटेशन की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है,
1: अपने घर के माहौल
0: क्योंकि घर के
1: को
0: माहौल
1: पीसफुल।
0: को, क्योंकि महिलाएं भोजन बनाती हैं तो वो किस भावना से भोजन बनाती है। अगर ये भावना रखे कि ये प्रभु प्रसाद है और वो मुझे सबको खिलाना है, तो कितनी मन की जो वाइब्रेशंस हैं वो उस भोजन में जाएंगे। और जब सब वो खाएंगे, शांति से बनाए, अच्छे गाने सुन करके बना सकते हैं, अच्छे आजकल तो पॉडकास्ट और बहुत सारे अच्छी अच्छी बातें आती हैं सोशल मीडिया में, वो सुनते हुए बनाएं तो भी घर का वाइब्रेशन बहुत ही अच्छा रह सकता है।
1: ओके, मतलब अगर किसी का फोन आ गया तो बातें करते करते खाना ना बनाए,
0: हाँ
1: व्यर्थ
0: जी,
1: बात।
0: व्यर्थ बातों
2: कई
0: में
2: बार
0: ना
2: होता है
0: बने,
2: ना, टीवी चालू है, सीरियल
0: टीवी
2: देखते हुए कई
0: में
2: बार बताए, पहले
0: सीरियल,
2: भोजन बनाते
0: हाँ
2: हैं,
0: भोजन
2: आधा
0: खाते भी
2: ध्यान,
0: सीरियल
2: हाँ
0: देखते हुए
2: आधा
0: खाते हैं,
2: उधर मीन्स चल रहा है लाउड में और इधर काम चल रहा है उधर,
0: हाँ
2: उस
0: जी
2: तरीके से ना
0: बिल्कुल
2: हो।
1: क्योंकि अपने फेवरेट सीरियल आए तो देखने
0: हाँ
1: को मन
0: देखना,
1: करेगा ही
0: बिल्कुल बिल्कुल
2: लेकिन
0: करेक्ट,
2: खासकर भोजन बनाते समय थोड़ा
0: खाते
2: अवॉइड
0: और बनाते
2: करें।
0: वक्त ना वो सब चीजें देखे, उसको अवॉइड करें, क्योंकि
1: वाइब्रेशंस
0: उससे
1: मिक्स होता है फिर।
0: मिक्स होता है और उससे भी सीखते हैं उन सीरियल से और बच्चे भी सीखते हैं।
1: बच्चे भी सीखते हैं, इसलिए आप अपने घर के माहौल को अगर अच्छा बनाना चाहते हैं, सिंपल रहने देना चाहते हैं, तो इस टेक्निक्स को यूज आप कर सकते हैं
0: जी
1: हर्षद जी। जैसे आप कह रहे थे कि हमें 3-4 बार डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहिए, तो जो मेडिटेशन या ब्रीदिंग टेक्निक्स के बारे में बता रहे थे, अभी भी आप मेडिटेशन के बारे में बता रहे हैं, तो ये कैसे सिंप्लिसिटी ला सकता है लाइफ में? कुछ एग्जांपल्स आप शेयर कर सकते हो सर?
0: इसमें सुबह तो करना ही है, रात को सोते वक्त भी करना ही है, लेकिन
1: जी
0: जब हम कार्य व्यवहार में हैं, आप ऑफिस में हैं या कहीं भी हैं, तो बीच बीच में माइक ब्रेक्स जब लेते हैं तभी भी ये काम में आता है, लाइफ को सिंपल करता है।
1: ओके जी,
0: बहुत फायदा होता है इससे क्योंकि मन बहुत ईज रहता है और हमको एक बहुत अच्छा सीख मिलती है कि चलो चीजों को लेट गो करें तो भी हम अपने आप को सरल बना सकते हैं कि ओके फाइन जो हुआ लेट गो, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, वी हैव टू मूव ऑन।
1: जी मनीषा जी कुछ ऐड करना चाहेंगे?
2: ये मेडिटेशन कहें या ब्रीदिंग टेक्निक है, सिंप्लिसिटी तो लाती है क्योंकि हमारे जो विचार हैं उस समय हमारे शांत होते हैं, एकरस होते हैं थोड़ा। और खासकर टेक्निक ब्रीदिंग की बताना चाहूँगी, एक बॉक्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है जिसमें हमें डीप इनहेल करना है, 4 सेकेंड्स हमको होल्ड करना है उसे, अंदर सांस लेते हुए 4 सेकेंड, फिर अंदर हम होल्ड करेंगे 4 सेकेंड, फिर 4 सेकेंड में हम उसको छोड़ेंगे 1 2 3 4 करके, और छोड़ने के बाद में भी फिर से 4 सेकेंड हमको होल्ड करना है। तो इस तरीके से 4 का ये बॉक्स, एक कहें कि 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसा एक बॉक्स बनता है। तो एक बॉक्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जिसे हम करें, और खासकर तब जब बहुत टेंशन में हो या कोई स्ट्रेस हो, कोई भय हो या कुछ ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जब इस तरीके की प्रॉब्लम हो तो कुछ सेकेंड रुक करके जब हम अपनी सांसों पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं तो बहुत अच्छा पॉज लग जाता है उस चीज पे जो थॉट चल रहा है उस पे, प्रोसेस पे, तो ये कर सकते हैं हम।
1: जी हर्षा जी, जब ब्लड प्रेशर के बीच में इमोशनली स्टेबल हम कैसे रहे?
0: हाँ वही माइक्रो ब्रेक्स जरूरी है, पॉज जरूरी है, बीच बीच में आप स्ट्रेच कर सकते हैं अपने बॉडी को, वो भी रिलैक्स देता है। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस ना करें उसमें,
1: जैसे
0: जैसे ऑफिस का जो भी स्ट्रेस है वो घर ना ले जाए, घर का स्ट्रेस ऑफिस में ना ले जाए, उसको वहीं छोड़कर आए।
1: जी
0: एक व्यक्ति था, वो जब ऑफिस से घर आता था तो उसके बाहर एक उसने रखा पेड़ था, अपने सारे जो ऑफिस के स्ट्रेस है वो उस पर लिख के उस पेड़ पर चिपका देता था, उसको दे देता था, फिर घर में एंटर होता था। तो ये एक ये प्रैक्टिकल किया है उस व्यक्ति ने, तो इसीलिए घर का जो माहौल है वो बहुत ही अच्छा रहता है। क्योंकि कई बार हम बॉस को तो सामने गुस्सा कर नहीं सकते, वहां तो हमको पी जाना है, तो वो जो अंदर भरा है प्रेशर वो फिर घर के लोगों के आगे निकलता है।
1: जी
0: है ना, जैसे प्रेशर कुकर फटता है, तो इसीलिए वहाँ ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मुझे नहीं करना।
1: जी
0: ये थोड़ा हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है।
1: जी
0: तभी हम अपने वर्क प्लेस पे और घर पे जो कार्य कर रहे हैं उसमें फोकस्ड रह सकते हैं।
1: ओके जी, यहाँ पर एक क्विक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के तुरंत बाद वापस आएंगे इस कार्यक्रम के अंतर्गत जीवन रोशनी नाम है।
3: महिलाओं के लिए एक नई उम्मीद, अब एनीमिया के उपचार के लिए FCM का एक ही इंजेक्शन लगवाएं और निश्चिंत हो जाएं। गर्भावस्था के दौरान दूसरी और तीसरी तिमाही में खून की कमी से होने वाले दुष्परिणामों जैसे थकान, कमजोरी, भूख में कमी और अन्य जटिलताओं तथा कम वजन वाले नवजात शिशुओं की समस्या से निपटने के लिए अब FCM इंजेक्शन की एक ही खुराक काफी है।
4: FCM यानी फेरस कार्बोक्सी माल्टोस खून की कमी को दूर करने का एक सुरक्षित और प्रभावी तरीका है, तो बिना देर किए निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर आज ही FCM का इंजेक्शन और स्वस्थ रहे।
3: हर रोग का मिटे नामो निशान, ये है संकल्प स्वस्थ रहे राजस्थान। NHMIEC राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: वेलकम बैक, सुन रहे हैं कार्यक्रम जीवन रोशनी और आज हम बात कर रहे हैं इजीनेस के बारे में। तो मैं बिना देर के फिर से लौटती हूँ हमारे एक्सपर्ट्स के पास और आइए जानते हैं कि हमारे लाइफ को और इजी बनाने के लिए, रिलेशनशिप्स को और बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हर्षा जी आपसे पूछना चाहेंगे कि रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स जो है उसको सिंपल तरीके से रिजॉल्व कैसे करें।
0: सबसे पहले तो हमें सबका सुनना जरूरी है।
1: जी
0: हम ही सुनाते रहेंगे ऐसा नहीं है, उनकी भी सुने।
1: जी
0: और इसमें रिलेशनशिप्स में 3 L's है, लिसन, लुक और लर्न।
1: ओके,
0: लुक, लिसन और लर्न।
1: जी
0: तो हमें सबसे सीखना भी है, उनसे सुनना भी है और देखना भी है कि माना देखना माना वो क्या चाहते हैं, उनकी इच्छाएं क्या हैं। सिर्फ हम अपना ही एक्सपेक्टेशन रखें, एक्सपेक्टेशन रखना माना कि हम जो वो नहीं है वो हम सोच रहे हैं कि ये मेरी तरीके से ही चले, तो ये ना हो, इससे भी कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा तरीके से कम हो सके और आपका जो घर है वो स्वर्ग बन सकता है। टॉक्सिक एनवायरनमेंट जो है वो एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट जो है वो बन सकता है। और हम ये भी सोच सकते हैं कि जैसे ऑर्केस्ट्रा में कोई फ्लूट पे है, कोई तबले पे है, कोई पियानो पे है, लेकिन सब एक ही सुर लय में बजाएं तो एक अच्छा म्यूजिक क्रिएट हो सकता है। सब अपना ही बजाएंगे
1: जी,
0: तो एक मेस क्रिएट होगा जो कोई भी सुनना पसंद नहीं करेगा। तो इसीलिए ये सोचे कि हर एक का अपना म्यूजिक है
1: जी,
0: हर एक अपने उस पर है, संस्कार अपने हैं, तो हमें उनसे मिला करके चलना है, तो घर का जो वातावरण है बहुत, रिलेशनशिप्स जो है वो बहुत हमारी अच्छी हो सकती है
1: जी। तो मनीषा जी से जानना चाहूंगी कि रिलेशनशिप में फॉरगिवनेस का क्या महत्व है?
2: देखा जाए तो रिलेशनशिप में फॉरगिवनेस बहुत बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्षमा मीन्स माफ़ करना, तो ये किसी भी संबंध को बहुत गहरा बनाता है। जैसे कि अगर बाई चांस समझ लीजिए हस्बैंड वाइफ हैं, माता पिता के बीच, बच्चों के बीच में कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो यदि माता पिता उस बच्चे को क्षमा कर देते हैं तो वो उससे कतराएगा नहीं अपने मम्मी पापा से कुछ भी शेयर करने को। तो एक तरीके से देखा जाए तो रिलेशनशिप में बहुत ही उसका इम्पोर्टेंस है, और जो फॉरगिवनेस है, जो हम क्षमा करते हैं, तो वो क्षमा हम दूसरों को नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम अपने आप को ही कर रहे हैं, अपने आप को ही आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि यदि हम किसी के लिए हम नेगेटिव रख रहे हैं, हम उसे माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब हमने खुद को ही एक जेल में बंद कर लिया। लेकिन जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो वो समझ लीजिए कि हम उसको तो किया वो तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमने अपने को आज़ाद किया, हम आसमान के खुले पंछी बने ना कि पिंजरे के पंछी। तो लाइट जीवन को हल्का बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए क्षमा बहुत इम्पोर्टेंट है। और महावीर स्वामी ने भी कहा है क्षमा वीरस्य भूषणम्, यानी कि क्षमा जो है वो वीरों का गहना है, जो इगोइस्टिक होगा वो क्षमा नहीं कर पाएगा। तो लेकिन जो जितना नम्र होगा वो क्षमा करेगा, और फॉरगिवनेस से तो क्या होता है, हम एक्सेप्ट कर पाते हैं इजीली दूसरों को, जो जो है वैसे उसी तरीके से, हम उनको चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमने उनको भले एक बार बता दिया कि भाई और कई बार होता है ना कि क्षमा का भी मतलब ये नहीं होता कि बार बार माफ़ी करते जा रहे उसमें, लेकिन एक तरीके से एक गुण बन जाता है ये कि हमें यहाँ पे हर बार सहना ही नहीं है, लेकिन एक एबिलिटी हमारे अंदर डेवलप होती है, एक शीलता मीन सहनशीलता डेवलप होती है हमारे अंदर में। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि हम ही माफ़ कर रहे हैं, वो तो सुधर नहीं रहा है, वो बार बार वही गलती दोहरा रहे हैं, लेकिन यदि देखा जाए तो वहाँ पर हम सहन नहीं कर रहे होते, हम दमन कर रहे होते हैं, सप्रेस कर रहे होते हैं। लेकिन यदि हम उसको फॉरगिव करके हम आगे बढ़ते हैं तो हम सहनशीलता, ये एक वैल्यू अपने जीवन में हम धारण करते हैं। तो क्षमाशीलता सहनशीलता जैसे कि एक वैल्यू होता है, वो अपने साथ पूरी चेन लेकर आता है और वैल्यूज की। तो एक क्षमा इतना इम्पोर्टेंट मीन्स कहें कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वैल्यू है, इसके पीछे समझ लीजिए पूरे गुणों की जो है वो लाइन लगी होती है। तो और ये अभ्यास तो हमें डेली ही करना चाहिए, सोने से पहले क्षमा मांगना, जिसको भी हमने जाने अनजाने यदि हमने किसी को दुख दिया है, तकलीफ दी है, चाहे अपने विचारों से भी किसी के लिए अगर गलत सोचा है तो भी एक तरीके से हम इनडायरेक्टली उसको तकलीफ दे रहे हैं, हम उसको दुख पहुंचा रहे हैं। तो उस गलती के लिए भी हमें अपने को माफ़ करना चाहिए और दूसरे को भी माफ़ करना चाहिए, क्योंकि क्षमा जो है खुद के लिए दूसरे के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है हम बहुत गिल्ट कॉन्शियस में रह जाते हैं, वहाँ पर हम स्वयं को माफ़ ही नहीं कर पाते, दूसरों को तो माफ़ करने की सोचते हैं लेकिन अपने लिए हम फिर बहुत रिजिड हो जाते हैं, नहीं मुझसे ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, मैंने ऐसे कैसे कर दिया, ये गलती मेरे से कैसे हो गई। तो यहाँ पर हम खुद के लिए भी बहुत रिजिड हो जाते हैं, तो वहाँ पर खुद के लिए भी थोड़ी करुणा रहे, क्षमा रहे कि भाई गलती हो गई तो हो गई, लेट गो करें, खुद को क्षमा करें, और ये ध्यान रखें कि नेक्स्ट टाइम फिर ये गलती दोबारा ना हो, ये हम लेसन लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जब खुद को भी क्षमा करते हैं तो भी हम हल्के होते हैं, जब दूसरों को भी क्षमा करते हैं तो भी हम हल्के होते हैं। तो जो फॉरगिवनेस है वो जीवन को इस तरीके से बहुत हल्का बना देता है
1: जी। क्या बात है, तो क्षमा करना खुद को बहुत जरूरी है। अगर कोई भी चीज के लिए आपने अपने आप को अभी तक क्षमा नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, ताकि आपकी लाइफ जो है आगे ईजी हो सके। तो हर्षा जी आपसे पूछना चाहेंगे कि रिलेशनशिप्स में एक्सपेक्टेशंस की भी आपने पहले बात कही है, तो उसको कम करने के क्या प्रैक्टिकल टिप्स आप देना चाहेंगे?
0: उसके लिए खुद की बाउंड्रीज को हमें सेट करना पड़ेगा कि मुझे पहले अपने आप को ही देखना है। उनसे एक्सपेक्ट करके हम अपने आप को यूं कहें कि एक बेचैनी सी फील होती है अंदर से, क्योंकि उसने, मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा उसने किया नहीं, और इनडायरेक्टली हम अपना कंट्रोल उस पर डाल रहे हैं। तो इसीलिए, और फिर जैसा करेंगे वैसा ही रिटर्न एक्शन का रिएक्शन तो होगा। हमसे भी कोई एक्सपेक्ट कर रहा है, वो भी हमसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो हम उनका फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो इससे फिर रिलेशनशिप्स में कन्फ्लिक्ट्स या टॉक्सिक वातावरण बनना शुरू हो जाता है।
1: जी,
0: तो इसीलिए जितना हो सके भले आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ठीक है, या तो आप उनको ठीक से बता दो भाई मेरी आपसे ये एक्सपेक्टेशंस हैं, तो उनको क्लियर हो जाए कि जैसे माँ बाप को बच्चों में एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो उन्हें बताएं, फ्री रहें, बच्चे अपनी बातें उनको बताएं, एक अच्छा हेल्दी वातावरण रहे तो घर का जो माहौल है वो भी अच्छा रहेगा, रिलेशनशिप्स भी जो है वो बहुत अच्छी रहेगी।
1: जी, तो कई बार हम सोचते हैं कि हमारे माँ बाप है या हमारे लव्ड वंस है, हाँ, वो ना बिन कहे हमें समझ जाए।
0: हाँ, कई बार ऐसा होता है, लेकिन आपको क्लियर रहना है,
1: क्लियर,
0: क्लैरिटी बहुत जरूरी है इसमें।
1: तो जैसे हम बात कर रहे थे परिवार के बारे में, अभी बात ही चल रही है, तो ईगो कम करके हारमोनी को लाना कितना जरूरी है और कैसे ला सकते?
2: वैसे देखा जाए तो परिवार में ईगो कम करना यानी कि खुद को छोटा करना नहीं है बल्कि रिश्ते को बड़ा करना है। मीन्स आप अपने ईगो से ज्यादा आप उस रिश्ते को, आप रिलेशन को आप अहमियत दे रहे हैं, तो परिवार में ईगो तो होना ही नहीं चाहिए, कहना क्या चाहूंगी मैं। और यहाँ पर हारमोनी, जैसे कि ये शब्द है तो इसमें ही हमारी आदरणीय जो जानकी दादी थे वो समझाते थे, हारमोनी में ही दो शब्द है, हार मानी। तो जब हम परिवार में कोई एक हार मान ले तो बातें बढ़ेगी नहीं, तो बहुत सामंजस्य कहें परिवार में बना रहता है। तो परिवार में तो सबसे पहले ईगो मीन्स को गो कर देना चाहिए और हारमोनी को अपनाना चाहिए। मीन्स भले छोटी मोटी बातें हैं, होती रहती हैं, बट कभी आप झुक जाए कभी सामने वाला झुक जाए, तो इस तरीके से कहें कि ये दो चक्के जो होते हैं पहिए, तो वो दोनों बैलेंस के साथ में चलते हैं। तो इस तरीके से हमें एक दूसरे को समझ करके आगे बढ़ना चाहिए, और इसमें कोई सामने झुक जाना कोई बड़ी बात नहीं है, किसी के सामने झुक जाना ऐसा नहीं है कि आप एकदम ही नीचे हो गए या आपने बिल्कुल गिर गए, इस तरीके से फीलिंग नहीं होती है। ये आप झुक गए तो समझ लीजिए आप और ऊंचे उड़ गए, तो वहां पर झुकना नहीं होता है, वो सीखना होता है और आगे बढ़ना होता है। तो इस तरीके से परिवार में यदि हम ईगो कम करते हैं और ईगो की जगह हम कहें कि सेल्फ रिस्पेक्ट हम डेवलप करें खुद के लिए भी और परिवार में भी सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप करें, तो भी हारमोनी आ जाती है। दूसरों को भी हम रिस्पेक्ट दें, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, सबको क्या चाहिए, प्यार चाहिए और रिस्पेक्ट चाहिए। जब ये नहीं दे पाते हैं तभी हमारा जो ईगो है वो जागता है, और क्या होता है ईगो का कारण ये भी होता है कि हम रिस्पेक्ट चाहते हैं, देते नहीं है, चाहते हैं कि वो मुझे रिस्पेक्ट दे, और अगर बाय चांस वो नहीं मिल पा रहा है तो वहां पर ईगो हर्ट हो जाता है। तो वहां पर हमें भले रिस्पेक्ट दे ना दे, वहां पर तो हमको लाइट रहना ही चाहिए, क्यों, एक्सपेक्टेशन तो हमें करनी नहीं है, परिवार में तो चलता है। तो इस तरीके से यदि हम ईगो कम करें, झुके, नम्र बने, तो बहुत इजीली हम हारमोनी ला सकते हैं, परिवार में सामंजस्य बना के रख सकते हैं।
1: जी, तो इसका मतलब जिंदगी को सहज करने के लिए हमें बहुत सारे मूल्यों को अपनाना है।
2: जी,
1: वैल्यूज की चेन के बारे में बात करते हैं,
2: और एक वैल्यू अपनाएंगे तो सभी उसके फ्रेंड हैं, सभी ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, बिना बुलाए आ जाएंगे।
1: तो दोस्तों जरूर कोशिश करें, आप कोशिश कर भी रहे होंगे, आपके अंदर भी बहुत सारी अच्छाइयां हैं जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कोई भी परिस्थिति आपके सामने अगर आ जाए अचानक, तो आप कैसे उसे रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे आप उस परिस्थिति को सामना करते हैं। तो हर्षा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बाहर बहुत सारे टॉक्सिक माहौल है, कई बार हम मीडिया के माध्यम से भी बहुत सारी चीजें देखते हैं, और वैसे भी हमारे लाइफ में कुछ चीजें चल रही होती है उससे भी हमें लगता है कि बहुत टॉक्सिक है लाइफ, तो खुद को इंटरनली कैसे इजी रखें, चले बाहर तो माहौल है ही,
0: उसके लिए ही हमें बाउंड्रीज को सेट करना जरूरी है,
1: वरना
0: क्या देखना है क्या नहीं देखना है। और कुछ समय के बाद जो जो चीजें आपने पहले देखी हैं उसको हिस्ट्री पूरी वाइप आउट कर दें और एक फ्रेश स्टार्ट करें।
1: जी,
0: तो आपको फिर नई चॉइसेस मिलेगी कि अब ये सारी बातें जो है वो मुझे सीखनी है, कि हफ्ता है या 10 दिन के बाद मुझे दूसरी नई चीजें देखनी है या सीखनी है।
1: जी,
0: सीखने की भावना से देखेंगे तो आप व्यर्थ में या टॉक्सिक में नहीं जाएंगे, तो इससे आप अपने बाउंड्रीज के अंदर ही रहेंगे और आप सेफ रहेंगे और फोकस्ड रहेंगे।
1: जी, इसी के साथ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि नो कहना सीखना इजी नहीं होता है कई बार, तो नो कहना सीखना इजीनेस से कैसे जुड़ा है?
0: बिल्कुल, नो कहना थोड़े कई बार बहुत मुश्किल होता है, खासकर अपने बॉस को या बड़ों को
1: जी,
0: लेकिन नो कहना जरूरी भी है और ये अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो भले आप एकदम से नो ना कहें, नहीं कह पा रहे हैं तो
1: जी,
0: लेकिन तरीके से कहें,
1: लेकिन अपनी बात,
0: अपनी बात तरीके से समय देख करके, वातावरण देख करके फिर आप अपनी बात रखें तो फिर आगे देखें कि अब बड़े क्या डिसीजन आपके लिए ले रहे हैं, लेकिन बताएं अवश्य, वरना नहीं बोलना, बोलने की जो ताकत अगर नहीं रहेगी तो अंदर ही अंदर आप फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे। तो इसीलिए जरूरी है नो कहना
1: जी,
0: भले उसके लिए थोड़ा आपको टाइम भी चाहिए तो आप टाइम लें, अपने लिए निकालें, दे अपने आप को टाइम, ताकत भरें, मोटिवेट करें, लेकिन बात को तरीके से रखें जरूर
1: जी। कोई बात मनवाना होता है तो हम बहुत तरीके ट्राई करते हैं उसको मनवाने के लिए, लेकिन नो कहने के टाइम में थोड़ा बहुत जैसे आपने कहा कि समय दे अपने आप, पॉज लेना बहुत जरूरी है लाइफ जी। तो मनीषा जी, अभी तो समय हो चुका है, लेकिन एक बात मैं पूछना चाहूंगी, जैसे ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो अफर्मेशन से आजकल मैनिफेस्टेशन कहते हैं, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो कहते हैं, आप दोनों से जानना चाहेंगे कि क्या ये प्रैक्टिकल में काम करता है?
2: ये कहें ग्रेटिट्यूड मीन्स उसका मीन्स थैंकफुल फील करना कि जो आपके पास है, ना कि उसके लिए फील करना कि जो मेरे पास नहीं है। जैसे कि ग्लास है, आधा भरा है आधा खाली है, जो देखेगा वो कहेगा आधा खाली है और एक व्यक्ति जो है वो कहेगा आधा भरा है। तो यहाँ पर यही बात है कि हमारे पास क्या है वो हम देखने की बजाय क्या नहीं है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वहाँ पर दिक्कत होती है। लेकिन ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में जो हमारे पास है हम उसको देखते हैं, हम उसकी वैल्यू करते हैं और उसके लिए हम धन्यवाद कहें, आभार हम फील करते हैं खुद के लिए, भगवान के लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए ना। तो ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस जितना करते हैं तो हमारा जो माइंड है वो ओपन होता जाता है और थैंक कहने से कहें कि और मीन्स उसमें वृद्धि होती जाती है, प्रचुरता बढ़ती जाती है कह सकते हैं।
0: और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से हमारी एनर्जी भी और बढ़ती है और एनर्जी शिफ्ट होती है हमारी, तो इसलिए ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना तो बहुत बहुत ही जरूरी है मुझे लगता है।
1: जी बिल्कुल। तो दोस्तों, ये हफ्ते आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें और हमें अपना जो फीडबैक है 94-14-15-14-15 पर आप बता सकते हैं, कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके। तो अभी जाने से पहले कुछ रैपिड फायर राउंड है, ये आप दोनों से जानना चाहेंगे। तो मनीषा जी, इजीनेस एक शब्द में?
2: सरलता। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड, बच्चे।
1: एंड हर्षा जी, इजीनेस?
0: लेट गो।
1: लेट गो। लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बनाने वाली एक आदत?
2: ओवरथिंकिंग।
1: सेम क्वेश्चन।
0: सेम, ओवरथिंकिंग।
1: सिंपल लिविंग का सबसे बड़ा लाभ?
2: क्लैरिटी आती है थॉट में।
1: क्लैरिटी आती है। आप क्या कहना चाहते हैं?
0: ईज फील होता है।
1: ईज फील।
0: इनर ईज।
1: इनर ईज। लाइटनेस के लिए एक होमवर्क?
2: एक 1-1-1 का होमवर्क देना चाहूंगी। 1 मिनट पॉज एवरी आवर, 1 मिनट साइलेंस में फील करेंगे और किसी एक को थैंक करना, धन्यवाद, पॉज या साइलेंस की प्रैक्टिस और
1: धन्यवाद करना।
2: हाँ जी, धन्यवाद।
1: हर्षा जी, आप क्या कहना चाहेंगे लाइटनेस के लिए एक होमवर्क?
0: रोज सुबह उठते ही खुद को चार्ज करना और इससे हम अपने खुद के इंचार्ज बन जाएंगे।
1: क्या बात है।
0: अर्थात खुद पर कंट्रोलिंग पावर आती जाएगी और अपने लाइफ का जो रिमोट कंट्रोल है वो अपने हाथ में रखें।
1: क्या बात। थैंक यू सो मच आप दोनों का। और मुझे लगता है इजीनेस वाला जो टॉपिक है ना, इसको आप दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से इजी कर दिया, सरल कर दिया हमारे लिए।
2: थैंक यू।
0: थैंक यू
1: जी। उम्मीद है कि आप सिर्फ सपनों के शहर में नहीं आएंगे, लेकिन बीच बीच में ऐसे हमारे साथ अपनी बातें भी शेयर करते रहेंगे।
0: जरूर।
1: तो दोस्तों, यहीं पर रुकते हैं, फिर मुलाकात होगी अगली कड़ी में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: लटकाए हम। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हाजिर हूँ एक बार फिर से आप सबका अपना फेवरेट प्रोग्राम लेकर के, जिसका नाम है हमराही। जी हाँ, वही कार्यक्रम दोस्तों जिसमें हम आप सबसे दिव्यांग साथियों को रूबरू करवाते हैं, उनके जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं को, कुछ ऐसी बातों को जो शायद हम कभी सोचते नहीं है, कल्पना नहीं करते हैं, उनको आप सबके सामने रखने का प्रयास करते हैं। और आमतौर पर सफलता की कहानियां बहुत सुनी सुनाई जाती हैं, लेकिन संघर्ष की बातें शायद नहीं हो पाती। तो संघर्ष कौन सा? जिंदगी जीने का संघर्ष, अपने जीवन साथी को ढूंढने का संघर्ष, और उसमें समाज और परिवार के साथ जो संघर्ष होता है वो एक अलग ही तरह का संघर्ष। इस सब के बीच में कैसे हमारे मेहमान सफलता प्राप्त करते हैं और अपनी जिंदगी को, चुनौतियों को अपनी ताकत बनाते हुए कैसे आगे बढ़ते हैं, बस यही जानने समझने का नाम है हमराही। तो स्वागत कीजिए आज हमारे साथ राजस्थान की राजधानी यानी गुलाबी नगरी जयपुर से जुड़ रहे हैं ननिता मैम और पीयूष जी। तो ननिता जी और पीयूष जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में।
2: थैंक यू सो मच संदीप जी, थैंक यू सो मच, आपने हमें आज इनवाइट किया और ये मौका दिया आपके साथ बात करने का। रेडियो मधुबन और आपके हमराही प्रोग्राम की हम लोग अक्सर तारीफ करते हैं कि ये यही एक अकेला प्रोग्राम है जो हम लोगों के लिए बना है, हमारे जैसे दोस्तों की स्टोरी सुनने के लिए बना है। और हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें मौका दिया आज हम आपके साथ अपनी स्टोरी भी कुछ बात कर सकें।
1: क्या बात है पीयूष भाई, थैंक यू सो मच, आपने पूरे कार्यक्रम की एक तरह से रूपरेखा अपनी इस बातचीत में प्रस्तुत कर दी, जबरदस्त। बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है आप दोनों को। हम चाहेंगे ननिता जी, हम कार्यक्रम में आगे बढ़े, पहले आप हमारे श्रोताओं को जरा अपने बारे में बताएं कि आपको कौन सी परेशानी है शारीरिक रूप से, और वर्तमान में आप क्या कर रही हैं, आपका एजुकेशन अभी तक का क्या रहा है, और अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा सा अपना फैमिली बैकग्राउंड। जी ननिता जी।
3: जी बिल्कुल संदीप जी, मधुबन सुनने वाले सभी लिसनर्स को मेरा नमस्ते।
1: जी
3: अग्रवाल, आई एम फ्रॉम जयपुर। और सर, मेरी एजुकेशन फाइनल 2006 में हो चुका था
1: जी।
3: उसके एम कॉम थोड़ा सा ड्रॉप हो गया प्रीवियस के बाद, फाइनल नहीं हो पाया।
1: ओके।
3: और बेसिकली उसके बीच में काफी हो गया, इस बीच तो बस ट्रीटमेंट में लगे रहे, इतनी नॉलेज भी नहीं थी, ना अवेयरनेस थी, ना मुझे पता था, ना पेरेंट्स को पता था ये ऐसे विजुअली इम्पैक्ट्स के लिए भी कुछ आगे है ग्रोथ हमारे लिए। और सामने में मम्मी पापा है, भैया भाभी है और एक भतीजी है मेरे,

0: नहीं था कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। सेवन के बाद ट्रीटमेंट में धीरे धीरे डॉक्टर्स ने क्लियर किया कि आरपी की प्रॉब्लम है, और उस वक्त विजन था लेकिन काफी लो होते होते धीरे धीरे डे बाय डे कम हो गया था। और तो 2015 में तो मैंने एज अ ब्लाइंड ही कंप्यूटर ट्रेनिंग ली। और उसके बाद
1: कहाँ से सीखा आपने नंदिता जी कंप्यूटर?
0: मैंने जयपुर में ही आरएनके करके राजस्थान नेत्र कल्याण संघ के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से मैंने 2015 में कंप्यूटर ट्रेनिंग ली थी सर।
1: तो नंदिता जी आजकल आप वापस जॉब ज्वाइन करने वाली हैं राइट?
0: जी सर, कुछ ऐसा ही प्लान कर रहे हैं।
1: ओके, कभी गवर्नमेंट जॉब की कोशिश नहीं की आपने?
0: सर एक दो बार ट्राई किया था, बट 15 में कंप्यूटर ट्रेनिंग थी, उसके बाद ट्राई किया, वो 16 में जॉब में आने के बाद प्राइवेट जॉब ज्वाइन करने के बाद इतना टाइम ही नहीं रहा, जॉब में इन्वॉल्व हो गए, 17 में शादी हो गई।
1: क्या बात। तो मतलब हम ये मान करके चले कि कंप्यूटर ट्रेनिंग करने के दौरान ही पीयूष जी से मुलाकात हुई आपकी?
0: जी सर, मेरी उसी दौरान।
1: चलिए हमारा अनुमान ठीक निकला, लेकिन वो आगे आपसे हम जानेंगे। बहरहाल इनवाइट करते हैं पीयूष जी को। तो पीयूष भाई आप भी हमारे सुनने वालों को अपने बारे में प्लीज बताएं।
2: जी संदीप जी।
1: जी
2: मेरा नाम पीयूष परडिया है, मैं जयपुर से हूँ। मैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे काम करता हूँ।
1: क्या बात।
2: डिपार्टमेंट में सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरा डिपार्टमेंट है। तो रेगुलर नए लोगों से और नए इंस्टीट्यूशन से एनजीओ से मिलने का मेरा काम रहता है। और इस कंपनी में मैं पिछले 20 साल से काम कर रहा हूँ।
1: ओह माय गॉड, 20 सालों से, क्या बात है।
2: ये मेरी एक्चुअली कॉलेज के बाद फर्स्ट ही मेरी जॉब है। उस टाइम मैं साइटेड था, मेरी नजर थी 2011 में। आई साइट में प्रॉब्लम हुई, मुझे रेटिना मेरे डिटैच हो गए और फिर वो इतने फ्रेजाइल हो गए कि उनमें रोशनी बन नहीं पाई।
1: इसको कहते क्या है जो आपको आंखों की जो परेशानी है, इसका नाम क्या है मेडिकल लैंग्वेज?
2: एक्चुअली ये मेरे हाई मायोपिया था।
1: अच्छा, हाई मायोपिया। ओके।
2: रेटिना बहुत पतला होता है, धीरे धीरे एज के साथ पतला होता जाता है। तो वैसे आई साइट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एक हल्का चश्मा था जो नजर का। और 2011 में मैं दुबई को आया हुआ था घूमने के लिए।
1: जी।
2: वहाँ अचानक थोड़ा लगा कि कुछ कि रेड आँख के बीच में से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, साइड से दिखाई दे रहा है।
1: जी।
2: तो वहाँ से भी नहीं आया, दो तीन दिन वहाँ थे। मैंने कहा जयपुर जाके हम लोग वापस ट्रीटमेंट लेंगे। तो जैसे ही दुबई से वापस जयपुर आए, डॉक्टर के पास गए यहाँ, तो यहाँ डॉक्टर्स ने बताया कि आपका रेटिना में होल हो गया है, रेटिना डैमेज है। तो फिर डॉक्टर्स ने यहाँ कहा कि इसका बेस्ट इलाज यहाँ जयपुर में नहीं है, आप चेन्नई या अहमदाबाद कहीं जाएं। तो हम लोगों ने चेन्नई में शंकर नेत्रालय हम लोग नेक्स्ट डे ही चले गए थे, और वहाँ दो तीन बार उन लोगों ने ऑपरेट किया। फर्स्ट टाइम किया, रोशनी नहीं आई। फिर एक महीने बाद दोबारा किया ऑपरेट, फिर भी नहीं हुआ। तीसरी बार में भी वो रेटिना तो अटैच हो गया, पर वो इतना फ्रेजाइल हो गया, कमजोर हो गया कि उनमें फिर रोशनी नहीं बन पाई। तो यही स्टोरी है कि एयू में रहते हुए ही ये प्रॉब्लम हुई, और उसके बाद फिर यही वापस अपने आप को संभाल के आपके साथ जुड़ गए। और मैं तो मानता हूँ कि ये बहुत अच्छा ही हुआ मेरे साथ कि ये हुआ, तो मैं आप लोगों से मिल सका, नंदिता से मिल सका और बाकी लोगों से मिल सका।
1: क्या बात है। और कहीं ना कहीं इतने सारे एनजीओस की जो हेल्प की है आपने, उनके जो काम आए हैं, आप सीएसआर के तहत आप जॉब कर रहे हैं, तो ये भी एक कहानी है मतलब कहीं ना कहीं। जी कुछ कह रहे थे आप।
2: एक्चुअली इससे पहले, ब्लाइंड होने से पहले मैं सेल्स में था। आई वाज वर्किंग एज ए सेल्स मैनेजर जयपुर।
1: जी जी जी।
2: और सीएसआर का तो नाम निशान भी नहीं था और सोशल सेक्टर के बारे में जानते भी नहीं थे उस टाइम।
1: जी जी जी।
2: तो अब ये जब ब्लाइंड हो गए तो अब ऐसा लगा कि फील्ड मूवमेंट वगैरह कम होगा, तो कोई बैकएंड का काम या जो ऑफिस से या कंप्यूटर से काम स्टार्ट हो सके वो करते हैं। तो ये भी आप सही कह रहे हैं, कोइंसिडेंट था कि मुझे वापस ये सीएसआर ब्लाइंडनेस के कारण ही मिल पाया कि मैं इस फील्ड में आ सका।
1: और मेरी जानकारी जहाँ तक है पीयूष भाई, बाकी तो आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, कि इस डिपार्टमेंट में और काम करते हुए आपने बहुत सारे

0: भी उसकी हेल्प की है और बहुत अच्छी खासी हेल्प की है।
1: इसमें भी एक स्टोरी है अगर आप।
0: जी जी जरूर जरूर जरूर जरूर।
1: जैसे ये जब ये ब्लाइंडनेस की मुझे प्रॉब्लम हुई तो लगभग 1.25 साल मैं घर पे ही था और थोड़ा डिस्टर्ब सा रहता था
0: जी।
1: कुछ दोस्तों ने और फैमिली ने मैं मोटिवेट किया कि यार ऐसे नहीं होगा, ब्लाइंड लोग भी भाई काम तो करते हैं, जिंदगी जीते हैं, तुम ऐसे निराश होते क्यों बैठे हो।
0: बिल्कुल।
1: तब तक शायद हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि मैं ब्लाइंड हो गया हूँ।
0: जी जी जी।
1: और फिर जब एक्सेप्ट कर लिया तो हम लोगों ने आसपास में देखा भाई कौन हमारे फैमिली में या कोई रिलेशन में कोई ऐसे नहीं थे जिनकी नजर ना हो।
0: जी।
1: फिर ऐसा ध्यान आया कि कोई एक दूर के कोई रिश्तेदार है उनके घर के आसपास हम जाते थे
0: जी।
1: तो देखते थे, मेरे फादर ने कहा कोई ब्लाइंड थे और देखा था किसी को।
0: अच्छा।
1: हम उनके पास पहुंचे, उन्होंने हमें रेफर किया कि राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ है
0: जी,
1: वहां जाके मिलिए।
0: जी।
1: तो हम लोग वहाँ गए, उन लोगों ने मुझे बताया वहाँ, मैं पूरा सब समझा कि क्या करते हैं। उन्होंने कहा आप कंप्यूटर सीखो क्योंकि आप जॉब में थे और पहले आपको नॉलेज है
0: जी।
1: पर वहाँ मैं एडमिशन नहीं ले सकता था क्योंकि मैं जयपुर लोकल का ही था। वो बोले कि आपको दिल्ली आना जाना पड़ेगा। उस टाइम तो मैं घबरा गया, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं था कि दिल्ली आऊंगा जाऊंगा कैसे भाई।
0: वो थोड़ा सा बड़ा मुश्किल दौर होता है
1: जी। तो यही लगता था कि दिल्ली आना जाना तो बहुत मुश्किल काम है, मैं तो घर में ही रह रहा था। और आज के दिन मैं आपसे याद भी करना चाहूंगा, आप भी जानते होंगे एक बहुत हमारे अच्छे मित्र थे, आपके तो हैं शायद थे
0: जी। ललित जी से बहुत अच्छा परिचय रहा, बस इस कोरोना ने जिन लोगों को छीना है उनमें से वो भी एक है।
1: वो बहुत बड़ा लॉस है शायद मेरे लिए भी
0: जी।
1: और क्योंकि वो एक बहुत ही मेरे वेल विशर थे, शुभ चिंतक थे। तो जैसे ही उन्हें खबर लगी कि कोई रिसेंटली ब्लाइंड हुआ है तो वो और उनकी श्रीमती जी हमारे घर आए
0: जी।
1: और उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम्हारे साथ क्या हुआ, प्रॉब्लम समझी। फिर मैंने कहा कि अब क्या करना है, तो उन्होंने मुझे रेफर किया कि AIC भी जाओ आप, वहाँ रह के ट्रेनिंग ले लो। तो फिर मैं 1 महीने के लिए दिल्ली गया था AIC भी, वहाँ हॉस्टल में रह के कुछ जॉब के थ्रू कंप्यूटर वगैरह ऑपरेट करना थोड़ा प्रैक्टिस किया। और फिर आके मैंने AU में वापस ज्वाइन किया और कॉन्फिडेंस से कहा कि सर अब मैं काम कर सकता हूँ।
0: क्या बात है, वाह जी।
1: तो इसी बीच में फिर मैंने जब मैं कुछ वापस बैकएंड में काम करने लगा तो मैंने उस टाइम आपको ध्यान होगा 2013-14 में ही CSR का लॉ आया था।
0: जी जी जी बिल्कुल इसी समय
1: था। मैं बैक ऑफिस ऑपरेशंस में था तो मैंने हमारी CSR टीम को रेकमेंड किया कि भाई ब्लाइंड लोगों का एक स्कूल है, हॉस्टल है, आप वहाँ काम क्यों नहीं करते, शुरुआत वहाँ से करें, मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। तो वो टीम को मैं लेके गया वहाँ CSR, और वहाँ CSR टीम को लेके गया तो वहाँ उन्होंने देखा और फिर हम लोगों ने वहाँ पे एक गर्ल्स हॉस्टल को रिनोवेट किया वहाँ के
0: जी जी जी।
1: और कुछ किचन वगैरह मैस वगैरह जो थे उस पर काम किया।
0: क्या बात।
1: तो यहीं से शुरुआत हुई और यहीं से शायद CSR और NGO सेक्टर को लेकर मेरा थोड़ा इंटरेस्ट आ गया। पर हालांकि मैंने ज्वाइन उस वक्त नहीं किया था CSR, CSR को मूव किया था 2018 में। एक और यहाँ जयपुर में ही ब्लाइंड बच्चों का स्कूल है जो लुई ब्रेल शिक्षा दृष्टिहीन संस्थान है, वहाँ पर भी हमने हॉस्टल का और स्कूल का निर्माण करवाया ब्लाइंड बच्चों के लिए।
0: बहुत
1: बहुत में लगभग 1 करोड़ का हमने CSR फंड वहाँ स्पेंड करवाया इन दोनों
0: में मिला के। वाह बहुत। और मुझे जहाँ तक ये भी ध्यान है पीयूष भाई कि आपके AU में सक्सेसफुली जॉब करने के बाद AU ने कुछ और ब्लाइंड साथियों को जॉब दी है, राइट?
1: हाँ वो भी ठीक बात है। और आप मतलब इसको समझे कि शायद इसी कारण से नंगता जी से भी मिलना हो पाया मेरा।
0: क्या बात है, वाह गजब। तो इसी पर आ जाते हैं, कैसे मिलना हुआ नैनीता जी से आपका?
1: मैं ही जवाब दूं?
0: हाँ आपसे पूछ रहा हूँ मैं, फिर नैनीता जी को बुलाएंगे।
1: एक्चुअली मैं जब वहाँ RNKS में जाता था इस चीजों इन कार्यों को लेके और देखने के लिए, तो मैं वहाँ फिर रेगुलर जा रहा था और फिर वहाँ मुझे वर्किंग कमेटी में भी वहाँ के जो कार्य समिति के सदस्यगण थे उन्होंने मुझे शामिल किया था। एक या दो बार मैं वहाँ जाता था तो सब वहाँ स्टूडेंट से मिलता था, मैथ्स में जाता था, जहाँ काम चल रहा है वहाँ जाता था। वहीं पे नैनीता जी उस वक्त ट्रेनिंग ले रही थी तो हमारी बातचीत हुई हम लोगों ने कि लॉस पॉइंट से भी मिला था क्या होता है क्या करते हैं, तो बस ये है कि हमारी बातचीत फिर वहाँ से थोड़ी आगे बढ़ गई, हम लोग रेगुलर बात करने लगे। और
0: पहली मुलाकात में नंबर नंबर लेना और ये सब हो गया था क्या?
1: ऐसा नहीं हुआ था एक्चुअली, तो शायद बस यही था कि मैंने एक नए ट्रेनी है और नए स्टूडेंट हैं और इनकी स्टोरी भी मेरी जैसे ही थी लगभग।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: एक्चुअली मैं भी लेट ब्लाइंड था और ये भी लेट ब्लाइंड ही थे, और ये 2007 में इनके प्रॉब्लम हो गई थी, पर इन्होंने थोड़ा घर में ही रहे थे, तो 2015 में जब इन्हें पता चला था तब आरएनकेएस ज्वाइन किया था ये, और मैं भी लेट ब्लाइंड था, तो ये हम लोग आपस में बात करते थे, ये समझते थे कि कैसे आप काम करते हैं क्या काम हो, या थोड़ा सा मैं भी मेरा भी ये था कि मैं लोगों से बात करता था जो लेट ब्लाइंड हुए हैं, तो शायद ये कर सकूं बात कर सके।
0: बिल्कुल।
1: इस तरह हमारी बातचीत हुई फिर नंदिता जी ने एयू बैंक में ही ज्वाइन किया था
0: जी,
1: वहाँ भी कुछ जैसे कुछ वर्किंग में कुछ प्रॉब्लम वगैरह आती थी तो मैं उन्हें सपोर्ट करता था
0: जी,
1: तो यहीं से हमारी बात शुरू हुई। और
0: क्या बात को जी नंदिता जी, तो आप बताएं जरा कि आपको याद है आज भी पीयूष जी से जो पहली मुलाकात रही आपकी?
2: जी सर, 2015 में अप्रैल में मैंने ज्वाइन किया था कंप्यूटर ट्रेनिंग आरएनकेएस में, तो लगभग अगस्त के करीब स्टार्ट हुआ था हमारा, मतलब बात हुई थी, फर्स्ट टाइम बात तभी हुई थी। फिर उस दौरान जैसे कंप्यूटर ट्रेनिंग में और जॉब भी करने का था, तो फिर एयू में ज्वाइन किया आगे, तो इसलिए भी बातें होती थी इनसे, तो बातें होती थी, तब कोई विजन नहीं था, शादी का भी नहीं था और कुछ नहीं था, रिगार्डिंग वर्क और रिगार्डिंग ट्रेनिंग एंड अपनी स्किल्स प्रॉब्लम जो भी थी उनके रिगार्डिंग ट्रेनिंग सब कुछ था। 2016 में मैंने जॉब ज्वाइन किया था, उसके बाद फिर हम वर्किंग में आए तो थोड़ी बातें और बढ़ती गई, तो ऐसे बातें करते करते फिर हमें 16 एंड में वी डिसाइडेड कि हम मैरिज कर सकते हैं।
0: अच्छा, यहाँ पर एक बात पूछना चाहूंगा रानीता जी कि जीवन साथी एक दूसरे को बनाने का डिसीजन लेते समय कहीं ना कहीं दिमाग में ये भी रहता है कि यार हम दोनों की कहानी तो सेम है, ये भी लेट ब्लाइंड मैं भी लेट ब्लाइंड, ऐसा भी कुछ रहता है मन में?
2: बिल्कुल ऐसा तो कुछ नहीं था एक्चुअली में, जब मैंने शादी के लिए डिसीजन लिया था तब तक तो मेरा शादी करने का कोई इरादा ही नहीं था, मतलब कभी सोचा शादी भी करूंगी बट या तो शायद इस एनवायरनमेंट में रहते रहते ब्लाइंड लोगों को जाना और घर में स्पेंड किए तो लगा कि इस कम्युनिटी में ज्यादा कंफर्ट फील करते हैं, कुछ प्रोग्रेस है, ग्रोथ है, डेवलप हो जाती है, तो धीरे धीरे बात करते करते हमें लगा कि शादी कर सकते हैं, हम एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं और एक दूसरे को अच्छे से समझने लगे थे, एक दूसरे की फीलिंग सेम थी, तो फिर हमने डिसाइड किया अपनी लाइफ को आगे लीड करने।
0: अच्छा, पहला प्रपोजल किसका था?
1: मैं आपको इसमें एक बार इंटरप्ट करूंगा।
0: जी जी जी,
1: मैं आपको जैसे ललित जी की बात बता रहा था
0: जी जी,
1: 2015 में जब इन्होंने वहाँ कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन किया होगा
0: जी,
1: तो वो शायद किसी ट्रेनिंग के लिए वहाँ गए थे।
0: ओके।
1: मुझे फोन किया वहाँ से।
0: अच्छा,
1: एक ब्लाइंड लड़की है तुम्हारे लिए ठीक है, वो उनको लगता था कि हम सिमिलर कास्ट के हैं, ये अग्रवाल थे या मैं जैन था, तो उसका वो भी बनिए हैं बात करने को आते। मैंने कहा नहीं यार, ब्लाइंड में हम लोगों को शादी नहीं करनी, ब्लाइंड कैसे शादी करेंगे, और मेरी फैमिली भी मानेगी नहीं, ब्लाइंड ब्लाइंड नहीं कर पाएंगे। और नंदिता से बात की थी
0: जी,
1: तुम तुम्हारे पेरेंट्स से मैं मिल सकता हूँ, तुम चाहो तो, एक लड़का है।
0: ओके।
1: और उन्हें आउटरेजियसली मना कर दिया था कि नहीं सर मुझे शादी नहीं करनी।
0: अच्छा, ओ
1: कैसे शादी करेंगे,
0: क्या बात है। जैसा कि नंदिता जी ने अभी कहा कि कोई इरादा ही नहीं था शादी का।
1: मतलब आप कह सकते हैं उन्होंने, और फिर ये बात जब हमने कर ली थी शादी, उन्होंने हमें 2-3 बार आके मुझे बोला भी, तो बोला मैंने तुम्हें बताया था तब तुम माने नहीं। तो ये, और जैसा आपने पूछा कि प्रपोज किसने किया था, तो शादी का डिसीजन लेना हमारे टफ हो रहा था, क्योंकि बहुत टफ इसलिए था क्योंकि हमें लगता था कि हमारे पेरेंट्स नहीं मानते।
0: अच्छा,
1: आप कहेंगे कि हमने अपने आप को मनाया था, क्योंकि पहले तो हम भी यही मानते थे कि ब्लाइंड से नहीं, दो ब्लाइंड कैसे करेंगे, क्योंकि हम खुद जूझ रहे थे उन चीजों से, मतलब नए नए थे
0: कि मतलब दोनों ब्लाइंड, दोनों का मतलब सेम प्रॉब्लम, और जॉब भी प्राइवेट सेक्टर में करने का कहीं ना कहीं एक डिसीजन। जी
1: तो कॉन्फिडेंस नहीं था, पर फिर थोड़ा बात करते थे और लगता था, और मेरे मतलब सर कहना तो ये चाहिए मेरे से ज्यादा यकीन शायद ननिता को था कि नहीं आप कर सकते हैं।
0: क्या बोलते हैं, कुल मिलाकर पहला डिसीजन ननिता जी का लगता है था,
1: उनका डिसीजन, उन्होंने कॉन्फिडेंस लाया। हालांकि प्रपोज मैंने किया था कि हाँ चलो आपको शादी करते हैं।
0: अरे वाह, क्या मानते हैं।
1: और पेरेंट्स को मनाना एक थोड़ा बहुत डिफिकल्ट वो था हमारे लिए।
0: मैं उसी पर आना चाह रहा हूँ भाई कि जब आप दोनों ने तो तय कर लिया, लेकिन अब पेरेंट्स से तो बात करनी थी, तो आपने कैसे बात चलाई अपने फैमिली में कि भाई ऐसे ऐसे कोई लड़की है, मैं उसको पसंद करता हूँ और अब शादी करना चाहता हूँ।
1: पहले मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ आपको।
0: जी जी।
1: अब मैं जैसे फील्ड से जुड़ा हुआ था और ब्लाइंड कम्युनिटी से आरएनकेएस में जुड़ा था, तो मेरे फैमिली भी रेगुलर टच में रहती थी, जो यहाँ सीनियर लोग थे तो उनमें से एक तो उन्होंने कहा, मेरे फादर ने उनसे बात की कि आपने शादी कर रखी है, एक्साइटेड हैं, कैसे करी, तो क्योंकि उनके तो दिमाग में यही था कि एक्साइटेड से ही करनी है भाई। अब वो चाहे थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज है, तो हम लोग एग्री थे कि या कुछ इंटेलेक्चुअली कॉम्प्रोमाइज होगा कि हाँ ठीक है, वो थोड़े कम पढ़ी लिखी हो या कुछ हो, या कुछ मतलब पुअर बैकग्राउंड से भी हो तो भी चलेगा, पर हम शादी मतलब साइटेड ही देखनी है।
0: उनके दिमाग में बिल्कुल कहानी वही फिक्स थी कि भाई साइटेड लड़की इसको जो है अच्छे से संभाल लेगी, ये होता आम तौर पे दिमाग में पेरेंट्स।
1: और आरएनकेएस वगैरह में जहाँ थे, वो वहाँ जो आसपास ब्लाइंड लोग थे उनके भी स्टोरी वैसी थी कि वो बहुत कम थे, मतलब कोई थे ही नहीं जो दोनों कपल ब्लाइंड हो, मतलब जयपुर में हमारे आसपास उस टाइम जिनको हम जानते थे।
0: जी जी जी।
1: तो फिर उनको कन्विंस करना बड़ा मुश्किल था, और जब मैंने बताया उन्होंने कि भाई मैं किसी को देख रहा हूँ वो ब्लाइंड है, तो सब तो उन्होंने और ज्यादा प्रयास चालू कर दिए थे। मेरे फादर मतलब आपको बता
0: एक बार, अच्छा मतलब जब आपने घर वालों को बताया कि भाई किसी को आप देख रहे हैं, तो उन्होंने कोशिश और तेज कर दी।
1: और तेज कर दी उन्होंने बहुत, मैं ये कह रहा हूँ वो महाराष्ट्र का भी एक चक्कर लगाया है।
0: अरे बाप रे, मतलब उनको लगा कि लड़का गया हाथ से।
1: हाँ
0: जी जी, आगे बताएं जी।
1: हालांकि उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, वहाँ कह रहे थे वो रुको थोड़ा, पर मैंने कहा, हम लोगों ने कहा कि नहीं अब आप एक बार मिल लीजिए, और फिर किसको एक मौका देख के, कोई छोटा सा गेट टुगेदर था तो मैंने वहाँ ननिता को भी इनवाइट किया था, और वहीं मेरे पेरेंट्स को उनसे मिलवाया था, मेरी मदर को, और वहीं से फिर उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया उनसे कि हाँ ननिता से मिले, और ननिता भी तैयारी करके तो गई थी।
0: जिंदगी का सबसे बड़ा प्रेजेंटेशन।
1: थोड़ा बहुत वो रहा, कुछ तैयारी की, फिर बाद में और थोड़ा कन्विंस करना पड़ा, उन्हें मनाना पड़ा। तो जैसा अभी हम कह रहे थे ना कि हमारी शादी में हमने किसी को, मतलब हम लोग सिर्फ हमारी दोनों तरफ की फैमिली ही सी थी और कोई नहीं थे।
0: अच्छा, शॉर्ट एंड स्वीट।
1: हाँ मतलब टोटल 50 लोग भी नहीं थे।
0: जी जी ननिता जी, तो पीयूष जी ने बहुत अच्छे से बताई अपनी स्टोरी, खासकर फैमिली को आपसे इंट्रोड्यूस कराने की। और इधर आपकी फैमिली में क्या सीन चल रहा था?
2: सर मेरे तो यही था कि जैसे मेरा तो खुद का ही विजन नहीं था कि शादी मुझे करनी है, मुझे प्रॉब्लम के साथ शादी करके क्या करेंगे, मतलब आज अपन परेशान है, कल अपने साथ में कोई और भी परेशान होगा, तो सिमिलर चीजें फेस कर रहे हैं, किसी और को करनी पड़े वो नहीं चाहते।
0: आपके मन में क्यों थी मैम, कॉन्फिडेंस की वजह से थी या कोई और, मतलब
2: ब्लाइंडनेस की वजह से, ओनली ब्लाइंड क्राइसिस है लाइफ में कि जिस चीज को अपन फेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि मैं तो इतने साल घर में ही रही ना सर, मेरा तो एक तरह से लिमिटेड दायरा हो गया था कि घर में ही रहना था, तो कुछ नॉलेज नहीं, कोई अवेयरनेस नहीं, किससे मिले नहीं, तो एक्चुअली में रियल हैप्पीनेस तो 2015 के बाद ही मिली थी, जब कंप्यूटर सीखा तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ कुछ कर सकते हैं, एज ए ब्लाइंड भी कुछ अपन कर सकते हैं, धीरे धीरे फिर सबसे बातें होने लगी, तो एक्चुअली में इस कम्युनिटी में आके ज्यादा खुश रहने लगी थी मैं, तब मुझे इस चीज का कॉन्फिडेंस आया कि शादी भी कर सकते हैं और एज ए ब्लाइंड कपल बहुत अच्छी लाइफ लीड भी कर सकते हैं।
0: वेरी नाइस।
2: तब तब मैंने ये डिसाइड, हम लोगों ने मिलके डिसाइड किया, मैं मुझे लगा कि हम आराम से शादी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस डिफिकल्ट टास्क यही था कि फैमिली को कैसे एग्री करें।
0: मुद्दा वही है
2: एक्चुअली में, क्या मम्मी पापा के लिए ये भी शॉकिंग था कि आज तक जिसे शादी नहीं करनी थी अचानक एक ही दिन में उसे शादी करनी है। जब उन्हें ये बताया, आज तक जो हम शादी करते थे शादी शादी शादी, तो बस नहीं मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं करनी। अब एक दिन में और करनी है, तो फिर जब ये बताया कि ब्लाइंड से करनी है, तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए कि इतना बड़ा तुम कैसे डिसीजन ले सकते हो। तो प्रॉब्लम तो काफी आई मम्मी पापा के लिए, तो एक तरीके से
0: थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि जैसे उस दौरान क्या क्या बातें रही, मम्मी का ज्यादा विरोध रहा, पापा का रहा कि सिमिलर था, क्या था, मतलब क्वेश्चंस क्या थे उनके, आपने कैसे उनको हैंडल किया?
2: क्वेश्चंस मीन तो ये, दोनों ही ब्लाइंड हो कैसे हैंडल करोगे, अदर डिसेबिलिटी होती तो एक बार के लिए फेस कर लेते, और कैसे सोशल फैक्टर को बैलेंस करेंगे लोग, मतलब
0: मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, आपको रोक रहा हूँ बीच में, ये बात हमें 90% सुनने को मिलती कि यार अच्छा कोई भी और डिसेबिलिटी होती ना तो चलो ठीक है इट्स ओके, तो ब्लाइंडनेस को क्या मतलब डिसेबिलिटी में भी सबसे ज्यादा मतलब खतरनाक माना जाता है क्या, क्या है ये, क्योंकि हमने यही अक्सर यही सुना है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है इस मामले?
2: मुझे नहीं लगता ब्लाइंडनेस, तो बल्कि मुझे लगता है कि ऐसी डिसेबिलिटी
0: सबसे इजी होना चाहिए ये, तो मेरे ख्याल से
2: बिल्कुल सर, मुझे तो नहीं लगता कि डिफिकल्ट है, बट लोगों का विजन ऐसा नहीं है ना, लोगों को लगता है कि तुम दोनों ही ब्लाइंड हो, अगर एक ब्लाइंड होता और एक कोई अदर डिसेबिलिटी होती तो वो उसकी कमी को पूरा कर देता और वो उसको फुलफिल कर देता, यही लगता था पहले तो, उन्हें यही था ना कि भाई अगर तुम्हें शादी करनी है तो हम शादी के लिए एग्री हैं, बट हम लड़के तुम्हारे लिए, वो तो वैसे तो नॉर्मल साइटेड लड़का ही आते थे, वो बोले हमें टाइम दो हम ढूंढते हैं, लेकिन हाँ मम्मी पापा दोनों ही एग्री नहीं थे, भैया थोड़ा समझा था, फिर उसने मम्मी पापा को मनाया समझाया, सारे विजन दिखाए कि जब ये लोग डिसाइड कर चुके हैं मन बना चुके हैं तो अगर कहीं और भी करेंगे तो ना तो ये करेंगे और ना एक्सेप्ट करेंगे उसको, क्योंकि 2015 से पहले सर मैंने भी मेरी ब्लाइंडनेस को एक्सेप्ट नहीं किया था, कहीं ना कहीं फोबिया ही था कि किसी को बताना नहीं, बस अपनी लाइफ जी रहे हैं, तो वो चीजें फेस करना बहुत मुश्किल था।
1: तो मैं बताऊँ आपको वालों को भी पता नहीं था कि इनको नजर नहीं आता।
0: अच्छा
1: क्योंकि ऐसे चेहरा देख के तो लगता नहीं है कुछ
0: जी,
1: और क्रीम वगैरह कुछ यूज करते नहीं थे, और आपको पता है गर्ल्स की स्टाइल होती है, हाथ पकड़ भी रखा है तो भी ऐसे छुपा लेते थे कि किसी का हाथ पकड़ रखा है इन्होंने, चलते थे मदर को,
2: ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन
0: इतनी बारीक से बारीक चीजें हमारे दोनों मेहमानों ने एक दूसरे के लिए समझ करके रखी है, ये होता है अंडरस्टैंडिंग का लेवल। जी जी बताइए।
2: लेकिन सर ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैंने कैन कभी यूज ही नहीं की, तो मुझे कभी मन भी नहीं किया कि मैं कैन यूज करूं,
1: मतलब मैं ये बता रहा हूं पता नहीं था,
2: पता भी नहीं था आसपास, ऐसे पता नहीं था कि जैसे उनको जितना पता था बस उतना पता है, कभी डायरेक्टली किसी ने पूछा नहीं कि कितना विजन है। इसका रीजन एक ये था ना कि मेरी नॉर्मल डे टू डे की लाइफ के सारे काम मैं इजीली कर लेती थी, तो कभी किसी को पता ही नहीं चला कि मुझे दिखता नहीं है, और एजुकेशन हो ही चुकी थी, सबको लगता था हाँ शादी करेंगे करेंगे, अपने अकॉर्डिंग मिलेगा तब करेंगे, तो कुछ ये था कि पेरेंट्स को मैं मना करती थी तो वो ये रीजन दे देते थे कि हाँ इसे करनी ही नहीं है, जब ये रेडी होगी तब करेंगे, हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना,
0: right.
2: तो एक था तो, और मुझे यही था सर कि जिस को मैं फेस कर रही हूँ उसको किसी और घर में नहीं जाना चाहती, वो फैमिली मेरी वजह से डिस्टर्ब हो, इससे बेटर है कि मैं एक फैमिली में ही, आज परेशान है तो हम चार लोग परेशान है, नेक्स्ट फैमिली को परेशान कर लेंगे, एक शादी
0: ननिता जी। फाइनली वो दिन कब आया जब आपकी फैमिली और पीयूष जी की फैमिली मिले एक जगह?
2: सर वो दिन आया मार्च 2017 में।
0: वेरी नाइस। तो वो मतलब जी
2: नहीं थे इस चीज के लिए, उनके लिए तो मेरी का एक कॉम्प्रोमाइज था, बट आज सिचुएशन कुछ और है, वो सब खुश है, मेरी फैमिली इनकी फैमिली भी खुश है, और अब उन्हें भी ये चीज एक्सेप्टेड है कि हाँ ये लोग खुश हैं।
1: संदीप जी पूछ रहा जब वो मिले थे तब क्या हुआ था बताओ थोड़ा।
2: जब पेरेंट्स तो सर उनके लिए वो बहुत स्ट्रेंज सिचुएशन थी,
1: मम्मी एक दूसरे को कन्विंस कर रहे थे कि ये मना कर दे, वो इधर आ दे कर दे वो
0: ये थोड़ा डिटेल में बताओ यार, ऐसे फिर मजा नहीं आएगा देखो
2: कि देखो इसका ऐसे, उनको ये था कि ये लोग सामने से मना कर गए
0: अच्छा
2: कि हाँ हम नहीं करेंगे अभी, तो हमारी बेटी अपने आप शादी करेगी।
0: हाँ मतलब फैमिली नहीं मानेगी तो बात वही खत्म हो जाएगी।
2: फैमिली नहीं मानेगी तो तुम जबरदस्ती शादी तो नहीं कर सकते ना।
1: बता रहे थे कि देखो ये ऐसे काम करती है,
2: ऐसा कुछ नहीं था सर, एज ए ब्लाइंड कुछ नहीं किया था, साइटेड लाइफ में सब कुछ किया हुआ था, तो मैंने एज ए ब्लाइंड तो सब कुछ यहाँ आफ्टर मैरिज ही किया, बट मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सब इजीली मैनेज, आज हम बहुत खुश हैं, मैरिड लाइफ बहुत अच्छे से लीड कर रहे हैं, ऐसी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
1: पर उस टाइम तो ये बोला था ना कि खाना बनाना नहीं आता।
2: उस टाइम तो यही बोला था कि वो इसीलिए ना कि सामने से रिस्पॉन्स नेगेटिव हो जाए,
0: मतलब कि इसको खाना बनाना नहीं आता है, ये काम कुछ भी नहीं कर सकती है।
2: एक चीज ये भी था ना कि सामने वाला एक्सपेक्टेशंस ना रखे,
0: क्योंकि हाँ ये भी हो सकता है, ये बात भी सही है।
1: संदीप जी मेरे को ये बोला था कि ये तो इनकी उम्र हो गई, अब शादी बड़े हो गए, बड़े लगते हैं।
0: मतलब ये क्या बोलते हैं कि ओवर एज हो गए, मतलब है
2: सर सब कुछ ओवरऑल देखा जाए तो कोशिश यही थी कि वो लोग चाहते नहीं थे कि ये शादी हो, बट हमारी खुशी के लिए दोनों ही फैमिली ने कॉम्प्रोमाइज
0: किया है। और आज दोनों ही फैमिलीज जो है वो बहुत ज्यादा खुश है, राइट
2: जी सर। हमें कॉन्फिडेंस था, हमने तो आगे के लिए सोचा ही नहीं कैसे करेंगे क्या करेंगे, बस एक ही सोचा कि शादी के बाद जो होगा, जो भी प्रॉब्लम्स आएगी, डिफिकल्टीज आएगी, सब मिलके सॉल्व करेंगे और फेस करेंगे लाइफ।
0: फैमिलीज को समझाने में किसी हमारे वीआई साथी को भी बीच में आना पड़ा या नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ी?
1: मतलब बीच में आना मतलब इस तरह रहा कि एक्चुअली दो तीन लोगों को हमने ही बोला कि आप जाओ तो इनके यहाँ, आप जानते होंगे चेतन शर्मा सर।
0: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो ओबीसी में थे
1: जी, उनको भी एक बार बोला कि आप जाइएगा, और भी एक दो लोग थे जिनको हमने बोला कि
2: एक्चुअली सर मेरी फैमिली कभी किसी ब्लाइंड से मिली ही नहीं थी, फर्स्ट टाइम तो उनसे हमने कई ब्लाइंड लोगों से मिलवाया था कि ये दिखाने के लिए कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ इजीली होता है, एक दो लोगों से मिलिए, बट वो ही है ना उनका तो माइंड स्टेटस वही था कि
0: ब्लाइंड। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा मतलब फ्लैशबैक में ले जाना चाहूंगा कि जब एक अच्छी खासी हंसती खेलती लड़की और कॉलेज कर लिया जिसने इतना फैमिली का सपोर्ट करने वाली लड़की, अचानक एक दिन जब घर पर बैठ जाती है अपनी आंखों की वजह से, थोड़ा सा वो याद कीजिए कि फैमिली का क्या माहौल था उस समय, मतलब बड़ा
2: सर लाइफ का सबसे जो पुअर पार्ट रहा है ना वो मेरी लाइफ में यही रहा है। जब मेरे धीरे धीरे विजन लो होता गया 2007 के बाद, एजुकेशन भी ड्रॉप हो गई, शायद एमकॉम के आगे बढ़ते बट छोड़ना पड़ा, तो मम्मी पापा तो बहुत हर्ट थे, उन्हें तो ये चीज एक्सेप्ट ही नहीं थी कि हमारी बेटी ब्लाइंड नहीं हो सकती। डॉक्टर्स भी यही कहते नहीं आंखों की रोशनी आ जाएगी, आसपास के लोग रिलेटिव सब यही कहते कि नहीं ब्लाइंड नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, तो उन्हें तो ये एक्सेप्ट ही था। एक्चुअली मैंने खुद ने भी अपनी ब्लाइंडनेस को एक्सेप्ट ही नहीं किया था, क्योंकि डे टू डे की लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही थी मेजर प्रॉब्लम, क्योंकि बाहर तो निकले ही नहीं थे, घर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फैमिली भी बहुत सपोर्टिंग है, मम्मी पापा भैया भाभी बहुत ज्यादा सपोर्टिंग और केयरिंग है, कोई प्रॉब्लम आने से पहले वही फेस कर लेते थे, मुझ तक तो कभी कुछ पहुंचने ही नहीं दिया।
0: बिल्कुल सही है वही। तो 2007 से 15 तक आपने बताया कि आप घर पर ही थे,
2: घर पे रहे घर
0: 8 साल, तो मतलब बड़े यानी हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि 8 साल आपने कैसे एक-एक दिन बिताया होगा।
2: असल मम्मी पापा भी बहुत डिस्टर्ब थे, मैं भी थी, मैं उनके सामने खुश रहने का नाटक करती थी, वो मेरे सामने खुश रहते थे कि ये रहे, हम टूट जाएंगे तो इसे कौन संभालेगा, और मुझे लगता था मैं कमजोर पड़ूंगी तो इन्हें कौन संभालेगा, तो बस दौरान ये सब कुछ चलता रहा, बहुत ट्रीटमेंट कराया, आउट ऑफ इंडिया भी कराया, और इंडिया में भी चेन्नई हैदराबाद कई जगह गए सर, बट आरपी का ऐसा कोई परफेक्ट ट्रीटमेंट हमें मिला नहीं, तो सर वो टाइम पीरियड तो बहुत ही क्रिटिकल था
0: आपके जिंदगी में, तो पहले और आखिरी ऑप्शन के रूप में पीयूष जी आए, राइट?
2: हाँ मतलब मैं मुझे तो शादी ही नहीं करनी थी ना सर, तो कभी किसी से मिली ही नहीं, कभी किसी से बात ही नहीं, फर्स्ट और लास्ट यही रह गए।
0: मतलब बड़ा हमारे, मैंने कहा ना जैसा कि हम लोगों के लिए तो हम सोच ही नहीं सकते कि इतने साल एकदम से जिंदगी जिसकी चल नहीं रही थी बल्कि उड़ रही थी वो जिंदगी अचानक थम जाए।
2: उससे पहले लाइफ एकदम परफेक्ट थी, सारे काम खुद करते थे, व्हीकल भी ड्राइव करते थे, स्कूल कॉलेज सब बहुत इजी गोइंग था, आसपास की दुनिया अच्छी थी, लोग सामने से इन्वॉल्व होते थे। लेकिन इस प्रॉब्लम के बाद आप तो समझ ही सकते हैं, धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लग जाती है, लोग किनारा करने लग जाते हैं कि यार
0: इस पॉइंट पे आ रहा था कि जो आपके फ्रेंड्स रहे होंगे वो भी मतलब खत्म चले गए होंगे उसके बाद।
2: हाँ सर, कुछ एक फ्रेंड्स है जो आज तक साथ हैं, बाकी तो सब दूर होते गए जब उन्हें ये पता चला कि मुझे अचानक ऐसी कोई प्रॉब्लम है।
0: अच्छा ननिता जी, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ थोड़ा सा अलग, मेरे से रहा नहीं जा रहा है पूछे बिना। कॉलेज में जब पढ़ते हैं और एमकॉम होते होते तो मतलब दोस्ती भी हो जाती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वगैरह सब हो जाता है, तो आपके लिए कुछ था ऐसा माहौल कभी बना कि नहीं बन पाया?
2: नहीं सर, मेरे लिए ऐसा था कि विजन तो मेरा डे बाई डे कम हो रहा था, वो मुझे पता था।
0: ओके
2: विजन तो था ही नहीं, तो कभी इस चीज के तरफ मन गया ही नहीं।
0: कभी सोचा ही नहीं आपने ऐसा कुछ?
2: सोचा ही नहीं सर, बस एजुकेशन और अपनी लाइफ कैसे करनी है वो ही था बस, कभी सोचा नहीं कि कोई बॉयफ्रेंड या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था सर। कभी कॉलेज लाइफ तक कभी कुछ आया ही नहीं, और एमकॉम के बाद तो घर में ही रहे सर।
0: ननिता जी, बहुत सारे लोग ऐसी स्थिति में ना टूट जाते हैं।
2: बिल्कुल सर, टूटे ही थे।
0: आपने हिम्मत कैसे रखी, मतलब फिर भी फेस तो किया ना आपने, कैसे अपने आप को संभाल करके रखा?
2: 2015 में मैं आरएनकेएस आई थी, तब भी मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर पाऊंगी। मुझे लगा कि मम्मी पापा मेरे लिए कोशिश करना चाहते हैं, किसी रिलेटिव ने उन्हें बताया था, उन्होंने ट्राई किया और उन्होंने उनकी इच्छा थी कि तुम ज्वाइन करो, तो मैं भी करना तो चाहती थी, तो मैंने ज्वाइन किया। तब भी मुझे लगता था कि ठीक है अपन कोशिश करते हैं, होगा तो ठीक है, बट यहाँ की लाइफ चेंज हो गई क्योंकि एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया, ऐसा लगा कि आप कुछ नया सीख रहे हो, एज ए ब्लाइंड होके भी कंप्यूटर सीख रहे हो, कॉन्फिडेंस आ रहा है। उससे पहले तो सर यूँ कहो कि टाइम भी पूछना हो तो किसी से पूछना पड़ता था, और उसके बाद तो मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर सबने लाइफ ही चेंज कर दी। फिर 16 में जॉब ने और ज्यादा लाइफ चेंज कर दी, 17 में शादी ने और ज्यादा लाइफ चेंज कर दी।
0: फिर उसके बाद भी 18 में भी चेंज हुई होगी।
2: बिल्कुल सर, यही मैं कहना चाह रही हूँ, अब हमारी एक बेटी है तो उसने और ज्यादा
0: क्या मतलब वही क्या नाम है बेटी का?
2: अनायरा जैन।
0: अनायरा, वाह, वेरी नाइस, गुड। तो अनायरा के आने के बाद लाइफ और चेंज हो गई। अच्छा, पीयूष भाई, बहुत देर से आप सुन रहे हैं
1: जी सर
0: ननिता जी को, तो वैसे भी मुझे लगता है कि ज्यादा काम आपका सुनने का ही रहता होगा।
1: वो नेचुरली होता।
0: खैर, लेकिन पीयूष भाई आज बताएं, फैमिली मतलब सब बैठते होंगे आपस में, कभी बात होती होगी, आज दे आर सेटिस्फाइड ना कि मतलब ठीक है, तुम्हारी लाइफ अच्छी है, तुम खुश हो, हमें कोई शिकायत नहीं है?
1: जी एक्चुअली संदीप जी, मैं वही कह रहा था आपको, उन लोगों को या जो मतलब हमारे पेरेंट्स हैं वो चाहते थे हमारा अच्छा ही है ना।
0: जी बिल्कुल,
1: उन लोगों को उस टाइम एक्सपीरियंस नहीं था या कॉन्फिडेंस नहीं था कैसे।
0: लेकिन आज की सिचुएशन क्या है
1: पीयूष? जब पिछले डेढ़ दो साल तीन साल हो गए थे जब हमारी शादी को, या कहें कि 6 महीने बाद ही मतलब ये समझ में आने लगी थी कि नहीं ऐसे कर सकते हैं। जैसे मेरी फैमिली को मैं बताऊं कि मेरे बारे में थोड़ा बहुत पता था कि ऐसे लैपटॉप पे हेडफोन लगा के फोन काम कर लेता है, ये मोबाइल है जो टॉक करता है, ये किससे काम चल जाता है। पर ननिता को देख के थोड़ा 6 महीने वो कैसे किचन में काम करती है, मतलब शुरुआत में तो ये होता था मेरी मदर सामने आके खड़ी रहती थी चुपचाप देखते रहते थे।
0: अच्छा,
1: कर रही है कैसे, कुछ सही से कर रही है कि नहीं। बाद में आके पापा को या मेरे को बताती थी, अरे वो सही कर रही है, एकदम ऐसे रखती है, ऐसे ऐसे चीज को चेक करती है कि कितना
0: इसमें क्या। अरे वाह, बहुत खूब।
1: वो फेज था एक, पर वो बहुत ज्यादा लंबा नहीं रहा, और एक्चुअली बस किसी का वो अप्रिहेंशन कुछ नहीं था, सिर्फ यही था कि कंफ्यूज थे या डाउटफुल थे कि कैसे आगे बढ़ेंगे। तो थोड़े टाइम बाद ही फिर तो बहुत कॉन्फिडेंस आ गया, उन्हें लगा नहीं सब ठीक है। हम लोग फिर मतलब पहले तो ये होता था कि मैं हम लोग शुरुआत में अकेले नहीं जा पाते थे, वो हमारे साथ जाते थे कहीं बाहर जाते थे।
0: आप दोनों की लाइफ के बहुत सारे डायमेंशंस हैं पीयूष भाई, और मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा एयू में आपकी जो जॉब है अब उस पर थोड़ी सी बात की जाए आपसे। जब आप ब्लाइंड नहीं थे तब और जब दोबारा आप गए, उन दोनों सिचुएशन में क्या डिफरेंस लगा आपको?
1: मैं आपको जैसे मैं बताऊं, शुरू में मैं सेल्स में था। सेल्स में तो आप समझते हैं कि दिन भर मार्केट में रहना, क्लाइंट से मिलना, मीट करना, अपॉइंटमेंट्स लेके जाना, बात करना, ड्राइव करना, ट्रैवल था मेरा। तब ये सिचुएशन हुई जब मैंने जैसे आपको बताया, फिर मैंने एक डेढ़ साल घर पे ही रहा, फिर वापस ज्वाइन किया कंप्यूटर सीखने के बाद, AICD में ट्रेनिंग लेने के बाद। तो फिर वहाँ जाके बोला भाई मुझे अब काम दो। क्या क्या काम करोगे? मैंने कहा मैं ट्रैवल का काम या बाहर का काम तो कर नहीं सकता, बैकएंड का काम ही मुझे। तो वहाँ मुझे मतलब मैं ऑन द रिकॉर्ड वैसे पहली बार ही बोल रहा हूँ कि उन्होंने मुझे वो काम दिया जो लीस्ट इम्पोर्टेंस वाला था। जो मतलब शुरुआत में उनको एक्चुअली होता है ना कि उनको भी पता नहीं मैं क्या दें,
0: उनको क्या एहसास नहीं था। लेकिन पीयूष भाई इससे पहले प्रश्न ये आता है कि किसी ने ये नहीं कहा कि भाई अब तो आप तो नहीं हमारी कंपनी में, यू आर नॉट वर्किंग विद अस?
1: नहीं, ऐसा नहीं कहा गया मुझे।
0: और ये अपने कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाने वाली बात रही कि आपको पता ही था कि नहीं मैं तो कंपनी में ही हूँ।
1: जी, और मैं इसमें भी थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में, जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे ललित जी ने AICD का कहा था।
0: जी
1: जी। बाद मैं फिर क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि एक महीने की छुट्टी लेके जाऊंगा वहाँ, मैंने फिर हमारे HR ने बात की, तो वहाँ से एक बार थोड़ा वो हुआ, फिर मैं सीधे हमारे जो कंपनी के ओनर है MD अपॉइंटमेंट लेके उनसे मिलने गया। उनको मैंने बताया कि सर ऐसे ऐसे ये सीख सकते हैं, वो काम ऐसे ब्लाइंड लोग ऐसे काम करते हैं, मोबाइल भी आजकल वो, मैंने उनका ऐसे बोला कि बोलने वाले आ गए मोबाइल लैपटॉप भी तो है और काम हो जाता है, मैं ऐसे कर दूंगा। तो वो बड़े खुश हुए, उन्हें भी लगा कि यार अच्छा ऐसा भी होता है क्या। तो जब उन्होंने मुझे कहा तो ठीक है तू जाते हो क्या करना है, और देखो मतलब ऐसा नहीं पेड लीव दे रहा हूँ मैं तेरे को, तू जा जो तेरे को ट्रेनिंग लेनी है। और उसी टाइम मतलब ट्रेनिंग नहीं ली थी उस पर, उन्होंने कहा था मुझे लैपटॉप सीखना है, उन्होंने मुझे हाथों हाथ एक लैपटॉप मंगा के दिया।
0: क्या बात है, वाह जी,
1: मंगा के दिया और सैमसंग का फोन भी दिया मुझे साथ में लेके जा। AICD जब मैं गया तो लैपटॉप खुद का लेके गया था।
0: और मतलब MD बहुत ज्यादा लगता है कि आपके प्रति मतलब काफी अच्छा उनका रिस्पांस था। जी,
1: इस मामले में यही कहता हूँ कि मेरे साथ कुछ भी हुआ पर मेरे साथ वाले लोग मेरे साथ, मैं खुशनसीब हूँ, बहुत ही ऐसे लोग थे, अजूबे तरह के लोग थे मेरे साथ, तो यही एक कारण था। और जब वो मैं वापस आया तब भी मैं फिर मैंने HR में बोला कि मुझे अब ये काम देना है। तो आप ये कहें कि मैं वापस आके उनसे नहीं मिला, मैं सीधे HR में मिला, समझना वो मिलते तो शायद और मुझे कुछ
0: है।
1: तो पर ये नहीं था ऐसा, मतलब वो जो मुझे काम दिया गया बैकएंड से, तो वो मैंने लीस्ट इम्पोर्टेंस काम मैं कह रहा हूँ, पर वो ऐसा नहीं था कि फिर उसमें मैंने डिलीवर करके दिया। कुछ दो तीन साल मैंने उसी फील्ड में था, मैं बैक ऑफिस में, मेरे पास एक टीम थी जो कस्टमर कॉलिंग वगैरह करती थी और रिपोर्ट्स वगैरह बना के हम लोग भेजते थे। तो इस तरह से ये ऐसा कुछ हुआ। और फिर 2018 में जब 2017 में AU बैंक बन गया था, पहले ये AU फाइनेंस कंपनी थी, जब बैंक बन गया तो एक CSR को भी थोड़ा ऑर्गेनाइज करा, उसे स्ट्रक्चर्ड किया। पहले तो वो एक फिलान्थ्रोपिक वे में होता था कि हाँ जो कंपनी को पसंद आ गया या मैनेजमेंट को सही लगा वो काम कर दिया, जैसे हॉस्टल बना दिया या जगह जगह वाटर कूलर्स लगाए या किसी SMS हॉस्पिटल में कुछ भी तरह के कई तरह के काम किए, वार्ड बनवा दिया।
0: जी जी।
1: 2018 में ऐसा हुआ कि इसे स्ट्रक्चर किया गया कि CSR का एक डिपार्टमेंट बनेगा अलग, वहाँ टीम होगी, 4-5 लोग होंगे, वो प्रोजेक्ट बनाएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। तो फिर इससे मुझे कॉल आया कि आप लोग, आपको भी इसमें शिफ्ट होना है, इसमें मूव कर रहे हैं। तो ये भी एक कॉन्फिडेंस था उनका, उनको लगता था कि मैं इसमें काम कर सकता हूँ, मुझे नॉलेज है और मैं क्योंकि जुड़ा हुआ हूँ कुछ NGO से, तो मुझे आगे बढ़ के ये ऑफर दिया गया कि आप CSR में आओ। और जैसा आपने कहा ना, MD सर ने जो हमसे देखा था या समझा था मुझे, बाद वो जब मैं उन्हें एक बार RNKS लेके गया था और वहीं पे उन्होंने कहा था कि वहाँ के जो चेयरमैन थे कि मैं 5 ब्लाइंड लोगों को AU में जॉब दूंगा।
0: क्या बात है।
1: तो आप, मुझे जहाँ तक ध्यान है आप एक दो लोगों से परिचित भी हैं।
0: आलोक जी हमारे अजमेर में जॉब कर रहे हैं बहुत अच्छे से, और एक हाल ही में मैं मिला, पवन जी हैं उनसे मैं मिला, वो भी AU में जॉब कर रहे हैं।
1: और पहले भी एक भारत थे, भारत माली, वो अब
0: माली को भी मैं जानता हूँ। ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आपने मतलब इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया कि आज वो खुशी खुशी तो किसी भी कैपेबल ब्लाइंड पर्सन को जॉब देने के लिए रेडी है।
1: वो उन्हें कॉन्फिडेंस आया, उन्हें दिखा कि भाई ये काम ऐसे होता है। और क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, एक विजनरी, वो एक विजनरी है मैं मानता हूँ उनको, वो एक बार देखने में समझ गए। मतलब एक बार होता है ना कि एक एचआर वाले किसी पर्सन को भी आप कहो ना कि ब्लाइंड क्या काम करेंगे, वो कहेगा अरे ब्लाइंड देखना पड़ेगा क्या काम है, सब कुछ हमारे पास काम ही नहीं है। और एक होता है विजनरी, वो खुद देखते समझ जाता है ये लोग ये काम कर सकते हैं, खुद बता देते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? काम है जो मतलब बिना साइट के भी हो सकते हैं। जॉब आइडेंटिफिकेशन करना एक इम्पोर्टेंट है, और वो उसे कौन कितनी इम्पोर्टेंस देता है वो बड़ी बात है।
0: बिल्कुल,
1: कितनी इच्छा है इसको आइडेंटिफाई करने की और एक्टिविटी करने की।
0: अच्छा पीयूष भाई, मतलब सेम सिचुएशन मुझे आपके साथ भी लग रहा है कि पूछनी चाहिए कि जब आप साइटेड थे तो फिर आपका फ्रेंड सर्कल कैसा था? मतलब कोई आपके भी दोस्त लोग तो हुए ही होंगे ना उस समय भी?
1: हाँ नहीं,
0: क्या पूछना चाह रहा हूँ
1: जी। वो भी एक
0: कहानी है, वो भी एक कहानी है।
1: उन चीजों का भूल जाए पीछे छोड़ दें वही अच्छा है।
0: नहीं बिल्कुल बिल्कुल भाई,
1: तो ये था कि एक अलग लाइफ थी पहले, और फ्रेंड्स भी थे सब थे, और वो एकदम से चेंज हो जाती है चीजें जब आपकी लाइफ चेंज आता है।
0: लेकिन मतलब इम्पोर्टेंट बात ये है कि लोग ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं ऐसे में।
1: नहीं, वो आप लोगों के आप जैसे दोस्तों का कारण है कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ पाया। मतलब मैं तो लकी हूँ कि ब्लाइंडनेस के बाद भी मुझे ऐसे ही दोस्त मिले जैसे मुझे चाहिए थे। और आप ठीक है, आप बहुत कॉन्फिडेंस देते हैं हमें।
0: क्या बात है, ये तो बड़प्पन है आपका, नहीं तो आप बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। और पीयूष भाई बताए जरा कि अब जो है आप दोनों का जीवन कैसा चल रहा है? ये सब बातें तो हो गई लेकिन फिर भी आप दोनों खुद के लिए कितना वक्त निकाल पाते हैं?
1: सच बताऊं संदीप भाई, अब तो वक्त हमारा हमारी बेटी के साथ जा रहा है ज्यादा।
0: जी जी जी, गुड गुड।
1: एक्चुअली 2017 में जब शादी हुई थी उसके बाद हमको डिसीजन लेने में भी टाइम लगा कि हमको बिग्गी भी करना है कि नहीं।
0: ओके ओके ओके,
1: बात है जो शायद मैं
0: आप रीजन कहीं ना कहीं आरपी था।
1: जी मुझे आरपी नहीं था पर इन्हें आरपी था, और वो भी एक मतलब जेनेटिक में है।
0: हाँ जी
1: जी, बीमारी भी हाई मायोपिया था जो भी जेनेटिक में ही आती है।
0: अच्छा, ओहो, ये बहुत सारे लोगों के साथ मतलब है कि कई लोग इस वजह से डिसीजन नहीं ले पा रहे। मैं जानता हूँ लिटरली कुछ लोगों को। फिर आप लोग कैसे मतलब इसमें पहुंच पाए इस डिसीजन तक?
1: मतलब यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमें बहुत टाइम लगा कि हमें फिर हम दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड किया। कुछ कंसल्टेंट से भी हम लोगों ने कंसल्ट किया जो डॉक्टर्स होते हैं जो जेनेटिक थेरेपी वगैरह पे काम करते हैं। हम लोगों ने मतलब एक टेलीफोनिक काउंसलिंग भी ली, एक सेशन भी अटेंड किए एक दो।
0: ओके,
1: यही रहा कि नहीं इसमें बहुत कम चांसेस है, और मतलब जिसमें होता है तो उसका तो कुछ वो भी नहीं है कि कोई अगर कह भी रहा है कि वो ट्रीटमेंट कर रहा है तो वो भी कोई सच नहीं कह रहा है।
0: वो कुछ श्योर नहीं है मतलब।
1: फिर हमने मतलब ये आप मानिए हम लोग जब हमने ये डिसीजन लिया कि प्लान, तो बहुत वो था कि बहुत डाउटफुल थे हम कि यार क्या होगा कैसे होगा। मतलब बेबी हमने जब लास्ट ईयर बेबी हुई हमारी तो भी हम लोग थोड़े एक दो महीने तो यही थे कि इसको अब एक बार ये थोड़ी सी बड़ी हो जाए इसकी आंखें चेक करवानी है। तो ये था, पर सब ठीक है और अब हम बहुत खुश हैं।
0: चलिए, उस नन्ही सी बड़ी के साथ वक्त बिताने का अच्छा अवसर मिल गया।
1: आपस में बात करने का और आगे के जो भी सोच है हमारे उस पर हम डिसीजन लेते हैं। तो हमें लग रहा है हमारा टाइम है, और ऐसे और जो भी टाइम मिल रहा है उसे क्वालिटी के साथ स्पेंड कर रहे हैं।
0: बहुत खूब बहुत खूब। तो ये एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है मेरे दिमाग में पीयूष भाई, कि जैसे नमिता जी ने कहा कि उन्होंने तो ये सोच रखा था कि मतलब शादी करनी नहीं है, कहीं ना कहीं ये ब्लाइंड होने के बाद आपके भी मन में ऐसे ही ख्याल थे या इस बारे में कभी वक्त ही नहीं मिला सोचने का?
1: टू बी वेरी फ्रैंक संदीप जी, मेरे तो मतलब जब जैसे थोड़ा मैंने कहा कि कॉन्फिडेंस आ गया, एक्सेप्ट कर लिया ब्लाइंडनेस है
0: जी,
1: तो एक होता है कि आपको एक फ्रेंड की या उसकी जरूरत होती है जिससे आप बात कर सकें।
0: बिल्कुल,
1: मतलब होता ना कि आपको हाँ चाहिए जिससे आप अपने मन की बात कर सको,
0: पेन शेयर करें जिसके साथ आप अपने।
1: वो मुझे तो लगता था, और जैसा मैंने कहा मुझे तो मतलब मेरे फैमिली को भी पहले तो यही था कि मैंने कह रखा था कोई देखना है तो आप देखो शादी, और मैंने जैसे कहा ना कि वो पहले, फिर वो इसलिए देख रहे थे कि ब्लाइंड नहीं, ब्लाइंड के अलावा देख रहे थे। तो मैंने भी उस वक्त यही कहा था कि नहीं मुझे इंटेलेक्चुअली तो कंपैटिबल चाहिए, जो जिनके साथ मैं, जैसे हम लोग अभी नैनीता ने कहा था हमारी कंपैटिबिलिटी हमको लगती
0: है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं चाहिए। बहुत सही कहा
1: आपने जी, बस वही है क्योंकि हमें लगता है कि हम चाहे कैसी प्रॉब्लम है पर हम एक दूसरे से बात करते हैं, समझते हैं, अपनी बातें एक मन की बातें शेयर करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती है, स्ट्रेस होती है, वो हमारी एक सी होती है तो हम खुल के बात कर पाते हैं, और वही सबसे सही डिसीजन था मुझे लगता है। तो वो हमें एक कंपैटिबल हमारे हमको नैनीता जी मिल गई, तो हमने मौके को जाने नहीं दिया।
0: तो नैनीता जी क्या क्या शौक है आपके, हॉबीज क्या क्या है?
2: सर हॉबी मेरी कुकिंग और डांसिंग है।
0: अच्छा वाह क्या बात। तो अभी तो डांस वांस आप करती हैं या छोड़ दिया सर?
2: नो बट जिस लेवल पे पहले किया करते थे उतना नहीं हो पाता।
0: अच्छा अनायरा के बर्थडे में करते हैं कि नहीं?
2: जी
0: अनायरा के बर्थडे में करते हैं या नहीं करते?
2: जी बिल्कुल सर। वो हमें रात में नचा ही रही है उसके साथ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं डांस।
0: कभी पीयूष जी को कोई गाना वाना सुनाया कि नहीं आपने?
2: हाँ सर मैंने तो सुनाया, इन्होंने भी सुनाया, ऐसी कोई बात नहीं है।
0: अच्छा, कौन सा सुनाया आपने और जो पीयूष जी को बहुत पसंद हो?
2: वो तो यही बता सकते हैं सर।
0: ये सारा ही पसंद है। क्या बात है, सुना दीजिए दो लाइनें। आज एक बार फिर दो लाइनें गुनगुना दीजिए।
2: ओके सर आई एम ट्राइंग।
0: जी जी जी

0: ओ हम नवाब न कोई था न कोई, जिंदगी में तुम्हारे सिवा तुम देना मेरा। ओ हम नवाब
1: तो पीयूष जी भी गुनगुनाते हैं, ये तो आज हमको भी आज पता चला।
2: मैंने गुनगुनाता खाली की नहीं
0: थोड़ा बहुत बस वैसे नहीं, एक दूसरे के लिए एक दूसरे के साथ ही।
1: जी बहुत खूब जी, बताएं पीयूष जी।
2: तो मैं कहना था जितना अच्छा आप गाते हो ना, हमें पता है, मैंने आपको सुना है आपकी कविताएं और गाना, तो उसके सामने मैं बहुत, आप शर्मिंदा फील करेंगे मेरे गाने को सुन के, बोलेंगे
1: नहीं, नहीं। लेकिन आज रेडियो मधुबन ने जो है मुझे इसलिए बिठा रखा है कि मैं आपको गवा सकूं। जी तो हो जाए दो लाइनें पीयूष भाई, कोई बात नहीं, तो मस्ती का माहौल है।
2: नहीं संदीप जी, मुझे लग रहा है मैं फिर भी दो लाइन गा सकता हूँ।
1: हाँ दो ही लाइन, दो ही लाइन।
2: तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, मुझे याद नहीं है याद।
1: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने जो है आपको उम्मीद भी नहीं होगी ना कि मैं गाने वाने की भी बात करूंगा। तो नंदिता जी, कुकिंग में क्या क्या है फेवरेट आपका?
0: कुकिंग में सर बेसिकली
1: बना लेती हैं आप?
0: मैं साउथ इंडियन बना लेती हूँ, चाइनीज बना लेती हूँ, थोड़ा बहुत इटालियन, और बाकी अपना बेसिक फूड इंडियन फूड ये सब मैं कुक कर लेती हूँ सर।
1: अरे वाह। अच्छा आप लोग कोई जो ये इलेक्ट्रॉनिक जो होते हैं गैजेट्स वगैरह, उसका भी कुछ इस्तेमाल करते हैं?
0: हाँ सर, इनिशियल लेवल पे हम लोग करते हैं, गैजेट्स यूज करते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक में, वॉशिंग मशीन यूज करते हैं, माइक्रोवेव यूज करते हैं, नॉर्मली जनरली फ्रिज वगैरह तो अपने घर में सबके होते ही हैं,
1: तो कोई इशू है ही नहीं उसमें तो। जी
0: और इंडक्शन यूज करते हैं सर,
1: माइक्रोवेव भी टॉकिंग है पूरा मतलब?
0: जी सर टॉकिंग है सर, हमारे पास एंड्रॉइड बेस्ड टीवी है टॉकिंग, और कई गैजेट्स हैं जो टॉकिंग यूज करते हैं और नॉन टॉकिंग भी यूज करते हैं सर।
1: फैमिली फंक्शंस में जब जाना होता है आप दोनों का, तो जनरली क्या माहौल रहता है?
0: सर फैमिली फंक्शंस में तो माहौल थोड़ा नॉर्मल रहता है, वो चीज नहीं है कि दो ब्लाइंड पर्सन आए या कुछ, शायद हमें हमारे कॉन्फिडेंस को देखकर या हम लोगों को जिस तरीके से हम लोग जाते हैं सबसे मिलते हैं, तो सब नॉर्मल हो चुके हैं कि हाँ ये अपने ही तरीके के लोग हैं, सबको भी कॉन्फिडेंस आ चुका है, तो सर अलग से उनका बिहेवियर नहीं रहता। हम भी इंजॉय हैं और लोग भी हमारे साथ कॉपरेट भी करते हैं, इंजॉय भी करते हैं, हमें कभी नहीं होने देते कि हम कोई डिसेबल पर्सन आए हैं या हमें कोई डिसेबिलिटी है।
2: बहुत
1: वेरी नाइस। अच्छा एक हमारा सेगमेंट है सवाल एक जवाब है, तो नैनीता जी तैयार हो जाएं, पहले आपसे शुरू करते हैं। पीयूष जी का फेवरेट फूड बताइए।
0: चूरमा दाल बाटी।
1: आप बनाती हैं?
0: हाँ सर मैं बना लेती हूँ।
1: अरे वाह क्या बात है, राजस्थानी भोजन है, राजस्थानी फूड है जी,
0: चलता ही है।
1: अच्छा अच्छा पीयूष की फेवरेट सिटी बताइए। सिटी
0: हैदराबाद।
1: ओ गए कभी आप दोनों?
0: हाँ सर हम कई बार गए।
1: अरे वाह क्या बात है, हैदराबाद।
0: इनके मासी और मामा जी रहते हैं वहाँ पे।
1: अच्छा
0: जाना होता ही रहता है सर।
1: और पीयूष का फेवरेट सॉन्ग?
0: इनका फेवरेट सॉन्ग जो मैंने सिंग किया वही है
1: जब कोई बात बिगड़ जाए। अच्छा बात बिगड़ने से याद आया, बात बिगड़ती है कि नहीं कभी भाई? होती है नहीं होती है?
0: बहुत बिगड़ती है सर।
1: गुस्सा पीयूष को ज्यादा आता होगा मुझे लगता है, ज्यादा आता है।
0: टू बी फ्रैंक संदीप जी गुस्सा तो मुझे ज्यादा आता है।
1: मतलब इस हंसी के पीछे बहुत गुस्सा भी है?
0: आता है जो बहुत आता है वैसे नॉर्मल।
1: हमारे पीयूष भाई बिल्कुल कूल एकदम है।
2: मुझे तो है ना इनके को बता सकते हैं पिछले चार साल में कभी गुस्सा आया है?
1: अरे वाह क्या बात है, वैसे गुस्सा आना नहीं चाहिए कभी।
0: इनको भी आता है बट मुझे ज्यादा आता है ये कह सकती हूँ।
1: लेकिन आना ही नहीं चाहिए।
0: हाँ इनको तो आना ही नहीं चाहिए ना सर।
1: नहीं आपको भी नहीं आना चाहिए।
0: अब मैं तो सर मेरा तो इमोशन है तो मुझे तो आता।
1: पीयूष भाई अब आपकी बारी है, ननिता की फेवरेट फिल्म बताएं।
2: संदीप जी टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब एक मुझे मूवी याद है विवाह, इनको बहुत पसंद है।
1: ओ ननिता जी सही कह रहे हैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल कह रहे हैं, हम इसके सॉन्ग काफी सुनते हैं, मेरी फेवरेट मूवी रही है।
2: और इसमें यहां पर आप इनको बिल्कुल भी शौक नहीं रहा है मूवी का।
1: अच्छा
2: मेरा मूवी देखना कम हो गया है।
1: अरे बाप रे बाप। अच्छा अच्छा ननिता का फेवरेट कलर बता सकते हैं आप पीयूष भाई?
2: वो तो आप सब सब गर्ल्स का लेडीज का आप पता है एक ही कलर होता है
1: पिंक और पिंक सिटी भी अच्छा चलिए एक थोड़ा सा टफ पूछते हैं आपको, फेवरेट फोर व्हीलर कौन सा है ननिता का?
2: वो तो बलेनो है।
1: ओ क्या बात क्या बात है चलिए बहुत खूब, ये आप दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो मुझे लगता है बहुत ही जबरदस्त है, और ये हमारे फ्रेंड्स को सीखने की जरूरत है, हमारे श्रोताओं को सीखने की समझने की जरूरत है, क्योंकि जिंदगी में अंडरस्टैंडिंग हो तो फिर सब कुछ आसान।
2: बोलना चाहिए कि किसकी चॉइस पे इम्पोर्टेंस ज्यादा मिलनी चाहिए।
1: राइट। मैं उसी पर आ रहा था कि पीयूष भाई अब चलते चलते टाइम तो हो गया, आप दोनों से बातें करते करते पता नहीं कब एक घंटा निकल गया,
2: बहुत मजा आया तुम्हें
1: चलते चलते बताएं जरा कि हमारे सुनने वालों को क्या मैसेज देंगे आज इस मौके पर।
2: मेरा मैसेज तो संदीप जी देखिए यही होगा कि मैंने अभी एक कुछ दिन पहले ये गाना सुना था, पता नहीं मुझे कहना ठीक नहीं, अगर होता ऐसा था कि लाइफ अगर तुम्हें दे बनाना तो उसे अपना लेना फटाफट।
1: क्या बात है,
2: हम लोग आज क्या है बहुत सोचते हैं बहुत कि क्या होगा कैसे करेंगे, पहले ऐसा क्यों हो गया आगे क्या होगा, लोग मतलब जैसे मतलब कहते ना कि अभी क्या है क्या चल रहा है इसको कैसे इसमें कैसे जिए उस पर ध्यान ही नहीं देते। मेरा तो मेरे दोस्तों को फ्रेंड्स को सभी को मैं यही कहता हूँ, आप आज में रहो खुश रहो, आप देखो आपके पास आसपास बहुत सी चीज़ें हैं जो आप करना चाहते हो वो आपको आसपास ही मिलेंगी, बस हमें सही पॉइंट ऑफ व्यू या दृष्टिकोण जिसे कहते हैं उसे रखें और पॉजिटिव रहें, यही मेरा संदेश है सबके लिए।
1: क्या जी नमिता जी आपके पास तो बहुत कुछ है कहने के लिए।
0: और मुझे लगता है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से टू बी फ्रैंक मुझे लगता है लाइफ में क्विक डिसीजंस लेने चाहिए, जिसमें आपको आज खुशी मिल रही है बस वो कर डालो, कल की सोचने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर मुझे लगता है फ्यूचर पे वैसे भी अपना कंट्रोल नहीं है तो जो होगा वो होगा। आज मैं कुछ होने में बिलीव करती हूँ।
1: बहुत बहुत बहुत मजा आया आप दोनों से बात करके, थैंक यू सो मच आज टाइम देने के लिए और रेडियो मधुबन के इस प्रोग्राम में आने के लिए, पीयूष जी और ननिता जी आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और रेडियो मधुबन के लिसनर्स का हमें भी बहुत अच्छा लगा, आपने हमें इनवाइट किया, हमें अपनी बात कहने का मौका मिला, इसके लिए सर थैंक यू सो मच।
1: श्रोताओं आज सुना आपने पीयूष जी को और ननिता जी को, प्रोग्राम हमराही में रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो, अगले रविवार मिलूंगा आपसे एक बार फिर किसी और हमराही के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत संदीप त्रिवेदी को, नमस्कार।
3: अभी बजे हैं शाम के 6।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है लव यू जिंदगी। जिंदगी पर न जाने कितनी शायरियां लिखी गई, न जाने कितने गीत बने, लेकिन फिर भी कहते हैं कि जिंदगी को समझना इतना आसान नहीं है। वो गाना तो आपने सुना ही होगा, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। और सच में ये ना जाना कई बार मल्टीपल इमोशंस को ले आता है, और आज हम उन्हीं इमोशंस के बारे में थोड़ा और गहराई से जानने वाले, यानी खुद को बेहतर पहचानने वाले। और उसके लिए जुड़ गए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट। सबसे पहले हम स्वागत कर रहे हैं कल्पना जी का, जो कि ग्लोबल अस्पताल से सीधा जुड़ गई हैं, जो कि साइकोथेरेपिस्ट भी हैं, स्पिरिचुअल काउंसलर भी है, और समय प्रति समय हमें बहुत मदद करते रहते हैं। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू, बहुत बहुत खुशी हो रही है श्री जी से, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है, हमारे श्रोताओं से मुखातिब होकर भी बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।
2: क्या हुआ, क्या हुआ,
3: कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है।
0: ये क्या होने वाला है, इसके साथ भी बहुत सारे इमोशंस जुड़े रहते हैं, इसीलिए गाने बनते रहते हैं, और तब भी ये सवाल सवाल ही रहता है कि क्या हुआ। और इन्हीं इमोशंस को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। दीदी, आपने इमोशंस आइडेंटिफाई करने के बारे में बहुत सारी बातें की थी कि सही इमोशन कैसे आइडेंटिफाई करें, फिर आपने ये भी बताया था कि किस तरीके से उसका एक मीटर होता है, एक मतलब किस लेवल पे है वो इमोशन, वो भी समझे तो टैकल करने में मदद मिलती है। अब एक सवाल है जो बहुत लोगों के मन में आता है, किसी किसी को ये लगता है कि मेरे अंदर एक सर्टेन इमोशन है ही नहीं, जैसे किसी किसी को लगता है मैं इतना कुछ देख चुका जीवन में कि संवेदना बची ही नहीं है, देयर इज नो कंपैशन। तो क्या ऐसा भी होता है कि किसी व्यक्ति के बाद कोई इमोशन, एक इमोशन ऐसा हो जो उसके अंदर बिल्कुल मर गया हो या खत्म हो गया हो या हो ही नहीं?
1: ऐसा तो नहीं होता है। इसके पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारे माइंड का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। डिफेंस मैकेनिज्म वो सिस्टम है जिस चीज का माइंड को स्ट्रेस होता है, जिस बात से माइंड को तकलीफ होती है या थ्रेट महसूस होता है, उससे डाइवर्ट करने के लिए माइंड कुछ स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करता है। तो डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम जो है माइंड का, जिस बात से, जिस इमोशंस से आपको बहुत दुख दर्द महसूस होता है, तकलीफ होती है, उससे डाइवर्ट करने के लिए उस चीज के प्रति इम्यून बना देता है। और वो इम्यून बनना, लोग समझते हैं कि वो भावना ही नहीं है मुझ में। जैसे फॉर एग्जांपल, जो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, एंटीबायोटिक्स भी अगर

0: श्रीनिधि जी, आपसे मैं एग्जैक्टली ऑपोजिट बात पूछना चाहूंगी, क्योंकि एक कई बार ये भी प्रश्न आता है कि मेरे अंदर ये इमोशन इतना ज्यादा है कि बाकी उसके आगे कमजोर पड़ जाते हैं या वो मुझे इमोशन कंट्रोल कर देता है। किसी को लगता है कि मेरे अंदर मतलब इतना ज्यादा प्यार है या इतना ज्यादा जेलसी है कि वो कंट्रोल कर लेती है जैसे, और कोई इमोशन फील ही नहीं करने देती। भले कोई व्यक्ति बीमार है, परेशान है, पर दया नहीं आ रही है। इतना ज्यादा उसके प्रति वो घृणा है या जेलसी है कि वो इमोशन ओवरपावर कर लेता है। तो क्या उस समय कैसे मतलब आप इमोशंस को देखते हैं?
1: एक तो ये चीज रिकॉग्नाइज करने वाली है कि ऐसा हम लोगों के साथ होता है, और सभी लोग ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग कुछ चीजों के लिए इम्यून हो जाते हैं। मैं इसके लिए एक दूसरा उदाहरण देना चाहूंगा, खासकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब हम लोग काम करते हैं। पहली बार जब कोई व्यक्ति खून देखता है तो बहुत सारे लोगों को एक स्ट्रेस या एंजाइटी महसूस होता है कि किसी व्यक्ति का खून बह रहा है, फिर उसको कैसे रोके, क्या करें। समझ, ऐसे ही भावनात्मक रूप से आप एक प्रेशर महसूस करते हैं आप खून देखते हुए। आपको वो एक अर्जेंसी, एक सेंस ऑफ एंग्जाइटी आपके डेवलप होती है। आप एंग्शियस होते हैं, कैसे कैसे हो गया, इसको हम कैसे रोके, इत्यादि सवाल मन में चलते रहते हैं। अब क्लिनिशियन की बात करें, एक नर्स की बात करें, एक डॉक्टर की बात करें, और वो लोग जब हर दिन इन एंड आउट लोगों के घाव को, लोगों की इंजुरीज को देखते रहते हैं, तो उनके अंदर वो एंग्जाइटी अब उत्पन्न ही नहीं होती।
0: ओके,
1: क्योंकि उन्होंने उन घटनाओं को बहुत बार देख लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो संवेदनशील नहीं है या वो आपके दर्द के प्रति उनकी संवेदनाएं व्यक्त नहीं कर रहे हैं, अपितु वो जो नेगेटिव उतार चढ़ाव होना चाहिए था, भावों में उद्वेग होना चाहिए था, वो नहीं होता। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि आपने बार बार अपने आप को इन इमोशंस के लिए इतना एक्सपोज किया हुआ है, आप उन चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप समझते चलते हैं कि हाँ, इन चीजों में मुझे एंग्शियस होने की जरूरत नहीं, उद्विग्न होने की जरूरत नहीं, इत्यादि। और जो बात आप कह रहे हैं उस बात पर भी मैं ये बात कहना चाहूंगा कि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति किसी चीज से इतना ज्यादा परेशान हो गया होता है या उन भावनाओं को महसूस कर चुका होता है, तो उसके अंदर एक प्रकार की भावना शून्यता आने लगती है। वो उन चीजों के प्रति रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। अक्सर हम लोग एक स्टैंडर्ड एग्जांपल देते हैं, सिंपैथी की बात कही जाती है। ऐसी घटनाएं जहां पर देखकर लगता है ओह, ऐसा नहीं होना चाहिए था इनके साथ, हे भगवान ये कैसे हो गया, ओहो ये तो बहुत गलत हुआ। ये हम सिंपैथेटिक हो के कोई चीजें कह देते हैं बहुत बार। इसके साथ साथ एक और चीज जो हम कहते हैं वो है एम्पैथी। एम्पैथी भी हम क्लिनिकल क्षेत्रों में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। बहुत बार सिंपैथी का अर्थ ये होता है कि हम किसी की संवेदनाओं को समझने के लिए हम अपने आप को उनके शूज में डालने लगते हैं, उनका दर्द महसूस करने की कोशिश करने लगते हैं, हम रेजोनेट करने लगते हैं उनके पेन के साथ। फील, दर्द उनको हो रहा होता है और हम भी उनके साथ उसी पेन को रेडिएट कर रहे होते हैं, और सिंपैथेटिक होने का अर्थ कभी कभार हम ऐसा समझ लेते हैं। इसलिए एक और स्टैंडर्ड शब्द यूज किया जाता है, और क्लिनिकल एरियाज में हमसे और कस्टम सर्विस में हम इन चीजों को बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जब हम इसको कहते हैं एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे सिंपैथी नहीं रखता, इसका मतलब ये है कि मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, बट मैं आपके दर्द को खुद महसूस नहीं करना चाहता। मैं भी आपके साथ उस दर्द के फीलिंग्स को रेडिएट नहीं करता। मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ, सिचुएशंस को समझ रहा हूँ, और उसको मैं पॉजिटिवली तरीके से रिस्पॉन्ड करने के लिए एम्पैथेटिक तरीके से उस चीज को देखता, ये एम्पैथी है। और आप जो बात कह रहे थे वो एक और प्रकार की पैथी है जिसे हम एपैथी कहते हैं, जिसे मतलब मैं आपके ऊपर क्या हो रहा है इससे मेरे ऊपर जू तक नहीं रहेंगे,
0: इसके
1: हाँ सर ही नहीं पड़ता। अक्सर हिंदी में हम ये चीज कहते हैं, कहावत के रूप में भी लोग कह देते हैं, ऐसे ही मुहावरों के रूप में भी इस्तेमाल होता है। लोग कह देते हैं जो हर दिन मर रहा है उसके लिए रोए कौन। तो बार बार आपने कुछ ऐसी चीजें देख ली हैं जिसकी वजह से आप अपने आप को शुष्क बना लेते हैं, आप उसके प्रति कोई संवेदना ही नहीं दिखाना चाहते, और ये भी चीज होता है, और ये चीज समझने की जरूरत है। और क्या ये चीज अच्छी है या बुरी है, मैं समझता हूँ कल्पना जी बेहतर गाइड कर पाएंगे, और हमारे कुछ श्रोता इस बात को समझकर खुद ही देखना चाहेंगे कि हमें एपैथी रखनी चाहिए, एम्पैथी रखनी चाहिए या
0: सिंपैथी। जरूरी है।

0: कल्पना जी से जानना चाहेंगे, तीनों शब्दों में से क्या?
1: बिल्कुल श्री जी, बहुत सही बात कर रहे थे कि जैसे मैं हूँ, काउंसिलर हूँ,
0: जी
1: मुझे क्या रखना चाहिए? एम्पथी रखनी चाहिए, सिंपथी रखनी चाहिए, क्या रखना चाहिए? अगर मैं सिंपथी रखती गई तो लोग जो दुख दर्द लेकर आ रहे हैं वो शायद मुझे अफेक्ट करें, लेकिन एम्पथी रखती हूँ तो मैं अफेक्ट किए बिना, अपने आप को अफेक्टेड किए बिना उनको हेल्प कर पाती हूँ। तो एम्पथी में एक डिटैचमेंट होती है, दूसरे के दर्द को हम समझते हैं बट महसूस नहीं करते। महसूस करने का मतलब उनके हाथ में कितना पेन हो रहा होगा, उनको मन में कितनी उलझन होगी, ये मुझे अच्छी तरह से पता चल रहा है, बट वो सेम चीज मैं महसूस नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे उनको हैंड होल्डिंग करना है, उनको मुझे मदद करनी है। अगर मैं भी महसूस, कोई मेरे सामने बैठकर रो रहा है और मैं भी रोना शुरू कर दूं तो कौन किसको हेल्प करेगा? सही बात है ना? तो ये श्री जी समझाने की कोशिश करते हैं, अपने इमोशंस को समझते समय, जब आपका रोल, समझो माता पिता है, बच्चों की कोई प्रॉब्लम है, अगर माता पिता अफेक्टेड हो जाते हैं, वो भी घबरा जाते हैं, तो वो कैसे हेल्प कर पाएंगे बच्चों को? मेरे सामने ऐसे कई माता पिता आते हैं जो वास्तव में डरे हुए होते हैं अपने बच्चों की फेलियर से, परंतु वो बच्चों को कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, इस बार फेल हो गए, अगली बार तुम जरूर पास हो जाओगे या अचीव कर लोगे, हम तुम्हारे साथ हैं। बट जब अंदर से मैं उनको पूछती हूँ कि आपने ऐसा कहा तो आपको कुछ अफेक्ट नहीं हुआ, तो कहा नहीं, हम अफेक्टेड हुए लेकिन हमने बताया नहीं, दिखाया नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारा बच्चा घबरा जाए।
0: ऐसा कई बार माता पिता करते ही हैं क्योंकि वो दर्द समझते हैं और हमसे ज्यादा बेहतर कई बार समझते हैं, लेकिन वो उठा नहीं पाएंगे, जैसा आपने कहा, हेल्प नहीं कर पाएंगे उस सिचुएशन में अदरवाइज। तो दीदी, एम्पैथी कहाँ आती है यहाँ पे? जैसे एम्पैथी की बात हुई, इसके बाद एक और जो शब्द आता है, ये इसका अगर थोड़ा सा मीनिंग आप बताएं।
1: एम्पैथी आप हर रोज इस चीज को यूज करते हैं एक्चुअली, पर हमें नाम देने नहीं आता है। तो ये चीज सिंपथी एम्पथी से ऊपर, एम्पथी को जो हम कहते हैं कि बीच का है, कि जैसे पर्सनालिटीज को जब हम देखते हैं, कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं
0: जी,
1: कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, है ना, अपने एक्सप्रेशंस को, फीलिंग्स को बहुत ओपनली शो करते हैं, और कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं, वो अपने एक्सप्रेशंस, अपने फीलिंग, अपने इमोशंस को इतना शो नहीं करते हैं
0: जी,
1: या कम बोलते हैं। तो उसके बीच में एक पर्सनालिटी टाइप होता है, उसको कहते हैं एम्बिवर्ट।
0: ओके,
1: मतलब दोनों का बैलेंस रखकर चलने वाले, जहां जरूरत है वहां चुप रहने वाले, जहां जरूरत है वहां एक्सप्रेस करने वाले, उसको कहते हैं एम्बिवर्ट। तो हमारा लक्ष्य ये होता है कि हम बीच में चले, मॉडरेट रहे, है ना,
0: मॉडरेशन, बैलेंस कहीं ना कहीं उसमें आ जाता है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो जैसा आपने कहा दीदी, बहुत बार हम करते हैं मगर हम उसका नाम नहीं जानते, तो हम उसे कह नहीं पाते कि ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं या ये महसूस कर रहे हैं। तो एक और सवाल है मेरा यहाँ पर कि आपने बताया एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट्स अलग अलग होता है, जैसे मान लीजिए कोई, आप एक रेटिंग सिस्टम की भी हमने बात की थी इमोशन की, यूजुअली वैसे तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, मतलब कई बार ये माना जाता है कि जो लड़के होते हैं वो उतने एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं अपने इमोशंस को लेके, लड़कियां ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाती हैं। तो मान लीजिए कोई बहुत रो रहे हैं या बहुत परेशान है, तो समझ में आता है कि हाँ, इसकी रेटिंग शायद 8 पे होगी या 9 पे होगी या 7 पे होगी उस इमोशन की जो वो फील कर रहे हैं। पर वहीं पे मान लीजिए एक लड़का है जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, जो सीधे खड़ा है, बहुत पेनफुल सिचुएशन है लेकिन वो सीधे खड़ा है, तो उसमें वो किस अनुसार उसको रेट करे? या सामने वाले को तो कई बार पता भी नहीं चलता कि उसके अंदर किस लेवल तक वो पेन एक्सपीरियंस कर रहे हैं।
1: राइट, इसको हम एक शब्द से समझ सकते हैं, उसको कहते हैं रेजिलियंस। हर एक की जो टॉलरेंस की, सहन करने की शक्ति होती है वो अलग अलग होती है। कुछ लोग थोड़ा सा कट जाए, थोड़ा सा लग जाए, बहुत ज्यादा उसको फील करते हैं और शो करते हैं, बट कुछ लोग उसे सहन कर जाते हैं, उनकी सहन करने की शक्ति कुछ ज्यादा होती है। तो वैसे ही हमारे जो इमोशनल एक्सप्रेशंस है या इमोशनल मैच्योरिटी है वो हर किसी के अलग अलग लेवल पर हो सकती है। किसी को किसी बात के लिए हर्ट हो सकता है, उसी बात को दूसरा व्यक्ति बोल सकता है तो नॉर्मल है, इसमें क्या बड़ी बात है, या फिर उस चीज के प्रति हमारा नजरिया कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, बॉस और उसका एम्प्लॉय, अगर बॉस ने डांटा तो एम्प्लॉय को फील होगा ना, जरूर
0: जी
1: जरूर होगा, मैं तो ठीक था, मैंने तो ठीक किया था, फिर भी डांटा। जब वो एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय के पास जाता है और बोलता है कि देखो आज मुझे बॉस ने बिना वजह डांट लिया, तो दूसरा एम्प्लॉय क्या कहेगा, अरे इसमें क्या बड़ी बात है, वो तो सबको डांटते हैं, जब उनको स्ट्रेस होता है वो सबको डांटते हैं, और तुम्हें बिना वजह नहीं डांटाऊंगा, कोई कारण होगा, उनके माइंड में कोई ऐसी बात चल रही होगी, आपसे उनकी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होगी इसलिए आपको डांटा होगा। और फिर वो दूसरा एम्प्लॉय बोलता है कि अरे घर में नहीं क्या माँ बाप अपने डांटते हैं, यहाँ बॉस भी वैसे ही है, उनको भी वैसे ही लो, उनकी डांट का कोई मतलब नहीं होता है, वो मन में नहीं रखते। जब ऐसी समझ मिलती है तो वही डांट उसको लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोनों की जो इमोशनल मैच्योरिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, परसेप्शन है, किसी चीज को देखने का नजरिया है, वो अलग अलग होने की वजह से प्रतिक्रिया, इमोशनल एक्सप्रेशन अलग अलग हो जाता है। कुछ बच्चे होते हैं, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी, एक ही माँ बाप के दो या चार बच्चे होते हैं, एक बच्चा रिबेलियस हो जाता है कि मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत मारा है या एक बार मारा है, इसलिए वो रिबेलियस हो जाता है और वो प्रतिकार करने लगता है माँ बाप को। लेकिन दूसरा बच्चा कहता है अरे माँ बाप है, उन्होंने जन्म दिया है, हमारी अच्छाई के लिए तो उन्होंने मारा होगा ना, तो वो उसे पॉजिटिवली लेता है। तो ये हर एक की क्या मैं कहें, जेनेटिक्स है, एनवायरमेंट है, अंडरस्टैंडिंग है
0: जी।
1: सो हमें इसमें लेना क्या है, ये सारे एग्जाम्पल्स सामने रखने का एक ही पर्पस है कि अगर हमें इमोशनल मैच्योरिटी के लेवल पर पहुंचना है तो हमें रिस्पॉन्स करते समय रिएक्टिव नहीं होना है, लेकिन प्रोएक्टिव होके पॉजिटिवली उस चीज के दूसरे साइड को देखते हुए उसे उसी तरह से रिस्पॉन्ड करना है। प्रोएक्टिव होना है, रिएक्टिव नहीं। रिएक्शन का मतलब है आपने किया, रिफ्लेक्स में मैंने भी कर दिया, नहीं। प्रोएक्टिव का मतलब अच्छा आपने मुझे ये कहा, ओके इसका एक्सप्लेनेशन ये है और इस वजह से ऐसा हुआ, सो मैंने उसका जवाब दे दिया और मैं पीसफुल रही। तो ये है इमोशनल मैच्योरिटी का लेवल। अच्छा एपथी की बात मैं अभी और कहूंगी, एपथी मैंने कंप्लीट नहीं किया है बट आगे आप पूछ सकते हैं।
0: तो एक तो ये एस्पेक्ट हो गया जो आपने बताया दीदी कि किस प्रकार से एक व्यक्ति ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, कम हो रहा है सेम सिचुएशन में। अगर एक एक्सप्रेस ज्यादा कर रहा है, इफेक्ट दोनों बराबर हो रहे हैं लेकिन एक एक्सप्रेस ज्यादा कर रहा है और एक एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, एक रो दे रहा है, आंखों से आंसू ला दे रहा है, पेन 8 नंबर पे है मे बी उसका, दूसरे वाला का भी 8 नंबर पे है पर वो आंखों में आंसू नहीं ला पा रहा, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो दोनों में से क्या इमोशन को बेटर हैंडल कर कौन रहा है, या फिर वो 8 नंबर का इमोशन आइडेंटिफाई करना क्या जो आंसू आ रहे हैं उसके लिए आसान है, जो रो नहीं रहा उसको तो लगेगा ही नहीं कि इतना पेन, सामने वाले को तो एटलीस्ट नहीं पता चलेगा कि इस लेवल पे वो पेन एक्सपीरियंस कर रहा है।
1: हर एक की पेन बेरिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है, किसी का तरीका बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होने का होता है और किसी का ओके ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सप्रेस न करते हुए वो अंदर ही अंदर हैंडल करते हैं। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये चेंज हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि फलाना सप्रेस कर रहा है अगर वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है तो, और एक व्यक्ति बहुत ज्यादा एक्सप्रेस कर रहा है तो वो सही है, ऐसा नहीं कह सकते हैं।
0: okay.
1: हर एक का अपने अपने इमोशंस को हैंडल करने का अलग अलग तरीका हो सकता है, बट साइकोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कहें तो सही जगह पर सही तरीके से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की खुद को ट्रेनिंग देना ये एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है।
0: ओके, आशीन दीदी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें?
2: मैं एग्री करता हूँ कल्पना जी की इस बात से कि हर व्यक्ति उसी अमाउंट ऑफ स्टिमुलस के लिए अलग अलग तरीके से रेस्पॉन्ड कर सकता है, और कल्पना जी ने बहुत सुंदर तरीके से ये शब्द का उपयोग किया कि हम रिएक्ट नहीं करें। और मैं समझता हूँ रेस्पॉन्ड एक बहुत ही सुंदर शब्द है अंग्रेजी में, हम हिंदी भाषा में शायद मैं इसको सही तरीके से तर्जुमा ना कर पाऊं। क्रिया के लिए प्रतिक्रिया कर देना, रिएक्ट कर देना हो सकता है, बट रेस्पॉन्ड करने का अर्थ ये है कि आप तुरंत प्रतिक्रिया पे नहीं आते, आप बीच में सोच समझ करके रिस्पॉन्ड करने के लिए सोच सकते हैं। और जैसा कल्पना जी कह रहे थे कि हाँ हो सकता है मेरे लिए ये जो दर्द आज मैं महसूस कर रहा हूँ बहुत ज्यादा दर्द ना हो, चीज को मैं बेहतर हैंडल कर पा रहा हूँ, हो सकता है मैं उस प्रकार के दर्द को अनुभव कर चुका हूँ पहले, कि मैं उस चीज को पहले हैंडल कर चुका हूँ, आज उसी प्रकार के सिचुएशन शायद जैसे आप कह रहे थे कि ये 10 में से 8 नंबर का ये दर्द का माप है और वो माप अभी वापस मेरे पास है, बट क्योंकि मैंने 9, 10 में से 9 डिग्री तक का पेन झेला हुआ है तो शायद मैं इस 8 के लिए इतना ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा या उस तरीके से मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, या फिर मैं बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करना समझ पा रहा हूँ। और एक व्यक्ति जो पहली बार लाइफ के उस सिचुएशन में है, उस प्रकार के दर्द को महसूस कर रहा है, तो वो सकम करेगा, उसके लिए रोना या उस दर्द को सहन नहीं कर पाना, चिल्लाना या अलग अलग तरीके से वो उस दर्द को प्रकट करने की जो तैयारियां कर रहा है या वो जो चीजें प्रतिक्रिया के रूप में दिखाई दे रही हैं, वो हो सकते हैं वो अलग हों। और जैसे कल्पना जी कह रहे थे, मैं इस बात से 100% वाबस्ता हूँ कि हर एक इंसान अलग है, मेरी दर्द को सहन करने की क्षमता अलग हो सकती है, और मैं सिर्फ दर्द की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई आपका मजाक उड़ाए समझ ले, कई लोग होते हैं वो उस मजाक को भी मजाक में ले लेते हैं, वो अपने ऊपर भी मजाक करना जानते हैं, और कई लोग होते हैं उनको अगर किसी ने उनके लिए कुछ भी कह दिया, आज ये कह दिया कि ओहो क्या कपड़े पहन के आए हो, कहां से आए हो, इसी प्लेनेट से हो क्या, इतना भी अगर कोई कह दे तो उनका पूरा दिन का मूड खराब हो जाता है, वो शायद आधे दिन की छुट्टी लेके वापस घर चले जाए। और कई लोग ऐसे होंगे वो बोले अरे कपड़े से क्या लेना देना, मेरे काम से मतलब रखना तुम, ये भी कहने वाले लोग हो सकते हैं। चीज वही है मगर उस चीज के प्रति हमारी संवेदनाएं कैसी हो सकती हैं उसमें अंतर है, और इस यूनिकनेस को समझने की जरूरत है कि हर व्यक्ति का एक जेनेटिक बिल्ड, जैसे कल्पना जी पहले भी कह रहे थे कि जिस तरीके से परवरिश हमारी हुई है, जिस वातावरण में हम पले बड़े हैं, हमारे शारीरिक मानसिक संरचनाएं जैसी हुई है, वो सब कुछ इन चीजों पर असर करती हैं, और इसलिए हम ये कह नहीं सकते कि सब लोगों को उसी एक पैमाने से नापा जाए।
0: बिल्कुल, और ये बड़ी सुंदर सी बात है, इसलिए हर एक को अपने को समझना जरूरी है, एक कैटेगरी में सबको बांधा नहीं जा सकता, जनरलाइज नहीं किया जा सकता, भावनाओं में भी यही बात है।
2: और कल्पना जी इस बात से एग्री करेंगी कि जब वो एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते साइकोलॉजी में जब लोग आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं उनके पास, काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं, तो वो हर मरीज को एक इंडिविजुअल की तरह देखती हैं, वो शायद ऐसा नहीं देखती होंगी कि पहले जैसा मरीज जैसा ये क्यों नहीं है, ऐसा वो नहीं सोचते, वो हर
0: सेम सिचुएशन में हो लेकिन
2: सेम सिचुएशन में क्यों ना हो।
0: बहुत सुंदर बात है, और मुझे लगता है बहुत कुछ जानना है मुझे आप दोनों से, क्योंकि आज हम बहुत सारे केसेस देखते हैं, बच्चों में देखते हैं कि एक इमोशन इतना ओवरवेलमिंग हो जाता है, संभाल नहीं पाते, गलत स्टेप भी ले लेते हैं, तो वहाँ कैसे इमोशंस को हम बैलेंस कर रहे हैं या समझ रहे हैं वो भी जानेंगे, एपैथी क्या है और उसको उसके बारे में भी जानेंगे, और इस तरह से अपनी भावनाओं को और बेहतर समझने का हम प्रयास करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल क्योंकि इस एपिसोड में हमें यहीं तक का समय मिल रहा है, इजाज़त लेने का समय आ रहा है, तो अंत में कल्पना जी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर हम थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन कर सकें, खुद को बेहतर समझ सकें, एक मोमेंट निकाल सकें, तो उसमें क्या मेडिटेशन प्रैक्टिस करें जो हमें हेल्प करे।
1: जी बिल्कुल, सो मैं अनुरोध करूँगी अपने श्रोताओं से कि वो जहाँ कहीं भी हैं केवल 2 मिनट के लिए समय दे अपने आप को और रिलैक्स होकर किसी निश्चित स्थान पर बैठ जाए, गहरी और लंबी सांसें ले अपने सांसों को भीतर जाते हुए बाहर आते हुए अच्छी तरह से महसूस करें, अपने आप से जुड़ाव महसूस करें, हर सांस के साथ स्वयं को फील करें, थोड़ा सा भीतर जाते हुए महसूस करें कि इस समय मेरे विचार क्या है और मेरी भावनाएं किस तरह की है। अब जब मुझे पता चला है कि मेरे विचार ये है और मेरी ये भावना है, तो मैं थोड़ा सा उन्हें टर्न करूंगा या करूंगी पॉजिटिविटी की तरफ, उस फ्लो को मैं ले जाऊंगी कुछ विचारों के साथ। गहरी और लंबी सांस लेते हुए अपने मन में विचार दोहराएं कि मैं खुश हूं, मैं संतुष्ट हूं, मैं शक्तिशाली हूं। इस विचार को मन में 3 बार दोहराएं, मैं खुश हूं, मैं संतुष्ट हूं, मैं शक्तिशाली हूं। जैसे ही मन इस बात को मानने लगेगा, मुझे खुशी का अनुभव भीतर से होने लगेगा, मेरी भावनाएं खुशी का अनुभव करने लगेगी, संतुष्टता का अनुभव, शक्ति का अनुभव। गहरी और लंबी और अपने आप से वादा करें, मैं अपने विचार और अपनी भावनाओं को समझने का प्रयास सतत करता रहूंगा। मेरे विचार, मेरी भावनाएं समझने के साथ साथ मैं दूसरों के विचार और उनकी भावनाओं को भी समझने का प्रयास करूंगा। मैं लोगों को बदलने से पहले उन्हें समझने का प्रयास करूंगा। गहरी और लंबी सांस ले और मन में विचार करें, मैं सुनूंगा, समझूंगा और औरों को सम्मान भी दूंगा। फिर से एक बार अपने आप को याद दिलाए, मैं खुश हूं, संतुष्ट हूं, शक्तिशाली हूं। इन विचारों को बीच बीच में दोहराते रहे, अपनी भावनाओं को महसूस करते रहे। धन्यवाद।
0: मुझे लगता है ये जो आपने विचार दिए, इन्हें हम दीवार पर कहीं लगा भी सकते हैं लिखकर, ताकि वो बार बार हमें याद आते रहे और वो अनुभव हम बार बार करते रहे जीवन में, क्योंकि एक बार से नहीं होगा, प्रयास लगातार करना होगा। फिलहाल लेते हैं इजाजत और अपने दोनों एक्सपर्ट्स को करते हैं हम धन्यवाद कि हमें आपने गाइड किया और बहुत सिंपल तरीके से जो हम कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है और किस प्रकार से अपने आप को अलग समझना है, किसी और के साथ कंपेयर नहीं करना है, ये भी हमने समझा आज। तो इसी के साथ जिंदगी को कहते हैं कि लव यू जिंदगी, और मिलेंगे लव यू जिंदगी के अगले एपिसोड में फिर से एक बार दूसरे सवाल और जवाबों के साथ। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स। जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूँ विदाउट क्रिएटिंग इट। पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है। नहीं, मुझे तो ऐसे गुस्सा करना ही है, कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: वंदे मातरम गीत देश के क्रांतिकारियों का मुख्य प्रेरणा स्रोत था। ये आजाद हिंद फौज के सैनिकों का भी मूल मंत्र था। वही आजाद हिंद फौज जिसकी नींव भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के सबसे महान नेताओं और सूत्रधारों में से एक रास बिहारी बोस ने की थी, जिसकी कमान बाद में सुभाष चंद्र बोस के हाथों में चली गई। कहते हैं कि अगर अरबिंदो घोष को यंग इंडिया का मैजनी माना जाता है, तो रास बिहारी बोस को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का कैवूर कहना गलत नहीं होगा। उन्होंने विदेशी धरती पर रहकर भारतीय राष्ट्रवाद की लौ जलाए रखी। एक गीत एक नारा, राष्ट्रगीत हमारा की आज की कड़ी में हम सुनेंगे भारत के इन्हीं दिलेर क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की वीरता एवं जाबाजी की कहानी।
1: दीदी, ये वही क्रांतिकारी तो नहीं जो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमले के मुख्य सूत्रधार थे?
2: बिल्कुल सही पहचाना बन्नू, तुम्हें याद रहा? ये बड़ी बात है।
1: हाँ दीदी, भिकाजी कामा और कुछ अन्य क्रांतिकारियों के साहसिक किस्से सुनाते समय आपने इनका जिक्र किया था।
2: दरअसल रास बिहारी बोस तभी चर्चा में आए थे जब उनका नाम भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम से हमले में आया था।
0: बड़ी शानदार योजना बनाई गई थी क्रांतिकारियों द्वारा चंदन नगर में हुई उस बैठक में। हार्डिंग पर हमले का सुझाव देने वाले कोई और नहीं, रास बिहारी के निडर दोस्त श्रीश घोष थे। लेकिन बैठक में मौजूद कुछ लोगों को ये अव्यवहारिक लगा।
3: मुझे शंका है कि हम हार्डिंग पर बम से हमला कर पाएंगे, उसके आसपास बहुत सुरक्षा रहती है।
4: हम तैयार और दृढ़ हैं, लेकिन हमारी दो शर्तें हैं। हमें शक्तिशाली बम दिया जाए और पक्के क्रांतिकारी चरित्र वाला एक युवा मिले।
0: रास बिहारी की दोनों शर्तें पूरी की गईं। 1911 की दिवाली पर चारों ओर पटाखों की आवाज के बीच पहली रिहर्सल भी हुई। बम रास बिहारी की उम्मीद के मुताबिक फटे, लेकिन उन्हें एक साल से अधिक इंतजार करना पड़ा। फिर आया 22 दिसंबर 1912 का दिन। रास बिहारी बोस अपनी युवा गर्लफ्रेंड को टोंगा में बिठाकर चांदनी चौक की सड़कों पर ले गए, जहां अगले दिन हमले की योजना बनी थी।
4: बसंत, तुम चांदनी चौक में पंजाब नेशनल बैंक के पास क्लॉक टावर वाले जगह पर रहोगे, महिलाओं के बीच, महिलाओं के वेश में। बम तभी फेंकना जब वायसराय का हाथी ठीक सामने हो। अगर तुम चूकोगे तो मैं और अवध बिहारी हमले को अंजाम देंगे।
5: जी गुरुजी।
6: तुम्हें डर तो नहीं लग रहा बसंत?
5: नहीं, डर किस बात का, महीनों अभ्यास किया है, आज के दिन का ही तो इंतजार था।
0: वायसराय और उनकी पत्नी हाथी पर सवार गली में प्रवेश करते हैं। महिलाएं जुलूस के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। बसंत, जो कि एक लड़की के भेष में था, वो भी उन्हीं के बीच उपस्थित था। तभी अचानक रास बिहारी का ध्यान आता है और वो अपनी शंका अवध बिहारी से साझा करते हैं।
4: देहरादून में सिगरेट के डिब्बे में बम फेंकने की जो प्रैक्टिस की गई थी, यह काम नहीं आएगी।
6: क्यों, ऐसा क्या हो गया?
4: यह हमें पहले जमीन से हाथी पर बैठे टारगेट तक की ऊंचाई का अंदाजा लगाना होगा। वसंत, तुम अपना कपड़ा बदल लो और नीचे आ जाओ।
0: कहने को तो लॉर्ड हार्डिंग पर हमले के पूरे ऑपरेशन की योजना बहुत चतुराई से बनाई गई थी, लेकिन 23 दिसंबर 1912 का ये हमला दुर्भाग्य से विफल रहा। बसंत बिल्डिंग के नीचे गया और फुटपाथ पर भीड़ में घुल मिल गया, लेकिन बम अवध बिहारी ने फेंके। इसमें वॉइसरॉय पूरी तरह घायल हो गए। उन्हें पास के एक डॉक्टर एस सी सेन के पास ले जाया गया। रास बिहारी तो बच निकले, मगर हत्या की नाकाम कोशिश के बाद बोस के 5 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली षड्यंत्र मामले में उन पर मुकदमा चला। उनमें से एक को उम्र कैद की सजा हुई, बाकी अवध बिहारी गिरफ्तार समेत 4 क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। जबकि बोस भारत में क्रांतिकारियों के बीच मशहूर हो गए। उनके समकालीन क्रांतिकारी साथी बोस के बारे में कुछ यूं बताते हैं।
6: उनके जैसा निडर तो देखा ही नहीं। वायसराय पर हमला करने के बाद वो रात को ही ट्रेन से देहरादून लौट गए। अगले दिन दफ्तर में ऐसे काम पर लग गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्होंने वायसराय पर हुए हमले की निंदा करने के लिए देहरादून के नागरिकों की एक बैठक भी बुलाई। इस वजह से किसी को अंदाजा भी नहीं हुआ कि इस बेहद अहम क्रांतिकारी कार्रवाई की योजना बनाने और उसे अंजाम देने वाले वही थे।
7: मुझे 1908 की घटना याद आ रही है। उन्हें अलीपुर बम केस में फंसाया गया था, जेल भी भेज दिया गया, लेकिन वहां से रिहा होते ही फिर से वे क्रांतिकारियों के साथ गुप्त रूप में संपर्क में रहने लगे।
1: दीदी, भिकाजी कामा ने भी रास बिहारी जी से बम और हथियार इकट्ठा करने को कहा था ना?
2: हाँ, दरअसल रास बिहारी बोस एक बहुत ही काबिल क्रांतिकारी नेता थे। स्कूली दिनों से उनकी दिलचस्पी क्रांतिकारी गतिविधियों में रहने लगी थी। मैट्रिक पास करने से पहले ही देसी बम बनाना सीख लिया था। ऐसे में जब वे स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए तो उनकी भूमिका बढ़ गई। उन पर लेखक, कवि और विचारक बंकिम चंद्र चैटर्जी के क्रांतिकारी उपन्यास आनंद मठ का काफी प्रभाव था।
0: आनंद मठ के अलावा रास बिहारी ने मशहूर बंगाली कवि नवीन सेन की देशभक्तिपूर्ण कविताओं का संग्रह प्लासीर युद्ध भी पढ़ा। समय के साथ उन्होंने और भी क्रांतिकारियों की किताबें पढ़ी। उन्होंने वक्ता और क्रांतिकारी सुरेंद्रनाथ बनर्जी और स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवादी भाषण पढ़े। चंदन नगर में उनके शिक्षक चारू चंद्र, जो क्रांतिकारी विचारों वाले व्यक्ति थे, उन्होंने रास बिहारी को क्रांतिकारी रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। हालांकि वो कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए।
8: मैंने फोर्ट विलियम में तुम्हारी नौकरी के लिए बात कर ली, तुम वहां चले जाओ।
4: जी, जैसा आप कहे।
0: रास बिहारी फोर्ट विलियम चले गए, लेकिन वहां का माहौल उन्हें रास नहीं आ रहा था। पिताजी की भी यही इच्छा थी कि उनका तबादला शिमला में सरकारी प्रेस में हो जाए। इस तरह उन्हें प्रेस में कॉपी होल्डर नियुक्त किया गया। रास बिहारी ने अंग्रेजी और टाइपराइटिंग में महारत हासिल कर ली। कुछ समय बाद वो कसौली के पाश्चर इंस्टीट्यूट चले गए, लेकिन ये नौकरियां उन्हें रास नहीं आ रही थी। वो खुश नहीं थे।
4: मुझे ये काम अच्छे नहीं लग रहे, क्या करूं, उलझन में हूं।
5: आप देहरादून क्यों नहीं जाते? वहां प्रथमनाथ टैगोर के घर पर गार्जियन ट्यूटर की जगह खाली है, मैं बात करता हूं।
4: जरूर करे बात मेरे लिए।
0: इस तरह वो एक ट्यूटर के तौर पर काम करने लगे। फिर उन्हें देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में क्लर्क की नौकरी मिली, जहां कड़ी मेहनत से वो हेड क्लर्क बन गए।
2: जानती हो बन्नो, बोस का मन नौकरी में क्यों नहीं लग रहा था?
1: क्यों दीदी?
2: वजह थी 1905 में हुआ बंगाल का बंटवारा और उसके बाद हुई घटनाएं। तब रास बिहारी बोस अपनी किशोर अवस्था में थे। बंटवारे का कारण प्रशासनिक बताया गया था, लेकिन असल में वो धार्मिक आधार पर किया गया प्रतीत हो रहा था। दूसरे बंगाली हिंदू राष्ट्रवादियों की तरह बोस इससे बहुत नाराज थे।
0: भारत में अंग्रेजों के खिलाफ विरोध का मुख्य केंद्र बंगाल था। बंगाली हिंदुओं को लगा कि अंग्रेज उनकी ताकत को कमजोर करने के लिए ये बंटवारा कर रहे हैं। मुसलमानों ने इस कदम का काफी समर्थन किया। पूरे बंगाल में राष्ट्रवादी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। द न्यू एशिया ऑफ रास बिहारी बोस, इंडिया जापान एंड द लिमिट्स ऑफ द इंटरनेशनल 1912 से 1945 के लेखक जोसेफ मैकक्वेड के अनुसार,
9: अहिंसक गुट ने आर्थिक बहिष्कार के जरिए ब्रिटिश शासन को कमजोर करने की कोशिश की जबकि एक ज्यादा कठोर गुट ने ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करने की कोशिश की।
0: रास बिहारी बोस गदर क्रांति के मुख्य आयोजकों में से भी एक थे। मैकक्वेड अपनी एक किताब में लिखते हैं,
9: जब अंग्रेज प्रथम विश्व युद्ध में उलझे हुए थे तब रास बिहारी बोस ने 1857 के विद्रोह जैसा ही एक विद्रोह भड़काने की योजना बनाई। तब ब्रिटिश शासकों के अधीन काम करने वाले भारतीय सैनिकों ने बगावत कर दी थी। पहले विद्रोह शुरू करने की तारीख 21 फरवरी 1915 तय की गई थी। स्थान था लाहौर। 1914 तक लगभग 4000 गदर आंदोलनकारी हथियार और पैसे लेकर अमेरिका, कनाडा और सुदूर पूर्व से भारत आ चुके थे, लेकिन उनके पास कोई सही नेता नहीं था। तब रास बिहारी बोस ने उनका नेतृत्व एवं मार्गदर्शन किया। जनवरी 1915 के मध्य में

0: रास बिहारी ने बनारस में एक निजी बैठक में आगामी क्रांति को लेकर पहली बार चर्चा की।
1: यूरोप में युद्ध शुरू हो चुका है। देश में केवल 30,000 सैनिक ही बचे हैं, जिनमें से ज्यादातर भारतीय हैं और उनकी वफादारी आसानी से जीती जा सकती है। योजना यह है कि भरोसेमंद गदर आंदोलनकारियों को सेना की छावनियों में भेजा जाए। देशभक्तों की क्रांतिकारी कार्रवाई के बिना ब्रिटिश सरकार नहीं मानेगी।
2: आप सही कह रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ।
3: राज बिहारी द्वारा बनाई गई योजना के अनुरूप खैरों, फिरोजपुर और लाहौर में कुछ रिहर्सल भी आयोजित किए गए, लेकिन दुर्भाग्य से इस योजना को अंजाम नहीं दिया जा सका। वो जल्द ही विफल हो गई। यूं कहें कि ब्रिटिश सरकार ने संघर्ष को शुरू होने से पहले ही कुचल दिया। एस्टन और कवाबे अपनी किताब में लिखते हैं,
4: जैसे ही जासूसों ने आंदोलन में घुसपैठ की, अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों से हथियार छीनना शुरू कर दिया। बिना डरे बोस ने विद्रोह शुरू करने की तारीख 19 फरवरी कर दी, लेकिन काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन के जरिए इस योजना को दबा दिया गया। कई क्रांतिकारियों को फांसी दी गई, जेल में डाला गया और यहां तक कि देश निकाला दे दिया गया।
3: ब्रिटिश अधिकारियों के पीछे पड़ने और सिर पर इनाम घोषित होने के बाद राज बिहारी बोस ने तय किया कि वो भारत में सुरक्षित नहीं है। 12 मई 1915 को राज बिहारी कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के रिश्तेदार का भेष बदलकर कोलकाता बंदरगाह से जापान के लिए रवाना हो गए। इस दौरान वो गदर पार्टी के हैरम लाल गुप्ता और भगवान सिंह से मिले।
1: मैं एक भगोड़े की तरह रहकर थक चुका हूँ। 17 बार अपना ठिकाना बदला है।
5: आपको और हैरम लाल को जापान से वापस भेजने की कोशिश करता हूँ।
3: भले ही 1902 से 1923 के बीच जापान ब्रिटेन का सहयोगी था, बावजूद इसके उसने उन क्रांतिकारियों के लिए अपने दरवाजे खुले रखे थे जो भारत में ब्रिटिश शासन को खत्म करना चाहते थे। पता चला कि हैरम लाल अमेरिका भाग गए और राज बिहारी ने तोसिको सोमा से शादी करके जापान की नागरिकता ले ली।
6: बन्नो, राज बिहारी बोस ने ही जापान में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और बाद में आजाद हिंद फौज की नींव रखी, जिसकी कमान बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने संभाली। हालांकि इस संगठन का प्रमुख स्लोगन वंदे मातरम ही रहा। बंगाल के सभी क्रांतिकारियों की तरह राज बिहारी बोस के लिए ये केवल एक गीत नहीं था, बल्कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह का नारा था।
3: जापान में 3 दशकों से ज्यादा समय तक निर्वासित रहने के दौरान राज बिहारी भारत की आजादी के लिए लगातार काम करते रहे। वहां उन्होंने एक भारतीय बुद्धिजीवी, दार्शनिक और राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर ऊंचा मुकाम हासिल किया। उसकी मिसाल आज भी नहीं मिलती। उन्होंने भारतीय संस्कृति और राष्ट्रवादी प्रतीकों को बढ़ावा दिया। राज बिहारी का मानना था कि INA उपमहाद्वीप के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एकता के प्रतीक के तौर पर काम करेगी, ताकि वो ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का मौका पा सके। असल में INA राज बिहारी बोस के आजादी के लिए उनके सशस्त्र संघर्ष के 30 साल की लंबी कोशिश का परिणाम था। वो कहते थे,
1: मैं एक व्यवहारिक और राष्ट्रवादी सोच रखता हूँ। मुझे लगता है कि आजादी की लड़ाई में एकता और एकजुट रुख की जरूरत होती है, इसीलिए मैंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। यह संगठन दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया में भारत की आजादी की लड़ाई के लिए जनमत और समर्थन जुटाने में एक असरदार और गतिशील संस्था के रूप में काम करेगा। वैसे ही वंदे मातरम महज एक गीत नहीं, बल्कि भारतीय अस्मिता का बड़ा प्रतीक है। इसमें प्रवासी भारतीयों को एकजुट करने की क्षमता है।
3: राज बिहारी बोस का जन्म 25 मई 1886 को पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में हुआ था। शुरुआती पढ़ाई लिखाई दादा कालीचरण की देखरेख में सुबलदाहा में हुई। उनका निधन 1945 में हुआ, यानी 1947 में ब्रिटिश शासन से भारत की आजादी मिलने से ठीक पहले। ये एक ऐसी जीत थी जिसे हासिल करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। एक गीत एक नारा राष्ट्रगीत हमारा के अगले एपिसोड में मिलेंगे एक और वीर क्रांतिकारी से। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मधुबन।
7: अभी बजे हैं शाम के 7। अगले इस एक मिनट में मन को रखिए प्रभु के साथ।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते हैं बहुत खुशी मिलता है, क्योंकि अपनापन होता है और हमारा लक्ष्य के मानव हित में जनहित में रेडियो मधुबन हमेशा तत्पर रहता है। तो आज ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन आपका सेवा में उपस्थित है। आज स्टूडियो से मुखातित होने के लिए हमारे साथ मेहमान श्रीमान जी उपस्थित है, जो कि भोपाल राम पुरोहित जी, जो कि पर्यावरण का ऊपर में आज एक जो उनका पास है ना ज्यादा ना कम जो है वो सब तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। पिछला एपिसोड में हम बहुत कुछ इसका बारे में आप सबका पास रखे हैं और हम आपस में भी बात कर रहे थे, वो चीज आपका पास पहुंचे ये हमारा भावना है। तो आज इस कार्यक्रम को सजाने के लिए श्रीमान जी को स्वागत करते हैं। सर जी, आपको स्वागत करते रेडियो मधुबन परिवार में और स्टूडियो में। चलिए, आप जो पर्यावरण का टॉपिक जब एपिसोड चल रहा है तो आज का एपिसोड में आपको पर्यावरण के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा और जब आत्मसात करेंगे तब फायदा होगा। आत्मसात तो कर रहे होंगे, फिर भी हमारा जो भावना है भाव है आप तक पहुंचे। तो सर जी, आपको स्वागत करते हैं। आज हमारे श्रोता मित्र को बताइए क्या आज का पर्यावरण को लेकर खजाना खोलेंगे।
1: पर्यावरण के बारे में रेडियो मधुबन पर जो चर्चा की जा रही है, अगले एपिसोड्स के लगातार कॉन्टेक्स्ट में यह बात रखना चाहूँगा कि जो हमारा पर्यावरण है वो हमको किस तरह से प्रभावित करता है। अर्थ ये है, प्रभाव का मतलब पर्यावरण का अच्छा प्रभाव भी है, पर्यावरण हमको बहुत कुछ देता भी है और मानवकृत जो अनियमितताएं हैं जो नहीं होना चाहिए या जिसकी अति हो गई है, इससे इस पर्यावरण में जो हमारा सिर्फ फायदा ही करना चाहता है कई तरह के असंतुलन से दुष्प्रभाव उत्पन्न हो गए। तो हमने जो प्रकृति का अतिक्रमण किया है तो प्रकृति तो हमें वही लौटाएगी। जैसे कल पवित्रा भाई ने अगले एपिसोड में एक बात बताई थी कि प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है। जी हाँ, बहुत कुछ देती है, लेकिन हम जैसा बोएंगे वैसा ही तो मिलेगा। एक आम की गुठली आपने कभी बोई इसी पर्यावरण में, आपने सींचा उसको, अपनी भावनाओं से सींचा, आपके योग से सींचा और फिर उसमें कुछ वर्षों के बाद में वो आम का पेड़ आम के फलों से लकदक होकर के झुक जाता है और वो झुक कर ये कहता है कि आपका ये जो बोया हुआ था जो आम था उसका प्रतिफल आपके सामने है, कई गुना होकर के वो आपको देना चाहता है। इसी प्रकार से अगर हमने कोई बुराई बोई है तो बुराई भी वैसा ही देगी। तो आप सोच लीजिए, आप समझ लीजिए, अपने सभी संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग कीजिए। उपयोग विवेकपूर्ण करना होगा, जितना आवश्यक है उतना करना पड़ेगा, तब जाकर के ये प्रकृति हमें जो चाहते हैं वो हमें अच्छा देंगे, खूब अच्छा लौटाएगी। और अगर हमने बुरा दे दिया तो फिर आप समझ सकते हैं कि वो हमें क्या लौटाएगी, जो दिया है वही लौटने वाला।
0: लेकिन अति सहज लोग क्या सोचते हैं, भाई कौन ये पेड़ लगाएगा, वो पानी दो फिर 6 साल का बाद आएगा, कौन देखता 6 साल में बचेगी कि नहीं। अभी मार्केट में जाएंगे तो भाई अभी भी हर सीजन में पैसा है, दे दो लेकर आ जाएंगे, ऐसे जो भावना आज के समय में।

0: कार्य है, इसको सोच समझ कर करिए।
1: विवेकपूर्ण प्रकृति का विवेक उपयोग कीजिए, आपको निश्चित रूप से बहुत सुंदर, बहुत अच्छे और मीठे फल मिलेंगे, मीठे मीठे फल मिलेंगे, मधुर फल मिलेंगे। भयावहता की मैं बात करूं कि ये किस तरह से हमारा जो असंतुलन है या हमारा हम विवेकपूर्ण उपयोग जब नहीं करते संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का, तब कहाँ दिक्कत आती है। ये जो कुछ प्रदूषक होते हैं वो प्राथमिक होते हैं, उसको साइंटिफिक टर्म में हमको ले जाते हैं, जैसे वाहनों का धुआं निकलता है। भाई ये बात तो हम पहले ही कह चुके हैं कि विकास के लिए कुछ तो यंत्रों का प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन हम त्याग कितना कर सके उतना करना, इसके लिए ये बात हम आपकी इसकी भयावहता बताते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, अब आप समझ सकते हैं कि वो कितना नुकसान कर, ये स्रोत से उत्पन्न होते हैं, जो भी जितने भी प्राथमिक प्रदूषक है ये किसी सोर्स से पैदा होते हैं। उद्योगों का धुआं, इंडस्ट्री से जितना धुआं निकल रहा है, सभी साउंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सभी तो एक सीमा तक तो होना चाहिए। आप करो उसका उपयोग ना नहीं है, इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करना पड़ेगा, लेकिन उसका एक तो उसके प्रदूषण को कैसे रोका जाए, उसके भी सिस्टम है। कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, आसपास के लोगों की क्या हालत है। जैसे आपने अगले एपिसोड में पवित्रा भाई ने बात बताई थी, सिलिकोसिस बहुत हो रहा है, सरकार ने सिलिकोसिस के लिए खूब कार्यक्रम चलाए। भाई जहाँ माइनिंग होती है, जहाँ पत्थर को काटा जाता है, उसका जो कण है सिलिकोसिस, और वास्तव में उससे काफी लोग अपनी उम्र से बहुत पहले ही भगवान को प्यारे हो जाते हैं। तो वो जो सिलिकोसिस है वो क्या है, प्राथमिक प्रदूषण, उसका परिवार तो बेहाल हो जाता है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, फिर सरकार का सिस्टम बढ़ जाता है सहयोग करने का, सरकार कर रही है, लेकिन फिर उस मूल को ही कंट्रोल में कर लिया जाए, उनको बराबर तरीके से मास्क पहनाया जाए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए समय समय पर उनके साथ में, सरकारें कर रही है नो डाउट कर रही है, लेकिन और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। वो व्यक्ति जो काम कर रहा है वो भी समझ उसमें रखे, वो उद्योगपति जो काम कर रहा है उनकी भी समय समय पर समझ विकसित करे कि उसका नुकसान आपका ही नुकसान है, क्योंकि उसका परिवार जब अनाथ होगा तो कितनी बददुआ मिलेगी, इसलिए दुआ के लिए काम करना। भाई साहब आज हमने पढ़ा एक जगह, मैं बड़ा द्रवित हो गया, माताएं जो दूध पिला रही है बच्चों को, मैं किसी स्तनपान की बात कर रहा हूँ, मैं किसी पाउडर वाले दूध की बात नहीं कर रहा या अन्य दूध की बात नहीं कर रहा। मार्केट में तो आर्टिफिशियल जो है सिंथेटिक मिल्क मिलता है, वो तो दिक्कतें बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो माता का दूध है जो सबसे पवित्र नेचुरल, भाई साहब स्टडीज सामने आई है, उसमें शीशा पाया गया। अब आप ये कहेंगे कहाँ से आया, इनपुट हुआ, ये यही ले जाना चाह रहा हूँ, इनपुट कहाँ से हुआ, फलों से हुआ, सब्जियों से हुआ, अनाज में यूरिया से हुआ, वो माँ के पेट में गया और माँ के पेट से वो बच्चे के पेट में जा रहा है। आप बताइए कि उस बच्चे पर स्वास्थ्य पर कितना असर हो,
0: ये सोचेंगे बाप भावेंगे कितना गहरी बात है, ये है ना, डीप सोचना पड़ेगा,
1: ये समझाना
0: मैंने कहाँ से आता है, कोई तो सोचा असंभव
1: कैसे आ गया, असंभव कैसे आ गया। नहीं ये चीज जब सर मैं पढ़ रहा था उसको, तो मुझे भी हुआ कि यार माँ के माँ प्योर दूध दे रही है, वहाँ कहाँ से गया, थिंकिंग से साफ स्पष्ट हो गया। पेस्टिसाइड्स का उपयोग, कृत्रिम खाद का उपयोग, जो पेस्टिसाइड उस पर लगेगा, पौधे पर लगेगा, फल पर लगेगा, सब्जी पर लगेगा,
0: हवा में भी तो ग्लास का टुकड़ा बाहर मान लीजिए ग्लास टुकड़ा फेंकते हैं
1: वो आएगा,
0: वो आएगा कि नहीं,
1: तो फिर ये
0: जाएगा ना,
1: तो उसमें ये
0: वो तो द्रवीभूत नहीं होगा ग्लास वाला,
1: इससे बच्चों को कार्सिनोजेनिक जो बीमारियां हैं वो सारी की सारी इसी से आती है, और कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है, मतलब ये बहुत ही घातक प्रभाव डालता है। तो आप बताइए
0: सर कहाँ का आप जितना सॉल्व कर सके, सरकार क्या कर सके, इतना जो फास्ट हो गया तो उसको कैसे उसका मतलब जो रूट से उसको जड़ से निकालना होगा, ऐसे सोचने का बात। और जो बर्तन जो समय चल रहा है किसको किसको कहाँ कहाँ बम कर सकते हैं आप, क्योंकि अभी समय जो कलयुग में सभी तो देखते हैं सभी का जो स्टेटस लेन देने का नहीं लेने का है, तो उसी में ये जो चीज आप बता, हाँ समय था बस समय आने वाला हो सकता है, इसी से ही समय नया आ जाएगा, कहेंगे अति का अति जो हो रहा है अंत तो होगा, तो इस तरह कार्यक्रम का माध्यम से हो सकता। अरे बहुत हमारा ही मानव जाति का जब दहन होगा तो हम रहकर क्या करें, तो जो बुद्धिमान होगा बुद्धि उनका खुल जाएगा तो बराबर चेंज हो जाएगा, ऐसे कोई चीज नहीं असंभव नहीं, ये तो पूरा संभव है, संभव है, लेकिन उसके
1: इसमें अपने आप में बदलाव करना होगा।
0: जी जी कल हम एक दो करेंगे बस, इसे करने कुछ नहीं, इसको अमल में लेंगे कार्य में तब जाकर होगा। और आप और हम सब जो सुन रहे सभी हमारा श्रोता भी शिक्षित और एजुकेटेड है, आज के ऐसे कोई एजुकेटेड नहीं, सब अपना ज्ञानी है,
1: ज्ञान खूब है,
0: ज्ञान खूब है, और उसको थोड़ा सा
1: इसको व्यवहार में लाना है,
0: व्यवहार लाना ही और लाएंगे
1: ही, लाना ही है, तभी जाकर के इन बीमारी से बच पाएंगे, नहीं तो हॉस्पिटल्स के चक्कर काटना ये वो करना ये सारी जिंदगी खराब करने के बराबर, और जो बीमार है वो भी परेशान होता है, परिवार भी परेशान होता है, तो क्यों नहीं इसको वहाँ पैदा होने से पहले ही न्यून कर दिया जाए। हम बंद तो नहीं

0: पाएंगे, लेकिन कम तो कर ही सकते हैं। अब इसमें जी की ये बात सर हाइड्रोकार्बन्स की है, आप जानते ही हैं। ये की ये बात डीडीटी जैसे पाउडर की है, डीडीटी यूज करते हैं हम। अब दुष्प्रभाव वही बात है कि वो इसी तरह से उसमें जाएगा जहां उसको छिड़का जाएगा, उसके बाद वो चीज जो यूज करता है उसके अंदर प्रवेश करना है और वो फिर हमारी मानवता को प्रभावित करता है।
1: उसका यूज नहीं करेंगे तो चलेगा, करना ही तो पड़ता है।
0: यही बात,
1: तो क्या करेंगे
0: उसका पड़ेगा। पर सीमित उपयोग कर सकते हैं ना,
1: आवश्यकता अनुसार,
0: या उसका ऑल्टरनेट ढूंढ सकते हैं। वैज्ञानिक कर रहे हैं सर इसका, ऐसी बात नहीं है कि उसका ऑल्टरनेट नहीं है, सभी चीजों का कुछ न कुछ ऑल्टरनेट है।
1: नहीं तो उसका सीमित जितना आवश्यकता क्वांटिटी जो,
0: जी हाँ उसकी जितना आवश्यक है सर। कई बार ये चीज हमने दूरदर्शन पर भी कई बार मैंने सुना है, इनके स्पेशल प्रोग्राम्स में इस पर सुनता रहता हूँ, नोट करता रहता हूँ। उसमें वैज्ञानिक सर ये बताते हैं कि कई बार व्यक्ति, हमारा जो किसान है, अच्छे उत्पादन के लालच में बीमारी आने से पहले ही उस पर वो दवाई छिड़क देता है। भाई ये बीमारी इधर उधर आ रही है, वो आ जाएगी, इसलिए वो छिड़क देता है फटाक से, जबकि उसकी आवश्यकता उसको वहाँ पर नहीं है। ऐसे कई उदाहरण।
1: अच्छा, इसलिए ये हुआ।
0: जी हाँ। तो जब आवश्यक हो तब छिड़को ना, नहीं तो क्या होता है, एक रूटीन हो गया है, इतना हो गया टमाटर ये दवाई छिड़क दो, इतना बड़ा हो गया ये दवाई छिड़क दो, इतनी सब्जी हो गई ये दवाई छिड़क दो, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। पर नुकसान आपको जो हो रहा है वो अप्रत्यक्ष, वो कितना बड़ा आप नुकसान दे रहे।
1: कोरोना नहीं ना, पहले से इंजेक्शन ले लो, डायरी आएगा तो पहले से गलत हो जाएगा।
0: सर आपने बताया कि कोरोना नहीं और इंजेक्शन पहले ले लो, पैसा चीज है इसमें, चीज ये है कि कई ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं आप जानते ही हैं, वो समय के साथ साथ लोगों ने सामान्य रूप से लेना शुरू कर दिया, डॉक्टर्स ने देना शुरू कर दिया, तो लोगों के शरीर में उसका कोई प्रभाव ही नहीं है, वो बीमारी के विरुद्ध काम ही नहीं करती, तो फिर उसकी पोटेंसी बढ़ानी पड़ती है। तो बढ़ी हुई पोटेंसी क्या इंसान को सुख से जीने देगी, उसके जो अंदर के ऑर्गेन्स है उनको नष्ट कर देगी, तो विभिन्न बीमारियां पैदा हो जाएंगी। तो ये इम्बेलेंस हुआ कि नहीं हुआ, तो ये असंतुलन हो गया। तो आवश्यक है उतना उपयोग करो ना साहब। अच्छा, फिर किसी चीज के प्राकृतिक तरीके से उसको निपटने का प्रयास करो तो वो ज्यादा बेटर। सामान्य जुकाम हो गया सर, आप सीधा डॉक्टर के पास भागते हैं, क्यों भागते हैं आप, सामान्य चीज है ना। आप अच्छी वर्जिश करना शुरू कर दो, आप अच्छी सी छोटी छोटी दवाइयां हैं जैसे तुलसी है, अदरक है, शहद है, इस तरह की छोटी छोटी चीजें देना शुरू, गर्म पानी पीना शुरू कर दीजिए, लगता है हाँ, पानी की पट्टी लगा दीजिए, तो छोटे से उसको प्रयास कीजिए। नहीं तो पहले से ही आप हैवी डोज कर देंगे तो हैवी से हैवी चलता चला जाएगा, तो फिर वो तो ठीक तो होगा। इसलिए तो योग वगैरह इन सभी की जरूरत पड़ी है, तो हम तरीके से जिए, सहज भाव से, आनंद से जिए, तो इन सारी कृत्रिम वस्तुओं की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो सर उनका कम से कम यूज हो, आवश्यक यूज हो, कम से कम इस आवश्यक यूज हो, मना नहीं है, जरूरत पड़े तो जाना ही पड़ेगा, जब हमारे शरीर काम ही नहीं कर रहा है सामान्य तौर पे तब तो जाना ही पड़ेगा। तो ये भी पर्यावरण ने व्यवस्था दे रखी है अपने को। इसके बाद में प्लास्टिक को मिनिमाइज करने की पिछले एपिसोड में बात की थी, उस बात को दोहराता हूँ मैं। जब ये उत्पादन करना है किसी फल सब्जी उत्पादन करना है, खास उसमें सब्जी के उत्पादन में ज्यादातर पेस्टिसाइड्स का उपयोग ज्यादा होता है, कीटनाशकों का उपयोग ज्यादा होता है, सामान्य तौर पर ज्यादा होता है, वो इसलिए कि उसका बहुत जल्दी जरूरत पड़ती है। जैसे फल है वो एक लंबे अंतराल के बाद आता है तो उसमें जैसे कम उपयोग होता हो, जैसे अनाज है तो उसका 4 महीने में फसल होती है, 3 महीने में तो उसका कम उपयोग होता होगा, लेकिन सब्जी तो आपको वो जल्दी उगाना है, तो उस पर प्लास्टिक के रूप में सर कम पानी का, क्योंकि पानी कम है हमारे पास में, इसलिए मल्चिंग करनी पड़ती है, तो मल्चिंग आवश्यक है। तो वहाँ अपने को सामान्य तौर पे जहाँ कहीं प्रिजर्वेशन हो रहा है, पानी का सदुपयोग हो रहा है, वहाँ पर उसका उपयोग भी आवश्यक, तो जितना आवश्यक है उतना तो उसका उपयोग भी करना पड़ेगा, हम उसको नकारते नहीं है, लेकिन आवश्यक उपयोग करें किसी भी चीज का, वो आपको खूब फायदा देगा, दवाई का भी, हर चीज का भी, सभी का आवश्यक उपयोग उनको करना। आगे इसके बाद हम लेते हैं द्वितीयक प्रदूषक, ये प्राथमिक थे जो सीधे सोर्स से आ रहे, सीधा सोर्स से आ रहे थे, तो ये तो बहुत सारे हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना सारा है ये
1: कितना।
0: अब द्वितीयक प्रदूषक ले लेते हैं जो किसी से मिलकर के पैदा हो, दो मिलकर के फिर वो भयंकर एसिडिक रेन कर ले, अम्ल वर्षा हो जाती है। हाँ, अम्ल वर्षा हो जाती है, जैसे स्मॉग, धुआं और फॉग मिलते हैं, तो ये भी एक तरह से स्मॉग को बनाता है, फॉग होता है और एक स्मॉग होता है, ये दोनों मिलकर के स्मॉग बना देते हैं, तो ये दोनों मिलकर के द्वितीयक प्रदूषक अम्ल वर्षा बना देते हैं। ओजोन परत पर इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है, ओजोन हमको अल्ट्रावायोलेट रेज से रक्षा करता है, साइंटिस्ट स्टडीज में ये पता चला है कि ओजोन को साफ छिद्र बहुत बड़ा हो गया, तो फिर वो जो रक्षा करने वाली जो उसमें तो छिद्र हो गया, हाँ अपनी छतरी में छिद्र हो गया, पानी अंदर आएगा, तो फिर वो जो अल्ट्रावायोलेट रेज है जिस हिसाब से आनी चाहिए ज्यादा आ रहा है, भारी नुकसान करती है स्किन को, स्किन कैंसर का विशेष कारण है,
2: बिल्कुल नुकसान ही हुआ। पेरोक्सी एसिटिक नाइट्रेट जिसको PAN कहते हैं, ये सारी चीजें बहुत बड़ा नुकसान करती है इस पर्यावरण को। अब इससे सर कई जगह पर इतने बड़े बड़े हादसे हुए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। सर इससे H2SO4 से 1952 में लंदन में 4000 लोग मरे। इन 1952 आज नहीं, जब उस समय इतनी भयावह स्थिति थी तो आज कितनी भयावह होगी, उसमें कमी तो आई नहीं है। हमारी COP की बैठकें होती है, प्लानिंग की बैठकें होती रहती हैं सरकार की, देशों की, विभिन्न देशों की, अपने सरकार की नहीं, विभिन्न देशों की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। अभी बेलेम में COP हुआ है, तो वहाँ भी कुछ चीजों पर प्रतिबंध लगाए जाने की बातें हुई हैं, पर सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं, सबके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, उसके लिए वो कितना कुछ कंट्रोल कर पाएंगे वो तो एक समय पर ही छोड़ देना चाहिए। प्रयासों में कोई कमी नहीं, लेकिन जब 1952 में लंदन स्मॉग ही सर इसका नाम दे दिया, तो आप ये बताइए अब वो स्मॉग कितना नुकसान कर रहा होगा जहाँ जहाँ भी होगा। इसी तरह से ये जो गैसीय प्रदूषण है वो भारी नुकसान करता आ रहा है।
1: अब इसको हम कैसे अपना पॉजिटिव में कन्वर्ट करे, नुकसान करता है
0: बिल्कुल, ये भयावता बताऊंगा तभी जा करके हम लोग समझेंगे, तो अब इसको अपन कैसे हैंडल करेंगे।
1: और सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, ऐसे नहीं प्रयास
0: सभी कर रहे हैं, फिर भी देखिए सर, एक अभी कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति का काम अपनी नजर में आया, एक बस कंडक्टर तमिलनाडु में कोयम्बटूर में, नाम है उनका मरीमुथु सर, 30 साल में उन्होंने 5 लाख पेड़ लगाए नौकरी करते हुए, तो क्या आप और हम नहीं कर सकते।
1: लेकिन उसके अंदर में जी लाया होगा भाई, उसको गॉड गिफ्टेड होगा, उसको थोड़ा विशेष कुछ विशेषता होगा सर, हम लोग पास वो विशेषता होगा तो हम भी कर लेंगे, ऐसे कोई नहीं, हमारा सभी जो सुनने वाले उनका पास कुछ तो होगा, तो हम वो मान लीजिए 5 लाख लगाए, हम तो 1 लाख तक नहीं तो 50,000 तक करें, इतना करें भले एक भी पेड़ लगाएगा तब भी।
0: सर मैं ये मतलब निवेदन इस माध्यम से, मैं बोला आंकड़ा बिल्कुल परफेक्ट ही ढूंढता हूँ, वो बस कंडक्टर है
1: तो उसको क्या जरूरत पड़ गया,
0: ड्यू टू पॉल्यूशन उनके दिमाग में ही विचार आया कि मैं कुछ तो करूँ,
1: रोड में जब ड्राइविंग करता है पेड़ पौधा का सब दोस्त बन गया,
0: 30 साल में 5 लाख पेड़ लगा दी, तो आप बताओ कि एक व्यक्ति जब इतना कर सकता है। एक वीडियो आपने भी भेजा था मुझे गजानन करके व्यक्ति का जो महाराष्ट्र में किसी गांव का, उस एक व्यक्ति ने पूरे गांव को इको फ्रेंडली बना दिया, एक व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है।
1: तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते, लेकिन सर समय हो गया है एक ब्रेक लेने के लिए, तो ब्रेक के बाद और बाकी चीज हम आपके पास रखेंगे, जो कि हमारे श्रोता मित्र और ग्रामवासी, जो भी हमारा किसान भाई हो, जो कि प्रकृति प्रेमी है, जो पर्यावरण का ऊपर में ज्यादा ध्यान रखते हैं, रिसर्च करते हैं और पर्यावरण को सुरक्षा करेंगे तो हमारा जीवन रक्षा होगा, लेकिन पर्यावरण सुरक्षा जीवन रक्षा कहते हैं, उसका ऊपर में जानेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहिए मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल, और खास कर पर्यावरण विषय में आप और हम सबका जो भावना है, भाव है, सब तक पहुँचे, इस सुभावना का साथ लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। श्रोता मित्र ग्रामवासी, और हम सब मिलकर हमारा पर्यावरण को सुरक्षा करने में तत्पर है और करेंगे जरूर, और कोई असंभव नहीं है, क्योंकि हमारा एक कदम प्रयास है और सभी का हजार कदम मदद है। तो जरूर मदद का बिना हम आगे उठेंगे, और जरूर उठना ही, क्योंकि हम है तो हमारा पर्यावरण है, पर्यावरण है तो हम है, दोनों का ऐसे एक आत्मा और शरीर जुड़े हुए, तब तो मनुष्य जीवात्मा कहते हैं, और हमारा विवेक भी है और हमारा करने के लिए जो शरीर मिला है, बिना शरीर से बिना उमंग से कुछ काम नहीं हो पाता है। तो चलिए हमारे साथ पुनः उनको स्वागत करते हैं, श्रीमान भोपाल राम पुरोहित जी है, जो कि सेवानिवृत्त अपना जिला शिक्षा अधिकारी, अब जब भी हम जाते थे मिलते थे, लेकिन आज रूबरू करने के लिए हमेशा उनको स्वागत करते थे, आज उनको मौका मिलता है, तो जब भी मौका मिलता है तो रेडियो का माध्यम से उसका यूज करते हैं। तो सर जी आपको स्वागत करते हैं पुनः, और पर्यावरण जो शब्द है और पर्यावरण का जो सोचते हैं, तो जितना भी कहे कम ही पड़ रहा है, तब भी हम शॉर्ट एंड स्वीट में आपके पास पहुँचा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे अगला, खासकर मोबाइल का आजकल ज्यादा प्रचलन, तो मोबाइल से भी पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, और खासकर यूथ का? तो आप
1: सर, आपका बहुत बड़ा भाव है कि किस तरह से इसकी समझ बढ़े और व्यक्ति काम की ओर बढ़े, इस पर मैं आपसे बात करूंगा कि इसकी भयावहता तो आप समझ ही रहे हैं, और इसका निवारण ये है कि हम उसको समझ करके उस ओर बढ़ जाएं, तो निश्चित रूप से ये संतुलन कहीं न कहीं जहाँ प्रकृति करती है हम भी कर पाएंगे। यहाँ पर सर एक मनोवैज्ञानिक हुए मारिया, अपन साउथ फिलोसॉफी की बात भी करते हैं, वेस्टर्न फिलोसॉफी, बच्चे को व्यवहार को तय करने की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए भाई साहब?
2: माँ बाप का,
1: पेरेंट्स, माता पिता। बच्चा कभी कुछ ज्ञानवश अज्ञानवश कुछ कर लेता है तो उस बच्चे को करने नहीं देना है। कई थ्योरीज ये कहते हैं कि वो बच्चा करता रहे, बच्चा कभी गलत नहीं करता, लेकिन नहीं, उस बच्चे को यथार्थ बताना, डांट डपट तो नहीं करनी है। सर मैं बड़ी विशेष बात कह रहा हूँ, उसको डांट डपट तो नहीं करनी। ये हमारा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का एक पार्ट रहा है, इस पर सीखने पर हमने काफी कुछ साइकोलॉजी में काम किया है, इसी समझ से मैं बता रहा हूँ, एक अनुभव है। बच्चे से डांट डपट नहीं करनी, लेकिन उसको समझाया जा सकता है कि बेटा सही क्या है और गलत क्या है, सही को फॉलो करवाना है उसको और गलत के लिए उसको रोकना है।
0: तुरंत तो परिवर्तन हो जाए सोचते हैं पेरेंट्स,
1: तुरंत नहीं होगा, धीरे धीरे,
0: क्योंकि वो जो डांट डपट जो चमड़ लगाते हैं
1: तरीका सही नहीं है, वो तरीका बिल्कुल ही सही नहीं है, क्योंकि एक बार की, क्योंकि आप जब कहीं कोई मिस्टेक कर रहे हैं तो बच्चा उसको ग्रस्प कर रहा है कहीं ना कहीं, आप कहीं डांट डपट करे तो वो भी डांट डपट करेगा, सीखेगा, वो
0: जैसे देंगे उस तरह मिलेगा,
1: वैसे ही रिटर्न देगा, इसलिए उसको डांट डपट से नहीं, उसको रोकना होगा तरीके से। तो यहाँ भी समझपूर्ण व्यवहार बहुत आवश्यक है, आपको तुरंत रिटर्न चाहिए हर चीज का,
0: संभव नहीं है तो।
1: वही तो हम गलत कर रहे हैं, तो उस बच्चे को समझाना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा,
0: ये चीज समझ उनका पेरेंट्स के पास होना चाहिए।
1: उसमें रोकने का मतलब ये नहीं कि उसको थप्पड़ मार के रोक दिया, बहुत ही गलत हो जाएगा, वो तो सिस्टम में ही नहीं है, लेकिन तरीके से उसको समझाना होगा, बेटे इससे ये नुकसान है, इससे ये फायदा है, निश्चित रूप से वो बच्चा समझ जाए। नहीं तो आजकल बच्चे पेरेंट्स के साथ बात नहीं मानते, अब वो नहीं करते, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी वजह, पेरेंट्स की वजह है कि उसके सम्मान करते हुए उसको बताना पड़ेगा कि ये गलत है और ये सही, तब निश्चित रूप से वो समझ आए, उसके व्यवहार में वो बात आ जाएगी, नहीं तो नहीं आएगी।
0: वो भी तो इंसान है, टाइम दो उसको, बोला आपका इंद्रिय, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, पेरेंट्स का, छोटे बच्चे का तो उसका अंग जो है शरीर इतना डेवलप नहीं हुआ उसको, उनको थोड़ा सा, क्योंकि आपको उसको बराबर जो कर रहे, जिसका चलते आप बोला अरे मैं कर दो ये क्यों नहीं कर रहा, अरे आपका स्टेज वो अनुभव ही, आप पेरेंट्स अनुभव ही है, और चाइल्ड जो है
1: वो सीख रहा है, तो उसको सिखाने के हिसाब से धीरे धीरे सिखाना होगा। आपने एकदम रोक दिया तो फिर वो गुस्से में परिवर्तित हो जाएगा, वो फिर आपको बात को नहीं माने,
0: जो भी आपको पसंद नहीं पेरेंट्स को, वो चीज मान लीजिए वो कर रहा, चाहे मोबाइल हो चाहे कोई भी,
1: बिल्कुल आपने मोबाइल की बात की, मैं उसी पर आऊंगा धीरे धीरे। जैसे बच्चा है भाई साहब, मैंने देखा है, ये सामान्य जीवन के हिसाब से अपन इसको लेंगे, माए क्या कर रही है भाई साहब अभी, अब मैं उस गहराई में तो नहीं जाऊंगा कि वो ऐसा क्यों कर रही है। बच्चा जब रोता है तो काम के चक्कर में उसको मोबाइल पकड़ा देती है, बच्चा चुप हो जाता है, काम कर रही है, काम करना भी जरूरी है, तो ऐसे में उसको जब बच्चा रोता है ना, खूब ज्यादा रोता है, इधर उधर करता है, उसको मोबाइल पकड़ा देता है।
0: आज 5 साल बच्चों को टेम्परेरी दे देते हैं,
1: तो बच्चा होता है, बड़ा जब हो जाता है तब वो उस मोबाइल का एडिक्ट हो जाता है,
0: तो परमानेंट देना पड़ता है, मोबाइल खरीद कर देना पड़ता है। अभी तो पेरेंट्स का मोबाइल यूज थ्रू में हम आदत कर दी,
1: तो आदत किसने दी?
0: माँ बाप,
1: माता पिता ने। अब वो बच्चा एडिक्ट हो गया भाई साहब, एडिक्ट होने के बाद में उन बच्चों का व्यवहार, एक वीडियो हमने आपको शेयर किया था, वो उस मोबाइल पे इतना लगा रहता है कि उसको पता ही नहीं है वो कहाँ बैठा है, वो खाना खाएगा तब भी मोबाइल लाएंगे तो ही खाना खाएगा, ये मैंने स्वयं देखा है हमारे सिस्टम में, उसको नींद नहीं आएगी, बच्चे को नींद भी नहीं आएगी, तो एडिक्शन हो जाएगा। अभी भाई साहब इस दुष्प्रभाव के चलते तो विदेशों में तो कई सरकारों ने इस पर प्रतिबंध, बच्चों के लिए इसको यूज करने पर ही प्रतिबंध लगा दिए, और हमारे यहाँ पर केरल में तो सरकार ने बच्चों के एडिक्शन को दूर करने के लिए प्रोग्राम शुरू कर दिया।
0: जैसे बाइक को 18 साल का बाद ही चला सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसी नियम सरकार ने बनाया है, नहीं तो फाइन देना पड़ता है, लीगल नहीं है। 18 साल का बाद ही आप बाइक ले सकते। उधर मोबाइल जैसे आपने बताया एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और छोटे बच्चों जहाँ भी माता पिता कुछ न कुछ
1: ऐसा सिस्टम होना चाहिए। सर मैं आपसे निवेदन करूँ कि मैं शिक्षा विभाग से जुड़ा रहा, खुद भी इसके पक्ष में कम था, लेकिन मोबाइल का यूज तो अब वो भी बच्चों के सामने कर रहे हैं, शिक्षक भी कर रहे हैं, और वो आवश्यक भी है, पर कक्ष से तो हट करके करे इतना तो हो सकता है, बच्चे के सामने तो नहीं करे।
0: फिर बच्चों को कैसे बोलेगा भाई आप मत यूज करो, वो खुद मान
1: संस्थान में अभी मेंबर हूँ, वहाँ मैंने साफ तौर पे कहा है कि कोई भी शिक्षक कक्षा कक्ष में मोबाइल लेकर के नहीं जा रहा है। सर जा भी नहीं रहे हैं, वो ऑफिस में जमा करा देते, काम है आइए बात कीजिए चले जाइए। तो निश्चित रूप से बच्चों पर सर इसका पॉजिटिव इफेक्ट आवश्यक है, हम मना नहीं करते, लेकिन जब आवश्यकता है उसका उपयोग कर लो। तो निश्चित रूप से ये बच्चों के, तो सर ये बच्चे पर्यावरण के प्रति प्रेरित तो तभी होंगे जब आप इनको इन एडिक्शन से दूर रखेंगे। बच्चा कई बार हम कहते हैं कुछ ऐसी चीजें खा रहते हैं, जैसे ये कुरकुरे हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जो आते हैं, ऐसी चीजें, बच्चा सर ओरिजिनल घर का अच्छा बना हुआ खाना ही नहीं खाता।
0: कुछ टेस्टी चाहिए, खट्टी मीठी और जटादार,
1: उसके बिना रह ही नहीं पाता। वही कुरकुरे खा करके सब कुछ कर लेगा, भोजन पाएगा ही नहीं, तो उसका पोषण कैसे होगा?
0: जो ब्लड टेस्ट में जाते हैं तो उसका हजार प्रकार का माइनस में आता,
1: उसका विकास कैसे होगा? यानी कि हम प्राकृतिक वस्तुओं के निकट रहेंगे, नेचुरल प्रोडक्शन उनको देंगे बच्चों को, तो निश्चित रूप से ये जो पैकेज्ड फूड है ये तो काफी नुकसान करता है।
0: रिफाइन को करा तो क्या क्या मिलाकर टेस्ट करना, क्या जान दर्द देखते हैं, वो टेस्ट तो ऐसे टेस्ट लगता है, इसका अंदर में जो जाता है तब उसका पता चलता है। ये भी जो मोबाइल हो चाहे जो भी हम लोग ले रहे,
1: तो सर इसके लिए अब वहाँ हमारी एक ही बात आई, मोबाइल एआई की भाषा अंतरतम को नहीं बदलती, इनर को बदलना पड़ेगा। आजकल समय क्या हुआ है सर, कोई भी प्रश्न का उत्तर चाहिए उस पे एआई पे डाल दो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, तुरंत उत्तर आ जाएगा साहब। वो उसकी भावनाओं को वो बदल नहीं पाएगा, लेकिन जो फेस टू फेस जो भी व्यक्ति बैठता है वो भावना को समझता है, उसके सहयोग को समझता है, नहीं तो वो तो यंत्रवत हो जाएगा, तो फिर वो समझेगा कैसे?
0: और खुद को जो अपना जो इंद्रिया है, जो विवेक है, उसको तो जीरो कर देगा, सोना कर देगा,
1: उसका विकास दिमाग का नहीं होगा, तो फिर आने वाला समय कैसा हो जाएगा? जितना आवश्यक है उतना उपयोग हो, बस बस बस बस। अब मैं एक चीज मैं बताता हूँ, मानव को यंत्र बनाने से रोकना होगा। जैसे आप एक अच्छा सा भजन चल रहा है सिखाने के लिए, सर भजन का मतलब सिखाने के लिए कोई अच्छा चीज आपने चालू कर दी, वो बज रहा है, व्यक्ति काम कर रहा है, क्या वो सीखेगा? बाहरी वातावरण उसका भले बन जाएगा, लेकिन अंतरतम उसका क्यों बदलेगा? अंतरतम तो तब बदलेगा जब खुद वो मन से उसमें जुड़ जाएगा, उस भावना से उस अभ्यास को करने लग जाएगा, तब जाकर के उसका अंतरतम बदलेगा और फिर कर्म की ओर प्रेरित होगा।
0: क्या सोचते हैं भाई, फटाफट हो जाएगा, कोई किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा, नहीं तो जो गायक को बुलाना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट बुलाना पड़ेगा, तबला बजाने के लिए, हारमोनियम बजाने के लिए, जो एक्सपर्ट को, तो हमारा मशीन रहेगा तो क्या है, हम तो एक बटन दबाए और सब म्यूजिक
1: का। सीधा निवेदन मैं आपसे करूं कि अपनी जो यूनिवर्सिटी चल रही है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, यहाँ आप इतने लोगों को क्यों बुलाते हैं बताइए? नहीं, आपका ज्ञान तो सब सुन ही रहे हैं, यहाँ क्यों बुला रहे हैं बताइए?
0: वहाँ पर प्रेरणा बाग किसी देखना टीवी से इतना नहीं कर पाएंगे, यहाँ
1: बस सीधी सी बात है, इतना होता ही नहीं, हो नहीं।
0: यहाँ पर जो वातावरण एनवायरमेंट क्रिएट हुआ है,
1: अंदर की भावना अपने आप जगती है, तब जाकर के ये सब कुछ।
0: सर आते हैं विदेश से जो 46 देश में, यहाँ तो हमारा परमात्मा का जो यहाँ का जो एनवायरमेंट, यहाँ का जो स्वर्ग जो मॉडल बना हुआ है,
1: तो अंदर से प्रेरित होते हैं,
0: तो होते हैं, तब उसको प्रेरणा करते भाई,
1: तो ज्ञान तो रोज सुनते ही है, उससे प्रभाव तो पड़ता ही है, पर वो उस तक जाने के लिए ये आवश्यक है। इसलिए भावनात्मक संबंध बहुत जरूरी है किसी भी काम को आगे लाने के,
0: मतलब आपको करना ही पड़ेगा,
1: करना ही पड़ेगा,
0: तो उनको भी एक प्रोत्साहन मिलेगा ना, जो सीखा इतना दिन से उसका तो भाई आदर करिए, जो संस्कृति है, हारमोनियम जो बजा रहे, ढोलक जो बजा रहे, जो गाना गा रहे, कितना लोग का आप रोजगार दे दिए।
1: भाषा का संबंध मन से है, पर आजकल भाषा का संबंध किससे जोड़ दिया है सर? आवाज से जोड़ दिया है। ये विजय शंकर मेहता कहते हैं, क्या कहते हैं, भाषा का संबंध तो मन से है, हम मैं बोलूंगा आप मन से उस पर विचार करेंगे तब कुछ करेंगे, आजकल उसको किससे जोड़ दिया सर? आवाज से। वही बात में जो मैंने कही कि कोई चीज चल रही है ऐसे ही चल रही है, तो फिर वो मन को प्रभावित करे नहीं करे वो सुनने वाले पर डिपेंड करता है कि वो कितनी गहराई तक उसको ग्रस्त करता है। बाहरी वातावरण तो बना देगा, लेकिन आंतरिक नहीं बनेगा तब तक वो बाहरी सुधरेगा तो नहीं। सर इसके लिए एक चीज बताऊं तो आज की पीढ़ी सर मोबाइल की भाषा बोलती है, एआई की भाषा बोलती है, तो फिर उसका जीवन तो यंत्रवत हो गया, तो फिर हम सुधार की अपेक्षा भी कितनी कर सकते।
0: पड़ोसी जो आसपास हम जो होड़ में लगे हो भाई वो किया तो हम क्यों पीछे रहे। इसका चलते ये सब पूरा यंत्र तांत्रिक सभी पाश्चात्य देश देखे तो वो लोग से हम किसका कोई देश का नाम नहीं लेते लेकिन वो लोग इतना करके आगे देखा रहे हम साइंस में कितना आगे गए।
1: अब इसी बात का मैं उत्तर दूं। अवधेशानंद गिरी जी कहते हैं सभी की बातें अपन लेते हैं सभी जीवन अनुकूलताओं की तलाश में ही बीत जाता है। मेरे पास इतना बड़ा बंगला चाहिए, मेरे पास दो बंगले होने चाहिए, मेरे पास इतनी बड़ी इंडस्ट्री होनी चाहिए, मेरे पास इतना धन होना चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास ऐसी गाड़ी होनी चाहिए। तो अनुकूलताओं की रेस में अनुकूलताओं की तलाश में ही बीत जाता है। जो है उसमें रहो ना, फिर आप जब ढूंढने गए तब तो फिर इससे ज्यादा कितना कितना कितना। एक सिकंदर की बात मुझे याद आ रही है। सिकंदर विश्व विजय का सपना देख करके चला था, बीमार हो गया, वैद्य बुलाए, कोई इलाज नहीं, तो उसके पास धन संपत्ति सोना चांदी सब कुछ था मरने के कगार पर। तब उसने कहा, क्योंकि वैद्य भी उसको नहीं बचा सके, क्योंकि मेरे इस जनाजे को या मेरी अर्थी तो चार तो वैद्य उठाएंगे ताकि पता चले कि धन मन पन कोई कुछ नहीं कर पाया और मेरे सारे हाथ है ना वो दोनों हाथ वो मेरी कब्र में भी बाहर खाली हाथ आया था और खाली ही हाथ जाना है। तो जब इस चीज की जब ये धन और संपत्ति आपको शांति नहीं दे सकती, अंत तक वो इतना साम्राज्य करते हुए ही चले गए तो कितना की इकट्ठा करेंगे आप। सामान्य आवश्यकता तो जो हो जाए उसको कर लीजिए, आगे बढ़ जाइए संतुष्ट मन से, तो इतना कीजिए ना अपने परिवार के लिए कीजिए, बाकी इतना आगे क्यों बढ़ाए जो समझ। और वो भी आपको अंत में तो उस शरीर को कितना भी धन हो दौलत हो जब उसमें से प्राण निकलेंगे फटाक से उसको जो भी करना है अग्नि समर्पित करना है या जो भी वो प्रकृति को समर्पित, तो फिर तो इतना तुमने सारी जीवन किया तो फिर शांति के लिए क्या किया, आनंद के लिए क्या किया, प्रकृति के लिए क्या किया, बात सब एक ही है। तो उसके लिए आप करते तो मुझे लगता है कि सब कुछ अच्छा ही हो जाता। सर एक बड़ी जबरदस्त बात मेरे में रह जाएगी। सब क्या चाहते हैं, प्रकृति बदले। यह समय बरसात हो रही है ना, जैसे दो साल पहले यहाँ भी हर महीने बरसात हुई आपके इस एरिया क्षेत्र में भी, पर्वत क्षेत्र में भी। प्रकृति बदल जानी चाहिए सर, फिर प्रकृति बदले, लोग सब बदलने चाहिए, प्रकृति भी बदलनी चाहिए, लोग भी बदलने चाहिए, बस मैं ना बदलो, स्वयं नहीं बदलो, मैं जो भी हूँ ठीक,
0: बाकी सब बदल जाए,
1: बाकी सब बदल जाए। भाई साहब उन्होंने बताया कि यही अज्ञान का मूल है, आप बदल जाओ वो तो बदल जाएंगे, स्वयं बदल जाए।
0: हमारा जो स्लोगन है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन है।
1: तो ये आपने जब ये बात कही तो मुझे ये कहने के लिए वो होना पड़ेगा, ये सब ये कह रहे हैं कि ये इसका समाधान है, स्वयं को बदलो,
0: प्रकृति बदल जाए, वो बदल जाए, वो सरकार बदल जाए, सब बदल जाए, लेकिन हम नहीं बदल,
1: स्वयं सभी को स्वयं को बदलना है। और स्वयं को बदलने के लिए बहुत सारे मंच है, बहुत सारे मंच है, वहाँ बैठ करके अब अध्यात्म करो, स्वयं चार्ज हो जाओ, ईश्वर वाले का धन्यवाद करते हुए स्वयं बदल के कर्म करने को आप प्रेरित हो जाओ तो निश्चित निश्चित निश्चित आप बदल ही जाएंगे।
0: तो श्रोता मित्र ग्रामवासी और पर्यावरण को लेकर हम जो भी टॉपिक दें उससे किसी न किसी रूप में चाहे परसेंटेज हिसाब से हानिकारक ही होता है, क्योंकि जो कर रहा है वो विवेक भाव से करेगा, चिंतनशील से करेगा तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा अपने को थोड़ा सा केयर नहीं करेंगे, डोंट केयर करेंगे और होते रहता है ये तो चलता रहेगा। ऐसे जो सोचना ऐसे सभी लोग सोचेंगे तो भाई कहां तक सुराएगा, तो विनाशकारी होगा, दुखदायी होगा। और जिसे सर ने बताया भाई सभी बदल जाए लेकिन खुद को पूछे मैं कब बदलू, मैं क्या, जैसे कितना एग्जाम्पल दिए सिकंदर क्या लेकर आया था क्या लेकर जा रहा था, देखा जाए भाई मेरा इतना जो आप सोच रहे मेरा इतना है लेकिन मेरा कुछ नहीं देखा, लेकर मेरा शरीर भी नहीं लेकर जा सकता हूँ, जिस मुख से जिस हाथ से जिस शरीर से मैं इतना कराया वो एक भी चीज नहीं लेकर जा रहा हूँ। तो हमें ये सब सुनते हैं लेकिन हम प्रैक्टिकल कब करेंगे कैसे करेंगे ये तो समय बताएगा और सभी हमारा विवेकशील सभी मिलकर करेंगे तो सब, और समय नहीं करेंगे तो समय करा देगा सर, आप करे चाहे नहीं करे समय ऐसे आएगा, समय आपका टीचर बनेगा, सिखा देगा, क्योंकि समय रुकेगा नहीं, ड्रामा एक्यूरेट है, वो ऑटोमेटिक अपना काम कर रहा है, लेकिन इशारा दे आप भी कर जाओ क्यों, क्योंकि मैं उसका प्राइज मैं क्यों लू, प्रकृति बा भगवान क्यों ले, आप लो, आप करेंगे तो आप ले, जो करेगा सो उसको मिलेगा।
1: एक बहुत अच्छी बात कही थी वो गिलहरी वाली बात आपने कही थी, जब राम सेतु बन रहा था तो वो गिलहरी वहाँ पर उलट पुलट करके वो वहाँ रेत डाल रही थी, तो किसी ने पूछा कि भाई आप तो कि मैं भी उसमें सहयोग कर रही हूँ,
0: हास्यास्पद है, बोले अरे उसका एक्टिविटी जो कर्म कर रहा है जो भी देखेगा अरे ये क्या ये क्या। तो आज भी उनका नाम है स्वर्णाक्षर में, भले वो उसका जानते बराबर रेती से कुछ नहीं होने वाला है, और मैं लेकर जाऊंगा तो 10 ग्राम लेकर जाता हूँ रेती, तो कहने मतलब उसका भावना था भाई हम भी सहयोग करें। ऐसे ही एग्जाम्पल आप तो जानते जैसे आग में लग गया जंगल में सभी महारथ जो बाघ हाथी पूरा लोग भाग निकल अपना प्राण बचाने के लिए चला गया, लेकिन एक चिड़िया कहाँ पर, चिड़िया अपना चोंच से लेकर जाता था और जब देखा हाथी राजा महाराजा जब देखा अरे चिड़िया ये क्या कर गया, पानी में बुझने वाला है क्या यार, तो उनको पूछा गया चिड़िया महारानी तुम ऐसे जो कर रहे इसके आप आग बुझने वाली है, बोला वो मैं नहीं जानता, मेरा कर्तव्य है मैंने उसको निभाने का मेरा काम है मैं निभा। सर मुझे भी ऐसे सभी लोग बोलते तुम अकेला जाकर आसपास लोग तुम परिवर्तन करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान स्कूल कॉलेज, मैं बोला वो मेरा काम नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं, मेरा जब नाम आएगा अभी सभी बोलते भाई पवित्र जाकर अपना जो ईश्वरीय ज्ञान को समझ को सब तक पहुंचाना कोई उलाना न दे, इसी आधार से मैं पूरा आबू रोड ब्लॉक पिंडवाड़ा ब्लॉक रेबदर ब्लॉक जहाँ भी जाते हैं रेडियो मधुबन का लक्ष्य क्या है भाई एक अच्छा मनुष्य अच्छा इंसान बन जाए, शिक्षा में मानसिक विकास हो बौद्धिक विकास हो चरित्र निर्माण हो, शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है चरित्र निर्माण, सरकार को देश को हमको डिग्री नहीं चाहिए सर, एक अच्छा से अच्छा इंसान से इंसान बन जाए, अच्छा इंसान तब बनेगा जब खुद को देख पाएगा खुद क्या कर रहा है वो समझ पाएगा, तब खुद स्व परिवर्तन जब होगा सर परिवर्तन हो जैसे आपने बताया भाई सभी बदल जाए प्रकृति बदल जाए मास्टर साहब बदल जाए गाँव में इतना बदल जाए, लेकिन हम कब बदलेंगे, तो इसी को नजर रखते हुए यहीं पर हम और आप से विदाई लेते हैं, फिर अगला एपिसोड में मिलेंगे, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल और हमें और श्रीमान गोपाल राम पुरोहित जी को भी दीजिए इजाजत, नमस्ते आभार।
2: नमस्कार, मैं हाकम खान आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ माने आवे पिया जी हिचकी, मारो वादी लो चितारे माने आवे हिचकी। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए संपर्क करावे हमारे टेलीफोन नंबर है 9001313752 9001313752, ये हमारे टेलीफोन नंबर है। मधुबन रेडियो की तरफ से प्रसारण किया जा रहा है राजस्थानी लोकगीत आवे माने हिचकी, हमारा संगीत कला केंद्र है जहां हमारे संगीत बच्चे सिखलाई लेते हैं, बच्चों को संगीत सिखलाई के लिए हमारे को कमाईचा खड़ताल ढोलक हारमोनियम सिखाया जाता है, तो संगीत सिखलाई के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम में जरूर हमारे संपर्क करें, संगीत निर्देशक हाकम खान

0: यार मोहित, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि दिव्यांग व्यक्तियों का जीवन कितना नीरस है, उनके लिए दुनिया कितनी अलग है।
1: बात तो सही कह रहे हो तुम, ऐसे जीवन का भी क्या फायदा। खैर छोड़ो, चलो बाजार चलते हैं, मुझे कुर्ता पैजामा दर्जी को सिलाई के लिए देना है।
0: चलो चलते हैं।
1: बहन जी, मुझे यह कुर्ता पैजामा सिलवाना है और 5 दिन में मुझे यह चाहिए।
2: ठीक है, आप अपना नाप दीजिए, हमारे दर्जी सिलाई कर देंगे और आप 5 दिनों के बाद आकर इसे ले सकते हैं।
1: धन्यवाद। सौरभ, तुमने एक बात पर ध्यान दिया कि दर्जी ने हमारी तरफ एक बार भी नहीं देखा, वह बस अपना काम कर रहा था। मुझे लगता है वह सुन नहीं सकता था।
3: हाँ, मुझे बताया था उस दर्जी वाली बहन जी ने कि दर्जी सुन नहीं सकते हैं, परंतु मैं सोच रहा हूँ कि मैं कितना गलत था।
1: हाँ, जो शारीरिक विकलांग होते हैं वह भी तो हमारी तरह सामान्य जीवन जी सकते हैं।
4: रेडियो मधुबन की मुहिम का हिस्सा बने, पुरानी मानसिकता को बदलें और समझने का प्रयास करें। शारीरिक रचना का हमारी बुद्धिमत्ता से कोई ताल्लुक नहीं। मन स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ।
5: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आँखों से देखिए सुंदर ये संसार।

0: बारे में क्या कहें, जैसे सब कुछ संगीत में समा जाता है। स से जैसे पूरी सृष्टि ही संगीत है, ग से जैसे हर ग्रह नक्षत्र तक वो म्यूजिक, वो संगीत, वो सुर पहुंच जाते हैं। त की बात करें तो शायद तीनों लोग ही एक साथ झूम उठते हैं जब ऐसा संगीत उत्पन्न होता है। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो दूर दूर से गोपियां दौड़ी चली आती थी। क्या जादू है इस संगीत में। कहते हैं तानसेन जब गाते थे तब बादल भी गरज उठते थे, तब दिए भी जगमगा जाते थे। इस संगीत के जादू को जीवित रखते हैं कई ऐसी हस्तियां हैं भारत में, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम भी आपको मिलाएं उन सितारों से जो कुछ चमक रहे हैं और कुछ जल्द ही संगीत के आसमान में बहुत ऊंचा स्थान पाने वाले हैं। आज हम आपके सामने एक और गेस्ट, एक और मेहमान को लेकर आए हैं जो कि संगीत के ऐसे ही जगमगाते सितारे हैं, जिनका नाम है सोम जी, जो कि आए हैं नेपाल से। उनसे बातें भी करेंगे और उनके गीत भी सुनेंगे। बहुत मधुर आवाज है, बहुत कमाल का गिटार बजाते हैं। सोम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू आरसी, थैंक यू सो मच।
0: सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप अपने बारे में कुछ बताएं, अपने आपका पूरा नाम, आपके घर में कौन कौन है एंड आप क्या करते हैं।
1: अच्छा, नमस्कार, मेरा नाम सोम गुरुंग है, मैं नेपाल से हूँ। नेपाल की बहुत सुंदर नगरी जिसे पोखरा बोलते हैं, जहाँ बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, बहुत सारे टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं, उसी जगह से मैं हूँ। और मेडिटेशन करते हैं, अपने जीवन में कुछ नई जिंदगी, नए नए अनुभव करते हैं, तो पहले से ज़्यादा मेडिटेशन के बाद बहुत अच्छा अनुभव करते हैं।
0: ओके, ठीक है। और जैसा आपने बताया सोम जी, मेडिटेशन के आप एक्सपीरियंसेस के बारे में तो आपसे बात करेंगे ही, म्यूजिक के बारे में कुछ बात करेंगे आपसे, लेकिन लेकिन क्योंकि म्यूजिक का कार्यक्रम है तो चलिए पहले आपका एक गाना सुन लेते हैं, उसके बाद लौट कर आएंगे और आपसे करेंगे संगीत के बारे में खूब सारी बातें। रेडियो मधुबन 90.4 FM पे दोस्तों, आइए अगला गाना आप सुनेंगे सोम जी की आवाज में। तो पहला गाना आप जो हमारे दोस्त जो आपको सुन रहे हैं उन्हें कौन सा सुनाना चाहेंगे?
1: So, any songs, आपकी चॉइस में?
0: मेरी चॉइस तो वैसे बहुत सारे गाने पसंद है, सोचना मुश्किल है, क्यों ना अच्युतम केशवम से शुरुआत करें।
1: हाँ, श्योर, बहुत प्यारी गीत है।
0: तो चलिए दोस्तों सुनते हैं अच्युतम केशवम, ये सुंदर सा भजन सोम जी की आवाज में, लौट कर आएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड, रेडियो मधुबन 90.4 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन पर लौट कर आ गए हैं हम। संगीत की ये सभा लगी हुई है और हमारे साथ मौजूद हैं सोम जी, जिनकी आवाज में आपने सुना बहुत सुंदर भजन अच्युतम केशवम। ये गीत सुन के मुझे तो ऐसा लगा कि शायद एक अलग ही माहौल बन चुका है और अब बोलने का तो मन ही नहीं कर रहा है। ऐसे गीत सुन के सच में ऐसा लगता है कि बस सुनते रहें और कुछ ना कहें। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है और सोम जी से और ढेर सारी बातें करनी है, तो आइए फिर से उनका स्वागत करते हैं। सोम जी, आप जैसा आपने अपने बारे में तो बताया, मैं चाहूंगी आप अपने संगीत की जर्नी के बारे में बताएं। कब से आपको संगीत पसंद था या कब से शुरुआत हुई आपके सफर की?
1: अच्छा, संगीत के बारे में, जब मैं स्कूल पढ़ता था, स्कूल में हम गिटार बजाते थे, उतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो मेरे स्कूल के एक फ्रेंड बहुत अच्छा गिटार वो प्ले करता था, तो उसके हिसाब से जब मैंने फर्स्ट टाइम गिटार का साउंड मैंने सुना, तो वो गिटार के जो साउंड है वो मेरे दिल को छू गई। तो स्कूल में एक वैकेशन, समर वैकेशन था उस टाइम पर, के एक गिटार खरीद करके तो थोड़ा प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद में एक महीने के ट्रेनिंग के बाद थोड़ा थोड़ा गीत बजाने और दोस्तों के साथ थोड़ा हम करने, तो इसके लिए थोड़ा प्रिपरेशन हो गई। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके करके, कोई टीचर्स तो नहीं है हमारे, फिर भी दोस्तों के साथ टीचर्स के वीडियोस देख करके, तो ऐसे ऐसे ही हमने बहुत मेहनत की और गिटार से शुरू किया। तो थोड़ा बहुत ड्रम्स भी बजाते हैं, कीबोर्ड थोड़ा बहुत करते हैं, तो स्पेशलिटी मेरा गिटार ही है। तो मैं अभी लगभग 20 साल से ज़्यादा हो गए मेरे गिटार बजाए हुए, लेकिन ऑन एंड ऑफ, बीच में छूट भी गए थे कुछ ऐसे ही टेक्निकल प्रॉब्लम के हिसाब से। तो अभी फिर मेडिटेशन के साथ साथ अभी म्यूजिक भी अभी जुड़ चुके हैं, तो अभी मैं ये भी करना शुरू किया हूँ।
0: क्या बात है। और जब आपने म्यूजिक शुरू किया, आप क्योंकि यूथ की बात करें तो उन्हें म्यूजिक में इंटरेस्ट होता है, तो करियर बनाना चाहते हैं, तो आपने भी अपना करियर बनाया म्यूजिक में?
1: जी, करियर जब स्कूल से आउट हुआ तो उसके बाद में छोटे मोटे प्रोग्राम्स होते थे, तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा प्रोग्राम के लिए तैयारियाँ करते थे, तो फ्रेंड्स के साथ जुड़ जाते थे। तो बाद में जब थोड़ा थोड़ा जब मैच्योरिटी लेवल आई, तो अच्छे अच्छे म्यूजिशियन से मिलना हुआ, तो उनके साथ अच्छे अच्छे गाने कंपोज करने लगे। तो कभी कभी ऐसे ही बार में, क्लब में, तो ऐसे प्रोग्राम्स के लिए ऑफर आते थे, तो उधर जा करके थोड़ा बहुत कर लेते थे। तो उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा हमारी जो अभ्यास है, जो प्रैक्टिस है, वो इंक्रीज होती चली गई। तो बाद में एक एज बैंड बोल करके हमने नेपाल में, क्वाइट पॉपुलर है ये यंगस्टर के बीच, तो उस बैंड में काम करने का मौका मिला। तो हमने जो काम किया, तो उसके हिसाब से हम बहुत सेटिस्फाई भी है, लेकिन बीच के कुछ ऐसे ही पढ़ने के सिलसिले में, कुछ ऐसे ही स्टडीज के मामले से करके हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो

0: बैंड तो कंटिन्यू है, फिर भी मैं अब्रॉड चला गया था तो उसके हिसाब से थोड़ा डिस्कनेक्टेड रहा। फिर अभी मौका मिला है तो अभी मैं अपने खुद के लिए मैं प्रैक्टिस करता हूँ, कंपोज करता रहता हूँ अभी, तो अभी थोड़ा तीव्र रूप से थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ अभी।
1: तो मतलब आपका जो बैंड आपने बताया, तो उस समय आप लोग परफॉर्मेंस करते थे स्टेज पे और सब जगह, तो मैं आपसे ये चीज़ ज़रूर जानना चाहती हूँ, जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो चाहते हैं वो कुछ ऐसा करें बने, तो क्या चीज़ इम्पोर्टेंट होती हैं जब हम एक बैंड की बात करते हैं, क्या स्किल्स इम्पोर्टेंट होती हैं वहाँ पे?
0: तो क्या है, म्यूज़िक इसको एक कला बोलते हैं, एक आर्ट बोलते हैं, तो कला के लिए एक अनुशासन, एक डिसिप्लिन बहुत ज़रूरत होती है, तो इसको हम शॉर्टकट में नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए आपको फाउंडेशन अच्छा बनाना पड़ेगा। तो फाउंडेशन तो आप जैसे कि आपके घर के माहौल, जिस जगह पे आप रहते हो, जो आपके अंग संग के लोग हैं, इसके रंग भी आपको अवश्य लगते हैं, तो इसीलिए म्यूज़िक में आगे बढ़ने के लिए अच्छे अच्छे जो पुराने म्यूजिशियंस हैं उनके गाने सुनने पड़ेंगे, तो कैसे वो कंपोज करते थे, क्यों ये गाने उस ज़माने में लिखे थे, बनाए थे 50 साल आगे, फिर भी अभी भी वो उतना ही प्रिय है, बहुत सुंदर है, लोग अभी भी उनको सुनना पसंद करते हैं। तो इसमें क्या है कि उन लोगों की जो डिसिप्लिन थी, एक बात से बोलते हैं आध्यात्मिक हिसाब से बोलते हैं, तो उसमें एक प्योरिटी थी वो कलाकार में, क्योंकि उन दिनों के कलाकार बहुत प्योर रहते थे। तो उन दिनों के कलाकार और आज के कलाकार अगर कंपेयर करेंगे तो बहुत बहुत ये बीच में बहुत दूरी हो गई है, क्योंकि आज के आर्टिस्ट वो भूल गए हैं कि ये जो कला है इसमें अगर आगे बढ़ना है, लॉन्ग टाइम स्टेबल रहना है, तो इसके लिए आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है
1: जी।
0: सो आप हमारे टीचर्स, गुरु, हमारे माता पिता, बड़े बुजुर्ग लोग जो सिखाते हैं, उसको भी आत्मसात करते हुए अपने नेचर को सुधारते हुए अगर ऐसा करते हो तो ज़रूर किसी न किसी दिन ये ज़रूर रंग ले आएगी, ये छुपे नहीं रह सकते, भले देर हो लेकिन ये बहुत अच्छा कर सकती है।
1: जी जी, मतलब कि जो संगीत है उसके प्रति हमारी जो सच्चाई है, जो हम उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमारे दिल भी उसी में है तो दिमाग भी उसी में है, तो वो सच्चाई शायद बहुत ज़रूरी है।
0: जी,
1: सिर्फ अच्छा दिखना नहीं स्टेज पे, लेकिन उस फील में होना कि हम अपने लिए गा रहे हैं।
0: जी हाँ, दिल से,
1: दिल से,
0: दिल को छूना बहुत ज़रूरी है। जी,
1: और दिल को छूने के लिए दिल से गाना जरूरी है,
0: जरूरी है।
1: जी, तो बहुत बहुत अच्छी बात है, आपने डेडिकेशन की भी कही समझी। आगे भी कुछ बातें करेंगे आपसे, लेकिन एक और गीत की ओर आगे बढ़ना चाहेंगे, तो अगला गीत आप हमें कौन सा सुनाएंगे?
0: अगला गीत मैं एक बार श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि ये थोड़ा एज अ मैंने आरुषि जी को भी बोला है कि थोड़ा टाइम की कमी थी तो मैं उतना प्रिपेयर कर नहीं पाया, फिर भी आज हम अपने घर की ओर लौट रहे हैं, तो थोड़ी समय में पूरा ट्राई किया हुआ है, अगर कोई मिस्टेक्स आपको सुनाई दे तो भी इसको आप स्वीकार कर ले, अगर फ्यूचर में कोई मौका मिलता है तो आप लोगों को अच्छी से अच्छी क्वालिटी प्रैक्टिस करके, लोग अभ्यास करके आपको ज़रूर सुनाएंगे। तो अभी आपके लिए मैं कृष्णानी वाला गीत आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, बहुत प्यारी सॉन्ग है।
1: चलिए दोस्तों, इस प्यारे से गीत को सुनते हैं सोम जी की आवाज़ में, और मैं आपको बता दूं कि वो गा भी रहे हैं और साथ साथ गिटार भी वो खुद ही बजा रहे हैं, तो आइए इस गीत को सुनते हैं सोम जी की आवाज़ में। रेडियो मधुबन पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: हमारे मुस्कुराने का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा दोस्तों, और गाने का भी, गुनगुनाने का भी, क्योंकि ये कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड जो हम आपके लिए लेकर आते हैं संडे को रात 8 बजे। आप भी जुड़ सकते हैं, अगर आप भी एक कलाकार हैं, आपको लगता है कि आप आसपास रहते हैं, आप हिस्सा बनना चाहते हैं इस कार्यक्रम का, तो आप हमें मैसेज भेज सकते हैं। नंबर है 9414151415, यानी कि 9414151415। साथ ही मैसेज भेज के हमें ये भी बताइए ये कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है। सोम जी, जैसा आपने बताया कि आपका एक बहुत फेमस बैंड जो रहा नेपाल में, जो है अभी भी, तो क्या कुछ चैलेंजेस आते हैं जब हम म्यूज़िक, हमें पसंद है, आपने कहा डेडिकेशन ज़रूरी है, बहुत प्रैक्टिस की है, लेकिन साथ में काम करने में या हम बहुत जगह परफॉर्म करने जाते हैं, क्या कुछ चैलेंजेस आते हैं, और आप अगर आए तो आपने क्रॉस कैसे किए?
1: बहुत प्यारी क्वेश्चन है ये। जो मैटर है, हर एक को फेस करना पड़ता है इससे, तो नॉर्मली सबके लाइफ में तो ये तो स्ट्रगल तो करना पड़ता ही है। फिर भी अगर बैंड की बात करें तो, क्योंकि एक बैंड में नॉर्मली 5-6 से एक बैंड बनता है, कभी कभी उससे ज़्यादा भी हो जाता है, तो 5 लोग होंगे तो 5 हेड होंगे उधर, उनके अपने विचार होते हैं, अलग अलग विचार होते हैं, संस्कार होते हैं, तो इसलिए तो जब ग्रुप में काम करते हैं तो थोड़ा संस्कार की बातें भी आती हैं, फिर भी
0: नेचर अलग अलग
1: होती है, उनके ग्रोन अप अलग होते हैं, तो फिर भी अगर आर्ट म्यूजिक की बात करते हैं तो इसमें थोड़ा बहुत अगर हम स्पिरिचुअलिटी को समझ सकते हैं, इस ज्ञान को, तो इजीली इस समस्या को हम कोप कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। पहले मुझे मालूम नहीं था इसके बारे में जब मैं बैंड में था, तो फिर भी मेरी नेचर क्या थी, मैं ओवर रिएक्ट नहीं करता था, तो दोस्तों के साथ मैं उनके साथ एडजस्ट हो करके उनको भी मनाता था, तो एज अ न्यूट्रल में रहकर, बीच में रहकर मिलाने की ट्राई करता था, तो थोड़ा बहुत ये इस नेचर से उनको भी थोड़ा बहुत लाभ हुआ। मैं कभी कभी गलत भी हो सकता हूँ, फिर भी वो भी ट्राई करते थे, हम भी ट्राई करते थे, क्योंकि जो भी हम स्टार्स देखते हैं, रॉक स्टार देखते हैं, सेलिब्रिटी देखते हैं, ये लोग ऐसे ही ऊपर नहीं पहुँचते, इनके पीछे बहुत कड़ी मेहनत चाहिए, डेडिकेशन तो होता है, ज़रूरत होती है। इसलिए क्या लगता है अभी जो बोला मैंने कि थोड़ा बहुत अनुशासन, क्योंकि ऐसा जो टीवी में देखते हैं, जो वीडियोस में हम देखते हैं, उनका लाइफ ऐसा नहीं रहता है। वो लोग 4 बजे से आगे उठते हैं, उनके डेली लाइफस्टाइल ऐसी रहती है। एक दो मूवीज़ में, एक दो बार पार्टीज़ में देखते होंगे, लेकिन ज़्यादातर जितने भी अच्छे आर्टिस्ट हमें मिले हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग, वो अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड करते हैं, ऐसे लोग ही सफल होते हैं, जहाँ तक मेरी समझ है, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी को अगर हम कला से जोड़ेंगे, संगीत से जोड़ेंगे, तो ये बहुत प्रोडक्टिव भी होगी, सेटिस्फाइड भी रहेगा।
0: क्या बात है, और मुझे लगता है आपने एक लंबी जर्नी के हिसाब से, स्टेबिलिटी के हिसाब से बताया
1: जी।
0: क्योंकि सक्सेस भी है तो उतार चढ़ाव भी है
1: जी।
0: तो अपने आप को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है ऐसे समय में, जिसमें मेडिटेशन जो है बहुत मदद करता है,
1: बहुत मदद करता है,
0: जैसा आपने कहा
1: जी।
0: तो हम आगे भी आपसे कुछ गुफ्तगू ज़रूर करेंगे। सोम जी, अगला गीत आप हमें कौन सा सुनाएंगे आज?
1: अगला कोई तो है जो।
0: ओके, चलिए तो ये गीत सुनते हैं ओम जी की आवाज़ में। और आपको कैसा लगा ये गाना, आप हमें ज़रूर बताइए कि गाना एंड गिटार सोम जी, क्योंकि दोनों प्ले कर रहे हैं इस वक्त रेडियो मधुबन के स्टूडियो में, तो आपको कैसा लग रहा है दोस्तों, हमें मैसेज करके बताइए 9414151415 पर, यानी कि 9414151415 पर।

0: बार फिर से लौट कर आ गए हैं हम। कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। हमारे साथ हैं सोम जी, जो कि बहुत एक फेमस बैंड के मेंबर भी हैं और साथ साथ वो संगीत में कई लोगों को अब सिखा भी रहे हैं, तो कई जगह परफॉर्म कर चुके हैं, गिटार भी बजाते हैं, अदर इंस्ट्रूमेंट्स भी प्ले करते हैं, साथ में बहुत सुंदर आवाज है उनकी, तो उनसे आज हम बातें कर रहे हैं। सोम जी, जैसा आपने अपने बैंड के बारे में तो बताया, यहाँ पे म्यूजिक के बारे में आपसे जानना चाहूंगी कि म्यूजिक जब आप शुरू करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या आपको कोई एक माहौल की जरूरत होती है, या क्या लगता है क्या उस वक्त आपको जरूरत होती है?
1: जी, मेरे विचार से जब से मैंने गिटार पकड़ा है, ये गिटार एक मेरे कंपेनियन के जैसा है, एक फ्रेंड की तरह, क्योंकि लोग होते हैं, दोस्त भी ऑल द टाइम हम साथ नहीं रह सकते, लाइक परिवार भी हम साथ में नहीं रह सकते, लेकिन ये जो गिटार है, गिटार माना कला, इसके हिसाब से मुझे लगता है कि अगर हर एक इंसान कुछ ऐसी चीज़ों से है तो निर्जीव है, लेकिन इसमें बहुत सारे ये ब्रह्मांड की चीज़ इसमें समाई हुई है, तो इसको फ्रेंड बनाएंगे तो आप कभी अकेले फील नहीं करोगे। तो बाद में जब मेडिटेशन जब हमने लर्न किया, तो लगने लगा कि हाँ, स्टाइल तो एक ही है, ये स्थूल रूप में है, और ये जो मेडिटेशन है ये अंदरूनी बात है। तो मुझे लगता है अगर कोई इसी हिसाब से कला में जुड़ जाता है, अगर एक फ्रेंड बना लेते हैं उस चीज़ को, तो वो भी उसी तरह आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करेगी। उसके लिए आपके डेडिकेशन और आपके उस प्रति जो रिस्पेक्ट है, भावनाएं हैं, वो बहुत मायने रखती है। तो
0: लेकिन सोम जी, अक्सर ऐसा समझते हैं कि मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी ये एक एज के बाद ज़रूरी है, यूथ को क्या ज़रूरत है?
1: अभी तो मेरे हिसाब से लगता है कि यूथ को ही ज़्यादा ज़रूरत है।
0: अच्छा।
1: क्योंकि अभी जो संसार में हम देख रहे हैं, जो भी चीज़ें अभी बन रही है, ये साइंस वाले, अभी ये डिजिटल दुनिया है, जो कुछ भी बन रहे हैं, ये सब चीज़ क्या कर रहे हैं, मन को भड़काती है, डिस्टर्ब करती है, और हमारे जो ब्रेन है, जो मेमोरी है, उसकी पावर को ये घटाता है, तो इसको कोई ना कोई हार्म पहुंचाते रहता है। तो जिस तरह से आज लोग डिपेंडेंट हो गए हैं इन चीज़ों से, जैसे मोबाइल है, कंप्यूटर्स है, अब ये सोशल मीडियाज है, ये बहुत हमारी आत्मा की शक्ति को, मन की शक्ति को ये डिप्लीट करती है। तो मुझे लगता है क्योंकि बुज़ुर्ग लोग ज़्यादा इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं रहते हैं, ज़्यादा डिपेंड रहते हैं स्कूल के, कॉलेज के स्टूडेंट्स, यंगस्टर्स ज़्यादा इन पे डिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि इसके छूटने पर अगर किसी दिन हमारे पास मोबाइल नहीं है, नेटवर्क नहीं है, तो ये दिन क्या होता है उनके लिए खराब रहती है।
0: Right.
1: तो इसीलिए मुझे लगता है कि हर एक यंगस्टर्स अगर वो स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में अपना ले, तो एक अंदरूनी शक्ति जो खुद से इंजॉय कर सकते, खुद से बातें कर सके, और अपनी एग्जिस्टेंस का वो खुद पता कर सके कि मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, मुझे क्या करने हैं मेरे जीवन में, मेरे जीवन के लक्ष्य उद्देश्य क्या है। तो अगर ज़िंदगी में ये बातें किसी को समझ में आ जाता है, तो वो संसार जीत सकता है, ऐसा मुझे लगता है।
0: बहुत अच्छी आपने बात कही समझी, और ये मुझे लगता है क्योंकि करियर हमारा जो हमें बनाना है या हम बना रहे हैं, उसमें स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, तो हर सिचुएशन को फेस करने के लिए, अपने मन को और ताकतवर बनाने के लिए आप मेडिटेशन साथ साथ कर सकते हैं, जैसा कि सोम जी भी प्रैक्टिस करते हैं। तो अगला गीत सोम जी आप हमें कौन सा सुनाएंगे?
1: अभी हमारे पास ओम जय जगदीश
0: जी
1: गाना है
0: जी।
1: तो मैं श्रोताओं को ये सुनाना चाहता हूँ
0: जी, जी। चलिए, तो हम ये गीत, ये आरती सुनते हैं, लौट कर आएंगे कार्यक्रम मधुबन अनप्लग्ड में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: घड़ी की आवाज तो कह रही है कि इस वक्त आपसे इजाजत लेने का वक्त हो चला है, लेकिन दोस्तों मधुबन अनप्लग्ड कार्यक्रम लेकर आते हैं तो सुवादे के साथ आते हैं कि अगले हफ्ते फिर से जरूर आएंगे। आज हमारे साथ सोम जी जुड़े हैं जो कि बहुत बहुत सुंदर मेलोडियस आवाज में हमें एक दूसरी दुनिया की ओर लेकर जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत आवाज और डेफिनेटली ऐसी आवाज ऐसे गीत हो तो ऐसा लगता है कि अच्छा दिन भर कुछ और सोच रहे थे लेकिन अब मन फिर से करता है कि एक नई सोच की ओर आगे बढ़ा जाए। तो मन पॉजिटिव, मन शक्तिशाली तो नया कुछ सोचने का दिल भी करता है ना दोस्तों। तो आइए सोम जी से जाते जाते मैं आपसे बस यही जानना चाहूंगी कि यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। कई बार जब हम अपने करियर में आगे बढ़ते हैं तो एक लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं कि हम, क्योंकि लेट नाइट भी है, पार्टीज भी हैं, दोस्त भी हैं और पैसे भी आने शुरू हो जाते हैं
1: जी।
0: कहीं ना कहीं परिवार थोड़ा सा पीछे हो जाता है, छूट जाता है कभी कभी। तो आप क्या कहना चाहेंगे
1: इसके लिए? मैं अपना अनुभव बताना चाहता हूँ। तो कोरोना से आगे लगभग 3.5 साल मैं नेपाल के जेल में, हमारे ब्रह्म कुमारी के एक मेडिटेशन सेंटर बनाया हुआ है, वहाँ से गवर्नमेंट से हमने स्वीकृत ले करके, तो वहाँ पर जाते हैं, उनको मेडिटेशन सिखाते हैं, रोज़ रोज़ उनकी समस्याओं की बातें, उनको मोटिवेट करते हैं। तो मैंने क्या देखा यंगस्टर में, तो ज़्यादातर जितने भी ये गलत कार्य होते हैं, कर्म होते हैं, ये सब गलत खान पान और गलत चीज़ें देखना, गलत चीज़ों से दिल बहलाना और गलत संगत के कारण बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जो अभी वहाँ भी जेल में अपने जीवन बिता रहे हैं। तो देखा तो उनको जब हम काउंसलिंग करते हैं तो हर एक यंगस्टर के पीछे वो एक अंदर से उनकी चाह तो होती है, फिर भी वो मेंटली वो प्रिपेयर नहीं है, तो इसलिए वो ड्रग्स का सहारा लेते हैं, कोई शराब का, ऐसे जो गलत आदतें हैं इन चीज़ों का सहारा लेने से, क्योंकि उनकी जो खान पान है, खान पान गलत होने के कारण, एक घटना मैं बताता हूँ क्या हुआ था। 3 दोस्त मिले थे, तो 3 दोस्त की मीटिंग हुई, तो मीटिंग होने के साथ क्योंकि वो गलत चीज़ खान पान करते थे तो होटल में गए, वो होटल में जा कर के गलत चीज़ खाए, शराब पी। वो खाने के बाद क्या हुआ, आजकल हर एक के हाथ में मोबाइल होते हैं तो मोबाइल में ज़्यादातर लोग गलत चीज़ ही देखते हैं, और ये तो यंगस्टर लोगों की ये आदत जैसी बन गई अभी। तो उसके बाद क्या हुआ, उनमें जो अंदर गलत चीज़ वो सेवन कर रहे थे और गलत चीज़ देखने से उनके वो जो माइंड पे एक ट्रिगर हो गया, उनको वो चाह अंदर से निकल गया, वो क्या बोलते हैं, वो राक्षसीपन होते हैं ना अंदर से, वो निकलने लगे, तो उनके गलत विचार आने लगे, तो उन्होंने जाके ऐसे गलत व्यवहार किए, तो उसके हिसाब से वो अभी जेल में है बोला। तो मैंने देखा कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में खान पान को सुधारते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, जैसा अन्न वैसा मन बोलते हैं, जैसा आहार वैसा विचार बोलते हैं, तो भगवान भी यही कहते हैं, ईश्वर भी यही कहते हैं, अगर आपके खान पान अच्छे हो तो आपके दोस्त, आपके संग अच्छे मिलेंगे। क्योंकि आपके खान पान अच्छे नहीं हैं, जहाँ भी जाओगे गलत चीज़ खाओगे तो गलत ही लोगों को आपको संगत मिलेगी, तो इसीलिए इन चीज़ों से बचना है तो सबसे पहले आपको गलत खान पान से बचना होगा। गलत चीज़ जो सेवन करते हैं, जो इस शरीर के लिए गलत है, जो हानिकारक है, ऐसे चीज़ों से बचना है
0: जी।
1: और जो हम देखते हैं टीवी में, मोबाइल में, जो अच्छे नहीं हैं, जो हम परिवार के साथ देख नहीं सकते, जो अश्लील है, तो ऐसे चीज़ें अगर ना देखें तो ये इसमें ही बहुत लाभ मिलेगा
0: जी।
1: और उसके बाद में संगत, आपके जितने दोस्त हैं उनको भी आपको विचार करना है, क्योंकि आपके पास चॉइस है करना ना करना, कैसे संग के साथ आप रहना नहीं रहना, ये आपके साथ चॉइस है, इसलिए ये 3 चीज़ों को आप यंगस्टर विचार करेंगे, इसको समझ पाएंगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी
0: जी। थैंक यू सो मच सोम जी. और जैसे आपने कहा गलत हैबिट्स नहीं, तो अगर नशे की ओर या गलत और आदतों की ओर बढ़ते हैं तो जीवन में जो सपने हम जीना चाहते हैं वो शायद कहीं जाके ब्रेक लग जाता है वहाँ पे, जो नहीं होना चाहिए, हम नहीं चाहते किसी के साथ भी हो. तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा. सोम जी आपने जो बातें कही जीवन की, वो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी विजडम है, तो हम ज़रूर इसमें से कुछ सीखने का प्रयास करेंगे. जाते जाते आप हमें आखिरी आज के इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनाना चाहेंगे?
1: तो आखिरी गाना ये मूवी का सॉन्ग है, शायद हर एक ने सुना हुआ होगा, ये आसियाना गीत. ये बहुत प्यारी गीत है, आप सभी श्रोताओं के लिए पेश करना चाहता हूँ.
0: चलिए ज़रूर सुनेंगे. बहुत खूबसूरत ये गीत सोम जी की आवाज़ में हम सुनेंगे. गिटार भी उन्होंने बजाया है, गाया भी उन्होंने है. और दोस्तों जाते जाते आपको रेडियो मधुबन का नंबर फिर से बता देते हैं. अगर आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपना नाम, अपने गांव का नाम लिखकर हमें भेज दीजिए. नंबर है 9414151415, यानी कि 9414151415. संगीत को अपने जीवन में हमेशा शामिल रखिए. संगीत उम्र नहीं देखता, पर आप संगीत से जुड़े रहेंगे तो जीवन और खुशहाल होगा. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए. रेडियो मधुबन

आकम खान आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ माने आवे पिया जी री हिचकी मारो वादीलो चितारे माने आवे हिचकी। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए संपर्क करावे हमारे टेलीफोन नंबर है 9001313752 9001313752 ये हमारे टेलीफोन नंबर है। मधुबन रेडियो की तरफ से प्रसारण किया जा रहा है राजस्थानी लोकगीत आवे माने हिचकी। हमारा संगीत कला केंद्र है जहां हमारे संगीत बच्चे सिखलाई लेते हैं। बच्चों को संगीत सिखलाई के लिए हमारे को कमायचा खड़ताल ढोलक हारमोनियम सिखाया जाता है। तो संगीत सिखलाई के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम में जरूर हमारे संपर्क करें। संगीत निर्देशक आकम खान

0: दोस्तों, कभी आपने खाली समय में बैठकर के ऐसा सोचा कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई, या ये दुनिया कैसे शुरू हुई, या पृथ्वी कैसे आई, सूरज कैसे चमकता है, या ऐसे कई सवाल हैं जो जीवन में हम चाहे तो बैठकर के सोचना शुरू करें तो दिन कब खत्म हो जाए पता भी ना चले। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि इनमें से कई सवालों का जवाब विज्ञान हमें दे चुका है, और कई ऐसे सवाल हैं जिनके तह तक पहुंचने में विज्ञान को अभी भी काफी समय है। लेकिन विज्ञान ने हमारे जीवन को बहुत सुखमय बनाया है। कई ऐसे वैज्ञानिक, कई ऐसे लोग जिन्होंने अपना जीवन विज्ञान को समर्पित किया है, उनके योगदान की वजह से आज हमारा जीवन इतना सुखद है। दोस्त, एक ऐसे ही वैज्ञानिक से आज हम बात करने जा रहे हैं। 107.8 रेडियो मधुबन पर आप सुन रहे हैं यशस्वी भारत कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे अतिथि मौजूद हैं, प्रोफेसर रामकृष्ण वी हसूर जी। प्रोफेसर रामकृष्ण वी हसूर कर्नाटक के राज्य से आते हैं और एक बहुत ही जाने माने विख्यात वैज्ञानिक है भारत के, जिन्हें वर्ष 2014 में भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। आइए शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला प्रोफेसर श्री रामकृष्ण हसूर जी के साथ। प्रोफेसर रामकृष्ण हसूर जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने अपने बिजी लाइफ से हमारे लिए थोड़ा सा समय निकाला और हमारे श्रोताओं के बीच में आप आए हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू। या, इट्स माय प्लेजर।
0: तो रामकृष्ण जी, आपसे हम शुरुआत करना चाहेंगे एक लंबी गहरी बातचीत का, लेकिन उस बातचीत से पहले हम जानना चाहेंगे आपकी कहानी, आपकी जुबानी। संक्षेप में हमारे श्रोताओं को बताइए, कहां से आपकी जर्नी शुरू हुई, कौन कौन से पड़ाव, माइलस्टोन्स आपने कवर किए, एंड हाउ वाज इट लाइक।
1: ओके। मैं कर्नाटका के धारवाड करके एक टाउन है, वहां पैदा हुआ था। सो मेरा सब स्कूलिंग वगैरह, एजुकेशन जो है, वे धारवाड में ही हुआ था। अप टू SSC मेट्रिकुलेशन वहीं पे धारवाड में किया था मैंने। उसके बाद एक साल के लिए मैं मुंबई आया था फर्स्ट ईयर साइंस करने के लिए, क्योंकि उस समय वहाँ पे मैं थोड़ा सा अंडर एज था कॉलेज जाने के लिए, लेकिन मुंबई में इस तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। मेरे मामा थे यहाँ पर मुंबई में, उन्होंने कहा ठीक है, एक स्कॉलरशिप मिला था मुझे, नेशनल स्कॉलरशिप। अगर मैं एजुकेशन कंटिन्यू न करता तो स्कॉलरशिप निकल जाता, तो इसलिए उन्होंने कहा चलो तुम ठीक है, तुम मुंबई आ जाओ, हम कंटिन्यू करेंगे। तो मैं एक साल के लिए मुंबई आया था, उसके बाद फिर वापस धारवाड में चला गया, क्योंकि उस समय उन्होंने एज रिस्ट्रिक्शन निकाल दिया। तो मैं BSc धारवाड में किया, BSc कर्नाटक कॉलेज में, वहाँ पे केमिस्ट्री लेके BSc केमिस्ट्री किया। वहाँ पे मुझे यूनिवर्सिटी को रैंक मिला था, तो उससे भी स्कॉलरशिप मिला। उसके बाद मैं IIT बॉम्बे ज्वाइन किया MSc के लिए, MSc केमिस्ट्री में आ गया था, वहाँ पे मुझे स्कॉलरशिप मिला था। तो वहाँ पे हॉस्टल में रहते हुए मैंने MSc केमिस्ट्री वहाँ से ख़त्म कर दिया। उसके बाद मैं PhD के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ज्वाइन किया, वहाँ का कोई इंटरव्यू सब जगह होते हैं, तो उसको क्लियर करके TFR में मैंने PhD के लिए ज्वाइन किया था। उस समय डिग्री तो मुंबई यूनिवर्सिटी से आता था, रिसर्च कहीं भी करो, TFR में भी करेंगे तो भी डिग्री तो मुंबई यूनिवर्सिटी से ही आता। तो 1978 में मैंने मेरा डिग्री ख़त्म कर दिया, PhD ख़त्म कर दिया। PhD के बाद मुझे वहीं पर जॉब मिल गया था, TFR में ही मुझे जॉब मिल गया, तो मैं वो जॉब लेके, उसके बाद दो साल के बाद मैं छुट्टी लेके लीव, स्टडी लीव करके वहाँ एक प्रोविजन होता था, उसको लेके मैं स्विट्जरलैंड गया दो साल के लिए पोस्ट डॉक्टरल करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। वहाँ पे ETH ज्यूरिख में प्रोफेसर कुर्ट वित्रिक और प्रोफेसर रिचर्ड अर्नस्ट, ये दो लोग थे, बड़े दिग्गज लोग थे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो उनके साथ मैं काम करना शुरू कर दिया, वहाँ पे दो साल में काम करके फिर वापस टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में आ गया था। तो उस समय दैट वाज ए गेम चेंजर फॉर मी। तो वहाँ पे मैंने जो सीखा है तो उसी को लेके मैं पूरा कंटिन्यू करते गया, पूरा मेरी जिंदगी भर उसको एक्सपांड करते करते आगे आके लेते गया। तो वो उस समय का वो रिसर्च जो था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, नए नए चीज़ें निकल आ रहे थे। तो आप सोचिए, वो दोनों को नोबेल प्राइज मिल गया, रिचर्ड अर्नस्ट वो जो कर रहे थे न्यूक्लियर मैकेनिज्म स्पेक्ट्रोस्कोपी, उन्होंने फूरियर ट्रांसफॉर्म एनएमआर डिस्कवर किया, टू डायमेंशनल एनएमआर डिस्कवर किया, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का फाउंडेशन किया, तो उनको 1991 में नोबेल प्राइज मिला था। उसके बाद प्रोटीन स्ट्रक्चर जो करते थे थोड़े छोटे, उस समय तो प्रोटीन स्ट्रक्चर निकल करने के लिए सिर्फ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी होता था, दूसरा कोई टेक्निक नहीं था, सॉल्यूशन में करने के लिए कोई टेक्निक नहीं होता था। ये प्रोफेसर वित्रिक जो है उन्होंने प्रोटीन क्रिस्टल प्रोटीन स्ट्रक्चर निकालने के लिए एनएमआर यूज करके उसका मेथड निकाल दिया, तो उस समय उसमें मैंने काम किया था, तो उनको भी नोबेल प्राइज मिल गया 2002 में, उनको भी नोबेल प्राइज मिल गया था। ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि जिस दोनों के साथ मैंने काम किया वो दोनों को नोबेल प्राइज मिल गया बाद में। फिर मैं आके TIFR में एनएमआर रिसर्च शुरू किया, उसी समय TIFR ऑल्सो अक्वायर ए हाई फील्ड एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर, वो 500 मेगाहर्ट्ज करके एक स्पेक्ट्रोमीटर उन्होंने खरीदा था। उस समय इंडिया में वही एक स्पेक्ट्रोमीटर था, बड़ा हाई फील्ड स्पेक्ट्रोमीटर का वही एक था, तो TIFR ने अक्वायर किया था। मैं आके मेरे ऊपर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया, तो उसको लेके बायो मॉलिक्यूल्स प्रोटीन्स न्यूक्लिक एसिड्स ये सब चीजों के ऊपर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन और उसके इंटरैक्शन करना शुरू कर दिया मैंने। तो काफी सारे लोगों को मैंने ट्रेन किया था उस पर, और ये जो हमने इसको नेशनल फैसिलिटी कर दिया था 500 मेगाहर्ट्ज़ के अलावा दुनिया में तो

और भी एक खरीदा वहां पर 600 MHz स्पेक्ट्रोमीटर खरीदा, क्योंकि गवर्नमेंट को ये कन्विंस हो गया कि हम अच्छे सर्विस दे रहे हैं, इंडिया के रिसर्चर्स को अच्छे सर्विस दे रहे हैं। 600 MHz खरीदने के लिए भी उन्होंने पैसे दे दिया था। तो उस समय 600 MHz के लिए 10 करोड़ पैसा लगता था, 10 करोड़ रुपये। तो हमने उसको खरीदा, फिर भी उसी को नेशनल फैसिलिटी को बनाया था। तो ऐसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ता गया तो दुनिया में और भी बड़े बड़े स्पेक्ट्रोमीटर आने लगे। वो 600 MHz आ गया, उसके बाद 700 MHz आ गया, 800 MHz आ गया। तो हमने 2003 में ये उनको भी हमने अक्वायर किया ये फैसिलिटी में, बिकॉज नेशनल फैसिलिटी था ना। उस समय 800 MHz स्पेक्ट्रोमीटर खरीदने के लिए और एक सॉलिड स्टेट NMR स्पेक्ट्रोमीटर खरीदने के लिए 22 करोड़ का खर्चा करना पड़ता था। तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिल्कुल आसानी से सपोर्ट कर दिया। जैसे रोके यू आर डूइंग सो वेल विथ रिगार्ड टू द नेशन नेशनल सर्विस, इट हैज टू बी इन दिस प्लेस ओनली, दे कैन नॉट बी एनीवेयर एल्स, इट हैज टू बी इन दिस प्लेस ओनली। तो उन्होंने पैसे दे दिया। तीन तीन डिपार्टमेंट, DS डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्री, तीनों आके मिल के हमें पैसे दे दिया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो ये 22 करोड़ का उस समय, ये देखिए 2003 में ये सब स्पेक्ट्रोमीटर्स आ गए और उसका यूसेज बढ़ता रहा। हमने उसके ऊपर रिसर्च भी करते रहे, अलग अलग नया मेथड्स निकलते गए, प्रोटीन स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, इंटरैक्शन करते गए। तो ये बड़ा अजीब सा फैसिलिटी बन गया था इंडिया में। और उसके साथ जैसे जैसे इसका महत्व लोगों को समझ आने लगा, और हमने भी इसके लिए बहुत कोशिश की कि हम इंडिया के अलग अलग जगह में जाके वर्कशॉप करते थे, NMR वर्कशॉप्स कर रहे थे। तो दुनिया के, इंडिया के हर कोने में, कभी नॉर्थ में जाओ, कभी साउथ में जाओ, कभी ईस्ट में जाओ, कभी वेस्ट में जाओ, सब जगह जाके हम वर्कशॉप करते थे। हर वर्कशॉप में तो 100-100 लोग, बच्चे आते थे, रिसर्चर्स भी आते थे, उनको सिखाना था ये NMR का वैल्यू क्या है, इसका कितना महत्वपूर्ण रिसर्च कर सकते हैं उसके साथ, ये सब हमने उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लिया था। और अभी भी वो कंटिन्यू कर रहे हैं हम, अभी ये अभी चलता रहा, अभी भी चलता रहता। जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ता रहता है हम उसको अपडेट करते रहते हैं लोगों को, तो वो फैसिलिटीज का भी बढ़ता जा रहा है। अभी देखिए नेशनल फैसिलिटी TFR में जो है, अभी पिछले साल में उसके साथ जो लोग उसको यूज करने के लिए आते थे, हम उनको कहते थे देखो भाई इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा पैसे देना पड़ेगा। क्यों पैसे देना पड़ेगा? क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम सीरियस हो, अगर सीरियस नहीं हो तो हम उसको इस्तेमाल करना नहीं थे, क्योंकि और लोग भी हैं जिसके लिए उनको जरूरी है। तुम उसको सीरियस हो, कितना सीरियस हो वो हम देखना चाहते हैं। तुम्हारे प्रोजेक्ट अगर अच्छा है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो हम चार्ज नहीं करेंगे। अगर तुम्हारे पास प्रोजेक्ट अच्छा है, तुम्हारे पास पैसा है, तुम दे सकते हो। और काफी इंडस्ट्रीज भी उसके यूज करने लगेंगे। अभी तो पिछले साल में अभी ऐसा चल रहा है, वो तो हर साल में दे एक्चुअली अर्न एटलीस्ट समथिंग लाइक अबाउट 70-75 लाख। तो लोगों को, लोग इतने उसका यूज करने के लिए आ जाते हैं, उनका मदद मिल जाता है, एनालिसिस में मदद मिल जाता है। सो इसका पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गया, इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी भी बढ़ गया। तो हम बाहर से भी लोगों को बुलाते थे वर्कशॉप करने के लिए, वहां से भी लेक्चर्स अरेंज करते थे, तो इसलिए इनकम वैल्यू काफी बढ़ गया है। तो सो दैट वॉज ए नेशनल सर्विस। तो हमने उसके बाद तो हम कभी बाहर बहुत देर के लिए कभी बाहर गए ही नहीं। इंडिया में और कॉन्फ्रेंस के लिए जाते थे, कॉन्फ्रेंस में अपना काम प्रेजेंट करते थे और वहां के लोगों को बुला के यहीं पे कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते थे, वहां से लोगों को काम करवाते थे। तो इसलिए यहाँ का रेपुटेशन काफी बढ़ गया, नेशनल फैसिलिटी का रेपुटेशन काफी बढ़ गया। तो इसके वजह से हमने एक बड़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होता था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ मैग्नेटिक रेजोनेंस एंड बायोलॉजिकल सिस्टम्स, ये वो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस है NMR के लिए। उसको हमने इंडिया को 2 बार लेके आए। क्यों लेके आए इंडिया में? क्योंकि हमारे बच्चे तो वहां नहीं जा सकते, उसके जाने के लिए पैसे बहुत चाहिए। वहां तो रजिस्ट्रेशन भी बहुत होता है, ट्रैवल का पैसा बहुत होता है, वहां रहने के लिए काफी महंगा हो जाता है, तो वहां कैसे जाएंगे? तो इसलिए हमने सोचा था तो वही कॉन्फ्रेंस को ही हम यहाँ ले आएंगे। तो इसलिए हम तीन बार लेके आए थे, 1980 पे एक बार ले आए थे, 1984 में ले आए थे, 2004 में ले आए थे, और एक बायोफिजिक्स कांग्रेस करके कॉन्फ्रेंस होता था, वो उसमें NMR, सिर्फ NMR ही नहीं, क्रिस्टलोग्राफी, बाकी सब बायोफिजिकल रिसर्च जो होता है, प्रोटीन स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, प्रोटीन स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर एंड इंटरैक्शंस, ये बायोफिजिक्स कांग्रेस का ये इससे भी बड़ा कॉन्फ्रेंस है। हमने उसको भी ले आया, उसको दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया था 1999 में।
तो इस तरह

0: हमारा मेहनत तो लोगों को सर्विस देने का, अपने रिसर्च को बढ़ाने का, ये हमेशा रहा। सो दैट वाज ए सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इन दैट वन। एंड उसके साथ साथ हमने सोचा कि एजुकेशन सिस्टम्स को भी बढ़ावा देना है। तो एजुकेशन सिस्टम कैसे बढ़ावा देना है? तो अभी एजुकेशन सिस्टम तो कोई छोटे छोटे इंस्टीट्यूट में अच्छी तरह से एजुकेशन होता है, समझो कि IITs में होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में होता है, और आजकल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च का भी एक नए इंस्टीट्यूशंस आ गए हैं, तो चार पांच इंस्टीट्यूशंस आ गए हैं। तो इससे इससे बच्चे लोग वहां पे आते हैं, उसका रिसर्च पढ़ाई अच्छा होता है, लेकिन ये लिमिटेड हो जाता है ना, लिमिटेड हो जाए। कितने बच्चों को ले लेंगे एक नया इंस्टीट्यूशन करने के लिए? वो तो 1,000 लेंगे, 2,000 लेंगे, लेकिन हमारे यहाँ 700 यूनिवर्सिटीज हैं, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे वहीं से आते हैं, उनका एजुकेशन कैसे इंप्रूव करोगे? तो एंड देयर फॉर व्हाट वी थॉट, दिस वाज द इनिशिएटिव ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, एंड दे सेड ओके लेट अस हैव एन इंस्टीट्यूशन इन द यूनिवर्सिटी कैंपस व्हिच हैज द सेम मैंडेट एज दिस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, आईसर जो बोलते हैं ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च। वो एक इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करने के लिए 1,000 करोड़ का पैसा लगता है, क्योंकि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश करना है, लेकिन यूनिवर्सिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऑलरेडी है, तो उसको ही तुम यूज करो। बाकी नियर बाय इंस्टीट्यूशन से टीचर्स को इनवाइट करो पढ़ाने के लिए। और इसका खर्चा कितना होता है? हमें ए इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किया मुंबई यूनिवर्सिटी में, इट इज कॉल्ड UMDE, सेंटर फॉर एक्सलेंस इन बेसिक साइंसेज। इसका 5 साल का खर्चा सिर्फ 50 करोड़। तो और कितने हम कितने बच्चे को पढ़ाते थे? ऐसे ही उसी तरह का मैंडेट, उसी तरह का क्वालिटी हम जनरेट करते थे बच्चों का। ये काफी महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन था इसका। तो ये हमने सिलेबस तैयार किया उसका पढ़ाने के लिए, लेटेस्ट सिलेबस, सो दैट दे रिमेन अप टू डेट, एंड इट इज क्वाइट फ्लेक्सिबिलिटी इन दैट वन इन द सिलेबस। एंड वी ऑल्सो गॉट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, इवन अब्रॉड दे कम एंड टॉट एट दिस प्लेस, एंड आई हैपन टू बी द डायरेक्टर ऑफ दैट प्लेस, आई बिकेम द डायरेक्टर ऑफ दैट सेंटर, सेंटर फॉर एक्सलेंस इन बेसिक साइंसेस। उसका मैं 8 साल तक डायरेक्टर रहा, सो 2009 से 2017 तक मैं उसका डायरेक्टर रहा। तो उस समय वो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन बन गया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से उसको पैसे मिलने लगा, एंड यूनिवर्सिटी से उनको डिग्री मिलता था सब बच्चों को, एंड यूनिवर्सिटी वॉज ए पार्टिसिपेशन, एंथुजियस्टिकली पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेंटर, सो दैट बिकेम ए रोल मॉडल फॉर अदर यूनिवर्सिटीज टू फॉलो। So there are many universities can establish this under this kind of a center with much less investment. So overall across the country, the education system can improve. That was the idea. It is still growing on. It is going now, developing very well. Many universities are approaching to establish such kind of a centers. So it need not be always the Department of Atomic Energy. Some other department of state government can also fund it. Raipur University started this after us, and there we went and taught there how to establish the institution, and they came to the Center for Excellence in Basic Sciences to teach this thing. At the same time, मैंने मेरा रिसर्च यहाँ पर मैं तो कंटिन्यू होता था, मैं दोनों जगह पे मेरा ये था, तो मैं I was having both the appointments, the director here and also with the senior professor at Tata Institute of Fundamental Research. So I had actually guided about 23 PhD students and about the same number of postdoctoral students, and we published together nearly 250 research articles, and all this was going parallelly. Use the facilities in TIFR, education system in CBS to improve the quality of education in the university system, higher education system. So all of this was actually received very well, and ultimately it resulted in my Padma Shri from the President of India in 2014. So I continue to do that. Now I retired from TIFR in 2018 as a research as a senior professor, but I continue to be associated with IIT Bombay as distinguished visiting professor, and there I interact with the PhD students of one of the departments, and my students have occupied professorial positions in many places in the country, including the IITs and the ICERs and many places. There are at least 8 to 10 students who are now faculty positions, professors in all of these places, and therefore I have a good rapport with all of these institutions and their facilities, and I can guide those students, and that thing is what I am enjoying now. So recently a book was published. You may not be aware of this one. Just last month it has appeared. Somebody has published a book called 100 Great IITians dedicated to the service of the nation. And it turns out that I'm one of those 100 IITians. And this includes names like Narayan Murthy, Nandan Nilekani, Subba Rao, the governor of RBI, governor former, Sri Kumar Banerjee, Atomic Energy Chairman, and there are several others. So therefore, it is a matter of pride that we have served the nation in the best possible manner. And the title of the book says, those who were not lured by the invitations from other countries to go there and dedicated the service to the nation. And that is, so they picked up on that basis. So I was very happy to see that. That recognition has come for the services we have delivered, the research we have performed, and educating the various students, the PhD students, and bringing them back to the country. Bringing them back to the country to serve in the nation. So therefore, I think overall, it has been a very satisfying experience. Institution building, national service, educating the student, generating manpower, quality manpower in the country. So that has been the story, and I continue to do research with these students and faculty in IIT Bombay. And I continue to teach at the Center for Excellence in Basic Sciences in the University of Mumbai campus. So that is in short my story till now.
1: It is definitely one of the most inspiring stories that we have heard. But coming back to your initial part of your story, jab aap ki kahani shuru hui, आपके बचपन में क्या शुरू से ही आप खोजी प्रवृत्ति के थे या विज्ञान के प्रति आपका रुझान शुरू से था? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आज हमारे श्रोताओं में कई ऐसे लोग भी होंगे जो कि विज्ञान को बहुत कठिन मानते हैं, कई ऐसे बच्चे या युवा भी सुन रहे होंगे जिनको विज्ञान गणित इन सब से थोड़ा सा बुखार आता है क्योंकि थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन आप अगर अपने बचपन की उस रुझान के बारे में हमारे साथ शेयर करें जिससे लगे कि इतना डिफिकल्ट भी नहीं है और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी हो सकता है।
0: वही ये दो चीज कहना चाहता हूँ यहाँ पर। पहले तो मेरा बेसिक साइंसेस में मेरा इंटरेस्ट शुरू से भी था, ओ विज्ञान का इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड भी था इसके अंदर। मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो मेरे ग्रैंडपा, ही वाज एक्चुअली अ ग्रेट स्कॉलर, and in that family my mother, they were all great scholars in their schools, and so therefore basic interest in pure science was always there. That was number one, that we wanted to excel in that. Even from the school days itself, I had this dream that I will contribute being in India in pure science. That was my dream. And second, of course, there was another factor was that I would not dream to go into streams such as engineering and medical fields, other fields, because they were expensive. Our resources did not permit that. So wherever I went with scholarships only. Whether I was doing BSc, and in fact, as I told you, after the 10th standard, I got the national scholarship, and that is given only for pure science. It was not given for anything else. If you go to engineering field, that scholarship will not be available. And so therefore, I chose pure science for financial reasons as well, also my interest. So it matched with my interest. And I got the scholarship from IIT Bombay as well. Then unka bhi merit kam means scholarship tha. Usme free ship mil gaya mujhe aur ek scholarship bhi tha. Therefore, it became easier for me to navigate through the courses and pursue my interest.
1: Lekin un logo ka kya jinko maan lijiye scholarship nahi milta, kyunki aap bhi jab scholarship fight kar rahe the to maybe aap wo chune hue 10-15 logo mein honge jinko scholarship mila, baki ke jo log hain jinko nahi mila, unke andar ye jazba pure science ko lekar ke, vigyan ko lekar ke ki usme ruchi bani rahe, uske liye kya basic practices hain, kaise hum hamare ko prepare kare ki vigyan
0: क्रिएटिविटी सी ये उनको सोचना चाहिए, समझ में आना चाहिए, द विदाउट क्रिएटिविटी विदाउट इन्वेंशन यू कैनॉट प्रोग्रेस। द टेक्नोलॉजी इज एन आउटकम ऑफ pure science. Creativity comes from pure science. So therefore, this creativity has to be imbibed into the minds of the students. And for that, teaching is very efficient. Teaching in a way that they get attracted towards that is very important. And that we made it a point, even the CBS, Center for Excellence in Basic Sciences, we got therefore the best of the teachers. But the best of the teachers, and all of them, all the students actually are pursuing PhD. After those, not many have gone into other fields. Everybody is pursuing PhD in pure science, either physics or chemistry or biology. उसमें जाते थे. आज तो कंप्यूटर साइंस में भी कभी कभी चले जाते हैं. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो आते हैं कंप्यूटर साइंस में आ जाते हैं. एल्गोरिथम्स डेवलपमेंट करना है तो वहां भी आ जाते हैं. सो विच इज ओके, दिस इज ऑल्सो प्योर साइंस. हाउएवर, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट दैट ओनली दोज हु आर डीपली इंटरेस्टेड इन दोज फील्ड्स परस्यू दैट फील्ड्स. यू शुड नॉट बी फोर्स्ड ऑन समबडी हु इज नॉट इंटरेस्टेड इन इट, देन ही विल नॉट परफॉर्म वेल. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे एक्सेल. They excel in their activities. तो जबरदस्ती किसी को तो हम उसको बोला के लेके आए तो काम नहीं करेगा तो फायदा नहीं होगा. He will be a failure and it will be a failure for the system as well. So therefore we have to nurture with good education, impress upon them that okay, you have the talent, and of course all students are not the same. There is certainly a gradation. There is a gradation in the intellectual levels of different students, and you have to identify what is their strength. Somebody may be good in painting, somebody may be good in doing science, somebody may be good in music, somebody may be good in something else. So we need to nurture their talents, intrinsic talents. Jo hai har ek ko kisi na kisi cheez mein ek acha acha talent ho jata hai, and we have to nurture, we have to identify that and nurture that. To jinko pure science mein interest hai to unko identify karke you have to nurture that. That only a good teacher can do. A person who is well experienced in teaching, he can do it. He can identify the person. Therefore, it is very important to get good teachers. A teaching profession still salary के लिए नहीं होना चाहिए. It is not just as another job for salary. Filler नहीं होना चाहिए. It should be the deep interest. And this is why I always followed that whether or not there are enough students to take a course, I would teach. I have taught courses even for two students. Those two students who are deeply interested, I have taken a course for them because I know they are very good. And they will excel. And I can also tell you the story of Professor S. Chandrasekhar, who was a well-known astrophysicist. He got the Nobel Prize in physics, and he used to travel few hundred kilometers to teach two students astrophysics, only two students, and both of these students won Nobel Prizes even before he won, for that matter. So therefore, the good teaching is very important. The teacher has a very important role to play in the society. It is not just another job. It is not just another job like anything else. Okay, it has to inculcate, generate interest in the minds of the students to pursue that matter further and invent new things, create new things. Unless you create new things, you cannot become Atmanirbhar. If you follow somebody else, you will always be a follower. You have to create new things and you have to become the leader. Once you become the leader, then of course others will follow. In fact, thousands of years ago, India was the leader. India was the leader. Rao Raji jab hum kehte the, us samay to Nalanda, Takshashila, these universities, these were the leaders. People used to come from other countries to learn here. And we have to bring that situation back. So we have to have good quality teachers, emphasize on the quality of the teaching and generate interest in the minds of the students, but don't force on them if they are not interested. You identify where they are interested. He can be a great painter also. Okay, why? Nothing wrong in that. He can be a great musician. Okay, great an economist. Okay, so he can be great builder, designer. So all of these are equally important. All of them are important. You nurture the talent where they are good at. And then of course you pursue that, encourage them in doing so. Then you will produce an overall developed society. To society ke liye sab cheeze chahiye, sab cheeze chahiye, economics bhi chahiye, financial management chahiye, aur societal development chahiye, social service ka philosophy chahiye. All of these are required commitment. So therefore, if you give an overall development in that manner, nurture all of this, the country will grow. And that is a kind of a national service. That is a service to the nation.
1: And इसीलिए शायद आपको और इसीलिए शायद जो 100 चुने हुए IITians हैं जिनको उस किताब में दर्ज किया गया उनमें से एक आप हैं. आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि how important the role of a teacher is in nation building. देश को बनाने में, एक व्यक्ति को गढ़ने में एक शिक्षक का कितना महत्वपूर्ण भूमिका होता है, ये तो आपने बताया. लेकिन यहाँ बात आती है कि चाहे शिक्षक कितना भी कोशिश कर ले किसी स्टूडेंट को अच्छा बनाने में, कई बार ऐसा होता है कि एक अच्छा स्टूडेंट कई बार बाहर के प्रलोभन में आ जाता है, या जैसे आपने बताया कि दे कैन बी अल्यूरमेंट्स वेर यू कैन बी शिफ्ट फ्रॉम योर ओन फोकस। आप अपने देश, अपने समाज और अपने आसपास के जीवन में कंट्रीब्यूट नहीं करके कहीं दूर चले जाते हैं जस्ट बिकॉज यू वांट सम मोर मनी और अ डिफरेंट
0: करेक्ट
1: लाइफस्टाइल।
0: करेक्ट
1: तो इस प्रकार का जो
0: करेक्ट
1: ब्रेन ड्रेनेज होता है, इसको रोकने के लिए या इससे आपने खुद को कैसे बचाया? बिकॉज मैं समझता हूँ आपको आपके यूथ में जब आप नए थे अपने प्रोफेशन में, आपको बहुत इन्विटेशंस आए होंगे विदेश से, लेकिन आप स्विट्जरलैंड गए, 2 साल आपने वहां पढ़ाई किया, उस समय भी आप वहां रुकने के लिए बहुत सारे ऑफर मिले होंगे, लेकिन फिर भी
0: बहुत
1: आप
0: कुछ
1: ऑफर को छोड़ करके
0: उन्होंने
1: वापस आए।
0: एक्सेप्ट नहीं किया है, बिल्कुल
1: कैसे
0: सही।
1: कैसे किया आपने? पहला सवाल कैसे किया और दूसरा क्यों
0: हाँ,
1: किया?
0: पहले तो क्यों किया उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट तो इंडिया में रह के करना था, जो भी करना यहीं से करना था, दैट इज तो इसके लिए मतलब कोई उसको एक्सेप्ट करने का कोई सवाल ही नहीं था। वॉट एवर आई हैव टू डू इट फ्रॉम विद इन द कंट्री, दिस वॉज माई कमिटमेंट इन हार्ट। द सेकेंड थिंग इज द एजुकेशन सिस्टम ऑल्सो हैज टू एम्फसाइज ऑन वैल्यूज, द वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, एंड दिस इज वेयर सम अमाउंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, एजुकेशन इज रिक्वायर्ड। मुझे तो ये भी तो शुरू से ही मिला था, स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस दे शुड नॉट बी सेपरेट, और स्पिरिचुअलिटी इन लाइफ। इनफैक्ट मैंने एक बार माउंट टोबो में लेक्चर भी दिया था, स्पिरिचुअलिटी इन लाइफ उसके बारे में लेक्चर दिया था मैं माउंट टोबो में। तो स्पिरिचुअलिटी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट टेल्स यू वॉट आर यूर वैल्यूज, वॉट आर यूर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ओके वॉट आर यूर डूज एंड डोंट्स, कर्तव्य क्या है तुम्हारा, और ये दिस भूमि ने तुमको इतना सहारा दे दिया है, उसको छोड़ के कैसे जाओगे, उसके लिए तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। तो और तुम्हारे कल्चर, जो कल्चर जो होता है हमारे माता पिता बुजुर्ग लोग बड़ों लोग, इनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे रखना है, उसके वैल्यू सिस्टम क्या है, ये सब तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये भी एजुकेशन देना चाहिए। ये एजुकेशन देने के लिए हमारा कल्चरल टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट बुक्स फीचर्स है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनका भी पढ़ाई होना चाहिए। तो वैल्यू सिस्टम हैज टू बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। इसलिए मैंने अभी एक किताब पब्लिश किया हूं, दूसरा किताब भी पब्लिश कर रहा हूं। इट्स द टाइटल ऑफ द बुक इज व्हेन साइंस मीट्स स्पिरिचुअलिटी। अभी एक बुक पब्लिश हो रहा है, अभी एक महीने के अंदर एंड में वो पब्लिश हो जाएगा, और दूसरा भी मैंने एक किताब लिखा है वो भी पब्लिश हो जाएगा। दिस बुक्स टाइटल इज तेन विना तृणम अपि न चलति। इसके लिए संस्कृत के एजुकेशन चाहिए थोड़ा सा, तेन विना तृणम अपि नहीं चलते, तो उसके भगवान के सपोर्ट के बिना कोई काम नहीं चलेगा, उसके अनुग्रह से उसके आशीर्वाद से ही ब्लेसिंग से सब चलेगा। तो इसके लिए साइंस लोगों को, बच्चों छोटे छोटे यूथ को क्या होता है, भगवान के क्यों चाहिए, भगवान की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ अपने आप चलता है, इस तरह का माइंड सेट होता है। उनको समझ में नहीं आता है कि उनके बिना ये नहीं चलता है, वो समझ में नहीं आता, उसको दिखाना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा। तो यही मैंने ये किताबों में दिखाया। कैसे दिखाया, मतलब एक एग्जाम्पल दे देता हूं मैं आपको, सिंस आई एम द साइंस बेस्ड स्टूडेंट आई नो दिस फिलोसफी इज हाउ इट इज। हमारे तो साइंस में क्या कहते हैं, दुनिया कैसे शुरू हो गया, एक बिग बैंग से शुरू हो गया, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग से शुरू हो गया, एंड व्हाट वाज बिफोर द बिग बैंग कोई नहीं जानता, और बिग बैंग वाज स्टार्टेड फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट, सिंगल पॉइंट, हाउ वाज दैट इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच वाज कॉन्सेंट्रेटेड इन दिस पॉइंट, सिंगल पॉइंट, वेयर डिड दिस एनर्जी कम फ्रॉम, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस एनर्जी, किसी के उसके पास आंसर नहीं है। एंड सेकेंडली व्हेन द बिग बैंग ऑकर्ड द एनर्जी व्हिच वाज देयर स्टार्टेड, द सिस्टम स्टार्टेड कूलिंग, देन द मटेरियल्स वेर फॉर्मड, द मटेरियल्स
1: एंड द प्लैनेट्स वेर
0: फॉर्मड, देन द प्लैनेट्स एंड द स्टार्स एंड द गैलेक्सीज, एवरीथिंग फॉर्मड, वेयर दिस इज मटेरियल कम फ्रॉम, एंड देन देयर आर लॉस, द लॉट ऑफ ग्रेविटेशन इज देयर, द ग्रेविटेशन लॉस इज, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। आई से व्हाई शुड इट बी अट्रैक्टिव, व्हाई इज इट नॉट रिपल्सिव, हम प्लैनेटरी मोशन इज डिपेंडेंट ऑन दिस ग्रेविटेशनल लॉ, देयर इज अलोंग विद दैट देयर इज ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, इट इज बिकॉज ऑफ दैट यू हैव द स्टेबिलिटी सिस्टम, डायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ द ग्रेविटेशन ऑफ द प्लैनेटरी सिस्टम। नाउ वेयर दिस लॉ कम फ्रॉम, टू जनरेट एन ऑर्डर, दिस मीन देयर इज अ ग्रेट ऑर्डर इन द यूनिवर्स, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ ऑर्डर व्हिच इज इमैक्युलेट, कैनॉट बी वायलेटेड एट ऑल। आई आस्क्ड ऑल्सो व्हाई इज दैट द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, and why the positive charges repel each other, what is charged in the first place? Why did the electron get a negative charge? Why did the proton get a positive charge?
1: बेसिकली आपने साइंस के जितने भी मूलभूत सिद्धांत है सबके आगे वाई जोड़ करके सबको चुप करा दिया.
0: तो जो उसके पास आंसर नहीं है. तो अगर समझो कि हमने काफी कुछ हमने एडवांस किया है. हमने वो के इन विट्रो फर्टिलेशन करके डॉली को भी तैयार किया, मून पे गया, मार्स पे गया, ठीक है. कैन साइंस गारंटी दैट एवरीथिंग यू थिंक विल बी परफेक्ट? कैन इट बी परफेक्ट? कैन साइंस गारंटी यू दैट यू विल बी ऑलवेज हैप्पी? Can science guarantee you that you will be able to generate a system where you can be disease free? The human being is disease free? Can we understand all of this? There are limitations of this. Therefore,
1: just
0: this
1: for example, when you are saying this, something comes to my mind. जब आप ये बोल रहे हैं कि लोगों को ये research करके लोगों ने पता लगा लिया कि जब कोई व्यक्ति खुश होता है, when they are happy, तो endorphin ज़्यादा है या फलाना hormone ज़्यादा है, फलाना hormone कम है, etc. etc. लेकिन अगर सेम चीज को बैक ट्रैक किया जाए, अगर आप किसी में एंडोर्फिन को बढ़ा दो, यू नो लाइक आर्टिफिशियल मैकेनिज्म, दैट डजंट गारंटी कि वो व्यक्ति खुश हो जाए या उन हार्मोन मिलाने से व्यक्ति खुश हो जाएगा. ऐसा नहीं है. खुशी के वजह से इन हार्मोन्स में इम्पैक्ट पड़ रहा है, बट इन हार्मोन्स की वजह से खुशी में इम्पैक्ट पड़ रहा है, ऐसा नहीं है.
0: तो ये
1: जो ये सोच है, ये सोच मैं समझता हूँ कि हमारे प्रेजेंट जनरेशन में या पास्ट के भी जनरेशन में कई विज्ञान के प्रति रुचि रखने वाले लोगों में नहीं रही. उनको ऐसा लगता है विज्ञान ही सब कुछ है, विज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं है. इसलिए विज्ञान में जिन चीजों का जवाब नहीं है, उन चीजों को वो सत्य नहीं मानते. विज्ञान जो है अध्यात्म को लेकर के कुछ कहता नहीं है, तो वो अध्यात्म को नहीं मानते. विज्ञान जो है वो मान लीजिए ईश्वर या वैल्यूज, प्रेम, शांति, इन सब चीजों के बारे में विज्ञान कुछ नहीं कहता, तो वो इन चीजों पर भी ध्यान नहीं देते. तो ऐसे में आप अपने स्टूडेंट्स, जो यंग स्टूडेंट्स को आप आज पढ़ा रहे हैं, जिनको कि बाहर से बहुत सारा इनविटेशन आता होगा या जिनके पास बहुत सारा मोटिवेशन होगा चले जाने का, उनको आप कौन से वैल्यूज से यहाँ जोड़ के रखने का प्रयास कर सकते हैं?
0: तो वही तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पढ़ूंगा जिसमें तुम्हारे मेरे दूसरे बुक में जो है, हाउ टू कन्विंस दिस यूथ, यंगर पीपल, दैट द You have to accept the existence of a superpower. Tenevina trinamapina chalati. This means there is a superpower. This is without which. I will ask this question. What is the source of the infinite energy at the time of the Big Bang? And how was that condensed in an infinitesimally small space? What caused the Big Bang to occur? What initiated the formation of different particles with the different intrinsic properties? Is there a design? How did the most fundamental particles, namely quarks, get their charge and spin? The different types of quarks have these properties to different extent. How did the electron get a negative charge and a spin? Why do the charges repel each other? Why do like charges repel each other and opposite charges attract each other? Why is the gravitational force always attractive and follows the law as stated above, inverse square law? How did the laws of interaction emerge? So there is a design. This design requires intelligence. The human beings were not there when the planetary system was created. Therefore, intelligence cannot be presumed. It has to be there always. It has to be there before. Therefore, you have to accept that there is an intelligent being behind this. And now you start asking question, how do we understand this intelligent being? To understand the intelligent being, you have to go through the scriptures because he is beyond experimentation. He is beyond the reach of experiments because he is superpower. So he is beyond you. Therefore, you cannot reach him by experimentation. He has to be reached by the scripts which are blemish-free. Are the blemish-free, therefore you have to go into this. Those scriptures like the Vedas and the Puranas and the Bhagavad Gita, you have to go into such kind of scriptures which are blemish-free.
1: I mean scriptures that are core, matlab aise granth ya aise Upanishad ya Ved, jinme kisi dharm ka ya kisi prakar ke religion ka koi sarokar nahi hai, jo apne aap mein purna hai.
0: बिल्कुल बिल्कुल. सी दिस इज व्हाई आई सेड दिस इज ऑर्डर. धर्म अधर्म इज नथिंग टू डू विद एनी रिलीजन. धर्म अधर्म इज नथिंग टू डू विद स्पिरिचुअलिटी. इज नथिंग टू डू विद रिलीजन. इट इज अ स्टाइल ऑफ लिविंग. हाउ डू यू लिव? दो भगवद गीता इज एक्चुअली साइंस ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट. इट इज अ साइंस ऑफ मैनेजमेंट ऑन वन साइड एंड इट इज ऑल्सो इंडिकेटिंग टू यू व्हाट आर योर लिमिटेशंस. लॉर्ड कृष्ण सेज इन दैट वन, यू अंडरस्टैंड यूर लिमिटेशन, यू ऑल्सो अंडरस्टैंड यूर ड्यूटीज एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. सो ए पर्टिकुलर एक्शन बिकम धर्म अंडर अ पर्टिकुलर सिचुएशन कैन बिकम अधर्म अंडर सम अदर सिचुएशन. So therefore, to understand what is dharma is also very delicate. So it is dependent on the situation. You have to understand that situation properly and see what is the right thing to do. And that's why I said the value-based education also has to be there. Therefore, I also wrote an article sometime back, which is called as Holistic Education and Research. That is, holistic education must include professional education as well as spiritual education. Both are required. Both have to go hand in hand.
1: This combination that you mentioned, ek sarvangin shikshan pranali mein, adhyatmik bhi hona chahiye aur wo practical bhi hona chahiye, matlab jo jeevan se juda hua ho, saath hi saath wo research ya shanshodhan ya shodhan se bhi juda hua hona chahiye. Ye jo balance hai, kya ye balance aapko aaj ke hamare shikshan pranali mein dikhta hai? Aur agar nahi
0: नहीं दिखता है, वो लाना है, वो नहीं दिखता है. इनफैक्ट दिस इज एन इम्पोर्टेंट चैलेंज अभी उनको ले आने में. अभी

0: लेकिन उनको समझ ही नहीं है, पढ़ाई नहीं कभी भी, तो कैसे पता चलेगा? तो कोई सिखाने वाला चाहिए उसको, वो तो सिलेबस में उसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, स्कूल से ही शुरू करना चाहिए, सिर्फ कॉलेज में नहीं, स्कूल में ही शुरू करना चाहिए. जब स्कूल से शुरू करेंगे then it get imprinted deeply on the minds. उसके बाद
1: मुझे याद आता है, मुझे याद आता है जब मैं बचपन में पढ़ाई करता था तो हमारे कोर्स में कंपलसरी महाभारत, रामायण, कई काव्य रचनाएं जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान या मुंशी प्रेमचंद जी के कहानी, ये सब कंपलसरी होता था. और भले इनका रेगुलर डे टू डे लाइफ में डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं भी हो, लेकिन फिर भी ये पढ़ना हमको कंपलसरी होता था. मैं कुछ दिन पहले एक और यशस्वी भारत के एपिसोड में बातचीत कर रहा था डॉक्टर शरद काले जी से, आप भी जानते होंगे अच्छे,
0: तो
1: उन्होंने भी बोला कि कितनी कहानियां, कितनी किताबें, कितने पोएम्स जो है, कविताएं जो है, आज के बच्चे जानते ही नहीं, क्योंकि वो सिलेबस से निकाल दिया है, डे टू डे लाइफ में कोई प्रैक्टिकल ऐसा कनेक्शन नहीं.
0: जी.
1: मैं यहाँ ये जानना चाहूंगा कि आप जब पढ़ाई कर रहे थे, आपने कौन सा ऐसा किताब पढ़ा या आपके सिलेबस में से कौन सी ऐसी कहानी या कविता थी जो आपको आपके आज के जीवन में खींच करके लेके आए? देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन दैट स्टोरी और दैट एपिसोड ऑफ योर लाइफ टू योर प्रेजेंट डे.
0: नो, मेरा तो शुरू से ही संस्कृत में इंटरेस्ट था. शुरू में हमारे फैमिली संस्कृत का इंटरेस्ट था, तो संस्कृत की किताब पढ़ने में मुझे कोई दिक्कत नहीं था, अभी भी नहीं है, तो मैं संस्कृत आराम से पढ़ सकता हूँ. तो काफी शास्त्र पाठों का मैं शुरू से ही पढ़ा. मेरे ग्रैंडफादर हैज टॉट मी लॉट ऑफ दिस थिंग्स, वहां से हमने शुरू किया था. और वो जब हम ये महाभारत, रामायण, पुराण पढ़ते थे, उसका वैल्यू निकालते थे हमेशा. इसके देर इज ए वैल्यू देयर, देर इज ए वैल्यू सिस्टम इन ऑल. दे आर नॉट जस्ट कहानीज, दे आर देयर, but there is a value in each one of those.
1: मतलब कहानी पढ़ना नहीं है, लेकिन पढ़ने के बाद उसमें क्या गुण है,
0: गुण है, अंडरस्टैंड करना है.
1: ओके.
0: अभी भी मैं उसको, वो गुण को मैं अपने बच्चों को सिखाता हूँ. अपने बच्चों को मैं सिर्फ नॉट ओनली माय डायरेक्ट चिल्ड्रन बट आल्सो द स्टूडेंट्स, आल्सो द स्टूडेंट्स. इनफैक्ट दैट हैज हेल्प्ड सेवरल ऑफ द स्टूडेंट्स टू बिकम स्ट्रेस फ्री. वो काफी स्ट्रेस हो जाते थे, कुछ काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा. तो मैंने कहा, देखो भाई, तुम्हारा कर्तव्य है काम करना है, तुम्हारा कर्तव्य, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है. कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भो माते संगोस्त्व कर्मणि. तुम्हारा कर्म, काम करना है, तुम्हारा ड्यूटी है, वो फल तुम्हारे हाथ में नहीं है. फल देने वाला ऊपर वाला होता है, भगवान होता है. जब भी तुम्हारा इच्छा, उनका इच्छा एक हो जाते, तब वो ठीक हो जाता है. तो उसके लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा. इसके लिए संस्कार भी काम होता है. देयर इज अ संस्कार आल्सो, यू विल हैव टू सी व्हाट यू कैरी फ्रॉम योर प्रीवियस जन्म. द संस्कार कम्स एंड एक्चुअली अकॉर्डिंगली यू डू योर कर्म, एंड व्हेन यू डू दैट यू विल गेट रिजल्ट. बट हैव पेशेंस, बट हैव पेशेंस एंड बट यू डू योर ड्यूटी. ऐसा मत बोलो कि वो कुछ नहीं दे रहा है मुझे, उसको उसके ऊपर कुछ विश्वास नहीं है. ऐसा नहीं, वो कहीं नहीं चलेगा. वो तुम, उसको तुम्हारे लिए से क्या लेना देना है. तुम्हारा जो कर्म है उसी के हिसाब से तुम्हें फल मिलेगा. तो उसके वजह से तुम्हें उसको, यू हैव टू कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग. कहीं कहीं एक नहीं एक दिन तुम्हें फल मिलेगा ही मिलेगा. आई हैव गिवन सेवरल एग्जांपल्स ऑफ दिस ऑफ माय ओन लाइफ टू वेरियस स्टूडेंट्स.
1: कैन यू गिव वन एग्जांपल?
0: या, आई विल गिव वन एग्जांपल. आई आल्सो सेड दैट ओके, दिस इज बिलीव दैट व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस फॉर योर गुड. आई विल गिव यू दिस इज द स्टेटमेंट व्हिच आई मेड टू मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स. And therefore, you don't have to get distressed anytime. It always happens for your good because something else may be better coming for you. I'll give an example of my own. So, in somewhere in 2007, in the year 2007, I was in America, going for a conference. That time, I got an invitation from the Ministry of Human Resource Development for the director's post of ICER Bhopal. ICER Bhopal. तो सब लोग कह रहे थे तुम आ जाओगे तो वो तुम्हारे लिए है, तुम्हें मिल जाएगा. लेकिन मैं आ नहीं पाया. तो कॉन्फिटेबल गया था मैं अमेरिका के लिए कॉन्फ्रेंस में गया था. सो देयरफॉर आई कैन नॉट कम बैक. आई सेड, आई टोल्ड देम, लुक, आई विल, व्हेन आई कम बैक आई विल कम एंड अटेंड फॉर द इंटरव्यू. एंड बट दे सेड ओके, नो वी कैन नॉट वेट, दे अपॉइंटेड समबडी एल्स. के ठीक है. आई सेड ऑल राइट, समबडी यू अपॉइंटेड. सो व्हाट हैपेंड इन देन, व्हेन आई केम बैक इन 2007 टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, it turned out that my wife got cancer. Okay, just remember, just note, notice down, just in the 2010, my wife got cancer. If I had gone to Bhopal, I would not have been able to attend to her as well as I could do in being in Bombay. And then what happened in 2009, I became the director of Center for Excellence in Basic Sciences. It is the same as I, sir. तो वो भी हो गया, ये भी हो गया, तो इनका भी देख, उस समय तो थोड़ा सा दुख हो गया होगा, लेकिन मैंने कहा ठीक है, तो कोई और, कुछ और आने वाला है, ये मेरे दिमाग में इम्प्रिंट हो गया. सो आई डिड नॉट फील टू बैड, ओके ठीक है, समथिंग एल्स विल हैपन, उसका ये इच्छा है. तो मुझे डायरेक्टरशिप भी मिल गया, देन आई ऑल्सो कुड टेक केयर ऑफ माई वाइफ. सो देयर फॉर आई टोल्ड देम, लुक दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल, दिस सच थिंग्स विल हैपन ऑल द टाइम. एंड
1: ये जो आपने एक अनुभव सुनाया, ये हमारे सभी श्रोता साथियों को बार बार याद दिलाता है कि कभी भी हताश नहीं होना, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ जो हमारे साथ हो रहा है उसके पीछे कोई कारण है, और अगर कोई चीज हमारे सामने से हट जाती है या हमें नहीं मिलता है तो उसके पीछे ये कारण हो सकता है कि कोई दूसरी चीज हमारे लिए इंतजार कर रही है.
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल.
1: तो आपने एक अनुभव सुनाया, ये वाकई में बहुत ही आंखों को खोलने वाला अनुभव है. लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ प्रोफेसर होसुर कि आपका क्लोनिंग अगर हो सके, अगर हम साइंस में इतना आगे बढ़ जाए कि हम प्रोफेसर रामकृष्ण जी का 100 क्लोन बना ले और उनको हर एक को एक एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट में भेज सके ताकि सारे स्टूडेंट्स का जीवन बदल जाए, तो कितना अच्छा होगा. मुझे ये जानने के लिए बहुत उत्सुकता हो रही है कि मैं समझता हूँ कभी आपने ये सोच करके शुरुआत नहीं की थी कि मुझे पद्मश्री सम्मान मिलेगा या
0: नहीं. नहीं नहीं, कभी
1: आपने
0: नहीं,
1: जस्ट शुरू किया. लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जब आप अपने जर्नी पे थे, आपके परिवार वालों ने कभी ऐसा आपको कहा कि इंजीनियर बन गए होते तो कम से कम अच्छा था, या डॉक्टर बन गए होते तो थोड़ा इनकम अच्छा होता, या कुछ इस तरीके का कभी आपके तरफ आया प्रॉब्लम?
0: वो एक चीज समझना चाहिए लोगों को. तो मेरे पास इस तरह का प्रेशर तो कभी नहीं था, क्योंकि हम तो वी कुड नॉट हैव अफोर्डेड नंबर वन. सेकेंडली, तो मेडिकल और इंजीनियरिंग जाने से बहुत महंगे वाली चीज थी, और मेरा प्योर साइंस के लिए स्कॉलरशिप था, उसको हम छोड़ नहीं सकते थे. That is number one. Secondly, that is also important. We had a message in our own family and elsewhere that money is not everything. Money cannot bring you happiness. Money can only bring you miseries. Because if you have more money, you will have to protect it. Pata nahi kaun tu aake chori kar dega tumhara. You will have to be more careful. You will be more concentrating your energy on protecting it than doing something which is more constructive, which is better. To jnan ko chhod ke, तो हमने हमेशा हमने ज्ञान को ज्यादा महत्व दिया. नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी चाहिए, मनी बेस्ड इकोनॉमी नहीं चाहिए. उसके बाद अगर सरस्वती आ गई तो लक्ष्मी भी आ जाएगी. पहले सरस्वती आना चाहिए, उसके बाद लक्ष्मी भी आ जाए. तो चल के लक्ष्मी पीछे जाओगे, सरस्वती नहीं आएगी. सो देयर फॉर यू मस्ट डू नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी. वेन यू डू दैट, देन ऑटोमेटिकली यू विल सक्सीड इन अदर थिंग्स एज वेल. सो देयर फॉर दिस इज अनदर मैसेज विच हैज टू गो टू द कम्युनिटी एट लार्ज टूडे, दैट डोंट गो आफ्टर मनी अलोन. Because you need money, not that you don't need money. You will need money. Beyond a certain limit, it does not necessarily bring you happiness. It doesn't bring you happiness. It sometimes can bring you more miseries. That is, you will be always worried how to protect it, where should I invest it, which stock is better, which is that, things like that. All your energy will be concentrated on that. You will start forgetting about your values. Baki sab chhod dete hain, bachchon ko chhod dete hain, mata pita ko chhod dete hain, aur culture ko chhod dete hain. Sabko chhod dete hain, usi ke piche pad jaate hain. So, इस तरह का कल्चरल रेवोल्यूशन आना चाहिए हमारे यहाँ. तो दिस हैज टू गो इनटू द एजुकेशन सिस्टम. नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी चाहिए. नॉलेज हैज टू बी एम्फेसाइज्ड, एंड द मनी विल फॉलो. वंस यू डू दैट, इन्वेंशंस विल हैपन, नेचुरली अदर थिंग्स विल फॉलो.
1: तो दोस्तों, जो रामकृष्ण जी ने हमें बताया कि अगर आप सच में लक्ष्य एक साधते हैं और उस लक्ष्य का जो भाव है वो केवल कल्याण है, तो वो लक्ष्य हमेशा आपके पास वापस से कुछ ऐसी चीजें लेकर के आएगा जिसका आपने कभी उम्मीद नहीं किया था. जैसे श्री रामकृष्ण जी के जीवन से अगर हम देखें तो उन्होंने लक्ष्य रखा था देश की प्रगति, विज्ञान के माध्यम से उन्हें करना है. इस लक्ष्य ने उनके पास ना केवल वैभव धन संपदा लाया, लेकिन साथ में जश भी लेकर के आया. भारत सरकार ने 2014 में उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया. ये उनके इस जज्बे का सम्मान था, जिस जज्बे में केवल और केवल देश था. वो चाहते तो कई बार उनके सामने आए हुए कितने ही ऐसे ऑफर्स, कितने ही ऐसे अपॉर्चुनिटीज थे जिनमें वो देश से बाहर जाकर के बहुत पैसा कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने हर बार हर प्रश्न का जवाब केवल एक ही शब्द में दिया, देश पहले. क्या आपके सामने भी ऐसा सवाल आता है और उसमें आप हर बार यही उत्तर देते हैं देश पर? ये केवल कारोबार या प्रोफेशन से जुड़ा हुआ सवाल नहीं दोस्तों, ये सवाल हमारे रोजमर्रा के जीवन से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। कौन सा प्रोडक्ट मैं खरीदता हूँ, मैं रास्ते पे चलते हुए कचरा कहाँ फेंकता हूँ, इन हर चीजों में अगर हम केवल इस बात को जोड़े क्या इससे मेरे देश को कुछ भला हो रहा है या नुकसान हो रहा है, ये केवल एक पैरामीटर जो है हमारे पूरे जीवन के जीने के तरीके को बदल देगा और देश को भी बदल सकता। जाते जाते हम प्रोफेसर हसूर जी से एक सवाल पूछना चाहेंगे कि डॉक्टर हसूर, आप अगर आज आपके सामने केवल हमारे रेडियो के श्रोता नहीं समझिए पूरा भारत देश है, इस पूरे भारत देश को आप क्या एक सुझाव, संदेश, मैसेज देना चाहेंगे?
0: फर्स्ट इज कमिटमेंट एंड सेल्फलेस सर्विस। स्वार्थ से कुछ नहीं होगा, अगर स्वार्थ देखोगे कभी भी तुम सर्विस नहीं कर पाओगे। स्वार्थ निस्वार्थ सेवा होना चाहिए। Always you want to take some return in that one and that will not be the best thing. And that दान कभी नहीं होता है। अगर तुम दान करने चाहते हो तो उसके तुम return सोच के दान करते हो तो दान कभी नहीं होता है। So therefore स्वार्थ निस्वार्थ कर selfless service, selfless action if you do then it is always a good thing for you and it will always bring good for the yourself and also for the nation. And whatever profession you pursue, every profession is important for the country. And in every case, you only have to excel and see what best you can give to the society from there. How to bring in harmony, peace and harmony in the society from your work. How, what can you give to them? Because your education is dependent on the various people's contributions. The school tayar karne ke liye baaki sab bahut sare logon ka paisa kharcha ho jata hai, bahut sare logon ki unko sambhalna padta hai. So it is all your responsibility that you have to give it back to the nation. And then only the whole country as a whole can grow. That's why we said that selfless service is the important thing. And this is what actually our Bhagavad Gita also says, that don't expect, don't do things expecting something. Phalapeksha nahi hona chahiye. Phalapeksha ke bina tum karma karoge, tum usi ka tumhe fayda milega, usi ko Bhagavan ye karega, usse preet hoga. And that will only give you good results. And that is a fundamental reaction which everybody should get, principle one should follow. That once you have that one, whatever you do will always be a beneficial thing only, not only for that person, but also for the society.
1: And keeping this message in mind, commitment and selfless service, niswarth seva aur tatparta, ye dono cheez agar hamare jeevan mein bani hai to safalta zarur हाथ आएगी और केवल खुद के लिए सफलता नहीं बट पूरे अपने समाज के लिए भी एक सफल आयोजन कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे एक सवाल पूछना है कि जब आप देश के कोने कोने में जाते हैं, पूरे देश का भ्रमण करते हैं, विदेशों में जाते हैं, कौन सी एक बात आपने नोटिस की है जो भारत को भारत बनाती है?
0: अपना कल्चर जो है, एक्चुअली इंट्रिंसिकली अपना कल्चर जो है, दिस इज इनवैल्यूएबल। दिस कल्चर हैड गॉट करोडेड बाय मनी पावर and this culture is, everybody appreciate this, our culture, everybody appreciates the value system in our culture. And then of course when it goes after the money, then they will start to forget that. And this is something which has to be brought back. One has to remind the people every now and then that okay, you follow the culture which is valuable, and India is known for our culture. The Sanatana Dharma jo hum jo bolte hain, and this is something which is, we cannot date it, it is so old. And then of course our Ram Raj jo bolte hain, it is actually based on the Sanatana Dharma, this principle, that kind of a principle. So this is actually recognized by various countries as well, and therefore they actually, in order to win over us, they try to impose their power and things like that, and they destroyed our culture. Gurukul ka satyanash kar diya unhone. Gurukul mein kitne is tarah ka education diya jata tha ki value based education diya jata tha, usko unhone satyanash kar diya. Made people, the corruption started from there, and money power became important, and as a result of that, the whole thing got corrupted. See, the system got corrupted. So while intrinsically they knew, but they wanted to win over us by doing this sort of wrong things. But now we are rising, our country is rising, and it is important to convince the people, the youth, with this. That's why I'm writing these books. मैंने कहा तो मैं ये बुक किस लिए लिख रहा हूँ, मुझे कल्चरल रेवोल्यूशन आना चाहिए हमारे कंट्री में। तो ये सब जब पढ़ेंगे तो आई बीइंग अ साइंटिस्ट मायसेल्फ, आई एम शोइंग द लिमिटेशंस ऑफ साइंस, हाउ फार इट कैन गो एंड व्हाट इज देयर बियॉन्ड इट, एंड यू विल सी हाउ वी कैन गो बियॉन्ड इट। And when you do that, surely we will recover from all of this and go back to our ancient wisdom, which was significant, which was very large.
1: तो भारत को जो भारत बनाती है वो है उसका कल्चर की सभ्यता परंपरा
0: बिल्कुल या
1: जो संस्कृति है वो भारत को भारत बनाती है लेकिन इस संस्कृति से जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं तो उस दूरी के वजह से हम हमारे खुद से भी दूर हो जाते हैं क्योंकि हमारी
0: अस्तित्व ही खराब हो
1: गया हमारा परिचय हम खेलेंगे एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड अप आपके साथ जिसमें मैं आपसे सवाल पूछूंगा और उसका जवाब आपको एक शब्द में या एक वाक्य में देना है तो शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से सेवा क्या है
0: वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द अदर्स
1: विज्ञान क्या है
0: अंडरस्टैंडिंग द होल सिस्टम अध्यात्म और प्रोफेशनल दोनों दोनों चाहिए अध्यात्म इज एक्चुअली विज्ञान नॉर्मल ज्ञान इज ज्ञान तो प्रोफेशनल ज्ञान जो है वो ज्ञान होती है अध्यात्म ज्ञान है तो विज्ञान
1: कर्तव्य क्या है
0: कर्तव्य इज यू हैव अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर सोसाइटी एंड सो देयरफॉर यू हैव टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी
1: धर्म क्या है
0: धर्म इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन दिस इज टू अंडरस्टैंड धर्म इज नॉट ईजी इट इज डिपेंडेंट ऑन सिचुएशंस एंड वॉट इज Dharma, what according to the situation you have to decide what is in the bigger interest of the society that is dharma temporarily for a particular thing it may not be looking good but in the bigger interest of the society it is for example arjun itne sare kauravon ka vadh kiya ye dharma ya dharma to arjun usne us samay to krishna bhagwan ne kaha dekho this is dharma because you are doing your duty because you are not allowing the adharma to grow at the same time you are killing so many people do you call it as adharma It is not adharma at that time. So that is why, so adharma, dharma or adharma, to sambhalna, samajhna, bahut delicate item hai wo. So this is dependent on the situation. You have to decide what is in the bigger interest of the, of the society. Lok kalyan.
1: Lok kalyan se ek sawal dhyan mein aata hai, wo ye hai ki samaj kya hai?
0: So samaj is the, all of us have a contribution towards well-being of the others. You have to see that we all grow together. Vasudeva kutumbakam, this is a family. So therefore you have to grow together. So you have the responsibility towards each one of the other persons. And that is because nobody can live all by himself. So it is you live because others live. And therefore you have to live along with them.
1: The next few questions only in one words. So first question, what is peace? Shanti kya hai?
0: Shanti, man ki shanti. Pahla hai man ki shanti. मन की शांति हो तो सबका शांति आ जाएगा
1: ओके खुशी क्या है
0: खुशी भी मन की खुशी खुशी तुम्हारे अंदर की खुशी जो है अंतर्धान वो खुशी जो वही खुशी
1: लक्ष्य क्या है
0: लक्ष्य मेरा लक्ष्य है तो दूसरों को खुशी देख खुश देखना
1: वेरी नाइस संतोष क्या है व्हाट इज कंटेंटमेंट फॉर यू
0: कंटेंटमेंट इज व्हाटएवर यू हैव बी हैप्पी
1: जो है उससे खुश
0: रहना यस
1: भारत क्या है
0: One nation, one culture.
1: आखिरी सवाल, प्रोफेसर रामकृष्ण वी हसूर कौन है?
0: एक साधारण व्यक्ति है, आपके जैसे.
1: This is amazing कि आपने अपने जीवन में इतना ज्ञान प्राप्त किया है, आप इतने लोगों को ज्ञान देते हैं, आपके कार्य के वजह से भारत ने आपको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया है आप भारत का गौरव हैं और आप खुद को कहते हैं कि मैं बहुत साधारण व्यक्ति हूँ ये आपकी नम्रता को दर्शाता है
0: इंसानियत जो है वो सब में एक ही होना चाहिए एंड दैट इज व्हाट मेक्स एन इंडिविजुअल तो बाकी चूज जो आते हैं आगे पीछे आते

0: जाते रहते हैं, बट इंसानियत जो है दैट मेक्स अ मैन ग्रेट और अदरवाइज। तो अहंकारी हो गया तो उसको कुछ फायदा नहीं है, उसको कुछ भी मिले तो कुछ फायदा नहीं है
1: जी। और मैं समझता हूँ अहंकार आपको छू भी नहीं सकता, क्योंकि आप वास्तव में बहुत नम्रचित्त हैं, नम्रता आपका गहना है, वो हमने शुरू से देखा है आज के एपिसोड में। प्रोफेसर राम कृष्ण वी हसूर जी, आप हमारे साथ आए, हमारे स्टूडियो में हमारे दर्शकों हमारे श्रोताओं के साथ रहे, आपने अपने जीवन की इतने सुंदर सुंदर कहानियों से हमारे इस एपिसोड को सजाया, और केवल सजाया नहीं हमें प्रेरित भी किया कि जीवन को कैसे जिया जाए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में हम चाहेंगे कि जैसे आपने दो प्रोफेसर को मदद की और उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, कभी भविष्य में आप भी उस मुकाम पे पहुंचे, आपके और जो विद्यार्थी हैं वो भी उस मुकाम पे पहुंचे, और देश को जिस प्रकार से आपने योगदान दिया है, आपके सभी छात्र, आपके सभी विद्यार्थी जिनको आप अपना बच्चा कहते हैं, आपके वो सभी बच्चे भी देश को उसी प्रकार से प्यार करें जैसे आप प्यार करते हैं। इस शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
0: धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सो मच।
1: दोस्तों, आज के हमारे एपिसोड में हम बात कर रहे थे प्रोफेसर रामकृष्ण वी हसूर जी से, जो कि भारत सरकार द्वारा 2014 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित एक जाने माने विख्यात वैज्ञानिक हैं। यशस्वी भारत इस कार्यक्रम में हम न केवल प्रोफेसर हसूर जैसे वैज्ञानिकों के साथ बातचीत करते हैं, लेकिन हम कभी कलाकारों से बात करते हैं, कभी लेखकों से बात करते हैं, कभी खिलाड़ियों से बात करते हैं। हर एक ने अपने अपने तरीके से देश के उत्थान में योगदान निभाया है। मैं और आप अपने जीवन में हम जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से दिल से उसे करते हुए देश को अपना योगदान दे सकते हैं, और इसका सबसे पहला कदम आज ही आप शुरू कर सकते हैं, और वो ये है कि आप खुश रहिए। अगर आप खुश रहेंगे तो देश भी खुश रहेगा। इसलिए बार बार मैं कहता हूँ सुनते रहिए रेडियो मधुबन, बिकॉज रेडियो मधुबन आप सुनते रहेंगे तो मुस्कुराते जरूर रहेंगे, ये हमारा वायदा है। अगले एपिसोड में यशस्वी भारत कार्यक्रम में हम एक और मेहमान के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद जय भारत।
2: अभी बजे हैं रात के 10। स्वयं को दें अभी एक मिनट, हड़बड़ाहट को कहें बस।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में, इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग आप सभी को। और आज संडे भी है और साथ साथ मदर्स डे भी है, तो आप सभी को मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और हमारे साथ हमेशा की तरह नरेश अग्रवाल जी हैं, उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं मदर्स डे की।
1: जी
0: कैसे हैं आप?
1: जी नमस्कार, सभी श्रोताओं को भी हमारे बहुत बहुत अभिनंदन है मदर्स डे के हिसाब से। हमने भी जो टॉपिक सोच रखा है कुछ इससे रिलेटेड ही मतलब सोच रखा है, उसके कनेक्शंस में भी डिस्कशंस करेंगे।
0: सही बात है। तो आइए आज के इस एपिसोड में, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में, इसमें हम लोग 10 बजे तक है। आप 94 14 15 14 15 इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप कॉल करके भी डायरेक्टली बात कर सकते हैं। किसी भी तरह का सेहत से जुड़ा हुआ या फिर डाइट से जुड़ी हुई बातें आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आज हम लोग जैसे प्रोटीन की बात करते हैं, और प्रोटीन हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा कहते हैं, तो कितना खाए, कब खाए, किस तरह से मिलेगा प्रोटीन, इसके बारे में मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा प्रकाश डालें।
1: जी, जो चीज़ अच्छी होनी चाहिए तो क्या ज़्यादा खानी चाहिए क्या? मतलब जो चीज ज्यादा खाते हैं तो अति से क्या होता है, मतलब नुकसान होता है। एक जो है एक भाषा में बोली हुई है। तो आम लोगों की जो है आजकल के जैसे मेडिकल में जैसे और एक लोगों के मन में एक आम प्रचलन सी हो गई कि प्रोटीन जो है शरीर के लिए अच्छा होता है, या मसल्स बिल्ड करना है, या तो जो जिम वूम में जाते हैं तो उनको एक्स्ट्रा प्रोटीन खिलाई जाती है। तो लोग जो है आमतौर पर क्या होते हैं ना, प्रोटीन के प्रति जो है एक मेडिकल साइंस में जैसे जिस तरह से एक अवेयरनेस दी गई, तो हमें डाइट में अच्छा प्रोटीन होना चाहिए, अच्छा प्रोटीन होना चाहिए, लेकिन अच्छा प्रोटीन के चक्कर में कितना प्रोटीन खाना चाहिए उसको भूल के हम क्या करते हैं ना, उससे भी एक्स्ट्रा प्रोटीन खा लेते हैं। तो क्या थोड़ा सा कम प्रोटीन खाते हैं तो क्या जो है मेजर प्रॉब्लम हो जाती है क्या? मतलब जैसे हम उसको बैलेंस नहीं बना पा रहे कि कितना खाना चाहिए। अच्छा, कितना खाना चाहिए तो एक बात है, लेकिन कितना पचना चाहिए
0: वो भी तो इम्पोर्टेंट है।
1: हम खा तो रहे हैं लेकिन पच रहा है नहीं पच रहा है, इसको कोई जो है नजर अंजात करते हुए अगर हम खा रहे हैं तो फिर ये शरीर को नुकसान देगा। तो अब इस बात को समझने की जरूरत है। चलो प्रोटीन जो है खाना चाहिए, लेकिन ऐसे भी कई कंडीशन है जहां पर कि प्रोटीन को जो है एक्सेस प्रोटीन को जो है बंद कर दिया जाता है, और सालों से बंद कर दिया जाता है।
0: जी जी जी।
1: मतलब जैसे कि यूरिया बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है ना, स्किन डिजीज है, जैसे कि जैसे सोरियासिस आदि कोई भयंकर स्किन डिजीज है, किडनी के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उन कंडीशंस में क्या होता है प्रोटीन डाइट को जो है रेस्ट्रिक्शंस की जाती है।
0: तो आइए कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो नमस्कार जी।
2: जी हेलो।
0: हाँ जी, हाँ जी बोलिए
2: जी।
0: हेलो, हाँ जी नमस्कार, बताइए क्या तकलीफ है?
2: सर मेरे को मतलब राइट साइड में पूरा जलन रहता है, और पेट में पानी जैसा रहता है, मतलब खाना भी ठीक से नहीं पकता, और मुंह का स्वाद खट्टा जैसा रहता है।
0: ठीक है ठीक है, फोन रखें।
1: नाम
0: और एज क्या है आपका?
2: अच्छा विनीत है, एज है 24।
0: क्या नाम है?
2: विनीत सिंह।
0: विनीत सिंह, ठीक है। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में। 24 साल के विनीत जी हैं, जिनको पेट में पानी लग रहा है और मुंह में कट्टी डकार आती है।
1: जी, डाइजेशन का सिस्टम जैसे बिगड़ा हुआ है इनका, एक तरह से पेट में पानी भरा हुआ सा भी लग रहा है, और खाना प्रॉपर तरीके से हजम नहीं हो रहा है, खट्टी ढकारें आ रही हैं। तो इनको जैसे एक तो ये बताऊंगा कि अगर उनको सीधा सोने की आदत नहीं है तो सीधा सोने की आदत पहले बनाएं। कई जने जैसे होता है कि पैर सिकुड़ के सो जाते हैं।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो फिर जो है, क्योंकि इससे जो है डाइजेशन से काफी अच्छा रिलेशन से, जैसे हम बार बार समझाते हैं कि अगर आंतों को हम सिकोड़ के सोते हैं तो फूड का अब्जॉर्प्शन या प्रोटीन के बारे में जैसे डिस्कस करते हैं तो प्रोटीन का पचन नहीं हो सकता है। तो फिर हमें भोजन खाते हैं तो पचता कितना है, तो उसके अगर आंतों को अगर सिकोड़ते हुए सोते हैं तो खाना पच नहीं सकता है। दूसरा जो है, खाना अगर चबा के नहीं खाते हैं तो चाहे कैसा भी खाना खाए खाना पच नहीं सकता है। तो इसलिए एक तो भोजन से आप खटाई खाना बंद करो, भोजन के साथ जैसे हम बताते हैं कि टमाटर आदि या दूसरी खटाइयां नहीं खाओ, और सलाद खाते हुए खाना चबा के खाओ, और एक टाइम जो है आप सब सीजन की सब्जियों का जूस लेना शुरू करो।
0: हेलो
3: हेलो रमेश जी।
0: हाँ जी नमस्कार।
3: हाँ मैं दत्ता भाई बोल रहा हूँ, मेरे छाले के बहुत बार बार प्रॉब्लम आते हैं, हर 15 दिन में आते हैं, उसके लिए क्या करना है?
1: जी ठीक है
0: ठीक है दत्ता भाई, अभी बताते हैं आपको। ठीक है जी, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। ये थे दत्ता जी, जो हमेशा चाले के प्रॉब्लम रहता है इनको 10-15 दिन में, तो क्या करें
1: जी। तो ये जो है छाले का जो प्रॉब्लम रहता है, ये हमारे शरीर के अंदर की गर्मी को दर्शाता है। अच्छा, जैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं ना, एलोपैथी में तक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की दवाइयां देते हैं, और हमने 25-26 साल पुराने छालों के प्रॉब्लम भी जिनके रहे थे उनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ऐसी कोई बड़ी मुश्किल वाली चीजें नहीं है। हाँ, लेकिन इसके लिए आपको ध्यान में रखा है कि शरीर के अंदर जो इतनी गर्मी रहती है उस गर्मी को हमें जो है ड्रेन आउट करना है, और उस शरीर की आंतों की जो गर्मी है, आंतों की गर्मी को ड्रेन आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है धनिया पत्ता और लौकी का जो है जूस, या जीरा धनिया सौंफ का पानी, जैसे एक एक चम्मच पानी में भिगो दे और उसमें मिश्री डाल के उसके शरबत जैसा बना के सुबह में ले।
0: अच्छा।
1: तो ये शरीर के अंदर की गर्मी को खत्म करता रहेगा। और साथ में जो फिटकरी के पानी से जैसे मुंह में कुल्ला कर ले,
0: फिटकरी के पानी से।
1: हाँ, फिटकरी के पानी से जैसे मुंह से कुल्ला कर ले, और गोंद कतीरा आता है ये भी शरीर को ठंडा करता है, तो थोड़ा सा गोंद कतीरा का जो है मात्रा जो है पानी में भिगो के रख ले उसको ले। तुकमरिया एक चीज आती है, सब्जा सीड

0: कब्ज की प्रॉब्लम नहीं रहे इसलिए थोड़ा सा इसबगोल आदि लेना, ठीक है ना। तो इसके साथ जो है बाकी जैसे हमने बताया कि बॉडी को ठंडा करने के लिए, क्योंकि शरीर के अंदर की गर्मी खत्म हो जाए, इसके लिए मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाते हुए जैसे स्नान करना, मुल्तानी मिट्टी या चंदन का पाउडर मिला के लेप करके भी स्नान कर सकते हैं, उसको लगा के थोड़ा आधा घंटा शरीर में रखना है फिर स्नान करना है, ठीक है ना। गीला नैपकिन का प्रयोग करें साथ में। जैसे डाइट में हमने बताया कि शरीर को ठंडा करने के लिए जैसे लौकी और धनिया पत्ते का जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं, गोंद का तीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, तुकमरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये डाइट का अगर हम थोड़ा सा ध्यान में देते हैं और देने के साथ अगर हम ये करते हैं, लेकिन इस टाइम पे बर्फ वाली चीज़ें और वो नहीं लेनी चाहिए। कई जने क्या करते हैं ना, शरीर की गर्मी ख़त्म करने के लिए गर्मी का दिन है तो आमतौर पर क्या करते हैं ना, बहुत ठंडा पानी पीने की कोशिश करते हैं या तो फिर जो है बर्फ़ वाली चीज़ें, आइसक्रीम वाली चीज़ें, लेकिन ये अल्टीमेटली शरीर के अंदर की गर्मी को बढ़ाता है। तो शरीर के अंदर की गर्मी अगर हम खत्म कर लेते हैं, इन उपाय पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं, तो फिर सहज जो है हमारी ये छाले की प्रॉब्लम जो है, और जैसे हमने बताया कि फिटकिर के पानी से लोकल कूला कर सकते हैं, तो ये भी मुंह का इन्फेक्शन जो है और वो छाले को हीलिंग करने में और भी फास्ट मदद कर सकता है, तो ये परमानेंटली ठीक हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।
1: बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, आशा करता हूँ दत्ता भाई ने सब समझ लिया होगा। इसमें से कोई भी उपाय जो आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हैं। एक और दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो नमस्कार
2: सर जी, वो मेरे क्या थे, एक बार मैं सुबह सुबह प्रैक्टिस कर रहा था
1: जी,
2: मेरा सुबह उठ के प्रैक्टिस करने की आदत है, तो मैं सुबह उठ के प्रैक्टिस कर रहा था, प्रैक्टिस करने के बाद फिर उसके बाद वो कमर एकदम असंभव के जैसे कुर्सी पे बैठा मैं चेयर पे
1: जी।
2: तो मतलब वो जैसे एकदम कमर दर्द करने लग गई, तो उसके बाद थोड़ी थोड़ी हल्के हल्के दर्द करने लगती है, तो क्या करेगा
0: जी, आप फोन रखिए बताते
1: जी जी,
0: ठीक है ना। तो भाई जी ने जैसे बताया कि इनको जो है जैसे कोई एक्सरसाइज करने की या सुबह स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज दूसरी चीज़ें प्रैक्टिस करने की आदत है स्पोर्ट्स की जो भी कर रहे हैं, तो इसके बाद इनको थोड़े से मचक जैसे बोलते हैं ना, तो थोड़ा स्ट्रेचिंग में कोई गलत पोर्शंस हो गया कुछ हो गया तो इसके कारण लोकल जो है पेन है, तो इस ड्यूरेशन में फिर से थोड़ा सा जो है दो तीन दिन अगर पेन ज़्यादा है तो दो तीन दिन एक्सरसाइजेस को बंद करने के लिए एडवाइस करेंगे, और लोकल जो जहाँ पर दर्द है या प्रॉब्लम है वहाँ पर आप जो है कोई भी जैसे मालिश करने का कोई भी तेल आता है तेल का तो एप्लीकेशंस करें, लेकिन इसके बाद जो मोटा नमक का जो है सिकाई करें। तो मोटा नमक से अगर सिकाई करते हैं तो उस एरिया के दर्द को खींचने की ताकत जो है नमक में बहुत ही अद्भुत पूर्व होती है। तो कोई भी शरीर के एरिया का अगर किसी को भी दर्द है, जैसे घुटने का दर्द है या कमर का दर्द है या दूसरे तरह के दर्द हैं, तो हम उस टाइम पे जैसे तेल तो मालिश लोग आमतौर पर करते हैं या तो गर्म पानी से तो सिकाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बदले में अगर हम नमक की पोटली का इस्तेमाल करते हैं जो मोटा नमक आता है, तो उसको अगर गर्म करते हुए पोटली बनाते हैं, एक तवा नज़दीक गर्म तवा रख लें और पोटली को गर्म करते हुए सेक कर लेते हैं, तो इससे जो है पुराने से पुराना दर्द जो है जल्दी से खींच के ठीक हो जाता है। तो आई थिंक और बाकी जो है शरीर में बनने वाली जो चीजें हैं, तो इस टाइम पे जो है उस तरह की डाइट जैसे फूल गोभी है या तो फिर जैसे भोजन में खटाई है या दूध वाली चीजें हैं थोड़ा सा परहेज रखें ताकि शरीर में गैस के बाद की प्रॉब्लम बढ़े नहीं, तो बाकी तो सहज फिर ठीक हो जाएगा।
1: चलिए आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, तो इसका प्रयोग जरूर कीजिए, इससे आपका दर्द कम हो जाएगा। आप सुना है रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में, इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और आप मैसेज भी कर सकते हैं 9414151415 इस नंबर पर, और डायरेक्टली कॉल करके भी बातें कर सकते हैं। हाँ, ये और दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो, हाँ जी, हाँ नमस्कार, बोलिए। कहाँ से बोल रहे हैं?
3: गुजरात से बोल रहा
4: हूँ। गुजरात
1: जी, क्या नाम है?
3: मोती भाई देसाई।
1: मोती भाई देसाई, बोलिए क्या तकलीफ है?
3: जी सर, मेरे हेलो।
1: हाँ जी, हाँ जी,
3: मेरे पेट में प्रॉब्लम है।
1: हाँ,
3: तो वो सुबह सुबह से दो एक साल से प्रॉब्लम, एक तो मुंह में छाले होते हैं, फिर पेट में दर्द होता है, एसिडिटी जैसा होता है, वो पानी फिर भी दवाई कराई लेकिन कोई अच्छा कोई
1: जी, जी,
3: कोई
1: जी, जी, ठीक है, आप फोन रखिए, आप ध्यान से सुनिए और कागज पेन लेके रखिए ताकि लिख सके आप या फिर रिकॉर्ड कर लीजिए, ठीक है जी। तो मोतीलाल जी को एक साल से ये प्रॉब्लम है, क्या करें
0: जी। अभी हमने डिस्कशंस किया इससे पहले
1: जो
0: डाइजेशंस में प्रॉब्लम भी थी, खट्टी ढकारे आ रही थी, और साथ में जो है फिर से दोबारा से बता देते हैं, और एक कॉलर आ रहे हैं।
1: हेलो
5: हेलो,
6: हाँ ओम शांति।

0: ओम शांति जी। अच्छा आप थोड़ा रेडियो से दूर हो जाइए, आप रेडियो सेट का वॉल्यूम कम कीजिए आपका।
1: मोहिनी नाम है, 74 एज है
0: जी। मोहिनी जी बोलिए।
1: शरीर में बहुत दर्द रहता है और 6-7 महीने से लूज मोशन हो रहा है, 4-5 दिन में 5-6 बार ऐसे।
0: अच्छा अच्छा जी,
1: कृपया सुनाइए पहले।
0: ठीक है मोहिनी जी, आप फोन रखिए, हम लोग बता रहे हैं आपको, है ना?
2: ठीक है।
0: हाँ,
2: जैसे पालनपुर से मोहिनी जी का फोन आया तो इनकी एज 74 है और साथ में सारे शरीर में दर्द रहता है और बीच बीच में लूज मोशन होती रहती है, 4-5 दिन में थोड़ा सा लूज मोशन की प्रॉब्लम रहती है। तो ये शरीर में बात का प्रॉब्लम जो है जरूर से बढ़ा हुआ है।
0: अच्छा, बात की वजह से। हाँ,
2: तो बात का प्रॉब्लम बढ़ा होने के कारण जो है या तो कब्ज की प्रॉब्लम भी रहती है और साथ में जो हमने फूड कॉम्बिनेशन रूल के बारे में हमेशा डिस्कशन करते आए हैं, तो कुछ गलत कॉम्बिनेशन से खाना खाते हैं तो खाना पचने में नहीं जाता है, तो जो खाना पचने में नहीं जाता तो खाना पेट में सड़ता है,
0: सड़ता है
2: और सड़ता है तो गैस बनता है। इस बात को अगर हम समझ जाएं, तो फिर हमें जो है ये नहीं होता है कि ज्यादातर लोगों को समझते हैं कि हमारा डाइजेशन कमजोर है या लीवर कमजोर है। प्रॉब्लम लीवर या डाइजेशन कमजोर होने की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है कि हम गलत तरीके से खाना खा रहे हैं और उस तरीके से एक अच्छा भला आदमी भी खाना खाएगा
0: तो भी बीमार
2: पड़ेगा, उसको जो है उसका खाना हजम नहीं होगा, मतलब फिर वो धीरे धीरे गैस की प्रॉब्लम जो है
0: बढ़ती जाएगी।
2: तो इसलिए हमें जो जरूरत है, एक तो इस टाइम पे जो गैस की प्रॉब्लम बढ़ी होती है तो दर्द कम करने के लिए एक तो मैं बताऊंगा गोखरू और पुनर्नवा जो हमारी पाउडर फॉर्म में जड़ी बूटियां मिल जाती हैं सहज तौर पे, तो इसका पाउडर ले ले, गोखरू का पाउडर और पुनर्नवा
0: पाउडर
2: और इस दोनों का एक एक चम्मच पाउडर ले ले और पुदीना जीरा और मीठा करना तो थोड़ा गुड़ डाल सकते हैं काढ़ा बनने के बाद में, तो इसका काढ़ा बना के सुबह से हम एक एक चम्मच का प्रयोग करें। ठीक है ना, तो ये क्या करेगा ना, हमें जो है हमारी गैस से रिलेटेड, शरीर में दर्द से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसमें अच्छा काम करेगा और कोई भी सूजन वूजन अगर शरीर में है
0: वो भी कम,
2: घुटने का दर्द या कमर का दर्द, जिनको गर्दन की भी दर्द रहती है या शरीर में गैसेस खूब बनती हैं, तो इस काढ़ा का वो प्रयोग कर सकते हैं। और बेल का पाउडर मिल जाए या तो ताजा बेल, अभी गर्मी का सीजन है मिल रहा है, तो उसको बेल का जो है प्रयोग करें या बेल का मुरब्बा का प्रयोग करें, तो जो उनका लूज मोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें अच्छा फायदा मिलेगा। लेकिन इस टाइम पे दूध से बनी हुई चीजें जरूर से एक बार बंद कर दें।
0: हेलो हाँ जी, हेलो, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में। इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं, काफी अच्छी बातें हो रही हैं और इसके पहले मोतीलाल जी का फोन आया था, उनको भी
2: जी वो डाइजेशन के एंड एसिडिटी के लिए जो प्रॉब्लम्स बता रहे थे
0: जी,
2: तो इसमें फिर से वही बात बताया कि फूड कॉम्बिनेशन रूल्स की जो हमने डिस्कशन किया कि भोजन के साथ कम से कम खट्टा नहीं खाएं, टमाटर आदि, जहाँ रोटी चावल आलू खाते हैं, टमाटर एक लीवर की टॉनिक के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको आप अलग से इस्तेमाल करिए, मतलब आप टमाटर का सूप ले सकते हैं, कोई सब्जियों का जूस बना रहे हैं तो उसमें आप टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जहां पर आप रोटी चावल आलू खाते हैं तो वहां सब्जी में या दाल में टमाटर डाल के ना खाएं। तो इससे जो है हमारा खाना जो है प्रॉपर तरीके से डाइजेशन में जाएगा और खाना को चबा के खाएं। और गर्मी के दिन में खास तौर पर मैं जो है आग्रह करूंगा कि जो है गर्मी के दिन में दूध से बनी हुई चीजें जो है समस्या पैदा करती है, क्योंकि इस टाइम पे दूध का प्रोडक्शन तो कम हो जाता है आमतौर पर, लेकिन और फंक्शंस और मैरिज के फंक्शंस प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो दूध की डिमांड अचानक बढ़ जाती है, लेकिन दूध का प्रोडक्शंस नेचुरली जो भी जानवर होते हैं उनके दूध की प्रोडक्शंस घटती है, लेकिन मार्केट में दूध की कमी नहीं होती है। तो इसी इशारे से समझ जाए
0: सही बात।
2: और ऐसे भी गर्मी के दिन में जैसे हर सब्जी भोजन तेजी से बिगड़ता है ना, तो दूध भी तेजी से बिगड़ता है, जैसे आप देखते हैं कि सारे दूध के जो पैकेट आते हैं कोल्ड स्टोरेज में, मतलब उसको फ्रिज में रख के थोड़ा भी बाहर रखते हैं तो खराब हो जाता है
0: जी।
2: तो इसलिए जो है इस टाइम पे गर्मी के दिन में जिनको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम ये है तो एक बार दूध की थोड़ी सी परहेज रखें तो ज्यादा फायदे में रहेंगे।
0: सही बात है। चलिए आशा करता हूँ मोतीलाल जी आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है, किस तरह से आपका डाइट सिस्टम अगर आप समझ लेते हैं तो चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएगी।
2: तो क्या होता है गर्मी के दिन में, क्या होता है लोगों को फिर से दही के साथ ही खाना खाने की आदत हो, और लोगों को ज्यादातर ये समझ में दिमाग में आता है कि दही के साथ खाना खाएंगे तो क्या होता है दही पेट की गर्मी को कम करता है, लेकिन हम इसके लिए वही एडवाइस करते हैं कि दूध वाली चीजों को भोजन के साथ नहीं मिलाना चाहिए। नेचुरोपैथी के जो नियम है और हमने जो अपने सालों से जो अनुभव से देखे हैं कि भोजन के साथ अगर खटाई खाते हैं, जैसे कि दिल्ली साइड में तो एक रूटीन चलता है कि
0: दही खट्टा ना हो, ऐसा भी ध्यान रखे।
2: नहीं नहीं, छाछ खट्टा नहीं हो, छाछ बोलते हैं, और दही की तासीर तो खट्टी होती है, और छाछ भी जो भी होता है, चाहे जो वो ताजी है तो चलो ठीक है, नहीं तो फिर उसकी तासीर तो खट्टी बोलेंगे, चाहे आम मीठी है तो फिर भी तासीर तो खट्टा ही कहा जाएगा।
0: हेलो नमस्कार जी।
3: नमस्कार सर जी।
0: जी बताइए।
3: मैंने मैंने आपकी दवाई की वो सुना था, ठीक है।
0: हाँ
3: लेकिन सर मेरे क्या प्रॉब्लम हो जाए, मैं इंडियन आर्मी में हूँ तो फिर मेरी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर है, तो फिर वो खाना तो सर वो बनता है, वही हम दूसरा को खा नहीं सकते, ठीक है।
0: हाँ हाँ
3: मोती जी बोल रहा हूँ सर।
2: जी जी।
3: हाँ। खाना पे जो मिलता है वही मिलता है, फिर इसमें ट्राई कर जाऊं।
2: लेकिन आप इसमें जो है ध्यान कर सकते हैं, अगर सलाद की अवेलेबिलिटी होती है तो पहले खाने से पहले सलाद खाते हुए फिर खाना खाओ।
3: हाँ जी। हाँ तो सर जी ऐसा हुआ है कि हमारे वो आर्मी में जो बनता है वो ही खाना,
2: नहीं खाना सलाद तो मिल जाती है ना, सलाद तो मिल सकती है ना मेरे को।
3: हाँ,
2: तो जहाँ
3: हाँ
2: तो सलाद
0: पहले सलाद खाओ,
2: तो आप पहले सलाद थोड़े से अच्छी क्वांटिटी में ले लो, तो सलाद ले लोगे तो सलाद में जो उसको एसिड को न्यूट्रलाइज करने की कैपेसिटी अच्छी होती है, और खाना को थोड़ा सा चबा के खाने की आदत बनाओ, और पहले सलाद अच्छी क्वांटिटी में खा लो, तो आप जो खाने में जो थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं या हमारे बस में नहीं है, तो उस प्रॉब्लम को सलाद काउंट्रैक्ट कर सकता है, मतलब उसको सॉल्व कर सकता है उस प्रॉब्लम को। बाकी सुबह में आप जैसे आंवले का पाउडर ले सकते हैं सुबह में खाली पेट में, इसबगोल जैसे आम को आप इसबगोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी सलाद खाते हुए आप खाना को चबाते हुए खा लो, चाहे फिर खाने में कुछ प्रॉब्लम है हमारे बस में नहीं है, हम उस हिसाब से नहीं बना पा रहे, लेकिन फिर भी वो प्रॉब्लम हमारे ऊपर प्रॉब्लम के रूप में नहीं रहेगी, हम उस पर उभर जाएंगे, ठीक है।
3: हाँ, हाँ
2: जी।
0: चल ओके। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में, इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं, और यहाँ बात हो रही थी फूड कॉम्बिनेशन की बात हो रही थी, तो फूड कॉम्बिनेशन में दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ें खाने के साथ ना खाए, तो जैसे छाछ या फिर दही ये सब चीज़ें हम लोग साथ में मिला के खाते हैं, तो इसके ऊपर बता रहे थे। जी
2: जी। तो हम रेकमेंड करेंगे कि आप जो है अगर ताज़ा छाछ है तो जो है बेशक जो है भोजन के साथ ले लो, जैसे अगर नहीं तो फिर भी और भी बेस्ट नेचुरोपैथी के तरीके से एडवाइस करूंगा कि आप जो है सेपरेट ले लो, एक तो खाने से एक डेढ़ घंटे बाद ले लो या एक डेढ़ घंटे पहले ले लो।
0: हेलो
4: हाँ डॉक्टर साहब।
0: जी जी जी बोलिए।
4: बेल का मुरब्बा का बोला लूज मोशन के लिए।
0: हाँ हाँ
4: लेकिन मुझे शुगर है तो ले सकते।
2: तो बेल का मुरब्बा नहीं, तो बेल का पाउडर बाजार में मिल जाता है, तो बेल का पाउडर आप एक एक चम्मच पानी से फांकी मार सकते हो, ठीक है ना।
4: कितनी बार लेना?
2: एक एक चम्मच दिन में दो बार पानी के साथ ले लीजिए। हाँ हाँ बेल का पाउडर ले लो, बेल का पाउडर मिल जाता है पंसारी की दुकान में, आयुर्वेदिक दुकान में, तो पाउडर फॉर्म में आप ले लो, मुरब्बा नहीं कर सकते हो तो। हाँ जी।
4: और इसबगोल ले सकते हैं?
2: इसबगोल ले सकते हो आप, शाम को 6 बजे लेना है तो इसे ले लीजिए, भोजन शाम को 6 बजे भी ले सकते हैं आप चाहो तो, इसबगोल एक सवा चम्मच
4: खाने के पहले लेना।
2: जी हाँ खाने से पहले ले लो, और खाने से पहले भी आधा घंटा घंटे पहले ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
4: अच्छा
2: जी।
4: और आंवले का पाउडर बोलते हैं
2: ये सुबह में खाली पेट, सुबह में खाली पेट लीजिए, आपको डायबिटिक एंड ब्लड प्रेशर एंड वो सारे डाइजेशन प्रॉब्लम एसिडिटी प्रॉब्लम में भी फायदा करेगा, तो आप सुबह उठने से पहला आइटम जो है एक चम्मच आंवले का पाउडर जो है एक कप पानी के साथ ले सकते हैं। जी
0: आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में, इस कार्यक्रम को हम लोग सुन रहे हैं, और काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं, फूड कॉम्बिनेशन की बातें हम लोग कर रहे थे, और शुरुआत में हमने प्रोटीन की बातें शुरू की थी, तो प्रोटीन कितना लेना है, कम लेना है, ज़्यादा लेना है, ये सारी चीज़ें अगर आपके जहन में हो तो आप सही ढंग से आप अपने हेल्थ को भी मेंटेन कर सकते हैं और चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएगी।
2: जी हम जैसे डिस्कशंस कर रहे थे कि जैसे मेडिकल कंडीशंस होते हैं जब यूरिया बढ़ी हुई होती है, मतलब हम प्रोटीन खाते हैं अगर पचने में नहीं जाता है तो ये एक्सेस यूरिया बन के निकल रहा है, ठीक है ना। तो हम जो है हमें ध्यान रखना कि हमारे प्रोटीन या जो भी हम खाना खा रहे हैं वो सही तरीके से पचने में जाए और बॉडी में यूटिलिटी हो, क्योंकि कोई भी चीज़ पचाने के लिए शरीर को एनर्जी लगानी पड़ती है, ये नहीं कि प्रोटीन को पचाने के लिए तो जो और भी ज्यादा एनर्जी शरीर को खत्म यूज करना पड़ता है, लेकिन प्रोटीन अगर उतनी जरूरत के मात्रा से ज्यादा प्रोटीन है और हम उसको खर्चा करने के लिए ज्यादा जो है हमारी शरीर की एनर्जी लगा रहे हैं और उतनी प्रोटीन शरीर को रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो एक्सेस प्रोटीन जो है हमारे किडनी से जो टॉक्सिन्स निकालने के लिए, यूरिया यूरिक एसिड को निकालने के लिए किडनी को भरपूर मेहनत करनी पड़ती है, और लगातार इस तरह से अगर हाई प्रोटीन डाइट्स खाते हैं तो फिर हमें शरीर में जो है एक बीमारी का रूप में भी हमें जो है हो सकता है कि जो है किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, या तो शरीर में जो है दूसरा जो है वेट नहीं बढ़ने के कारण भी हो सकता है। वेट बढ़ाने के लिए हम सोच के खा रहे हैं तो हमने देखा कि काफी जो है बच्चे जो होते हैं कि दाल और दूध और खाना तो जो है बहुत अच्छी क्वांटिटी में खाते हैं, लेकिन बोलते हैं हमारे शरीर बनता नहीं है। तो उसके लिए जो है हमें एक तो सुबह में आंवले का पाउडर लेना चाहिए और हरे पत्ते जरूर से खाना चाहिए। अगर सिस्टम को, क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी का सिस्टम ऐसे बना हुआ है कि अगर हम हरे पत्ते खाते रहेंगे तो ये हमारे सिस्टम्स को जो है रेगुलर रखेगा।
0: अच्छा अच्छा,
2: मतलब प्रोटीन का डाइजेशन भी होगा और आंतों की सफाई भी होगी। तो इसके लिए, और हमें उसके साथ जो फाइबर भी मिल रहा है और जो क्लोरोफिल मिल रहा है तो वो हमें जो है जरूरत है, क्योंकि जो है बंदर जो होता है, बंदर दाल और दूध तो खाता नहीं है लेकिन उसको प्रोटीन डेफिशिएंसी नहीं होती है, क्योंकि वो जो पत्ते खाता है और पत्ते में प्रोटीन की मात्रा सबसे कम होती है। माना वो हरे पत्ते खाता रहता है तो उसकी जो है उसका सिस्टम जो मेंटेन रहता है और उसको प्रोटीन की डिफिशियंसी भी नहीं, तो जाए भी वो 2-4% भी प्रोटीन खाता है तो प्रोटीन 100% ऑब्जर्व हो जाता है और उसको उसको शरीर में प्रोटीन की डिफिशियंसी नहीं होती है। तो उसी हिसाब से अगर हमें प्रोटीन, क्योंकि मैंने देखा है कि जो ज्यादा खाने के ऊपर ध्यान देते हैं, अपना वेट बढ़ाने के ऊपर ध्यान देते हैं, जो अंडर वेट बच्चे हैं तो उनके केसेस में मैं देखता हूँ कि वो जो है दाल और दूध तो खूब मात्रा में खा रहे हैं, प्रोटीन वाली चीजें जो है ड्राई फ्रूट्स जो अच्छी मात्रा में खा रहे हैं, लेकिन अब उनके जिनको के वेट बढ़ता जा रहा है और शरीर में कमजोरी है, जो एक्सेस वेट वाले कई जने होते हैं तो कई जन काजू का पैकेट खोलेंगे 100 ग्राम काजू खा जाएंगे है ना, बादाम का पैकेट खोलेंगे, मूंगफली हो या तो ये ड्राई फ्रूट्स में जैसे बादाम और अखरोट आती है तो एकदम मुट्ठी भर भर के खा लेंगे है ना, लेकिन तो वहां पर देखते हैं कि उनका तो वेट तो बहुत अच्छा से बढ़ा हुआ है लेकिन शरीर में उतने ही प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं। तो मना वो एक्सेस वेट जो बना है वो शरीर में कोई फायदा देने वाला नहीं बना है। तो हमने जैसे डिस्कशंस कर रहे थे कि मदर्स डे के ऊपर जैसे कर रहे थे, तो माँ को कितना प्रोटीन खाना चाहिए, जैसे न्यू बॉर्न बेबी आने वाला है तो उस टाइम पे कितना प्रोटीन खाना चाहिए। तो आमतौर पर जो है जब बच्चा पैदा होता है तो वह 2.5 किलो से 3.5 किलो का वजन का होता है। अगर उसका वजन ज्यादा है तो नॉर्मली परिवार वाले खुश होते हैं कि बहुत अच्छा जो है अच्छा हृष्ट पुष्ट बच्चा पैदा हुआ है। नेचुरोपैथी के हिसाब से शरीर में जितने जो अगर एक्सेस वेट से अगर बच्चा पैदा हुआ है तो स्टार्टिंग में क्या होता है ना, बच्चा जैसे ही बाहर आता है तो पहले तो एक बार वजन घटती है क्योंकि बॉडी में जो माँ के शरीर से जो भी टॉक्सिन्स उसके शरीर में आते हैं और शरीर में इतनी एनर्जी होती है कि सबसे पहले तो उसको बाहर फेंकने की कोशिश करता है और उस बाहर फेंकने की प्रोसेस को हम क्या करते हैं ना, बीमारी समझते हैं और उस बीमारी समझ के उसको जो है पहले दिन से जो है हम दवाई दे के दबाने की कोशिश करते हैं। मतलब जहां पर जो नेचुरोपैथी जो सिस्टम बोलता है तो वहां से हम पहले दिन से जो है वहां पर प्रकृति के विरुद्ध जाने की कोशिश करते हैं।
0: हेलो
5: डॉक्टर
0: जी,
5: बेल का पाउडर कब लेना?
2: बेल का पाउडर आप खाने से पहले या खाने के बाद भी ले
5: सकते हैं?
2: जी
5: पत्ते वाली सब्जी वो सब लूज मोशन में,
2: जी पत्ते वाली सब्जी जो है, हाँ नहीं आप सीजनल सभी सब्जियां खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी उसमें मसाला एक्सेस नहीं डालो, धनिया पाउडर आप उसमें डाल सकते हैं और जीरा धनिया का और बेल का पाउडर आप किसी भी टाइम पे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 चम्मच पाउडर आप पानी के साथ ले लीजिए और आपको टोटल बॉडी के हेल्थ के लिए, क्योंकि बेल जो है डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा फल माना जाता है, तो कैसे भी डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, हाँ जी, और ताजा बेल भी आता है तो ताजा बेल भी आप खा सकते हो, उसमें चीनी नहीं डालो, ताजा बेल भी खा सकते हो, नहीं तो बेल का पाउडर आप ले लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा, बेल का पाउडर सहज मिल जाएगा आपको, बेल फल का पाउडर मिल जाता है।
5: सब्जियां सब खा सकते हैं ना?
2: जी सब्जियां सभी आप खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं।
5: अच्छा ठीक, थैंक यू वेरी मच।
0: आप सुना है रेडियो मधुबन 90.4 FM, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में। इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं, काफ़ी अच्छी डिस्कशन हो रहे हैं। और जैसे प्रोटीन की बातें चल रही, तो माँ को कितना प्रोटीन खाना चाहिए, इस विषय पर चल रही बातें।
2: तो ये क्या होता है ना, उस टाइम पे थोड़ा सा आराम ज़्यादा करना होता है, हम उस टाइम पे अचानक से क्या करते हैं ना, प्रोटीन वाली डाइट की इंक्रीजमेंट कर देते हैं, तो इसलिए मदर का जो हेल्थ जो है वो बिगड़ना शुरू होता है, या तो बच्चे का वेट जो है बढ़ जाता है। और बच्चे का वेट बढ़ने के साथ क्या होता है, फिर सीजेरियन ऑपरेशन करके निकालो तो माँ का हेल्थ भी उसके बाद जो है बाद में तो हमेशा के लिए डाउन हो जाता है। सबका अनुभव है कि एक बार ऑपरेशन होता है और सीजेरियन होकर अगर बच्चा निकालना पड़ता है, और हम वहाँ पर ही गलतियाँ करते हैं। मतलब हमने मदर की हेल्थ को यहाँ पर लाइफ टाइम के लिए हमने उसके शरीर की ताकत को कम कर दिया। बच्चा जो हृष्ट पुष्ट पैदा हुआ था या थोड़ा सा अच्छा वेट से पैदा हुआ था, एक्स्ट्रा वेट से पैदा हुआ था, लेकिन वो शरीर में जो है माँ को जो बिना पचा हुआ जो चीज़ें इकट्ठा हुई थी वो शरीर में उसके शरीर में जाकर इकट्ठा हुई। और उसको जो है शरीर में, मतलब जो वो लेके आया है एक्स्ट्रा वेट अगर लेके आया है, तो शरीर में जो है वो कचड़े को जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा शरीर में इकट्ठा करते हुए बाहर आया है। एंड उसके चक्कर में माँ का हेल्थ तो बिगड़ गया, ऑपरेशन होने के बाद शरीर की ताकत कम हो गई, और बच्चे का क्या होगा, वो एक्स्ट्रा जो कचड़ा जो जमा हुआ है या शरीर से जो बाहर आते टाइम पे जो मदर से जो टॉक्सिन्स उसके शरीर में जमा हुए हैं, नेचुरल तौर पर शरीर की जब लाइफ फोर्स एनर्जी अच्छी होती है तो उस टॉक्सिन्स को बाहर फेंकने कोशिश करते हैं। लेकिन हम वहां पर उसको जो है हम समझते हैं कि अरे
0: दवाइयां देके फिर रोकते हैं।
2: मतलब हम यहां से साइकिल को जो है पहले दिन से उल्टे कर देते हैं।
0: हेलो
6: हेलो, ओम शांति।
0: ओम शांति जी, जी बोलिए।
6: आज मैं बापू भाई बोल रहा हूँ। मुझे बवासीर का प्रॉब्लम था। मॉर्निंग में जल्दी पेट क्लियर नहीं होता है, तो किसी ने बोला है कि शाम को किशमिश पानी में भींगने के बाद में सुबह उसको खाना है, और या तो सफेद तिल, तो उसको कितनी मात्रा में भींगने देना ये नहीं बताया
2: जी। आप तिल का तो इस्तेमाल नहीं करो, तिल हो सकता है गर्मी पैदा करे और आपको नुकसान कर दे
0: जी।
2: हाँ, ये पाइल्स की प्रॉब्लम के लिए बोले थे कि जो है किसी ने एडवाइस किया कि पेट साफ नहीं हो रहा है, तो उसके लिए वो किशमिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे राइसिन आता है या किशमिश आता है, आप एक मुट्ठी भर के चाहे तो ले सकते हो, लेकिन आपको वेट का भी ध्यान रखना। वैसे उसमें फाइबर होता है, आप एक मुट्ठी भर के ले सकते हो। तिल लेकिन कभी कभी किसी को गर्मी कर जाता है, तो इसलिए तिल खाने की एडवाइस तो मैं अभी नहीं करूंगा। लेकिन आप राइसिन लेते हो या किशमिश लेते हो तो एक मुट्ठी भर के किशमिश भी ले सकते हो, मतलब मैक्सिमम एक मुट्ठी भर तक। बाकी जो है आप वैसे तो जो है 25-30-40 दाने तक भी आप आराम से जो है उसको पानी में भिगो के ले सकते हो। और पाइल्स की तकलीफ के लिए आप इसबगोल का इस्तेमाल तो करो, राइसिन का इस्तेमाल करना है तो बेशक करो, लेकिन और साथ में जहां पर गुद्दे में लोकल एरिया में जैसे स्वेलिंग आ जाती है या तो पाइल्स बाहर की तरफ निकल आता है, तो फिटकरी के पानी से अगर हम गुद्दे को वॉश करते हैं तो एक एंटी इन्फेक्शन की तरह भी काम करता है, और तुरंत ही कोई सूजन होती है, लोकल एरिया का सूजन होता है, तो उसको भी सिकोड़ के जो है अंदर से जैसे दबा देता है, तो उसका भी कर सकते हैं। और जैसे पाइल्स के लिए हम जैसे अपना जो डाइट पे खास ध्यान दें पाइल्स के ऊपर, क्योंकि आंतों की गर्मी है, हमने जैसे आंतों की गर्मी से रिलेटेड जो भी बातें ऑलरेडी डिस्कशंस किए हुए हैं कि हमें शरीर को ठंडा करने वाला जैसे जूसेस साथ में थोड़ी सी लेनी चाहिए, और पेट के ऊपर गीला नैपकिन का कपड़ा या तो मिट्टी का जो है लेप, या तो शरीर के अंदर की गर्मी खत्म करेंगे तो पाइल्स की एरिया के सूजन भी खत्म होगी और उसमें हमें अच्छी मदद मिल जाती है।
0: आप सुना है रेडियो मधुबन 90.4 FM, काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं, और जैसे कि हम लोग इन चीज़ों को डिस्कशन कर रहे थे प्रोटीन के बारे में, तो माँ को कितना प्रोटीन फिर लेना चाहिए?
2: तो जो है नॉर्मल खाना खाने के साथ जो है हमें उस टाइम पे जो है नेचुरल डाइट को बढ़ाना चाहिए।
0: अच्छा, नेचुरल डाइट को बढ़ाना।
2: हाँ, मतलब हमें जो है वहाँ पर जो है सब्जियों का जूस, सलाद की मात्रा, फ्रूट्स की मात्रा वो बढ़ानी चाहिए, ना कि हमें घी और प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी चाहिए। मतलब जैसे नॉर्मल खाते हैं तो नॉर्मल जैसे दालें खा रहे हैं, नॉर्मल चीज़ें खा रहे हैं तो वो खाएं, लेकिन उस प्रोटीन बढ़ने के साथ शरीर में एसिड बढ़ता है। तो इसलिए प्रोटीन जो है जब चलने फिरने का मूवमेंट्स नहीं होता तो प्रोटीन का डाइजेशन हमें शरीर के ऊपर भारी पड़ता है। तो इसलिए हमारे शरीर को अगर हेल्दी रखना, हमने जैसे बंदर का एग्जांपल देके बताया कि बंदर की जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी होती है ह्यूमन के साथ बराबर होती है, तो इसलिए हमें जो है जब भी हमें हेल्थ के ऊपर जाना है तो हमें अल्कालाइन प्रोटीन भी हम खा सकते हैं. जैसे हम प्रोटीन खाने से नॉर्मली क्या होता है ना, बॉडी में एसिड बढ़ता है, यूरिक एसिड बढ़ता है या तो फिर जो यूरिया बढ़ता है. लेकिन अल्कालाइन सोर्स ऑफ प्रोटीन भी है. अल्कालाइन सोर्स ऑफ प्रोटीन माना जैसे हम जैसे हरे मटर खाते हैं, मटर का सीजन है तो उससे भी हमें प्रोटीन मिलता है. अगर हम अंकुरित को खाते हैं तो अंकुरित भी जो होता है शरीर में अल्कालाइन फॉर्म ऑफ प्रोटीन होता है. अब मूंग का जो प्रोटीन है वो पचने में भारी होता है. अगर हम रजका के बीज का अगर हम अंकुरित करके खाते हैं तो उसमें शरीर में विटामिन्स मिनरल्स अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं, लेकिन उसका प्रोटीन डाइजेशन करने में ईजी पड़ता है. तो हम उसी तरह से जो है हम जैसे फूल मखाने आते हैं तो फूल मखाने में भी जो है एक अच्छी सोर्स ऑफ प्रोटीन है, लेकिन ये अल्कालाइन प्रोटीन है. माना शरीर में एसिड की मात्रा को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा, शरीर में जो है अल्कालाइन की मात्रा माना एसिड की मात्रा को कम करने में मदद करेगा. तो इसलिए हम अगर उस टाइम पे जो है अगर सलाद की अच्छी मात्रा में देते हैं, सब्जी का जूस एक दो बार देते हैं, सब्जी का सूप देते हैं, एक टाइम पे

0: इनका फल देते हैं और बाद में रूटीन डाइट को मेंटेन करते हैं तो इससे जो होता है मदर की हेल्थ भी अच्छी रहेगी और बच्चे का जो है एक नेचुरल वेट जो है नेचुरल वेट पैदा होगा और बच्चा जो पैदा होगा उसके शरीर में टॉक्सिन्स की जमावट भी कम होगी और मदर को हो सकता है कि उसके लिए फिर जो है सिजेरियन ऑपरेशंस कराने की नौबत न आए तो बच्चा और माँ के हेल्थ के लिए बहुत ही जो है बहुत ही अच्छी हो सकती है।
1: सही बात है। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। चलिए मुझे लगता है कि हम लोग जो नेचुरल डाइट है उसे अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करें प्रेग्नेंट
0: जी किसी भी स्टेज
1: किसी भी स्टेज
0: जिंदगी का कोई भी स्टेज हो अच्छा जब कोई बीमार पड़ जाता है और ज़्यादा बीमार होता है तो उसको प्रोटीन खिला के बाहर लाते हैं या सब्जियाँ और फल खिला के प्रोटीन बंद करके बाहर लाते हैं क्या होता है आप बताइए। आमतौर पर पता है ना जब आदमी व्यक्ति विशेष बीमार हो जाता है या तो आईसीयू में एडमिट है हॉस्पिटल में एडमिट तो क्या करेंगे उसको जो है दाल समोसा पकोड़ा या तो जो है प्रोटीन वाली चीजें ज्यादा खिलाएंगे या उसको बंद करते हुए सहज पचने वाला सिंपल सा खाना खिलाएंगे भाई थोड़ा सा तो सूप पी ले थोड़ा सा जूस पी ले थोड़ा सा फ्रूट खा ले तो आम व्यक्ति सबको समझ में आ रहा है ना ये बात तो जो है तो हमें अगर हेल्दी बनने के लिए अगर हमें बीमारी को ठीक करने के लिए अगर हमें सिंपल सा खाना खाना है तो जहां पर हम हेवी और गलत खाना खाते हैं तो वहीं पर तो बीमार पड़ते हैं ना। तो मैं हमेशा जब बात बोलता हूं कि अगर आईसीयू में जाने से अगर दवाई से व्यक्ति रिकवर होकर बाहर आता है दवाई ज्यादा ताकतवर है या समोसा पकौड़ा बड़ा ज्यादा ताकतवर है अगर आईसीयू में पेशेंट एडमिट है और उसको समोसा बड़ा पकौड़ा भी साथ में खिलाओ तो क्या पेशेंट बाहर आ जाएगा आईसीयू से बाहर आ जाएगा।
1: जी
0: तो इसका मतलब है कि दवाई अपना एक तरीके से रोल प्ले कर रहा है लेकिन दवाई के ऊपर भारी कौन पड़ रहा है भोजन भारी पड़ रहा है। अगर भोजन गलत है तो चाहे कितना भी इंटेंसिव मेडिकल केयर में रहे उस वो पेशेंट उस केयर से बाहर नहीं आ सकता उसका टिकट ऊपर कट जाएगा। तो इसका मतलब ये बात छोटी सी बात अगर समझ जाए कि हमें जो राइट डाइट हो मतलब सहज पचने वाला भोजन हो और सहज पचने वाला भोजन में भी फूड कॉम्बिनेशन रूल की अगर हमें जानकारी नहीं है उसके कारण हम जो भोजन करते हैं हम आधा पचाते हैं आधा पेट में सड़ाते हैं। इसलिए एक सहज भाषा में बोला हुआ है कि हम आधा भोजन तो अपने लिए करते हैं और आधा भोजन जो हम डॉक्टरों के लिए करते हैं। तो इस बात को अगर समझ जाए श्रोताएं तो इसलिए हमेशा हम ये बिल्कुल जरूरत नहीं है कि हमें जो एक्स्ट्रा प्रोटीन खाने से हम हेल्दी बनेंगे बिल्कुल नहीं है। हमें जो है जो रूटीन में जितना हम प्रोटीन खाते हैं उतना ही हमारे लिए हमको पचाने के लिए जो है हमारे पचा के बॉडी यूटिलाइज कर ले वही सफिशियंट है क्योंकि आज की डेट में आज मेहनत करने वाला काम जो है धीरे धीरे जो घटता जा रहा है मतलब ना तो हम कुएं से पानी निकाल रहे हैं ना तो कपड़े हाथों से धो रहे हैं है ना और चलने फिरने का तो नाम नहीं है थोड़ी सी भी आगे पीछे जाना है तो गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं मतलब जो शरीर में जो पहले जो खेती में काम करते थे ये बहुत एक्सेस ये करते हैं तो वो सारा घटता जा रहा है तो हमें समय के बदलाव के साथ तो डाइट की भी बदलाव होनी चाहिए। लाइफस्टाइल किस तरह की है तो उसके साथ कितना प्रोटीन खाना चाहिए वो भी होना चाहिए लेकिन प्रोटीन ज्यादा खाना चाहिए सोच के जो है हम अगर करते हैं तो फूड सहज पचने वाला भोजन हो और उसके लिए सहज भी पचे कैसे सहज पचने के लिए तो समझ में आया कि भारी खाना नहीं हो मतलब ज्यादा प्रोटीन वाला खाना नहीं लेकिन फिर भी फूड कॉम्बिनेशन रोल के बारे में जो जानकारी की अभाव होती है हम अपना समझ से जो खाते हैं फिर भी हम उसमें से कई सारे खाना जो है 40-50% खाना पेट में सड़ा देते हैं। अगर ये सड़ने से अगर हम बचा ले हम अपने आप को अगर रोक ले तो आज की चाहे वातावरण में कितनी भी पॉल्यूशन है कितनी भी प्रॉब्लम है फिर भी व्यक्ति अपनी जो है अंतिम जिंदगी तक जो भी है 70-80 साल 90 साल भी अगर जीता है तो बिना दवाई के डिपेंडेंसी पे जी सकता है
1: जी,
0: अगर नेचुरोपैथी को अगर वो थोड़े समझता है थोड़ी जानकारी रखता है शरीर में प्रॉब्लम आती है तो एक दो दिन का बीच बीच में उपवास करता है ना अगर अपने आप को नेचुरोपैथी तरीके से अपने आप को हीलिंग करता है शरीर की जो लाइफ फोर्स एनर्जी जो ऊर्जा है उसको दोबारा अगर कमजोर पड़ते तो दोबारा रीगेन कर लेता है तो रीगेन करने का तरीका क्या है जो आकाश तत्व तो मिलता है शरीर की जो अंदर की एनर्जी मिलती है सबसे ज्यादा किस टाइम पे मिलती है उपवास करने से मिलती है ना कि हाई प्रोटीन डाइट खाने से मिलती है उस टाइम पे।
1: चलिए बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दिया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर बातें करते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। जी हाँ, आपके स्वास्थ्य आपके हाथ में इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। नरेश अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, जिनसे बातें हो रही हैं और काफ़ी अच्छी बातें हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और आप लोगों को भी अच्छी बातें मिल रही हैं और आप लोगों का जो सवाल है उसके जवाब में हम लोग कुछ बातें डाइट और फिर मेडिसिन के बारे में बता रहे हैं। तो अब जैसे कि हम लोग डिस्कशन कर ही रहे थे प्रोटीन के बारे में, और नेचुरल प्रोटीन जो है रेगुलर खाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रोटीन चाहिए बॉडी के लिए इसलिए ज़्यादा खाएं और फिर वो पचने में ना जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इसीलिए हमें देखना है कि वो पचने में भी जाए उतना ही प्रोटीन आप रेगुलर ले सकते हैं। तो अब मैं पूछना चाहूँगा कि रेगुलर हमारा जो है नेचुरल प्रोटीन किस में मिल सकता है, अल्कलाइन प्रोटीन जिसको कह सकते हैं हम लोग, वो चीज़ें किस किस चीज़ों में मिलता है और कितना क्वान्टिटी में हमें खाना चाहिए।
1: तो जैसे ओवरऑल जैसे मेडिकल साइंस जैसे रिकमेंड करता है कि आपके शरीर का जितना वजन है उतने ग्राम प्रोटीन आप जो है पर डे जो करीब करीब उतने ग्राम के प्रोटीन आप ले सकते हो, लेकिन नेचुरोपैथी में हम उससे थोड़ा सा कम रिकमेंडेशंस करते हैं। अगर मान लो कि किसी का 70 किलो का व्यक्ति है तो जैसे 70 ग्राम तक प्रोटीन ले बोल के रिकमेंड करते हैं, तो हम नेचुरोपैथी में करीब जो है हम जो है 45-50 ग्राम प्रोटीन को भी सफिशियंट मानते हैं, क्योंकि आज की डेट की जो लाइफस्टाइल है, आज की डेट का जो मॉडिफिकेशन हमने जैसे बताया तो उसके हिसाब से देखें तो जैसे यंग एज होता है, जैसे बच्चे ग्रो कर रहे हैं 18 साल तक हमारी शरीर बढ़ रही है, लेकिन बाद में भी हमारे जो सेल जब डिकम्पोज होता है, जैसे सेल की लाइफ होती है, तो उसका जो प्रोटीन होता है बॉडी उसको फेंक नहीं देता है, उसको रीयूटिलाइज करता है।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो 18 साल के बाद जैसे 20 साल के बाद फिर बोलेंगे बॉडी की ग्रोथ तो नहीं हो रही है, तो उसको फिर 18 साल तक बच्चे को जितना प्रोटीन चाहिए 20 साल के बाद या ओल्ड एज में भी उतना ही प्रोटीन चाहिए क्या?
0: नहीं चाहिए।
1: मतलब एक जो कॉमन भाषा में हम बोल देते कि शरीर को वेट के हिसाब से इतना प्रोटीन खाओ, लेकिन उसके लाइफस्टाइल के बारे में हमने ना तो डिस्कशंस किया, ना तो उसकी उम्र को डिस्कशंस किया, और हमने बोला कि इतना ग्राम ऑफ प्रोटीन खाओ। तो वो सबके हिसाब से अगर देखते हैं तो हमें जो है एवरेज प्रोटीन्स जो जो जैसे हमने बताया तो 1 ग्राम से लेके आधी ग्राम तक की प्रोटीन्स की हो सकती है। जैसे हमने बताया कि कई मेडिकल कंडीशन होते हैं जहां पर कि प्रोटीन की इंटेक को करीब करीब मतलब जैसे बंद कर दे, जैसे किडनी की प्रॉब्लम है, स्किन डिजीजेस है, या तो फिर जैसे यूरिया यूरिक एसिड बढ़े हुए हैं, तो प्रोटीन की इंटेक उस टाइम पे जो होता है आधे ग्राम से भी कम कर देते हैं, मतलब मेडिकल एडवाइस पे भी कम कर दिया जाता है। तो वैसे व्यक्ति भी सालों तक जो है रहते हैं ऐसा कोई, लेकिन प्रोटीन कम कर दिया इसलिए उनकी लाइफ अच्छी रहती है। मतलब बोलने का भाव है ऐसा नहीं कि हम जो एक्स्ट्रा प्रोटीन खाएंगे तो ही हेल्दी रहेंगे, कई टाइम पे ये क्या होते हैं हमें वो प्रॉब्लम्स कर देती है। तो इसके लिए ऐसा नहीं समझा कि मेडिकल कंडीशंस में जो प्रोटीन को कम कराया जाता है और वहां पर भी जो है आदमी कम करने के कारण ज्यादा स्वस्थ रहते हुए ज्यादा दिन तक जी पाता है, तो इसलिए हमें जो है हमारी उम्र और हमारे काम करने के चीजों के साथ देखते हुए अगर हम उतना जो है हम जितना जरूरत है, मतलब मेरा बोलने का भाव है कि आप अधिक खाने से प्रोटीन खाने से हेल्दी रहेंगे ये सोच को चेंज करने की जरूरत है।
0: जी जी जी।
1: जो हमें डाइट में रूटीन में हमें जैसे डाइट में आ रही है अब छिलके वाली मूंग की दाल खाएंगे और बिना छिलके वाली मूंग की दाल खाएंगे इसमें फर्क रहेगा नहीं रहेगा?
0: रहेगा।
1: तो उसमें छिलके वाली मूंग की दाल में फाइबर है, अब प्रोटीन के साथ फाइबर भी तो जानी चाहिए नहीं जानी चाहिए? अब हम जो है छिलके छिलका हटा के फिर जैसे पॉलिश्ड खा रहे हैं जैसे बोलते हैं ना, तो मतलब तो वहां पर समझने की जरूरत है कि हाँ छिलके के साथ खाएंगे तो शरीर में जो है मतलब हमें फाइबर की इंटेक उतनी जानी ही चाहिए।
0: सही बात है,
1: ठीक है ना। तो इसके बदले में जो है फिर जो है नॉन वेज की बात आ जाती है तो नॉन वेज प्रोटीन का सोर्स जो हम बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, जबकि वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन डेफिनेटली अच्छा है।
0: हाँ, हाँ,
1: ठीक
0: हाँ।
1: है ना। तो जो नॉन वेज को ज्यादा सोर्स समझते हैं तो हम उसके लिए करेंगे कि वो शरीर में जो है किडनी एंड दूसरे प्रॉब्लम पे जो हमारे वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो इसलिए वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन ही हो, नॉन वेज वाला प्रोटीन जो है बिल्कुल रिकमेंडेशंस नहीं है। और जो वेजिटेरियन प्रोटीन्स में भी जैसे मैंने बताया कि अल्कलाइन को बढ़ाने वाला प्रोटीन्स हो, या तो प्रोटीन को पचाने के लिए और सिस्टम को मेंटेन करने के लिए साथ में जो है जैसे कि हमें जो है फाइबर खाना चाहिए, जैसे कि अभी रमजान का महीना चलता है तो मुस्लिम लोग 1 महीना पूरा फास्टिंग करते हैं, तो वो जो उनके धर्म में इसको इस तरह से जोड़ दिया कि साल में दो राउंड ऐसे आते हैं, तो इतना नॉनवेज खाते हैं तो बीच में ही 1-1 महीने के जो उपवास कर लेते हैं और उसमें जो ओनली फ्रूट्स और सब्जियां खाते हैं, तो उनके शरीर में जो 6 महीने में जो नॉनवेज खाने के कारण जो शरीर में प्रॉब्लम है विकृति पैदा होती है वो ये 1 महीने में सॉल्व हो जाती है। अगर ये रमजान का इश्यूज अगर नहीं होता तो उनकी तबीयत जो है तबीयत में जो है डेफिनेटली जो है अगर नॉनवेज की अगर खाने की आदत ज्यादा रही होती और उसकी ना करते तो उनके शरीर में जो है बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। तो बोलने का भाव है जब उनको एक एक महीने के उसको धर्म के साथ जोड़ दिया, जैसे हमारे हिंदू धर्म में भी क्या क्या उपवास को एकादशी को दूसरी दूसरी तरीके से जोड़ दिया
0: है,
1: तो हमने क्या किया, हमने उसको छोड़ दिया है। और हम अगर तो मुस्लिम लोग तो चलो रमजान करने के बहाने में चलो तो उस टाइम पे तो नॉनवेज छोड़ देते हैं, लेकिन हम अगर कोई खा रहा है और खाने के बाद साल भर ही खा रहा है तो फिर उसका क्या होगा। और उसमें भी उसने उपवास की जो मतलब बोलने का भाव है,
0: करेंगे तो ठीक है नहीं करेंगे तो फिर
1: इसलिए जो है हेल्दी रहना है। तो अगर आप अगर उस एग्जांपल से अगर समझ गए कि मुस्लिम में भी अगर नॉनवेज की यूज थोड़ी सी ज्यादा होती है अगर ऐसा हम समझें तो उसके कंपैरिजन में भी उनको दो महीना साल में दो महीना बिल्कुल जो नॉनवेज छोड़ के वो फ्रूट एंड सब्जियां और दूसरी चीजों पे वेजिटेरियन डाइट पे कम्प्लीटली रहते हैं तो इसलिए उसकी विकृति खत्म हो जाती है, मेरा बोलने का भाव है। तो हम उस विकृति को पैदा ही क्यों करें। और बीच बीच में जैसे इससे प्रेरणा से रमजान से भी प्रेरणा ले सकते हैं कि जो हिंदू संस्कृति में जो उपवास में बीच बीच में जैसे बोलते हैं कि मेडिकल में कि हफ्ते में एक दिन उपवास करो तो अपने आप में बहुत ही अच्छा है।
0: चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया, धन्यवाद, शुक्रिया आपका इस एपिसोड में जुड़ने के लिए और बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी, थैंक यू सो मच।
1: ओम शांति। नमस्कार।
0: नमस्कार। चलिए साथियों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले संडे इसी तरह कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ। सलाम नमस्ते। खमा गणेश साहब। और फिर से एक बार सभी

0: प्रकृति बेटा, पृथ्वी पर तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है ना?
1: मुझे लोगों को प्यार से इंस्पायर और लाइफ के लिए एजुकेट करना है, ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग कर इस पृथ्वी को बचाए।

0: रखें।
1: इसमें तुम्हारी मदद करेंगी ये तीन चीजें। पहली टियारा ऑफ फ्लावर्स, जो तुम्हें हमेशा हैप्पी और एनर्जेटिक रखेंगे। दूसरा ये बैज ऑफ लाइफ, जो लोगों को पर्यावरण के लिए लाइफ जीवन शैली की याद दिलाएगा। जब वे प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति उनकी रक्षा करेगी। तुम ये बैज उन लोगों को भी दे सकती हो जो हमारे प्लैनेट की बेहतरी के लिए योगदान करते हैं। और तीसरा ये बैग ऑफ होप, जब भी कोई एनवायरनमेंट को हार्म करे तो तुम इसमें से इको सस्टेनेबल अल्टरनेटिव निकाल कर उसे देना।
2: ओके, अब मैं अपने मिशन पर चलती हूँ।

0: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार।
1: अभी बजे हैं रात के 11। एक मिनट के स्वच्छ चिंतन से टेंशन होगी 9-2-11।

0: अरावली की वादियों से आप सुनने जा रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम। आपकी अपनी उषा के साथ वंदे मातरम सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको ऐसी नारी शक्ति से मिलवाने जा रही हूँ जिनका नाम है सुंदर वैष्णवी, और आप आबू रोड में कालिका पेट्रोलिंग यूनिट में आप पुलिस के पद पर कार्यरत है। आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और पढ़ाई में काफ़ी होशियार रहे हैं, व्यावहारिक है, सभी के साथ बहुत ही प्रेम से रहते हैं, और भी आपके अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं जो हम आपके द्वारा ही जानेंगे। तो सुंदर जी, आपका स्वागत है वंदे मातरम कार्यक्रम में।
1: थैंक यू। मेरा नाम सुंदर विष्णुई है, मेरे पिताजी का नाम गंगाराम जी विष्णुई है। मैं जालौर जिले में सांचौर तहसील में सांकड़ गांव की रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी टीचर है। मेरे पिताजी के हम तीन संतान हैं जिसमें मैं सबसे छोटी हूँ। मेरे से एक बड़ी बहन है और एक मेरा भाई है। मैंने 10th क्लास तक मेरे गांव सांकड़ में ही पढ़ाई की थी और 11th 12th में मेरे गांव में सीनियर स्कूल नहीं होने की वजह से मैंने रानीवाड़ा में पढ़ाई की थी जो मेरे गांव से 20 किलोमीटर दूर था। 2005 में मैंने 12th क्लास पास की थी। उसके बाद में मैंने कॉलेज सांचौर से की थी। हमारे सांचौर में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं थी, प्राइवेट कॉलेज से ही मैंने फॉर्म अप्लाई किया था।
0: जी सुंदर जी, आपकी ये बातें बात की तो हम जरूर सुनेंगे। हम थोड़े बचपन की तरफ आपको ले चलते हैं जी। आप भाई बहन कैसे रहते थे?
1: मैं सबसे छोटी थी मेरे पिताजी के
0: जी,
1: और मेरा भाई मेरे से 15 साल बड़े थे। तो मेरा भाई ज़्यादातर बाहर ही पढ़ाई की थी, 10th तक मेरे साथ में रहे थे तब मैं छोटी थी। मेरी सिस्टर है जो मेरे साथ में रहती थी, मुझे स्कूल भेजती थी।
0: आपके सिस्टर भी बड़े, आप सबसे छोटे रहे?
1: हाँ, मैं सबसे छोटी
0: हूँ। क्या बात है, सभी का प्यार आपने लूटा
1: जी। मेरे भैया ने कॉलेज जालौर से की थी तो वो बाहर ही रहते थे, जब छुट्टियां होती थी तब घर पे आते थे, तो मेरे लिए कुछ छोटी छोटी गिफ्टें लेके आते थे।
0: अरे वाह।
1: ऐसे मुझे जैसे चित्रकला में मेरे लिए ड्राइंग बनाते थे मेरे भैया, उसमें फिर स्कूल में चेक करवाती तो मुझे उसमें वेरी गुड मिलता था। उससे मुझे
0: तो स्कूल में पूछते नहीं कि किसने बनाया ये चित्र?
1: नहीं पूछते थे, पर उनसे सारी लड़कियां मैं बनाती तो फिर उनसे वापस उसी चित्र को बनाती। एक मेरे भैया, मुझे याद है, एक घोड़े का फोटो बनाया था मेरे भैया ने चित्रकला में।
0: अच्छा।
1: तो वो खूब सारी लड़कियों ने उसको देख के सभी ने अपने बुक में वही फोटो बनाया था।
0: हाँ जी। और सबको अच्छा लगा?
1: सबको अच्छा लगा था वो।
0: अच्छा। और आपको किस तरह की हेल्प मिलती थी, और टीचर को कभी पता चला कि आप तो सब कुछ अपने भैया से करवाते हैं?
1: नहीं, ऐसा कोई पता नहीं चला। कभी अच्छा। कभार भैया आता था, एक आध बार ऐसे किया था, बाकी उससे मुझे सीख मिली किस तरह से करना काम, किस तरह से पढ़ाई करनी। अभी मेरे भैया जो 96 में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे उनको पोस्टिंग मिली थी।
0: अच्छा।
1: पहले मेरे भैया टीचर थे, जो टीचर की नौकरी छोड़ के उसमें सेलेक्ट हुए सब इंस्पेक्टर में।
0: अच्छा।
1: जो अभी DYSP की पोस्ट पे है डिस्ट्रिक्ट भीलवाड़ा में मांडलगढ़।
0: अच्छा जी जी जी, बहुत बढ़िया। तो आपके परिवार में सभी जॉब करते, भाई बहन आप सभी?
1: मेरे पापा टीचर थे जो रिटायरमेंट हो गए, मैं और मेरे भैया जॉब करते, बाकी बड़ी सिस्टर है जो वाइफ हाउस है।
0: अच्छा, हाउस वाइफ है। जी जी जी, चलिए बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि आपके पापा जॉब करते थे इसलिए उन्होंने आपको मोटिवेट किया।
1: जी
0: जी।
1: 2005 में कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई थी उसमें मुझे मेरे भैया ने मार्गदर्शन दिया कि आप भी फॉर्म अप्लाई कर दो, तो मैंने भी फॉर्म अप्लाई किया और उसमें एग्जाम दिया तो रिटर्न में मैं सेलेक्ट हो गई थी। उसके बाद में पुलिस में फिजिकल भी होता है
0: जी,
1: जिसमें दौड़ वगैरह है, गोला फेंकना है, हाइट वेट सारा
0: जी,
1: उसमें
0: जी, जी।
1: वो चेक करते हैं, तो उसमें भी मैं फिजिकल में भी पास हो गई थी। फिर मेरा इसमें
0: आपके आपके सर्विस का सफर का तो हम जरूर जानेंगे। आपके बचपन की बातें चल रही, तो आपको और क्या क्या शौक रहा, कभी आप गाना गाना डांस करना स्कूल में करते थे?
1: जी हाँ, स्कूल में डांस करते थे, सिंगल नृत्य भी मैं करती थी, और जैसे गरबा होता तो गरबा भी खेलती थी।
0: अच्छा
1: जी,
0: और पढ़ाई में होशियार थे?
1: हाँ, पढ़ाई में मैं होशियार थी।
0: घर में आप मम्मी को किसी तरह हेल्प करते थे किचन में?
1: हाँ, घर पे मैं झाड़ू निकालना, बर्तन धोना, पानी भरना, खाना बनाना, पूरा काम करती थी। हमारे घर पे गाय भैंस भी रखते थे, तो गाय भैंस को भी चारा डालना, उनको पानी पिलाना, खेत में चराना, मैं पढ़ाई भी करती थी और खेत में गायों को, भैंसों को, उनको भी वो पास में खड़ी रह के चराती थी।
0: मतलब आपने हर प्रकार का कार्य किया हुआ है। छोटे गांव से आप
1: जी
0: निकले
1: और है। कभी जैसे ट्यूबवेल वगैरह नहीं होता तो पानी भी हमारे दूर से मटके सिर पे ऊंचा के
0: पानी वो भी आप उठा करके लेके आए। क्या बात है, आज आप पुलिस में कार्यरत है लेकिन आपने सारा स्ट्रगल किया है, सारे कार्य किए हैं। लोग अक्सर कहते हैं ना, अरे तुम तो महिला हो, तुम्हें तो चौका चूल्हा ही संभालना है, क्या करोगी जॉब करके। लेकिन आपने साबित कर दिया कि चौका चूल्हा तो संभालना ही है, सभी को संभालना है, लेकिन इसके साथ हम बहुत कुछ कर सकते हैं, समाज की और देश की सेवा कर सकते हैं जो आप कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है सुंदर जी, आपके अनुभव और भी सुनेंगे लेकिन यहाँ पर समय हो चला है एक गीत सुनने का। तो ये गीत सुनकर के पुनः लौट रहे हैं, वंदे मातरम कार्यक्रम सीधा प्रसारण है, आप जुड़ सकते हैं और सुंदर जी से अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। तो आइए सुन लेते हैं एक गीत, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: बहू बहू जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
1: जी आई माँ जी।
0: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
1: जी माँ जी आ गई। चलिए।
0: नमस्ते डॉक्टरनी जी।
2: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
0: डॉक्टरनी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
2: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
0: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
2: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
1: जी वो न, न,
0: अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
2: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
3: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।
4: माँ बन के ममता लुटावे, बहन बन प्रेम निभावे, पत्नी बन जीवन सजावे, बेटी बन खुशियाँ लावे। इतना रूप समाया जिसमें, इतना रूप समाया जिसमें, वो नारी महान तुम्हारा गुण गावे, तुम्हारा गुण गावे सारा जग, आपका ऊंचा मान, आपका ऊंचा मान। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में पुनः आप सभी का स्वागत है। सुंदर जी हमारे साथ बने हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप पुलिस विभाग से

0: करते हैं और देखिए समाज की सेवा के साथ साथ आज रेडियो मधुबन के स्टूडियो में भी पहुंच चुके हैं और अपने सुंदर से अनुभव आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं। तो आप जरूर जुड़िएगा, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं खुल करके, ठीक है। क्या है कि सुंदर जी, अक्सर लोग पुलिस से दूर भागते हैं, वो डरते हैं कि अरे पुलिस है, चलो हटो यहाँ से। भले गुनाह नहीं किया होता है लेकिन एक छाप ऐसी होती है कि डर लगता है। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं, हमारी बहन है बहुत ही सॉफ्ट नेचर के है और बहुत ही मिलनसार है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं। आप जुड़ सकते हैं, नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415। और सुंदर जी, आपके बचपन की बातें चल रही थी, इस तरह बचपन आपका बहुत अच्छा बीता, पढ़ाई में भी आप अव्वल रहे, तो पढ़ाई के साथ साथ अब आप अपने सफर के बारे में बताइए कि किस तरह आपको ये प्रेरणा आई कि मुझे इस डिपार्टमेंट में जाना है, पुलिस डिपार्टमेंट में।
1: हाँ, मुझे
0: जी
1: मुझे मेरे भाई से भी मार्गदर्शन मिला है कि आप, मैं भी एक पुलिस में हूँ, अच्छी जॉब है, आप भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आजकल महिलाएं कहीं पीछे नहीं है, हर डिपार्टमेंट में महिला पुरुष के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर भाग ले रही है, तो आप भी एक जनता में पुलिस की सेवा दे सकते हैं।
0: जी, तो फिर आपका विचार हुआ कि हाँ मुझे कुछ करना चाहिए जी। तो आपको जब पढ़ाई करते थे तो पढ़ाई के साथ साथ कभी आपको ऐसा लगता था कि मुझे कुछ हटके करना है?
1: नहीं, पहले तो मुझे यूं लगता था कि मैं एक लड़की हूँ, मैं क्या जॉब करूँगी। जैसे लड़के होंगे तो वो जॉब करेंगे, महिला तो घर में ही रहती है।
0: तो आपके आसपास माहौल ऐसा था, इस तरह के आपके अंदर विचार आते थे?
1: जैसे लड़कियां कम ही पढ़ती थी, जैसे मैंने 11th 12th रानीवाड़ा से की थी, तो हमारे गांव से रानीवाड़ा में मतलब 10th तक की लड़कियां स्कूल में पढ़ के पढ़ाई छोड़ देती थी, क्योंकि बाहर भेजने में परिवार वाले भी घबराते थे। तो मेरे साथ में और 4-5 लड़कियां थी, हम 4-5 लड़कियां सुबह जाते और वापस अप डाउन करते थे उस टाइम आना जाना। तो लोग भी यूं कहते, इनकी लड़कियां बाहर पढ़ती है, यूं है। तो भी घर वालों को हमने यही कहा कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, एक दिन आपका नाम रोशन करेंगे।
0: आपका भाई का सपोर्ट था, आपके माता पिता का भी था सपोर्ट?
1: जी, मेरे मम्मी पापा का भी मेरे पे बहुत सपोर्ट था, और भी मेरे परिवारजन में, मेरे जैसे मेरे मामा जी का लड़का भी अभी SP है, उनका भी सपोर्ट था। कि मेरी मम्मी को बोलते थे कि बुआ जी, आप सुंदर को तो आपको जॉब लगाना ही पड़ेगा, ये पढ़ाई कर रही है, तो उनका भी सपोर्ट था, पूरे परिवार का सपोर्ट था मेरे साथ।
0: जी, तो इस तरह आपने ग्रेजुएशन किया जी। ग्रेजुएशन के बाद आपने कंपटीशन फाइट किया
1: जी।
0: तो इस डिपार्टमेंट में आने के लिए कौन सा कंपटीशन फाइट करना होता है?
1: ये तो पुलिस का ही होता है
0: जी। अच्छा,
1: पुलिस का अपन फॉर्म अप्लाई करते हैं, फिर इसमें रिटर्न पास करना होता है पुलिस के फॉर्म में। तो वही मैंने दर्पण गाइड लाके पढ़ाई की थी, उससे फिर मुझे सफलता मिली
0: जी। इसमें हाइट हेल्थ सब देखी जाती है?
1: हाइट हेल्थ वेट सारा देखा जाता है, लॉन्ग जंप होता है, उसमें दौड़ होती है। हमारे टाइम में 5 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ होती थी, और अभी है जो 35 मिनट में, लड़कियों के लिए 35 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ होती है।
0: अच्छा, अगर 35 किलोमीटर में आप 5 किलोमीटर दौड़ नहीं की तो आप आउट। अच्छा
1: जी,
0: तो हो जाती है, लड़कियां कर लेती है?
1: करती है, आती है, बहुत सारी लड़कियां आई है।
0: अच्छा, तो आपने भी इस तरह?
1: हाँ, जब हम 2006 में भर्ती हुए थे, उस टाइम हमारे टाइम में 5 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ करना अनिवार्य था।
0: अच्छा
1: जी,
0: तो उसके लिए आपने पहले प्रैक्टिस किया, डायरेक्ट आप मैदान में उतर गए?
1: नहीं, मैंने प्रैक्टिस की थी, मेरा घर जो रोड है उस पे ही था, तो मैं सुबह जल्दी उठ के रोड पे दौड़ करती थी, प्रैक्टिस करती थी, गोला फेंकती थी, लॉन्ग जंप भी करती थी, तो ये सारा पहले प्रैक्टिस करना पड़ता था।
0: जी, तो आपके मतलब अड़ोस पड़ोस है, आपके घर वाले, ऐसा तो नहीं लगता कि अरे ये सुबह उठ करके क्या कर रही है, पता नहीं?
1: हाँ, उनको पता था, मेरे जैसे चाचा के घर पे, उनको परिवार वालों को तो सबको पता था, लेकिन जैसे रोड पे दौड़ते तो गाड़ियां वाड़ियां निकलती, तो वो भी सोचते थे कि ये लड़की ऐसे क्यों दौड़ रही है।
0: जी। और जैसे कि आपने बताया कि 4-5 लड़कियां आपके साथ में पढ़ाई करती थी और आप सभी अप डाउन करते थे, तो जो आपकी फ्रेंड्स थी 4-5, वो भी कुछ, उन्होंने भी कुछ किया या फिर वो हाउसवाइफ?
1: हाँ, किया, कई मेरे साथ पुलिस में भी है, और कई नर्सिंग में है, किसी के प्राइवेट जॉब है, सब अपने पैरों पे खड़ी हुई है।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया। जिन्होंने पढ़ाई की जी वो आत्मनिर्भर बने जी जी। तो आपके मम्मी हाउसवाइफ थे या कुछ काम
1: नहीं? मेरे मम्मी हाउसवाइफ ही है।
0: फिर भी वो मोटिवेट करते थे आपको?
1: मोटिवेट करते थे।
0: और इतना घर का आप काम करते थे, तो घर के काम के साथ साथ आप कैसे समय निकाल पाते हैं?
1: देखो, काम जैसे सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करना, फिर जैसे मम्मी उठ जाती थी तो मम्मी के साथ में जैसे गाय भैंसों का मम्मी दूध निकालने जाती तो उनकी हेल्प करती थी मैं, और घर पे जैसे चाय बनाना, दूध गर्म करना, खाना बनाना, झाड़ू वगैरह सारा निकालने के लिए मैं पूरा मम्मी का हेल्प करती थी।
0: जी जी, जी। चलिए, वो कहते हैं ना कि पढ़ाई में वही होशियार होते जो ऑलराउंडर हो
1: जी, और जो भी कार्य मिले करो। खेती बाड़ी भी करते थे तो उसमें भी पानी पिलाना करना, जैसे गेहूं काटना है, बाजरी काटनी है, उसको वापस तोड़ना करना, वो भी उसमें भी मैं हाथ बंटाती थी।
0: अच्छा जी, मतलब खेती का अनुभव आपको बहुत ही गहरा है। और गाय भैंस दोहना ये भी आपका अनुभव है, और अभी आप इस लाइन में है
1: जी।
0: तो जैसे आपने कंपटीशन फाइट किया, उसमें भी टफ कंपटीशन रहा होगा, बहुत सारे विद्यार्थी बैठे होंगे, उसमें से चयन होना?
1: जी, बहुत सारे बैठे, उसमें मेरिट रहती है। जैसे 100 नंबर का पेपर होता है तो उसमें से इतने मार्क्स आने जरूरी होते हैं।
0: जी जी, और वापिस उसमें से भी जैसे जनरल वाले तो कट जाते हैं, एक लिमिटेशन होती ना
1: जी।
0: तो आपका नंबर, मतलब रैंक कौन सा बना आपका फिर?
1: नहीं, मेरा रैंक तो 75 पे बना था।
0: अच्छा जी जी जी, और बहुत सारे बच्चे बैठे होंगे?
1: बहुत सारे बच्चे बैठे थे।
0: तो जब आप क्लियर हुए तब आपको एक लग गया कि बस अब मुझे सर्विस करने से कोई नहीं रोक सकता?
1: जी, अभी मुझे कोई नहीं रोक सकता।
0: तो जैसे ही आपका रिजल्ट आया होगा तो आपके घर में किस तरह का उस समय माहौल रहा होगा?
1: नहीं, बहुत अच्छा लगा उस टाइम। जैसे वो अभी तो फोन पे भी लिंक में आ जाता कि अभी रिजल्ट घोषित होने वाला है सारा। उस टाइम हमारे घर पे लैंड लाइन था, तो मेरे भैया ने फोन किया था, तो मेरे पापा ने फोन पे बात की तो बोले सुंदर सिलेक्ट हो गई है पुलिस में, तो बहुत खुशी हुई घर वालों ने। पापा ने भी मुंह मीठा कराया, मिठाई मंगवाई घर पे, और बहुत सब बहुत खुश हुए थे।
0: जी जी जी, उसके बाद आपने ये सारे जो प्रोसेस है वो पूरे किए, जैसे कि आप बता रहे थे कि लॉन्ग जंप
1: जी,
0: ये सब, और फिर आप फिजिकल टेस्ट में भी पास हो गए।
1: फिजिकल टेस्ट में भी पास हो गए, फिर इंटरव्यू भी होता है, इंटरव्यू भी हो गया, उस सब फाइट कर दिए थे फिर।
0: अच्छा, इंटरव्यू में भी आप सेलेक्ट हो गए। तो फिर आपने जॉब कब की?
1: जॉब 2006 में, अप्रैल 2006 को हमने पुलिस लाइन सिरोही में आमद करवाई थी।
0: क्या बात है, अप्रैल महीना ही चल रहा है
1: जी, हाँ,
0: अभी आने ही वाला है, मार्च खत्म होने वाला है, तो आपका तो बर्थडे आ रहा है
1: और
0: सर्विस का
1: 30 अप्रैल को मुझे 20 इयर्स पूरे हो जाएंगे सेवा देते हुए।
0: 20 इयर्स पूरे हो जाएंगे,
1: कंप्लीट हो जाएंगे।
0: क्या बात है। तो अभी एज आपकी क्या होगी?
1: मेरी 38। मैं 18 साल की थी तब मेरी जॉब लग गई थी, 18.5 साल में।
0: तो आप तो उस समय सबसे कम एज वाले रहे होंगे।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: तो सभी को घर महसूस हुआ होगा कि देखो इतनी कम एज में आप इस डिपार्टमेंट में।
1: मेरे गांव में मैं पुलिस में मैं ही एक फर्स्ट लड़की थी जो पुलिस डिपार्टमेंट में एक पद पे तैनात हुई
0: जी। तो गांव वालों ने तो आपका जमकर स्वागत भी किया होगा?
1: जी बिल्कुल,
0: क्योंकि गाँव के लोग तो बहुत इमोशनल होते हैं
1: जी,
0: और जब इस तरह गाँव की बेटी जब पुलिस विभाग में जाती है तो घर में तो महसूस होता ही है। तो इस तरह आपने जॉब शुरू की
1: जी।
0: फिर आपके कितने समय बाद शादी हुई?
1: मेरी देखो सगाई तो पहले हो चुकी थी, हमारे बाल विवाह होता था।
0: अच्छा, हाँ, तो आपके बाल विवाह कितने साल के थे और आपके एंगेजमेंट हो गई?
1: मैं 10-12 साल की थी तब मेरी सगाई हो गई थी। अच्छा। मेरी सिस्टर बड़ी थी तो उनके साथ साथ में हमारा भी ब्याह करवा दिया था।
0: ऐसा बहुत होता है राजस्थान में
1: जी।
0: तो फिर जिनके साथ सगाई हुई उन्हीं के साथ आपकी शादी हुई?
1: हाँ जी, उन्हीं के साथ शादी हुई।
0: अच्छा, तो वो क्या, आपके हस्बैंड क्या?
1: मेरे हस्बैंड के प्राइवेट जॉब है, जो मेरे साथ में ही रहते हैं, इधर ही है अभी।
0: अच्छा, आबू में।
1: और मेरा ससुराल मेरे गांव में ही है
0: जी
1: जी, और 5th तक तो हम साथ में ही पढ़े थे। गांव में एक ही स्कूल होती थी बड़ी
0: जी,
1: तो वो भी स्कूल आते थे और मैं भी जाती थी।
0: तो जब आपको ऐसे जॉब लग गई और ससुराल वालों को भी पता चला होगा कि हमारे बहू को जॉब लग गई, तो उनको फिर क्या ऐसा तो नहीं लगा कि अब पता नहीं है सगाई रखेंगे या नहीं रखेंगे?
1: नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हुआ तो भी वो अभी तो हमें नहीं बताएंगे। अच्छा लगा था उनको भी कि भाई चलो अपने पैरों पे खड़ी हो गई बहू।
0: जी जी जी और पहले तो क्या है जो वचन दे दिया वो दे दिया, हाँ, जबान की वैल्यू रहती थी। तो आपको ऐसा तो नहीं लगा कि अरे मेरे हस्बैंड तो अभी जॉब लगे नहीं और मेरी जॉब लग गई, आपको अंदर से?
1: नहीं, मुझे ऐसा तो कुछ नहीं लगा था, पर यूं लगा था कि भाई इनकी भी गवर्नमेंट जॉब होती तो अच्छा रहता, लेकिन देखो अपने नसीब की बात होती है, क्या पता मेरे पति के लिए ही मेरी जॉब लगी हो उनके नसीब से।
0: पॉजिटिव भी हम ले सकते हैं। जी जी जी, तो इस तरह आपने बहुत ही अच्छा सकारात्मक तरीके से सोचा है, तो बहुत बढ़िया। तो जैसे कि आप 18 साढ़े 18 की एज में आप जॉब लग गए, और कहते ना कि देखिए पुलिस डिपार्टमेंट हो चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, पुरुषों के साथ काम करना इसका मतलब लड़कियों के लिए थोड़ा चैलेंजेस रहता है। तो आपके साथ भी ऐसा चैलेंज रहा कि कभी किसी ने आपको गलत नजर से भी देखा हो, कभी आपको कुछ गलत बात भी कही हो?
1: पुलिस में आने के बाद पुलिस अपना एक परिवार हो जाता है, पुरुष और महिला हम हमारे जैसे सेवा देते हुए रात को भी कहीं ऐसे घटना हो जाए तो रात को भी बाहर निकलना पड़ता है। हम महिला अकेली है और जेंट्स के साथ में भी जाते तो भी हमें वैसा कोई भी ऐसे मतलब अनकंफर्टेबल हम नहीं समझते हैं, सब एक परिवार की तरह रहते हैं, और एक महिला होने के नाते स्टाफ वाले भी हमारी बहुत सपोर्ट करते हैं।
0: बहुत बढ़िया जी, ऐसा ही होना चाहिए जी। तो आपके फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ हुई थी उस समय जब पहली बार आप जॉब लगे तो?
1: जी, एक साल की तो हमारे ट्रेनिंग हुई थी जोधपुर में, हुई थी आरपीटी ट्रेनिंग सेंटर जोधपुर में, एक साल। वहाँ पे जैसे पुलिस के बारे में अनुशासन है, जैसे फिजिकल फिट कैसे रहते हैं, पीटी परेड वगैरह, पुलिस के कैसे रैंक है, क्या पद है। पहले तो ऐसे लगता था जैसे घर पे थे तब एक कांस्टेबल आता तो भी पुलिस लगता था, और एक एसपी साहब आते तो भी पुलिस ही लगता था। अब उनकी रैंक वाइज भी कौन है, सब इंस्पेक्टर है, कौन डीवाई एसपी है, कौन एसपी है, कौन आईजी है, उनके बारे में जानकारी हुई।
0: जी जी जी, नहीं मैं ये पूछ रही हूँ आपकी फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ, आबू में ही आए सीधे या
1: नहीं,
0: कहीं दूसरी जगह?
1: मेरी फर्स्ट पोस्टिंग रेवदर में रही थी।
0: अच्छा
1: जी, पुलिस थाना रेवदर में 2000 जुलाई 2008 से।
0: अच्छा, वहाँ पर रहे, फिर उसके बाद आपके आबू में ट्रांसफर हुआ।
1: जुलाई 2008 से मेरी 2016 तक पुलिस थाना रेवदर में रही थी, और 16 से 2022 एंड तक मेरी सीओ कार्यालय रेवदर में रही थी जी, और 2 जनवरी 2023 में मैं आबू रोड पुलिस थाना आबू रोड सदर थाने में आई थी।
0: अच्छा जी, तब से आप इधर है?
1: अब इधर है।
0: तो सुंदर जी, चलिए आपके अनुभव और भी सुनेंगे, लेकिन समय हो गया फिर से एक गीत सुनने का। तो एक गीत सुन करके पुनः लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं। सुंदर जी के अनुभव बहुत ही सुंदर है और हम और भी इनके अनुभव सुनेंगे। आप चाहे तो फोन कॉल्स भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए सुनते एक गीत, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नारी है तो जीवन में उजियारा है, नारी है तो घर आंगन लगता है प्यारा है। जिस घर में नारी का सम्मान रहे, जिस घर में नारी का सम्मान रहे, वो धरती पर स्वर्ग से न्यारा है, वो धरती पर स्वर्ग से न्यारा है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में सुंदर जी हमारे साथ बने हुए हैं। सुंदर जी के काफ़ी अनुभव हमने सुने हैं, और इसी कड़ी में हम और भी आगे बढ़ेंगे। तो सुंदर जी, जैसे कि आप बता रहे थे कि इस तरह फाइट करके आप पुलिस डिपार्टमेंट पे आए, फर्स्ट पोस्टिंग आपकी रेवदर में रही
1: जी।
0: फिर आप धीरे धीरे, ये तीसरी बार मतलब बीच में आप और कहीं थे?
1: हाँ, सीओ कार्यालय रेवदर में थी।
0: अच्छा, फिर आप आबू में आए हैं।
1: आबू में आए।
0: और जैसे आप पुलिस डिपार्टमेंट में तो है ही है, लेकिन आप कालिका पेट्रोलिंग यूनिट, मतलब ये भी कोई, इसका पहले तो आप अर्थ बताइए कि ये क्या चीज़ है और इसमें आप कार्यरत है तो आप किस तरह का कार्य संभालती है?
1: जी, कालिका पेट्रोलिंग यूनिट सरकार ने दिसंबर 2024 में महिला व बच्चों की सुरक्षा के लिए गठित की थी, जो ऑल राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये टीम बनाई हुई है, हर जिले में है। अपने सिरोही जिले में 4 महिला कांस्टेबल सिरोही जिले में है, और 4 आबू रोड में है, 2 माउंट में है, 2 शिवगंज में है।
0: अच्छा, तो आपका कार्य है महिलाओं के साथ किस तरह घर परिवार में कोई शोषण तो नहीं हो रहा है, मानसिक शारीरिक आर्थिक यौन हिंसा, तो आप कैसे पता लगाते हैं? क्या महिलाएं आपको सामने चल करके फोन करते हैं या फिर आप खुद घर घर में जाते हैं?
1: नहीं, जैसे हमारा कार्य ये होता है कि बच्चों व महिलाओं की सुरक्षा, हम स्कूल में जाते हैं, बच्चों से

0: रूबरू मिलते हैं, बच्चों के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं हो, उनके साथ ऐसी कोई घटना नहीं हो, कई उनके जैसे फ्रेंडशिप बनाने के लिए उनके फ्रेश उनको परेशान करते हो, और हमारे जैसे कालिका पेट्रोलिंग यूनिट के पैम्पलेट छपाए हुए हैं जिसमें एक तो सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है राजकोप सिटीजन ऐप
1: जी।
0: और जो जहाँ भी ज़्यादा महिला भीड़ भाड़ होती है उनको महिलाओं को ऐप डाउनलोड करवाते हैं। राजकोप सिटीजन ऐप का उसकी उपयोगिता मैं बताती हूँ।
1: जी आप ऐप भी बता दीजिए, हमारे श्रोता बंधु भी सुन रहे होंगे तो वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो
0: राजकोप सिटीजन ऐप अपन प्ले स्टोर से जाके उसको इंस्टॉल करेंगे तो राजकोप सिटीजन ऐप उस पर पुलिस का लोगो आता है, उसको अपन इंस्टॉल करने के बाद में उसमें अपने मोबाइल नंबर डालेंगे तो 6 अंकों का OTP आता है। ये एक गवर्नमेंट का ऐप है जो OTP आता है उसमें, बाकी अपन कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें OTP नहीं मांगते हैं। इंस्टॉल करने के बाद में उसमें अपन भाषा जो भी लेनी होती है लैंग्वेज चॉइस करते हैं, हिंदी या इंग्लिश। उसके बाद में अपने को इमरजेंसी हेल्प या नॉन इमरजेंसी हेल्प दोनों तरह से अपन हेल्प ले सकते हैं। फिर उसमें अपनी लोकेशन चालू रखनी होती है।
1: अच्छा।
0: हाँ, जैसे ही अपन लोकेशन को प्रेस करेंगे तो अपने पास ऑप्शन आ जाएगा कंप्लेन करने का। उसमें अपन लिखित में टाइपिंग करके भी कंप्लेन कर सकते हैं, और उसमें कैमरा है तो अपन फोटो भी खींच के भेज सकते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं और वॉइस से भी भेज सकते हैं। जैसे लोकेशन का मतलब, जैसे अपन यहाँ बैठे हैं, अपने साथ कुछ घटना हो रही, तो अपन जैसे ही उस कंप्लेन को सबमिट करेंगे तो उसमें अपना मोबाइल नंबर और लोकेशन पूरी डिटेल आ जाती है। तो ये कंप्लेंट सीधा जयपुर जाती है, कंट्रोल रूम जयपुर। जयपुर से वो लोकेशन देखते हैं कि ये लोकेशन कौन सी जगह का है, कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, कौन से थाने के अंतर्गत आता है। तो उस थाना देख के, अपनी लोकेशन देख के, जैसे ही उस थाने के अंतर्गत आएगा, जैसे अपन यहाँ बैठे तो अबू रोड सदर थाना लगता है, तो अबू रोड सदर थाने वाले स्टाफ को कॉल करेंगे और तुरंत 5 मिनट के अंदर ही पुलिस को आना ही पड़ता है। ये ऐप बहुत उपयोगिता है, इसको हर महिलाओं को अपने मोबाइल में डाउन करके रखना चाहिए,
1: चाहे रात का समय हो, दिन का समय, किसी भी समय आपके साथ कोई भी घटना घटित होती हो,
0: 24 घंटे कोई भी घटना हो, जैसे घर में भी कोई परेशानी हो, महिला कहीं और रास्ता में, कहीं जैसे रात को सफर कर रही है, यहाँ बस खराब हो गई है और खुद को अनकम्फर्टेबल समझ रही है कि मुझे यहाँ डर लग रहा है, तो भी आप उस हेल्प की मदद ले सकते हो। जो भी नजदीकी पुलिस होगा तुरंत आके उसको सुरक्षित जगह पे पहुंचाएगा।
1: अच्छा, तो चलिए हमारे श्रोता बंधु शायद आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो
2: दीदी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुरेश भाई बोलता हूँ।
1: हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार सुरेश भाई, कैसे हैं आप?
2: बहुत अच्छे हैं, और हमारे सुंदर जी भी बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं, सुन रहे जाने पर बहुत अच्छा लगा, और कई सारी बातें सुनी हमने
1: जी,
2: और काफी वो सेवा कर रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट में है, और जो महिलाओं की सेवा भी करते हैं, महिलाओं का एक रक्षक है
1: जी,
2: तो कई सारी में सेवा कर रहे हैं, तो हमारे तरफ से तो भी नमस्ते हैं।
0: नमस्ते।
2: और बहुत अच्छी सेवाएं आप कर रहे हैं, सेवा की महिला की सुरक्षा, लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप सॉल्व कर देते हो और काफी जानकारी भी देते हो, कई सारी बातें से आप बता रहे हैं। तो मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि जो आप कोई महिला कई जगह पे कोई प्रॉब्लम होता है और महिलाएं सुरक्षित नहीं होती है वहाँ पहुँच जाते हैं तुरंत, तो ये भी एक अच्छी सेवा कर रहा है। हमारी तरफ से आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं है कि आप भी ऐसे कार्य करते रहे, देश की सेवा करते रहे, लोगों की सेवा करते रहे, महिलाओं की सेवा करते रहे, कहीं ना कहीं महिलाओं को आप बहुत उपयोगी बने हैं, तो ये भी अच्छी बात है।
0: थैंक यू।
1: आपको कुछ पूछना है क्या? कुछ हाँ जी पूछ सकते हैं आप।
2: हाँ, वो तो मैं सुन रहा था महिलाएं की जो बात आपने बताई, क्यों अभी तो मैं थोड़ा बाहर हूँ, सफर में हूँ, फिर भी कार्यक्रम बैठे बैठे सुन रहा हूँ, बस में बैठे बैठे।
1: अच्छा,
2: तो हाँ इसलिए तो फिर भी मैं कार्यक्रम सुना तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपसे और हमारे सुंदर जी से बात कर लूँ।
1: चलिए, बहुत बहुत आभार आपका सुरेश भाई, आप अक्सर जुड़ते ही हैं, हम भी सोच रहे थे कि आप जरूर जुड़ेंगे
2: क्योंकि मैं जा रहा हूँ बाहर, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम रहता है बात करने।
1: जी जी, सफर में तो रहता ही है, वो सभी जानते हैं। जी
2: ठीक है
1: जी, नमस्ते, आभार आपका। तो ये थे सुरेश भाई जोटाना से। अगर आपको भी कुछ पूछना हो तो आप जुड़ सकते हैं रेडियो मधुबन से, नंबर है 94-14-15-14-15। और सुंदर जी हमारे साथ बने हुए हैं, सुंदर जी के बहुत ही अच्छे अनुभव हम सुन रहे हैं। तो मधु जी आप हाँ बता रहे, सुंदर जी आप बता रहे थे कि इस तरह यूनिट बनाई गई है, तो ये महिलाओं की है या भाई लोगों की भी है, पुरुषों की भी है?
0: नहीं, महिलाओं की भी है और पुरुषों की भी है।
1: अच्छा।
0: जैसे पुरुषों को भी समस्या होती है तो भी उनका हम उनकी समस्या को सुनते हैं, उनकी समस्या का निराकरण करते हैं।
1: अच्छा, वो आप लोग ही संभालते हैं?
0: जी, हम भी संभालते हैं। और जैसे हमारे लेवल की नहीं है और कोई गंभीर वाला मामला है तो थाना अधिकारी को भी हम उनसे मिलवाते
1: जी,
0: हैं, उनकी बात सुनते हैं, जो भी कार्रवाई होती है उनके अनुसार रिपोर्ट दर्ज की जाती है।
1: अच्छा, तो इस तरह का कभी केस आया कि अचानक आपको फोन आया हो महिला के साथ किसी तरह का शोषण हो रहा हो, ऐसा होता है?
0: जी, हमारे पास बहुत सारे फोन आते हैं। हमारे जैसे मैंने बताया कि हमारे मोबाइल नंबर और पैम्पलेट दिए हुए हैं, उसके एक ऐप जो अभी ऐप बताया उसके साथ में एक महिला गरिमा हेल्प नंबर भी है 1090 1090। जैसे कहीं भी नेट का इशू होता है तो आप 1090 या अपने बड़े वाला मोबाइल न हो कि पेड वाला मोबाइल हो तो उसके थ्रू भी आप 1090 से कंप्लेन करके आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। हमारे साथ ऐसे तो कॉल तो आते ही रहते हैं, दिन में 2-4 फोन तो आ ही जाते हैं।
1: जी जी जी,
0: कहीं भी बैठे रहो तो
1: हर कोई दुखी है, हर किसी के साथ देखते हैं कि अधिकांश शोषण हो ही रहा है, किसी भी प्रकार का कोई सुरक्षित नहीं है, तो फिर आप पहुंच जाते हैं, जैसे आपको फोन आता है पहुंचने की कोशिश करते
0: हैं? हम जितना जल्दी हो पहुंचने की कोशिश करते हैं। महिलाओं के साथ देखो, यहाँ पे आबू रोड में थोड़ा आदिवासी एरिया है
1: जी।
0: तो जैसे आदिवासी में क्या होता है, लोग कहीं भी छेड़छाड़ की घटनाएं कर देते हैं, दारू पी के परेशान करते हैं या लड़कियों का पीछा करते हैं, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, ऐसी घटनाएं खूब सारी होती रहती है। तो महिलाओं की हर बात जल्दी से सुन के उनके न कि उनको थाने बुलाते हैं, बिल्कुल उनके घर पे जाके आपस में घरेलू बात भी होती है तो परिवार वालों को बुला के बिठा के उनकी समझाइश करते हैं, तो महिलाओं को मतलब न्याय की बात करके उनको न्याय मिलता भी है और हमारी पूरी सपोर्ट रहती है, कोई कोई भी महिलाएं परेशान नहीं हो।
1: जैसे आपने बताया है कि आबू में आदिवासी एरिया ज़्यादा है, तो आपको भी कहीं ना कहीं तो एक डर तो अंदर रहता होगा, क्योंकि धमकी देते हैं ना ये भी, अगर आप महिलाओं का सपोर्ट करेंगे तो। पर पहले हम अपने श्रोता बंधु से बात करना चाहेंगे। हेलो
2: हेलो, उषा बहन जी सुप्रभात, नमस्कार।
1: हाँ जी सुप्रभात, नमस्कार कंचन भाई, कैसे हो आप?
2: बस बहन जी, बहन जी को भी बहन जी का नाम भूल गए।
0: नमस्ते नमस्ते, ओम शांति।
1: आप अपना नाम भी बता दीजिए, आपका नाम भूल गए वो।
0: मेरा नाम सुंदर जी है।
2: हाँ सुंदर जी, सुंदर। बस बहन जी बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं। उसी दिन जो महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था उसी दिन आप थे शायद?
0: जी बिल्कुल थे,
1: पूरी टीम थी।
2: हाँ मैंने देखा था मोबाइल में
0: जी।
2: और आपने बाद में जो बताई बातें बताई जो महिलाओं के बारे में, तो मुझे बहुत अच्छी लगी बेटी, मुझे मैंने रिकॉर्डिंग भी कर लिया था वो सब। और क्या है कि महिलाओं को तो खूब जरूरी है बहन जी, अभी जो आदिवासी की बात थी ना, तो हम आदिवासी एरिया में भी है, अभी खेत में है, हमारा भागीदार आदिवासी वनवासी है
0: जी।
2: तो यहाँ ऐसी बातें बन जाती है बहन, ठीक है, आपने जो बताया कि ऐसा बहुत होता है, लेकिन क्या है कि महिलाओं का संगठन है यहाँ आदिवासी में
1: जी।
2: तो एक बहन को ऐसा होता है तो सभी बहने ये इकट्ठे हो जो होके इसको बोलते है और ये करते हैं, डांटते।
1: बहुत बढ़िया, एकता तो होनी चाहिए, महिलाओं का संगठन होना बहुत जरूरी है।
2: हमारे अपने नहीं है बहन जी, हम जो
1: जी जी आदिवासी लोगों
2: तो
1: के जी
2: एक दूसरी बहन की ईर्ष्या एक करते हैं
1: जी जी जी,
2: तो ठीक हुआ है, ऐसा होना ही चाहिए था,
1: सही बात
2: बोलते
1: है।
2: हैं लेकिन जो ये एरिया है ना वनवासी आदिवासी का, ये तो हमने देखते हैं, पहले तो चढ़ोतरा होता है
3: जी. अब बंद कर दिया है.
1: अच्छा.
3: लेकिन कोई ऐसा मर्डर हो जाता था महिला का, ऐसा सब देखते थे ना, तो ट्रैक्टर भर भर के महिलाएं कुहाड़ी धारिया ऐसा लेके वहाँ जाते थे गांव में, और इसका घर तो पूरा नष्ट कर देते थे.
1: अच्छा.
3: ये करते थे. अब नहीं ऐसा होता. अब तो एक दो बार पुलिस ने सबको गिरफ्तार करके पुरुषों को अंदर डाल दिया था, और ऐसा हुआ था एक दो का मर्डर भी वहाँ हो गया था डर के मारे जेल में. तो उन्होंने सभी बंद कर दिया कि भाई शांति से रहना, ऐसा कोई करना नहीं, अब वरना हम साथ नहीं देंगे. तो ये चढ़ोतरा तो अब बंद हो गया.
1: अच्छा. ओके.
3: लेकिन पूरा संगठन है इन महिलाओं का.
1: जी जी.
3: जो हमारे नहीं होता क्या है जी.
0: मैं कहना चाहूंगी कि चढ़ोतरा अभी पूरी तरह से तो बंद नहीं हुआ है, लेकिन कहीं कहीं होता भी है. अभी दो चार महीने पहले भी हुआ था गिरवर साइड में.
3: हाँ
0: जी.
3: उस तरफ हुआ होगा, लेकिन हमारे तो यहाँ सभी लड़की लड़के लड़के को लड़कियों को पढ़ाते हैं ना.
0: जी जी.
3: तो ये सब अपना घर का ख्याल रखते हैं.
0: जी जी.
3: क्या है कि भाई इसमें कोई ये नहीं है.
0: जी जी जी.
3: ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है. और सबको बोलते हैं कि भाई शांति से रहना, ऐसी वैसी हरकत नहीं करना है, वरना हम साथ नहीं देंगे. पहले तो पूरा साथ देते थे.
0: जी.
3: अब अपना घर बिगाड़ के कौन जाए बेटी जेल में.
0: जी.
3: तो ये सर समझदार थोड़े थोड़े हाथों हो गए हैं. ठीक है
1: जी, बहुत बढ़िया.
3: ऐसे ऐसे एरिया में थोड़ा होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ तो सदंतर बंद कर दिया.
0: नहीं, बिल्कुल बढ़िया किया. ऐसा जैसे ज्यादा शिक्षा है तो लोग जागरूक भी हो रहे हैं, तो ये सारा सिस्टम बंद होने वाला ही है. पर थोड़ा इधर टाइम लगेगा.
3: आम का पेड़ काट देते थे, कोई इंजन कुएं पे रखा होता तो ये अंदर कुएं में डाल देते थे उस उठा के. ऐसा बहुत नुकसान करते थे लोग. एक दो बार पुलिस ने ऐसा किया तो ये इसका परिणाम अच्छा है. जब कोई ऐसी बातें तो नहीं बनती, और कोई होती है तो आपस में ये कर देते हैं कि भाई
1: बातचीत करके निपटा देते हैं. जी
3: हाँ, ये इसको लड़की दे दो, ये ऐसा है तो लड़की की क्या इच्छा है बोलो, तो ऐसा करके इसको दे देते हैं.
1: ठीक है कंचन भाई, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत आभार आपका.
3: जी. खेत में हूँ अभी बहन जी, तो मैंने सुरेश भाई की बात सुनी तो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ी बात.
1: जी जी. बहुत बढ़िया.
3: और महिलाओं को जरूरी है बहन जी, जो इस दिन आपने बात की थी ना.
1: जी.
3: हमारे भी एक क्या हुआ था, मैं बात बताऊँ
1: कंचन भाई. आपकी बात हम, क्योंकि ये टाइम पीरियड बहुत कम है और बहन जी की बहुत सारी बातें है, तो हम आपकी बात कल आशियाना में सुनेंगे. ठीक है जी. बहुत बहुत आभार आपका. तो ये थे कंचन भाई मंडाली से. और अभी यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेकर पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में. सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM.

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में सुंदर जी हमारे साथ बने हुए हैं। सुंदर जी के काफ़ी अनुभव हम सभी ने सुने हैं, बहुत ही सुंदर आपने अपने बातें बताई है। चलिए हम इधर उधर की बात न करते हुए सीधे ट्रैक पर चलते हैं। सुंदर जी, जैसे कि आप बता रहे थे कि आप महिलाओं की भी इस तरह हेल्प करते थे, और इस तरह एक घटना आपने कुछ सुनानी चाहिए, लेकिन हमारे श्रोता बंधु का फोन आ गया तो उनसे बात करने लग गए।
1: जी, जैसे कई फोन आते तो हम जैसे निकलते हैं, कई लड़कियों की शिकायत होती है, महिलाओं की शिकायत होती है, तो एक दो किस्से हैं जो मैं आपको सुनाऊंगी।
0: जी जी, लेकिन शायद हमारे श्रोता बंधु बात करना चाहते हैं और आपकी आवाज नहीं पहुंची। हाँ जी, नमस्ते।
2: भूरा राम बोल रहा हूँ से मैं।
0: हाँ भूरा राम जी, राम राम, कैसे हो?
2: राम राम है। उषा बहन जी और सभी मनोवन भाइयों को और सुंदर बहन जी को भी मेरा राम राम है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: समझने की बात सुंदर बहन जी ने समझाई है लोगों को, और लोगों को मालूम नहीं रहता है, जो थोड़े अनपढ़ रहते तो उनको ये इतना कानून का मालूम नहीं रहता जितना आप सुंदर बहन जी ने बताई है। लेकिन ये जो आदिवासियों के जो रिवाज है बहुत गलत होते हैं। मेरे सामने एक घटना घटी, आपको बताऊं क्या?
0: छोटी सी हो, शॉर्ट में बताइएगा। आप और से
2: मैं बताता हूँ कि कुत्ता पैदा है अपना दरवाजे पे, कोई दूसरा
0: जी,
2: और आदिवासी की औरत वो सांस लेने आई, जो
1: जी
2: सांस लेने के लिए आई
1: जी,
2: तो उसको कुत्ता काट लिया। अभी वो कुत्ता बाहर का था, लेकिन वो काट लिया, लेकिन वो नहीं माने कि कुत्ता तुम्हारे से, वो घर वाले का।
0: अरे कुत्ता काट लिया, इसमें क्या करेंगे? और घर वाले थोड़े ना, कुत्ता पाल रखा था क्या उन्होंने?
2: नहीं पाला नहीं था, वो बाहर का बैठा था, लेकिन वो आदिवासियों के मतलब एक रिवाज है कि कुछ भी जिसका वो बेचारे के उनको माने नहीं, और वो तो एक से दो चार बने, वो तो ज्यादा हो गए। मैं उनसे बेचारे 50,000 की मांगनी की तो देना पड़ा, बोलो कोई जाम वाला भी नहीं कर सकता, कोई पूछ नहीं कर सकते।
0: तो अच्छा, इसमें
2: परंपरा है, तो सुंदर बहन जी बता अच्छा बना रहे हैं कि ऐसे ऐसे जो घटना होती है थोड़ा उससे अंकुश रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बेचारे लोग डरते
1: हैं। हाँ ऐसा ही है आदिवासी में, जैसे जिसके घर पे कोई घटना हो गई तो जुर्माना उनसे ही वसूल करना पड़ता है।
0: तो सुंदर जी, इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती?
1: पुलिस तो क्या करे, राजीनामा करा सकती है दोनों पार्टियों को बुला के, तो कंप्लेन वगैरह भी की थी क्या थाने में?
0: थाना में कंप्लेन की थी भूरा राम जी?
2: नहीं नहीं थाने में तो वो क्या करे बेचारे, अभी उनको जो है तो पैसे देने के बाद में क्या करेंगे?
0: नहीं तो पैसे देने के पहले कंप्लेन करनी चाहिए ना, रिपोर्ट लिखानी चाहिए
1: जी।
2: हाँ पर वो तो है ना, ऐसा है कि फिर वो लोग ऐसे डरते के नजदीक के रहते तो फिर बाद में वो थाने में जाके तो फिर उनका तो विश्वास खुद
0: अच्छा बदला ले लेते हैं,
2: कभी भी आके ये मतलब
0: जी जी जी, लोग इस तरह डरते हैं,
2: मतलब लोगों में डर है, ये मतलब कहने का मतलब एक दफे ऐसा पुलिस का ये जावन है तो डर मिट जाता है, मेरा बोलने का मतलब ये
0: जी जी, मतलब कुत्ता काटता है तो भी वो दोष जिसके घर के बाहर काटते हैं उनके ऊपर आ जाता है, ये तो थोड़ा ज्यादा ही हो गया, बहुत ज्यादा हो गया।
2: हाँ कुत्ता तेरे घर पर बैठा मतलब ये तेरा मतलब जान बुझ गया।
1: हाँ जी
0: हाँ जी,
2: ऐसी ऐसी घटना होती है मतलब जो मतलब मतलब ही नहीं होता है।
0: तो ये पैसे लूटने का धंधा है इसका मतलब?
2: हाँ बस, तो और इसमें ऐसी ऐसी
0: जी
2: झूठा भी इंजाम दे के बोले तो आगे वाले को उम्मीद कर देते और कर, लेकिन उनके समाज में एकता है मतलब एक प्रसाद से तो
1: नहीं, इसमें
2: तो
1: जैसे
2: फिर वो लोग डर जाते हैं आगे से।
1: इसमें जैसे इनके जाति के जैसे शिक्षित लोग है ना, उनको समाज में बैठ के ये बात करनी चाहिए कि भाई ऐसी घटना होती है तो ऐसा आरोप लगाना गलत है।
2: पर वो तो समझे तब ना, वो ऐसा मतलब ये तो क्या होता है कि थोड़ा अपने पुलिस वाले भी और सब मतलब उनको थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसी घटना जाके बैठा के समझावे
1: जी,
2: तो थोड़ा समझे नहीं तो ये तो अभी बहुत पुरानी रीति चलती आई है, बाप दादा ने किए थे तो उनसे डबल ये बच्चे लोग भी करते हैं, मतलब कोई कम नहीं होने के सवाल ही नहीं होता।
1: सही है, नहीं जैसे ऐसी कोई बात हो ना तो पुलिस को सूचना देना जरूरी है, बिना सूचित तो पुलिस को क्या पता चलता है, वो बात है।
2: लेकिन ऐसा बोलते बेचारा सादा सादा आदमी डर जाते
1: हैं। हाँ डर की वजह से पुलिस के थाने में जाने से ही लोग डरते है कि कुछ और घटना नहीं कर दे हमारे साथ में,
2: मतलब वहाँ तो कर देंगे लेकिन दूसरे के बाद में ये थोड़े थोड़े कभी भी मतलब ऐसा कर सकती है, ऐसा है
0: जी जी चलिए बहुत बहुत आभार भूरा राम जी। तो ये थे भूरा राम जी, और से देखे कैसी घटनाएं घटती है, आश्चर्य होता है। लेकिन आज हमारे इन बातों में ही समय चला गया सुंदर जी, अब शायद और भी हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं। चलिए ठीक है, नहीं है तो बस आपसे तो काफी कुछ अभी जानना बाकी है, सुनना बाकी है, जो हम अगली बार जरूर सुनेंगे। लेकिन कार्यक्रम के अंत में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, विशेष करके बहनों को, और मैं तो कहूँ कि आदिवासी समाज को क्या कहना चाहेंगे आप?
1: मैं यही कहना चाहूँगी कि महिला एक पुरुष को भी कंधे से कंधे मिला के चल सकती है। महिला के बिना तो पूरा संसार अधूरा है। महिला कहीं पीछे नहीं है। हर जॉब में आप देखो, पुलिस है, हेलीकॉप्टर चलाने के लिए महिला, एरोप्लेन चलाती है, ट्रेन चलाती है, कहीं भी महिला पीछे नहीं है। महिलाओं को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। और आदिवासी समाज की बात करूँगी तो आदिवासी समाज में शिक्षा का मतलब बहुत कमी है। अभी तो फिर भी लड़कियां हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में भी आ रही है, काफ़ी लोग ऐसे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि हर महिला अपने परिवार से शुरू करेगी कि मैं मेरे परिवार में जैसे
0: बदलाव लाऊंगी,
1: कोई भी मेरे परिवार में नशा नहीं करेंगे।
0: जी, बहुत सुंदर मैसेज दिया है आपने कि आदिवासी समाज में भी जागरूकता आ सकती है। एक नारी शिक्षित होगी तो पूरे परिवार में परिवर्तन लाएगी, और ऐसा ही करना है। तो सुंदर जी, आपका बहुत बहुत आभार, आप रेडियो मधुबन के स्टूडियो में पधारे और आपने अपने जीवन के सुंदर से अनुभव सभी के साथ शेयर किए, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आज का आपके रविवार की छुट्टी थी वो हमने ले ली पूरी।
1: जी हमारे तो छुट्टी तो रहती नहीं है, 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ता है।
0: जी उसमें भी थोड़ा समय हमने ले लिया है, लेकिन हमारे श्रोता बंधु ने भी सुना है,
1: जानकारी सुनना लोगों में बहुत जरूरी है।
0: तो बहुत बहुत आभार आपका। आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में सुंदर जी वैष्णव हमारे साथ बने हुए थे। आपके जीवन के अनुभव आप सभी ने सुने हैं कि कैसे आपने पढ़ाई की, कैसे आप इस फील्ड में आए, कैसे आपने कंपटीशन फाइट किया और इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो मैं ऐसी नारी शक्ति के लिए यही कहना चाहूंगी, जब जब इतिहास ने करवट ली, हर युग में नारी आगे आई, झांसी बनकर रण में उतरी, मीरा बन भक्ति अपनाई। तो ऐसी नारी शक्ति को रेडियो मधुबन सलाम करता है, वंदन करता है, नमन करता है। प्यारी बहनों, अगर आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर करना चाहते हो तो नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल कर सकते हैं, और आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर कर सकते हैं। हम सुंदर जी से अगले रविवार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्कार, आप सुन रहे ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोता मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। कोई भी शिल्प कला को अर्जन करने के लिए किसी भी उम्र की सीमा रेखा नहीं होती है। उसके लिए चाहिए सिर्फ और सिर्फ हिम्मत का एक कदम और अथक पुरुषार्थ। तभी हम कह सकते हैं कि देखो, जैसे मिट्टी होती है, तो मिट्टी अगर नरम होती है तो उसमें बीज बोने से जितना जल्दी फसल होती है, सूखी में थोड़ी सी मेहनत भी लग जाती है। या दूसरा एग्जाम्पल भी हम दे सकते हैं कि अगर लोहा गर्म होता है आग में जलने के बाद, तो उसको आकार देना सहज है। ठंडा होने के बाद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बस वैसे ही अगर कम उम्र में संगीत सीखा जाए तो उसकी सफलता अनिवार्य हो जाती है। ऐसे ही संगीत के बारे में और जानकारी देने के लिए हमारे साथ फिर से मौजूद है, हर बार की तरह, श्यामली जी। श्यामली जी, संगीत की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: हाँ, मैं भी सबको नमस्कार करती हूँ।
0: श्यामली जी, हमने आज बताया कि ऐसे तो कोई भी कला कोई भी उम्र में सीख सकते हैं, मगर बचपन से अगर सीखा जाए तो हम बहुत सहजता से कर सकते हैं।
1: हाँ जी, क्योंकि वॉइस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो उसका इधर उधर करना होता है
0: जी,
1: वॉइस को थोड़ा, आपने बताया ना, नरम माटी में जितना अच्छा फसल होता है जल्दी जल्दी हो जाते हैं, तो वॉइस को हम इधर उधर कुछ भी कर सकते हैं।
0: हाँ हाँ,
1: तो लेकिन ज्यादा उम्र हो जाए तो थोड़ा कोशिश ज्यादा करना पड़ता है ना।
0: संस्कारों का भी शायद ऐसा ही है।
1: ऐसे भी है, सब
0: बचपन से ही जो आदत हम डाल लेते हैं।
1: हाँ, यही संस्कार ने आपने अच्छा बताया, जो आदत बन जाते हैं उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन कम उम्र में संस्कार अच्छा होता है, उसको वही संस्कार चलता है ना जिंदगी भर,
0: कायम रहते हैं।
1: तो ऐसे ही वॉइस के बारे में भी मैं कह सकती हूँ, अगर कम उम्र में सीखते हैं तो बहुत अच्छा सफलता की शिखर में पहुंच सकते हैं
0: जी,
1: जल्दी अपना लेते हैं। और थोड़ा ज्यादा उम्र हो जाता है तो थोड़ा उसको तो कोशिश करना ही पड़ता है,
0: ज्यादा अभ्यास करना। श्यामली जी, तिलंग राग के बारे में हमने पिछले एपिसोड में स्वर लिपि आरोह अवरोह किया, आगे आज आप हमें क्या सिखा रहे हैं?
1: हाँ, बाकी है जो बंदिश बाकी है, तान बाकी है, वो आज सिखाएंगे। ठीक है, तो लिसनर अगर किताब में बंदिश लिख लेते हैं तो अच्छा है
0: जी।
1: जैसे हमने दिया है, ले चल गोकुल गाओ, ले चल गोकुल गाओ श्याम कन्हैया रे, ले चल गोकुल गाओ श्याम कन्हैया रे। ये फर्स्ट स्थाई का है
0: जी।
1: अंतरा में है, वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में कित छुप है श्याम कन्हैया रे, वृंदावन की कुंज गलिन में कीते छुप है श्याम कन्हैया रे। पहले बताया कि ये थोड़ा चंचल प्रकृति का है, तो इसमें जो बंदिश में आप ढूंढ सकते हो कितना इसमें नटखटी है
0: जी।
1: श्याम कुंज गलिन में खुद छुप गए, उसको ढूंढने में लग गए सब, तो यही बात गोकुल के गांव की है, तो यही हम स्वल्पी में बैठा देते हैं। ठीक है
0: जी जी।

0: श्यामली जी, जो पिछले एपिसोड में आपने छोटी सी बंदिश बताई,
1: हाँ जी,
0: और ये बंदिश,
1: हाँ जी,
0: तो सीखने वाली ये बंदिश होती है ऐसा?
1: हाँ,
0: कुछ
1: सीखने वाली ये है। अच्छा। इसलिए हमने थोड़ा बिस्तर भी किया है, लेकिन ये प्रकृति चंचल है ना, इसको तो थोड़ा आराम से करेंगे इतना अच्छा नहीं लगे। इसको प्रकृति ही चंचल प्रकृति का है।
0: ओके।
1: थोड़ा ऐसे करेंगे, थोड़ा कभी फास्ट करेंगे, सिंगल लय डबल लय करेंगे, बिस्तर करेंगे, तो बहुत अच्छा है।
0: अच्छा श्यामली जी, इसी के साथ लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक में सुनते हैं तिलंग राग से संबंधित एक मीठा सा गीत। आप सभी श्रोता मित्र इसका आनंद लीजिए, और हम पुनः लौटते हैं संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन।
2: कैसे कहें हम प्यार ने हमको

0: किस्मत हमसे खुद से हम।
1: फिर से आप सभी श्रोता मित्रों का संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने श्यामली जी से

0: ने तिलंग राग की बंदिश सुनी।
1: हाँ जी
0: श्यामली जी, आगे आप हमें क्या सिखा रहे हैं?
1: अभी थोड़ा तान करेंगे
0: जी।
1: तान भी सुनाएंगे तो अच्छा लगेगा। गुरु के पास तो ऐसी शिक्षा लेना है, जरूरी है, तो हम थोड़ा सिखाते हैं तो अच्छा लगता है
0: जी,
1: सामने लिसनर अगर सीख जाते हैं तो कैसे करना चाहिए। चार मात्रा, आठ मात्रा, बारह मात्रा, सोलह मात्रा, कितना अच्छा अच्छा, दस मात्रा, बहुत सारे कर सकते हैं। ठीक है,
0: जैसे आप हर बार कहते हैं कि गुरु की शिक्षा लेना बहुत आवश्यक है, मुझे लगता है कि गुरु की शिक्षा लेने के बाद जैसे ट्यूशन में रिवीजन होता है, ऐसे हम रेडियो के माध्यम से जो संगीत सिखाते हैं शायद उनका रिवीजन हो जाता होगा।
1: वही बात है
0: जी।
1: ठीक है, स्थाई अंतरा थोड़ा तान करके सुनाते हैं।
0: हाँ जी।

0: श्यामली जी, तिलंग राग की
1: हाँ जी
0: ये तान के साथ समय देता है हमको इजाजत, हाँ। मगर जाते जाते हम आपसे सुने बिना तो हम जा ही नहीं सकते,
1: हाँ।
0: आज आप कौन सा गीत लाए हैं हमारे लिए?
1: हाँ, हम इतना पुराना भी नहीं है, महबूब की मेहंदी एक अच्छा, फिल्म,
0: ये फिल्म का गाना
1: बहुत सुंदर फिल्म है, राजेश खन्ना की है
0: जी।
1: ये जो कंपोजिशन है लता जी और रफी साहब जी की है
0: अच्छा।
1: तो हम क्या करते हैं, लता जी के थोड़ा करते हैं।

0: हम भी याद रखेंगे. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर.
1: ये जो तिलंग रख के ऊपर जो गीत है
0: जी,
1: जैसे कि यहाँ कितना इसमें नटखट है, जो राग की जो महसूसता है, जो इसका एसेंस जो है राग में है, गीतों में है. थोड़ा हटके मटके नटखट करके इसको जो करना है, कैसे होता है एक राग के ऊपर प्रेजेंटेशन कोई भी गीत
0: जी,
1: इतना इसमें अच्छा रूपरेखा बन गया. मैं कोशिश किया है
0: जी. बहुत सुंदर श्यामली जी. इसी के साथ समय देता है हमको इजाजत. फिर मिलेंगे अगले हफ्ते संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में. श्रोता मित्रों, आपके कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कुछ पूछना चाहते हो संगीत के विषय में, आप हमें तुरंत कांटेक्ट कीजिए. हमारा नंबर है 94-1415-1415. फिर से रिपीट करती हूँ, हमारा नंबर है 94-1415-1415. तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए. रेडियो मधुबन 90.4.

नमस्कार, मैं हूं अनूप जलोटा और आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं रेडियो मधुबन में। भक्ति भजन आप सुनते हैं, उसका आनंद लेते हैं। एक भजन जो मैं बहुत प्रेम से गाता हूं, उसकी एक लाइन आपको सुनाता हूं। मैया मोरी मैं नहीं माखने खायो, ये भजन मुझे बहुत प्रिय है, आप भी सुनिए। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: कल राठौड़ परिवार में माहौल थोड़ा गंभीर था, क्योंकि घर में दामाद पुराना बना है, घर जमाई नया। हमारे देश में दामाद को बहुत इज्जत दी जाती है, जिसकी आदत सूरजमल को भी थी। लेकिन अब जो इन्हीं घर वालों के साथ रहने लगे हैं, तो क्या वैसी ही इज्जत मिलेगी? या चलिए देखते हैं क्या हो रहा है आज राठौड़ परिवार में, जहां परिवार के बच्चे भी कैंप से लौट कर आ गए हैं और अब जमाई जी यानी सूरजमल जी लगे हुए हैं नई जॉब की तलाश में।
1: अरे सुबह सुबह ये क्या लगा रखा है, इतना शोर क्यों हो रहा है घर में?
2: जाह्नवी क्या है ये? तुम लोग कल ही अपने कैंपस से वापस आए हो, इसका मतलब यह नहीं कि घर को ही कैंपस बना दो।
3: दादी लेकिन मैं ये गाना नहीं बजा रही हूँ, दिस सॉन्ग डज नॉट हैज रिज।
1: चीज? क्या चीज नहीं है? अब गाने में कौन सी चीज आ गई?
3: चीज नहीं दादी, रिज रिज।
4: अरे बेटा हमारे देश में कितनी सुंदर सुंदर भाषाएं हैं, तुम लोग हिंदी बोलो, मारवाड़ी बोलो या चलो अंग्रेजी ही बोलो, पर ये कौन सी एलियन भाषा बोलते रहते हो?
3: पापा प्लीज डोंट बी सो बेसिक।
1: अरे ये कैसी अंग्रेजी है, पटर पटर करती रहती है, हमको तो कुछ समझ नहीं आता।
5: दादी जाह्नवी के कहने का मतलब है कि उसे ये गाना अच्छा नहीं लगता।

0: वीरेंद्र तू नहीं समझेगा क्योंकि तेरी तो दो दो बेटियां हैं। अरे लड़कों को ऐसे नहीं रखा जाता मीन में एक निकाल के। आखिर इकलौता चिराग है हमारे घर का, समझा?
1: और हम क्या है दादी?
2: इस सवाल का जवाब है किसी के पास। पोते को टोको नहीं रोको नहीं, और पोती को? वैसे अंबिका देवी राठौर शुरू से बेटों पर प्राण न्योछावर करती आई हैं। हालांकि बेटियों को भी शिक्षित तो किया, लेकिन उनकी शिक्षा को अहम नहीं समझा। हम सोचते हैं कि एक लड़की को स्कूल भेज तो रहे, इससे ज्यादा बराबरी क्या होगी, लेकिन रोज किसी न किसी तरीके से बेटी को दिखा ही देते हैं कि बेटा ज्यादा जरूरी है। चलिए देखते हैं राठौर परिवार की सुबह और कौन से रंग दिखाती है।
3: राजकुमारी, ओ राजकुमारी, कहाँ मर गई?
4: जिंदा हूँ जेठानी जी, बस आई।
3: राजकुमारी, आज ना मेरे पैर में बड़ा दर्द है, आज नाश्ता तू ही बना लेना।
4: जेठानी जी, नाश्ता तो बन गया।
3: अच्छा, आज नाश्ता इतने जल्दी बन गया?
4: जल्दी कहाँ जेठानी जी, 8 बज रहे हैं।
3: अरे 8 बज गए, ये बाकी के 7 और 6 कहाँ गए?
5: बड़ी भाभी, वो आए थे घर पे, राजकुमारी भाभी के हाथ का नाश्ता खाकर चले गए।
3: हे राम, मजाक मत कर किशन, मुझे तो डर लगता है, इस कम उम्र में ये मुझे क्या हो रहा है।
5: कम उम्र?
6: हाँ, भाभी जी, आप तो बस हमसे थोड़ी सी बड़ी हैं, आपको क्या होगा।
3: हाँ वो तो है, वैसे इस घर के नए जमाई सा कहाँ हैं? अभी तक अपने कमरे में पड़े सो रहे हैं का?
5: बड़ी भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, पिताजी और जीजू साथ में वॉक करने गए हैं, आते ही होंगे।
6: लो आ गए वो।
7: अच्छा अच्छा अच्छा, चलो घर आ गया, चलो जमाई सा घर में। हाँ, चलो
8: हाँ, बढ़िया
7: चलो,
8: बढ़िया
7: बहुत अच्छा।
8: अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक।
7: वाह, आज तो मजा आ गया। सूरजमल बेटा बड़ा समझदार, आज तो पेड़ पौधों के बारे में बड़ी जानकारी दी इसने।
9: हाँ बस इन्हीं खेती बाड़ी के चक्कर में लगे रहते हैं ये, इनको बताइए पापा कि पेड़ पौधे पर पैसे नहीं लगते।
7: शांति, थोड़ा शांति से बात किया कर बेटा।
9: कैसे शांत रहूं पापा, एक हफ्ता निकलने को आया है और इन्हें कोई फिक्र ही नहीं है, ना नौकरी ढूंढते हैं ना कोई।
8: पापा आप शांति को कुछ मत कहिए, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ।
7: शांति चुप हो जा, जमाई साहब आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यही बैठिए।
9: क्यों पापा, मैं क्यों चुप हो जाऊं? आपको पता है मैं सुबह ही एक पोस्ट देख रही थी, मेरी क्लास में जो सुषमा थी ना, वो अपने पति के साथ वेकेशन पे लंदन गई है और मैं यहाँ।
10: शांति तू ये क्या बोले जा रही है बहन, एक पोस्ट की वजह से तू जीजा जी को इतना सुना रही है।
9: रागिनी दीदी, आपकी शादी नहीं हुई है ना, अभी आप नहीं समझेंगी।
10: मैं इतना तो समझती हूँ शांति कि पैसे कमाना सिर्फ पुरुष की जिम्मेदारी नहीं होती है, जब रिश्ता बराबरी का है तो जिम्मेदारी भी तो बराबरी की होनी चाहिए। मेरी बात कड़वी लगेगी लेकिन अब मुझे कहनी ही पड़ेगी, ये जो तू रोज पार्टी करती है, इधर उधर जाती है, इससे अच्छा है जाके कुछ काम कर, पैसे कमा।
9: हाँ जैसे आप कमा रही हैं अपने एनजीओ से, कितना कमाती हैं दीदी आप बताइए जरा।
7: तुम दोनों बस करो, घर के मुद्दों पर बैठ के सम्मान के साथ बात की जाती है, फैसले लिए जाते हैं, ऐसे लड़ झगड़ के नहीं। अभी इस बारे में कोई बात नहीं होगी, गुस्से में एक दूसरे को जो भी कह रहे हो वह शब्द जैसे बाण से छूटे तीर है, वापस नहीं आएंगे, इसलिए जाओ सब हाथ धोकर आओ, पहले सब नाश्ता करेंगे, दिमाग ठंडा होगा तब फिर बात होगी।
6: राजकुमारी जाओ सबके लिए नाश्ता लगा दो।
4: हाँ जाती हूँ।
6: कहाँ जा रही हो, किचन उधर है?
4: वो आज मैंने कुछ स्पेशल बनाया है।
6: इतना क्या स्पेशल?

0: बना दिया जो किचन के बाहर है।
1: अरे आप बस देखते जाइए, शौक ही हो जाएंगे आप।
0: इसी बात का तो डर है।
1: हा? कुछ कहा आपने?
0: नहीं, बस पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, उनकी आवाज सुनाई दी होगी तुमको।
1: तो फिर मैं आती हूँ, मैं कीड़े मकोड़े लेकर आऊँ आपके चूहों के लिए।
0: क्या?
1: अरे मजाक कर रही थी
0: राजकुमारी, घर में वैसे ही कितना टेंशन है और तुम।
2: भैया इस टेंशन में किसी को तो मजाक करने दीजिए, वरना हमारी बहनें तो नदी में आए तूफान की तरह सब तहस नहस कर देंगी।
0: चल ठीक है, अब नाश्ता करने चलें।
3: वैसे क्या लगता है आपको, राजकुमारी जी ने आज ऐसा क्या बनाया होगा जो किचन की दीवारों में नहीं समा पाया? और भगवत जी ने तो कह दिया कि जो बात होगी अब नाश्ते के बाद होगी, लेकिन नाश्ता करने के बाद ये सब लोग बोलने लायक बचेंगे भी या नहीं? वैसे जिस गुस्से में सब लोग गए हैं उससे तो लगता है कि नाश्ते की टेबल पर भी हंगामा होने वाला है, लेकिन ये राठौड़ परिवार है जी, यहाँ की हवाओं का किसे पता कब किस दिशा में बहने लगे। वैसे भगवत जी की बात से मैं सहमत हूँ, गुस्से में कही बात का बाद में कितना भी दुख हो, पर वो कहते हैं ना कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। वैसे इस घर के शेर शायर किशन कल रात अपने कमरे में बैठे बैठे कुछ पंक्तियां लिख रहे थे, जाते जाते आप भी सुनते जाइए।
4: रिश्तों की पंखुड़ियां भी कितनी खूबसूरत हैं, एक साथ मिलकर ही ये फूल बनती हैं, नीचे से सहारा भी देती हैं, ऊपर से उजाला भी देती हैं, अकेली हों तो बस ये धूल बनती हैं। रिश्तों की पंखुड़ियां भी कितनी खूबसूरत हैं, एक साथ मिलकर ही ये फूल बनती हैं।
5: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर फिर मिलेंगे कार्यक्रम घर ऑन एयर के अगले एपिसोड में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
6: घर ऑन एयर, पात्र परिचय। दादाजी भगवत सिंह राठौर, आरजे ज्ञानेश्वर। दादी जी अंबिका देवी राठौर, आरजे संध्या। चाचा किशन सिंह राठौर, आरजे श्रीनिधि। ताऊ जी गजेंद्र सिंह राठौर, आरजे रोहित। ताई जी चंद्रावती, आरजे प्रभा। बुआ रागनी राठौर, आरजे कृष्णा। बुआ शांति राठौर, आरजे मोना। वीरेंद्र राठौर, आरजे विशाल। राजकुमारी राठौर, आरजे आरुषि। बच्चे रूहानी, अमीक्षा। नैरेटर आरजे अमित। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास ना करें, यह जानलेवा हो सकता है। रेल के डिब्बों की छत पर बैठकर यात्रा ना करें, क्योंकि ओवरहेड वायर्स में 25,000 वोल्ट का करंट है। इनके संपर्क में आने से आपकी जान को खतरा हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर अभी वक्त है जीवन रोशनी कार्यक्रम का। तो आज जीवन रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जो बहुत ही जरूरी है लाइफ में, क्योंकि अगर सब चीजें सही चल रहे हैं लाइफ में और कई बार कुछ निर्णय लेना होता है, कई बार कुछ परिस्थितियां अचानक सामने आ जाती है, हम कहते हैं अपने आप को टेक इट इजी, लेकिन वो इजीनेस को प्रैक्टिकल में लाने में थोड़ा सा समय लगता है। तभी कैसे हम कर सकते हैं इसको, इजीनेस को अप्लाई कर सकते हैं अपने लाइफ में, तभी कर सकते हैं जब हमें से प्रैक्टिस करना आएगा और हम समझेंगे कि इजीनेस है क्या। हम अपने मन से बात करेंगे, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करेंगे, अपने आप से बात करेंगे कि इजीनेस क्या है, लेकिन इसे बताने के लिए हमें चाहिए हमारे एक्सपर्ट्स। तो आज हमारे मध्य हैं आरजे हर्षा और आरजे मनीषा, जिनको आप सुनते हैं हमेशा कौन से प्रोग्राम में,
1: सपनों की सैर कार्यक्रम में।
0: जी हाँ, तो आज हमारे साथ परी और दीदी दोनों जुड़ चुकी हैं और दोनों अपने अपने जो सेवा है बहुत बखूबी से निभाते हैं। यहाँ पर एक सीनियर सिटीजन होम है, वहाँ पर आप बुजुर्गों के लिए सेवा करते हैं, और आरजे हर्षा वैसे MBA किया है उन्होंने और PR के रूप में कार्यरत है शिवमणि होम में, और आरजे मनीषा फिजियोथेरापिस्ट है, तो वो बुजुर्गों को हेल्प करते हैं एक्सरसाइजेस में और बहुत सारे चीजों में वो हेल्प करते हैं, उन्हें कोई भी पेन योगा हो तो इस प्रकार से वो उन्हें हेल्प करता है। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, पहली बार आप जीवन रोशनी कार्यक्रम में आए हैं तो इसीलिए खूब खूब स्वागत है।
1: थैंक यू आरजे, शुभा।
2: थैंक यू,
0: धन्यवाद। तो आप दोनों से जानना चाहेंगे इजीनेस के बारे में, क्योंकि इतनी सारी सेवाएं आप करते हैं, फिर भी आप रेडियो पे शो करते हैं, ऑनलाइन आपको एडिटिंग करते हैं, फिर यहाँ भेजते हैं और रेगुलर कर पाते हैं, तो मुझे लगता है इसके लिए लाइफ इजी होना बहुत जरूरी है, या फिर हमें इजीली उसे एक्सेप्ट करना शायद जरूरी है। तो सबसे पहले मैं हर्षा जी से पूछना चाहूंगी कि इजीनेस आपके लिए क्या है।
2: मेरे ख्याल में इजीनेस माना हम परिस्थिति को एज इट इज एक्सेप्ट करें, तो इससे जो हमारा मेंटल रेसिस्टेंस है वो कम होगा
0: जी,
2: और ज्यादा चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि सभी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है
0: जी।
2: जो चीजें हैं हमारे कंट्रोल में बेशक उसको हम कंट्रोल में रखें, ताकि हम उस परिस्थिति को इजीली टैकल कर पाएं, और इससे हमारा जो मन है वो थोड़ा स्टेबल रहता है परिस्थितियों में भी
0: जी।
2: तो एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है।
0: एक्सेप्ट करना, आपने बोला रेजिस्टेंट की बात, मतलब कुछ एग्जांपल शेयर कर सकते हैं कि हम कहाँ पे ज्यादा रेजिस्ट हो जाते हैं?
2: जैसे वर्कलोड अगर ज्यादा हो गया तो हम हड़बड़ी में आ जाते हैं, तो हरी करी इससे थोड़े फ्री रहें, उसके लिए मुझे लगता है कि हम बीच बीच में पॉज करें।
0: ओके जी,
2: पॉज बहुत जरूरी है
0: जी।
2: तो इससे हम कुछ भी अगर अलग से हो गया, रिएक्ट हम नहीं करेंगे, हम रिस्पॉन्ड करेंगे
0: जी। आगे आपसे जानते जाएंगे कि कैसे पॉज करें। अभी मनीषा जी से पूछना चाहूंगी कि क्या सहजता जन्मजात होती है या फिर ये अभ्यास से आती है?
1: वैसे देखा जाए तो सहजता मीन्स हम इजीनेस, जैसा हर्षा बहन ने बताया, और ये भी कह सकते हैं नेचुरलनेस या इफर्टलेसनेस हम सहजता से समझ सकते हैं, तो ये जन्मजात भी होती है और अभ्यास से भी आती है। जन्मजात क्यों कहेंगे, क्योंकि यदि हम देखें तो आत्मा के जो ओरिजिनल क्वालिटीज है वो शुद्ध है, शांत है, पवित्र है, तो ये सहजता उसका नेचुरल है ही उसके अंदर। और फिर क्या होता है कि जैसे धीरे धीरे हम बड़े, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा, तो वो नेचर वाइज बहुत इजी होता है, वो चीजों को कन्वर्ट नहीं करता, वो एज इट इज लेता है, लाइट रहता है। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है, उसके ऊपर संस्कार आते जाते हैं, उसके ऊपर अपेक्षाएं मीन्स उसके ऊपर हावी होने लगती है, तो फिर वो जो सहजता है वो चेंज हो जाती है, उसको फिर बाद में उसको विकसित करने के लिए फिर से उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो यहाँ पर करना कहना चाहूंगी कि हाँ, इसको हमें विकसित भी करना पड़ता है, लेकिन यदि हम अपने अंदर के बच्चे को यदि हम हमेशा जगा के रखें, कहें, तो फिर हमें इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये एक जन्मजात भी है और हम इसे और अच्छे से भी डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम चलना जो है वो जन्मजात है, मीन्स हर कोई चल सकता है, लेकिन अच्छे तरीके से चलना बैलेंसिंग के साथ में चलना, तो वो एक कला हो जाती है, एक विकसित करने पे ये डिपेंड करता है।
0: जी बिल्कुल, आपसे पूछना चाहूंगी कि आप अपने अंदर के जो बच्चे हैं उसको जगा के कैसे रखते हैं?
1: हाँ जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और हम जो अपने अंदर के बच्चे को जगा के रखने के लिए हम कभी कभी डांस कर लेते हैं, हम कभी गाना गा लेते हैं, कभी पेंटिंग, कभी सिंगिंग, बहुत सारे जो ऐसे क्वालिटीज है, मीन्स हम इंजॉय करते हैं लाइफ को जैसे बच्चे करते हैं, कभी गेम्स भी खेल लेते हैं।
0: जी हर्षा जी, आप कैसे एंजॉय करते हैं?
2: हाँ, जैसे मनीषा बहन ने कहा, क्योंकि हम बुजुर्गों के साथ रहते हैं तो बुजुर्गों को भी, हाँ, उनके ये भी एक यूं कहे बच्चे की ही अब उम्र हो जाती है, बुजुर्ग और बच्चा सेम हो जाते हैं, तो इसीलिए हम उनके साथ वैसे बन जाते हैं तो बहुत इजी हो जाता है।
0: जी क्या बात है। तो लोग लाइफ को खुद कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना लेते हैं? हर्षा जी से जानना चाहूंगी।
2: मुझे लगता है लाइफ कॉम्प्लिकेटेड ओवरथिंकिंग से बनती है।
0: ओके।
2: जो कि आजकल के जमाने में खासकर यूथ्स को बहुत ज्यादा ये बीमारी होने लगी है, ये देखने में आता है,
0: ओवरथिंकिंग
2: और कंपैरिजन। कंपैरिजन के कारण भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं और फ्यूचर का फियर है, इसी के कारण कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा है, ऐसा मुझे लगता है।
0: तो मनीषा जी कुछ ऐड करना चाहेंगे?
1: जैसा हर्षा बहन ने कहा कि कॉम्प्लिकेटेड का रीज़न करेक्ट है कि ओवरथिंकिंग है, कंपेयर और इच्छाएं हो जाती है, कई बार एक्सपेक्टेशंस हम ज़्यादा करने लगते हैं अपने से भी और दूसरों से भी। और जब दूसरों से एक्सपेक्टेशन हमारी ज़्यादा होती है तो फिर वहाँ पर हम अपने आप को मीन्स एक रिजिड कर लेते हैं, रेजिस्ट कर लेते हैं, दूसरे को हम अपने अंदर मीन्स जगह नहीं दे पाते हैं। तो इसके लिए आई थिंक, मुझे लगता है कि सबको वैसा ही एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे वे हैं, ना कि हमें उनको बदलने की कोशिश करना चाहिए।
0: जी बिल्कुल, तभी हम लाइफ को इजी बना सकते हैं। और क्या प्रकृति में हमें सहज जीवन के उदाहरण मिलते हैं?
1: हाँ, प्रकृति देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छी जीवंत पाठशाला कहेंगे हम, क्योंकि प्रकृति से हमें बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, कदम कदम पे मिलते हैं। जैसे कि यदि हम एक फूल को ही देख लें, तो फूल है वो सोचता नहीं है कि मुझे खुशबू फैलाना है या नहीं फैलाना है, वो उसका इजी, उसका नेचर ही है खुशबू फैलाना, इजी है वो। ऐसे ही देखें नदी को, देखें तो वो फ्लेक्सिबिलिटी, वो भी अपने नेचर के अकॉर्डिंग वो चल रही है, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। और जैसे पेड़ है, उसका छाया देना उसको काम है, फल लगते हैं तो और वो झुक जाता है, तो जो उसका नेचर है, जो सहज, वो उसको उन्होंने अपना के रखा हुआ है। जैसे आकाश को देखें तो वो खुलापन है उसके अंदर, विशालता है। तो ऐसे हम जो प्रकृति से हम ऐसे सीख ले सकते हैं जो इजीनेस है उसके लिए।
0: जी, फाइव एलिमेंट्स जो हैं हमारे, उनमें से फेवरेट एलिमेंट आपके कौन से हैं?
1: फाइव एलिमेंट्स में देखा जाए तो मुझे लगता है, वैसे तो पांचों ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन ऐसा मुझे ऐसे लगता है वाटर ज्यादा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो अपने को एडजस्ट कर लेता है, चाहे कटोरी हो, चाहे ग्लास हो, चाहे लोटा हो या बॉटल हो, मटका हो, नदी हो, सागर हो, तो वो अपने आप को बहुत, मीन्स उसमें एडजस्टमेंट की पावर जो है वो बहुत मीन्स ज्यादा है, तो मुझे ऐसा लगता है।
0: आपको हर्षा जी?
2: सेम, वाटर पसंद है क्योंकि फ्लो होता रहता है और हर चीज में ढल जाता है, तो इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी सिखाता है हमें पानी।
0: नेक्स्ट मैं हर्षा जी से पूछना चाहूंगी कि आप यूथ के बारे में बोल रहे थे और ओवरथिंकिंग के बारे में बोल रहे थे, तो यूथ में जो एंजाइटी और कंपैरिजन जो आजकल है देखने को मिल रहा है, तो ये इजीनेस को कैसे प्रभावित करता है? और जो ओवरथिंकिंग के बारे में आप कह रहे थे, तो ये हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं आपको लगता है?
2: हाँ बिल्कुल, ओवरथिंकिंग तो बहुत बड़ा शत्रु है, क्योंकि इससे हमारी क्लैरिटी खत्म होने लगती है, हमारा फोकस चला जाता है और साथ में हम मैग्नीट्यूड को बढ़ा देते हैं चीजों की।
0: जी,
2: अगर परिस्थिति 10% है, सोच सोच करके हम उस 10% परिस्थिति को हम 80% 90% तक ले जाते हैं, जिसको कहते हैं राय का पहाड़ बना दिया।
0: जी,
2: तो परिस्थिति बहुत छोटी है, लेकिन अपने पर्सपेक्टिव व्यू से देखा जाए तो वो बहुत हमको बड़ी लग जाती है, क्योंकि हमने उसको सोच सोच के कर दिया है, तो इसके कारण ओवरथिंकिंग बहुत हानिकारक है।
0: जी ओके, तो मनीषा जी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इच्छाओं के बाद जो हम करते हैं तो एक्सपेक्टेशंस जो है उसके अधिकतर जीवन को असहज बनाती है, कैसे कुछ एग्जाम्पल्स?
1: जैसे कि इच्छाओं की अधिकता जीवन को असहज बना देती, तो कई बार क्या होता है हमारी जो इच्छाएं हैं, इच्छाएं तो जरूरी भी है क्योंकि कहा भी जाता है इच्छा आवश्यकता की जननी है, वो होनी चाहिए, मगर जब जो इच्छा जो लेवल है वो उससे ऊपर चली जाती है तो फिर वो बैलेंस जो है हमारे जीवन में, जो संतुलित जीवन है उसको वो मेंटेन नहीं कर पाती। तो जब इच्छाओं की अधिकता होती है तो शुरू होता है चाहिए चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। और अगर चाहिए तो ठीक है, ओके, ये थोड़ा आप कहें कि ह्यूमन नेचर है, चाहिए, ओके। बट अगर नहीं मिला, जब वो जो चाहिए मुझे वो नहीं मिला, तब भी हमारा जो थॉट्स है वो बैलेंस में रहे, हमारा इफेक्ट ना करे हमारी लाइफ पे, वो इम्पोर्टेंट है। तो इच्छाओं की जो अधिकता है तो ये कि हम उसी के पीछे भागने लगते हैं, टू मच भागने लगते हैं, तो फिर हमारा जो जीवन है वो असहज हो जाता है। अब असहज क्यों होता है, इसमें सबसे पहले आता है तुलना आती है, इसी समय हम कंपेरिजन करते हैं, उसके पास है मेरे पास नहीं है, स्पर्धा करते हैं हम, कॉम्पिटिशन की भावना आ जाती है। फिर ये कहें कि एक साइकिल शुरू हो जाता है, जैसे वो 99 का साइकिल है कि एक कम रह गया, तो वो उसको एक को पूरा करने का वो चक्र शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से जो इच्छाओं की अधिकता है तो वो जीवन में हमारे असहजता लाती है, फिर भय होता है अंदर में, डर क्रिएट होता है, दूसरों को हम कंट्रोल में रखना चाहते हैं कि वो मेरे अकॉर्डिंग चले, सब मेरे अकॉर्डिंग हो, तो ये फिर रॉन्ग हो जाता है, फिर असहज हो जाता है।
0: जी, तो हर्षा जी जैसे कंपैरिजन की बात मनीषा जी ने कही और आप भी कह रहे थे कि कंपैरिजन जो है वो बहुत डेंजरस है, लाइफ को इजी करना नहीं होता, तो इसमें शायद यूथ को, सबको ही एंजाइटी फील होती है, तो ये कैसे प्रभावित करते हैं अपने लाइफ को और अपने सिंप्लिसिटी को?
2: कंपैरिजन जो है ये एंजाइटी पैदा करता है, और आजकल के जमाने में आई थिंक सोशल मीडिया ये ज्यादा कंपैरिजन में लेकर आ रहा है यूथ्स को, और जहाँ कंपैरिजन है वहाँ कंपटीशन होगी
0: जी,
2: और कंपटीशन शुरू हुई तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी होगी
0: जी,
2: तो इसलिए ये जो तीन सीज हैं वो बहुत थोड़े डेंजर वाले हैं
0: जी जी जी, ओके।
2: और इसके कारण मुझे लगता है कि उनका जो सेल्फ एस्टीम है वो लो हो रहा है, क्योंकि देखा, कंपेयर किया, ये मेरे से बेटर है, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, तो और अच्छा करने की कोशिश करते उसमें उनको एंजाइटी आ जाती है, लो सेल्फ एस्टीम हो जाता, और इसका जो नतीजा है वो जो इंटरनल ईज होना चाहिए कि एक सरलता अंदर में, जो संतुष्टता होनी चाहिए, लेटिंग गो की भावना होनी चाहिए, वो सब खत्म हो रही है इसके कारण, कंपैरिजन के कारण।
0: कंपैरिजन के कारण, तो जैसे माँ बाप कंपेयर करते हैं या कंपटीशन के लिए कहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा आगे जाए, थोड़ा सा कंपटीशन कंपैरिजन के भाव देने से शायद उसको लगे वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, है ना, तो इसको क्या कहेंगे?
2: मतलब हेल्दी कंपटीशन हो,
0: हेल्दी कंपटीशन हो
2: तो वो अच्छा है, लेकिन मेरी रील से उसकी रील्स अच्छी है, तो फिर वहाँ गड़बड़ हो जाती है,
0: वो उधर घूमने गए, अपने फोटोज शेयर किए, जी इस प्रकार से
2: कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए,
0: ओके।
2: और माँ बाप को उसमें मोटिवेशन देना चाहिए बच्चों को, ताकि बच्चे एंजाइटी में ना चले जाए, उनको प्रेशर ना दे माँ बाप,
0: ओके जी, ओके। तो जब इजी फील करने लगते हम हर चीज, आपने कहा कि संतुष्ट रहना चाहिए, है ना, और सिंपल होना चाहिए लाइफ, तो बोरिंग या फिर हम वो तो नहीं कर देंगे, स्टॉप तो नहीं कर देंगे अपने आप को कहीं पे, हम आगे तो बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे?
2: नहीं, संतुष्टता बोरिंग नहीं है, संतुष्टता का मतलब ये नहीं है कि हमारी प्रगति रुक गई, बस हम इतने में ही सेटिस्फाइड, ऐसा नहीं है, लेकिन संतुष्टता कब है, जब रिजल्ट ओरिएंटेड, रिजल्ट ओके, हमने एफर्ट्स लिए, हमने काम किया, फिर जो रिजल्ट आया उसमें ठीक है, या तो उसे एक्सेप्ट करें, सेटिस्फाइड रहें और लर्न कर लें कि आगे के लिए इसमें क्या हम बेटर कर सकते थे, उसको सीख करके फिर और आगे बढ़े। लोगों से भी अगर कंपटीशन हेल्दी है तो आप उनसे सीखेंगे, लर्न करेंगे और वो चीज अपने में अपना करके आप आगे बढ़ेंगे, तो सेटिस्फेक्शन आगे बढ़ना रोकती नहीं है और आगे बढ़ाती है, इसीलिए आध्यात्मिक भाषा में कहेंगे कि वी डोंट नीड टू प्रूव, वी हैव टू इम्प्रूव,
0: ओके, प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इम्प्रूव करने
2: की जरूरत है, आपको इम्प्रूव,
0: जी कुछ ऐड करना चाहेंगे?
1: बहुत अच्छे से हर्षा बहन ने बताया है कि हमको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है खुद को, बस अपने आप को इम्प्रूव करना है। कई बार यही होता है ना कि हम प्रूव करने के चक्कर में कईयों को उंगली दिखाते हैं, तो एक उंगली तो उसकी ओर होती है मगर चार हमारी तरफ होती है। तो फिर यही है कि चार तो हमारी तरफ है तो हमको ही इम्प्रूव करना है, दूसरे के सामने प्रूव करने का तो कोई मतलब ही नहीं है।
0: जी जी बिल्कुल। तो देखिए कितने सुंदर तरीके से, कितने ईजी तरीके से ये टॉपिक हमें समझ में अभी आ रहा है। आपके मन में कुछ क्वेश्चन है तो दोस्तों आप हमें कॉल कर सकते हैं 9414151515 पर, 9414151515 इस नंबर पर। सुन रहे हैं आप कार्यक्रम जीवन रोशनी, यहाँ पर हम एक अल्पविराम ले लेते हैं और फिर मिलते हैं गाने के उस पार। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
3: अरे क्या बात है मैडम, आज तो आपकी चाल ही बदल गई है।
4: क्यों ना हो, त्रिशूल हवाई चप्पल जो पहन रखी है आप भी पहनिए त्रिशूल हवाई चप्पल और फर्क महसूस कीजिए।
3: त्रिशूल हवाई चप्पल मजबूत, आरामदायक और रंग बिरंगी डिजाइन में आपके नजदीकी स्टोर्स में उपलब्ध।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें
3: 9414152250
4: या लॉग ऑन करें www.trishulfootwear.in। त्रिशूल हवाई चप्पल, पैरों में मखमल।

0: में आप सभी का स्वागत है। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर सुन रहे हैं आप कार्यक्रम जीवन रोशनी, और आज हमारे साथ आरजे मनीषा और आरजे हर्षा जी हैं। तो वो बात कर रहे हैं इजीनेस के बारे में। बहुत ही सहज तरीके से हम सुन रहे थे ब्रेक से पहले कि कैसे इजीनेस को अप्लाई कर सकते हैं हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में। तो आइए आगे भी जानते हैं उनसे। आप दोनों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया
0: जी। तो अभी आपसे जानना चाहेंगे आरजे हर्षा जी कि अगर कोई व्यक्ति रोज स्ट्रेस में रहता है, मान लीजिए हम ऑफिस जाते हैं या कहीं पे इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं या घर पे भी काम कर रहे हैं, तो स्ट्रेस तो रहता ही है कि सुबह ये बनाना है या ये काम पेंडिंग है, तो वो सुबह की शुरुआत कैसे सिंपल करे, कैसे सहज करे?
2: मुझे लगता है कि सुबह उठते ही, आँख खुलते ही फोन हाथ में ना आए
0: जी,
2: क्योंकि हम फोन को जैसे चार्ज करते हैं तो एक ये लक्ष्य बनाए कि खुद को चार्ज करना है
0: जी।
2: तो एटलीस्ट हम 10 मिनट्स 15 मिनट्स जब हम डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करें, मन को थोड़ा रिलैक्स करने की प्रैक्टिस, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें, तो हम अपने आप को चार्ज कर लेते हैं, जो पूरा दिन फिर उसी फ्लुएंसी में हम रहते हैं
0: जी।
2: और मॉर्निंग में ही अपने टारगेट्स गोल्स सेट कर लें कि आज ये काम मुझे करने हैं और इस तरह से मुझे किस तरह से करना है। मेंटली आप अपनी एक बना लें, यूं कहें प्रोग्रामिंग कर लें
0: जी,
2: तो आप बाकी जो परिस्थितियां या जो भी काम है उसमें आप एंग्जाइटी में नहीं आएंगे, स्ट्रेस में नहीं आएंगे,
0: तो मन से बात
2: वैसे स्ट्रेस को मैनेज कर पाएंगे।
0: तो मन से बात करनी है, प्रोग्रामिंग मतलब कि आज अगर कोई भी परिस्थिति आए तो मैं स्ट्रेस नहीं फील करूंगा,
2: मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, रिएक्ट नहीं करूंगा
0: जी। बिल्कुल। तो मनीषा जी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या डेली अगर हम प्रकृति के साथ जुड़ेंगे 5-10 मिनट तो ये लाइफ को सहज कर सकता है?
1: जी, प्रकृति के साथ जब हम जुड़ते हैं तो हमारी लाइफ बहुत सिंपल हो जाती है, क्योंकि जब हम प्रकृति में जाते हैं, प्रकृति के 5 तत्व जो देखे हम, आसमान, नदी, पेड़ पौधे, सब कुछ, पक्षी, फूल, पौधे, जो भी हम देखते हैं, तो उन सब से हमको एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलता है एक तो, और दूसरा क्या है, उनकी क्वालिटीज हमें नजर आती है। जैसे कि पहले बताया कि जो फूल होता है वो पूछकर खुशबू नहीं फैलाता है, उसका नेचर है। तो जब हम प्रकृति के बीच जाते हैं तो हम उनसे ये सीख सकते हैं, हम लर्न कर सकते हैं। और खासकर जब भी देखा जाए बहुत स्ट्रेस में होते हैं, आपका जब स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी जो ब्रीदिंग है थोड़ी फास्ट हो जाती है, लेकिन जब हम प्रकृति के बीच में जाते हैं तो ऑटोमेटिक वो रिलैक्स होने लगता है। खुली हवा हम लेते हैं, खुली हवा में सांस लेते हैं, तो वो भी हमारे मन की जो गति है जो बहुत फास्ट हो गई वो स्लो डाउन करती है। फिर उसके बाद में जब ब्रीदिंग कंट्रोल होती है, फिर धीरे धीरे जो हमारे थॉट थे वो धीरे धीरे थोड़े क्लियर होने लगते हैं। फिर धीरे धीरे हमें अपनी जो प्राथमिकताएं हैं, जो हमें प्रायोरिटीज देना है जिन चीज़ों को, वो चीज़ें धीरे धीरे ध्यान में आती हैं और उनसे पॉजिटिव वाइब्रेशन आता है, तो मन बहुत मीन्स कहीं रिलैक्स हो जाता है। तो एक स्ट्रेस जब भी है, स्ट्रेस जो है, तो भी हम यदि प्रकृति के बीच में जाते हैं तो भी एक बहुत अच्छा ये मैनेजमेंट है स्ट्रेस का, कह सकती हूँ, जिसमें शांति में जाकर यदि कोई पेड़ है तो उसके नीचे ही बैठ जाएं और गहरी सांस लें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, तो मन जो है वो थोड़ा शांत हो जाता है। तो ये बहुत सहज करने में मददगार है
0: जी। बिल्कुल। और हर्षा जी, जब हम कई बार डिसीजंस लेने पड़ते हैं लाइफ में, तो क्या उसको आसान बनाने के लिए प्रैक्टिकल टेक्निक्स आपके पास है, क्या बताएंगे?
2: बिल्कुल, प्रैक्टिकल टेक्निक्स तो आज बहुत हमें मिलती है। इसमें यूं कहें कि हम अपनी मेंटल फाइलिंग सिस्टम जो है वो एक बना दें सवेरे उठते ही, और उसमें चेक करें, जैसे फाइल्स होती है तो ऐसे हम अपनी फाइल्स को मेंटली चेक करें कि कौन सी फाइल इम्पोर्टेंट है। कुछ फाइलें अर्जेंट होती है, कुछ इम्पोर्टेंट होती है, कुछ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है लेकिन अर्जेंट होती है
0: जी,
2: कुछ इम्पोर्टेंट भी होती है, अर्जेंट भी होती है
0: जी।
2: तो वो हमें डिसाइड करना है कि पहला काम मेरा कौन सा है जो मुझे करना है, अर्जेंट भी हो, इम्पोर्टेंट भी हो। तो इस तरह जब मेंटल फाइलिंग सिस्टम हम कर लेते हैं तो हमें डिसीजंस लेना बहुत ईजी हो जाता है, और उसके लिए फिर हमारे मन के विचारों को रिलैक्स होना बहुत जरूरी, क्योंकि मन तो विचार करता है लेकिन डिसाइड हमारा इंटेलेक्ट करता है। तो इंटेलेक्ट हमारा मतलब बुद्धि जो है जज है, मन तो वकील है। अब वकील बोलता ही रहेगा, बोलता ही रहेगा, तो जज अपना निर्णय कैसे सुनाएगा? डिसाइड कब करेंगे,
1: मन को शांत करेंगे।
2: तो इसीलिए मन का रिलैक्स होना बहुत जरूरी है, तो सही टाइम पर हम सही डिसीजन जो है वो हम ले सकते हैं। और उसके लिए जो मैं एक अफर्मेशन का प्रैक्टिस करती हूँ डेली जिनका, खासकर सवेरे, वो ये है कि आई एम एट अ राइट प्लेस डूइंग राइट वर्क टेकिंग राइट डिसीजन एट अ राइट टाइम।
1: क्या बात है,
2: ये अफर्म रोज सवेरे अपने लिए करना, ये बहुत प्रैक्टिकली आपको मदद करता है और सही मायने में आप सही समय पर डिसीजन जो है वो ले सकते
1: हैं। ओके जी, तो ये अफर्मेशंस प्रैक्टिस करनी है, मन को शांत रखना है और फिर हम सही तरीके से निर्णय ले सकते हैं अपने बुद्धि के द्वारा।
2: हाँ जी बिल्कुल,
1: तो मन को साफ रखना भी जरूरी है,
2: मन को शांत रखना भी जरूरी है, साफ रखना भी जरूरी है,
1: दोनों जरूरी है, तब हम इजीली डिसीजंस ले सकते हैं जी। तो मनीषा जी से जानना चाहेंगे, क्या जो चीजें हम यूज करते हैं आसपास में है, तो मिनिमलिज्म अपनाना जरूरी है इजीनेस के लिए?
3: बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मिनिमलिज्म मीन्स यदि अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कम सामान रखना, जबकि इसका अर्थ हम ऐसे ले सकते हैं कि जितना है उतना पर्याप्त है, मीन्स एक संतुष्टता का एक गुण है इसके अंदर में। और आज देखा जाए तो हमारी जो लाइफ है, हमारे जीवन में भी देखा जाए तो बहुत सारे कहें कि चाहिए चाहिए, इच्छाएं इच्छाएं की वजह से साधन संसाधन बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं। यहाँ पर मुझे गांधी जी का याद आ रहा है, उनका कोट था बहुत फेमस है कि सादा जीवन उच्च विचार। तो जीवन सादगी से भरा हो लेकिन जो विचार है वो अच्छे इम्पोर्टेंट हो, और मीन्स अंदर की सादगी जो है वो बाहर हमारी क्लैरिटी लाती है, हमारे में सहजता लाती है। तो इसलिए सामान पे तो डिपेंड नहीं होता, भले क्योंकि एक तरीके से देखा जाए कि संग्रह वृत्ति भी नहीं होनी चाहिए, जैसे जैन धर्म में भी कहा गया, महावीर जी ने भी कहा है कि अपरिग्रह यानी कि संग्रह नहीं करना। तो उसी प्रकार हमें ज्यादा चीजों को जमा नहीं करना है, क्योंकि एक ज्यादा जितनी ज्यादा चीजें होती है उतना जो हमारा एनर्जी का लेवल है वो लो होता है। तो जितनी आवश्यक है उतना रखना है लेकिन सहज रहना। और कई बार क्या होता है कि इसको भी हम एक जबरदस्ती नियम जैसा बना लेते हैं, तो ये भी फिर कई बार ही स्ट्रेस का कारण बन जाता है। तो ये रहे लेकिन पॉजिटिव वे में रहे।
1: जी बिल्कुल, तो मिनिमलिज्म अपनाते हैं तो जैसे मनीषा जी ने कहा कि हम अपरिग्रह, महावीर स्वामी जी ने ये बात कही थी, मतलब ग्रीड नहीं बट नीड जितनी।
3: हाँ जी करेक्ट,
1: रखें आप अपने पास। आप कुछ ऐड करना चाहिए हर्षा जी इसमें?
2: हाँ, इसमें अगर कुछ हम, चलो चीजें हमें, इसमें भी कंपैरिजन कई बार आता है, उसके पास है तो मेरे पास भी होनी चाहिए या इससे बेटर मेरे पास होनी चाहिए।
1: कोई चीजें हमें मतलब अट्रैक्ट करती है, अच्छे लगने लगते हैं तो हमें
3: खरीद लेते हैं। और सबसे ज्यादा जो है इसका तो ऑनलाइन शॉपिंग है, सभी जान ही रहे हैं। अननेसेसरी हम चीजें देखते हैं, ये अच्छी है भले जरूरत हो ना हो, हम परचेस कर लेते हैं भले वो पड़े रहे, लेकिन अच्छी लगी तो ये सभी थोड़ी सी हमारे जीवन को असहज करने में मिस कर देता है ये।
1: जी बिल्कुल जी, तो 5 मिनट मेंटल रिसेट एक्सरसाइज अगर आपके पास है तो आप हमारे श्रोताओं से शेयर करें।
2: श्योर, इसमें सुबह उठते ही 3 बार डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करें और एक ग्रेटिट्यूड की भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं।
1: ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज है?
2: हाँ, मेंटल एक्सरसाइज कह सकते हैं कि रोज उठते ही ग्रेटिट्यूड फील करें, इससे आपको बहुत एनर्जी फील होगी।
1: ओके जी,
2: और ये एक मैजिक का काम करता है ग्रेटिट्यूड
1: जी।
2: इसकी जो प्रैक्टिस है वो आप खुद करके देखेंगे, भले एक दो दिन आपको लगे कुछ नहीं हो रहा है लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस और उस फीलिंग के साथ जब करते हैं तो जरूर आप जो चाहें आप वो हासिल कर सकते हैं, अपने गोल्स को हासिल कर सकते हैं। और साथ में फोकस्ड रहें, मैं कहूंगी सिंगल फोकस।
1: सिंगल फोकस मतलब?
2: मना आपके लिए जो चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे मुझे इस डिग्री को लेना है जो यूथ्स के लिए कहे कि मुझे ये बनना है, उनका जो सपना है, तो फिर डाइवर्जन ना हो कि ये भी करूं, एक में ही फोकस रहे। और उसी को अगर आपकी कोई ऐसी हॉबी है, जैसे आप सिंगर बनना चाहते हैं, म्यूजिशियन या पेंटर बनना चाहते हैं, तो उसी को आप अपना प्रोफेशन भी बना सकते हैं
1: जी।
2: अपने हैबिट्स को, हैबिट्स तो नहीं लेकिन हॉबीज को
1: जी
2: प्रोफेशन में बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए फोकस्ड जरूर।
1: सिंगल फोकस्ड एक नया शब्द है जो जरूर से याद रखेंगे, क्योंकि हम आजकल सोचते हैं कि मल्टीपल चीजें एक साथ कर लें।
2: हाँ,
1: मल्टीटास्किंग समझ लेते हैं,
2: लेकिन
1: एक बार में एक ही चीज के ऊपर हम फोकस्ड रहें।
0: ये बात कही जी। तो मनीषा जी आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल घर के अंदर बहुत सारे केओस जैसा माहौल होता है, बच्चों को कुछ और चाहिए, पेरेंट्स को कुछ और चाहिए, अगर सास ससुर है तो उनको कुछ और चाहिए, और सभी के ओपिनियन भी अलग अलग है और लाइफ को देखने के नजरिया भी अलग अलग है। तो घर पे घर में रहते हुए घर के माहौल को कैसे सिंपल और पीसफुल बनाया जा सकता
3: है, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन भी है, क्योंकि घर का माहौल बदलना है तो कहें कि एक एक पर्सन की, एक एक व्यक्ति की जिम्मेवारी होती है। जैसे कि एक जो घर होता है वो ईंट से तो बना होता ही है, लेकिन कितनी सारी ईंटें होती है, सब जब जुड़ते हैं तो जब सब साथ में होते हैं तो फिर वो एक घर कहीं मजबूती आती है उसमें। तो घर के माहौल को यदि सिंपल और पीसफुल बनाना है तो इसमें सभी जो मेंबर्स हैं हम घर के कहेंगे तो वो सभी इन्वॉल्व होने चाहिए उसमें। तो इसमें हम कुछ रूटीन्स कर सकते हैं, जैसे कि कुछ दिनचर्या हम ऐसी करें, जैसे बच्चे हैं तो बच्चों को भी उस अच्छी शांत दिनचर्या में शामिल किया जाए। घर में जैसे गांधी जी ने भी कहा सादा जीवन उच्च विचार, तो सिंपली सिटी रहे घर में भी, अनावश्यक चीजें ना हो, तो उसे कह के बच्चों को भी कुछ लेसन मिलेगा, सीखने को मिलेगा, वाइब्रेशंस अच्छे होंगे। और सिंपल और पीसफुल बनाने के लिए बहुत अच्छा है कि मेडिटेशन भी किया जाए, है ना। जब हम मेडिटेशन करते हैं, हम ध्यान करते हैं तो एक शांति का वाइब्रेशन क्रिएट होता है, तो ऑटोमेटिक वो शांतिमय वातावरण क्रिएट होता है, अच्छे वाइब्रेशन आते हैं। और जितना अच्छा मीन्स हमारी सादगी पूर्ण जीवन रहेगा, अंदर भी सादगी है तो वो बाहर भी सादगी को वो रिफ्लेक्ट करेगा। मन हमारा यदि शांत है तो घर में ऑटोमेटिक व्यवहार में कहें परिवार में शांति इजीली आ सकती है। तो घर के माहौल को सिंपल और पीसफुल बनाना है तो कहूंगी कि प्रकृति के बीच में भी जाएं, जो भी सारे हमारे मेंबर्स हैं, सब थोड़ा टाइम निकाले, प्रॉपर एक रूटीन रहे जिसमें एक दूसरे के साथ में एंजॉय करें। यहाँ पर मैं की भावना को छोड़ के एक हम की भावना को क्रिएट करें तो सिंपल और पीसफुल हमारा जो वातावरण है घर का वो बन सकता है
0: जी। अर्षा जी आपसे जानना चाहूंगी इसी में ही कि महिलाओं को खास करके क्या ध्यान में रखना चाहिए जब घर में वो कार्यरत है पीसफुल और उसको सहज बनाने के लिए।
2: मुझे लगता है कि महिलाओं में इमोशनल बहुत वो होता है, तुरंत इमोशनल ये हो जाते हैं कि जब कुछ भी होता है तो
0: जी,
2: तो इसलिए वैसे उनके लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि वो सब शेयर कर लेती है, हल्के हो जाते हैं किसी को सुना करके। लेकिन उनको भी डेली मेडिटेशन की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है
0: अपने घर के माहौल,
2: घर के माहौल को, क्योंकि महिलाएं भोजन बनाती हैं तो वो किस भावना से भोजन बनाती है, अगर ये भावना रखे कि ये प्रभु प्रसाद है और वो मुझे सबको खिलाना है, तो कितनी मन की जो वाइब्रेशंस हैं वो उस भोजन में जाएंगे। और जब सब वो खाएंगे शांति से बनाए, अच्छे गाने सुन करके बना सकते हैं, अच्छे आजकल तो पॉडकास्ट और बहुत सारे अच्छी अच्छी बातें आती है सोशल मीडिया में, वो सुनते हुए बनाए तो भी घर का वाइब्रेशन बहुत ही अच्छा रह सकता है।
0: ओके, मतलब अगर किसी का फोन आ गया तो बातें करते करते खाना ना बनाए,
2: व्यर्थ बातों में।
3: कई बार होता है ना टीवी चालू है, सीरियल देखते हुए कई बार बताए मैंने भोजन बनाते हैं,
2: आधा ध्यान देखते हुए,
3: आधा उधर मींस चल रहा है लाउड में और इधर काम चल रहा है उधर, उस तरीके से ना हो,
0: क्योंकि अपने फेवरेट सीरियल आए तो देखने को मन करेगा।
2: बिल्कुल,
3: लेकिन खासकर भोजन बनाते समय थोड़ा
2: खाते और बनाते वक्त ना वो सब चीजें देखे, उसको अवॉइड करे, उससे मिक्स होता है और उससे भी सीखते हैं उन सीरियल से और बच्चे भी सीखते हैं,
0: बच्चे भी सीखते हैं। इसलिए आप अपने घर के माहौल को अगर अच्छा बनाना चाहते हैं, सिंपल रहने देना चाहते हैं तो इस टेक्निक्स को यूज आप कर सकते हैं जी। हर्षद जी जैसे आप कह रहे थे कि हमें 3-4 बार डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहिए, तो जो मेडिटेशन या ब्रीदिंग टेक्निक्स के बारे में बता रहे थे, अभी भी आप मेडिटेशन के बारे में बता रहे हैं, तो ये कैसे सिंप्लिसिटी ला सकता है लाइफ में, कुछ एग्जाम्पल्स आप शेयर कर सकते हैं सर?
2: इसमें सुबह तो करना ही है, रात को सोते वक्त भी करना ही है
0: जी,
2: लेकिन जब हम कार्य व्यवहार में हैं, आप ऑफिस में हैं या कहीं भी हैं, तो बीच बीच में माइक ब्रेक्स जब लेते हैं तभी भी ये काम में आता है, लाइफ को सिंपल करता है।
0: ओके जी,
2: बहुत फायदा होता है इससे क्योंकि मन बहुत ईज रहता है और हमको एक बहुत अच्छा सीख मिलती है कि चलो चीजों को लेट गो करें तो भी हम अपने आप को सरल बना सकते हैं कि ओके फाइन जो हुआ लेट गो, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, वी हैव टू मूव ऑन
0: जी। मनीषा जी कुछ ऐड करना चाहेंगे?
3: ये मेडिटेशन कहें या ब्रीदिंग टेक्निक है, सिंप्लिसिटी तो लाती है, क्योंकि हमारे जो विचार हैं उस समय हमारे शांत होते हैं, एकरस होते हैं थोड़ा। और खासकर टेक्निक ब्रीदिंग की बताना चाहूँगी, एक बॉक्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है जिसमें हमें डीप इनहेल करना है, 4 सेकेंड्स हमको होल्ड करना है उसे, अंदर सांस लेते हुए 4 सेकेंड, फिर अंदर हम होल्ड करेंगे 4 सेकेंड, फिर 4 सेकेंड में हम उसको छोड़ेंगे 1 2 3 4 करके, और छोड़ने के बाद में भी फिर से 4 सेकेंड हमको होल्ड करना है। तो इस तरीके से 4 का ये बॉक्स, एक कहें कि 1 2 3 4 1 2 3 4, ऐसा एक बॉक्स बनता है। तो एक बॉक्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जिसे हम करें, और खासकर तब जब बहुत टेंशन में हो या कोई स्ट्रेस हो, कोई भय हो या कुछ ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जब इस तरीके की प्रॉब्लम हो, तो कुछ सेकेंड रुक करके जब हम अपनी सांसों पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं तो बहुत अच्छा पॉज लग जाता है उस चीज पे जो थॉट चल रहा है उस पर, उस पे, तो ये कर सकते हैं हम।
0: जी हर्षा जी, जब ब्लड प्रेशर के बीच में इमोशनली स्टेबल हम कैसे रहे?
2: हाँ, वही माइक्रो ब्रेक्स जरूरी है, पॉज जरूरी है, बीच बीच में आप स्ट्रेच कर सकते हैं अपने बॉडी को, वो भी रिलैक्स देता है। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस ना करें उसमें, जैसे जैसे ऑफिस का जो भी स्ट्रेस है वो घर ना ले जाए, घर का स्ट्रेस ऑफिस में ना ले जाए, उसको वहीं छोड़कर आए।
0: जी,
2: एक व्यक्ति था, वो जब ऑफिस से घर आता था तो उसके बाहर एक उसने रखा पेड़ था, अपने सारे जो ऑफिस के स्ट्रेस है वो उस पर लिख के उस पेड़ पर चिपका देता था, उसको दे देता था, फिर घर में एंटर होता था। तो ये प्रैक्टिकल किया है उस व्यक्ति ने, तो इसीलिए घर का जो माहौल है वो बहुत ही अच्छा रहता है। क्योंकि कई बार हम बॉस को तो सामने गुस्सा कर नहीं सकते, वहां तो हमको पी जाना है, तो वो जो अंदर भरा है प्रेशर, वो फिर घर के लोगों के आगे निकलता है, है ना, जैसे प्रेशर कुकर फटता है। तो इसीलिए वहां ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मुझे नहीं करना, ये थोड़ा हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है, तभी हम अपने वर्क प्लेस पे और घर पे जो कार्य कर रहे हैं उसमें फोकस्ड रह सकते हैं।
0: यहाँ पर एक क्विक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के तुरंत बाद वापस आएंगे इस कार्यक्रम के अंतर्गत। जीवन रोशनी यहाँ पर।
4: गर्भवती महिलाओं के लिए एक नई उम्मीद, अब एनीमिया के उपचार के लिए FCM का एक ही इंजेक्शन लगवाएं और निश्चिंत हो जाएं। गर्भावस्था के दौरान दूसरी और तीसरी तिमाही में खून की कमी से होने वाले दुष्परिणामों जैसे थकान, कमजोरी, भूख में कमी और अन्य जटिलताओं तथा कम वजन वाले नवजात शिशुओं की समस्या से निपटने के लिए अब FCM इंजेक्शन की एक ही खुराक काफी है।
5: FCM यानी फेरस कार्बोक्सी माल्टोस खून की कमी को दूर करने का एक सुरक्षित और प्रभावी तरीका है, तो बिना देर किए निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर आज ही FCM का इंजेक्शन लगवाएं और स्वस्थ रहे।
4: हर रोग का मिटे नामो निशान, ये है संकल्प, स्वस्थ रहे राजस्थान। NHMIEC राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: वेलकम बैक, सुन रहे हैं आप कार्यक्रम जीवन रोशनी और आज हम बात कर रहे हैं इजीनेस के बारे में। तो मैं बिना देर के फिर से लौटती हूँ हमारे एक्सपर्ट्स के पास और आइए जानते हैं कि हमारे लाइफ को और इजी बनाने के लिए, रिलेशनशिप्स को और बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हर्षा जी आपसे पूछना चाहेंगे कि रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स जो है उसको सिंपल तरीके से रिजॉल्व कैसे करें।
2: सबसे पहले तो हमें सबका सुनना जरूरी है
0: जी,
2: हम ही सुनाते रहेंगे ऐसा नहीं है, उनकी भी सुने
0: जी।
2: और इसमें रिलेशनशिप्स में 3 L's है, लिसन, लुक और लर्न।

0: उस पर है, संस्कार अपने हैं, तो हमें उनसे मिला करके चलना है। तो घर का जो वातावरण है वो बहुत, रिलेशनशिप्स जो है वो बहुत हमारी अच्छी हो सकती है
1: जी। तो मनीषा जी से जानना चाहूंगी कि रिलेशनशिप में फॉरगिवनेस का क्या महत्व है?
2: देखा जाए तो रिलेशनशिप में फॉरगिवनेस बहुत बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्षमा मीन्स माफ़ करना, तो ये किसी भी संबंध को बहुत गहरा बनाता है। जैसे कि अगर बाई चांस समझ लीजिए हस्बैंड वाइफ हैं, माता पिता के बीच, बच्चों के बीच में कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो यदि माता पिता उस बच्चे को क्षमा कर देते हैं तो वो उससे कतराएगा नहीं अपने मम्मी पापा से कुछ भी शेयर करने को। तो एक तरीके से देखा जाए तो रिलेशनशिप में बहुत ही उसका इम्पोर्टेंस है। और जो फॉरगिवनेस है, जो हम क्षमा करते हैं, तो वो क्षमा हम दूसरों को नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम अपने आप को ही कर रहे हैं, अपने आप को ही आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि यदि हम किसी के लिए हम नेगेटिव रख रहे हैं, हम उसे माफ नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब हमने खुद को ही एक जेल में बंद कर लिया। लेकिन जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो वो समझ लीजिए कि हम उसको तो किया वो तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमने अपने को आज़ाद किया, हम आसमान के खुले पंछी बने ना कि पिंजरे के पंछी। तो लाइट जीवन को हल्का बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए क्षमा बहुत इम्पोर्टेंट है। और महावीर स्वामी ने भी कहा है क्षमा वीरस्य भूषणम्, यानी कि क्षमा जो है वो वीरों का गहना है। जो इगोइस्टिक होगा वो क्षमा नहीं कर पाएगा, तो लेकिन जो जितना नम्र होगा वो क्षमा करेगा। और फॉरगिवनेस एक तो क्या होता है, हम एक्सेप्ट कर पाते हैं इजीली दूसरों को, जो है वैसे उसी तरीके से, हम उनको चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमने उनको भले एक बार बता दिया कि भाई और कई बार होता है ना कि क्षमा का भी मतलब ये नहीं होता कि बार बार माफ़ी करते जा रहे उसमें, लेकिन एक तरीके से एक गुण बन जाता है ये कि हमें यहाँ पे हर बार सहना ही नहीं है, लेकिन एक एबिलिटी हमारे अंदर डेवलप होती है, एक शीलता मीन्स सहनशीलता डेवलप होती है हमारे अंदर में। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि हम ही माफ़ कर रहे हैं, वो तो सुधर नहीं रहा है, वो बार बार वही गलती दोहरा रहे हैं, लेकिन यदि देखा जाए तो वहाँ पर हम सहन नहीं कर रहे होते, हम दमन कर रहे होते हैं, सप्रेस कर रहे होते हैं। लेकिन यदि हम उसको फॉरगिव करके हम आगे बढ़ते हैं तो हम सहनशीलता, ये एक वैल्यू अपने जीवन में हम धारण करते हैं। तो क्षमाशीलता, सहनशीलता जैसे कि एक वैल्यू होता है, वो अपने साथ पूरी चेन लेकर आता है और वैल्यूज की। तो एक क्षमा इतना इंपॉर्टेंट मीन्स कहें कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वैल्यू है, इसके पीछे समझ लीजिए पूरे गुणों की जो है वो लाइन लगी होती है। तो और ये अभ्यास तो हमें डेली ही करना चाहिए, सोने से पहले क्षमा मांगना, जिसको भी हमने जाने अनजाने यदि हमने किसी को दुख दिया है, तकलीफ दी है, चाहे अपने विचारों से भी किसी के लिए अगर गलत सोचा है तो भी एक तरीके से हम इनडायरेक्टली उसको तकलीफ दे रहे हैं, हम उसको दुख पहुंचा रहे हैं। तो उस गलती के लिए भी हमें अपने को माफ करना चाहिए और दूसरे को भी माफ करना चाहिए, क्योंकि क्षमा जो है खुद के लिए, दूसरे के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है हम बहुत गिल्ट कॉन्शियस में रह जाते हैं, वहां पर हम स्वयं को माफ ही नहीं कर पाते, दूसरों को तो माफ करने की सोचते हैं लेकिन अपने लिए हम फिर बहुत रिजिड हो जाते हैं, नहीं मुझसे ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, मैंने ऐसे कैसे कर दिया, ये गलती मेरे से कैसे हो गई। तो यहाँ पर हम खुद के लिए भी बहुत रिजिड हो जाते हैं, तो वहां पर खुद के लिए भी थोड़ी करुणा रहे, क्षमा रहे कि भाई गलती हो गई तो हो गई, लेट गो करे, खुद को क्षमा करे, और ये ध्यान रखें कि नेक्स्ट टाइम फिर ये गलती दोबारा ना हो, ये हम लेसन लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जब खुद को भी क्षमा करते हैं तो भी हम हल्के होते हैं, जब दूसरों को भी क्षमा करते हैं तो भी हम हल्के होते हैं। तो जो फॉरगिवनेस है वो जीवन को इस तरीके से बहुत हल्का बना देता है
1: जी। क्या बात है, तो क्षमा करना खुद को बहुत जरूरी है। अगर कोई भी चीज के लिए आपने अपने आप को अभी तक क्षमा नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, ताकि आपकी लाइफ जो है आगे ईजी हो सके। तो हर्षा जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि रिलेशनशिप्स में एक्सपेक्टेशंस की भी आपने पहले बात कही है, तो उसको कम करने के क्या प्रैक्टिकल टिप्स आप देना चाहेंगे?
0: उसके लिए खुद की बाउंड्रीज को हमें सेट करना पड़ेगा।
1: ओके।
0: कि मुझे पहले अपने आप को ही देखना है। उनसे एक्सपेक्ट करके हम अपने आप को यूं कहें कि एक बेचैनी सी फील होती है अंदर से, क्योंकि उसने, मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा उसने किया नहीं, और इनडायरेक्टली हम अपना कंट्रोल उस पर डाल रहे हैं। तो इसीलिए, और फिर जैसा करेंगे वैसा ही रिटर्न एक्शन का रिएक्शन तो होगा, हमसे भी कोई एक्सपेक्ट कर रहा है, वो भी हमसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वो हम उनका फुलफिल नहीं कर पा रहे। तो इससे फिर रिलेशनशिप्स में कन्फ्लिक्ट्स या टॉक्सिक वातावरण बनना शुरू हो जाता है
1: जी।
0: तो इसीलिए जितना हो सके भले आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ठीक है, या तो आप उनको ठीक से बता दो भाई मेरी

0: आपसे ये एक्सपेक्टेशंस हैं, तो उनको क्लियर हो जाए कि जैसे माँ बाप को बच्चों में एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो उन्हें बताएं, फ्री रहें, बच्चे अपनी बातें उनको बताएं, एक अच्छा हेल्दी वातावरण रहे, तो घर का जो माहौल है वो भी अच्छा रहेगा, रिलेशनशिप्स भी जो है वो बहुत अच्छी रहेगी।
1: जी, तो कई बार हम सोचते हैं कि हमारे माँ बाप है या हमारे लव्ड वंस है, हाँ, वो ना बिन कहे हमें समझ जाए।
0: हाँ, कई बार ऐसा होता है, लेकिन आपको क्लियर रहना है, क्लैरिटी बहुत जरूरी है।
1: तो जैसे हम बात कर रहे थे परिवार के बारे में, अभी बात ही चल रही है, तो ईगो कम करके हार्मोनी को लाना कितना जरूरी है और कैसे ला सकते?
2: वैसे देखा जाए तो परिवार में ईगो कम करना यानी कि खुद को छोटा करना नहीं है, बल्कि रिश्ते को बड़ा करना है। मीन्स आप अपने ईगो से ज्यादा आप उस रिश्ते को, आप रिलेशन को आप अहमियत दे रहे हैं। तो परिवार में ईगो तो होना ही नहीं चाहिए, कहना चाहूंगी मैं। और यहाँ पर हारमोनी, जैसे कि ये शब्द है, तो इसमें ही हमारी आदरणीय जो जानकी दादी थी वो समझाते थे, हारमोनी में ही दो शब्द है, हार मानी। तो जब हम परिवार में कोई एक हार मान ले तो बातें बढ़ेगी नहीं, तो बहुत सामंजस्य कहे परिवार में बना रहता है। तो परिवार में तो सबसे पहले ईगो मीन्स को गो कर देना चाहिए और हारमोनी को अपनाना चाहिए। मीन्स छोटी मोटी बातें हैं, होती रहती हैं, बट कभी आप झुक जाए, कभी सामने वाला झुक जाए, तो इस तरीके से कहें कि ये दो चक्के जो होते हैं पहिए, तो वो दोनों बैलेंस के साथ में चलते हैं। तो इस तरीके से हमें एक दूसरे को समझ करके आगे बढ़ना चाहिए। और इसमें कोई सामने झुक जाना कोई बड़ी बात नहीं है, किसी के सामने झुक जाना ऐसा नहीं है कि आप एकदम ही नीचे हो गए या आपने बिल्कुल गिर गए, इस तरीके से फीलिंग नहीं होती है। ये आप झुक गए तो समझ लीजिए आप और ऊंचे उड़ गए। तो वहां पर झुकना नहीं होता है, वो सीखना होता है और आगे बढ़ना होता है। तो इस तरीके से परिवार में यदि हम ईगो कम करते हैं और ईगो की जगह हम कहें कि सेल्फ रिस्पेक्ट हम डेवलप करें खुद के लिए भी और परिवार में भी सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप करें, तो भी हारमोनी आ जाती है। दूसरों को भी हम रिस्पेक्ट दें, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, सबको क्या चाहिए, प्यार चाहिए और रिस्पेक्ट चाहिए। जब ये नहीं दे पाते हैं तभी हमारा जो ईगो है वो जागता है। और क्या होता है, ईगो का कारण ये भी होता है कि हम रिस्पेक्ट चाहते हैं, देते नहीं है, चाहते हैं कि वो मुझे रिस्पेक्ट दे, और अगर बाय चांस वो नहीं मिल पा रहा है तो वहां पर ईगो हर्ट हो जाता है। तो वहां पर हमें भले रिस्पेक्ट दे ना दे, वहां पर तो हमको लाइट रहना ही चाहिए, क्यों, एक्सपेक्टेशन तो हमें करनी नहीं है, परिवार में तो चलता है। तो इस तरीके से यदि हम ईगो कम करें, झुके, नम्र बने, तो बहुत इजीली हम हारमोनी ला सकते हैं, परिवार में सामंजस्य बना के रख सकते हैं।
1: जी, तो इसका मतलब जिंदगी को सहज करने के लिए हमें बहुत सारे मूल्यों को अपनाना है।
2: जी,
1: वैल्यूज की चेंज के बारे में बात कर रहे हैं।
2: और एक वैल्यू अपनाएंगे तो सभी उसके फ्रेंड हैं, सभी ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, बिना बुलाए आ जाएंगे।
1: जी, तो दोस्तों जरूर कोशिश करें, आप कोशिश कर भी रहे होंगे, आपके अंदर भी बहुत सारी अच्छाइयां हैं जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कोई भी परिस्थिति आपके सामने अगर आ जाए अचानक, तो आप कैसे उसे रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे आप उस परिस्थिति को सामना करते हैं। तो हर्षा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बाहर बहुत सारे टॉक्सिक माहौल है, कई बार हम मीडिया के माध्यम से भी बहुत सारी चीजें देखते हैं, और वैसे भी हमारा लाइफ में कुछ चीजें चल रही होती है उससे भी हमें लगता है कि बहुत टॉक्सिक है लाइफ, तो खुद को इंटरनली कैसे इजी रखें, चले बाहर तो माहौल है ही,
0: उसके लिए ही हमें बाउंड्रीज को सेट करना जरूरी है, वरना क्या देखना है क्या नहीं देखना है। और कुछ समय के बाद जो जो चीजें आपने पहले देखी हैं उसको हिस्ट्री पूरी वाइप आउट कर दें और एक फ्रेश स्टार्ट करें।
1: जी,
0: तो आपको फिर नई चॉइसेस मिलेगी कि अब ये सारी बातें जो है वो मुझे सीखनी है, कि हफ्ता है या 10 दिन के बाद मुझे दूसरी नई चीजें देखनी है या सीखनी है।
1: जी,
0: सीखने की भावना से देखेंगे तो आप व्यर्थ में या टॉक्सिक में नहीं जाएंगे, तो इससे आप अपने बाउंड्रीज के अंदर ही रहेंगे और आप सेफ रहेंगे और फोकस्ड रहेंगे।
1: जी, इसी के साथ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि नो कहना सीखना इजी नहीं होता है, तो नो कहना सीखना इजीनेस से कैसे जुड़ा है?
0: बिल्कुल, नो कहना थोड़े कई बार बहुत मुश्किल होता है, खासकर अपने बॉस को या बड़ों को।
1: जी,
0: लेकिन नो कहना जरूरी भी है और ये अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो भले आप एकदम से नो ना कहें, नहीं कह पा रहे तो
1: जी,
0: लेकिन तरीके से कहें,
1: लेकिन अपनी बात
0: तरीके से, समय देख करके, वातावरण देख करके फिर आप अपनी बात रखें, तो फिर आगे देखें कि अब बड़े क्या डिसीजन आपके लिए ले रहे हैं, लेकिन बताएं अवश्य, वरना नहीं बोलना, बोलने की जो ताकत अगर नहीं रहेगी तो अंदर ही अंदर आप फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे। तो इसीलिए जरूरी है नो कहना
1: जी,
0: भले उसके लिए थोड़ा आपको टाइम भी चाहिए, तो आप टाइम लें अपने लिए, निकालें, दे अपने आप को टाइम, ताकत भरें, मोटिवेट करें, लेकिन बात को तरीके से रखें जरूर।
1: जी, कोई बात मनवाना होता है तो हम बहुत तरीके ट्राई करते हैं उसको मनवाने के लिए, लेकिन नो कहने के टाइम में थोड़ा बहुत
0: जी,
1: जैसे आपने कहा कि समय देते हैं,
0: हाँ,
1: पॉज लेना बहुत जरूरी है भाई। जी, तो मनीषा जी, अभी तो समय हो चुका है, लेकिन एक बात मैं पूछना चाहूंगी, जैसे ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो अफर्मेशन से आजकल मैनिफेस्टेशन कहते हैं, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो कहते हैं, अब दोनों से जानना चाहेंगे कि क्या ये प्रैक्टिकल में काम करता है?
2: ये कहें ग्रेटिट्यूड मीन्स उसका मीन्स थैंकफुल फील करना कि जो आपके पास है, ना कि उसके लिए फील करना कि जो मेरे पास नहीं है। जैसे कि ग्लास है, आधा भरा है आधा खाली है, जो देखेगा वो कहेगा आधा खाली है, और एक व्यक्ति जो है वो कहेगा आधा भरा है। तो यहाँ पर यही बात है कि हमारे पास क्या है वो हम देखने की बजाय क्या नहीं है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वहाँ पर दिक्कत होती है। लेकिन ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में जो हमारे पास है हम उसको देखते हैं, हम उसकी वैल्यू करते हैं, और उसके लिए हम धन्यवाद कहें, आभार हम फील करते हैं, खुद के लिए, भगवान के लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए ना। तो ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस जितना करते हैं तो हमारा जो माइंड है वो ओपन होता जाता है, और थैंक कहने से कहें कि और मीन्स उसमें वृद्धि होती जाती है, प्रचुरता बढ़ती जाती है कह सकते हैं।
0: और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से हमारी एनर्जी भी और बढ़ती है और एनर्जी शिफ्ट होती है हमारी, तो इसलिए ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना तो बहुत बहुत ही जरूरी है मुझे लगता है।
1: जी बिल्कुल, तो दोस्तों ये हफ्ते आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें और हमें अपना जो फीडबैक है 9414141415 पर आप बता सकते हैं, कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके। तो अभी जाने से पहले कुछ रैपिड फायर राउंड है ये, आप दोनों से जानना चाहेंगे, तो मनीषा जी इजीनेस एक शब्द में।
2: सरलता, फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड, बच्चे।
1: एंड हर्षा जी इजीनेस,
0: लेट गो।
1: लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बनाने वाली एक आदत,
2: ओवरथिंकिंग।
0: सेम ओवरथिंकिंग।
1: सिंपल लिविंग का सबसे बड़ा लाभ,
2: क्लैरिटी आती है थॉट में,
1: क्लैरिटी आती है। आप क्या कहना चाहते हैं?
0: ईज फील होता है, इनर ईज।
1: लाइटनेस के लिए एक होमवर्क,
2: एक 1-1-1 का होमवर्क देना चाहूंगी, 1 मिनट पॉज एवरी आवर, 1 मिनट साइलेंस में फील करेंगे, और किसी एक को थैंक करना, धन्यवाद, पॉज या साइलेंस की प्रैक्टिस और
1: धन्यवाद करना।
2: हाँ जी, धन्यवाद।
1: हर्षा जी आप क्या कहना चाहेंगे लाइटनेस के लिए होमवर्क?
0: रोज सुबह उठते ही खुद को चार्ज करना, और इससे हम अपने खुद के इंचार्ज बन जाएंगे।
1: क्या बात है,
0: अर्थात खुद पर कंट्रोलिंग पावर आती जाएगी, और अपने लाइफ का जो रिमोट कंट्रोल है वो अपने हाथ में रखें।
1: क्या बात, थैंक यू सो मच आप दोनों का, और मुझे लगता है इजीनेस वाला जो टॉपिक है ना, इसको आप दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से इजी कर दिया, सरल कर दिया हमारे लिए।
2: थैंक यू,
0: थैंक यू
1: जी। उम्मीद है कि आप सिर्फ सपनों के शहर में नहीं आएंगे, लेकिन बीच बीच में ऐसे हमारे साथ अपनी बातें भी शेयर करते रहेंगे।
2: जरूर।
1: तो दोस्तों यहीं पर रुकते हैं, फिर मुलाकात होगी अगली कड़ी में, तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

याद रखें, एक बाइक पर कभी भी दो से ज्यादा लोग एक साथ ना जाएं। यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

ओम शांति। आज 13 जुलाई 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहते, बच्चे तुम बाप के पास क्यों आए हो? तुम आए हो अपने जीवन को हीरे समान बनाने। और कैसे बनेगी? तो बाप की याद से ही ऐसी जीवन बनेगी। दूसरा बाबा कहते हैं, हीरे समान जीवन बनाने के लिए मुसाफिर बाप जो दूर देश से आए हैं उनके श्रेष्ठ मत पर चलना पड़े। और बाबा की श्रेष्ठ मत क्या है? तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हें रहना है अपने गृहस्थ व्यवहार में, परंतु कैसे रहना है? नष्ट मोहा बन करके। बुद्धि योग एक बाप से लगाना है, इसीलिए कहा जाता है मन मना भव। जब ऐसा हीरे जैसा जीवन बनता है तो उसको कहा जाता है रूहानी फूल। बाबा कहते, बाबा आए हैं फूलों का बगीचा बनाने, तुम्हें ऐसा रूहानी खुशबूदार फूल बनना है जो वर्षे के संपूर्ण अधिकारी बन जाए। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे तुम बाप के पास आए हो अपनी जीवन हीरे समान बनाने। बाप की याद से ही ऐसी जीवन बनेगी। आज की मुरली से प्रश्न है, नई दुनिया

में उच्च पद के लिए कौन सा एक मुख्य पुरुषार्थ करना है? उत्तर है, बाबा कहते, मीठे बच्चे, जिन पुराने संबंधियों ने इतना दुखी किया, अब उनके मोह जाल से बुद्धि को निकाल एक मुझे याद करो। उनके साथ रहते भी मन को मेरे में लगाओ, अर्थात मन मना भव का मंत्र सदा याद रखो, तो तुम नई दुनिया में उच्च पद पाएंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तूने रात गवाई सोकर, दिवस गवाया खाकर। ओम शांति। जैसे बच्चों को सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं, वैसे इन गीतों का भी सार तुमको समझाते हैं। बाबा गीतों का भी सार समझाते, वही सबका रूहानी बाप रूहानी बच्चों को ब्रह्मा तन से बैठ समझा रहे हैं। बाप समझाते हैं, हे बच्चों, तुम जानते हो हमारा हीरे जैसा जन्म बन रहा है, बाप के पास आते ही हो, इसलिए हीरे जैसा जन्म बनाने। हीरे जैसा जन्म कहा जाता है स्वर्गवासियों का, कौड़ी जैसा जन्म है नरकवासियों का। तुम संगम युग को भी जान चुके हो, हम अभी संगम युग वासी है। यह संगम युग सबके लिए कल्याणकारी है। इस संगम युग में ही सर्व की गति सदगति होती है। कौन करते हैं गति सदगति? कौन करते हैं? बाबा कहते, मुसाफिर, परमधाम से आने वाला मुसाफिर। वो मुसाफिर है ना। अब मुसाफिर टाइटल परमात्मा को क्यों दिया गया है वो बाबा स्पष्ट करते हैं कि वो मुसाफिर है ना। तुम मुसाफिर नहीं हो, आत्माएं मुसाफिर नहीं है। क्यों? बाबा कहे, तुम आकर जाते नहीं हो, परमधाम से आए फिर यही पाठ बजाते रहते हैं 5000 साल तक, वापस जाते नहीं हो। बाप कहते, मैं पुरानी दुनिया में आकर फिर लौट जाता हूं, बच्चों से मिले, मुरली चलाई, बस फिर लौट जाता हूं परमधाम। बच्चे जानते हैं ये सेवा करने वाला सिर्फ एक मुसाफिर है, इसलिए बाबा को मुसाफिर कहा जाता, क्योंकि वो आते हैं सेवा करके लौट जाते हैं। तो मुसाफिर हुआ। बाबा कहते, तुम आत्माएं मुसाफिर नहीं हो, क्योंकि तुम आते हो और फिर यहीं रह जाते हो, नाटक पूरा होने के बाद जाते हो, इसलिए तुमको मुसाफिर नहीं कहा जाता है। लेकिन भक्ति मार्ग में तो क्या कहते हैं, हर आत्मा मुसाफिर है, तो इसीलिए बाबा ने मुसाफिर का अर्थ स्पष्ट किया। तो बाबा कहते, बच्चे जानते हैं ये सेवा करने वाला सिर्फ एक मुसाफिर है, जो आकर हम बच्चों की बड़ी सेवा करते हैं, ऐसी सेवा और कोई कर न सके। सेवा के लिए ही पुकारते हैं कि आकर हम पतितों की सेवा करो। बाप भी कहते हैं, हम बच्चों की सेवा में आए हैं क्योंकि बच्चे बहुत दुखी है। क्यों बाबा मुसाफिर बनकर सेवा करने आए? क्योंकि बच्चे बहुत दुखी है। पुकारते भी है, हमारे दुख हरो और शांति दो। दो चीज हमेशा याद रहती है, सुख और शांति। यहां दुख और अशांति है तब पुकारते हैं। सुख और शांति देने वाला तो परमात्मा है। बाप ही आकर सारा राज सृष्टि चक्र का बच्चों को समझाते हैं। बच्चे समझते हैं, क्या समझते हैं? अब भक्ति मार्ग खत्म होता है, यानी भक्ति का फल मिल रहा है। कलयुग का अंत माना भक्ति नीचे उतरती आती है, ज्ञान से तुम्हारी चढ़ती कला हो जाती है,
तुम ऊंचते ऊंच पद पा लेते हो, फिर वह प्रारब्ध का सुख कम होता जाता है। सतयुग से धीरे धीरे धीरे धीरे प्रारब्ध का सुख कम हो जाता है। भक्ति तो भारत में जितनी होती है उतनी और कहां नहीं होती है। ये भी कैसा सुंदर वंडरफुल पार्ट है कि जितनी भक्ति भारत में होती है और कहां भी नहीं है। आधा कल्प भक्ति चलती है जब से द्वापर शुरू होता है और दूसरे धर्म स्थापन होना शुरू होते हैं, तब से भक्ति शुरू होती है। भारत में भक्ति शुरू होती है और दुनिया भर में और धर्म की स्थापना होती है। भक्ति भी पहले बहुत अच्छी होती है, जैसे स्वर्ग पहले बहुत अच्छा होता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाती है। वैसे ही बाबा कहते भक्ति शुरू होती है तो पहले पहले शिव के पुजारी बनते हैं। आधा कल्प कोई पूजा होती नहीं है, सतयुग त्रेता में तो कोई पूजा होती नहीं है, फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है और दूसरे धर्म भी शुरू होते हैं। इतनी भक्ति और कोई कर नहीं सकते, पूरा आधा कल्प भक्ति चलती है। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि बाप जो सबको, खास भारत को सदगति देते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, वही दूर देश का मुसाफिर आया हुआ है। इसलिए आया है हम बच्चों को फिर से स्वर्ग की बादशाही देने। बाबा कहते हैं वो दूर का मुसाफिर आते हैं, पहले कहा बहुत सेवा करते हैं, अब बाबा कहते क्यों आए हैं, स्वर्ग की बादशाही देने। वर्षा भी कितना जबरदस्त है, कितना जबरदस्त बाबा वर्षा भी देते हैं, परंतु एक भी बात किसकी बुद्धि में नहीं बैठती। भारत में भक्ति कितनी करते हैं, कितने मंदिर है, भारत खंड में तो ढेर मंदिर है। अभी तुम जानते हो ये किसके मंदिर है, ये सारे मंदिर किसके हैं। पहले पहले तो शिव बाबा का मंदिर बनता है, फिर बनते हैं देवताओं के, वह मंदिर भी तुम्हारे सामने खड़े हैं। एक तरफ शिव बाबा की पूजा करते रहते, दूसरे तरफ शिव बाबा तुमको पूज्य बना रहे हैं। तुम यहां आए हो पूज्य देवता बनने। जो भी देवताओं के पुजारी है वास्तव में वह भी आकर यहां ब्राह्मण बनेंगे, देवताओं के पुजारी भी यहां ब्राह्मण बनेंगे। बहुत गहरी बात बाबा ने बताई कि यह नहीं कि जो देवताओं के पुजारी हैं वो बाबा से वर्षा लेने नहीं आएंगे, वो भी आएंगे, ब्राह्मण बनेंगे। धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी, ब्राह्मणों की भी धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। सभी इकट्ठे तो पढ़ ना सके, समय लगता है। कल्प पहले भी जिन्होंने पढ़ा होगा वही फिर पढ़ेंगे, एक दो को पढ़ाते रहना है। सबको बाप और सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं, जिससे मनुष्य स्वर्ग का मालिक बन सकते हैं। सो आकर समझो, तुम बच्चों की बुद्धि में है कि ये नाटक कैसे चक्कर लगाता है। कहानी कोई लाखों वर्ष की तो नहीं सुना सकते, तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले क्या था, किसका राज्य था। भारत में हम पूज्य देवी देवताओं का राज्य था, याद आया ना, पूछते बाबा याद आया ना, हम पूज्य थे फिर पुजारी बने, आगे ये पता नहीं था। हम 100 पूज्य देवता थे, फिर हमने 84 जन्म लिए। 84 जन्मों की कहानी लक्ष्मी नारायण की है, तुम अपने 84 जन्मों की कहानी सुनाते हो। उनको तो अपनी कहानी बैठ लिखने में बहुत समय लगता है, तुम एक मिनट में 84 जन्मों की कहानी बता सकते हो। वह तो एक जन्म की कहानी लिखते हैं, दुनिया के अंदर लोग लिखते हैं बायोग्राफी
तो एक जन्म

जैसी कोई नहीं करते, और जो भी मठ पंथ धर्म आदि है वो हमारे भक्ति के समय स्थापन होते हैं। पहले पहले हमारा कितना छोटा फूलों का झाड़ था, रूहानी गार्डन था, तुम चैतन्य फूल थे, इनको कहा जाता है फूलों का बगीचा, फिर वही कांटों का बगीचा होता जाता है, फूलों का बगीचा फिर धीरे धीरे कांटों का बगीचा होता जाता। इस समय सब कांटे बन गए हैं, फिर कांटों से फूल कैसे बनना है? सो बाप बैठ समझाते हैं, एक दो को दुख देना कांटा लगाना है। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ कहा जाता है, वो बहुत अच्छी होती है। स्टूडेंट लाइफ बहुत अच्छी होती है, बच्चे बच्चियां बड़ी खुशी में पढ़ते रहते हैं। शादी की और एक दो को कांटा लगाना शुरू किया। सतयुग में कोई कांटा नहीं लगाते, अभी तुम फिर फूल बनते हो। बाबा कहते अभी तुम फिर फूल बनते हो। तुम जानते हो भारत स्वर्ग था तो कितने अपार सुख थे, सोने की खानियां थी, अभी वह खाली हो गई है। फिर तुमको सोना भरपूर मिलेगा। फिर बाबा कहते नई दुनिया में सोना भरपूर मिलेगा, भारत में ही सोने हीरे जवाहरात की खानियां थी। उस समय अमेरिका आदि कुछ भी नहीं होता, बॉम्बे भी नहीं होती, वंडर है ना। बाबा कहते हैं भारत जब सोने की हीरे जवाहरात की खानियों से भरपूर था, उस समय ना अमेरिका था, बॉम्बे भी नहीं होती, वंडर है ना। कलयुग के अंत में कुछ भी सोना देखने में नहीं आता, फिर सतयुग आदि में इतनी सोने की खानियां भरपूर हो जाती है। कलयुग में तो कुछ नहीं देखने में आता है, बाबा कहे फिर इतनी सोने की खानियां भरपूर हो जाती है, सोने के महल बन जाते हैं, वंडर है ना। वहां खानियों से कितना ढेर सोना निकालते हैं, जैसे यहाँ मिट्टी की ईंटे बनती है वैसे वहां सोने की ईंटे बनती है। माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं ना, ध्यान में देखा यहाँ तो सोना ही सोना है, बरोबर सतयुग में सोना होगा, यहाँ तो देखो मिट्टी की ईंटे भी नहीं मिलती है। जितनी यहाँ ईंटे पैसे से मिलती है उतनी वहां सोने की ईंटे मुफ्त मिलती है। रात दिन का फर्क है, इस दुनिया और उस दुनिया में रात दिन का फर्क है, तो क्यों नहीं पुरुषार्थ करना चाहिए नई दुनिया में ऊंच पद पाने का, यहां मोह जाल में क्यों फंसे। बाप कहते पुराने संबंधों में तुम कितना दुख उठाते हो। बाबा ऐसे नहीं कहते उनको छोड़ दो, ये नहीं कहते हैं, सिर्फ बुद्धि योग एक बाप से लगाओ। ये नहीं कहते कि गृहस्थ व्यवहार को छोड़ दो, जंगल में चले जाओ, नहीं। बाबा कहते रहना भी वहां है, सिर्फ बुद्धि योग बाप से लगाओ तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। मन मना भव का अर्थ ही है मुझे याद करो, और विष्णु चतुर्भुज को अर्थात विष्णुपुरी को याद करो। मूल है ही एक अक्षर, भक्ति मार्ग में तो ढेर पंचायत है। अभी तुम सब आत्माएं आशिक हो एक माशुक परमपिता परमात्मा के, वह तुमको सुखधाम का मालिक बनाते हैं। सब आत्माएं उनको याद करते हैं, तुम रूहानी आशिक रूहानी माशुक के एक ही बार बनते हो। सभी रूहानी आशिक रूहानी माशुक के एक ही बार बनते हो, बाकी तो सब मनुष्य है जिस्मानी आशिक माशुक। अभी बेहद के आशिकों को बेहद का माशुक आकर मिला है, उनको कहते भी है आओ आकर हमको पतित से पावन बनाओ। एक को ही पुकारते हैं,
तुम जानते हो।

हमारी आत्मा पतित बनी है, इसलिए पुकारते हैं पतित पावन आओ। कुंभ का मेला लगता है, कितने जाकर गंगा स्नान करते हैं, कुंभ में कितने जाकर गंगा स्नान करते हैं, फायदा कुछ भी नहीं, पावन कोई भी बनता नहीं। वो पानी आत्मा को स्पर्श भी नहीं कर सकती है तो पावन कैसे बनते। अभी बाप आकर ज्ञान वर्षा करते हैं, तुम्हारे ऊपर ज्ञान की वर्षा हो रही है, जिससे फिर कांटों का जंगल फिर से फूलों का बगीचा बन जाएगा। तुम जानते हो हमारा जब राज्य होगा तो वहां कोई भी पतित होगा ही नहीं, सतयुग में कोई भी पतित होगा ही नहीं, सारे विश्व पर ज्ञान वर्षा हो जाती है, सब कुछ हरा भरा हो जाता है, थानियां भी हीरे जवाहरों की नई बन जाती है। अब तुम बच्चों को कितनी खुशी में रहना चाहिए। सन्मुख देखते हो बेहद का बाप बैठ समझाते हैं कि तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बल तुम कहां भी बैठो, स्नान करो, बुद्धि में बाप की याद रहे। कहां भी बैठो, स्नान करो, चलो फिरो, बाबा कहे बुद्धि में बाप की याद रहे। वहां तो याद करने की फुर्सत है, दुनिया में बाबा कहे याद करने की फुर्सत है। बाप को जितना याद करेंगे उतना कमाई है, जितना बाबा की याद में रहेंगे उतनी कमाई है, याद से ही कमाई है। ऐसा कभी सुना कि याद से कमाई होती है? कितनी बड़ी कमाई है, आध्यात्मिक भाषा ही न्यारी निराली है कि परमात्मा की याद से आत्मा में कमाई है। तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। तुम जानते हो हम आत्माओं का बाप निराकार है, उसने इस शरीर का आधार लिया है। भागीरथ का भी वर्णन है ना, भाग्यशाली रथ, जिस रथ पर परम पिता की परम आत्मा सवार होती है। आत्मा का रथ जब तैयार होता है तो झट आत्मा आकर प्रवेश करती है। बाप को तो इस रथ में आकर सिर्फ नॉलेज देनी है। इनके भी बहुत जन्म के अंत के जन्म में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब बाप कहते हैं मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूं, अथवा इस रथ में विराजमान होता हूं। बाकी कोई घोड़े गाड़ी के रथ की बात नहीं है। अभी तुमको ये ज्ञान मिला है, बाप बैठ सन्मुख तुम बच्चों को समझाते हैं, तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा सन्मुख समझाते तो तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए। ICS का इम्तिहान पढ़ते हैं तो बड़ा नशा रहता है, वह होता है सबसे ऊंच इम्तिहान। तुम्हारी भी ये पढ़ाई है, ये भगवान की पाठशाला है। अब प्रश्न उठता है भगवान कौन, क्या श्री कृष्ण या शिव बाबा, सबका भगवान कौन है? सिवाय एक निराकार के सब तो श्री कृष्ण को मानेंगे नहीं। सभी आत्माओं का बाप व निराकार परम पिता परमात्मा है, वह सदैव परम धाम में रहते हैं, एक ही बार आते हैं बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने। तुम जानते हो वही बाबा कल्प कल्प आकर हमको क्या बनाते, रंग से राव बनाते हैं। भारत अब रंग है ना, फिर दूसरे जन्म में क्या बनना है, तुमको सब साक्षात्कार हुए हैं। विनाश का भी साक्षात्कार किया है, स्थापना का भी किया है। भगवान वाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। बहुत दान पुण्य करने से कोई को अल्पकाल का सुख मिलता है। राजाओं के पास जन्म ले फिर फट से मर जाते हैं, कोई गर्भ में भी मर जाते हैं, कोई लूले लंगड़े काने बन जाते हैं। जैसे कर्म करते हैं
वैसा पद पाते हैं। अब तुमको तो राजाओं का राजा बनाते हैं, तुम कहते हो बाबा हम बलिहार जाएंगे तो जरूर राजाई भी तुम पाएंगे। भारत को महादानी खंड कहा जाता है। भारत जैसी भक्ति भी कहीं नहीं तो भारत जैसा दान भी कहीं नहीं है। इसीलिए बाबा कहते भारत को महादानी खंड कहा जाता है। यहाँ दान पुण्य बहुत करते हैं। वह फिर शुरू होता है भक्ति मार्ग में। अब बाप तुमको 21 जन्मों के लिए दान देते हैं। अब तुम बाबा पर बलिहार जाते हो, तन मन धन सब कुछ दे दिया। अब बाप कहते ट्रस्टी होकर रहो, अपना घर बार संभालो, सब शिव बाबा का है, मैं आपका हूं, आपको ही याद करता हूं। बच्चे बाबा को कहते हैं सब शिव बाबा का है, मैं भी आपका हूं, आपको ही याद करता हूं, दिल से सरेंडर करते हैं। बाप कहते भल महल में रहो, घूमो फिरो, मौज मनाओ, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम बहुत खुशी में रहेंगे। तुम विश्व के मालिक थे, अब फिर तुम पुरुषार्थ कर वह बनते हो। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, इस योग बल से ही तुम विक्रमाजीत बनेंगे। बाप की याद से तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाबा की याद से ही विश्व के मालिक बनते और योग बल से ही विक्रमाजीत बनते हो। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, राजाई पद पाने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है, तन मन धन सब समर्पण कर ट्रस्टी होकर रहना है, विक्रमाजीत बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट, याद में ही कमाई है, इसलिए निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। ऐसा रूहानी फूल बनना है जो फूलों की दुनिया का अधिकारी बन जाए, अंदर में कोई भी कांटा न रहे। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, एक बाप में सारे संसार का अनुभव करने वाले बेहद के वैरागी भव। एक बाप में सारे संसार का अनुभव करने वाले बेहद के वैरागी भव। बेहद के वैरागी वही बन सकते जो बाप को ही अपना संसार समझते हैं। जिनका बाप ही संसार है वो अपने संसार में ही रहेंगे, दूसरे में जाएंगे ही नहीं, तो किनारा स्वतः हो जाएगा। संसार में व्यक्ति और वैभव सब आ जाता है। बाप की संपत्ति सो अपनी संपत्ति, इस स्मृति में रहने से बेहद के वैरागी हो जाएंगे। कोई को देखते हुए भी नहीं देखेंगे, दिखाई ही नहीं देंगे। आज का स्लोगन है पावरफुल स्थिति का अनुभव करने के लिए एकांत और रमणीकता का बैलेंस रखो। पावरफुल स्थिति का अनुभव करने के लिए एकांत और रमणीकता का बैलेंस रखो। आज का अव्यक्त इशारा है ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते जैसे किला बांधा जाता है जिससे प्रजा किले के अंदर सेफ रहे, एक राजा के लिए कोठरी नहीं बनाते किला बनाते हैं। आप सभी भी स्वयं के लिए, साथियों के लिए, अन्य आत्माओं के लिए ज्वाला रूप याद का किला बांधो। याद के शक्ति की ज्वाला हो
तो हर आत्मा सेफ्टी का अनुभव करेगी, हर आत्मा सेफ्टी का अनुभव करेगी। अच्छा, ओ शांति।